वर्ष जो आया कि आया, अगला वर्ष जो आया कि आया, उसके लिए विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। ज्वालामुखी योग द्वारा ही जो भी संस्कार रहे हुए हैं वह भी भस्म होने हैं। ज्वालामुखी संस्कार बाबा कहे वो भी भस्म होने हैं। अभी आपकी एडवांस पार्टी के साथी आप सबसे यह चाहते हैं। दादियों को देखकर बाबा ने कहा कि जो एडवांस पार्टी में दादियां गई है तो आप सब, तो अभी आपकी एडवांस पार्टी के साथी आप सबसे यही चाहते हैं कि अभी समाप्ति के समय को सामने लाओ। अब रिटर्न जर्नी याद रखो। आपकी दीदी याद दिला रही है कि मुझे सदा ये याद रहता था अब घर जाना है, अब घर जाना है। आपकी दादी यही याद दिला रही है कि जैसे मुझे याद रहा अभी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। धुन लगी रही तो आज विशेष अमृत वेले वतन में बाप दादा से मिलन मनाते। कह रहे थे महात्माएं भी अमृत वेले बाबा से विशेष मिलन मनाने आते तो कह रहे थे कि अभी हमारे तरफ से जो भी दादियां गई है सब मिलके कह रही थी अब ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है। चाहे औरों को शक्ति देने के लिए, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार को संपन्न बनाने के लिए, अभी समय को समीप लाने वाले आप निमित्त हो। तो औरों को शक्ति देने के लिए, ब्राह्मण परिवार को संपन्न बनाने के लिए, और बाबा कहे समय को समीप लाने के लिए आप निमित्त हो। इसलिए आने वाले वर्ष में क्या करेंगे, विशेष क्या करेंगे? एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक सेंटर सेवा स्थान ज्वालामुखी योग का वाइब्रेशन और कर्म में एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक के प्रति अटेंशन रखते। जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो। बाहर वालों को बाबा कहे मनसा सेवा द्वारा सहयोग दो और ब्राह्मण परिवार को भी विशेष सहयोग देना है, तभी हम लोगों के दिल की आश पूरी होगी। तो आज वतन में एडवांस पार्टी अगले साल के लिए आप सबको याद भी दे रही थी और अपने दिल की आशाएं भी बता रही थी। तो बोलो, बाप दादा का संकल्प तो सुना ही, लेकिन साथ में अपने दादियों की भी अगले वर्ष के लिए शुभ भावनाएं भी सुने ना। बाप दादा तो सभी बच्चों को, चाहे कोई कमजोर है चाहे तीव्र पुरुषार्थी है, सबको तीन मुबारकें दे रहे हैं। एक नव जीवन की मुबारक, दूसरी नव वर्ष की मुबारक और तीसरी नव दुनिया में साथी बन चलने की मुबारक। तीन मुबारक, नव जीवन की मुबारक, नव वर्ष की मुबारक और नव दुनिया की साथी बन चलने की मुबारक। बाप दादा ने यह भी कहा कि सभी अपने अंदर अपने लिए समय निश्चित करो कि कब तक अपने को बाप समान बनाएंगे। बाबा कहे ये अपने अंदर समय निश्चित करो, अपने अंदर अपने लिए निश्चित करो। तो निश्चित करना आता है ना। बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही वरदान दे रहे
है, क्या वरदान दे रहे हैं बाबा सब बच्चों को देख करके। अगले वर्ष में हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी भव, तीव्र पुरुषार्थी भव। अमृत वेले जब याद में बैठते हो और जब उठने का समय होता है, उस समय बाप दादा का यह वरदान अपने दिल में याद रखना, तीव्र पुरुषार्थी भव, तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे बाप दादा ने दो बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई है, क्योंकि संगम का समय अचानक समाप्त होना है, तो एक समय दूसरा संकल्प, दोनों पर हर घड़ी अटेंशन। बाप दादा की यह भी हर बच्चे के प्रति शुभ भावना है। क्या शुभ भावना है? कि हर बच्चा इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे, जो भी आपके चेहरे में देखे, आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे। फलानी हूं फलाना हूं नहीं, फरिश्ता अनुभव में आवे, फरिश्ता अनुभव में आवे। इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं, अंदर में कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप योग से व्यर्थ को जलाओ, ज्वाला स्वरूप योग द्वारा व्यर्थ को जलाओ। समर्थ फरिश्ता नजर आए जिसको भी देखे, क्योंकि बाप के सिकिलदे बच्चे हो ना, बाप ने जो आपको खास कहां कहां से चुन करके अपना बनाया, बाप दादा ने आपको खास कहां कहां से चुन करके अपना बनाया। तो लक्ष्य रखो, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। तो अमृत वेले अपनी दिनचर्या में ये याद रखना कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं, चलते फिरते फरिश्ता रूप, फरिश्ता स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, फॉलो फादर, बस कदम पर कदम रखना है। तो इस वर्ष का वरदान जो दिया, तीव्र पुरुषार्थी भव, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ है तो राज्य के साथी नहीं बनेंगे, और बाप यही चाहते हैं कि जितने भी बाप दादा की मुरली अध्ययन करने वाले गॉडली स्टूडेंट है, वह सब के सब क्या बनेंगे, फरिश्ता। सब बोझ उतर जाएगा, कोई भी संस्कार का बोझ समाप्त हो जाएगा। तो इस वर्ष का होमवर्क क्या रहा, फरिश्ता स्वरूप में रहना है। इसको ही कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ, फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अभी हर एक सेंटर, हर सप्ताह, हर स्टूडेंट की रिजल्ट देखे कि तीव्र पुरुषार्थी रहे। अगर कोई भी बात आई, उसके लिए सहयोगी बन करके स्नेह से उनको हिम्मत दे, और अपने सेंटर को, स्टूडेंट को तीव्र पुरुषार्थी बनाए। हर सप्ताह रिजल्ट देखे, क्योंकि समय हलचल का होना ही है। तो आज संगम दिन पर विदाई, और बधाई के दिन पर चारों ओर के जहां भी जो बैठे हैं, जहां भी जो बैठे हैं बच्चे, बाप दादा देख रहे हैं कैसे सभी साइंस के साधनों द्वारा देख भी रहे हैं, और देख देख कितने खुश हो रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं, सदा संतुष्ट मणि भव, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है। अच्छा, अभी दादियां मिलकर के कोई नया प्लान बनाओ।
दादियां सब मिल करके कोई नया प्लान बनाओ। तो दादी जानकी ने कहा बाबा से, बाबा जनवरी मास का बहुत महत्व है, जनवरी मास में अगर सब भी मिलकर पुरुषार्थ करें, ऐसी सेवा का कोई प्लान बन जाए जो सबके दिल से जिगर से निकले कि मेरा बाबा, ऐसी मेरी भावना है, दादी की भावना है कि सबके मुख से यही निकले, जिगर से निकले मेरा बाबा। बाप दादा नए वर्ष में नवीनता चाहते हैं, वही संस्कार नहीं चाहते हैं। एक एक बच्चा बाप समान दिखाई दे। फॉलो ब्रह्मा बाप। सर्कमस्टेंस बातें सब कुछ बाप के आगे आई। ब्रह्मा बाबा के सामने भी कई सर्कमस्टेंस आई, बातें आई, लेकिन फरिश्ता बन गए। तो फरिश्ता बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प हर एक अपने आप से करे, क्योंकि अपने आप से करेंगे तो अटेंशन रहेगा, मुझे बनना है बस। और आपके बनने से नेचुरल वाइब्रेशन फैलेगा। तो अभी क्या लक्ष्य रखा है? फरिश्ता बनना ही है, बोलो पक्का है ना? अच्छा, सभी को बहुत बहुत बाप दादा के दिल का प्यार और मुबारक हो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से भी परे रहो, क्योंकि देह भान मिट्टी है। यदि इसका भी बोझ है तो भारीपन है। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाप से, बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। ऐसे संपूर्ण बेगर ही डबल लाइट फरिश्ता है। आज का स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। आज का अव्यक्त इशारा है, परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारी पर भी उपकार करो। परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारी पर भी उपकार करो। किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने की इच्छा न हो। संकल्प में भी ये न आए कि ये करे तो मैं करूं, ये बदले तो मैं बदलूं, कुछ यह बदले कुछ मैं बदलूं। भिखारी को भी माला माल बनाने वाला, अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाला ही परोपकार की भावना से संपन्न है। बाबा कहते परोपकार की भावना से ही संपन्न है। अच्छा ओ

ओम शांति। हम सभी को इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्वश्रेष्ठ परमात्म प्यार मिला। सोचो, जिसकी एक झलक पाने के लिए हम तरसते थे, उस प्यार के सागर ने आकर हमें अपना निर्मल प्यार दिया, निस्वार्थ प्यार दिया। उस प्यार को पाकर हम तृप्त हो गए। उस प्यार में आत्माओं के जन्म जन्म के दुख समाप्त हो गए। कईयों को तो लगा कि उन्हें भी प्यार करने वाला कोई है। जब बुजुर्ग लोगों को बाबा बच्चे बच्चे कहते थे तो उनके नैन भर आते थे। जब रोज मुरली में मीठे मीठे बच्चे शब्द आता है तो प्रभु प्रेम की अनुभूति होती है। इस प्रभु प्रेम की पालना में हम सभी स्वयं को तृप्त करें, इस प्यार को महसूस करें। भगवान स्वयं हमारा मात पिता है। जैसे संसार में लौकिक मात पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, वो अलौकिक और परलौकिक मात पिता तो हमें बहुत बहुत प्यार करता है और उस प्यार में वो हमें महान बनाना चाहता है। उस प्यार में वो हमें संसार में चमकाना चाहता है। उस प्यार में वो हमें स्वयं को बाप समान बना देना चाहता है। ऐसा महान प्यार जो केवल कुछ कार नहीं लेकिन जिसके पीछे एक महान ध्येय है हमें महान बनाने का। हम इस प्यार के मूल्य को पहचाने और इस प्यार में मग्न हो जाएं। भगवान वाच है, एक के प्यार में मग्न होना यही संपूर्ण ज्ञान है। तो आइए हम अपने संपूर्ण ज्ञान को इमर्ज रखते हुए एक बाप के प्रेम में लगातार मग्न होने का अनुभव करें। और ये भी याद रखें, जो इस समय प्रभु प्रेम में मग्न रहेंगे उन्हें जन्म जन्म भी संबंधों में प्यार मिलेगा और द्वापर युग के बाद भी उनके चित्त में प्रभु प्रेम की तरंगें उठने लगेंगी और उन्हें भी महसूस होगा कि हमें बाबा का प्यार मिलता है। अपने से पूछें, यदि हमें भी बाबा से इतना प्यार है तो क्या हम उसकी सुनते हैं? यदि हम उसकी सुनते ही नहीं होंगे तो हमारे परमात्म प्यार का कोई स्वरूप कोई लक्षण रह नहीं जाएगा। प्यार में तो कुर्बानी की जाती है। यदि सचमुच हमारे दिल में एक बाबा बसा हुआ है तो उसके महावाक्य उसकी शिक्षाएं उसकी आज्ञाएं भी हमें सिरोधार्य करनी है। अगर वो कहते हैं कि बच्चे पर चिंतन न करो, यदि वे कहते हैं कि बच्चे किसी को दुख न दो, मुख से कटु वचन न बोलो, तो हमें इस आज्ञा को सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। यही हमारे प्यार का संपूर्ण स्वरूप है और यही परमात्मा प्यार का सुंदर रिटर्न भी होगा। तो आइए प्रभु प्रेम में स्वयं को मग्न करें, उस प्रेम में स्वयं को संपूर्ण करें। प्रभु प्यार को पाकर देहधारियों के प्यार को समाप्त करें। प्रभु प्रेम में मग्न होकर मोहममता से ऊपर उठ जाएं तो हमारा ये जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। प्रभु प्रेम की पालना का अनुभव निरंतर हमें होता रहेगा। तो आज सारा दिन हम इस प्यार को महसूस करने के लिए स्वयं को देह से न्यारा करेंगे। मैं आत्मा अलग, ये देह अलग है, बिल्कुल न्यारापन, और बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करेंगे। हे बाबा, आपने मुझे ये दिया।
शुक्रिया करते रहेंगे, तुम्हें पाकर हम धन्य धन्य हो गए, आपने हमें सब कुछ दिया, आपको कोटि कोटि बार प्रणाम, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। आप हमें न मिलते तो हमारा जीवन कैसा होता, आप हमें न मिलते तो माया की दलदल में हम भी नष्ट हो गए होते, हम भी पाप की सरिता में बहकर बहुत गंदे नाले के समान बन गए होते। आपने हमें बचाया, आपने हमें पवित्र किया, आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद। इस तरह बाबा से बातें करते हुए उसके प्यार में मग्न रहेंगे। ओम शांति।

107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सबका स्वागत कर रही हूँ। रेडियो मधुबन पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अगर सुबह के इस मंगल वेला पर हमारा मन परमात्मा के पास है, उसकी स्मृति मन में है, तो वह भी एक बहुत सुंदर यात्रा हो जाती है। और भारत वर्ष में यात्रा के प्रति हरेक के मन में बहुत श्रद्धा भाव है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि पुराने जमाने में जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे या ऐसी कोई महान तीर्थ पर जाते थे, तो घर में बाकी रिश्तेदारों को बोल कर जाते थे कि अभी हम जा रहे हैं, हमारा इस घर संसार से कोई मोह नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि यात्रा, हम यात्रा इस विषय को जीवन में बहुत महत्व देते हैं। और आज की जनरेशन भी अगर उनको कहीं जाना हो तो बहुत उत्सुक रहती है, उमंग रहता है दिल में। फिर वो कोई पर्यटन स्थल क्यों ना हो, केवल ऐसा नहीं कि होली प्लेसेस पर ही हम जाए, लेकिन इसके प्रति हरेक के दिल में एक उमंग उत्साह रहता है। ये यात्रा, किस प्रकार की यात्रा हम करते हैं, उस यात्रा का हमारे भारतवर्ष में इतना महत्व क्यों है, और सचमुच हर कोई यात्रा कर सकता है, इन बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर जी का हम रेडियो मधुबन की तरफ से स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, वेलकम।
1: थैंक यू भक्ति जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स। हमारे सब श्रोतागण को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुप्रभात।
0: थैंक यू। ज्ञानेश्वर जी, कहा जाता है चलना ही जीवन है, चलते चलो चलते चलो। चलना ही जीवन है, रुकना मृत्यु। लेकिन चलना ही जीवन है, इसका सही अर्थ क्या है? हम यात्रा पर जब जाते हैं तब चलते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी अनुभव हुआ है कि वह यात्रा, हम शरीर तो उस ले जाते हैं उस स्थान पर जो निश्चित स्थान है मन में, लेकिन कभी हम अपने मन से उस पर नहीं पहुंचे हुए रहते हैं, अनुभव ये कहता है। तो आप इस यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं को आपका स्वयं का अनुभव क्या बताएंगे, आपका अभ्यास क्या कहता है?
1: देखिए, ये यात्रा जो विषय आपने लिया है, सब्जेक्ट है यात्रा, काफी इंटरेस्टिंग है, रोचक है, और ये यात्रा हर एक की जिंदगी से जुड़ी हुई है। यात्रा जो है, जब बचपन में हम माँ बाप के साथ, माँ बाप यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा पे जाना चाहते हैं, तब भी हम माँ बाप के साथ बचपन से ही जाते हैं। और यात्रा जो है, यात्रा का शब्द और उसका अर्थ, यात्रा का अर्थ है हमारे घर से बाहर जाना, यात्रा का अर्थ है घर छोड़ के कहीं बाहर जाना, उसे यात्रा कहते हैं। उसको भले अंग्रेजी में हम टूर कहते हैं, ट्रिप कहते हैं, पिकनिक कहेंगे, लेकिन है यात्रा। और अगर हम तीर्थों के यहाँ जाते हैं तो वो तीर्थ यात्रा होती है, अगर और किसी स्थान पे जाते हैं तो यात्रा होती है। यात्रा एक हिंदी शब्द है, प्रवास है, यात्रा भी जो है वो प्रवास है, और वो प्रवास में अपनी डेस्टिनेशन जो है, स्थान जो है, वो निश्चित है। जब भी हम यात्रा पे जाते हैं तो कहाँ जाना है वो पक्का है, कैसे जाना है वो पक्का है, बिना मतलब निरुद्देश हम यात्रा पे नहीं जाते। ये बात तो आपने मान लिया होगा, आप जानते भी होंगे और हमारे श्रोतागण भी जानते हैं। और यात्रा का मुख्य उद्देश्य है घर को छोड़ना है। और जैसे आपने कहा कि यात्रा जो है वो हनीमून के लिए भी अगर कपल जाता है तो वो यात्रा है, लेकिन उसे हम प्रवास का वर्णन शब्द देते हैं, या ट्रिप कहते हैं, या पिकनिक कहते हैं। और कोई अगर विदेश के लिए जाता है कुछ काम के लिए या पढ़ाई पढ़ने के लिए, वो भी यात्रा है, लेकिन वो शिक्षा लेने के लिए जाता है। उद्देश्य अलग है, भाव अलग है, मकसद अलग है, डेस्टिनेशंस अलग है, लेकिन जब भी वो कोई अपना घर छोड़ता है तब वो यात्रा में ही अंतर्भूत होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी ये यात्रा जो है, अभी हमने बहुत सारे लोगों का देखा है, बहुत सारे चरित्र नायक जो है उनका देखा है कि उन्होंने यात्रा की, भारत भ्रमण किया, और जितना भारत भ्रमण किया, भारत के बाहर भी भ्रमण किया, तब उन्हें ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अनुभवों की प्राप्ति करनी है, तो भी यात्रा जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, ऐसे मैं समझता हूँ। जैसे देखिए, हम विदेशियों के बारे में भी अगर सोचते हैं तो एनी बेजेंट थे, वो थे यूरोप के, लेकिन यहाँ आ गए, भारत में आ गए, वो भी यात्रा के मकसद से आए। बहुत सारे विदेशी यात्री जो थे, चाहे चीन से आए हैं, रशिया से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, आए भारत में कुछ खोजने के लिए, कुछ पाने के लिए, वो भी उनकी एक यात्रा थी। तो भले ऐसा कहते हैं कि अमेरिका का शोध और अमेरिका की पहचान कोलंबस को जब लगी, तब एक्चुअली वो गया था भारत ढूंढने के लिए और उसे अमेरिका मिल गई, तो वो भी एक यात्रा थी। लेकिन उस समय भी उसका लक्ष्य जो था फिक्स था, निश्चित था, लेकिन लक्ष्य के बजाय उसका दूसरा कोई लक्ष्य हासिल हो गया। कहने का भाव यह है कि जब यात्रा शब्द का उच्चारण करते हैं तो कुछ ना कुछ लक्ष्य हमारे पास निर्धारित होता है।
0: बहुत अच्छा।
1: अभी जितने संत हैं, ऋषि मुनि जो है, उन्होंने भी यात्रा की। आदि शंकराचार्य का जो उदाहरण हम लेते हैं, तब आदिराज शंकराचार्य जी थे, इतने कम उम्र में, बाल्यावस्था में वो उन्होंने घर छोड़ दिया और उन्होंने भारत भ्रमण किया, पूरे भारत में परिक्रमा की और भारत की पहचान ली। बहुत सारे हमारे चरित्र नायक जो है, संत है, ऋषि है, उन्होंने भारत देश का भ्रमण किया और उसकी जानकारी ली, क्योंकि जब तक आप वहाँ जाते नहीं है, वहाँ देखते नहीं है, तब उसका अनुभव नहीं होता। सागर के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको वर्णन किया, पहाड़ों के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको वर्णन किया, लेकिन आपने अगर उसे देखा ही नहीं है तो ये वर्णन कागज के ऊपर ही रहता है, वो अनुभव नहीं होता और उससे आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं होती, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए यात्रा जो है, चाहे किसी भी स्वरूप में है, लेकिन यात्रा हमारे जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूँ।
0: बहुत अच्छा। इस बारे में और कई प्रश्न मन में आते हैं, जैसे कि आपने कहा भ्रमण करना, या जब हम तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं, वो तो यात्रा है ही, सब मानते हैं, और भारत में चार धाम यात्रा करना तो एक पुण्य का कर्म माना जाता है, लेकिन क्या सचमुच केवल घर छोड़कर जाना यात्रा है, या घर में रहते हुए भी हम यात्रा कर सकते हैं? बहुत सारी बातें मन में हैं, उन बातों का जवाब आपसे हम निश्चित पाएंगे, और बातों ही बातों में हमारे श्रोताओं के मन में भी कई जो विचार आते हैं उनका भी हल हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक टू रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। ज्ञानेश्वर जी, एक होती है बाहरी यात्रा, जैसे कि आपने कहा भ्रमण करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, और आपने बहुत सुंदर मिसाल भी दिया, आदि शंकराचार्य कहो या और ऐसे कई ऋषि मुनि हैं जिनका हम उदाहरण देखते हैं। प्रश्न यह है कि एक होती है बाहरी यात्रा, एक होती है आंतरिक यात्रा, अर्थात जिसको हम कहें मानस यात्रा। इस मानस यात्रा को या आंतरिक यात्रा को, इस मानस यात्रा को या आंतरिक यात्रा को करने का हर एक का यत्न रहता है, या ये हर कोई कर सकता है, उसके लिए कोई एज की लिमिट नहीं है। आपने कहा वैसे हमारा जीवन भी एक यात्रा ही है, और हम इस यात्रा में जब आते हैं तो कितने छोटे से होते हैं, बाल रूप में होते हैं कितने छोटे होते हैं, बाल रूप में होते हैं, और अनुभवों की लेन देन करते करते हम समृद्ध हो जाते हैं। और जीवन की यात्रा भी, हर एक का समय तो अलग अलग होगा, लेकिन हर कोई इस यात्रा पर भी चला ही रहता है। और इसीलिए ये जो यात्रा शब्द है वो बड़ा गहरा है। तो बाहरी यात्रा और आंतरिक यात्रा, ये दो शब्द का उपयोग कई आध्यात्मिक किताबों में आया है, उसके ऊपर आपने क्या चिंतन किया है?
1: ये यात्रा का जो आपने वर्णन किया और यात्रा के बारे में जो उदाहरण दिया, यात्रा जिंदगी का सफर है, और जिंदगी को भी हर कोई बोलता है सफर है, यात्रा है। लेकिन फर्क यह है कि जिंदगी का सफर जो है, यात्रा जो है, उसमें डेस्टिनेशन

0: जो है मेरा वो फिक्स नहीं है। बाकी कोई भी यात्रा में अगर हम जाते हैं तो पहले क्या करना पड़ता है, ट्रैवल एजेंट को लेना दिखान ढूंढना पड़ता है या खुद को कुछ अपने आइटनरी बनानी पड़ती है, स्थानों का निश्चितीकरण करना पड़ता है, फिर होटल बुकिंग करो या फिर ट्रेन का बुकिंग करो, प्लेन का बुकिंग करो, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अगर आप कोई सी ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे हमें यात्रा पे जाना है, तो आपको पूछेगा भाई साहब आप कौन से यात्रा पे जाना चाहते हैं। अगर आप सोचेंगे हमारा वो निश्चित नहीं है, हमें सिर्फ यात्रा पे जाना है, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। वो आपको शुभेच्छा दे सकता है लेकिन निरुद्देश यात्रा होती नहीं है, निरुद्देश भटकंती होती है। और ये भटकना जो है वो कहीं ना कहीं आपको लटका देता है। तो हमें जाना कहाँ है और हमें क्या करना है, वो जैसे हमारे लौकिक यात्रा में भी जरूरी है। पहले घर छोड़ना चाहिए, जाना कहाँ है, कैसे जाना है, कितने दिन के लिए जाना है और वापस कब आना है। इसलिए कभी कभी हम हंसी से कहते हैं कि कभी एक मेरे मित्र पूछते थे कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी का बच्चा है कम बहुत कम उम्र में शरीर छोड़ देता है, मर जाता है। और फिर वो पूछते हैं अगर जिंदगी का सफर है तो इतने जल्दी कैसे हो गया। तो उसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि वो गलत ट्रेन में बैठ गया था। अगर कोई यात्री है और अनाउंसमेंट हो रही है, ट्रेन जानी एक जगह है और यात्री को दूसरे ही जगह जाना है, वो ट्रेन के अंदर तो चढ़ गया लेकिन जैसे अनाउंसमेंट सुनता है वैसे क्या करता है, वो उतर जाता है। अगर अनाउंसमेंट सुनी नहीं है और फिर भी गलती से ट्रेन में चढ़ गया, तो एक दो स्टेशन जाने के बाद जब उसको पता चलता है कि मेरा डेस्टिनेशन तो दूसरा है, मुझे ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, फिर वो उतर जाता है। तो ये मन के समझाने वाली बात है। तो हम जो यात्रा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो उसमें सबसे निश्चित सुनिश्चित करना है हमें जाना कहाँ है और जाना कैसे है। तो ये जैसे लौकिक यात्रा में हमने कहा है, और क्योंकि वो जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें जब तक अनुभव नहीं होता तब तक खाली किताब पढ़ के हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। अगर सिर्फ किताब पढ़ के ज्ञान प्राप्ति होती थी तो यात्रा का मकसद भी नहीं था। और ये यात्रा करने के बाद जितने संत ऋषि मुनि हो गए, इतने बचपन के दिन में, जवानी के दिन में उन्होंने यात्रा की, अनुभवों को समृद्ध किया, बहुत सुख और दुख प्रत्यक्ष देखे, लोगों के साथ बातचीत की, तो उन्हें इसका ज्ञान प्राप्त हो गया। इट वॉज जस्ट इन्फॉर्मेशन, किसी की जानकारी और ज्ञान समझ उसमें बहुत अंतर है। जानकारी जो है उसके लिए शायद आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, और बिना जाके सिर्फ किताब पढ़ के हम देख सकते हैं हिमालय की चोटी कितनी सुंदर है, पर्वत कितने सुंदर है, पर्वतों पे चढ़ना कितना कठिन है, समुंदर कितना बड़ा है, विशाल है। ये सब चीज़ें हम सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे तो उसका आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम खुद जाएंगे देखेंगे तो उसका आनंद मिलेगा।
1: लेकिन फिर भी यह बाहरी यात्रा हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि हम उस स्थान पर चले जाते हैं परंतु हमारा मन जो है वो अभी तक वहाँ पहुँचा ही नहीं है। तो सवाल ये है कि बाहरी यात्रा या दूसरी किसी जगह घर छोड़कर जाना वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर हमारे दोस्त घर में रहते हुए यात्रा करना चाहते हैं वह संभव है? उसको ही मैं समझती हूँ आंतरिक यात्रा कहाँ गया होगा। जैसे आपने कहा कि बाहर की यात्रा जाने के लिए हमें रिजर्वेशंस बुक करने पड़ेंगे, डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए, वैसे जो आंतरिक यात्रा है वह कैसे की जा सकती है, उसके लिए कौन से रिजर्वेशंस चाहिए, उसके लिए डेस्टिनेशन क्या चाहिए, वह हम जानना चाहते हैं।
0: आंतरिक यात्रा का थोड़ा आपको खुल के बताना पड़ेगा, खुल के सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि आंतरिक यात्रा भी एक होती है और एक अंतरिक्ष यात्रा भी होती है। देखिए, अंतरिक्ष यात्रा जो है, अभी हम जो सफर की बात करते हैं वो तो ट्रेन से हो गया, प्लेन से हो गया, लेकिन दूसरा जो अंतरिक्ष यात्रा जो है वो भी काफी विस्मयकारक है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। और उस समय अंतरिक्ष यात्रा में जो यात्री है, जो अंतरिक्ष यान में बैठने वाला है, उसकी पहचान हो जाती है। जैसे नील आर्मस्ट्रांग जो हम जानते हैं वो चांद पे गए हैं, उनकी पहचान है वो चांद पे गए, लेकिन चांद पे जाने के लिए, उनको चांद पे पहुंचाने के लिए जितने शास्त्रज्ञ, जितने साइंटिस्ट निमित्त बन गए, वो सब पर्दे के पीछे है। तो ये अंतरिक्ष यात्रा जो है वो भी किसी की मदद से हम कर सकते हैं। वैसे ही आपने जो अंतर मन की यात्रा की, आंतरिक यात्रा की, वो भी हम किसी की मदद से कर सकते हैं, हम खुद उसको कर नहीं सकते। जब तक हम किसी से मदद नहीं लेंगे तब तक ये आंतरिक यात्रा जो है वो होगी नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ।
1: आंतरिक यात्रा में या मन की यात्रा में मदद की आवश्यकता होती है। हम देखेंगे क्या ये मदद सबको मिल सकती है, और ये मदद देने वाला कौन है, और ये मदद लेनी कैसे है। अगर हम चाहते हैं कि हम घर में बैठे बैठे यात्रा करें तो मदद लेना तो है ही, लेकिन क्या हर एक इस प्रकार की मदद ले सकता है? इन बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आंतरिक यात्रा के लिए किसी की मदद जरूरी होती है। ज्ञानेश्वर जी, आपने कहा आंतरिक यात्रा के लिए मददगार चाहिए। मैंने एक किताब में बहुत सुंदर लाइनें पढ़ी थी, वहाँ लिखा हुआ है कि जब मनुष्य सोया हुआ है तब समझो कि वो कलयुग में है, जब वो बैठ जाता है तब समझो वो द्वापर युग में है,
1: अच्छा,
0: जब वो उठ खड़ा होता है तब समझो वो त्रेता युग में है,
1: अच्छा,
0: और जब वो चलने लगता है तब समझो वो सतयुग में है।
1: बहुत अच्छा।
0: मनुष्य का सोने से चलने तक का जो अंतर है, जो प्रवास है, जो यात्रा है, वह चार युगों की यात्रा हो जाती है। और इसीलिए आगे लिखा हुआ था कि एक बार एक व्यक्ति अपने ऊंट से पूछता है कि हे ऊंट, तुझे पहाड़ी पर चढ़ना अच्छा लगता है, तू पहाड़ी पर चढ़ना पसंद करेगा या केवल रेगिस्तान में चलना पसंद करेगा? तो वो ऊंट जो जवाब देता है वो बहुत बढ़िया है। ऊंट कहता है, मुझे पहाड़ी पर चढ़ना हो या रेगिस्तान में चढ़ना हो इससे मतलब नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मुझ पर कितना बोझ लदा हुआ है। बोझ हमारे मन पर बहुत है और इसीलिए मानस यात्रा या आंतरिक यात्रा करने के लिए हम काबिल नहीं होते। आज हम इस यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हर कोई वह यात्रा कर सकता है। तो ये मानस यात्रा, ये अंदर की यात्रा करने के लिए आपने जैसे कहा कि मददगार चाहिए, तो क्या ये मदद उस बोझ उठाने के लिए है, उस बोझ को संभालने के लिए है या किस प्रकार की है?
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। ऊंट की जो कथा है बहुत मर्मस्पर्शी है, उद्बोधक है, और वो देखने के बाद सामान की बात जब आ गई तब मुझे याद आया कि भारतीय रेल का घोषवाक्य है, कम सामान बहुत आराम। जितना सामान यात्रा में कम हो उतना आपका यात्रा, आपका सफर जो है वो आरामदायी रहता है। वो लौकिक यात्रा हो गई, और जैसे ये अलौकिक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें भी आपका सामान जितना कम हो उतनी आपकी यात्रा बहुत सुंदर होगी, आसान होगी, सफल भी होगी। तो ये सामान क्या है, यही सबसे मुश्किल है कि सामान की पहचान। हमें जिसको सामान कहते हैं वो कम सामान जो है, ये सामान क्या चीज़ है, वो पहले हमें पहचानना पड़ेगा। और अगर यह सामान हमने पहचान भी लिया तो उसे कम कैसे करना है ये भी देखना पड़ेगा। और अगर मुझे वो लेना भी है तो कहाँ रखना है ये भी देखना पड़ेगा। हम विमान का सफर जब करते हैं, हवाई सफर जब करते हैं, तब जिन्होंने हवाई सफर की है वो जानते होंगे

0: कि आपके पास जो सामान रहता है वो दो प्रकार के रहते हैं, एक चेक इन रहता है और दूसरा कैरी ऑन रहता है। केबिन लगेज एक रहता है जो आपके साथ केबिन में आता है और उसको लिमिट बहुत कम है, बहुत हल्का होना चाहिए, और अगर कुछ भारी सामान है वो भी भारी सामान कुछ हद तक है, उसके ऊपर अलाउ नहीं करते, और वो भारी सामान है भी तो लेकिन चेक इन करना पड़ता है। तो ऐसे अगर हम सफर करते हैं, आंतरिक सफर करते हैं, तो हमारे साथ सामान क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा, और ये सामान जो है वो चेक इन करने लायक कौन सा है ये देखना पड़ेगा, और बहुत जरूरी है वो केबिन लगेज होगा, तब आपकी सफर जो है बहुत अच्छी होगी। दूसरा, ये जो सामान है उसको भी सिक्योरिटी चेक होता है, स्कैनिंग होता है, चेक इन करो या केबिन में लेके जाओ उसको सिक्योरिटी चेक होता है, और जो विघातक सामान पॉसिबल है वो सब आपको लेके जाने के लिए मना है। नोकदार जो वस्तु है, नोकीली जो वस्तु है वो भी लेके जाने के लिए मना होता है केबिन बैगेज में। तो ये सब चीजें जो है हम अगर हम आध्यात्मिक रीति से देखें तो हमें नोकीले जो पदार्थ है वो क्या है, चुभने वाले हैं, दूसरों को चुभने वाले हैं या खुद को चुभने वाले हैं। वो चुभने वाले जो पदार्थ है, चुभने वाली जो वस्तु है, चुभने वाले विचार है, वो अगर हम निकाल के फेंक दे तो हमारी आंतरिक यात्रा जो है वो जैसे विमान प्रवास है, विमान की यात्रा है, वैसे ये भी यात्रा सफल होगी। तो हमें पहले क्या करना है, हमें चेक करना है, चेक इन, हमारे पास क्या सामान है, हमारे पास क्या सामान हम लेना चाहते हैं और क्या सामान फेंकना चाहते हैं और क्या सामान रखना चाहते हैं, इसकी जब तक हम जांच नहीं करेंगे तब तक हमारी आंतरिक यात्रा जो है वो सफल नहीं होगी। और ये इसकी जांच करने के लिए हमें गुरु की मदद चाहिए, गुरु की जैसे मदद चाहिए वैसे सद्गुरु की मदद चाहिए। लेकिन सतगुरु कौन होता है वो मालूम नहीं है, लेकिन गुरु हमें बताता है सतगुरु कौन है, और गुरु और सतगुरु जब मिलते हैं तब हमारे पास जो सामान है उसकी पहचान हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है अपने खुद की पहचान, अपने साथ जो हमारे साथ जो सामान है उसकी पहचान, और क्या लेना है और क्या नहीं लेना है उसकी पहचान। ये जब होगी तब मैं समझता हूँ आपको आंतरिक यात्रा के लिए एलिजिबल हो जाओगे, पात्र हो जाओगे, ऐसा मुझे लगता है।
1: बहुत सुंदर। कोई भी यात्रा अगर हमें करनी है, जो हम यात्रा की बात कर रहे हैं वो है मानस यात्रा, या कहो रूह की यात्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि शरीर है, मन ही मन अपने मन को उस परमात्मा के पास ले जाते हैं, या रूह की यात्रा जब करते हैं तो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव और वो जो आत्मिक शांति है वो सबसे न्यारी होती है, अनोखी होती है। तो उसके लिए हमारी रूह को या हमारे मन को क्या विचार देना है?
0: ये विचार तो देना है, मन को जो विचार देना है उसके लिए मैं जो हमेशा, अगर हम इसकी भेंट में विमान प्रवास जो है, हवाई यात्रा जो है उसकी भेंट में आंतरिक यात्रा का कंपेयर करें, तो कोई भी हवाई यात्रा, विदेश की यात्रा जो होती है आपकी, उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको पारपत्र, जिसको पासपोर्ट कहते हैं। और जब तक आपके पास पारपत्र नहीं है तब तक आप बाहर का प्रवास जो है वो कर नहीं सकते। भारत देश छोड़ के या कोई भी देश छोड़ के दूसरे देश में जाना है तो आपके पास पारपत्र होना जरूरी है, और पारपत्र जब आपको लेना है तब तीन चीजें आपको चाहिए।

0: आपका आइडेंटिफिकेशन, पहचान, आपकी पहचान, आप कहां रहते हो और आपका वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन। ये तीन चीजें जब तक पूरी नहीं होती है आपको पारपत्र नहीं मिलता है। वैसे ये आंतरिक यात्रा में भी ये तीन चीजें जरूरी है। एक तो आपको पारपत्र चाहिए तो आपको स्वयं की पहचान चाहिए। फिर एक बार स्वयं की पहचान मिल गई तो फिर आपको चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन। आपके पास ऐसे तो कुछ विचार नहीं है जो आपको दुखी और कष्ट पहुंचाते हैं या दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे। और तीसरा, आपका घर कहाँ है और आप जाना कहाँ चाहते हो। ये तीन चीजों को एक बार चेकिंग हो गया तो आपको पारपत्र मिलेगा और फिर आप आंतरिक यात्रा के लिए तैयार होंगे, ऐसा मुझे लगता है।
1: बहुत सुंदर। पासपोर्ट के बिना वैसे भी हम देश छोड़कर विदेश में नहीं जा सकते, पासपोर्ट कहो या पारपत्र कहो। पासपोर्ट की बात आती है तब ज्ञानेश्वर जी वीजा के बारे में भी सोचना होता है। पासपोर्ट और वीजा दोनों है तो फिर देरी है बस टिकट निकालने की। रूहानी यात्रा में या आंतरिक यात्रा में कौन सा पासपोर्ट जरूरी है, कौन वीजा देगा और हम उसको अगर करना चाहते हैं तो हमारे अंदर कौन सी पात्रता चाहिए, इन सब बातों को हम देखते हैं, सुनते हैं, उस पर सोचते हैं तो लगता है कि यह यात्रा तो सचमुच हर कोई कर सकता है अगर आपके पास इच्छा हो तो। और यह इच्छा तो सबके पास जरूर होगी। दोस्तों, इस सुंदर अनोखी आंतरिक यात्रा के बारे में हम अभी ब्रेक के बाद आपसे फिर से मिलते हैं चर्चा करने के लिए। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, रेडियो मधुबन पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक टू रेडियो मधुबन पर सुनते रहो मुस्कुराते रहो। हम अगर तीर्थ पर जाना चाहते हैं तो कहा जाता है कि आप तीर्थ पर जाते हैं या नहीं इसका महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि आपके दिल में कौन बसा है, आपका दिल तीर्थ जैसा हुआ है या नहीं। दिल तीर्थ जैसा होना माना हमारे मन में परमात्मा की स्मृति होना, और इसीलिए आज मनुष्य सोया हुआ है यह जो वचन हम सुनते हैं कि कलयुग में मनुष्य सोया हुआ है, तो वो सोना है अज्ञान रूपी सोना। अर्थात उसको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, परंतु वह जैसे कि ज्ञान न होने के कारण अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ है। बैठ जाना मतलब उससे अच्छी स्थिति है, मतलब वो सोया नहीं है, जाग गया है, बैठ गया है, परंतु बैठा हुआ इंसान कोई दूर तो नहीं जा सकता, और इसीलिए उसको कहा गया है द्वापर युग। लेकिन कम से कम उठ खड़ा तो हुआ, रेडी पोजीशन में तो आया, तो कहा जाता है वो त्रेता युग है। लेकिन वो चलने लगता है, मतलब वो तरक्की की ओर है, उन्नति की ओर है, वो प्रगति पथ पर जा रहा है, तो वर्णन किया जाता है कि वो सतयुग की ओर जा रहा है। यात्रा के बारे में चर्चा करते हुए इन सब चार युगों का भी मुझे ज्ञानेश्वर जी बहुत महत्व लगता है, और कलयुग के मानव को सतयुग तक जाना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है राम राज्य, सतयुग, स्वर्णिम भारत। लेकिन जो सोया है उसको इन तीन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, तब वो जाकर चलने लगेगा। और इसीलिए कहते हैं चलना ही जीवन है, चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत। अभी ये रुकना मन का रुकना है, न कि कोई शरीर का रुकना है, क्योंकि शरीर तो हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो ये मन का रुकना, ये मन रुक जाता है, मन उन्नति पथ पर जाने के लिए तैयार नहीं होता। उसको कितना भी समझाए, कितनी भी वो परमात्मा की स्मृति में लगने की कोशिश करे, लेकिन वह बाहर भटकता रहता है। और इसीलिए जब यात्री को अपने डेस्टिनेशन का पता नहीं है, तब कहा जाता है कि वो भटक जाएगा। और आज बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उपस्थित होता है कि हम घर बैठे मन से यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी के पास धन की कमी होगी, कभी किसी का तन साथ नहीं देगा, बीमारी होगी या कहो कोई और बातें होगी। तो अगर मैं घर में बैठते हुए परमात्मा की स्मृति में हूँ, तो वो मन की यात्रा करने के लिए क्या करना चाहिए?
1: देखिए, आपने जो उदाहरण दिया था बहुत अच्छा उदाहरण लगा मुझे, कलयुग से सतयुग तक जागना, बैठना, खड़ा होना और चलना। लेकिन ये जागना जो है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। अगर जब तक हम जागेंगे ही नहीं तब तक उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर खड़े होने का भी सवाल पैदा नहीं होता, और चलने का भी, चलने की तो बात ही दूर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जागना, इसलिए हम कहते हैं जाग उठा इंसान। इंसान को जगाना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे हमारा मन जो सोया हुआ है, निद्रिस्त है, इसलिए कुंभकर्ण का उदाहरण हमेशा हम चर्चा में देखते हैं कि जब हमारा मन निद्रिस्त है तब हम कुछ नहीं कर सकते, उसे जगाना है। और जागने के बाद क्या होता है, बैठता है। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े भी होते हैं, कि अगर मुझे जल्दी जाना है तो क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं और जग जाते हैं। जगने के बाद कई जो है वो उठ के बैठ जाते हैं, और कई अलार्म बंद करके उठते भी नहीं है, बैठते भी नहीं है, सो जाते हैं।
0: वो ये ऐसे सोचते हैं कि 5 मिनट के बाद उठूंगा,
1: 5 मिनट के बाद अलार्म लगाएंगे और फिर उठेंगे। और फिर क्या होता है, कई लोग हैं वो उठते हैं, बैठ जाते हैं, सोचते हैं कितना टाइम हो गया, अच्छा और 5 मिनट बाकी है तो 5 मिनट के बाद उठेंगे करके बैठते हैं और फिर सो जाते हैं। तो बैठना जो है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कई लोग जो है वो बैठने के बाद उठ जाते हैं और उठ जाने के बाद फिर लेट जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है और इसलिए उठने के बाद चल पड़ते हैं, और सिर्फ चल नहीं पड़ते, बाकी जो सोए हुए हैं उनको भी जगाने की शक्ति रखते। तो ये खुद जगना है और दूसरों को जगाना है, ये कार्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए यात्रा मैं कहता हूँ कि जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक कहाँ जाना है वो रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। अगर रास्ता भी तय किया, कहाँ जाना है ये भी कर दिया, तो जैसे मैंने उदाहरण दिया था हमारा पारपत्र जो है वो हमारा तैयार नहीं होगा, क्योंकि पहले हमें जागने के बाद स्वयं की पहचान मिलनी चाहिए। जैसे आइडेंटिफिकेशन चलता है, आपका आई कार्ड लगता है पारपत्र के लिए, आप कहाँ रहते हो ये भी लगता है, और फिर आपका वेरिफिकेशन लगता है पुलिस वेरिफिकेशन। वैसे जब मैं जागता हूँ तब मुझे खुद की पहचान होनी चाहिए, फिर एक बार खुद की पहचान हो गई तो मेरी मैं कहाँ रहता हूँ और मुझे जाना कहाँ है ये भी पहचान होनी चाहिए। और मेरे पास ऐसे कई ऑब्जेक्शनेबल या घातक कोई सामान तो नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये सब करने के लिए मैं ये समझता हूँ जो ऑलरेडी चल चुका है उसकी मदद चाहिए, और जो चल चुका है उसे हम गुरु कहते हैं, और जो हमें जगाता है, उठाता है, प्रेरणा देता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है उसे सद्गुरु कहते हैं। और ये गुरु और सद्गुरु जो है उनका कार्य, उनका महत्व हमारी ये आंतरिक यात्रा में बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जब होगा, गुरु भी मिलेगा, सद्गुरु भी मिलेगा, तब ये यात्रा ऐसी होगी जहाँ एक बार जाते हैं तो कमजोर होके जाते हैं, लेकिन आते समय शक्तिशाली होके आते हैं, वहाँ थकावट का नामो निशान नहीं रहता। बाकी यात्रा में, बाकी सफर में आप जब वापस आते हो तब थके हुए रहते हो, आपको रेस्ट की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ इस यात्रा में, आंतरिक यात्रा में जब आप वापस आते हो तब आप फुल्ली चार्ज होते हो, बड़े उत्साहित रहते हो, बड़े आनंदोत्सव करके आते हो, बड़े आनंदित रहते हो, सुखी रहते हो। तो ये आंतरिक यात्रा जो है वो करने लायक है, उसके लिए कोई पैसा नहीं है, कोई पारपत्र नहीं है, कोई वीसा नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है, सिर्फ एक चाहिए, आपका विश्वास, आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा। तो ये आपको जो गाइड है वो भी अपने आप आपको ढूंढता हुआ आएगा।
0: बहुत सुंदर। तो बिना पासपोर्ट, बिना वीजा ये यात्रा तो हम कितने भी दूर तक जा सकते हैं, चाहे परमधाम तक। ब्रह्म तत्व जो छठा तत्व है, इसमें रहने वाली जो आत्मा है और उस आत्मा का जो पिता है, उसके पास तक जा सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि महत्व उसका है कि आप किस स्थान पर जाते हो ये नहीं देखा जाता, लेकिन अगर आप घर में ही बैठे हो पर दिल में ईश्वर का वास है तो आपका घर ही तीर्थ हो जाता है। चाहे आप कभी तीर्थ क्षेत्र पर न गए तो भी वो ईश्वर देखता नहीं है। तो इसीलिए केवल काशी में जाना या तीर्थ क्षेत्र पर जाना इसका महत्व न है, परंतु स्मृति अगर ऐसी शुद्ध है, पवित्र है। मैं समझती हूँ ज्ञानेश्वर जी, हमारे पास अगर पवित्र विचारों का धन होगा तो हम इस यात्रा पर ज्यादा जल्दी जा सकेंगे। तो उस पवित्रता को हमें जीवन में अपनाना है। और इस यात्रा करने के बाद जैसे ज्ञानेश्वर जी से हमने सुना कि मन फुल चार्ज हो जाता है, आंतरिक शक्तियां बढ़ती है, और उन शक्तियों को बढ़ने के बाद हम अनेकों को जगाने का भी एक परम हितकारी श्रेष्ठ कर्तव्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के इस अमृत धारा सुनने के बाद हम सब आज से यही मन की यात्रा करेंगे, आंतरिक यात्रा करेंगे और औरों को भी कराने के लिए निमित्त बनेंगे। अब समय है वाणी को विराम देने का। फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे। रेडियो मधुबन पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान में आप सबका स्वागत है। समाधान का एक लक्ष्य है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेके कच्छ तक, कोई भी किसी भी समस्या से ग्रस्त ना हो। ये तो रही देश की बात, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक भी या उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक कोई भी समस्या ग्रस्त ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, हमारी तो यही मंगल कामना है। और इसी शुभ लक्ष्य से समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हम चाहते थे कि हम अलग अलग वर्गों की समस्याओं पर चर्चा करें, लेकिन जैसे ही बालक वर्ग, युवा वर्ग की समस्याओं पे हमने चर्चा की, आपके इतने सारे पत्र, इतने ईमेल, इतने एसएमएस, इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं कि हम इन्हीं पे ही लगातार चर्चा कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी समस्या आप अभी आपके सामने आई हुई है, उनसे आप जल्दी से जल्दी निजात पा लें। इसीलिए हम अलग अलग समय पे आपके फोन कॉल्स को, पत्रों को और साथ ही एसएमएस और ईमेल्स को अपने कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको इन समस्याओं का समाधान प्राप्त हो रहा है, इन्हें आप यूज कर रहे होंगे और समस्याओं से मुक्त हो रहे होंगे। आप जानते हैं, हमेशा की तरह हमें समाधान तक ले चलने के लिए आदरणीय सूर्य भाई जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। दाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: दाता जी। जैसा मैंने कहा कि समाधान का एक विशेष लक्ष्य है, और जिस लक्ष्य को लेकर के इसकी शुरुआत की गई थी कि चाहे विश्व के किसी भी कोने का इंसान हो, और अब तो विदेशों से भी हमारे पास ईमेल्स, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सभी समस्याओं से मुक्त हो, उन सब के लिए आप क्या कहें?
1: बिल्कुल, हमारी ये सब के लिए शुभ भावना है। निश्चित रूप से हमारी शुभ भावनाएं, सबकी शुभ भावनाएं, महानात्माओं की शुभ भावनाएं भी बहुत काम करती हैं, और बिल्कुल एक समस्या मुक्त, विघ्नों से मुक्त समाज की स्थापना बहुत जल्दी हो जाएगी।
0: बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है भ्राता जी कि दुआओं में बहुत बल है, और हम मांगते भी हैं कि मेरे लिए दुआ करना। तो ये समाधान परिवार उन तमाम लोगों के लिए दुआएं करता है, उन तमाम लोगों को शुभकामनाएं देता है जो समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाँ। और वो महसूस करते होंगे, हमें लगता है कि सचमुच समस्या उनकी हल्की होती चली जा रही है या उससे मुक्त होते चले जा रहे हैं।
1: बस यही हर एक व्यक्ति अगर कर ले, एक दूसरे को दुआ दे, बद्दुआ नहीं, एक दूसरे के लिए शुभ भावनाएं जैसे वाइब्रेट करें, बुरी भावनाएं नहीं, ईर्षा द्वेष की भावना नहीं, बदले की भावना नहीं, क्षमा भाव और शुभ भाव, ये दोनों भावनाएं ऐसी हैं जो अनेक समस्याओं को समाप्त करने वाली हैं। ये इनके होने से अनेक समस्याएं होती ही नहीं जिनसे हमें युद्ध करना पड़े। तो अगर हरेक के मन में दूसरों के लिए शुभ भावनाएं भर जाएं, तो वास्तव में एक समस्या विहीन युग की शुरुआत हो जाए।
0: बिल्कुल प्रताप जी, मैं आपको पहले मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये हमारे पास आया है अहमदाबाद से। रशीदा जी लिख रही हैं और कहती हैं कि प्रताप जी, 1996 से हम जिस फ्लैट में रहते हैं, यहाँ आकर के मेरा डाइवोर्स हो गया और हम बहुत दुखी, परेशान हो गए, अपमानित भी हुए, मेरे पति और बेटे को मार भी खानी पड़ी। हमें रोज घर में बहुत बुरे स्वप्न भी आते हैं। यहाँ से हम निकलना भी चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं 6 मास से ज्ञान में चल रही हूँ, रोज मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन ये समस्याएं यथावत बनी ही हुई हैं। इनसे हम कैसे निजात पाएं, कृपया हमें कुछ युक्ति बताएं।
1: देखिए, कुछ घरों में बैड एनर्जी व्याप्त रहती है, वहां जाते ही बुरा बुरा होने लगता है, संबंधों में कड़वाहट आने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे बहुत सारे केसेज हमारे पास आते हैं। एक मकान 10 साल से खाली पड़ा था, उस माता ने हमें दे दिया कि आश्रम चलाओ इसमें। अब वहां आते ही सब बहनें बीमार रहने लगी। जो लोग कोर्स करने आते थे उनको वहां अच्छा ना लगे, वो पूछने लगे, यहाँ कुछ मजा सा नहीं आता बहन जी, हम तो शांति के लिए आते हैं, पर यहाँ वैसी शांति तो लगती है, पर एक सुखद शांति जो होती है, एक स्वीट साइलेंस जो होती है, उसका आभास नहीं होता। तो उसने बहुत सारी बातें मुझे सुनाई वहां की, और मेरी समझ में आ गया वहां भी बैड एनर्जी है। बहुत लोग इन बातों को नहीं मानते, पर जो जगह खाली पड़ी होती है ना घर, उसमें भटकती आत्माएं आके अपना निवास बना लेती हैं, वास कर लेते हैं। उनके कारण भले वो किसी को कष्ट न भी दे रही हो, वो केवल वहां रहती हैं, उनके कारण भी उस स्थान पर बैड एनर्जी हो जाती है। तो रशीदा बहन के घर में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि वहां बैड एनर्जी हो, कोई प्रकोप हो। तो इनसे बचने के लिए कुछ उपाय इन्हें करने हैं। एक तो जो मैंने एक बहुत अच्छा उपाय करवाया है लोगों से, कल भी शुरू कराया और एक हफ्ता पहले भी शुरू कराया था, कि अपने घी में, अपने घर में गाय के घी का दीपक जलाएं 9 दिन तक अखंड रात दिन, पर बुझने ना पाए, तो कभी कभी ये दीपक बुझ जाते, अगर बुझ जाता है तो फिर शुरू करना पड़ेगा 9 दिन के लिए। और जब नवरात्रि अभी आए तो नवरात्रि में पहले दिन से, जब से शुरू हो नवरात्रि, पूरे 9 दिन रात दिन अखंड गाय के घी का दीपक अपने घर में जलाएं। तो गाय के घी से जो वेव्स निकलती है ना, सुगंध जो निकलती है, वो बैड एनर्जी को समाप्त कर देती है। अगर कुछ आत्माओं का वास भी हो गया हो तो वो भी वहां से चली जाती हैं। एक चीज ये करनी है। दूसरा, पानी को चार्ज करेंगी, ये बात हम प्राय करते रहे हैं। एक लोटे में पानी ले लें, उस पर अपनी दृष्टि डालें और 21 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। ये बात तो हम बार बार कह रहे हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं और वो सर्व शक्तिवान है, तो हम भी मास्टर सर्व शक्तिवान हैं। तो आंखों से शक्तियों के वाइब्रेशंस पानी में भर जाएंगे। अब ये पानी सारे घर में छिड़क दें रोज एक बार, ऐसा 7 दिन तक कर लें, इससे वहाँ की जो बैड एनर्जी वो समाप्त हो जाएगी। तीसरा, ये इसी अभ्यास को कम से कम 108 बार कर लें 21 दिन के लिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे शक्तियों की किरणें पूरे घर में फैलने लगेंगी। और चौथी बात, एक बहुत अच्छा अभ्यास है, ये 6 मास से राजयोग कर ही रही हैं, तो हम शिव बाबा का अपने घर में आह्वान करते हैं, तो रसीदा बहन भी अपने घर में शिव बाबा का आह्वान करेगी, रोज 5 बार करेगी, और ये विश्वास कर ले कि जब हम भगवान को बुलाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसके प्यारे बच्चे उसे बुलाएं और वो ना आए, तो वो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के द्वारा हमारे घर में आ जाएगा। तो इनको 5 बार अपने घर में शिव बाबा का आह्वान करना है। कैसे करना है मैं जरा विधि बता देता हूँ, और रसीदा बहन हमारी बात सुन रही होगी, ये 5 बार अपने घर में आह्वान करें और ये देखेंगे परमात्म एनर्जी, गॉडली वाइब्रेशंस इनके घर में फैलेंगे। ये काम भी ये 7 दिन कर लें, इनको बहुत मजा आएगा उसमें, 21 दिन कर लें, बहुत सुखद फीलिंग होने लगेगी, और जिस घर में गॉडली वाइब्रेशंस फैलने लगे वहाँ से नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन, चाहे भूत प्रेतों कुछ भी हो, वो भाग जाएंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत प्यार से अपनी बुद्धि को परम धाम में ले चलेंगे, ब्रह्मलोक में, जो परमात्मा का निवास स्थान है, और वहां रहने वाले परमात्मा को प्यार से निमंत्रण देंगे कि हम आपकी संतान, बहुत प्यार से आपको निमंत्रण दे रहे हैं, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। और फिर विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे कि शिव बाबा महाज्योति निराकार नीचे उतरने लगे हैं, सूक्ष्म लोक में आए, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हुए, इनकार्नेट किया, फिर दोनों आ रहे हैं और आ गए हमारे घर में। शिव, निराकार शिव, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में हमारे घर में खड़े हैं, इनके घर में खड़े हैं, उनके अंग अंग से किरणें फैल रही हैं और ये किरणें पूरे घर में फैल गई हैं। थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट इसको फील करें, इसको एंजॉय करें, हमारा पूरा घर शिव बाबा की, ऑलमाइटी की पवित्रता के सागर भगवान की किरणों से भर रहा है। बस ये प्रयोग 2-3 मिनट कर दे एक बार में, 5 बार कर लें। इतने ये साधन अपनाएंगे तो इनके घर की निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी, बड़ी सुखद फीलिंग होगी, जो संबंधों में कड़वाहट आ गई है वो ठीक हो जाएगी, बच्चे बहुत अच्छे हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा।
2: बिल्कुल, ये सुंदर समाधान रशीदा बहन अपना के देखें, निश्चित रूप से इनके पास जो समस्या आई है वो दूर अवश्य होगी। भ्राता जी, मैं दूसरे में,
1: हाँ, मैं ये संदेश सभी के लिए कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये समस्या आजकल बढ़ती जा रही है, तो जिसके घर में भी ऐसी बैड एनर्जी की फीलिंग हो, या लगे मन नहीं लग रहा है, या लगे बीमारियां अननेसेसरीली बीमारियां बढ़ रही हैं, डॉक्टर्स की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर जैसे उखड़ा उखड़ा सा लगता है, काम बिगड़ने लगे हैं, तो वो ये सब प्रयोग कर लें, चारों प्रयोग, और थोड़े दिन में 7 दिन में ही समस्याएं समाप्त होती नजर आएंगी। 21 दिन तक कर लें तो सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे।
2: ये कहते हैं कि रिस्पेक्टेड ब्रदर, आई एम अ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर इन चेन्नई तमिलनाडु। आई ऑफन ड्रीम दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पेंडिंग ऑफिस वर्क टू बी डन, दैट आई फील द पेंडिंग ऑफिस वर्क मस्ट हैव बीन डन वेल इन एडवांस एंड दैट आई रिपेंट डीपली इन ड्रीम। Though I had already retired some 5 years ago from the government service, this dream often troubles me a lot. Kindly enlighten me as to how this negative dream shall be overcome.
1: बिल्कुल, ये व्यक्ति बहुत ईमानदार, सिंसियर, अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड रहा होगा, तो वो जो इसके कार्य की जिम्मेदारी और पूरे उत्तरदायित्व से जो ये वहन करता रहा अपने कार्यों को विद फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो इसके सबकॉन्शियस माइंड में छप गया है। तो कहीं ना कहीं काम इनकम्प्लीट रह जाता था, तो इसको इच्छा होती थी नहीं मैं इसको जल्दी पूरा कर दूं। कहीं कहीं इनकम्प्लीट डिजायर्स स्वप्न के रूप में प्रकट होती हैं। तो इनका प्रश्न यही था, हिंदी में मैं बता दूं कि उसको रात को ऐसा लगता है कि बहुत सारा कार्य पेंडिंग है, मैं इसे पूर्ण करूं, और इसमें इसको परेशानी जैसी फील होती रहती है,
2: जबकि
1: ये रिटायर भी हो चुके हैं, 5 साल रिटायरमेंट को हो चुके हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जिन चीजों को सीरियसली ले लेता है, यानी देखिए मनुष्य जिन चीजों को सीरियसली ले रहा है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी सीरियसली प्रिंट हो रही है, और वो फिर यदा कदा स्वप्न के रूप में, उसके विचारों के रूप में प्रकट होती ही रहेगी। और इसका एक सुंदर सा सिंपल सा तरीका है, जब आंख खुले तो 7 बार संकल्प कर ले, मेरा सारा कार्य कंप्लीट हो चुका है, अब मैं कार्य से मुक्त हूँ, अब मैं चिंताओं से मुक्त हूँ, ऐसा संकल्प 5-7 बार कर ले।
2: उठते ही
1: ये सोते समय ये काम करेंगे उठते ही, और सोते हुए क्या संकल्प करेंगे, ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है और बहुत लोगों ने इसको करके देख लिया एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छी सफलता इसमें मिली है। जैसे नींद आ रही हो तो ये संकल्प कर ले, मेरी नींद बिल्कुल फ्रेश होगी, विदाउट ड्रीम्स होगी, स्वप्न रहित होगी, मैं बहुत साउंड स्लीप लूंगा, मेरी स्लीप में मुझे बहुत एंजॉयमेंट मिलेगा। ऐसे संकल्प करते करते सो जाएं तो 2-4 दिन में इन्हें लगेगा कि वो जो इसको स्वप्न आ रहे हैं वो सब समाप्त हो गए।
2: बिल्कुल प्रता जी, हमारे पास एक फोन कॉल आया था जिसे मैंने नोट कर लिया है। ये फोन कॉल था सागर से। भावना जी कहती हैं कि मैं हमेशा उदास रहती हूँ, मुझे खुशी नहीं रहती। वैसे मैं बचपन से अकेली रहने की आदी हूँ, मैं किसी से मिक्सअप नहीं होती, लेकिन अब मेरी जो ये उदासी है, मेरी जो खुशी की कमी है, मुझे खाने लगी है।
1: बचपन से ही अकेले रहने की इच्छा, निश्चित रूप से पूर्व जन्मों में भी कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है। देखिए, मान लो फ्रेंड्स ने कहीं धोखा दे दिया, जो हमारे बहुत प्रियजन हैं, जिनसे हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उन्होंने धोखा दे दिया तो मन अकेला रहने लगता है। उसके मन में भावना हो जाती है, संसार में सभी लोग ऐसे हैं, यहाँ कोई अपना नहीं, यहाँ सभी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, मुझे भी इन्होंने धोखा दिया है, मेरे दिल को तोड़ दिया, मैं अकेली रहती हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, मैं किसी से कोई संबंध नहीं रखूंगा। इस तरह से वो संस्कार एकाकीपन के फिर अगले जीवन में भी चलते रहते हैं। तो इन्हें इस अकेलेपन को भी दूर करना है और खुशी भी अपने जीवन में बढ़ानी है। दोनों ही चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। राजयोग में जब हम परमपिता से योग लगाते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि हम उसके साथ रहते हैं। उसके साथ रहने का जो परम आनंद है वो हमारे डिप्रेशन को, अकेलेपन की फीलिंग को समाप्त कर देता है। तो हमारे पास बहुत सारे युवक आए हैं और आते हैं जो ये कहते हैं हमें लोनली फीलिंग बहुत है। कुमार और कुमारियों में जो अनमैरिड हैं, लोनली फीलिंग बहुत रहती है। तो जब हम उन्हें राजयोग सिखाते हैं और वो थोड़ा थोड़ा भी राजयोग करते हैं तो उन्हें आभास होने लगता है कि राजयोग इज नॉट ओनली ए प्रैक्टिस, नॉट ओनली जस्ट मेडिटेशन, बट इट गिव्स अस द फीलिंग ऑफ द कंपनी ऑफ द सुप्रीम। जो परमपिता है उसके साथ का आभास होने लगता है। तो थोड़ा सा राजयोग का अभ्यास बढ़ाएंगे, अगर इन्होंने सीखा है तो उसको बढ़ाएं, अमृत वेले सवेरे उठकर राजयोग का अभ्यास करें, इवनिंग टाइम में भी एक घंटा ही अवश्य दें, तो इनका मन आनंदित रहने लगेगा और वो जो लोनली फीलिंग है जो डिप्रेशन में बदलती जा रही है वो समाप्त हो जाएगी।
2: हाँ, तो आनंद के सागर के साथ रहें मेडिटेशन के माध्यम से, और साथ ही थोड़ा मेल जोल भी बढ़ाएं।
1: बहुत
2: जब लोगों से मिलते जुलते हैं तो भी हम खुशी का आदान प्रदान करते हैं, और अकेले रहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने ही जो पास्ट की स्मृतियां हैं उनमें रहते हुए हम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं।
1: देखिए, अकेले में मनुष्य वो तो एंजॉय करेगा जिसके पास श्रेष्ठ संकल्पों का बहुत बड़ा खजाना है, जो चिंतनशील है, या जिसके पास कुछ विशेष लक्ष्य है उसमें वो बिजी है, या जो एक श्रेष्ठ योगी है परमात्म मिलन की फीलिंग्स उसे सदा रहती है, तो वो तो करेगा इस अकेलेपन को बहुत एंजॉय। उसके लिए ये अकेलापन अकेलापन न कह के, लोनली फीलिंग हम इसे न कह के सोलिट्यूड कहते हैं, एकांत। और एकांत एक वरदान होता है। अब दूसरा जो इनका प्रश्न है कि इन्हें खुशी नहीं रहती है, बचपन से ही खुशी नहीं रहती है, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। और ये अगर सामने होती तो मैं इनके चेहरे को देखकर और कई प्रश्न इनसे पूछकर उस बीच पर पहुंचने का प्रयास करता कि इनकी खुशी को नष्ट करने का मुख्य कारण क्या है। फिर भी पूर्व जन्मों के कुछ वाइब्रेशंस इनको जरूर इफेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि इनके प्रश्न से लगता है कि बचपन से ही अकेला रहने की आदत, बचपन से ही खुशी की तलाश, बचपन से ही खुशी की कमी इनके जीवन में रही है। तो पूर्व जन्मों के जो निगेटिव एनर्जी इनको इफेक्ट कर रही है, इसमें दो काम इनको करना है कि जिन मनुष्यों को पूर्व जन्म में इन्होंने कष्ट दिया है उनसे ही हाथ जोड़कर मन ही मन रोज सवेरे क्षमा याचना करें। भाई, मैंने अज्ञानवश, क्रोधवश, अहंकारवश आपको बुरे वचन बोले, आपको आपके साथ चीटिंग की, आपको सताया, मैं अब उसको रियलाइज कर चुकी हूँ, मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। तो उनके बैड जो वाइब्रेशंस हैं वो कट जाएंगे। और दूसरी स्थिति ये होती है कि कुछ लोगों ने इनको सताया है तो इनकी खुशी चली गई। कुछ ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे किसी भी कारण से, चाहे इनकी गलती रही हो चाहे उनके मनोविकार रहे हों, तो उन्हें इनको सच्चे मन से क्षमा कर देना चाहिए।
2: जी,
1: तो इनके और उनके बीच में जो निगेटिव एनर्जी काम कर रही है वो कट जाएगी। और साथ में उनको दुआएं दे दें कि तुम सभी सुखी हो जाओ, तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति मिले, तुम सफलता के मार्ग पे चलो, तुम बहुत अच्छे इंसान बन जाओ,

0: तुम मनुष्य देवता बन जाओ, तुम भी भगवान के समीप पहुंच जाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो। ऐसी दुआएं रोज सवेरे उनको देंगे तो इनके मन से निकली हुई पॉजिटिव एनर्जी उस निगेटिव एनर्जी को जो इनको आ रही है उसको नष्ट कर देगी। और ये एक बहुत सुंदर तरीका होगा फिर से खुशी के बीज को अंकुरित करने का। हाँ, इनको महसूस होगा कि कोई काली माँ, कोई पर्दा जो इनके ऊपर पड़ा हुआ था वो जैसे हट गया।
1: बिल्कुल। तो प्राता जी बहुत सुंदर बातें आपने कही, तीन बातें खास करके हमारी भावना जी के लिए। एक तो परमात्मा से जो कि आनंद के सागर हैं अपना संबंध जोड़ें, और यदि आनंद के सागर के साथ रहेंगे तो फिर खुशी तो रहेगी ही, उदासी दूर हो जाएगी।
0: और भी कुछ चीजें के खुशी में रहने के लिए कुछ खुशी के संकल्प क्रिएट करें। जीवन बहुत सुंदर भी तो है, वही संसार को देखे, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, कितना सुंदर संसार रचा है, ऊपर आकाश है, चांद तारे हैं, सूरज निकलता है रोज,
1: नीचे हरियाली
0: प्रकाशित, नीचे हरियाली, कहीं पर्वत हैं तो कहीं फसल उग रही है, कहीं नदी बह रही है, कहीं सागर का जल है। तो एक सुंदर संकल्प ये अपने मन में पैदा करेंगे, कुछ अच्छे सीन देखे, कुछ अच्छे ड्रामास देखे, टीवी पर भी कुछ बहुत अच्छे चैनल्स आते हैं, चैनल्स पर भी कुछ बहुत अच्छे सीरियल्स आते हैं जो बड़े शिक्षाप्रद भी हैं, जो मनोरंजन भी करते हैं और मनुष्य की श्रेष्ठ भावनाओं को जागृत भी करते हैं, उनका आनंद लें। और दूसरों के साथ मिले जुले अवश्य खुशी बांटें, शेयर करें कुछ अच्छी अच्छी चीजें, तो एकाकीपन भी दूर होगा और इनकी खुशी बढ़ने लगेगी।
1: बिल्कुल। तो प्रभाता जी एक तो सुबह जैसे हमने कहा परमात्मा से अपना संबंध जोड़ें, या खास करके क्षमा करें यदि किसी से इनकी कोई बात पूर्व जन्मों में भी हो गई हो, या क्षमा मांग लें, मिलें जुलें सभी से, और साथ ही कुछ अच्छे विचार जैसे आपने कहा, विचार हमारे अंदर खुशी पैदा करते हैं।
0: इनको कम से कम 10 गुड थॉट्स ऑफ हैप्पीनेस लिखने चाहिए, एक साथ न लिखें, रोज एक विचार लिखा करें जो इनको खुशी दे, वो कहीं से भी इन्हें मिल जाएगा जब इन्हें तलाश होगी उसकी, लक्ष्य होगा कि मुझे रोज एक हैप्पी आइडिया, एक हैप्पी थॉट लिख लेना है, तो उससे इनको बहुत अच्छा होगा और इनके पास एक स्टॉक हो जाएगा खुशी में रहने के, बहुत सारे संकल्प 50-100 भी हो सकते हैं वो इनके पास हो जाएगा, और तब इन्हें लगेगा मेरे पास तो खुशी का भंडार है, मेरे पास तो खुशी का खजाना है, और वो खजाना और खजानों को अट्रैक्ट करेगा।
1: बिल्कुल प्रभाता जी, बहुत सारी युक्तियां आपने भावना जी को दी हैं, ना केवल भावना जी को बल्कि हमारे तमाम दर्शक, क्योंकि खुशी की तलाश तो आज हर एक इंसान को है, कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि वो गमजदा रहे, हमेशा खुश रहना और खुशी बांटना ही चाहता है। आपकी इन तमाम युक्तियों से निश्चित रूप से उन सबके चेहरे पे खुशी आएगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है और गम जैसा कोई रोग नहीं है, संसार का कोई भी प्राणी गमजदा नहीं रहना चाहता, हमेशा खुश रहना चाहता है, लेकिन खुशी की चाबी क्या है इसकी तलाश उसे है। आज बहुत सुंदर युक्तियां भ्राता जी ने अंतिम प्रश्न के उत्तर में दिया है, आप इनका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि समाधान हमेशा ये चाहता है कि आपके चेहरे पर एक खुशी हमेशा खेलती रहे, आप खिलखिलाते रहें, हंसते रहें और उड़ते रहें, यही हमारी सदा ही शुभकामना रही है। तो आप गमों से दूर हों, खुश मिजाज रहें, मुस्कुराते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत, आपके लिए नमस्कार।
2: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
3: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। एक नई सुबह, नई उम्मीदों और नई ऊर्जा के साथ मैं हाजिर हूँ आरजे शुभा। और कहते हैं कि सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, सुबह हमें एक और मौका देती है, चांस देती है कल से थोड़ा बेहतर बनने का, कुछ नया सोचने का और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजाने का। तो चलिए आज के इस खूबसूरत सुबह को सुरों, अच्छी बातों, सकारात्मक ऊर्जा के साथ बनाते हैं और सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड मॉर्निंग आबू। आज इस गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम के अंतर्गत ढेर सारी बातें करेंगे, जैसे कि पंचांग के अनुसार दिन विशेष के ऊपर नजर डालेंगे, वेदर रिपोर्ट रहेगा, रेलवे इन्फॉर्मेशन जानेंगे, आसपास के घटनाक्रमों के ऊपर भी नजर डालेंगे। ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से सुनेंगे आप समाचार प्रभात 8:45 पर। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: वेलकम बैक। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए जानते हैं आज के दिन विशेष के बारे में। शक्त संवत 1948 है। अश्विनी कृष्ण नवमी रविवार विक्रम संवत 2083 है। अंग्रेजी तारीख है 4 अक्टूबर सन 2026। सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु है। राहु काल शाम 5:30 से शाम 7 तक है। नवमी तिथि अगले दिन तड़के 3:53 तक 5 अक्टूबर तक, उपरांत दशमी तिथि का आरंभ है। पुनर्वसु नक्षत्र मध्य रात्रि बाद 12:13 तक यानी कि 5 अक्टूबर तक, उपरांत पुष्य नक्षत्र का आरंभ है। परिधि योग दोपहर 12:32 तक, उपरांत शिव योग का आरंभ है। तूतिलकरण शाम को 4:51 तक, उपरांत गरजकरण का आरंभ है। चंद्रमा शाम को 6:31 तक मिथुन राशि पर, उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा। और आज बात करें राहु काल के बारे में, शाम 5:30 से शाम 7 तक, और गुलिक काल दोपहर 3:30 से शाम 5 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:33 तक दोपहर को रहेगा। अमृत काल रात्रि 9:57 से 11:28 तक रहेगा। सूर्यदेव कन्या राशि में स्थित हैं। आज चंद्रदेव मिथुन राशि में शाम को 6:30 तक फिर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्योदय का समय 6:15 पर था। सूर्यास्त का समय 6:04 पर है। चंद्रोदय का समय मध्य रात्रि 12:40 पर 5 अक्टूबर, और चंद्रास्त का समय दोपहर 1:58 पर। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी आज के पंचांग के साथ। राष्ट्र शाके 1948, 12/18 अश्विन रविवार है आज। इस्लामी हिजरी है 1448, 22 रविउल आखिर इतवार जिरा है आज के दिन। आज मातृ नवमी भी है। आज विश्व पशु कल्याण दिवस भी है। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को कहा जाता है मातृ नवमी। इस नवमी तिथि का श्राद्ध पक्ष में बहुत ही महत्व है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार श्राद्ध करने के लिए एक पूरा पखवाड़ा ही निश्चित कर दिया गया है। सभी तिथियां इन 16 दिनों में आ जाती है। कोई भी पूर्वज जिस तिथि को इस लोक को त्याग कर परलोक गए हैं, उसी तिथि को इस पक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन स्त्रियों के लिए नवमी तिथि विशेष मानी गई है, जिसे मातृनवमी भी कहते हैं। मातृनवमी के दिन पुत्र वधुएं अपने स्वर्गवासी सास और माता के सम्मान एवं मर्यादा हेतु श्रद्धांजलि देती है और धार्मिक कृत्य करती है। और आज पशु कल्याण दिवस भी है। तो विश्व पशु कल्याण दिवस आज के दिन 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। जानवरों की सुरक्षा सबसे बड़ा विषय बनकर रह गया आज के समाज में। पिछले 40-50 सालों से जानवरों की स्थिति थोड़ी सी बदतर हो गई है, जिसका अंदाज़ा लगाने से ही, अगर आप देखें सही दर्पण के अनुसार, क्लाइमेट चेंज के अनुसार, तो रूह कांप जाती है। कई बार हम माउंट के रास्ते जाते हैं तो देखते हैं कि बंदर कूद जाते हैं, किसी का जान चली जाती है। कई बार गायों को रास्ते में, मतलब हम देखते हैं कि वो मर गए होते हैं रास्ते में जब हम जाते हैं, तो कितने जानवरों को मरे पड़े हुए देखते हैं, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितनी बदतर हो गई ये स्थिति। जानवरों में पिछले 1970 से 2010 के मध्य लगभग 50% की कमी आई है। और आज की दुनिया में मानव खुद जानवर बनता चल रहा है। और क्योंकि कभी भी किसी को कहीं पे भी मार देना, खाना खिला देना, अलग प्रकार से जानवरों को प्लास्टिक खिला देना, तो इससे जानवरों की हानि घटती है। हानि घटती है तो फिर हमें जो हमारा इको साइकिल है उसमें भी असर पड़ता है। पूरी पृथ्वी पर इसका असर पड़ता है। तो आज विश्व पशु कल्याण दिवस है, वर्ल्ड एनिमल डे, जो हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आज का थीम है 2026 में, सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज, दुनिया को उनके नजरिए से देखिए। आज इस बार का 2026 का ये थीम है विश्व पशु कल्याण दिवस के अवसर पर। तो ये पशु दिवस जागरूकता के लिए मनाया जाता है और लोगों को तत्काल प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 25 मार्च 1925 को जर्मनी में मनाया गया था, उसके बाद हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए यहाँ पर एक अल्पविराम लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ये स्पेशल गाना आज वैश्विक पशु संरक्षण दिवस और वैश्विक पशु कल्याण दिवस के उपलक्ष्य पर कि हम इस जहाँ पे अकेले नहीं।

पुनः आप सभी का स्वागत है। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू, 8:02 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। मैं हूं आरजे शुभा। आइए जानते हैं कुछ बातें जो एशियन गेम्स के साथ जुड़ी हुई है। आईजी नागोया जापान में जो चल रहे थे एशियन गेम्स, उसमें भारत के प्रदर्शन के बारे में जानते हैं। क्रिकेट और हॉकी में 2 गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ तीरंदाजी, मुक्केबाजी और एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने एशियन गेम्स में 2026 का अभियान मेडल तालिका में 4th स्थान पर रहते हुए समाप्त किया। भारतीय महिलाओं ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है और कबड्डी में भी भारत को पुरुष स्पर्धा में और महिलाओं की स्पर्धा में भी 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। तो भारत ने कुल 85 मेडल जीते। हालांकि 3 साल पहले हंगजाओ में बनाए गए अपने रिकॉर्ड मेडल आंकड़े को पीछे नहीं छोड़ सका भारत, 100 के पार नहीं कर पाया। लेकिन गेम्स 20वें संस्करण में करीब 500 भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। भारत ने 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रोंज मेडल अपने नाम किए। भारत का 85 मेडलों का आंकड़ा एशियन गेम्स में उसका अब तक का दूसरा सबसे बड़ा मेडल प्रदर्शन है। हांगजाओ में 2023 में करीब 650 खिलाड़ियों के दल ने रिकॉर्ड 106 मेडल जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 40 ब्रोंज मेडल शामिल थे। आईची नागोया में एथलेटिक्स भारत के लिए सबसे ज़्यादा मेडल दिलाने वाले खेल रहा, जिसमें 24 मेडल मिले हैं। निशानेबाजी में भारत ने 15 मेडल जीते हैं और जिनमें 3 गोल्ड शामिल हैं। गोल्ड मेडलों के मामले में तीर अंदाजी सबसे आगे रही, जहां भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 गोल्ड अपने नाम किए हैं। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 इंचियोन एशियन गेम्स में मेरी कॉम के बाद एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी और कुश्ती में अमन सेरावत और सुजीत कलकल ने गोल्ड मेडल जीते। टीम खेलों में भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने अपने खिताब का बचाव किया। पुरुष टीम ने फाइनल में पाकिस्तान और महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने भी गोल्ड मेडल हासिल किए और भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। और भारत के कई एथलीट्स का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। प्रणवी उर्स एशियन गेम्स में गोल्फ का गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वो 17 वर्षीय कुमकुम मोहत की अगर बात करें, एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकॉर्ड गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कुमकुम ने अंकिता भक्त और कीर्ति शर्मा के साथ महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल जीता। वहीं एशियन गेम्स में भारतीय महिलाओं का टीम रिकर्व वर्ग का पहला गोल्ड भी रहा। वो भारत की नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीता, यानी कि लड़कियों ने एकदम इतिहास रच डाला है इस बार आईची नागोया में एशियन गेम्स में। कुमकुम और सुरुचि सिंह ने मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीतकर एशियाई रिकॉर्ड की बराबरी की। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने सिल्वर और रोहित यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं पर साबन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत का पहला मेडल दिलाया और इसी दौरान राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बचाया। वहीं पर सर्वेश कुशार ने पुरुषों की हाई जंप में भारत के 56 साल के मेडल सूखे को खत्म किया। और बरानी का एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पोल वॉल्टर भी बनी। भारत ने कई अन्य खेलों में भी पहली बार मेडल जीते। सुचिका तारियल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में एशियन गेम्स में भारत का पहला मेडल हासिल किया, जबकि जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में सेमीफाइनल में पहुंचकर देश को इस खेल में पहला मेडल जिताया।
और मीराबाई चानू को कैसे भूल सकते हैं हम, 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता वो, ये एशियन गेम्स में उनका पहला मेडल था। और वहीं पर रोशी बीना देवी ने वुशु में लगातार तीसरा महाद्वीपीय मेडल जीता। वहीं सीमा कुमारी ने महिलाओं के 10,000 मीटर स्पर्धा में 16 साल के मेडल सूखे को समाप्त किया। अनहद सिंह ने एशियन गेम्स के एकल वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा। अनहद सिंह और अभय सिंह दोनों अपने अपने एकल फाइनल में हार कर गोल्ड मेडल से चूक गए। और भारत ने 228 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए तीरंदाजी और हॉकी में कोटा हासिल किया। आईची नागोया में 7 खेलों में तीरंदाजी, हॉकी, नौकायन, स्क्वाश और इसके साथ टेनिस और में ओलंपिक का कोटा दांव पर थे। तो भारत ने पुरुष और महिला हॉकी के साथ साथ तीरंदाजी की मिश्रित टीम कंपाउंड और महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धाओं में कोटा हासिल कर अपने एशियन गेम्स अभियान को ओलंपिक से भी जोड़ दिया। तो भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन शुक्रवार को रहा 2 अक्टूबर जब 6 गोल्ड समेत 12 मेडल जीते। इनमें क्रिकेट और हॉकी के गोल्ड भी शामिल थे। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में अमन सरावत, कुमकुम और अनिल मोहत और गोल्फर प्रवीण उर्स ने गोल्ड मेडल जीते। पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम रखा। कुमकुम अनिल मोहत ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। और वहीं पर अंतिम पंगाल ने सिल्वर और दीपक पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन शरावत ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता और प्रणवी शरत उर्स ने महिला व्यक्तिगत गोल्फ में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा, जबकि भारतीय महिला टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया गोल्फ में। नीरज चौहान ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर गोल्फ में भारत के लिए ऑल इंडियन पोडियम भी पूरा किया। तो इस प्रकार से भारत का सफर रहा है एशियन गेम्स 2026 में। सुनते रहिए रेडियो माधुबन 107.8 FM। लेते हैं यहाँ पर एक और अल्फराम। गुड मॉर्निंग आबू।

0: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढई गांव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।
1: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। मौसम चाहे जैसा हो लेकिन हमारी सुबह हमेशा खुशियों से भरी रहना चाहिए, है ना। अगर आज आप माउंट आबू की खूबसूरत वादियों में निकल रहे हैं तो सुबह की ताजगी का आनंद ज़रूर लेते हुए जाइए, जो टूरिस्ट इस वक्त हमें सुन रहे हैं। लेकिन दोपहर की धूप में थोड़ा सा सावधान रहिए, इसका मतलब अभी वक्त हो गया है मौसम जानकारी का। आइए चलते हैं मौसम जानकारी की ओर। राजधानी जयपुर के बारे में बात करें तो यहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। उदयपुर में 36 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 21 डिग्री तक जा सकता है। आबू रोड में 37 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 20 डिग्री तक जा सकता है। माउंट आबू में 25 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 18 डिग्री तक जा सकता है। पाली जिले में 38 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 22 डिग्री तक जा सकता है। पाली से आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम जोधपुर की ओर। यहाँ पर 38 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 23 डिग्री तक जा सकता है। और इधर गुजरात साइड देखें तो सूरत में 22 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम 36 डिग्री। मेहसाना में 38 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 23 डिग्री तक जा सकता है। राजकोट में 36 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 23 डिग्री। अहमदाबाद में 36 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 24 डिग्री तक जा सकता है अहमदाबाद और गांधीनगर में। और बात करें देश की कुछ प्रमुख महानगरों के बारे में तो कोलकाता में 35 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री। बारिश होने की थोड़ा बहुत संभावना है कोलकाता में आज दिन के समय, सिर्फ 25% तक। राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, 37 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 25 डिग्री। कोलकाता के बारे में हमने बात कर ली है, अभी चलते हैं बेंगलुरु की ओर। यहाँ पर 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक जा सकता है। और यहाँ बारिश होने की संभावना है, 31 डिग्री सेल्सियस दिन में रहेगा, दिन के समय ही 55% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की बेंगलुरु में। आइए अभी हम चेन्नई के बारे में भी जान लेते हैं। चेन्नई में आज 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर भी 55% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की। मुंबई में 37 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। जिला सिरोही के बारे में बात करें तो 39 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है। आसमान साफ रहेगा आज के दिन। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे वेदर रिपोर्ट्स के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: वेलकम बैक। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू, और यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जी हाँ, वक्त हो गया है रेलवे इन्फॉर्मेशन का। वैसे हम जीवन यात्रा पर हैं और सभी यात्री हैं, तो ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि परिस्थिति तो आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन परिस्थिति में अपनी स्थिति को ना डगमगा कर एकदम स्टेबल रहना, एकदम अचल अडोल रहने के लिए यात्रीगणों को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं हम रेलवे इन्फॉर्मेशन, चलते हम आबूर रेलवे स्टेशन की। और वैसे जीवन की यात्रा के लिए तो बहुत कुछ टिप्स ले लेते हैं रेडियो मधुबन से। अभी हम चलते हैं आबूर रोड रेलवे स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां जान लेते हैं। गाड़ी संख्या है 22547, अभी 8:27 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और 8:35 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली है ग्वालियर से गांधीग्राम तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अरावली एक्सप्रेस 14702 और ये गाड़ी 8:30 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। 9:13 पर वंदे भारत एक्सप्रेस 12461 पहुंचने वाली है, 8 की मामूली देरी से चलती हुई। 9:10 पर गरीब नवाज एक्सप्रेस 16532 पहुंचने वाली है। 9:45 पर जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 19224 पहुंचने वाली है। अजमेर मैसूर एक्सप्रेस 16209 पहुंचने वाली है 10:10 पर। 10:30 पर जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20496 पहुंचने वाली है। 27 देरी से चलती हुई प्रयागराज से साबरमती तक जाने वाली स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड 04179 संख्या वाली गाड़ी 11:28 पर पहुंचने वाली है। दौलतपुर गांधीनगर एक्सप्रेस ये गाड़ी 11:30 पर संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचेगी, 19412 संख्या वाली गाड़ी है। योगा एक्सप्रेस 19032 11:43 पर 53 देरी से चलती हुई प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आने वाली है, लगभग 1 देरी से चल रही है योगा एक्सप्रेस 19032 योगनगरी ऋषिकेश से साबरमती तक जाती है ये ट्रेन। गांधीग्राम से जोधपुर जाने वाली मेल एक्सप्रेस 14822 11:40 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। तो ये कुछ बातें थी जो जुड़ी हुई थी रेलवे इन्फॉर्मेशन के साथ। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आलमगीर सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ आज दर पे चल के आया है मौका,

जी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए जानते हैं कुछ बातें जो जुड़ी हुई है हमारे आसपास के साथ। और ये सूचनाएं समाचार हम आपको प्रदान कर रहे हैं सिरोही आबू रोड भास्कर के जरिए। सिरोही में पहले दो चरणों में चुनाव, जिला प्रमुख का 8 प्रधान और 223 सरपंच और 2185 पंचों का चुनावी कार्यक्रम तय। और लगभग 7,16,000 वोटर्स चुनेंगे गांव की सरकार। पहले चरण में 23 और दूसरे में 29 अक्टूबर को वोटिंग होगा। पंचायत चुनावों को शनिवार की घोषणा हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग 4 चरणों में चुनाव कराएगा और इसमें सिरोही जिले को 8 पंचायत समितियों के लिए पहले 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसमें जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के पहले चरण के तहत 23 अक्टूबर और दूसरे चरण में 29 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 20 नवंबर को परिणाम आएंगे। इसी प्रकार सरपंचों के चुनाव सिरोही जिले में पहले 2 चरणों में ही होंगे। पहले चरणों में 25 अक्टूबर और दूसरे चरण में 31 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वोटिंग के दिन ही देर रात तक नतीजे भी घोषित होंगे। इन चुनावों में सरपंच वार्ड पंचों के चुनाव बैलेट से होंगे और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव भी ईवीएम से होंगे, लेकिन वार्ड पंचों के चुनाव, सरपंचों के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के वोट की काउंटिंग 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से की जाएगी। ये काउंटिंग जिला मुख्यालय पर की जाएगी। इसके बाद जिला प्रमुख के लिए चुनाव 25 नवंबर को, उप जिला प्रमुख का चुनाव 26 नवंबर को होगा। सिरोही सुप्रीम कोर्ट ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 अक्टूबर से शुरू होंगे। पात्र भारतीय नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 250 संभावित पदों पर भर्ती की जाएगी। ये पद समूह बी और अराजपत्रित श्रेणी के हैं। अभ्यर्थी 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ न्यायिक सहायक के 250 पदों पर भर्ती होंगे। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम की पीएम अजय योजना के तहत 2026-27 के लिए एससी वर्ग के बेरोजगार ग्रामीण शहरी निवासियों से स्वरोजगार के लिए आवेदन की मांगे हैं। आवेदकों को बैंक के जरिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। प्रदेश में किसानों की जमीन, फसल और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी को एक डिजिटल पहचान से जोड़ने के लिए तैयारी तेज हो गई है। अब इसी डिजिटल व्यवस्था को कृषि योजनाएं, सेवाएं और इसके साथ अन्य सेवाओं के साथ जोड़कर किसानों तक लाभ पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की गई है। अगर हौसले बुलंद हो और मेहनत सच्ची हो तो अभावों के बीच भी सफलता के शिखर को छुआ जा सकता है। इसे सच करके दिखाया है जिले के अनादरा निवासी नरेश कुमार पुत्र गोपाराम मेघवाल जी ने। नरेश कुमार का चयन राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS 2024 में हुआ है और उन्हें राजस्थान तहसीलदार सेवा RTS आवंटित हुई है। साधारण परिवार से निकलकर बड़े अफसर बनने तक के उनके इस सफर ने पूरे क्षेत्र और समाज का नाम बढ़ाया है। नरेश कुमार एक बेहद साधारण और संघर्षशील परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता गोपाराम मेघवाल परिवार के पालन पोषण के लिए टेम्पो चलाते हैं और बेटे को उच्च शिक्षा दिलाने और इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए माता पिता ने कड़ी मजदूरी की। आज बेटे के प्रशासनिक अधिकारी बनने की खबर मिलते ही माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और उनके वर्षों के संघर्ष की मेहनत सफल हो गई। सरकारी नौकरी की हाटरी यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे नरेश की सफलता का ये सफर अचानक नहीं मिला है। वो अपनी मेहनत के दम पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे हैं। इससे पहले वो राजस्थान की प्रतिष्ठित पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षाओं में भी अपनी सफलता का लोहा मनवा चुके हैं।
रेडियो मधुबन की ओर से भी नरेश जी को बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 8:41 रेडियो मधुबन की घड़ी पर है। अभी कुछ पल के बाद आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। समाचार प्रभात सुनने से पहले एक आधा और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। सिरोही जिले में 6 नगर निकायों से लगभग 36.92 टन कचरा उठाया गया है। तो ये कुछ बातें। टाइगर पथ पर जंगल ट्रैकिंग, 6 किलोमीटर सफर में दिखी आबू की जैव विविधता। वन्य जीव सप्ताह के दूसरे दिन लोगों ने ट्रैकिंग में हिस्सा लिया। सीएम ने लखपति दीदियों से किया सीधा संवाद, साझा की सफलता की कहानी। और महिला सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और ग्रामीण महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद तथा महिला एवं बाल विकास विभाग ने संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को स्वामीनारायण मंदिर सिरोही में जिला स्तरीय नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम उत्साहपूर्ण तथा गरिमामय वातावरण में आयोजित किया। और वहीं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की विभिन्न जिलों की लखपति दीदियों से सीधा संवाद किया। शिवगंज में 7 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है। आबू रोड में बीसीएम महादेव वाटिका के 5 दिन में ही 55 प्लॉट हुए बुक। आइए यहीं पर मैं रुकती हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। अभी आप 9 बजे सुनेंगे आपका स्वस्थ आपके यहाँ। 4 बजे जीवन रोशनी कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा, बहुत ही उम्दा कार्यक्रम है। एक साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट तथा ट्रॉमा साइकियाट्रिस्ट जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, और उन्होंने जीवन के बहुत गहरे विषय पर उन्होंने ध्यान आकर्षण करवाया है। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्ते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाड़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
4: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
5: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन दी गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
0: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन 5 के साथ 4थे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक, पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे।

0: बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकाती कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ बीके धरती जी उपस्थित हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सिनोर का जो सेवा केंद्र है उसे संभालते हैं और काफी लंबे समय से आप राजयोगा फ्री में लोगों को सिखा रहे हैं। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप उनके लिए लेक्चर्स, उनके लिए टॉक और योगा का जो सेशंस है वो हमेशा करते रहते हैं। रेगुलर आप अपने यहाँ ये कार्य करते रहते हैं, लोग जुड़ते हैं और अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। तो निश्चित तौर पे आपका ये सेवा कार्य बहुत ही सराहनीय है। तो आपका बहुत बहुत दिल से आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। ओम शांति धरती बहन, कैसे हैं आप?
1: थैंक यू, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं।
0: जी जी जी,
1: आज विशेष
0: जो एक है ये गुजरात के वडोदरा में है।
1: हाँ जी,
0: या उसके पास में है,
1: वडोदरा के पास में सिनोर सेवा केंद्र है, जो बहुत ही सुंदर जगह है, जो नर्मदा नदी के किनारे पर है। वहां पर बाबा का बहुत बड़ा रमा कुमारी आश्रम है और वहां पर बाबा की सेवाओं में, परमात्मा सेवाओं में रहते हैं। और खास करके आज सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि नशा जो है वो इस प्रकार से बढ़ रहा है, सारे यूथ में, सारे कल्चर में, जैसे ये एक फैशन बन गई है। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय जो है, वैसे भी पहले से ही सारे भारत तो क्या सारे विश्व में नशे से मुक्त होने का एक बहुत सुंदर कार्य कर रही है। हमारा यही सपना है कि हमारा देश जो है वो व्यसन मुक्त हो जाए, सारा विश्व जो है वो इन व्यसनों के चुंगल में फंसा है उससे मुक्त हो जाए और अपने जीवन में पुनः खुशहाली लाए, सुख शांति लाए। तो इसीलिए विशेष आज हम खास करके ब्रह्मा कुमारीज की ओर से भी गवर्नमेंट के साथ एक MOU हुआ है कि हम पूरे भारत में और पूरे विश्व में नशे से मुक्त करने के लिए एक अभियान निकालेंगे, जन जन को जाकर के, गांव गांव में जाकर के, स्कूल कॉलेजेस में जाकर के, हर एक को नशे के जो जो भी बैड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में बताएंगे। साइंटिफिकली वो हमारे तन मन धन जन और संबंध में किस प्रकार से नुकसान कर रहा है उसके बारे में भी सभी को समझाने का एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो जब से इस संस्था के स्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने यह अभियान शुरू से ही चलाया और आज लाखों भाई बहने इस मार्ग पर चल रहे हैं और 10 लाख से भी अधिक भाई बहने ऐसे हैं जो कि घर गृहस्थ में रहते हैं, अपना संसार भी संभालते हैं, कारोबार भी संभालते हैं और फिर भी वे नशे से संपूर्ण मुक्त है, व्यसनों से मुक्त है, विकारों से मुक्त होकर के अपने समाज में, अपनी फैमिली में, अपने संबंधों में एक सुखदायी जीवन जी रहे हैं, आनंद का, खुशियों का अनुभव कर रहे हैं। तो खास तौर पर नशा जो है, हम सभी जानते हैं कि आइडियली हर मनुष्य को नुकसान करता है। सामान्यतः हमारी ऐसी सोच है कि नशा हो तो हम अपने आप में बहुत ही प्लेजर, आनंद या खुशी का अनुभव करते हैं, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। कई लोग तो टोबैको लेने वाले कहते हैं कि हम गैस से मुक्त होते हैं, हमको एक चैतन्यता प्रदान करते हैं। देखो, कहीं एक भाई तो हमको कह रहे थे, मैंने कहा कि भाई ये बीड़ी जो है ना, ये तो बिल्कुल नर्क का द्वार है, आपको इसे छोड़नी ही चाहिए। तो मुझे कहते हैं, नहीं बहन, आ तो स्वर्गनी सीढ़ी छे, हमारे गुजरात में बोलते हैं। तो इस प्रकार से भी उत्तर देते हैं, एक भाई कहता है, जैसे कि वो गुटखा खाते हैं, तो कहते हैं ये तो चैतन्य चूर्ण है, तो इसको हम लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी चेतना बढ़ गई। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे ब्रेन में एक प्लेजर सेंटर है जिसमें ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमें आनंद देते हैं। तो ये टोबैको या अल्कोहल का नशा भी इस हमारे प्लेजर सेंटर को थोड़ा सा टच करते हैं, जिसके कारण वहां एंडोर्फिन नाम का एक हॉर्मोन्स है जो पैदा होता है, और थोड़े क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, वो व्यक्ति जो नशे से ग्रस्त है वो आनंद का, उत्तेजना का अनुभव करता है। लेकिन उसके बाद उसी हॉर्मोन्स को रिलीज करने के लिए उसे कई प्रकार के नशे में बढ़ावा करना पड़ता है। जैसे कि पहले वो एक पैग लेता था, उसके बाद दो लेना शुरू करता है, फिर तीन लेना शुरू करता है, और उसके बाद वो उसका इतना आदी बन जाता है कि अब छोड़ना तो माइलों दूर हो जाता है। और अब ऐसी नौबत आ जाती है कि वो व्यक्ति नशा किए बिना चल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता। हम सभी जानते हैं कि ये नशा जो है वो हमारे परिवार को, हमारे संबंधों को भी, और समाज को भी एक नकारात्मक व्यक्तित्व और साथ साथ दुख की फीलिंग्स, दुख देता रहता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय जो है वो सारे विश्व में नशे से आत्मा कैसे अपने आप को बचाए, कैसे उससे मुक्त हो, उसका एक सुंदर अभियान कई सालों से चला रही है। और अब तो गवर्नमेंट ने भी ये जान लिया है कि ब्रह्मा कुमारीज में सिखाने वाला जो राजयोग है वो 100% हमें नशे से मुक्त करता ही है, परंतु उसको नियमित रूप से किया जाए तो। जैसे नशे के बैड इफेक्ट्स मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, हम सभी जानते हैं। जैसे अगर आप अल्कोहल लेंगे तो आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन सेल हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और एक बार न्यूरॉन सेल जनरेट होने के बाद अगर डिस्ट्रॉय हुए तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं होते। ताकि हमारी याददाश्त, हमारी जो मेमोरी है, वो सब पर इसके इफेक्ट पड़ती है। फिर वो व्यक्ति कहता है मैं तो भूल ही गया, मुझे याद ही नहीं रहता। तो इस प्रकार से देखिए, ब्रेन जो हमारी बॉडी का एक अनमोल सिस्टम है, जो सारे बॉडी को न्यूरॉन सेल्स, नर्वस सिस्टम के थ्रू वो पूरी बॉडी को चेतना पहुंचाता है, वही अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आप देखेंगे कि अल्कोहलिक व्यक्ति पूरा, जैसे कि शिवरिंग होता है उसका बॉडी, वो लोग सोचते हैं कि ये अल्कोहल लेने से जैसे हमें ऊर्जा आती है, हमारे शरीर में गर्मी आती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो थोड़ी मिनटों के लिए होता है, उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे धीरे उसका बॉडी ठंडा होता जाता है। अल्कोहल की जो बैड इफेक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा हमारे लीवर पर होती है। लीवर धीरे धीरे डैमेज होता है और उसके कारण हमारे शरीर में एक, जैसे कि जॉन्डिस जैसी बीमारी। आपको मैं बताऊंगी कि अल्कोहल से 60 प्रकार की बीमारियां होती हैं, खास करके लीवर डैमेज होता है, और लीवर डैमेज होने से जैसे पीलिया, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, उसकी इफेक्ट्स पूरे बॉडी में दिखाई देती हैं। व्यक्ति धीरे धीरे पीला होता जाता है, उसमें HB माना हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, और वो व्यक्ति वीकनेस फील करता है। धीरे धीरे हेडेक, मेमोरी लॉस, वीकनेस, लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होने के कारण पूरी बॉडी में सूजन, हीमोग्लोबिन का कम होना, तो ये सारी चीजें उसमें दिखाई देती हैं। और अल्कोहल का आदी व्यक्ति धीरे धीरे एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद वो पैग को बढ़ाता जाता है, तो उसके कारण जो है उसको धन की आवश्यकता भी पड़ती है। कमाने की या पैसा कमाने की उसकी जो कार्यक्षमता है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। घर में पत्नी और बच्चों के साथ नेचुरली उसका जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, समाज से भी उसको एक जैसे हेट्रेट मिलती है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार भी बन जाता है। लंबी अवधि तक हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़ते हैं, तो हम देख रहे हैं कि नशा जो है वो हमारे जीवन को किस प्रकार से बर्बाद करता है। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो टोबेको, तमाकू, सिगरेट जो है वो उसमें भर के जो टोबेको आती है उसमें जो है निकोटीन है, ऐसे जहरीले पदार्थ रसायन है जिसके कारण वो केमिकल्स हमारे बॉडी में, खास करके जो टोबेको आप जहां से लेते हैं मुंह से लेते हैं, तो आज तुम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, जबड़ों का कैंसर, आज मैक्सिमम कैंसर हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट देखे जाते हैं। कई लोग ऐसा भी आर्गुमेंट्स करते हैं कि बहन जी हम तो टोबैको कई साल से लेते हैं, हमें तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं। पर हालांकि मैं उनको समझाती हूँ कि कैंसर आपको होना चाहिए, क्या आप ऐसा सोचते हैं? तब वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचते। दूसरा मैं कहती हूँ आप इस टोबैको में जो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, अगर उसके उसके उन्हीं पैसों से आप अगर अपने घर में है ना बादाम लाते हैं, दूध लाते हैं, बच्चों के लिए अच्छे बिस्किट्स या अच्छी कुछ चीजें लाते हैं, तो घर में एक खुशी का माहौल आ जाएगा और आप अपने जीवन में कितनी खुशियां पाएंगे। आपको मैं बताती हूँ, जहां पर जिस इलाके में मैं रहती हूँ, गुजरात का एक छोटा सा टाउन है, तालुका प्लेस है, तहलीस है, जहाँ जिसे शिनोर कहते हैं, वहां पर हम लोगों ने व्यसन मुक्ति अभियान चलाया, जहां पर हम लोगों ने जाकर के राज्यों की शिक्षा दी। तो वहां कई ऐसे भाई बहन हैं जो कि जिन्होंने आज व्यसनों से कंप्लीट मुक्ति पाई है, क्योंकि जब हम
0: जी
1: लोग राजयोग सिखाते हैं, व्यसनों का साइड इफेक्ट्स दिखाते हैं, उसके कारण होने वाली जो जीवन में दुख अशांति है उसके बारे में समझाते हैं, तब वे लोग हमें बताते हैं कि बहन जी सचमुच हम अपने जीवन में राजयोग अपनाएंगे और इन व्यसनों से अपने आप को मुक्त करेंगे। तो हमारे यहाँ एक अंबाली गांव है जहां पर हमारे नटू भाई हैं, हम आप सभी को उनसे मिलाएंगे। तो वो कई सालों से गुटखा खाते थे, तो जब हम उनके गांव में गए, उनके गांव में से लगभग 10 लोगों ने व्यसन टोटली छोड़ दिया है राजयोग के अभ्यास द्वारा। क्योंकि जब हम राजयोग सिखाते हैं, सेम जैसे अल्कोहल पीने से हमारे जो प्लेजर सेंटर पर इफेक्ट्स होती हैं और जो आनंद का अनुभव करता है व्यक्ति थोड़ी क्षणों के लिए, वैसे ही जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं, जब हमारे मन का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है, तब हमारा प्लेजर सेंटर एक्टिवेट होता है और वहां से एंडोर्फिन, डोपामिन हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और हम खुशी आनंद का अनुभव करते हैं। हम डांस करने लगते हैं, एक सुंदर मन का डांस, खुशियों का डांस। तो राजयोग का मेडिटेशन हर व्यक्ति को ऐसी परमानेंट, अविनाशी, शाश्वत खुशी प्रदान करता है। तो उन लोगों ने जब राजयोग सीखा और राजयोग सीखने के बाद जब परमात्मा से अपने मन को जोड़ा, तो धीरे धीरे वो खुशियां उनके जीवन में आने लगी। जब कर्म की गहन गति सुनी और उन्होंने समझा कि इससे मुझे क्या क्या नुकसान है, मेरे धन को, मेरे तन को और मेरे मन को नुकसान है, तब उन्होंने वो छोड़ने की प्रतिज्ञा की। हमने उनसे प्रतिज्ञा भी कराई, हम उनके साथ चलते रहे चलते रहे चलते रहे। और एक भाई जो हमारे थे, उन्होंने कहा कि बेन मैं महीने में, आज से 20 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा कि मैं अभी तो वो 5,000 की हो जाती अगर वो टोबे को खाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये 500 रुपए की जो टोबे को मैं छोड़ रहा हूँ वो मैं इस सेवा में लगा रहा हूँ। तो आप मानेंगे कि उस दिन से आज तक वो हर महीने 500 रुपए इस सेवा में लगाते हैं और वो इतनी खुशी का आनंद अनुभव करते हैं। मुझे बताते बहन जी, जो लोग टोबेको ले रहे हैं ना, उनके लिए आप वो छोड़ने के लिए, उनको छुड़वाने के लिए आप इस धन का उपयोग कीजिए। तो देखिए, ये है चेंजेस, ये है राजयोग का प्रभाव। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार हमारे राजेश भाई एक भाई को हमारे सेंटर पर ले आए। उसको कहा कि चलो मैं आज आपको आपका बैंक में खाता खुलवाता हूँ। तो उसने कहा बैंक का खाता? हाँ, बहुत सुंदर बात थी, मुझे भी सीखने को मिला। तो उसने कहा कि मैं आज एक मिनट आपसे बैंक का हमारे बहन जी के पास ले जाता हूँ। मैं आप उनसे भी आपसे मिलाऊंगी, उनका नाम मनसुख भाई है। और मनसुख भाई जो है वो दारू का पीछा चलाते थे।
0: अच्छा,
1: वो दारू बेचते थे। हाँ जी, वो दारू बेचते थे। और हमारे भाई जो है वो उनको हमारे सेवा केंद्र पर लेकर के आए और कहा आप हमारी बहन जी के पास चलो, हमारी बहन जी आपको आज बैंक में खाता खुलवाएगी और आप बहुत धनी बन जाएंगे। उसे बड़ा आश्चर्य लगा। वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जो हमारा सीनोर में लक्ष्मी चौक में है, वहां पर भाई आए और कहा दीदी आज इनका खाता खुलवाओ, इनको हम धन संपत्ति देते हैं। तो मैंने कहा हाँ जरूर। उनको बिठाया, वेलकम किया, पानी दिया, फिर उनको थोड़े कुछ प्रश्न पूछे हमने। हमने कहा कि भाई जी आप क्या करते हैं? तो वो हमारे राजेश भाई के सामने देखने लगा कि मैं बहन जी को कैसे बताऊं। मैंने कहा नहीं, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने बताया कि बहन जी मैं तो एक छोटा दारू का पीठा चलाता हूँ। उसको कहने में बहुत झिझक हो गई, पर फिर भी उसने सच्चे दिल से अपनी सारी बात बताई। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने उससे तो काफी कमाया होगा। तो कहा नहीं बहन जी, मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ। फिर मैंने कहा कि मनसुख भाई आपने गाड़ी वगैरह भी तो ली होगी इन पैसों से। तो बोला नहीं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, खाने का ही मेरे पास थोड़ा बहुत है, मिल जाता है इससे। और रात दिन मैं भय में रहता हूँ कि पुलिस आ जाएगी, मुझे पकड़ के ले जाएगी, मेरे पर केस हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो पैसे भी नहीं है, मकान भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, तो फिर दारू का पीछा चलाने से फायदा क्या हुआ? तो बोला कुछ फायदा नहीं, जीवन बिल्कुल नर्क जैसा है, घर में झगड़े भी चलते रहते हैं, पत्नी की डिमांड, बच्चों की डिमांड पूरी नहीं कर पाता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे धंधे से क्या फायदा जो आपको केवल और केवल भय, दुख, चिंता, निराशा ही दे रहा है। तो कहा हाँ बहन जी, पर मैं क्या करूं? तो मैंने कहा सबसे पहले आप 7 डेज कोर्स कीजिए, उसके बाद आप एक छोटा सा दुकान खोल लीजिए आपके कस्बे में, जहां पर आप बच्चों की कुछ चीजें, लोगों को कुछ चीजें चाहिए वो चीजें, तो वो बेचने का शुरू कीजिए। देखिए आपको भगवान मदद करेगा। तो बहुत वंडरफुल बात हुई कि 7 दिन का कोर्स करते करते, सुनते सुनते सुनते भगवान से उनकी प्रीत हो गई, उनके आंख में भी आंसू आ गए कि आज तक तो कुछ भी नहीं पाया, ये दारू का अड्डा चलाने से तो मैंने दुखी पाया, अशांति पाई। कर्मों की गति का गहन अभ्यास उन्होंने किया। मैंने उनको बताया कि देखो आपसे जो भी दारू लेकर के जाते हैं, दारू पीते हैं और घर में जाके झगड़ा करते हैं, उसके निमित्त आप बनते हो भैया। उसको लगा कि क्या बात है, उसको आश्चर्य लगा कि ये तो मैं जानता ही नहीं था कि घर में झगड़ा हो रहा है, उसके निमित्त बहन जी मैं कैसे? मैंने कहा आपने दारू पिलाया ना, उसने अपने मस्तिष्क का संतुलन गवाया ना, और जाके अपनी पत्नी और बच्चों को मारा, आपके खाते में कुछ ना कुछ तो डेबिट हो ही रहा है, और उसी के कारण आज आपके घर में भी कुछ ना कुछ अशांति दिखाई देती है। उसको बहुत बुरा लगा, उसको सत्य ज्ञान की एक लाइट, एक प्रकाश मिल गया और उसने सोचा कि ओहो, ये तो मेरा पाप कर्म हो रहा है। और उसके बाद उसने ठान ली कि इस परमात्म ज्ञान से, इस राजयोग की समझ से जैसे कि एक बुद्धि का कपाट खुल गया। और वो भाई ने उसी क्षण निश्चय किया कि आज से ये दारू बेचना मैं बंद करता हूँ बहन जी, मैं छोटी सी दुकान डालता हूँ। गांव में एक नागरिक बैंक है जहां पर हमने उसका थोड़ा सिफारिश की और कहा कि वहां से थोड़ी लोन ले लो, छोटा सा दुकान खोला। आप मानेंगे आज उसका दुकान बहुत बड़ा हो गया, उसका मकान पक्का बन गया, उसके पास गाड़ी टू व्हीलर आ गई, उसकी बेटी भी जॉब करने लगी, बेटा भी ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में काम करने लगा और वो एक परिवार सुखी परिवार बन गया। तो ये लाइव एग्जाम्पल यहाँ का है। तो कहने का भाव, हाँ जी, तो कहने का भाव यही है कि कैसे राजयोग मदद करता है।
0: जी जी
1: जी,
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल अपने आप में कमाल का एग्जाम्पल है जो हम सभी को प्रैक्टिकल नॉलेज देता है कि कैसे नशे से हम मुक्त हो जाए। नशा का जो बिजनेस है या करना, दोनों भी गलत हो जाता है क्योंकि उससे हमारा जीवन बिल्कुल नीचे गिर जाता है और हम
1: और अनेकों के जीवन भी बर्बाद होते हैं ना इसमें।
0: तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये ब्रह्म कुमारी संस्थान के माध्यम से जो एमओयू हुआ है, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता जो ये संस्थान है गवर्नमेंट का, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान ये चल रहा है और 2021 से जो है ये कहानी शुरू हुई और अभी भी चल रहा है। और इसमें विशेष रूप से सरकार जो है चाहती है कि मनुष्य जो है नशे से दूर रहें और परिवार से जुड़े, परिवार के साथ रहें, इसीलिए ये सारा काम हो रहा है। निश्चित तौर पे सरकार का ये काम, ये एमओयू ब्रह्म कुमारीज के साथ जुड़ना, एक एमओयू बनाना अपने आप में भी एक बहुत बड़ा काम हो गया है, जिसके वजह से में और भी लोग जो है जुड़ेंगे, और भी एनजीओ जुड़ते हैं तो और अच्छा काम हो जाता है। तो समाज में एक अभियान शुरू हो गया है और इस अभियान में जितने लोग जुड़ेंगे वो सकारात्मक सोच से भरपूर हो जाएंगे, नशे से दूर रहेंगे, ऐसी शुभ आशा करते हैं। और उसमें विशेष सिनो की हमारी ब्रह्म कुमारी धरती दीदी ने काम शुरू कर दिया है पहले से ही, और अभी जो है और अच्छे तरीके से इस अभियान को अपने यहाँ गांव में वो करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा सकारात्मक कार्य आप कर रहे हैं, विशेष लोगों को जिंदगी से आप जोड़ रहे हैं। जो लोग नरक में जीवन फील कर रहे हैं नशे के लत से, उनको एक अच्छी जिंदगी देने का प्रयास आपका चल रहा है। तो आइए आपके स्वागत में हमारे साथ हिमाचल से संतोष जी जुड़ गए हैं। एक गीत मैं चाहूंगा दीदी के लिए आप सुनाइए। संतोष जी स्वागत है आपका।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति।

तेरे है जो एक दिन छोड़ जाना है, करो भगवान का सुमिरन।

0: ओम शांति
1: ओम शांति। संतोष जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया दीदी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बड़ा प्यारा सा मैसेज वाला गीत आपने सुनाया है, मुक्ति अगर पाना है तो आपको क्या चलिए। मैं फिर से आपको ब्रह्म कुमारी धरती दीदी से जुड़ना चाहूंगा। आप काफी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और सामाजिक सेवा में भी आपका अच्छा योगदान है, तो मैं चाहूंगा कि शिनोर के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने गांव है और यहाँ पर आपका कब आना हुआ, कितना समय से आप ये सेंटर चला रहे हैं और वहां की
2: जी।
1: विशेष बातें बताएं, क्योंकि वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास है तो उसके वजह से अभी जब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है आगे पीछे वहां पर, तो आपके यहाँ भी कुछ गांव में टूरिज्म की कुछ बातें हो रही हैं या कुछ चेंजेस आए हैं, वो भी जरूर बताइए।
2: जी, शिनोर सेवा केंद्र जो है बड़ौदा से 40 किलोमीटर, वैसे बीच वाले हम गांव के रास्ते से आते हैं तो है, यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो लगभग 35 किलोमीटर है, और
1: अच्छा,
2: इसके पास में नर्मदा नदी के किनारे पर ही बिल्कुल ये गांव, ये तहलीज जो है वो बसा
1: जी,
2: हुआ है। और लगभग यहाँ के जो एरिया है वो नदी के किनारे पर ही सारे गांव हैं। सिनोर तालुका के लगभग 42 गांव हैं, और यहाँ पर बहुत सुंदर फ्रूट की भी खेती होती है। यहाँ सबसे ज्यादा केले की खेती होती है, केले हैं, नारियल है, हाँ जी, फिर हमारे यहाँ तो मैंगो के बहुत बड़े बड़े बाग हैं, और चीकू के भी बाग हैं, आंवले के भी है, तो ये फ्रूट्स भी हमारे आसपास हैं। गेहूं भी यहाँ होते हैं और गन्ने भी यहाँ होते हैं, तो इसकी बहुत सुंदर, क्योंकि पानी यहाँ इजी मिल जाता है नदी के कारण। यहाँ पर बहुत सुंदर नहरें भी बनी है और हरियाली आप देखेंगे। यहाँ से हमारा मालसर गांव है 5 किलोमीटर,

0: बिल्कुल रहता है। एक तो पोल्यूशन इतना ज्यादा यहाँ नहीं है, जैसे शहरों में आज जो पोल्यूशन के कारण भी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो पोल्यूशन भी यहाँ कम है, नॉइज
1: बिल्कुल
0: भी कम है और बहुत स्वच्छ वातावरण है यहाँ का। और आप देखेंगे कि नदी किनारे पर इतने सुंदर मंदिर है, जैसे यहाँ अंगारेश्वर है, भंडारेश्वर है, कुबेर भंडारी है, बहुत सुंदर बालेश्वर है, तो ये और नीलकंठ धाम जो कि अक्षरधाम जैसे अहमदाबाद में और दिल्ली में है, ऐसा सुंदर स्वामीनारायण सांप्रदायिक का एक नीलकंठ धाम बना हुआ है, वो भी शिनोर के बिल्कुल पास है। तो आप सभी वो देखने जरूर आइए, और बहुत सुंदर यहाँ का माहौल भी है, खास करके अभी तो समर है तो गर्मी के दिनों में, ये जैसे आप देखेंगे ना कि बारिश के दिनों में तो यहाँ से हम 5-7 किलोमीटर जाएंगे तो जैसे शिमला में जा रहे हैं, कोई कश्मीर का रोड पकड़ लिया है, इस प्रकार से लगता है। पर अभी थोड़ा चेंजेस ये हुआ है कि यहाँ बहुत बड़ा एक बॉम्बे के जोड़ता हुआ एक ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज के कारण काफी पेड़ काट दिए, काफी आसपास का
1: अरे
0: वातावरण जो है डस्टी हो गया है ऐसे, तो बहुत सुंदर यहाँ का
1: जी जी
0: एटमोस्फियर है। मैं तो
1: चलिए,
0: शहरों की भीड़ में जाती हूँ तो हमेशा सोचती हूँ कि नहीं ये बहुत अच्छा है ऐसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुन के अच्छा लगा मुझे। और गुजा मेरा
0: हाँ
1: क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, पल जिनमें सारे आंगन ठंडी ठंडी चाव रही है ना। निश्चित तौर पे गांव हमें
0: जी
1: जो है सुकून देता है, अगर आप नदी के साथ जुड़ जाते हैं और थोड़ा सा नदी का किनारा हो तो पानी भी अच्छा मिल जाता है और मौसम भी अच्छा हो जाता है। तो आइए, हमारे मित्र जो है रामलाल जी, नीता नायक जी, बीके कविता जी, और इन सभी ने याद भेजा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है उन्हें प्रोग्राम सुनकर। नशा मुक्ति के बारे में दीदी ने बहुत अच्छा बताया, ये भी उन्होंने कहा है। तो आइए, मैं चाहूंगा कि आपके यहाँ और किस किस तरह के एक्टिविटीज होते हैं सेंटर के माध्यम से, वो थोड़ा सा हमें बताइए।
0: जी खास करके हम लोग गांव में सेवा करते हैं, यहाँ लोकल में भी सेवाएं चलती हैं, खास अभी महाशिवरात्रि का पर्व गया मार्च में, तो हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रोग्राम करे जिसमें संगीत संध्या भी थी, जिसमें गांव के जो बड़े व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति थे, खास करके रिस्पेक्टेड हैं, वीआईपीज हैं, उनको बुलाया गया था, उनके द्वारा ही मंच पर खास वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन है ब्रह्मा कुमारीज का, तो उन
1: जी जी
0: वैल्यूज पर उन्हें समझाया गया, भगवान शिव इस धरा पर आ चुके हैं और वे ही हमें शक्तियों से गुणों से भरते जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी विशेष हम सबको
1: बढ़िया
0: समझाया, खास
1: प्रोग्राम।
0: करके संगीत संध्या का कार्यक्रम हमारा बहुत सफल रहा। उसके बाद हमने आपको बताया कि हम गांव गांव में जो भी हमारे किसान हैं, तो हमारा एक बहुत सुंदर ग्राम विकास का विंग्स है,
1: जी जी
0: उसमें गांव गांव में किस प्रकार से हम खेती में भी योग मेडिटेशन को इन्वॉल्व करें, अपने जो खेत हैं उस खेत में हम परमात्मा की याद का एक ध्वज लगाए, रोज मेडिटेशन करके हम उस खेत को, उस फसल को एक पॉजिटिव पावरफुल ऊर्जा शक्ति प्रदान करें, इसके बारे में भी जाके समझाते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारीज में जो भी बिलीव करते हैं गांव गांव में भाई बहने, उन भाई बहनों को हम खास करके इसके बारे में मेडिटेशन के बारे में सुनाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में समझाते हैं, स्कूलों में भी हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर हमारी शिनोर में हाई स्कूल है, उसके बाद गांव में भी हाई स्कूल है
1: जी
0: जहाँ
1: जी
0: टच द लाइट का प्रोग्राम चलता है, जहाँ पर बच्चों को विशेष करके हम सभी प्रकार के जो आज समाज में न्यूशंस है उसके बारे में अवेयर करते हैं, खास
1: अरे
0: करके आप देखेंगे कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी टॉबेको लेते हैं, वो भी सिगारेट पीते हैं।

0: आश्चर्य लगता है कि ये कैसे हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। पर जब उनसे ही पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि हाँ, फिर उनको स्टोरी सुनाई जाती है, कुछ ऐसी बातें सुनाई जाती हैं, उनको कुछ अच्छे महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है, तो उनमें काफी चेंजेस आते हैं। वो यहाँ सेवा केंद्र पर भी आते हैं, फिर गांव की हमारी माताएं भी आती हैं, यहाँ की भी माताएं आती हैं जो रोज सुबह और शाम ये ज्ञान की शिक्षाएं लेती हैं, राजयोग
1: बिल्कुल
0: मेडिटेशन सुनती हैं, समझती हैं और उसको अपने जीवन में लाती हैं। राजयोग
1: बहुत
0: मेडिटेशन एक ऐसी सुंदर कला है जो हमारी आत्मा को धीरे धीरे धीरे अवगुणों से, विकारों से, कुसंस्कार से मुक्त करती है और हमारे में एक देवत्व भरती है, दिव्यता भरती है, सद्गुणों को लाती है, शक्तियों को लाती है और संस्कारों को परिवर्तन करने में बहुत मददगार बनती है। तो इस प्रकार
1: बिल्कुल
0: से हम लोग रोज गांव गांव में यह जाकर के यह राजयोग की शिक्षा सभी भाई बहनों को देते हैं, समझाते हैं। काफी लोग समझते
1: बिल्कुल
0: भी हैं, कुछ बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ अपने जगह पर ही रहते हैं, ऐसे भी होता है।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। निश्चित तौर पे आपका जो कार्य है सराहनीय है और वंदनीय है कि आप ऐसे सुंदर कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए समय दे रहे हैं। सुबह और शाम जो है मेडिटेशन का फ्री कोर्सेस आप रेगुलर कराते हैं और उनके जीवन में बेहतर परिवर्तन लाने के लिए आप अपना जो है सेंटर खोल के आप आराम से सेवा दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और गांव-गांव में जाकर लोगों को बताना ये और अच्छी बात है। और आपने कहा बच्चों को भी आप जाकर ये ज्ञान देते हैं, और बच्चों के जीवन में अगर झांक कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो हैं आज गुटखा या फिर नशे के शिकार हो रहे हैं, तो वो भी आपको समझ में आता है। तो निश्चित तौर पे आपका स्कूल में जाना कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए मार्गदर्शन भी और उन बच्चों को एक सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। तो विकी धरती दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं। और हमारे मित्र रमेश काका जी अफ्रीका से जुड़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया दीदी जी करके मैसेज किया है। और कविता जी ने भी बड़ी प्यार से मैसेज किया है, उन्हें भी अच्छा लग रहा है। ओम शांति, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी जानकारी दी, इसलिए उन्होंने मैसेज किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों को जो प्यार से मैसेज करते हैं। अमोल भाई, आपने भी याद किया, धन्यवाद। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर आपने धरती जी को सुना, निश्चित तौर पे आज का ये समय जो है बड़ा ही क्या कहते हैं इमरजेंसी वाला है, जहाँ पर हम मुश्किल नहीं कहेंगे लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें जो है जो मुश्किलें हमारे जीवन में आ रहे हैं उसके लिए फ्री इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद है कि आपको कैसे मुक्त होना, इसके लिए फ्री इंफॉर्मेशन जो है आप तक, घर तक पहुंच रहा है, आपके मोबाइल तक आ रहा है। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद कह सकते हैं हम लोग। अगर आप नशा कर रहे हैं या आप दुविधा में हैं और आपको कोई ज्ञान ही नहीं मिल रहा है कहीं से रिचार्ज होने का, तो वो कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल घड़ी है। लेकिन आप एक ऐसे घड़ी में है जहां पर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा फ्री में मिल रहा है, तो ये आप लकी हैं, इससे साबित हो जाता है। तो हमें जो है इस अच्छे ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, इसको अपने जीवन में लाना है। चलिए, जाते जाते मैं चाहूंगा एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें दीदी जी आप।
0: जी, विशेष हम सभी दर्शकों को रेडियो मधुबन जो हमारा बहुत सुंदर सेवाएं दे रहा है सारे विश्व में, खास करके हमारे राजस्थान में, आसपास में, तो सभी को यही मैसेज देंगे कि खास आज के समाज में जो व्यसनों का, विकारों का और कुसंस्कारों का आतंक फैला हुआ है, उससे हम स्वयं को राजयोग के माध्यम से परमात्म ज्ञान और शक्तियों से, परमात्मा ने बताए हुए दिव्य गुणों से मुक्त होने का भगीरथ प्रयास अपने जीवन में करें, स्वयं भी खुशहाल जीवन जिए, अन्य को भी यह खुशी दे और इसमें हम सभी सहयोगी बने, खास करके आज सारे संसार में और भारत में भी खास। अभी अभी हमने सुना कि 13 लाख से भी ज्यादा लोग इस नशे के शिकार होकर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत दुविधा, बहुत ही दुखजनक मैसेज है। तो हम सभी आए मिलकर के सारे विश्व को स्वर्ग बनाएं और पूरे विश्व को हम सतयुग बनाएं, स्वर्णिम बनाएं और हर आत्मा के जीवन में खुशहाली दे, यही हमारे जीवन का भी लक्ष्य है। और सभी को इसमें जुड़ना है और सभी को नशे से मुक्त भारत को बनाना है।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया, थैंक यू सो मच। संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने भी बड़ा प्यारा सा जो है गीत सुनाकर हमारे जीवन को सुंदर बनाया है।

हैं तब जब उसकी रहमत हो, उससे मिलने की तरकीब कहूँ गर तुम सहमत हो। तुम फूल ही हो इसमें नहीं कोई शक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, नहीं अब हक मुझको।

अब है वही, ये कैसे समझाऊं मैं, मेरी नजरों में अब है वही, ये कैसे समझाऊं मैं, बस गया इनमें अब बसने वाला, कोई और कैसे समाऊं मैं, बस गया इनमें अब बसने वाला, कोई और कैसे समाऊं मैं, कोई और कैसे समाऊं मैं।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: और आपकी वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आपको ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है हेमलता गोयल। आप आबू रोड के रहने वाले हैं, आपने 8वीं तक पढ़ाई की है, आपकी उम्र 60 प्लस है और आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। घर परिवार को तो आप चलाते हैं, अच्छी तरह संभालते हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी अच्छी परवरिश दी। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, गीत संगीत, डांस सभी का शौक है और विशेष करके सत्संग में जाना, भजन कीर्तन करना। वो भी तो कहते हैं ना कि नारी शक्ति में क्या नहीं होता है, नारी शक्ति में हट करके विशेषताएं होती है, तभी तो कार्यक्रम का नाम रखा है वंदे मातरम। तो आइए मिलवाते हैं। हेमलता जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: हेमलता जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप पहली बार इंटरव्यू देकर के खुश है या पहले कभी दिया?
1: नहीं, पहली बार देके खुश हूँ।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है, एक नया अनुभव।
1: नया अनुभव है
0: जी। जी तो चलिए आपके बचपन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं ना, पिचपन में बचपन की बातें करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
1: मेरा बचपन जोधपुर में बीता और बहुत अच्छा बीता, फ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ। खूब घनश्याम जी मंदिर और मंदिर में जाके खेलना, कूदना, पढ़ाई करना, सिलाई बुनाई करना, बहुत अच्छा रहा 8वीं तक।
0: जी जी, आपकी चार फ्रेंड है?
1: चार,
0: आपने बताया, मेरे चार फ्रेंड के साथ बीता।
1: चार फ्रेंड है मेरे साथ
0: और पांचवे आप?
1: पांचवी में।
0: पांच पांडव। तो चलिए, आप कितने भाई बहन हैं? आपके माता पिता क्या काम करते थे, बताएंगे?
1: मेरे छह भाई है और एक बहन हूँ मैं, और मेरे पिताजी रेलवे में चेयरमैन थे।
0: तो क्या बात है, छह भाइयों की इकलौती बहन है आप, तो बहुत ही लाड प्यार मिला होगा आपको तो।
1: हाँ जी, बहुत लाड प्यार मिला,
0: स्वाभाविक है, हर डिमांड आपकी पूरी हुई होगी।
1: पूरी हुई, हर डिमांड पूरी हुई और आज भी हो रही है।
0: क्या बात है, आज भी पूरी हो रही है?
1: हाँ, आज भी पूरी हो रही है।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, 60 की उम्र में आज भी डिमांड पूरी होना। नहीं तो कहते हैं कि भाइयों की शादी हो जाती है, भाभियां आ जाती है, फिर नंदों को भाई फर्क पड़ जाता है देने लेने में, लेकिन आज भी आपकी डिमांड पूरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सुनकर के अच्छा लगा।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: अच्छा तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि छह भाइयों की इकलौती आप बहन है, आप सातों भाई बहन कैसे रहते थे?
1: सातों भाई बहन मिलके रहते थे, सब भाई मुझे प्यार करते थे। मैं चौथे नंबर की थी, तीन भाई मेरे से बड़े, तीन भाई छोटे, मैं पांचवे नंबर की थी।
0: अच्छा, तो फिर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की?
1: पढ़ाई इसलिए नहीं की कि छोटे भाइयों को संभालना था, फिर आगे पुराने जन्म पढ़ाते नहीं थे इतना, फिर घर वाले बाहर नहीं निकालते थे, बंदिश बहुत थी, पहला जैसा जमाना अभी नहीं है।
0: इकलौती बेटी है तो चिंता भी रहती थी कि कहीं हमारी बिटिया के नजर नहीं लग जाए।
1: सही बात है।
0: ये तो मजाक थी, खैर माता पिता की जो सोच होती है वो होती है, ऐसा नहीं है।
1: जन्म कहाँ निकालते थे बाहर?
0: जी जी जी, पहले बहुत ही बंदिशें होती थी
1: बहुत,
0: पर आप तो जोधपुर जैसे शहर में थे, फिर भी
1: बंदिश थी ना, मेन बाजार में रहते हैं, हमारा मकान सिटी में ही है।
0: अच्छा, आपके पिताजी क्या काम करते थे?
1: मेरे पिताजी रेलवे में फोरमैन थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: फोरमैन की पोस्ट पे थे। पर
0: जी जी, तो आपने जैसे 8वीं तक पढ़ाई की, तो आपके टीचर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ कैसा व्यवहार था?
1: अच्छा व्यवहार था मेरा, टीचर के साथ में भी अच्छा था, फ्रेंड के साथ में भी। एक फ्रेंड तो ये बैठी सामने।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: दोनों एक ही स्कूल में पढ़े।
0: तब तो आपके फ्रेंड का भी जरूर लेंगे, हम बात करेंगे आपके फ्रेंड से भी। हेमलता जी के फ्रेंड है, यही साथ में बैठे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे, पहले हम हेमलता जी के अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा बचपन आपका गुजरा है, बीता है। आपके जमाने में कौन से गेम खेला करते थे?
1: हमारे जमाने में खो खो, चंगा पो और आंख मिचोली, सतोलिया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल।
0: अच्छा, ये सारे गेम होते थे, आपने किसी में पार्टिसिपेट किया?
1: मैंने वॉलीबॉल में फर्स्ट डिवीजन आई।
0: क्या बात है, कौन सी क्लास में?
1: सेवंथ में।
0: फिर एट में भी गए?
1: एट्थ में नहीं गई थी फिर।
0: तो सेवंथ में फर्स्ट आई तो एट में क्यों नहीं गए?
1: एट्थ में नहीं गई ना, मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी, बीमार बहुत रहने लग गई थी मैं, फिर इसके कारण मैंने स्कूल छोड़ दिया था 8वीं पास करके।
0: अच्छा अच्छा, तो 7वीं तक आप वॉलीबॉल खेलते थे?
1: वॉलीबॉल खेले, अभी भी है मेरे पास।
0: अभी भी वॉलीबॉल रखा हुआ है?
1: नहीं, वो कार्ड रखा हुआ है ना जो फर्स्ट मिला था,
0: सर्टिफिकेट,
1: सर्टिफिकेट और इनाम।
0: जी जी, सर्टिफिकेट तो वो कहते हैं ना कि प्राणों से भी प्यारा होता है।
1: प्राणों से भी प्यारा होता है, दिखाना पड़ता है ना भाई।
0: अपने पास सुरक्षित रहना चाहिए,
1: चाहिए। टीसी के साथ में ही देते हैं ना वो तो स्कूल में।
0: जी जी, तो आपने उसको संभाल के रख रखा, कभी काम आया?
1: कभी काम आता ही है ना, अभी तो किसी में काम लिया नहीं है मैंने।
0: अच्छा, चलिए, फिर भी एक मन को खुशी प्रदान करता है
1: ना, कभी मैंने जीता ही है।
0: जी जी, देखते हैं तो बातें याद आ जाती है स्टूडेंट लाइफ की,
1: लाइफ की।
0: अच्छा, और साथ ही साथ आप कह रहे थे गीत संगीत का शौक है, तो आप पढ़ाई करते थे तब गीत संगीत बोलते थे?
1: उस टाइम तो गाने ही चलते थे, भजन तो चलते नहीं थे। जब रेडियो रेडियो चलता था तो रेडियो में गाने आते थे तो वो मैं करती रहती थी साथ साथ, तो इसी वजह से याद रह गए सारे।
0: नहीं, स्कूल में कौन से गीत गाते थे आप?
1: स्कूल में तो वही स्कूल के राष्ट्र गीत और सरस्वती के ऊपर और
0: जी जी देशभक्ति गीत, बहुत सारे गीत गाते हैं।
1: जैसे ये मनाते ना सरस्वती का फंक्शन बसंत पंचमी के दिन, उस पे भी प्रोग्राम में भाग लेती थी, सब कुछ नाच कूद में। और
0: तो चंदेलाइना सुनाएंगे आप?
1: हाँ, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सका।
0: जी जी जी, तो ये प्रार्थना बोलते थे आप?
1: प्रार्थना बोलते थे।
0: और आप किसमें भाग लेते थे?
1: बस ये खो खो में, और वो बताया ना मैंने वॉलीबॉल में, और उसमें भाग लेती।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तब तो आप कह रहे थे एट में आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया
1: था, इसकी वजह से फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी।
0: तो आप तो अच्छे प्लेयर रह चुके, फिर स्वास्थ्य कैसे ऊपर नीचे हो गया?
1: डिप्टेरिया हो गया था, फिर गला बंद हो गया था मेरा, तो आवाज भी नहीं आती थी मेरे से, पर फिर पढ़ाई कैसे करती। मैं 3 महीने तक एडमिट रही थी हॉस्पिटल में।
0: ओह,
1: फिर मेरे ठीक हुआ, फिर पापा मम्मी ने कहा नहीं पढ़ाना बोले।
0: अच्छा, इसी वजह से आपकी पढ़ाई
1: रुक गई मेरी, नहीं तो मैं आगे पढ़ने के लिए तैयार थी।
0: जी जी जी,
1: मजबूरी थी मेरी, मेरी बीमारी के कारण मैंने पढ़ाई नहीं करी थी।
0: पढ़ाई में आप कैसे थे?
1: अच्छी थी, फर्स्ट डिवीजन आती थी हर विषय।
0: तो आपको बहुत दुख हुआ होगा पढ़ाई छूट गई?
1: पढ़ाई छूट गई तो मेरे को दुख हुआ था ना, आज मैं कहाँ की कहाँ पहुँचती नहीं।
0: स्वाभाविक है। जी जी जी, हर एक के सपने होते हैं। जी, तो हेमलता जी आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: नारी की लचक में करुणा है, पर उसके हौसलों में धार है। हर युग में उसने साबित किया नारी ही असली शक्ति का आधार है, नारी ही असली शक्ति का आधार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव बचपन के हमने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। हेमलता जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: तो आपकी बचपन की बातें चल रही है, कैसा लग रहा है?
5: बहुत अच्छा लग रहा है। याद आ रहा है बचपन भी।
4: जी बचपन याद आ गया। तो आप बता रहे थे कि आप प्रार्थना भी बोलते थे, आप काफी बीमार हो गए इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो जब आपकी तबीयत ठीक हुई तो फिर आपने कोशिश नहीं की कि अब मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूं?
5: नहीं, कोशिश तो करी थी, पर घर वाले इतना लाड़ प्यार करते थे तो भेजने के लिए मना कर दिया। बोले नहीं, एक एक बच्ची और तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा।
4: अच्छा, इसलिए आपको भेजा नहीं?
5: इसलिए भेजा नहीं।
4: कभी कभी ऐसा हो जाता है, ओवर लाड़ प्यार मिलता है तो पढ़ाई आगे नहीं पढ़ पाते हैं।
5: सही बात है।
4: तो उस समय आपको कैसा लगा जैसे आगे नहीं पढ़ाया आपको? ठीक है,
5: दुख हुआ ना उस समय कि भाई मैं और पढ़ती पर घर वाले लाइक नहीं कर रहे थे, क्या कर।
4: और उस समय बचपना होता है, इतना सीरियसली नहीं लेते, वो तो जब एक एज होती तो पता चलता है पढ़ाई क्या है।
5: वो तो आगे बढ़ने के बाद अब महसूस हो रहा है हमको, आगे पढ़ते तो और कहीं पहुंचते, सर्विस करते, टीचर लाइन में जाते और कहीं जाते।
4: जी जी जी, हर एक का सपना होता है,
5: मजबूरी थी ना हमारी, क्या करें।
4: जी कोई बात नहीं, अब तो आपकी 60 की उम्र हो गई है और आप भूल भी गए होंगे उन बातों को।
5: बातें भूल गए, अब तो यही याद आता और सत्संग का।
4: जी जी, सत्संग का याद आता है। सही बात है, कहते हैं एक वानप्रस्थ अवस्था आती है, एक उम्र जब बढ़ती है तो अपने आप ही मन ईश्वर की तरफ लग जाता है, तो आप भी सत्संग की तरफ ज्यादा रुचि रखने लगे। अच्छा चलिए ये बताइए, जैसे आप बता रहे थे आपके 6 भाई है, आप इकलौती बहन है, तो भाई बहनों के साथ आप कुछ खेलते थे? खेल
5: खेलते थे ना, घर में खेलते थे भाई बहनों के साथ।
4: अच्छा, तो कौन सा खेल हमको भी पता चले उस समय क्या?
5: उस समय तो यही थे ना, आंख मिचोली, छुपा छुपी और खो खो खेलना, चंगा पो खेलना, भाइयों के रात में बैठ के खेलते थे बस, दिन में तो टाइम मिलता नहीं था।
4: तो आप मम्मी को हेल्प कराते थे घर के काम में?
5: घर के काम में हेल्प कराती थी, जब तो कोई बहू नहीं थी, मम्मी और हम ही थे अकेले।
4: जी जी, फिर आपके सामने ही भाभियां आ गई होगी?
5: मेरे सामने 3 भाभियां आ गई थी, उसके बाद मेरी शादी हुई।
4: जी जी, तो भाभियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
5: अच्छा व्यवहार, भाभियां तो बहुत प्यार करती थी, बहुत, मेरे कपड़े तक मेरी भाभी ही धोती थी शादी होने के बाद में भी।
4: जी जी जी, इकलौती ननंद है, सभी का प्यार मिला?
5: सभी का प्यार मिला, कभी कोई कभी कोई कभी वो।
4: जी, और वो कहते हैं ना कि भले कितनी भी बेटी प्यारी हो लेकिन माताओं की आदत होती है बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना, तो ससुराल जाएगी तो ये वो। तो आपको भी आपके मम्मी बीच बीच में शिक्षा संस्कार देते थे?
5: देते थे, घर का काम कराते थे, सिखाते थे, रोटी बनाना सिखाते थे, सब्जी रोटी चाय पानी सब मम्मी ने सिखाया था, भाभियों ने सिखाया, जब आज हम सही है यहाँ पे।
4: जी जी, और सिलाई कढ़ाई बुनाई ये कहाँ सीखी?
5: ये यही आके सीखा सारा। अच्छा, स्कूलों में सिखाते थे ना सिलाई के लिए बढ़ाई, वो तो सब कागज के वो बनाने सब स्कूलों में सीखा था।
4: अच्छा, तो स्कूल में सीख करके फिर आप घर पर बनाते थे?
5: घर पे बनाए, थैलिए बनाई, कसीदे की और सब कुछ बनाए, बैग बनाए और सामान बनाए।
4: जी जी जी, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
5: मैं 18 या 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी, 8th में।
4: 8वीं पास होने के बाद आपकी शादी हो गई?
5: मेरी शादी हो गई थी।
4: तो आपको बीच में गैप नहीं मिला थोड़ा घर पर रहने का?
5: नहीं, वैसे तो गैप मिला ना, उस समय तो मैं 15-16 साल की थी आंटी में पड़ी जब, फिर 2 साल मेरे को घर पे रेस्ट करवाया ना, बीमार थी जो, उसके बाद बोलेगा अब शादी कर देते हैं, इसकी पढ़ाई कर देते हैं, ये तो और कुछ हो जाएगा इसको, ऐसा सोचते थे घर वाले,
4: पढ़ाई कर देंगे तो कुछ नहीं होगा।
5: हाँ, ऐसा पुराने जमाने में ऐसे लोग सोचते थे ना। तो फिर 80 में मेरी शादी हुई थी।
4: अच्छा, तो 80 में फिर आपकी शादी हो गई?
5: 1980 में मेरी शादी हुई थी।
4: तो शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए?
5: शादी के बाद तो वही गृहस्थी संभालो, घर का काम करो, बच्चों को संभालो।
4: नहीं, बच्चे तो बाद में हुए होंगे, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे?
5: हस्बैंड प्रिंसिपल है।
4: अच्छा, प्रिंसिपल है, मतलब आपका सपोर्ट करते थे?
5: हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं, अभी भी करते हैं, सब में सपोर्ट करते हैं।
4: और घर में उस समय कौन कौन थे जब आप शादी करके आए? तब
5: मैं शादी करके आई जब मेरी जेठ जेठानी और हम दोनों, मैं और मेरा हस्बैंड, 4 जने थे।
4: सास ससुर नहीं थे?
5: ससुर नहीं थे मेरे,
4: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी।
5: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, मेरे हस्बैंड 12 महीने के थे जब भी उनकी डेथ हो गई थी।
4: सास ससुर दोनों की?
5: सास तो थी, ससुर पहले गुजर गए थे, फिर इन्होंने पढ़ाई करी जब सास भी गुजर गई थी, एसटीसी करी माउंट आबू से, फिर जब सास गुजर गई थी फिर इनकी नौकरी लग गई एसटीसी करने के बाद, फिर हमारी शादी हुई।
4: तो फिर आपके जेठ जेठानी ने आपका सारा काम किया?
5: सारे काम उन्होंने किया, जेठ जेठानी।
4: जी जी,
5: वही सास ससुर के बराबर ही है मेरे।
4: जी जी, आपने तो उन्हीं को देखा है।
5: उन्हीं को देखा है मैंने, यही है सास ससुर।
4: बिल्कुल, समझदार के लिए तो यही है,
5: यही है। हम कहाँ जाएंगे, नहीं तो किसके यहाँ जाएंगे, शादी करी तो उनको ही सम्मान देना है ना।
4: सही बात है। आप जैसे शादी करके अपने ससुराल में आए तो आपने देखा कि जेठ जेठानी आपके सास ससुर है, तो कैसे रहते थे आपस में, रिश्ता कैसा रहा आपका आपके जेठ जेठानी के साथ?
5: हमारा दोनों का रिश्ता अच्छा रहा था, आपस में साथ में ही निभाए 20-25 साल तक। फिर वो पोस्ट मास्टर थे तो इनका बार बार ट्रांसफर होता था जेठ जी का, तो फिर मेरे को अकेला ही रहना पड़ता था इनके साथ में। उनके भी बच्चे नहीं है, जेठ जी के भी एक ही लड़की थी जो उसकी शादी कर दी।
4: अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं?
5: मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं।
4: 4 बच्चे हैं।
5: 4 बच्चे हैं।
4: जब आप शादी करके आबू में आए, एक तो जोधपुर इतना बड़ा शहर, फिर जोधपुर से आप एक कस्बे में आए, तो यहाँ आपका मन लग गया?
5: नहीं लगा था मन, बहुत अभी तो बहुत अच्छा हो गया, पहले तो वीरान था पूरा। मैं शादी करके आई जब कुछ भी नहीं था, और मैं तो देख देख के रोती थी, खाना भी नहीं खाती थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ यहाँ पे, मेरे को तो जोधपुर छोड़ के आओ, ऐसे करती थी। फिर धीरे धीरे सेटल हुए, फिर ये नौकरी पे जाते, फिर मैं अकेली रहती दिन भर, जब तो बच्चे ही नहीं थे और नई नई किससे बात करूं मैं, तो मैं अकेली कमरा बंद करके बैठी रहती थी, रोती थी अंदर ही अंदर।
4: आपके माता पिता ने ये नहीं देखा कि बच्ची इतनी लाड़ प्यार से पली हुई है, एक गांव में दे रहे हैं, उस समय आज तो फिर भी कस्बा है, उस समय तो आप कह रहे कि वीरान था, तो उस समय कुछ था नहीं, तो उनको थोड़ा सा ये नहीं लगा कि बच्ची कैसे सेट होगी वहां?
5: उनको बहुत लगा था, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था, 4 बार रिश्ता तोड़ा है 4 बार।
4: अच्छा,
5: मेरी मम्मी ने तो बिल्कुल कह दिया मेरी एक ही लड़की है, मैं बाहर नहीं दूंगी, रोने लग गई थी वो भी, पर अब किस्मत ने यहाँ लाया साथ तो फिर क्या करे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं बाहर नहीं दूंगी।
4: जी जी, फिर कैसे हुआ यहाँ पर आपके पिताजी?
5: अगले ने भी जिद करी, इन्होंने भी जिद करी कि नहीं हमको लड़की यही पसंद है, हम तो यही करेंगे।
4: और आपके पिताजी भाई लोग का फोर्स था क्या?
5: सपोर्ट दिया ना, फिर क्या करें कि भाई करो जिद कर रहे तो। बाकी मेरे खानदान में कोई बार नहीं है, मैं अकेली बार हूं।
4: तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया रही?
5: उस पुराने जमाने में तो हमसे बात ही कहाँ करते थे पहले, वो तो बड़ों ने जो कर दिया वो सही है, हमने ना आदमी को देखा ना किसी को देखा।
4: अच्छा, देखने का सिस्टम था ही नहीं तो देखा ही नहीं।
5: मेरी शादी के टाइम तो सिस्टम था ही नहीं, पूछते ही नहीं थे।
4: जी जी जी, बस जो बड़ा ने किया वो पत्थर की लकीर,
5: पत्थर की लकीर हो गई।
4: तो जब आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि वीरान है, मतलब मन नहीं लग रहा है, तो आपके हस्बैंड से आपने बात नहीं की कि कहीं अच्छे शहर में सेट हो जाए?
5: नहीं तो वो नौकरी का इशू था ना भाई, बाहर नौकरी तो यहीं लगी हुई थी ना, फिर बार बार इनके ट्रांसफर होते रहते थे, तो फिर ये अप डाउन करते थे पास में, अलादरा है जैसे, आतल है, चार पांच जगह इन्होंने नौकरी करी, फिर मावल, ये तो मावल तो आबू रोड में ही था जो चल गया।
4: जी जी, छोटे छोटे गांव में
5: डीन की प्रमोशन होता रहता था बार बार।
4: जी जी, इसलिए आप जा नहीं पाते, बड़े शहर में हो तो आप चले जाओ।
5: चली जाती, नहीं तो मैं छोटे शहर में मैं क्या करूंगी जाके, जब एक जगह ही अपना रहना है तो। फिर दो बच्चे छोटे थे दोनों, एक इनको लेके कहाँ घूमती इधर उधर।
4: और आपके जेठ जेठानी बाहर रहते थे?
5: जेठ जेठानी का ट्रांसफर हो जाता था हर तीन साल में, तो फिर वो बाहर जाते थे, तीन साल यहाँ रहते, तीन साल बाहर रहते थे।
4: अच्छा, इसलिए आप बिल्कुल ही अकेले रह जाते
5: हो? गई थी मैं बिल्कुल, छोटे से घर में रहती थी फिर।
4: तो आपके जेठ जेठानी को बोला नहीं कि मैं अकेले, मतलब मेरा मन नहीं लगता है कि आप लोग ट्रांसफर मत होना?
5: कभी तो मजबूरी थी ना, नौकरी थी, उनकी भी तो ट्रांसफर होता था ना, उनके तीन साल फिक्स होते थे, हर तीन साल में ट्रांसफर हो जाता।
4: जी जी, तीन साल में आपको जाना ही है,
5: चाहे आप कैसे भी रहो।
4: जी जी, और जैसे आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई आती थी, तो आप अकेले पढ़ते थे कि जैसे आपके हस्बैंड जॉब पर चले जाते थे, आप अकेले हो घर में, तो आपने कैसे समय व्यतीत किया? इन चीजों में ध्यान दिया, सिलाई कढ़ाई बुनाई में, भजन सत्संग में, या फिर कैसे आप भाई? रोज अकेले रहना, रोना, वो तो अच्छी बात नहीं है।
5: नहीं तो घर का काम तो करना पड़ता था ना मेरे को पीछे, जैसे घर का काम करना, बच्चों को रखना, ऐसे ये स्वेटर वेटर बना लेती, टोपे मोजे और ये बनाती बैठे बैठे सर्दी में, फिर बच्चों को रखना भी तो मेरे को ही पड़ता, जब इनको सुला के फिर घर का काम करती। पहले नौकर चाकर कहाँ थे, कोई संभालने वाला भी नहीं, सास नहीं, जेठानी नहीं, ननद नहीं, कौन संभालता?
4: जी बिल्कुल, तो इन चीजों में ध्यान दिया, और जरूरी भी है, और बच्चे होते हैं जिस घर में, वहां तो टाइम कैसे बीतता पता ही नहीं चलता,
5: इसीलिए मैंने बच्चों के साथ ही जिंदगी लगाई। फिर धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाने लगी बच्चों को, छोटे बच्चों को, पांचवी तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो दिन उसमें पूरा हो जाता था मेरा।
4: क्या बात है, आपने आठवीं तक पढ़ाई की, और आज के युग के पांचवी तक के बच्चों को आप पढ़ा लेते?
5: पढ़ा लेती थी सारा,
4: क्योंकि आपके समय में तो इतनी अंग्रेजी नहीं थी।
5: मैं तो अंग्रेजी मीडियम से ही पढ़ी हुई हूँ आठवीं तक, तो मेरे को इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है।
4: अच्छा, चलो ये आपका अच्छा रहा। तो आप फिफ्थ तक के बच्चों को आराम से पढ़ा लेते?
5: पढ़ा लेती थी, पहले तो इतनी हाई फाई किताबें नहीं थी ना छोटे बच्चों की, पांचवी तक तो नॉर्मल ही था, इंग्लिश भी कहा एबीसीडी और यही होते थे, स्पेलिंग है वो ही होती थी, अब ये कोर्स तो अब भारी हुए।
4: हाँ जी हेमलता जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: और आपकी भी पढ़ाई वापस रिपीट हो जाती थी।
1: जी हाँ, वापस रिपीट हो जाते, वो नॉलेज भी रहता ना कोई चीज का पढ़ाने से, कि भाई इसको ये पढ़ाना, इसको ये पढ़ाना।
0: जी, और आपके जैसे बता रहे थे कि आपके चार बच्चे हैं, तो कैसे आपने बच्चों की परवरिश की अकेले हाथ, क्योंकि आपके जेठानियां रहते नहीं थे, अकेले आपको रखना, आपके हस्बैंड भी पूरे दिन झोप पर रहते थे, तो कैसे उनका पालन पोषण किया आपने?
1: मेरा बड़ा वाला तो जोधपुर हुआ था, तो 5-6 महीने तो मैं उसको वहीं से करके लेके आई थी, फिर यहाँ आके फिर जेठानी ने थोड़ा रखा, थोड़ा हमने संभाला, ऐसे करके साल भर का हो गया वो बड़ा। फिर तो धीरे धीरे परवरिश करती रही, फिर 83 में दूसरा नंबर का लड़का हुआ, 83 में, और 90 में दोनों गुड़िया हुई, ट्विंस।
0: अच्छा, ट्विंस हुई?
1: ट्विंस हुई दोनों मेरी गुड़िया।
0: ओ, ट्विंस को तो रखना बहुत मुश्किल है।
1: तो फिर काम वाली भाई रखी थी ना, मालिश वाली और सब, फिर दो को तो मैं कैसे संभालती, मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई सास नहीं, कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं।
0: बहुत जने क्या करते, ट्विंस होते तो एक को पियर छोड़ देते, एक को अपने पास रखते, तो आपने ऐसा तो नहीं किया?
1: नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मेरे बच्चों को मैंने ही परवरिश की दोनों की।
0: आपके पियर वालों ने तो कहा होगा एक बच्चे को छोड़ दो।
1: आई थी ऐसे तो मम्मी आई थी रहने के लिए, भाई 2-4 महीने रहती फिर चली जाती, फिर आती फिर चली जाती, उनका भी बुढ़ापा था तो फिर इतना सहन नहीं होता ना। फिर मैं काम वाली लगा दी थी मेरे, वो रखते थे फिर सब, और दोनों बच्चे संभालते थे गुड़िया को जब मैं खाना बनाती।
0: जी, आपके दोनों बेटे थोड़े बड़े हो गए?
1: बड़े हो गए थे ना मेरे, एक 8 साल का था, एक 10 साल का था, तो दोनों में उनमें ज्यादा फर्क नहीं रहा, उनमें 2 साल का ही डिफरेंस था, 2 साल बाद दूसरा हो गया था, इनमें ज्यादा 10 साल का डिफरेंस रहा था।
0: अच्छा, दोनों बेटियां जो हुई और बेटा के बीच 10 साल का गैप?
1: 10 साल का गैप है, ये 90 में हुई थी, वो छोटा वाला 83 में हुआ था, और बड़ा वाला 81 में हुआ था, तो 2 साल का उनके गैप रहा, और इनके साथ 10 साल का रहा।
0: तो बच्चे थोड़े रखने जैसे हो गए, बड़े हो गए?
1: बड़े हो गए थे रखने जैसे, तो दोनों गुड़िया को रखते थे, स्कूल भी जाते थे बच्चे दोनों।
0: जी जी जी, हाँ, स्कूल भी जाते थे, फिर वो जाते थे उस समय आप रखते, आपने वैसे ही काम वाली माई लगा रखी थी?
1: रखी थी, और फिर इसके पापा भी जाते सुबह, उनका टिफिन बना के देना, काम तो बहुत मजबूरी से बहुत दुखी से कराए, आज कहीं जाके सुख आया है।
0: कहते हैं ना, दुख सुख जीवन के साथ चलते हैं,
1: जोड़ा होता है ना दोनों का ही।
0: जी जी, चार बच्चों के खैर अकेले हाथ परवरिश करना बहुत ही मुश्किल होता है, और फिर आप इतने लाड़ प्यार से पियर में पले हैं, तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना, घर में भतीजे भतीजे को बड़ा किया हो तो उनके लिए थोड़ा सरल है?
1: सरल है ना, कराना बड़े को, भतीजे भतीजे 3 की शादियां हो गई थी मेरे से पहले, तो उनके भी तो बच्चे थे ना, उनको संभालना, सारा घर का काम देखना सब करती थी मैं,
0: तो फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस थी?
1: प्रैक्टिस थी मेरी कि भाई बच्चों को कैसे संभालना है,
0: इसलिए इतना मुश्किल नहीं लगा।
1: इतना मुश्किल नहीं लगा, गृहस्थी संभालना मुश्किल नहीं लगा।
0: जी जी, लेकिन जब टिफिन बनाना होता है, एक साथ में बना के देना पड़ता, उस समय मुश्किल होता?
1: क्या मैं तो मुश्किल ही भाई, बनाना तो अपने को ही है ना, दूसरा थोड़ी बनाएगा।
0: बिल्कुल, 3 जनों का टिफिन, फिर 2 बच्चों को संभालना,
1: बच्चों को संभालना सारा।
0: जैसे आपने कहा कि काम वाली बाई लगाई आपने, तो काम वाली बाई क्या करते थे, बच्चों को खिलाने के लिए लगाई या घर के काम में?
1: दोनों काम करती थी काम वाली बाई, बच्चों को भी रखती थी और घर का काम भी करती थी, पूरे दिन के लिए लगा रखी थी, जैसे बच्चे सो रहे तो भाई घर का काम कर लेती, बच्चे उठ गए तो उनको संभाल लेती, एक को मैं संभाल लेती, ऐसे करके 5 साल तक उनको बड़ा किया। 2 साल तक तो मैं पियर ही नहीं गई, बाहर ही नहीं निकली घर से, 2 बच्चों को लेके कैसे जाऊं।
0: तो फिर आपके पियर वाले मिलने आते आपसे?
1: आते थे ना पियर वाले मिलने, आते थे कभी भैया भाभी आ जाते, कभी मम्मी आ जाती, कभी कोई आ जाता।
0: पर आपके तो जैसे हस्बैंड के प्रिंसिपल की जॉब थी, तो छुट्टियों में तो छुट्टियां ही छुट्टियां, उस समय जा सकते थे?
1: तो 1.5 महीने की छुट्टी पड़ती ना जब, तो फिर बच्चों को कैसे संभालना, बाहर कैसे लेके जाना दोनों बच्चों, आगे तो कोई गाड़ियां वाड़ियां कोई सुविधा नहीं थी, वही बस में जाओ या ट्रेन में जाओ, फिर 80 का पात्र बनता, इसलिए मैंने कहा मेरे तो कहीं नहीं जाना 2 साल तक।
0: अच्छा, नहीं, आपके हस्बैंड भी तो साथ में आ सकते थे ना?
1: आ सकते थे, पर बच्चों को तो मेरे को ही संभालना था ना भाई, तो अब एक को दूध पिलाऊंगे दूसरे को।
0: अच्छा, इसलिए आप नहीं जाते
1: नहीं
0: थे?
1: गई, मैं 2 साल तक कहीं नहीं गई, घर से बाहर ही नहीं गई मैं।
0: चलिए हेमलता जी, फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हू वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में ये अवेलेबल है और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है और कैसे एक सुंदर दुनिया की स्थापना।
2: नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, पर जब बात हक की आए तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी, तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं और हम पूछना चाहेंगे हेमलता जी से कि जैसे हेमलता जी आपने बताया कि आपके ट्विंस बेबियां थी, दोनों गुड़िया थी, तो 2 साल आप मायके नहीं गए। परिवार में कहते ना कि कहीं शादी ब्याह भी होते हैं, कहीं कोई प्रसंग भी होता है, तो फिर सारे आपने छोड़े?
3: सारे छोड़े मैंने, मेरी सारी इच्छाएं खत्म कर दी थी, मैंने कहा कहीं नहीं जाऊंगी 2 साल।
2: लेकिन 2 साल में भी कहां बच्चे बड़े हो पाते हैं।
3: फिर भी बैठने लायक उठने लायक तो हो ही जाते हैं ना बच्चे बड़े, जैसे चलना फिरना या कोई गोदी भी ले सकता है, और इतने से छोटे बच्चे को लेके तो कोई संभाल नहीं सकता ना।
2: जी जी, फिर तो कोई भी गोदी में ले ले तो फिर जा सकते।
3: बच्चे को तो कोई भी गोदी में उठा सकता है, कोई भी घुमा सकता है, घूम जैसे हो जाते बच्चे 2 साल के।
2: जी जी, तो 2 साल के बाद आपने आना जाना शुरू किया।
3: शुरू किया 2 साल के बाद।
2: और अभी बच्चे कितने बड़े हैं?
3: अभी तो शादियां हो गई, उनके बच्चे भी हो गए तो चारों के।
2: क्या बात है, तो अभी तो आप दादी नानी बन गए।
3: नानी बन गई ना।
2: तो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए।
3: कहाँ जिम्मेदारियां, तो और बढ़ती जाती है, कभी इसका कभी उसका कभी बेटों का।
2: कहते ना मूल से भी ब्याज प्यारा लगता
3: प्यारा होता है।
2: तो फिर भी अभी आप काफी हद तक फ्री है।
3: फ्री है काफी हद तक, तो फ्री है। फिर घर की स्थिति ऐसी है ना, मेरे पति को कैंसर हो गया तो उनके तकलीफ है, उनको खाने पीने का टाइम टाइम दवाई देना सारा देखना पड़ता है, बच्चे छोटे हैं मेरे, दोनों बच्चों के डायलिसिस हो रहा है, देख किडनी की प्रॉब्लम है जो।
2: अच्छा, पोते पोती क्या?
3: पोते पोती को।
2: अच्छा, तो ये शारीरिक व्याधियां आ गई।
3: हाँ, ये परेशानियां हो गई ये सब।
2: जी जी, तो आपका समय सेवा करने में जाता है?
3: करने में ज्यादा लगता है मेरा समय, इसलिए मैं किसी को टाइम नहीं दे सकती बाहर, मजबूरी में इधर उधर, जैसे संगीत में चली जाऊं या भजन में या विश्वविद्यालय में आ जाती हूँ टाइम।
2: जी जी, सत्संग में आप थोड़ा सा समय देते हैं?
3: हाँ, ज्यादा नहीं, बुधवार 11 को बस, 2 बार।
2: अच्छा, या तो बुधवार या 11,
3: दोनों में से एक दिन जाती हूँ, जब जब ये बच्चे घर पे रहते हैं जब जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती।
2: अच्छा, सभी साथ में है, दोनों बहुएं साथ में?
3: सब साथ में, सब साथ में।
2: तो बच्चों के कैसे हो गया, बचपन से था, जन्म से?
3: नहीं था, ये तो इनकी वो क्या बोलते रहे, जेनेटिक प्रॉब्लम हुई है।
2: अच्छा, और आपके हस्बैंड को कितने साल से कैंसर है?
3: मेरे हस्बैंड को तो 5 साल हो गए, कोरोना में हुआ था।
2: अच्छा, कोरोना के समय हो गया,
3: ऑपरेशन करवा दिया, वो तो था जो सारा दांत में कैंसर हो गया था, तो हमने तो पूरा जबड़ा ही निकलवा दिया एक साइड का, ना बड़े आगे ना कुछ हो गए।
2: तो कभी बीड़ी सिगरेट या तंबाकू खाते थे क्या?
3: कुछ नहीं, बाजार का नाश्ता तक नहीं करते मेरे हस्बैंड।
2: फिर भी कैंसर हो गया, तो अभी ठीक है?
3: हाँ अभी ठीक है
2: सब। तो अभी उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है?
3: नहीं, जिम्मेदारी तो है ही ना, अभी उनका सारा खाना बनाना, लिक्विड लेते हैं, खा नहीं सकते, एक एक तरफ का जबड़ा निकला हुआ तो एक तरफ चबा नहीं सकते, फिर उनको लिक्विड बना के देती हूँ, जूस बना के देती हूँ, पेजी बना के देती हूँ टाइम टाइम से, फिर उनको दवाई देना।
2: जी जी जी, पर कहीं मान लीजिए आपको अंदर बाहर जाना पड़ता है तो बहुएं संभाल लेती?
3: हाँ, बहुएं संभाल लेती है, और टाइम से अगर जो होता है तो मैं करके चली जाती हूँ, नहीं तो बहू संभाल लेती।
2: जी जी जी, और आपके बच्चे क्या करते हैं, बेटे बेटियां जॉब करते हैं, उनको कितना पढ़ाया आपने?
3: मेरे बच्चे, छोटा वाला बेटा तो मेरा एक्सियन है पीएचडी में, बड़ा बेटा एमबीए करा हुआ है, वो शेयर मार्केट का काम करता है, बड़ी बहू फार्मेसिस्ट है उदयपुर में मेडिकल कॉलेज में, और दोनों बेटियां एमए बीएड करी हुई है।
2: अच्छा, तो बेटियां भी जॉब करती
3: है? नहीं, जॉब नहीं करती अभी, दे रही है, फाइट दे रही है।
2: जी जी, लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा है?
3: अच्छा दिया, सारा परिवार पढ़ा लिखा है सारा।
2: तो आपका कमी खली वो आपने अपने बच्चों में पूरी कर दी?
3: उन्होंने पूरी कर दी मेरी, सारे जीवन में खुशियां दे दी, सब कुछ, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब, सारी खुशियां दे दी उन्होंने।
2: जी जी जी, तो अभी आप अपने जीवन में खुश है?
3: खुश हूँ मैं, बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मेरे जीवन।
2: जी, तो आप हमारी जो बहनें सुन रही है, जो सीनियर सिटीजन बहनें हैं 60 प्लस वाली, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कितनी बार क्या है कि महिलाओं के जैसे सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते, लेकिन सास बहू के किटपिट होती रहती, तो आप क्या कहेंगे?
3: नहीं, हमारे कभी सास बहू में किटपिट नहीं हुई है आज तक।
2: तो कैसे आप बहुओं को किस नजर से देखते हैं?
3: बेटी की नजर से देखते हैं, और क्या करें, जब अपने को सुखी रहना है तो अगले को जैसा ढलना चाहिए इंसान। और मेरा यही निवेदन है कि सभी बहनें 60 से ऊपर से हो गई है, तो यही निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में अपनी खुशी के लिए सबको त्याग दो, किसी को ये मत कहो कि तू मेरी बहू है, तू मेरा वो है, अपन खुद मम्मी बन के रहो सबके साथ में। तो आपको भी यही कहना है मेरा कि आप भी ऐसे ही जीवन में जियो तो खुश रहोगे। आज के जमाने में बहुओं को टोका टोकी करना ही नहीं, ना करने से चार बात अपने को सुनने को मिलेगी, इसलिए मुंह को बंद रखो, आंखों से देखो और हंसते रहो।
2: क्या बात है बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया है कि 60 प्लस वाली बहनें जिनके घर में बहुएं आ चुकी है, उनके साथ प्यार से रहो, ज्यादा टोका टाकी न करो, ताकि बैलेंस बना रहे और घर में शांति बनी रहे, माहौल अच्छा रहे। तो हेमलता जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने बहुत ही सुंदर अपने जीवन के अनुभव शेयर किए, रेडियो मधुबन को समय दिया और हमारे सभी श्रोता बंधुओं के साथ आपने अपने अनुभव शेयर किए, इसके लिए
3: धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए थे, आबू रोड से है आप। आपने भले पढ़ाई 8वीं तक की है, लेकिन आपका नॉलेज देखे कितना है। आज आप अपनी बहुओं के साथ शादी करके आए तो

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभातम। सब कैसे हैं? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। चलिए, प्रभा पंडिता इन सभी श्रोताओं का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती है। अब शुरू करते हैं आज की कहानी से। एक छोटा सा कस्बा में अरुण पुनिया नाम का एक पुलिस वाला रहा। उसकी पहचान थी ईमानदारी की मिसाल। वो जितना सख्त अपराधियों के लिए था रहा, उतना ही दयालु गरीब और निर्दोषों के लिए। उसको अपने काम से सच्चा प्रेम था। अरुण का मानना था कि पुलिस वर्दी का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। उसके यही विचार ने उसको बाकी अफसरों से अलग बना दिया था। एक दिन की बात, एक सुबह थाने में सूचना आई कि पास के गांव में एक व्यापारी के घर में चोरी हुई है। लाखों के गहने और नकदी गायब थे। अरुण तुरंत टीम लेकर मौके पर पहुंचा, आसपास पूछताछ की, साक्ष्य जुटाए, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इसी बीच उसके सीनियर अधिकारी ने कहा, अरुण, मामला जल्दी निपटाना है, मीडिया में खबर फैल गई है, किसी को भी पकड़ लो, बस केस बंद करो। अरुण चुप रहा। उसको मालूम रहा कि गांव का गरीब मजदूर रामलाल पहले भी झूठे आरोपों में फंसाया जा चुका है, और ये बार फिर वही निशाने पर रहा। अरुण ने आदेश मानने के बजाय खुद जांच जारी रखी। रात दिन सबूत ढूंढता रहा। उसने पाया कि व्यापारी के ही एक रिश्तेदार ने बीमा के पैसे के लालच में खुद चोरी का नाटक रचा था। अरुण ने सबूत जुटाकर सच्चाई सबके सामने रख दी। जब अपराधी पकड़ा गया तो व्यापारी की आंखों में शर्म और अरुण के लिए सम्मान दोनों थे। सीनियर अधिकारी नाराज थे क्योंकि अरुण ने ऊपर के आदेश नहीं माने थे। उसको ट्रांसफर कर दिया गया एक दूर के थाने में। लेकिन अरुण मुस्कराया और बोला, पोस्टिंग चाहे कहीं भी हो, ईमानदारी का ट्रांसफर नहीं होता। का शिक्षा मिली, ईमानदारी कभी आसान नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी ताकत होती है। सच्चा पुलिस वाला वही है जो वर्दी को डर नहीं, भरोसे का प्रतीक बनाए। हर व्यवस्था को एक अरुण पुनिया की जरूरत होती है, जो सच के लिए अकेला खड़ा रहे। आप क्या कहते हैं? आशा करते हैं कि आप भी यही सोचते होंगे, अपने बच्चों में यही संस्कार डाले कि जो कहावत है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक मतलब का जरूरी नहीं कि हम रघुकुल के हों, हम चंद्रवंशी ही हों, लेकिन अगर हम जीवन में सच्चाई से चलते हैं तो अपना एक अलग मुकाम भी बना सकते हैं और समाज में एक अलग अपना का कहते हैं एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। कहे कि आज आपको एग्जाम्पल सेट करने वाले भी तो चाहिए ना, कि भाई कौन करता है आज के ज़माने में इतनी ईमानदारी, और जब बड़े कह रहे हैं तो। लेकिन नहीं, उन्होंने किया और आज एग्जाम्पल सेट किया, अपने बच्चों में यही संस्कार डाले, संकल्प से सिद्धि। हर रोज उठते ही पहला संकल्प परमात्मा का धन्यवाद करें, उसके बाद बार बार मन में बोले, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, स्वयं भगवान मेरे साथ है, मेरी सफलता निश्चित है। ये संकल्प जितना बोलते जाएंगे उतना होता जाएगा, यानी आपके लाइफ में सफल होते जाएगा, घटित होते जाएगा। कहे कि सुबह सुबह मन एकदम फ्रेश रहता है ना, रात भर सो के उठे हैं तो बुद्धि भी एकदम फ्रेश रहती है, उस समय जो डाल दिया वो पक्का हो जाता है। जीवन टेस्ट है, खुशियाँ रेस्ट है, ज़्यादा सोचना वेस्ट है। कहे कि हम खुद ही संसार में गेस्ट हैं, इसलिए स्वयं खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, यही हमारे लिए बेस्ट है। तो क्या करिएगा, स्वयं भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, यही सच्ची सच खुशी है। अपने आप के लिए तो कोई भी कर लेता है, लेकिन नहीं, सबके लिए हम प्रार्थना करें कि सभी खुश रहे। सच्ची करुणा वही है जिसमें किसी निर्बल की पीड़ा अपनी ही पीड़ा प्रतीत होती है। जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के किसी असहाय प्राणी के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं संकट में खड़ा होता है, तब उसका साहस केवल एक जीवन नहीं बचाता, बल्कि समाज में मानवता और धर्म की भावनाओं को भी सुदृढ़ करता है, जैसे कि उस सिपाही किया। जहाँ सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। ये बात को भी अपने गांठ में बांध के रख लीजिए, एक एक बात बहुत पते की है। हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ कर्म देते हैं और कुछ स्वयं भगवान। इसलिए मन को शांत रखिए और अपना कर्म करते रहिए। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो, ये प्रार्थना हम करते हैं। जैसे कि हर दिन आपके खुशी आपके कदम चूमे कहते हैं, वैसे उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम स्नेह और सम्मान की भावना है। हेलो हेलो कट गवा। चलिए भाई, ये बात पे गीत सुन लेते हो, के बाद आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, सुनिएगा गीत।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

0: बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान की धरती पर महाराज वीरेंद्र सिंह का विशाल राज्य रहा। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमार का विवाह रहा। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया रहा। महल के बाहर विशाल मंडप बना रहा और दूर दूर से राजा, सामंत, सैनिक तथा प्रजा विवाह समारोह में शामिल होने आए रहे। महाराज ने भोजन की व्यवस्था के लिए अपने विशेष हेलो
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे
1: दीदी?
0: एकदम ठीक है, आप कैसे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं, आनंद में हैं। कार्यक्रम सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, अभी अभी आपने जो कार्यक्रम में शुरुआत की बहुत अच्छा लगा दीदी।
0: जी
1: कहते हैं कि सच्चाई हमेशा बोलना ही चाहिए,
0: ईमानदारी। जी
1: कभी कभी क्या होता है, मैं दीदी मेरी बात बताता तो मैं कभी झूठ बोल नहीं पाता और मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है तो मैं नहीं झूठ बोल पाऊँ क्योंकि मैंने कभी झूठ बोला नहीं है। और कहते हैं कि एक झूठ सौ झूठ बोलवाता है,
0: दस झूठ बोलना पड़ता है एक झूठ की वजह से।
1: सच याद नहीं रखना पड़ता, झूठ याद रखना।
0: हमने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, कहीं गलत तो नहीं बोले, बिल्कुल सच्ची है तो हर जगह वही बात निकलेगी, कोई आगे पीछे नहीं।
1: हम इसीलिए हम हमारे बच्चों के हम यही के शिक्षा देते कि कभी झूठ नहीं बोलना
0: जी,
1: सच्ची बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। झूठ बोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सच का जो पता चलेगा तो कहीं ना कहीं सामने वालों को बहुत दुख होगा, इसीलिए झूठ कभी नहीं बोलना है।
0: जी
1: वही बात है, सच ही कह देना
0: जी,
1: क्योंकि हम झूठ बोलते हैं भगवान का हम गुनहगार भी बनते हैं। झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई भी राह चलना है। कहते हैं कि सच्चाई की हमें जीत ही होती है, इसीलिए सच्चाई पर चलना है, सच्चाई के सच्चाई के साथ चलना है। झूठ कर लिया आपको जो हमारा काम दीदी, हम सिलाई काम करते हैं, फिर भी मैं कई लोग झूठ बोलते हैं दर्जी पर, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, मैं वो चीज सच बोलता हूँ। भाई हम आपका काम बाकी हम कर देंगे
0: जी।
1: लेकिन हम कभी कभी क्या बोलते हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं भाई आपका आपका काम हो गया है तो ऐसा करने का प्रेस करना है, ऐसा करना है, लेकिन बना ही नहीं होता है। और वो बोलते हैं कभी तैयार है तो ऐसा नहीं करना है। ग्राहक को हम सही बता दे कि भाई आदमी कल आप ले जाना तो कल उसको दे ही देना, तो ऐसा ऐसा चीज बोलना है। तो बहुत अच्छा लगे दीदी, हमारी तरफ से आपको हमारे सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस नवरात्रि थोड़ा दिन में आ रही है, आधा दिन रह गया है, आधा तो चला गया, आता रहेगा, तो बाद में नवरात्रि भी आएगी। तो सबको नमस्ते दीदी
0: जी,
1: ओम शांति,
0: ओम शांति। थैंक यू भैया। तो भैया ये सूरज भाई थे चौटाना से, तो सुन रहे हैं सभी प्रोग्राम, इसलिए फोन करके बता देते हैं तो अच्छा लगता है।

तो महाराज ने भोजन की व्यवस्था के लिए अपने विशेष सैनिकों की एक टुकड़ी नियुक्त की थी। उसका प्रधान था सेनापति रणधीर। उनका कार्य विवाह समारोह में व्यवस्था बनाए रखना था। रणधीर अपने कुछ सैनिकों के साथ महल के एक ऊंचे बुर्ज पर खड़ा होकर पूरे विवाह समारोह पर दृष्टि रख रहा था। तभी उनकी नज़र एक अधेड़ व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति बार बार भोजनशाला की ओर जाता, अपनी थाली में थोड़ा थोड़ा भोजन लेता, उतना ही खाता और फिर वापस आ जाता। कुछ देर बाद उसने भोजनशाला में खड़े सेवकों को निर्देश देना शुरू कर दिया। रणधीर को ये बात कुछ विचित्र लगी। वो अपने एक सैनिक को बुलाकर बोला, तुम यहाँ पहरा दो, मैं उस व्यक्ति से बात करके आता हूँ। रणधीर उसके पास पहुँचा और विनम्रता से बोला, भद्र पुरुष, क्षमा करें, मैं कुछ समय से आपको देख रहा हूँ। आप विवाह में अतिथि हैं, फिर भोजनशाला की व्यवस्था में इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं? वो व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, सेनापति जी, 4 महीने पहले मेरी पुत्री का विवाह हुआ था। मैंने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर 2000 लोगों के लिए भोजन बनवाया था। मुझे लगा था कि बेटी का विवाह है, इसलिए किसी को किसी वस्तु की कमी नहीं होने की चाहिए। वो कुछ देर रुका फिर बोला, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं रही। बहुत से लोग बिना आवश्यकता भोजन लेते रहे, किसी ने थाली में छोड़ा खाया और बहुत कुछ छोड़ दिया। कुछ लोग एक साथ कई व्यंजन ले आए और आधा भोजन फेंक दिया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। उधर बारात देर से पहुंची। जब बाराती भोजन करने आए तो कुछ व्यंजन समाप्त हो चुके थे। मेरे समधी बहुत नाराज हुए। विवाह तो हो गया, लेकिन आज भी मेरी बेटी को ससुराल में कभी कभी उसी भोजन की कमी का ताना सुनना पड़ता है। रणधीर ने उसकी ओर देखा। वो व्यक्ति आंसू पोंछते हुए बोला, उस दिन मुझे समझ आया कि भोजन केवल अन्न नहीं होता, किसी के सम्मान और मेहनत का परिणाम भी होता है। काश उस दिन कोई भोजन की व्यवस्था संभालने वाला होता तो शायद मेरी बेटी को ये ताने न सुनने पड़ते। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, अब जब भी किसी विवाह या उत्सव में जाता हूँ, भोजन की व्यवस्था पर ध्यान देता हूँ। जितना आवश्यक हो उतना ही बनवाया जाए, लोग उतना ही लें और जो भोजन बच जाए उसे ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाए। इसलिए मैं यहाँ भी यही कर रहा हूँ। वो मुस्कराया और बोला, सेनापति जी, अनुमति हो तो मैं भोजनशाला पर थोड़ी देर और निगरानी रख लूं। रणधीर की आंखें भी नम हो गई। उसने कहा, आपको अनुमति मांगने की जरूरत नहीं। आज से आप मेरे लिए सैनिक नहीं बल्कि अन्न के प्रहरी हैं। वो व्यक्ति भोजनशाला की ओर लौट गया। रणधीर उसे जाते हुए देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, राज्य की रक्षा करने वाले सैनिक तो बहुत हैं, लेकिन अन्न की रक्षा करने वाले कितने हैं। उस दिन से महाराज ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, थाली में उतना ही लो जितना खा सको। अन्न व्यर्थ करना अन्नदाता के परिश्रम का अपमान करना है। और तब से राजमहल में एक नई परंपरा शुरू हो गई। बचा हुआ भोजन फेंका नहीं जाता रहा बल्कि जरूरतमंद तक पहुंचाया जाता था। अन्न का एक एक दाना किसान की मेहनत, प्रकृति की कृपा और अनेक लोगों के परिश्रम से हमारी थाली तक पहुंचता है। इसलिए उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। अन्न बचाएं, अन्न का सम्मान करें। देखिए भाई, कितनी अच्छी बात है। अगर ये बात हर कोई नोट कर ले तो किसी गरीब पिता को अपनी बेटी की शादी में कम खाना बचा उसका ताना ना सुनना पड़े, क्योंकि जितना हम फेंकते हैं वो उतना भी बच जाए तो किसी का कम भी ना पड़े और कोई किसी का ताना भी ना सुने। एक ऐसा धन जिसे न चोर चुरा कर ले जा सकता है,
न ही राजा छीन सकता है, जिसका न भाइयों में बंटवारा हो सकता है, जिसे न संभालना मुश्किल व भारी होता है, और जो अधिक खर्च करने पर बढ़ता है वो है विद्या। विद्यादान ये सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। अगर किसी को विद्या दान दे सके तो इससे बड़ी बात और कहाँ हो सकती है। आशा है आप इन बातों में जरूर ध्यान देंगे और लोगों को भी इन बातों से जागृत करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जो अन्न पैदा कर रहा उसके ऊपर तो उपकार कर ही रहे होते हैं, यानी वो अन्नदाता किसान, लेकिन साथ ही साथ हम और लोग उस अन्न को हमारे घर तक पहुंचाने में जो कार्य करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक उदाहरण स्वरूप बनेंगे। आज जीवन में कमी नहीं है, लेकिन ओवर करके उड़ा देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कमी का एहसास करवाता है। वरना धरती पर इतना अन्न है कि कोई भी भूखा नहीं रहे, लेकिन कई लोगों की संग्रह करने की भी आदत होती है, इसलिए जिसको चाहिए उसको मिलता नहीं है और जिसको नहीं चाहिए उसके घर में सड़ते रहता है। अगर मनुष्य समझ ले कि नहीं भाई, जितना हमको चाहिए उतना ही हम जोड़ के रखें, तो कोई भी कम के वजह से भूखा ना रहे, यानी संतुष्ट रहे। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। इसलिए हालात जैसे भी हो मुस्कुराते रहो। किसी की खुशी देखकर यदि आप खुश होते हैं तो यकीनन आप एक खूबसूरत इंसान हैं। कहे कि आज के जमाने में यही तो नहीं होता। साथ के लिए स्वार्थ छोड़ दीजिए, पर स्वार्थ के लिए साथ मत छोड़िए। फिर देखिए संबंध कितने हमारे अच्छे होते हैं। अपने जीवन की बागडोर प्रभु को सौंप दीजिए, फिर विश्वास रखिए कि आगे जो भी होगा वो आपकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर होगा। कहे कि हम कई बार परमात्मा पे से ही भरोसा उठा लेते कि अरे भगवान भी नहीं सुन रहा। अरे नहीं भाई, वो जो करेगा उससे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। धन हमेशा के लिए मित्र नहीं होता, लेकिन मित्र हमेशा के लिए धन हो सकता है, यानी वो जरूरत पड़े पे आपकी मदद कर सकता है। मोती महंगे होते हैं, गंवाए नहीं जाते। दोस्त अनमोल होते हैं, भुलाए नहीं जाते, है कि नहीं। दुआओं की ताकत को कभी कम मत आंकिए। ये वो खामोश ऊर्जा है जो आपके असंभव कार्यों को संभव बनाने की सबसे बड़ी शक्ति है। इन बातों पे ध्यान रखिएगा, जीवन बहुत खुशनुमा हो जाएगा। कभी आशा की खुशी, कभी निराशा का गम। कभी आशा की खुशी, कभी निराशा का गम। कभी कुछ खोकर, कभी कुछ पाने की आशा। शायद यही है जिंदगी की परिभाषा, शायद यही है जिंदगी की परिभाषा। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। चलिए भाई, यही बात पर अब एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर बतियाएंगे। सुनिएगा मीठा सा गीतवा।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा

घर का सबसे छोटा बच्चा। 75 वर्षीय प्रकाश जी आंगन में अपनी खाट पर बैठे थे। सुबह से उन्होंने केवल 4 बिस्कुट और 1 कप चाय पी थी। दोपहर का समय हो चुका था और उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी। घर के भीतर उनका पोता पोती भोजन कर रहे थे। प्रकाश जी ने बहू को कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वो चुपचाप खाट पर बैठे रहे। सामने से कभी समोसे वाला निकलता, कभी पकौड़ी वाला। भोजन की सुगंध उनके मन की भूख को और बढ़ा देती। सामान्य दिनों में सुबह बच्चों के विद्यालय जाने के लिए भोजन बनता तो एक पराठा प्रकाश जी को भी मिल जाता था, लेकिन रविवार को भोजन देर से बनता रहा। आज बच्चों को भोजन मिल गया था, पर घर के उस बुजुर्ग को कोई पूछने वाला नहीं था। प्रकाश जी प्रातः स्नान करके भगवान की पूजा कर चुके थे और तब से भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भूख सहन नहीं हुई तो धीरे धीरे खाट से उठे और कांपते कदमों से रसोई में पहुंचे। बहू ने उन्हें आते देखा तो अपना सिर ढक लिया। प्रकाश जी बिना कुछ कहे भोजन की थाली निकाली। बहुत समय बाद वो रसोई में आए थे, इसलिए उन्हें

0: बर्तन ढूंढने में भी कठिनाई हो रही थी। उन्होंने भोजन पात्र से दो रोटियां निकाली, कुकर से चावल लिए, सब्जी और दाल थाली में रखी। फिर उनकी दृष्टि शीत कपाट में रखे दही पर पड़ी। उनका मन ललचा उठा। उन्होंने एक छोटी कटोरी में दही लिया और बहू से बोले, बेटी इसमें थोड़ा मीठा चूर्ण डाल दे, मेरी आंख अब ठीक से दिखाई नहीं देती। बहू ने चुपचाप दो चम्मच मीठा चूर्ण डाल दिया। प्रकाश जी बोले, एक चम्मच और डाल दे। बहू ने डाल दिया। दरअसल बेटे ने सर्दियों में प्रकाश जी को दही देने से मना किया था, कहे कि उन्हें जल्दी जल्दी जो काम हो जाता रहा। लेकिन उस दिन बहू ने कुछ नहीं कहा। प्रकाश जी अपनी थाली लेकर वापस खाट पर आ गए। भगवान को स्मरण करके उन्होंने भोजन करना शुरू किया। साधारण भोजन भी उन्हें आज कोनो पर्व के भोजन जैसा स्वादिष्ट लग रहा था। दही के साथ रोटी खाते ही उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। दरवाजे के पीछे खड़ी बहू सब देख रही थी। उसके मन में अचानक विचार आया, भोजन तो रोज जैसा ही था, आज बच्चों ने खाने के लिए बहुत आग्रह किया, इसलिए मैंने पहले उन्हें खिला दिया। लेकिन मैं ये भूल गई कि इस घर में भी एक और बच्चा भी है, और जो पटक कर पैर पटक कर अपनी भूख नहीं बताता, लेकिन उसे भी भूख लगती है। उसकी आंखें नम हो गई। अगले दिन से प्रकाश जी के लिए भोजन समय पर अलग रख दिया जाने लगा। बहू उनके लिए प्रतिदिन गर्म भोजन परोसती और सर्दियों में उनकी आवश्यकता के अनुसार गर्म छाछ भी देती। अब प्रकाश जी को भोजन मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बहू स्वयं समय पर उनकी थाली लेकर खाट के पास पहुंच जाती। प्रकाश जी प्रसन्न होकर उसके सिर पर हाथ रखते और आशीर्वाद देते। उन्हें लगता था कि बहू ने केवल भोजन नहीं दिया बल्कि उनके सम्मान और अपनत्व को भी लौटा दिया है। बुजुर्ग घर का बोझ नहीं, घर की नींव होते हैं। जौन प्रकार छोटे बच्चे अपनी आवश्यकता स्वयं नहीं समझा पाते, उही प्रकार वृद्ध भी कई बार अपनी भूख पीड़ा और आवश्यकता कह नहीं पाते। इसलिए उनके बोलने की प्रतीक्षा ना करें। समय पर दिया गया भोजन, सम्मान के दो शब्द और प्रेम से रखा गया हाथ उनके लिए संसार की सबसे बड़ी संपत्ति हो सकते हैं। जिस घर में बड़े बुजुर्ग संतुष्ट रहते हैं, उस घर में सुख और आशीर्वाद स्वयं चले आते हैं। आप भी इस बात के मुक्त भोगी होंगे अगर आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि वो संतुष्ट होते हैं। तो अगर वो मुंह से ना भी बोले तो भी उनका आशीर्वाद तो आपके लिए निकलता ही है, और वो आशीर्वाद लाखों करोड़ों रुपए से भी नहीं मिलता। आपकी आत्मा को जो संतुष्टि मिलती, वो बहुत खाने से नहीं मिलती, बहुत पहनने से नहीं मिलती, लेकिन वो संतुष्टि आपको मिलती है अन बड़े बुजुर्गों की दुआओं से। देना तो है तो क्यों नहीं सम्मान से दें, देना तो है तो कहे नहीं समय पर दें। और जब हम समय पर देते हैं, सम्मान से देते हैं, प्रेम भरे बोल बोलते हैं, तो हमें उन बड़े बुजुर्गों की दुआएं मिलती है। आशा है आप भी बड़े बुजुर्गों की दुआएं लेंगे और इन बातों को ध्यान रखेंगे कि बड़े भी बच्चों के समान ही होते हैं। बड़े और बुजुर्गों में और बच्चों में कोई फर्क नहीं होता। कहे कि एक उम्र के बाद बड़े बुजुर्ग भी बच्चे जैसे ही बिहेव करने लगते हैं, तो हमें उन्हें भी घर का एक बच्चा समझकर, जैसे और बच्चों का ध्यान रखते हैं, उस बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखें, ताकि हमको दुआएं मिल सके और वो दुआएं आपके जीवन को आगे बढ़ा सके। चलिए यही बात पर एक गीत सुनते हैं। हेलो,
1: हाँ दीदी जी, नमस्ते, ओम शांति,
0: नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे, रोटी बना रहे हैं।
0: अच्छा, आप बनाते बनाते रेडियो भी सुन रहे हैं?
1: हाँ
0: जी, बहुत अच्छे।
1: कार्यक्रम चल रहा है तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी।
0: हाँ,
1: सुनेंगे तो खरीदा
0: जी,
1: हम तो ऐसे ही सुनते रहते रेडियो मधुबन।
0: अच्छा,
1: जैसे ही चालू हो जाता है, बहुत अच्छा कार्यक्रम आता है तो उसके अनुसार।
0: हाँ,
1: और माता पिता की सेवा से तो दुनिया में और कुछ बड़ा,
0: उससे बड़ी तो कोई दुआ की दूसरी कारण ही नहीं है।
1: और देखो, हम ऐसे किसी से बताते नहीं है, लेकिन अब बात निकली है तो हमने भी सेवा की है, तो उसकी दुआ से है ना हम भले कुछ भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो,
0: बहुत आसानी से निकल जाती है वो, है ना?
1: उनकी दुआ हमारे जीवन में है ना, तो हम सुखी है।
0: जी जी, वो बड़ों की दुआएं जरूर लीजिए, उनका जरूर ध्यान रखिए, वो दिखती नहीं है लेकिन हमारे काम आती। जी
1: हाँ, हमने देखा है कई कई ऐसी सेवा नहीं होती है ना, तो बड़े दुखी भी होते हैं बहुत।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: बच्चे लोग ऐसे सेवा नहीं करते, तीन चार बोगे होती तो बोलती वो बोले मैं करो, वो बोले मैं करो, ऐसा होता है। लेकिन माँ बाप ऐसे नहीं करते ना, बच्चे छोटे हो तो एक को खाना दे एक को नहीं दे, ऐसा तो नहीं करेंगे,
0: नहीं करेंगे, तो फिर बड़ों के साथ क्यों ऐसे करें, वो भी एक बच्चा के बच्चे की तरह ही हो जाता है, है ना? बुजुर्ग भी एक बच्चे की
1: बच्चे
0: तरह हो जाते,
1: बड़े होते तो बच्चे नहीं समझते ऐसा है।
0: चलिए, बहुत अच्छा,
1: बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। सुन, खाना बनाते बनाते देखो बाबा की याद में खाना बनाते तो
0: खाना भी प्रसाद बन जाता है, और ये अच्छी बातें सुनते सुनते हमारी
1: हम भी अच्छे बन जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: नहीं कहते, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे।
0: बिल्कुल, सब कुछ हमारे सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे संकल्प पे। जी जी जी,
1: हमारे संकल्प दो तरह के, अच्छे भी है बुरे भी है।
0: हाँ,
1: तो बुरे क्यों करें,
0: क्यों करें? बिल्कुल, आज नहीं तो कल फिर वो हमारे सामने आता है ना, जो भी बुरा करेंगे तो। बिल्कुल,
1: कैसी परिस्थिति हो बाबा की दुआ से है ना।
0: हाँ,
1: खाने पीने में सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं कि हमारी ये नहीं है वो नहीं।
0: जी,
1: ईश्वर की दुआ से है ना हमारे घर में सब कुछ है।
0: बिल्कुल,
1: बस उसकी दुआ से शांति है, और क्या चाहिए बस।
0: बिल्कुल,
1: परिस्थिति तो देखो थोड़ी बहुत तो आती जाती रहती है।
0: जी,
1: वो तो आएंगी,
0: वो तो जीवन में सबके आती, आए ना ये हो ही नहीं सकता, वो तो
1: आएंगी तो जरूर, लेकिन सामना तो करना भी पड़ेगा ना उसका।
0: हाँ बिल्कुल, लेकिन जब हम बाबा की याद में होते हैं ना, तो वो बहुत छोटी लगती है।
1: हाँ,
0: उसका ज्यादा असर हम पे नहीं पड़ता, कि जानते हैं कि आई है और बाबा हमारे साथ है, तो कुछ ना कुछ हल निकल आएगा,
1: बाबा हर प्रॉब्लम का सॉल्व कर देते हैं।
0: जी
1: चलो, ओम शांति,
0: ओम शांति, ओम शांति, थैंक यू।

हाथों ने पैरों से पूछा, सब तुम्हें ही प्रणाम करते हैं, मुझे क्यों नहीं? पैरों ने बोला, उसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। कितनी गूढ़ बात है कि नहीं? हर दिन थोड़ा सा संगीत सुनिए, शायद दुनिया न बदले लेकिन मन जरूर बदल जाएगा। सुनते ही होंगे आप लोग तो, अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण हैं जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। हर नया सवेरा याद दिलाता है कि शुरुआत फिर से हो सकती है। कर्म अच्छा, दिल सच्चा, बाकी मेरे प्रभु की इच्छा। जीवन में हालात चाहे जैसे हो, मुस्कुराना कभी मत छोड़िए, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती लेकिन हौसला छोड़ने से सब कुछ कठिन हो जाता है। उम्मीदें हर सुबह जन्म लेती है और अनुभव हर शाम हमें कुछ नया सिखा जाता है। जरूरत से ज़्यादा सोचने की आदत इंसान से खुशियाँ छीन लेती है। इस बार इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं हैं प्रिय बप्पा, इस बार इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं हैं, बस इतना करना, घर में हंसी बनी रहे, अपनों के मन हल्के रहे, जो मुश्किलें आए उसमें लड़ने की ताकत देना और हर दिन हमें थोड़ा और बेहतर इंसान बनाते रहना। आप कितनी ही कोशिश कर ले, लोगों की धारणा आपके प्रति नहीं बदलेगी, इसलिए हमेशा खुशी और सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। दान करने से धन जाता है लक्ष्मी नहीं, घड़ी रोकने से घड़ी रुकती है समय नहीं, और झूठ छुपाने से सिर्फ झूठ ही छुपता है सच नहीं। और अंत में यही कहेंगे, चार दिन की है जिंदगी, हंसी खुशी से काट लो। चार दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट लो, मत किसी का दिल दिखाओ, दर्द सबके बांट लो। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवाय, कर भला होगा भला ये बात गांठ बांध लो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। मौन हो जाओ, मौन हो जाओ, बहुत कुछ सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। बहुत गहरी बात है, और एक बात कह के अपनी बात को विराम देते हैं कि आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए, यही आपकी उपस्थिति की सार्थकता है। चलिए भाई, अगले शनिवार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। हमने पहले भी जाना कि प्रकृति के साथ संगीत का एक गहरा संबंध है। देखा जाए तो संगीत के माहौल में कोई पेड़ पौधा या फूलों का रंग रूप अलग ढंग से होता है। आप सभी इस पर विचार कर सकते हो। इसलिए मॉडर्न युग में म्यूजिकल गार्डन और म्यूजिकल फाउंटेन मानव मन को आह्लादित कर देता है। जैसे कि मालकोस राग में राधा किशन का मिलन या काफी राग में रंगों की पुहार होती है। तो आइए ऐसे ही संगीत की महिमा में और जानकारी देने के लिए हर बार की तरह मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ गीता जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ। जितने सारे लिसनर है सबको मैं नमस्कार करती हूँ।
0: हम जौनपुरी राग की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: आज आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, पिछले एपिसोड में मैं स्वर लिपि दे दिया था।
0: हाँ जी,
1: बच्चे ने शायद लिख लिया होगा। तो अभी क्या करेंगे, बंदिश दे देती हूँ
0: जी।
1: आज बंदिश सिखाएंगे, तान करेंगे तो कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं पहले उसको बंदिश सुना देती हूँ।
0: हाँ,
1: तीन तल की है बंदिश है। पाई लिखी झनकार बड़निया, बहुत सुंदर बंदिश है। आपने बताया कि राधा किशन अभी बोला थे, हर टाइम राधा किशन तो मालकोस में तरह तरह के राग में भी होता है
0: जी,
1: इसमें भी ऐसी है। आपको पहले बताया कि इसका जो प्रकृति जो बहुत शांत प्रकृति का होता है
0: जी,
1: तो इस आधार से ये बंदिश भी है। पायल की झनकार बड़निया, झन्ने झन्ने बाजे कैसे मोरी, पिया से मिलन को जाऊ अब मैं। अगर झनकार होता है पायल की तो पिया से मिलने के जाने के डर लगता है ना
0: जी,
1: आवाज उठता है ना। तो ऐसी बात है। तो इतना है, पायल की झनकार बड़निया, झन्ने झन्ने बाजे कैसे मोरी, पिया से मिलन को जाऊ अब मैं। ये है स्थाई का बंदिश। अंतरा की है, बिरहा से तने ताप तपत है, अंग अंग सब लागर हीले, सदा रंगीले उठत जिया हुका। बिरहा से तने ताप तपत है, अंग अंग सब लागर हीले, सदा रंगीले उठत जिया हुका। ठीक है, अभी इसको क्या करते हैं, पिछले एपिसोड में जो स्वर लिपि के साथ इसको बैठा देते हैं पहले। ठीक है
0: जी।

जी, इसी जौनपुरी राग की बंदिश के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हम इसी राग से संबंधित एक प्यारे से गीत का आनंद लेंगे, और हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पुनः आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने श्यामली जी से जौनपुरी राग की बंदिश सुनी।
1: हाँ जी,
0: अब आगे आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, अभी इसको थोड़ा सा विस्तार करेंगे, थोड़ा तान भी करेंगे, स्थाई अंतर की तान भी सुनाएंगे
0: जी।
1: अगर लिसनर उठा लेते तो अच्छा है, नहीं तो गुरु के पास तो शिक्षा लेना ही है।

0: तो ये जौनपुरी रा की आपने बंदिश की तान सुनाई।
1: हाँ, थोड़ा बिस्तर भी सुनाया, थोड़ा तान अंतरा की तान, साई की तान हमने सुना दिया। अगर लिसनर गुरु के पास शिक्षा लेते हैं ऐसा, अगर इसमें भी सीख सकते हैं तो वो तो कोई ये हर्जा नहीं है ना
0: जी,
1: तो और सीख सकते हैं तो अच्छा है।
0: रेडियो के माध्यम से जो संगीत सिखाते हैं ये तो मेरे को लगता है सिर्फ रिवीजन में उनको काम में आता।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: बाकी तो आप जैसे पहले भी आपने बताया है कि डायरेक्टली कोई गुरु के पास शिक्षा लेना अनिवार्य है।
1: अनिवार्य है, मैं तो इसने रेडियो के माध्यम से थोड़ा सिखाती हूँ।
0: हाँ।
1: ऐसे इतना कम समय तो नहीं होता है ना
0: जी,
1: मैं थोड़ा से सुनाया सिखाया।
0: श्यामली जी, आज जाते जाते आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
1: हाँ, आज बहुत अच्छा फिल्म है, मेरे को भी फेवरेट है ये।
0: अच्छा
1: फिल्म काटी पतंग।
0: ओके। बहुत फेमस
1: बहुत फेमस है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या
0: एक कटी पतंग है। वाह,
1: बहुत सुंदर लता जी का कॉम्पोजिशन है
0: जी,
1: मैं कोशिश कर सकती हूँ
0: जी।

0: एक बात कहूँ आपको?
1: बताइए।
0: कोइंसिडेंस?
1: हाँ जी।
0: ये गीत कहो, ये राग कहो, सब सीजनल हो गया।
1: हाँ जी।
0: क्योंकि अभी अभी जनवरी मास में पतंगों का त्योहार गया।
1: हाँ जी।
0: और पतंगों का अपने जीवन के साथ किस प्रकार का हम संबंध जोड़ के मार्मिक अर्थ?
1: मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं सोचती औरत की जिंदगी जो है ना एक काटी पतंग जैसी है। आप देख लेना, अगर मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, शिकवा नहीं करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मेरी जिंदगी है क्या एक काटी पतंग जैसी है ना। औरत की अभी भी उसे जिंदगी नहीं मिला है, लेकिन अभी खुद को अपना जिंदगी बनाना चाहिए। अभी जैसे मैं इसी उम्र में भी मैं अपनी जिंदगी बना लिया
0: जी
1: संगीत के अंदर
0: जी। इसीलिए संगीत हर हमारे अनुभव को, हमारे एहसास को दर्शाता है।
1: देखिए कितना अच्छा,
0: बहुत सुंदर
1: संगीत जिंदगी से मिला हुआ है ना
0: जी।
1: हर समय हर पल जिंदगी में संगीत संगीत संगीत
0: जी। श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत। जाते जाते आपने मन को खुश कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स
1: जी।
0: फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं या एसएमएस के द्वारा भी आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है, ये शरीर हमारी मर्जी।

0: अगर आप किसी से रास्ता पूछें और वो गलत बता दे तो कितना घूम जाते हैं, है ना? समझ ही नहीं आता कि थोड़ा और आगे देख लिया जाए या फिर पीछे से टर्न लिया जाए। बस राठौड़ परिवार में अभी कुछ वैसा ही माहौल है। सब ने कड़वी बातें बोल तो दी हैं और घर के बड़े यानी भगवत सिंह राठौड़ जी ने निर्देश दिया कि पहले होगी पेट पूजा, फिर होगा काम दूजा, यानी लड़ाई को टेम्पररी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अब ब्रेक के बाद आग और भड़केगी या फिर शांत होगी, चलिए देखते हैं।
1: जमाई साहब, नाश्ता शुरू कीजिए।
2: माँ साहब, मैं बस आता हूँ, आप लोग शुरू कीजिए।
1: लेकिन जमाई साहब, आप कुछ तो खाइए फिर चले जाइएगा।
2: नहीं, मैं अभी बाद में लेता हूँ।
3: अरे आपके पास कौन सा काम है फला जमाई साहब?
4: इधर की बात उधर करने से तो अच्छा है इंसान कोई काम ना करे।
3: क्या कहा आपने, क्या कहा आपने? मैं क्या कुछ नहीं करती इस घर में? हाँ, आपको क्या पता, नाश्ता करके निकल जाएंगे अपने काम पे। इस घर में मैं ना हूँ तो कोई काम ना हो ठीक से। क्या हुआ देवर जी, कोई प्रॉब्लम है का?
5: नहीं तो बड़ी भाभी, बस गले की खराश थी।
3: तो पानी पी लीजिए, नहीं तो राजकुमारी से कह के काढ़ा बनवा दे।
6: हाँ हाँ देवर जी, अभी बना लाती हूँ मैं। थोड़ा सा करेला, थोड़ा सामने वाले पेड़ की छाल और हरे नीम के पत्ते के साथ बस दो बूंद गरम घी।
5: नहीं मतलब नहीं, जरूरत नहीं है भाभी, मैं एकदम ठीक हूँ। देखिए, गा के सुनाओ।
7: नहीं
4: किशन, माना तुम कविता लिख लेते हो पर तुमसे अच्छा मेरा पुराना टेप रिकॉर्डर गाता है।
5: क्या बड़े भैया, आप भी। वैसे आपका वो पुराना टेप रिकॉर्डर तो खराब हो गया था ना, उसमें तो एई एई की आवाज आ रही थी।
3: पुराना टेप रिकॉर्डर आपने तो उसे कबाड़ी वाले को दे दिया था ना, जिसका मोल बड़ा कम लगाया था उस नालायक ने।
4: वो मैं वो मतलब

0: अरे क्या मेरी बात लेके बैठ गए, कोई जमाई साहब को तो देखो अब तक आए नहीं, हम लोग नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं भाई।
1: शांति जाओ जमाई साहब को लेकर आओ।
2: मैं नहीं जाऊंगी वीरेंद्र भैया, बच्चा थोड़ी है, खुद ही आ जाएगा।
3: हे राम, किस मुहूर्त में पैदा हुई थी तू? कोई अपने पति को ऐसे बोलता है क्या?
2: हाँ आप भी मुझे ही बोलो, इस घर में मुझे कोई नहीं समझता है।
4: शांति दीदी बस, हाँ ज्यादा फिल्मी हो रहे हैं आप, मैं जाता हूँ जीजा जी को बुलाने।
5: वैसे कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, पर ये बहस सालों से चली आ रही है कि फिल्मों में वही दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है, या फिर फिल्मों में जो देखते हैं वो समाज में होने लगता है। वैसे जो हम देखते हैं सुनते हैं भाई, उसका असर मन पर तो पड़ता ही है। फिलहाल शांति जी अपने दर्द को सबसे बड़ा मान बैठी हैं। आखिर उनके पति बाकी पतियों की तरह कमा जो नहीं रहे, और उनके पति सूरजमल कुछ न कर पाने का दुख और जिल्लत के बोझ को झेलकर अपने गम छुपाए कमरे में बैठे हैं। किशन उन्हें बुलाने गया है, अब देखते हैं क्या वो कामयाब होगा। चलिए
6: जीजा जी मैं अंदर आ जाऊं।
7: किशन अब अभी जाऊं यहाँ से।
6: जीजा जी आप रो रहे हैं।
7: नहीं किसने कहा, जाओ जाओ, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है।
6: जीजा जी प्लीज मुझे अंदर आना है, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं भी तो आपका भाई जैसा हूँ। जीजा जी ये लीजिए पानी पीजिए।
7: देखो किशन, मैं यहाँ जब से आया हूँ तब से कोई खुश नहीं है, ऊपर से शांति भी नाराज है, वो सही कहती है मैं ही नकारा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया है।
6: जीजा जी जो भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और आप इतना कुछ होने के बाद भी दोबारा कोशिश कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है।
7: क्या फायदा इस कोशिश का जो रंग ना लाए।
1: जमाई साहब मैं कुछ कहूं?
7: भैया आपने तो मुझे शुरू से बहुत हौसला दिया है, लेकिन मैं
1: जमाई साहब आप रो लीजिए, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि हम आपको ससम्मान इस घर में जगह दे रहे हैं, और आपके काम करने या ना करने से ये कम ज्यादा नहीं होगा।
6: माफ कीजिएगा जीजा जी, शांति दीदी तो अशांति करके रखती है पूरे घर में, बचपन में एक बार उनको मार्केट नहीं लेके गए थे बड़े भैया, क्या हंगामा मचाया था, सारे घर के शीशे तोड़ दिए थे।
7: कोई रिफंड प्रोसेस है क्या इसका?
1: जमाई साहब आपको तो सिर्फ उल्टा सुनना पड़ता है, मुझे तो खाना भी पड़ता है वो भी चुपचाप।
6: इसी बात पे अर्ज किया है।
1: बोल भाई बोल।
6: वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, उन्हें इल्म भी नहीं बस वही है हमारे ख्यालों में।
1: हाँ? ये किसकी बात करने लगा?
6: नाश्ते की भैया, भूख लगी जोरों से और कुछ नहीं सूझ रहा अब मुझे।
1: तू भी किशन, चल चलिए जमाई साहब नाश्ता करते हैं।
8: जमाई साहब तक आए नहीं, इतनी देर हो गई।
9: जमाई साहब रो रहे होंगे, छोटी छोटी बातों पे औरतों से ज्यादा रोने लगते हैं।
8: माँ साहब मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ।
10: माँ मैं जाती हूँ, मैं बताती हूँ उनको कि इस शांति की बात को ज्यादा सीरियसली ना लें, इसकी बातें इसको ही समझ नहीं आती है।
11: दीदी मैं चुप बैठी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगी आप।
10: वाह शांति और शांत, वाह वाह ये तो चमत्कार है, अगर तूने उन्हें खरी खोटी ना सुनाई होती तो अभी सब अच्छे से बैठ करके नाश्ता कर रहे होते।
11: दीदी वैसे तो बड़ी फेमिनिस्ट बनकर घूमती हो आप, अभी मेरा साथ नहीं दे सकती आप?
10: शांति फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि लड़की की गलती हो तो भी उसका साथ दिया जाए।
12: शांति
11: पर पापा ये
12: बस बेटा अब बस कर। अगर गलती जमाईसा के भी होती ना तब भी ऐसे ताने कसने से नहीं हो जाती। और थोड़ा सा उनका दुख समझ, कितनी बड़ी परेशानी से निकले हैं वो। अभी तुझे तो उनका साथ देना चाहिए।
11: पापा सिर्फ अभी की बात नहीं है, वहाँ पर भी घर में यही होता है। इनको समझ में ही नहीं आती है दुनियादारी।
10: और तुझे आती है?
12: तुम लोग डिसाइड कर लो, समस्या का हल चाहिए या सिर्फ नाराजगी से पेट भर लोगे।
10: हल चाहिए।
12: तो बस हो गया अब।
0: शांति, रागिनी, नाश्ता ठंडा हो गया है, जाओ जाके राजकुमारी की मदद करो, गरम करके लेके आओ। जाओ।
13: लो आ गए जमाईसा। जमाईसा अब बैठिए, बस नाश्ता गरम ही हो रहा है।
6: माँ माहौल तो ठंडा है ना यहाँ का, वो गरम नहीं होना चाहिए।
14: अरे कोई जमाईसा के लिए गरम गरम दाल बाटी लेके आओ। जमाईसा आप खाइए, मेरी रेसिपी है, एकदम स्वादिष्ट।
6: इनको क्या हो गया, बड़े प्यार से बात कर रही।
0: अरे भूख लगी है ना, अभी गुस्सा दिखाने से फिर जमाईसा चले गए तो दाल बाटी नहीं मिलेगी।
8: चलिए चलिए सब लोग खाइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, ये लीजिए। हाँ बच्चों तुम लोग इधर आ जाओ।
14: अरे वाह, ला ला, मुंह में पानी आ गया मेरे तो।
3: वाह राजकुमारी, आज तो तूने कमाल कर दिया, बड़ी स्वादिष्ट दाल बाटी बनाई है।
8: थैंक यू मासा, आपसे ही तो सीखा है, इसमें मैंने अपना कुछ भी ऐड नहीं किया।
1: धन्यवाद भगवान का, बच गए।
3: चलो चलो सब लोग खाओ गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा। इस वक्त तो दूध वाला पेपर वाला कोई नहीं आता, अब कौन आ गया गेट पे?
1: शांति गेट खोलो।
8: अरे किशन जाओ ना गेट खोलो।
10: अरे गेट खोलो ना।
11: जाइए गेट खोलिए।
0: कोई तो जाओ।
10: अरे गेट खोलिए।
0: कोई तो जाओ।
1: शांति गेट खोल दो।
11: अरे गेट खोलो तो कोई।
10: हाँ किसी को उठ गया तो जाना नहीं है, सभी को एक दूसरे को बोलते रहते बस यही पे ऐसे ही
1: है। अरे कोई देखो बाहर कोई है।
14: अरे कौन है गेट पे?
1: पुलिस।
0: पुलिस?
1: अरे कौन
11: पुलिस?
10: यहाँ तो कोई घरेलू हिंसा भी नहीं हुई, वैसे मेंटल हैरासमेंट तो किया है इसने, ये कहीं शांति को पकड़ने तो नहीं आए?
11: क्या दीदी मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैं तो कितनी मासूम हूँ।
1: ये ना जरूर किशन की घटिया पोएट्री के लिए उसे पकड़ने आए होंगे।
6: भैया कहीं परेशान होकर जीजा जी ने तो पुलिस नहीं बुला ली?
7: मैंने नहीं बुलाई, मैं तो कमरे में था।
0: अरे तुम लोग चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ।
5: क्या लगता है आपको पुलिस क्या करने आई होगी राठौड़ परिवार में? अब कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है इन घर वालों के जीवन में? भाई ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। वैसे कितना कुछ हो गया ना आज, सोचिए बचपन में जब एक दूसरे से रूठते थे तो कैसे फटाफट मान भी जाते थे। काश वो मासूमियत हमेशा रहती। आज हम एक दूसरे से ऐसे नाराज होते हैं कि उनका दुख भी दिखाई नहीं देता। ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि मेरी बात मेरी परेशानी मैं सही, बस मैं ही रह जाता है। बाद में जब ये मैंपन का नशा उतरता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कबीर दास जी ने तो कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। परिवार मतलब प्रेम, प्रेम मतलब मैं नहीं हम। खैर अब राठौड़ परिवार तो आनंद ले रहे हैं राजस्थानी पकवान का, मैं भी चलता हूं क्योंकि मेरे पेट के चूहे भी अब मुझे और बातें नहीं करने देंगे, है ना? फिर मिलेंगे जल्दी। आखिर आपको बताना भी तो है ना कि पुलिस क्यों आई है राठौड़ परिवार के दरवाजे पर। फिलहाल के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, घड़ी खम्मा दोस्तों।
15: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम चल रहा है सलाम है जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, हर रविवार हम आपके पास आते हैं और हमारे साथ होते हैं विशेष व्यक्तित्व जिनके जीवन में हम झांकने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं उनके जीवन को, उनके जीवन के संघर्षों को जानते हैं, उनके जीवन की उपलब्धियों को जानते हैं और साथ साथ सलाम करते हैं उनकी ज़िंदगी को। तो दोस्तों, आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में मौजूद हैं झांसी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए कालका प्रसाद चौरसिया जी। कालका प्रसाद जी का जन्म भारत के स्वाधीन होने से सिर्फ एक साल पहले यानी कि 1946 में हुआ और आपका जन्म हुआ छतरपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। और फिर आगे बढ़ते हुए जब उनको अपने कार्य में जीवन में आना हुआ तो उनके जॉब के कारण वो झांसी उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गए थे। तो कालका प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर।
1: धन्यवाद आपका, आपने जो हमको ऐसा मौका दिया।
0: जी, रेडियो मधुबन जो है एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और समुदाय के लिए हम समुदाय के द्वारा कुछ ना कुछ कार्यक्रम बनाते हैं और यह कार्यक्रम जो है हमारे बड़े बुजुर्गों को समर्पित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ में जो अतिथि होते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनके जीवन से ऐसी बातें हमारे श्रोताओं तक लेकर के आएं जिससे हमारे श्रोताओं को भी उनके अनुभवों का लाभ मिल सके, वो भी अपने जीवन में उन शिक्षाओं को लाभ ले सकें, धारण करें और फायदा उनको पहुंच सके। इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आपके जीवन कहानी का जो पहला पड़ाव है यानी कि बचपन, कहा भी जाता है कि बचपन जो है हमारे पूरे जीवन की नींव होती है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में, कहाँ आपका जन्म हुआ और आपके माता पिता कैसे थे, वो क्या करते थे, क्या सीखा आपने उनसे?
1: हमारे एक गांव है छतरपुर में, पेपट पनागर नाम से गांव है
0: जी।
1: पान की खेती होती थी हमारे यहाँ, पिताजी वगैरह पान की खेती, और ये खेती तो है ही, तो वैसे किसान ही थे वो, लेकिन उस समय गांव में थोड़ा पढ़े लिखे लोगों में माने जाते थे और साधारण परिवार ही था, विशेष वो नहीं था कुछ, लेकिन आराम की जिंदगी थी बचपन में
0: जी।
1: हमारे पिताजी ने पहले हमको थोड़ा सा घर पर पढ़ाया, बाद में फिर स्कूल में।
0: स्कूल आपका कितनी दूर था घर से?
1: स्कूल गांव के अंदर ही था, 100-200 मीटर।
0: तो उस समय जो बचपन के आपके दोस्त होंगे और जिनके साथ आप भी घूमते होंगे, मस्ती करते होंगे, सीखते होंगे साथ में, हाँ, स्कूल जाते होंगे, वो अभी कहाँ हैं, याद आते हैं उनको, उनका नाम कुछ शेयर करना चाहें तो?
1: कुछ लोग तो जो हमसे एजेड थे, अधिकतर वो तो चले ही गए हैं, और हमारी छोटे एज वाले भी कुछ लोग चले गए
0: जी।
1: बस 2-4 लोग ऐसे बचे हैं। गांव का जीवन तो सभी का एक साथ रहता ही है, सभी दोस्त और सभी
0: जी जी
1: प्यार से रहते हैं।
0: ऐसे दोस्त जिनको आप बाद में भी मिलते रहे या अभी भी मिलते हो,
1: हाँ,
0: क्या कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में?
1: अभी भी मिलते रहते हैं।
0: क्या नाम है उनके?
1: लल्लूमल भाई है, वो भी हमारे साथी और शिव बाबा से वो भी जुड़े हुए हैं। एक हमारे रामराजी भाई हैं, वो भी हैं, अभी क्लास फेलो थे जो
0: जी,
1: तो वो भी अभी ठीक है, मिलते रहते हैं। जब कभी गांव जाते हैं किसी काम से तो प्यार से मिलते हैं, शिव बाबा का थोड़ा बहुत चर्चा हो जाती है कुछ ना कुछ तो प्रसन्नता होती है पुराने मित्रों से मिलने पर, और खुशी हमको यही रहती है कि भाई इनको भी बाबा का परिचय दिया जाए, वो भी शिव बाबा की बन जाए, और वो भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग परिस्थितियों बस घिरे रहते हैं तो उतना नहीं कर पाते हैं। और एक साथी तो हमारे पिछले 2-3 साल पहले मिजाजी लाल गुप्ता जी थे
0: जी,
1: वो अपना युगल सहित आए थे हम मधुबन में बाबा के घर में
0: जी,
1: और उनकी अच्छी पक्की लगन है, वो तो अभी भी है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जी का यहीं पर जो है
0: सन्यास हो गया,
1: शांत हो गई थी वो
0: जी।
1: तो कभी कभी ऐसे भी मौके आ जाते हैं।
0: बचपन की क्या यादें जुड़ी हैं आपके इन दोस्तों के साथ में, क्या करते थे बचपन में आप लोग?
1: बचपन में हम लोग खेल पाल तो सभी कबड्डी वगैरह उस समय फुटबॉल वगैरह ये खेला करते थे, गिल्ली डंडा भी खेलते थे। और एक हमारे यहाँ तालाब है, अच्छा काफी बड़ा है, तो होड़ लगती थी, हम लोगों की प्रतियोगिता होती थी इस पार से उस पार कौन पहले पहुंचता है तैर के, तो वो भी किया करते थे
0: जी।
1: इस प्रकार से हमारा बचपन में बीता। और थोड़ा बहुत किसानी का काम तो कोई ज्यादा वो शाम सुबह का चले जाए कभी अपने गाय बैल वगैरह उनको भी देखना
0: जी।
1: और सवेरे उस समय गवर्नमेंट स्कूल 10 से 5 बजे तक रहता था, तो इसके बाद शाम सुबह ही टाइम मिलता था थोड़ा सा। तो वैसे ज्यादा उत्पात वाले नहीं थे हमारे मित्र वगैरह, वैसे अपना घरेलू काम देसी पानों का काम, चौरसियों के ही अधिकतर गांव हैं वो, अपना पान का काम किया करते थे।
0: स्कूल कैसा था, टीचर किस प्रकार होते थे, कौन से सब्जेक्ट?
1: स्कूल हमारा बहुत अच्छा, उस समय के टीचर तो एक प्रकार से देवता टाइप थे, इतना अच्छा हम लोगों को पढ़ाते थे। और जो बाहरी बाहर के थे वो जैसे पोस्टिंग बाहर, यहाँ पोस्टिंग थी गांव में ही रहते थे, तो सुबह शाम हम लोगों को पढ़ाने के लिए वो बाध्य करते थे कि नहीं 1 घंटे के लिए पढ़ना जरूर है, हमारे पास आना है। उनके कमरे में जाया करते थे हम लोग, लेकिन वो कभी फीस नहीं लिया करते थे जैसे आजकल ट्यूशन चलता है ना।
0: ओके।
1: उस समय बिल्कुल फ्री सेवा किया करते थे वो,
0: स्वेच्छा से पढ़ाते थे।
1: स्वेच्छा से पढ़ाते थे तो हम अधिकतर बच्चे जो है उनके पास सुबह शाम 1 घंटा पढ़ने भी जाते थे, स्कूल का तो टाइम अलग ही है। इस प्रकार से हमारी दिनचर्या रहती थी।
0: तो स्कूल के टीचर्स को कैसे याद करते हैं, कुछ नाम उनका और वो सब, सर को क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में?
1: अब उस टीचर हमारे कोई बचे ही नहीं है
0: जी,
1: लेकिन जब मैं सर्विस में आया यहाँ सन 71 में, तो घर जाके कभी मिल करते मतलब उनसे, तो हम तो उनके चरण स्पर्श करते थे और उनको भी बहुत खुशी हुआ करती थी कि चलो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आशीर्वाद मुझे मिलता था, बहुत प्यार मिलता था उनका।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप अपने जो बचपन के दिन हैं और दोस्तों के बारे में, टीचर्स के बारे में हमारे श्रोताओं से शेयर किया। हमारे श्रोताओं को भी जो वर्तमान समय अलग अलग स्थानों में वर्तमान जीवन की शैली में ढल चुके हैं, तो उन्हें भी एक झलक मिलेगी कि आज से 50 साल 60 साल 70 साल पूर्व कैसा जमाना होता था, किस प्रकार से लोग होते थे, सब चीज़ों के बारे में। एक बात और पूछना चाहूँगा कि माता पिता, जो माता पिता होते हैं वो हमारे जीवन को एक शेप देने में या उसका गढ़ने में उनका बहुत योगदान होता है
1: जी।
0: तो पिताजी को कैसे याद करते हैं, कौन सी विशेषताएं उनके अंदर थी जिनको आप आज भी फॉलो करते हैं?
1: हमारे पिताजी तो उस जमाने में थोड़ा पढ़े लिखे लोगों में ही थे, उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया है, आज भी हमें उनकी याद आती है। आपको एक दो वाकिया सुना है। एक बार हम वैसे बच्चों के साथ में बैठे हुए गपसड़ा का बचपन रहता ही है
0: जी जी,
1: उन्होंने देख लिया हमको, इन बच्चों के साथ में बैठे गांव में कोई तो छिपा नहीं है, सब पहचानते एक दूसरे को। बाद में घर में बैठे जब रात में, थोड़ा सर्दियों के दिन था उस समय, तापते थे, उन्होंने पूछा वहाँ क्या कर रहे थे आप, तो मैंने कहा कुछ नहीं वैसे ही बैठे थे, वो मिल गए तो बैठ गए
0: जी।
1: तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात समझाई थी, वो बात मुझे अभी तक याद आती है
0: जी।
1: उन्होंने कहा वो कौन क्लास में पढ़ते हैं, तो हमने कहा कोई 2 में कोई 1 में इस टाइप से पढ़ते हैं, और हम उस समय 3री क्लास में पढ़ते थे। फिर उन्होंने समझाया कि आपको उनसे क्या सीखने को मिलेगा, अपने से ऊंची क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठा करो, और गांव में जो बड़े लोग जहां बैठते हैं 4-6 लोग बातें करते हैं, उनकी बात सुना करो तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो तब से फिर मैंने अपना थोड़ा सा इस बारे में अटेंशन देना शुरू किया था, तो बड़े लोगों से भी बहुत शिक्षाएं मिली, और जो बड़ी क्लास में पढ़ते थे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था।
0: जी, एक बात इसमें से मुझे समझ में आई कि जब हम बच्चों से बात करते हैं तो उन्हें डांटने के बजाय उनके दोस्त बन करके बात करें और उन्हें समझाएं। हाँ। मतलब उन्हें तुलना दें। हाँ। कि अगर आप ये करते हैं तो ये फायदा होता है, ये करते हैं तो ये फायदा होता है, तो उससे बच्चे डरते नहीं है लेकिन वो आप और भी सम्मान करके सीखते हैं। ये बहुत अच्छा बताया आपने अपने पिताजी के बारे में। माताजी के बारे में क्या बताना?
1: माताजी हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए, हम लोग वैसे 5 भाई और 5 बहनें थे, तो हमारी माताजी तो बिल्कुल वो कहती थी कि हमारे लिए भगवान ने जो बच्चे दिए हैं इन्हीं के लिए हमारा जीवन है। एक बार की बात, थोड़ा बड़े हो गए थे हम, हमारे हमसे भी बड़े भाई हैं ये।
0: जी जी।
1: और पिताजी ने कहा कि कार्तिक का स्नान कर लीजिए, वो महीने भर चलता है जो प्रथा है हमारे उस साइड में। उन्होंने कहा मेरे लिए तो यही कि हम सब बच्चों को अपना परवरिश करें, तो यही हमारे लिए कार्तिक का पुण्य होगा, अलग से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से उनका नेचर बहुत ही शांत और सेवा में लगे रहते थे। बिल्कुल टाइम से हमें उठाना, टाइम से स्कूल जाने के लिए हमेशा पहले तैयारी कर देते थे। उनकी भी हमारी लास्ट तक जो है इतनी याद आती है।
0: तो आपने 3 अलग अलग बातों के बारे में हमको बताया कि जैसे आपके दोस्त थे, दोस्त के साथ में टीचर से आपने क्या सीखा और टीचर्स के बाद में अपने माता पिता से क्या सीखा। तो माता पिता के बारे में विशेष बातें आपने बताई और इन शिक्षाओं को जरूर हमारे श्रोता सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे उस समय के समाज के बारे में, उस समय के कैसे हमारे बच्चों का और माता पिता का संबंध होता था, बच्चों का और टीचर का संबंध क्या होता था, किस प्रकार से एक सांस्कृतिक धरोहर हमारी रही है। और भी बातें करेंगे और भी जानने का प्रयास करेंगे आपके जीवन से इस कार्यक्रम सलामी जिंदगी में। जी हाँ श्रोताओं, बने रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर मौजूद हैं कालका प्रसाद चौरसिया जी। फिर मुलाकात होगी इस गीत के बाद।

0: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: दोस्तों फिर लौट कर आ गए हैं 107.8 FM रेडियो मधुबन पर और कार्यक्रम चल रहा है सलामी जिंदगी। हमारे साथ एक विशेष अतिथि जो झांसी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं और उनकी जीवन यात्रा के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। कालका जी, जैसे आप बता रहे थे बचपन के बारे में, अब हम थोड़ा आगे चलना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जैसे बचपन से हम आगे बढ़ते हैं, स्कूल पास करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें एक बुद्धि में यह आने लगता है कि आगे चल के हमें क्या करना है। परिवार, समाज सब हमको पूछते हैं तुम क्या करना चाहते हो, तो इसी अनुसार हमारी पढ़ाई की भी दिशा कभी कभी बदलती है। तो आगे की शिक्षा कैसी रही आपकी और फिर आपने अपने कार्यमय जीवन में प्रवेश करने की जो कहानी है वो बताइए।
2: ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने
1: जी।
2: ये पढ़ाई भी हमारी संघर्षमय हुई। हमारे गाँव में केवल 8वीं क्लास तक स्कूल है, अब तो बन गया है, ग्रेजुएशन हो गया
1: जी।
2: तो हम करीब 10 किलोमीटर दूर है, हमारा बिजावर तहसील पड़ता है
1: जी।
2: तो वहाँ हम लोग साइकिल से जाया करते थे। हमारा उद्देश्य था कि डॉक्टर बनेंगे। हमने वहाँ जाकर बायोलॉजी साइंस साइड से पढ़ना शुरू किया था
1: जी।
2: और परमात्मा की कृपा ही रही है कि हम कभी फेल नहीं हुए और हर क्लास में 8वीं क्लास तक हमारा फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट पोजीशन आता रहा। ये हमारे पिताजी की प्रेरणा और उसके कारण हमने कभी फालतू ना घूमा है, ना कोई ऐसे लोगों की संगत की है, पढ़ाई में ध्यान दिया है। लेकिन एक वाकिया हो गया थोड़ा सा कि हमारे जो पान बरेजे होते हैं उसको खेती वाला, उसको बरेजे कहते हैं।
1: ओके।
2: एक साल उसमें आग लग गई, जैसे यहाँ खेत होते ना, ये खेत वो, इस प्रकार की 7 खेत थे हमारे बरेजे, 7 जगह, और उसमें से केवल एक जगह का बचा हुआ था। हमने हायर सेकेंडरी पास किया ही था उस साल और वो गर्मियों में आग लग गई किसी प्रकार से, दूसरे की वजह से, उससे क्या। लेकिन फिर हमारे पिताजी और रिश्तेदार मोहल्ले वाले हमको समझाते ही रहे कि चलो आगे चल के पढ़ो, आप जाओ छतरपुर, जाओ वहीं रहना। लेकिन मेरा मन उछट गया क्योंकि थोड़ा इतनी समझ आ गई थी हमको। हमसे और भी छोटे भाई बहन थे उस समय, तो मतलब छोटे भाई बहन है, 4-5 भाई बहन ही थे उस समय, जबकि बात है। फिर मैंने कहा नहीं, आप भेज भी देंगे हमें, पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वो पढ़ाई में हमारा मन
1: डिस्टर्ब हो गया,
2: अब तो हमें ये लगता है कि हम आपका साथ देना पूरा चाहिए, भाई बहनों का मतलब परवरिश अच्छी तरह से हो, ये लोग पढ़ेंगे कोई बात नहीं, हम भी खेती करेंगे या और कुछ। ये इस प्रकार से हमारे पास सामने एक समस्या आई
1: जी।
2: फिर कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल बाद, थोड़ा हमारा कारोबार संभल गया। फिर इच्छा हुई कि हाँ अब कुछ हमें दूसरा काम करना चाहिए। पढ़ाई तो नहीं थी, पढ़ाई की इच्छा ही खत्म हो गई थी। फिर मैंने रेडियो ट्रेनिंग का मन बनाया। बिजली फिटिंग वगैरह करने वाले होते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम मिलता था तो उनके साथ हम उनका काम हेल्प करने में चले जाते थे। वैसे ही परिचय हो जाता है उनकी हेल्प करने में, कि इनकी हेल्प करेंगे तो कुछ हमको सीखने को मिलेगा
1: जी।
2: वो हम भी पूरा कारोबार सीख गए, फिटिंग करना, बिजली का सब कुछ काम सीख गए
1: जी।
2: फिर ये याद आया कि अब अगर उस समय तो रेडियो चलता था, टेप भी नहीं चलता था, जबकि बात है झांसी जाके रेडियो ट्रेनिंग करें। पिताजी बोले हाँ जाओ, कोई बात नहीं है, आप तो जा सकते हो। 1-1-71 को हम अपने घर से रेडियो ट्रेनिंग करने के लिए झांसी को आए थे। सोचा था कि उसमें कैसा टाइम लगता क्या, तो जब यहाँ आए तो उन्होंने बताया आपको 1-2 घंटे का टाइम शाम को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आना है। फिर मैंने सोचा दिन भर क्या करेंगे, फालतू पड़े पड़े परदेश में सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत कहीं नौकरी कर लें, प्राइवेट जो भी हो, तो एक दो घंटे

0: जाए करेंगे, हम अपना खर्चा ही अपना निकालेंगे, वो माता पिता से नहीं मंगाना पड़ता
1: जी।
0: लेकिन कहीं कोई सर्विस नहीं मिली। 3-4 दिन मैं घूमा, हम साइकिल पूरा ओवर हॉलिंग कर लेते थे, तो साइकिल वालों से भी पूछा और या सोचा कोई सेठ की नौकरी, दुकानदारी, कहीं कुछ भी मिल रहा, नहीं मिला। फिर सोचा दिन भर परेशान हो रहे, आज चलो पिक्चर देख लेते हैं। तो पिक्चर का टिकट लिया, तो एलाइट टाकीज के ऊपर हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस था, अब तो नहीं है, दूसरी बिल्डिंग बदल गई। हमारे दोस्त उस समय लंच में नीचे उतरे होंगे, और वो एलाइट टाकीज ही है वो, तो हम वहाँ टिकट लिए, पिक्चर छूटने का इंतजार कर रहे थे कि ये शो छूटे तो हम अपने अपने शो में जाएंगे। उन्होंने दूर से देखा मुझे, तो मेरे पास आए और आवाज लगाई, चौरसिया यहाँ कहाँ घूम रहे। मैंने इधर उधर देखा, ने कहा मुझे पहचानने वाला यहाँ कौन है। तो दिखाई पड़े तो मैं खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उनका भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मिले, पास में आए, फिर बातचीत हुई, ऐसे ऐसे आए हम। उन्होंने कहा आप अच्छे मिले, चलो हमारे कमरे पे चलेंगे, अभी तो हमारा ऑफिस वर्क है। हमने कहा हमने भी टिकट लिया हुआ है, तो थोड़ा देख के आए, और नहीं तो ये टिकट बेकार हो जाएगा। तो बोले ठीक है, 5-6 बजे तक हम भी घर पहुंचेंगे, जब तक आपका शो छूट जाएगा। तो एड्रेस उन्होंने लिख के दिया, क्लास फेलो थे, हायर सेकेंडरी तक पढ़े हुए, बहुत अच्छा लगा उनको भी हमको भी। फिर हमने वो चले गए अपना ऑफिस में, हम पिक्चर में देख के शाम को पते पूछते पूछते और उनके कमरे तक पहुंच गए
1: जी।
0: फिर तो क्या था, फिर तो दोस्त मिले तो 12-1 बजे तक बातें होती रही।
1: भरत मिलाप आरंभ,
0: भरत मिलाप से बढ़ के था उस समय की खुशी क्या बताए। एक और भी भाई उनके उसी बिल्डिंग में रहते थे, वो भी हमारे बिजावर के थे, तो फिर उनको बुलाया, देखो भाई कौन आया है, तो तीनों लोगों ने, फिर तो क्या कहना। तो इसके बाद उन्होंने हमसे पूछा फिर कि आप अपने सर्टिफिकेट वगैरह लाए हो, तो हमने कहा नहीं, सर्टिफिकेट की यहाँ का रेडियो ट्रेनिंग करने आए थे। अरे बोले नहीं भाई, अपनी फरवरी में भर्ती निकलना है, आपको नौकरी करना है कि नहीं, आप तो हमसे भी फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन आते थे। तो हमने कहा अगर नौकरी मिल जाए तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है
1: जी।
0: ऐसा जो है
1: चलता रहा,
0: संपर्क रहा। इसके बाद फिर संक्रांत आती है, जनवरी का महीना था ही, तो हमने सोचा ठीक है, तो हम घर जाके अपना सर्टिफिकेट वगैरह लाएंगे और संक्रांत भी मना आएंगे। घर चले गए और संक्रांत मना के 2-4 दिन बाद फिर से आए, तो एम्प्लॉयमेंट में नाम लिखवाया उन्होंने, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, और रेडियो ट्रेनिंग में भी नाम लिखवा दिया, तो वहाँ भी जाते थे। और टाइपिंग वाले बोले आप टाइप सीख लो, जॉब लगेगा। हमने टाइपिंग ज्वाइन कर लिया, तो हम टाइपिंग भी जानते। इस प्रकार से फिर लौट के आए, और जब टाइपिंग ज्वाइन किया तो क्या हुआ कि हम हारमोनियम बजाते थे गांव में, घर में कीर्तन मंडल वगैरह वो उसमें गाते भी थे, बजाते हारमोनियम बजाते थे
1: जी।
0: घर पे हारमोनियम था, वो टाइपिंग किया मैंने, उन्होंने जो बताया वो सभी टाइप एक साथ जो है मिल जाती ना, तो फिर वो मशीन चलती ही नहीं। वो इंस्टीट्यूट वाला वो देख के बोला क्या इतनी जल्दी जल्दी क्यों चला रहे, हारमोनियम बजाते थे क्या। उसने बड़े उससे पूछा, तो मैं डर गया। अब मैंने कहा अब इन्हें क्या बताऊं, मैंने कहा हाँ हारमोनियम बजाते थे। बोले उस स्पीड से उंगली मत चलाइए आप, धीरे धीरे चलाइए, नहीं तो मशीन टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी। इस प्रकार से जो है हम टाइपिंग भी सीख लिया मैंने। और जब तक बोले यार फरवरी तो कैंसिल हो गया, अब जुलाई में होगा,
1: तो तब तक आप कुछ काम करते रहे या फिर क्या सीखते रहे रेडियो वाला।
0: कोई काम नहीं किया, फिर बोले आप प्रेस का काम सीख लो। एक प्रेस वाले रिश्ते मतलब उनके मिलने वाले थे, तो बोले आप कंपोजिंग भी सीख लो। हमने कहा हाँ बिल्कुल सीखेंगे, फालतू रहना मुझे पसंद नहीं था, तो ठीक है मैंने कहा कंपोजिंग सीख लेंगे, हमें कुछ नहीं करना। हाँ, एक छोटी सी बात रह गई बीच में, कंपोजिंग करना भी पूरा सीख लिया था हमने। एक कार्ड लिया जब सीखे तो उस कार्ड को और वो प्रिंट करके उसको प्रूफ बनाते हैं ना
1: जी,
0: तो वो प्रूफ जो है वो टाइप करके और चिट्ठी जो है घर में भिजवाई। पिताजी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बच्चा कुछ सीख रहा है। इसलिए भेजा था वो
1: जी।
0: इसी बीच में एक वकील साहब को बहुत ज्यादा जरूरत थी, हेल्पर लगते ना वकालत में
1: जी,
0: जो
1: जी, जी।
0: उनके वो हमारे मित्र थे जो पाठक जी, उनका भी बहुत अच्छा नेचर था, तो मिलनसार थे। उन्होंने कहा हमें जरूरत है और ये फ्री रहते हैं आपके साथ कमरे में, क्या करते हैं? हमने कहा हम कुछ जो आप बताइए हम करेंगे, फ्री रहना हमें वैसे भी अच्छा नहीं लगता
1: जी।
0: फ्री रहो तो हमारे पास कचहरी में आ जाए करो, कोई दिक्कत नहीं है।
1: आपने कोई भी कार्य नहीं छोड़ा, आपने इलेक्ट्रिफिकेशन किया, आपने गाना बजाना सीखा, आपने प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, हर को आपने एक एक
0: साइकिल ओवरहॉलिंग, पूरी साइकिल निकाल के एक एक पुर्जा फिट कर लेते थे।
1: अच्छा,
0: तो ये हमारे पिताजी की देन है जो वो समझाया करते, कुछ भी काम सीख लो, जीवन में करना पड़े या ना करना पड़े लेकिन हर काम जितने आप सीख लोगे उतना आपको खुशी रहेगी और कभी जीवन में असफलता नहीं मिलेगी कहीं भी
1: जी। बिल्कुल,
0: ये उनका कहना रहता था। रामायण वगैरह तो बहुत कुछ याद है हमको, वो भी शाम को रामायण होती थी, मोहल्ले वाले सब इकट्ठे होते थे तो हमसे पढ़वाते थे, वो बैठो रामायण पढ़ो, वे लोग अर्थ सुनाया करते थे बड़े लोग
1: जी,
0: वो सुनते सुनते धीरे धीरे बड़ा अच्छा लगने लगा, तो हम पढ़ते थे स्वर में बढ़िया, हम लोग एक दो भाई और बच्चों को वो
1: जी।
0: तो इस प्रकार से, और कहीं जहाँ पुराण की कथा हुआ करती थी 7 दिन का, पिताजी और एक दो लोग और ऐसे ही सुनने, तो उनके साथ बोले चलो हमारे साथ के साथ सुनने जाया करते थे, वो भी पूरा पुराण कई बार सुना है, उनके साथ में ही बैठते थे जाते थे।
1: तो जब पिताजी ने आपको बचपन की सीख दी थी कि हमको अपनी जो ऊर्जा है उसको सही जगह लगाएं ताकि हम सीखते रहें।
0: बिल्कुल, बचपन से ही वो हम साथ में ले जाते थे, चलो क्या कर रहे, पढ़ लिया अपना, अब चलो क्या कर रहे, सो नहीं अब 1 घंटे चलो। तो हमको वो चीजें भी बहुत याद है
1: जी,
0: रामायण और पुराण की कथा है वो भी बहुत याद है। फिर वो वकील साहब के यहाँ भी काम किया कचहरी में, दिन में उनका वकालत का टाइम तो दिन में ही रहता, तो कुछ इस प्रकार से हम, लेकिन हम फ्री रहना हमको शुरू से ही पसंद नहीं है, पिताजी की सीख भी ऐसी रही है, लेकिन वकील साहब से हमने कुछ लिया नहीं है। पिताजी भेजते थे पैसा, बोले चिंता नहीं करना, जो तुम्हें सीखना हो सीख के कुछ बन जाओ तब फिर कुछ कमाने की सोचना, अब इतने काम कर रहे हो तो अच्छी बात।
1: से फ्री रखा आपको, बना ये नहीं रहे कि मुझे अभी कुछ करना ही पड़े, प्रेशर नहीं आने दिया।
0: हाँ, ऐसा कुछ नहीं
1: जी।
0: जब नौकरी लगी जुलाई में, हमारा इंटरव्यू हुआ, ठीक है सर्विस में आ गए, सर्विस लगे, सोर्स था उनका जो हमारे मित्र थे उन्होंने सोर्स लगाया था, केवल बातचीत होती थी आना जाना।
1: तो आपकी जॉब फिर कैसे लगी?
0: बस एम्प्लॉयमेंट से नाम आया और इंटरव्यू हुआ,
1: सिलेक्ट हो गए।
0: बस सिलेक्ट हो गए
1: जी। तो फिर जॉब में से, जो जॉब का जो जीवन होता है वो एक युवा काल जब हम फ्री रहते हैं, माता पिता के आश्रय में रहते हैं, और जब एक काम के जीवन में आते हैं, कार्यमय जीवन में, तो वहाँ पर कोई बॉस होता है, कोई बताने वाला होता है, समय की सीमा के अंदर बंधना पड़ता है, कई बार आप नहीं चाहते हैं कई चीज़ें वो भी करना होता है, तो वहाँ की क्या शिक्षाएं रही जीवन से आपको, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति, जब जो भी हमारे नए युवा सुन रहे होंगे और वो नए जॉब में जाना चाहते होंगे, तो कौन से ऐसे गुण हैं जो उनको काम आएंगे?
0: ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने
1: जी।
0: जॉब में भी थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ता है सीखने के लिए भी, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो चाहती ये काम सीख जाएगा तो हमारी वैल्यू कम हो जाए, ऐसे भी लोग मिले मुझे, लेकिन
1: कंपटीशन की भावना रखते हैं,
0: उनकी भावना किसी किसी की रहती, सभी की नहीं। कुछ लोगों ने थोड़ा सा, मतलब जैसे किसी से कुछ पूछा तुम्हें क्या करना है, आलम टोल करते थे कि जल्दी ना सीख जाए, ऐसा किया करते थे, लेकिन फिर भी हम तो अपनी लगन के जो काम दिया है वो करना है, किसी ना किसी से पूछ के जहाँ अटकते थे
1: जी
0: बड़ा धीरे धीरे
1: करते
0: अपने काम में होशियार हो गए। फिर जो है वो हमारे

0: गए। इसके बाद हमने फिर अकाउंट ऑप्ट किया कि अकाउंट सेक्शन में, अकाउंट का वर्क नहीं जानती थी तो अकाउंट सेक्शन में जाने के लिए एक डिपार्टमेंटल वो चला था कि जो अलग से अकाउंट का ऑप्ट करेंगे। क्या हुआ, एक बार उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, जो कुछ लोग ऐसे थे कि सीख जाएंगे तो हमारा पत्ता कट जाएगा ऐसे वो एक दो लोग रहते ही हैं हर जगह
1: जी, जी।
0: लेकिन फिर भी हम अपनी लगन से धीरे धीरे कुछ लोगों को प्रसन्न कर लिया, उनका काम सीख गए। हर सीट का काम अलग रहता है, जब तक देखा नहीं तो क्या जाने। एक बार क्या हुआ, ऑडिटर आया करते थे अपना ऑडिट करने के लिए अकाउंट में, तो जो थोड़ा सा वैसे लोग थे वो थोड़ा सोचते थे कि इनको किस प्रकार से मॉरली डाउन किया जाए। लेकिन उस समय हमको शिव बाबा का ज्ञान मिल गया था।
1: ओके, अध्यात्म के पथ के राही बन चुके थे।
0: अध्यात्म वैसे भी अपना ईश्वर से लगन तो शुरू से ही थी
1: जी,
0: लेकिन उस समय हमको शिव बाबा का जो आध्यात्मिक ज्ञान है बड़ा अच्छा, फिर तो और प्रसन्न रहने लगे। कोई कुछ भी कहे, हम किसी से द्वेष नहीं करते थे, वे भले हमसे कोई द्वेष करता रहे कुछ भी
1: प्रभावित नहीं होते थे ज्यादा,
0: लेकिन उसमें नहीं, हम तो अपना अपना वही नेचर रखते थे। ऑडिटर आए तो उन्होंने मुझे भेज दिया कि जाओ इनको खाना खिला के लाओ होटल में, क्योंकि हमने खाना पीना होटल का बंद कर दिया। उन लोगों को मौका मिल गया
1: जी
0: कि इनसे ऑडिटर नाराज हो जाएंगे तो इनकी सीट का काम मतलब खराब कुछ ना कुछ। हमने कहा ठीक है साहब, हम चलते हैं। हमारे बॉस तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो सलाह, जो पुराने लोग थे, उनने सलाह दी कि साहब चौरसिया को भेज दीजिए, आज हम लोग नहीं जा पाएंगे।
1: ओके,
0: हमने कहा ठीक है साहब, हम जा रहे। गए तो मैंने 4 थाली का ऑर्डर दिया, तो वो लोग बोले 4 क्यों भाई, आप 5 हैं अपन लोग। तो मैंने बताया सर हम होटल का जो है खाना पीना पसंद नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं, इसलिए 4। तो बोले क्यों नहीं खाते, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। हमने भी फिर जो है ऑर्डर तो कर ही दिया था, तो शिव बाबा को जो आध्यात्मिक आत्मा, क्या शुद्ध भोजन से क्या हमारी शुद्धता होती है, क्या हमारा मन कैसा शुद्ध रहता है, नेचर हमारा सात्विकता कैसे आएगी, इस प्रकार से उनको जो समझाना थोड़ा सा शुरू किया, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी, वे हमसे और प्रसन्न हो गए। और फिर ये देखिए आप कि डेली कुछ ना कुछ फ्री होने के बाद ये आध्यात्मिक चर्चा, वो कहते थे हाँ भाई कुछ सुनाइए वहाँ क्या होता कैसे होता, तो हमको मौका मिल गया। वो 8-10 दिन रहते थे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। और जो हमारा जो काम था,
1: ब्लेसिंग बन गई फिर आपका ये जो सेवा मिली है,
0: जो हमारा सीट का काम था तो वो तो फटाफट जो है जो हम बताएं ये ऐसा है, फटाफट निशान लगाना, उन्हें कुछ देखना ही नहीं अरे बोले आपका क्या देखना, आपका तो ओके है ही। एक दो बार चेक किया गहराई से, वो बाद में फिर
1: समझ गए,
0: वो समझ गए। अब ये जो जलते थे कुछ लोग, जो उनको और बुरा लगा कि ये तो उल्टा हो गया,
1: लेने का देने हो गए।
0: फिर इसके बाद हम जब रिटायर हुए, देखिए आप शिव बाबा का प्रभावित जो वे लोग हुए थे, उनको कुछ गिफ्ट भी दिया अपना, कुछ अच्छे स्लोगन, लक्ष्मी नारायण का, शिव बाबा का चित्र वगैरह, जिसमें लिखा भगवान प्यार का सागर है, सुख का सागर है, इस प्रकार से वो दिए, उनको ले गए। फिर एक बार मैं रिटायर होने के बाद जब वो आए, मुझको पूछा वहाँ दिखाई नहीं पड़े, तो बोले यार वो चौरसिया भाई नहीं दिख रहे, तो उन्होंने कहा वो अभी रिटायर हो गए इस साल।
1: अच्छा,
0: मार्च में ही रिटायर हुए हैं, पर ऑडिट वगैरह तो जुलाई वगैरह में आते काफी। तो उन्होंने मुझे घर से बोला भाई मिलना है उनसे, तो जो मित्र संबंधी सभी अच्छे लोग थे, हमारा व्यवहार तो किसी से बुरा था नहीं
1: जी।
0: तो फिर
1: यही तो आध्यात्मिक की खूबसूरती है कि जब हम अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार आध्यात्मिकता को अपना कर अपने जीवन को चलाते हैं, तो अपने आप जो भी हमारे आसपास लोग होते हैं वो अध्यात्म का खुशबू महसूस होती है उनको, और जो कि आजकल थोड़ा दुर्लभ है लोगों के व्यवहार के अंदर, तो फर्क तो पड़ता है।
0: हाँ, फर्क पड़ता है। तो हमारी किसी से लड़ाई नहीं हुई, और सभी से अभी भी जो लोग हैं साथी, तो अभी भी उसी प्रेम से मिलते हैं। बोले यार तुम तो ज्यों के त्यों हो, जैसे पहले थे वैसे अभी भी हो। कभी कभी कोई जैसे

0: हम उसमें थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे
1: जी,
0: टू पार्ट में बनता हमारा, एक फर्स्ट पार्ट होता है, एक सेकंड होता है
1: जी,
0: सभी जगह होता होगा, तो हम उसमें पार्ट टू ट्रायल बैलेंस, तो जो लोग आते थे भाई साहब एक कष्ट देने आए आपको, मैं बड़े प्रेम से कहते भाई जिसके पास जो है वही तो देगा, लाइए क्या बात है, कम से कम मुस्कुराहट तो आई जाती थी मुख पर, बड़ा सब
1: खुशी, खुशी देने का प्रयास,
0: खुशी का प्रयास, और उनका काम भी किसी को कभी मना नहीं किया।
1: चलिए बहुत ही अच्छी यात्रा आपने बताई और काफी डिटेल में बताया आपने कि किस प्रकार से आपके कार्यमय जीवन की यात्रा रही, उदाहरणों सहित समझाया कि किस प्रकार से अगर हम व्यवहार करते हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। हमें कभी भी ऐसे ईर्ष्या नफरत या कंपटीशन की भावनाओं में खुद नहीं आना है, अगर कोई भी करता है तो शांत रहना है, अपने मन को मैनेज करना है, थोड़ा अध्यात्म का सहारा ले सकते हैं, खुशी देने का प्रयास करना है और इससे कॉन्फिडेंस भी बना रहता है, और जब लोग कोई कोशिश करता है आपको नीचे गिराने की, लेकिन ईश्वर बीच में आकर के फिर आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ योगदान अपना भी कर जाते हैं, और आपके कर्मों का योगदान तो है ही। ये बात सीखी हमने आपके जीवन से जो आपने कार्यमय जीवन बताया। तो काफ़ी देर हमने बातें कर ली हैं, एक ब्रेक लेना चाहिए। मैंने ये जाना था आपसे थोड़ी देर पहले कि मुझे ये पता चला कि आप गीत कविता भी रचना करते हैं और गाते भी हैं, तो हमारे श्रोताओं के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे?
0: सुना सकते हैं, आपकी आज्ञा तो मान रही है,
1: तो प्रस्तुत करिए कुछ,
0: और हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा। पहले एक छोटी सी कविता सुना रहे हैं
1: जी, तो थोड़ा बैकग्राउंड भी बताइए कि क्यों लिखा था, ये क्या विषय है, बोल के फिर सुनाइए।
0: ये थोड़ा सा जब हमको ये शिव बाबा का ज्ञान मिला उसके बारे में थोड़ा सा चार लाइनें, प्रेरणा मिली, आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा सा मिला, तो उस समय जो समझ में आया, चूंकि हम बचपन से ही थोड़ा बहुत कुछ परमात्मा का ये वरदान ही है मेरे लिए, गीत कविताएं वगैरह लिखना, पढ़ना लिखना मुझे पसंद शुरू से ही रहा है। हमारी क्लास में जो हिंदी में जितनी कविताएं होती थी वो मुझको मौखिक याद हो जाया करती थी
1: जी,
0: उसी प्रकार से वो लिखना भी थोड़ा बहुत, कोई प्रतियोगिता वगैरह हुआ करती थी, अंताक्षरी होती थी उस समय, जिस पार्टी में मतलब बंटवारा होता था मेरी पार्टी ही जीता करती थी हमेशा
1: जी, सुनाइए।
0: तो ऐसा दो चार लाइनें शुरू में लिखी थी ये। घोर कलयुग के अंत प्रगट हुए गुप्त संत, प्रेम सुख शांति आत्मज्ञान की पिटारी है, संग दोषों छुड़ाएं, पंच भूतों से बचाएं, दुष्प्रवृत्तियों पर चलाते ज्ञान की कटारी है, शिव का संदेश देवे, साधारण वेश होवे, ज्ञान वीणा सुनावे, शिव शक्ति ही धारी है, गंगा सी पावन कलि कलश को नसावन, ज्ञान अमृत पिलाती सदा ब्रह्मा कुमारी है।
1: अरे वाह,
0: ओम शांति
1: जी। तो ये आपने अपने मन की भावनाएं व्यक्त की, किस प्रकार से आपके जो साधारण जीवन था उसको आध्यात्मिक जीवन में बदलाव लाने के लिए जो सहायता मिली, संस्थान के बारे में आपने लिखा है
0: जी। हाँ, शुरू शुरू की बात है
1: जी, बहुत अच्छा लगा सुन करके। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी और रेडियो मधुबन पर आज हमारे साथ मौजूद है कालका प्रसाद जी, और कालका प्रसाद जी से बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक ब्रेक लेंगे और फिर लौट कर आएंगे, जहां हम जानने का प्रयास करेंगे उनके वर्तमान जीवन को कि किस प्रकार से वर्तमान जीवन, जो सिटीजन की एज है उनकी वर्तमान, तो वो कैसे वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। फिर लौट कर आएंगे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
2: का तो दिल न दुखा, अपनी माँ बाप का तो दिल न दुखा, अपनी जन्नत को

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पे सलामी जिंदगी कार्यक्रम, और हमारे साथ आज मौजूद हैं एक विशेष अतिथि जो झांसी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं। आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे अपनी सेवाएं देने के बाद में अपना अवसर प्राप्त जीवन अभी व्यतीत कर रहे हैं। आप एक अध्यात्म के राही हैं और इस एज में भी काफ़ी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ प्रतीत होते हैं। कालका प्रसाद जी, जैसे हमने आपके बचपन और युवा काल, आपके कार्य में जीवन के बारे में जाना, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि परिवार और परिवार के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो घर में बच्चों का आगमन होता है, एक धर्मपत्नी होती हैं जिनके साथ ताल बिठा के चलना होता है आगे, ताकि हमारा जीवन जो है सुखमय रहे, हमारा एहसास जो है यादगार बन जाए जीवन का। ये जीवन कैसे आगे बढ़ा, आपके युगल के साथ कौन सी वो गुण है जो आपने बीच में रखा ताकि आपका जीवन अच्छा चले, और बच्चों को कैसे पालना दी?
2: हमारी युगल भी कहिए बहुत साधारण और किसी से उनको मतलब नहीं, दुनियादारी से
1: जी
2: सिंपल रहना, और उन्होंने बहुत मदद की हमारी आगे जीवन में बढ़ने के लिए
1: जी।
2: उनकी कोई इच्छा नहीं कि मुझे क्या चाहिए, कुछ पहनना या कुछ भी नहीं, जो परमात्मा कृपा से जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रही, वो
1: संतुष्ट रही
2: और अभी भी संतुष्ट रहती हैं
1: जी।
2: और जैसे ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला तो दूसरे दिन से हम और वो दोनों ये अपनी आध्यात्मिकता में समर्पित ही हो गए दोनों
1: जी।
2: और हमारे जो बच्चे थे, बच्चे भी जो है साथ में
1: अध्यात्म पथ के
2: चलते थे साथ में। बाकी स्कूल में बच्चों का पढ़ाई तो होती है, वो कड़म पढ़ते हैं
1: जी।
2: हमारे दो बच्चियां और एक बच्चा, तो आजकल तो एक छोटी बच्ची जो है बाबा के अपना, उसने तो आध्यात्मिकता ही अपना पूरा जो है
1: अध्यात्म के लिए जीवन समर्पित कर दिया।
2: जीवन समर्पित किया, ये समर्पित जीवन बिता रही है आजकल ब्रह्मा कुमारी पूर्ण रूप से
1: बन करके
2: झांसी सेंटर पर। और एक जगह है थोड़ा सा झांसी के अंडर में ही है, 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन
1: वहाँ रहते
2: वो खनिया धाना वो सेंटर वो संभालती है
1: जी। तो जैसे आपने बताया धर्मपत्नी के बारे में कि उनकी सरलता, उनकी संतुष्टता जो है वो आपके जीवन में बहुत सहायक रही कि आप जो भी करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी बहुत सारी इच्छाएं व्यक्त नहीं की, तो उसके द्वारा ही आगे बढ़े। बच्चों को बड़े करने के लिए कौन सी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि जो आजकल हम देखते हैं कई बार कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भेदभाव हो जाता है, मतांतर हो जाता है, बच्चे कह देते हैं कि आपको क्या पता ये जमाना बदल चुका है, या ऐसी बातें होती हैं, आपने बड़ा करने में कौन सी बातों का ध्यान रखा?
2: आजकल के बच्चों जैसे हमारे बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया है
1: जी।
2: उनको शुरू से ही हमने अच्छी शिक्षाएं दी हैं, और कहीं वो नहीं हुआ है उनका कि कोई उल्टा सीधा है, लड़ाई झगड़ा है। अब हमारी दोनों बच्चियां एमए किया हुआ है, एक ने तो बीएड भी किया है, एमए भी किया, बीएड किया है।
1: अरे वाह,
2: उसकी तो शादी हो गई, और ये भी एमए किए हुए हैं, एमएससी भी कर लिया है इन्होंने, तो छोटी बच्ची जो समर्पित है। और बच्चे को भी जो है, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ दी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में
1: जी।
2: एक बार उसमें वो भी कारण है फेल हो गया, कर दिया गया, तो उसका मन उचट गया फिर पढ़ाई से
1: जी।
2: जब रिजल्ट आया तो मायूस हो गया, बड़ी उमंग में था, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, अच्छा पढ़ने वाला अच्छा है, लेकिन देखिए आज के जमाने में क्या होता है, एक सर की ट्यूशन छोड़ के दूसरे सर में वहाँ दोस्तों में आसान हुआ, तो दूसरे सर को वो सब्जेक्ट पढ़ने को उनकी ट्यूशन जाने लगा।
1: ओके।
2: तो वो सर उनसे नाराज हो गए अंदर ही अंदर, वो साइकिल स्टैंड वाला बोलता बच्चे तुम फेल हो जाओगे, लेकिन बच्चे ने कभी हमें नहीं बताया
1: ओके
2: कि वो साइकिल वाला ऐसा कहता है स्टैंड वाला। एक बार लास्ट में पेपर का टाइम आने वाला ही था, तो उसने मुझे बुलाया, जिसकी ट्यूशन छोड़ दी थी बच्चे ने, उसने बताया आपका बच्चा स्कूल ही नहीं आता है, आप केयर नहीं करते हो, फेल हो जाए तो मुझसे नहीं कहना, अब देखिए कितनी बड़ी बात। तो मैंने कहा सर वो तो रोज आता है बच्चों के साथ में, जैसे पहले आता था वो हमेशा ही आता है। बोले हम ये नहीं जानते, लेकिन हमारी क्लास में नहीं आता है।
1: ओके।
2: हमने कहा ठीक है साहब, नहीं आता होगा, अभी हम देखेंगे डांटेंगे। बाद में बच्चे से पूछा रात में कि क्या बात है, वो सर तो ऐसा कह रहे थे। बोले नहीं पापा हम तो रोज जाते हैं और वे तो किसी न किसी बहाने हमें टेबल पे खड़ा कर देते हैं।
1: ओके।
2: जैसे कुछ पढ़ा रहा है और थोड़ी सी खांसी भी आ गई तो क्यों तुमने डिस्टर्ब किया टेबल पे खड़े हो, इस टाइप से करने लगे वो,
1: तंग करते थे,
2: तंग ऐसा करने। हमने कहा कोई बात नहीं चिंता नहीं करो, पढ़ते तो हो ही, तुम्हें आता सब कुछ है, चिंता नहीं करो कोई बात, मार साहब है उनकी इज्जत करना चाहिए। इस प्रकार से समझा दिया था। जब रिजल्ट में फेल हुआ वो, तब उसने फिर सारी बातें बताई।
1: ओके।
2: ऐसा कहते थे बच्चों से भी कि वो फेल हो जाएगा, वो क्लास में के बच्चों से जो उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे वो बच्चे ने सारी बातें। हमने कहा भैया अगर पहले बताते तो कुछ उनसे मिलते, रिक्वेस्ट करते, लेकिन फेल हुए तो कहाँ हुए, जो उनकी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है उसमें फेल हुए, बाकी रिटेन में तो उनका चलता नहीं, बोर्ड की परीक्षा थी, लेकिन उसमें उनने फेल करा दिया, इस वजह से उसे फेल। बाकी सेकंड डिवीजन के नंबर हर सब्जेक्ट ये था बच्चे का, फिर उसने पढ़ाई छोड़ ही दी फेल होने के बाद। फेल होने एक दुकान घर में ही हमने पहले से ही निकलवाई थी थोड़ी सी, रिटायर होने के बाद फालतू बैठना बेकार है, तो उसको वो दुकान खुलवा दी, दुकान भी करता, फिर वो प्लॉटिंग वगैरह ये बिल्डर वगैरह उनके साथ उनका संयोग मिल गया, वो भी कर रहा है।
1: कई बार ऐसा अप्रत्याशित चीजें हो जाती हैं जीवन में, पर यह भी एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है, और कभी कभी उसमें भी काफी खूबसूरती देखने में आती है। कई लोग जो एक चीज नहीं कर पाते हैं कोई भी कारणवश, दूसरी चीज में बहुत सफल हो जाते हैं फिर।
2: बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, यही होता है। वो मायूस था, उसको इतना समझाया, प्रसन्न किया, कुछ नहीं यार पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, बिना पढ़े लोग लखपति करोड़पति है, वो पढ़े लिखे उनके सामने नौकरी करते उनके घर में, इस प्रकार से समझाया दो चार दिन उसको, तो थोड़ा सा उसको लगा कि हाँ ठीक है कुछ नहीं। हमने कहा देखो दुकान है ही अपनी मोहल्ले में, आराम से दुकान चलेगी, दुकान खोलो। जो एक रिश्तेदार थे उनकी थी स्टेशनरी की दुकान।
1: ओके।
2: वहाँ पर बोले आप हमारे पास भेज दो बच्चे को, 15-20 दिन में ट्रेंड हो जाएगा, ये है होशियार है पढ़ने में
1: जी।
2: उनके पास आना जाना, दुकानदारी पूरी उसने सीख ली। तो बोले अब तो पापा हम अपनी दुकान खोलेंगे। तो उनसे पूछा मैंने कि ये कहने लगा अपनी दुकान खोलेंगे, आपकी क्या राय है। बोले नहीं वो एक्सपर्ट हो गया,
1: कर लेगा,
2: दुकान आप खुलवा दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो उन्होंने सहयोग किया, दुकान कैसे मैं तो जानता नहीं, तो उन्होंने ही जो है इसमें कैसे लाना क्या करना
1: जी।
2: दुकान चली कुछ दिनों के बाद, वो ऐसे दुकान में तो हर प्रकार का व्यक्ति आता है, तो ऐसा संयोग हुआ मोहल्ले में ही पास में एक भाई बोले कि आप दुकान में बैठे रहते हो तो इतना प्लॉट जो है कोई लेने वाला हो उसको आप बेचो, आपको इतना कमीशन मिलेगा उसका, एक प्लॉट पे इतना पैसा मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है हमारे पास तो हर प्रकार के लोग आ रहे। वो ये करने लगा, चलने लगा रिश्तेदार और भाई लोग जो परिचित, तो कई लोगों ने उससे प्लॉट खरीदे, तो उसका पैसा इसको मिला, तो इसका और हौसला बढ़ गया,
1: बिजनेस ही बढ़ गया।
2: और जो वो मेन हेड थे इसके, तो उनको भी लगा कि यार ये बच्चे ने इतने प्लॉट बेच दिए इतने एक साल में, तो इस प्रकार से फिर उसका हौसला बढ़ गया, सब करने लगा। बाद में
1: तो जीवन की जो शिक्षाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से हमें प्राप्त होती हैं। हर एक के जीवन में कुछ ऐसा संघर्ष आता है और संघर्ष के बाद एक सफलता भी प्राप्त होती है, और जब सफलता प्राप्त होती है तो यही संघर्ष हमारी शिक्षा बन जाता है, और हमारे ही जीवन के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी ये शिक्षा बन जाता है। लोग भी कहते हैं कई बार देखे कि देखो उनको इस जगह पर सफलता नहीं मिली या चुनौतियाँ आई, पर उन्होंने थोड़ा सा अपना रास्ता बदला और फिर इस प्रकार से उनको भगवान ने सफलता दी, उनके प्रयासों ने सफलता दी। तो एक हार्ड वर्क और करने की इच्छा रखना और साथ में कोई पीछे होना जो आपको हौसला दे, ये सारी चीज़ें मिलकर एक जीवन को बहुत अच्छी दिशा में ले जा सकती हैं। ये हम आपके द्वारा जो बताई गई है आपकी जीवन यात्रा की घटनाएं हैं, उनसे हमें सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारे और अपनी जीवन की यात्रा से बहुत सारी अनमोल बातें हमारे सामने रखी, हमारे दोस्तों के सामने। तो इन बातों को ज़रूर वो समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और जाते जाते मैं आपसे और एक बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपकी जो रचनाएं आपने रची हैं, तो ऐसी कुछ रचना हमारे श्रोताओं को सुनाइए जिसको सुनकर उनके भी अंदर कुछ प्रेरणा जागृत हो।
2: जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो करते चलो शुभ कर्म धीरे धीरे,

कर रहे स्थापना, सत धर्म धीरे धीरे तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे। जो करते चलो शुभ कर्म धीरे धीरे,

में मुक्त है करा दे। कर्मों की गहन गति वो हमको समझाते, आत्मज्ञान दे रहे हैं हमें धीरे धीरे। तो सम

मिल जह मुक्ति जीवन मुक्ति धीरे धीरे तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे।

0: रे तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कालका जी आपका रेडियो मधुबन पर आज आपने अपनी जीवन गाथा के साथ साथ अपनी रचनाओं को भी हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया और इतना समय दिया रेडियो मधुबन के कार्यक्रम सलामी जिंदगी पधारे। तो ऐसे ही आप आते रहिए रेडियो मधुबन पे और हमारे श्रोताओं के साथ मुखातिब होते रहिए बीच बीच में। तो दोस्तों आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर थे कालका प्रसाद जी और आपने उनके जीवन के अलग अलग अनुभवों को सुना। आशा करते हैं कि आपने जरूर उनमें से कुछ ना कुछ सीख ली होगी और आज हम सलाम करते हैं इस जिंदगी को रेडियो मधुबन से कार्यक्रम सलामी जिंदगी में। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: अभी बजे हैं दोपहर के 2। एक मिनट का यह समय स्वयं को और परमपिता परमात्मा को दो।

0: आप सुन रहे हैं आपकी जानी पहचानी आवाज और आपका होस्ट और आज के शो का आपका हमेशा का दोस्त और आपका फेवरेट प्रोग्राम है जुनून। जुनून कुछ कर गुजरने का, कुछ कर जाने का और ऐसा कुछ जिससे कि समाज में आता है चेंज। चेंज जिसके लिए हम हमेशा ही तरसते हैं, हमेशा तड़पते हैं। और एक इंसान की खूबी होती है कि वो हमेशा चाहता है चेंज। चेंज बट होना चाहिए पॉजिटिव। तो ऐसे चेंज के पॉजिटिव बनाने वाले और ऐसे पॉजिटिव माहौल को तैयार करने वाले कुछ लोग हमारे बीच में हैं जिन्हें हम हमारे शो में कहते हैं जुनूनी। तो ऐसे ही कुछ जुनून की एक शख्सियत हैं जिनको हमने ढूंढा करौली में। करौली के हिंडौन शहर से आप आती हैं। आप हैं श्रीमती अनिता मीना जी। अनिता जी जो हैं वो जुनूनी हैं और काम कर रही हैं विमेन राइट्स के लिए और आप एम्बेसडर हैं राजस्थान सरकार की महिला अधिकारिता विभाग से और आप इसके साथ साथ सेवारत हैं राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में। आपको मैंने देखा काम करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए समाज में कुछ पॉजिटिव बदलाव हमारी बेटियों और हमारी लड़कियों और हमारी महिलाओं के लिए और आधी आबादी को उसका आधा हक दिलवाने के लिए आज भी प्रयास रहते हैं। मैं दुआ करूंगा कि उनका आधी जमीन ही नहीं, उनका आधा आसमान भी वो लें और भारतीय वायुसेना में भी मैं कहता हूँ आधी पायलट जो है महिलाएं होनी चाहिए। आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या जुनून है और हमारे शो में हम उन करते हैं उनका इस्तकबाल, उनका स्वागत। वेलकम अनिता जी।
1: जी नमस्ते नमस्ते।
0: तो अनिता जी, आपका जुनून जो है वो क्या है? क्यों आपको मैंने जुनूनी मानते हैं लोग आपको?
1: जी सर, इसको जुनूनी मानते हैं तो ये एक तरीके से मैं तो अपना सौभाग्य समझूंगी कि मेरे को मेरे जो काम है उसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं। तो
0: जी
1: इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारी जो महिला है, हमारी जो बहनें हैं, तो वो
0: जी
1: आज भी ग्रामीण जो क्षेत्र है, रूरल एरिया है, उसके अंदर अपने अधिकारों को नहीं पहचान पा रही हैं। तो
0: जी
1: कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा आगे लाना इसका उद्देश्य है। इसमें भावनात्मक तौर पे, मेंटली तौर पे और जैसे फाइनेंशियल तौर पे कहीं ना कहीं उनको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। तो ये ही इस मेरा जो ये संगठन है अस्तित्व की उड़ान, तो उसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारी जो आधी आबादी है वो क्यों खुद को मतलब पीछे समझती चली आ रही है, कहीं ना कहीं उसको जागरूक करने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य को लेके भी जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर महिला अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेगी तो वो कैसे अपने परिवार को संभालेगी, अपने बच्चों को संभालेगी और खुद अपना ध्यान रख पाएगी? अगर वो स्वस्थ नहीं होगी तो कैसे अपने बच्चे हैं उनके प्रति वो अवेयर रह पाएगी? तो एक महिला को सबसे प्रथम मैं ये मानती हूँ कि स्वस्थ होना जरूरी है। तो इसके लिए हम ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, तो उसके लिए कई बार मुझे CLV लेनी पड़ती है या फिर कई बार जैसे टिपिकल कंडीशन होती है, लेकिन कुछ नहीं है, एक तरीके से सोच रखा है कि अपनी बहनों के लिए हम कुछ करें तो एक थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि होगी कि हम सोसाइटी के लिए अपनी जो साथ वाली जो वो बहनें जिनको की पूरी तरह से अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, वो केवल एक किचन तक ही खुद को सीमित रखे हुए हैं, उनको थोड़ा सा आगे लाने के लिए कोशिश है। तो
0: जी,
1: मेन उद्देश्य ये है महिला सशक्तिकरण। जी
0: ये आपका जो जुनून है इसकी शुरुआत कैसे हुई है आपकी जिंदगी में?
1: हाँ, मेरी जिंदगी में 2019 से मैंने इसको स्टार्ट किया था। काफी उस टाइम पे सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव रहती थी मैं, तो वहां पे काफी सारे कार्यक्रम होते थे। वहां मैं देखती थी कि महिला प्रतिनिधि के तौर पे कोई भी महिला वहां पर नहीं आती है। दूसरी बात, मैं आदिवासी समाज से हूँ, आदिवासी मीणा समाज से, तो
0: जी
1: हमारी जो एक जाजम प्रथा होती है वहां पर पंच पटेल फैसले लेते हैं, तो वहां
0: जी
1: पर अब तक महिलाओं को उस जाजम पे चढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। चाहे वो फैसले महिला हित में ही ले, बच्ची के साथ में किसी प्रकार का कोई प्रकरण चल रहा है तो उस मैटर में भी केवल हमारे जो पंच भाई हैं वो ही फैसले लेते आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि जैसे अब समाज बदलाव की ओर है, कहीं हमारी बच्ची के साथ में किसी प्रकार का कोई दुष्कर्म जैसी कोई बात हो जाती है या किसी भी तरह का कोई टिपिकल वो मैटर हो जाता है, तो ऐसे में महिलाओं को थोड़ा सा आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारी बच्ची एक माँ से, एक बहन से और एक जो महिला कैंडिडेट है उससे थोड़ा सा खुल के कह पाएगी। तो वहां पर मतलब मैंने जाना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि जैसे ये मुद्दा है इसी तरीके से और भी कई मुद्दे हैं, वहां महिलाओं को थोड़ा सा आगे आना चाहिए। एक जो छवि है कि तीए की बैठक में झुंड का झुंड बना के महिलाएं चली जाती हैं, गीत संगीत और केवल सौंदर्य प्रतियोगिता में हमारी बहनें हैं वो आगे आती है, तो क्यों नहीं कुछ जो जरूरी जो मुद्दे हैं उनमें भी महिलाएं आगे आए। तो ये सोच के लगा कि अपनी बहनों को थोड़ा सा जागरूक करें। सब कुछ उसके अंदर ही है, सारी शक्तियां उसके अंदर ही निहित है, बस उनको थोड़ा सा आगे लाने की आवश्यकता है। किसी न किसी को तो आगे आना होगा, तो क्यों ना मैं इसके लिए प्रयास करूं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, एक महिला हूँ, एक समाज की एक कैंडिडेट हूँ जिसमें महिलाएं अब तक पीछे रही। तो सर थोड़ा सा, कई बार जाजम पे भी मैं गई हूँ, हमारे समाज में होती है 5 जिलों की महापंचायतें होती हैं, 8 जिलों की महापंचायतें होती हैं, और इसकी शुरुआत मैंने अपनी ससुराल से ही की।
0: जी
1: ससुराल मेरा कटकड़ कटकड़ है, हिंडौन के जस्ट पास में। तो वहां पर 2020 में एक 2020 में हुई थी, एक पंचायत हुई थी, तो उसमें मैं गई और मैंने काफी सारे मुद्दे रखे हैं कि हमारे जो युवा वर्ग और हमारी जो महिलाएं, महिला कैंडिडेट है, उनको भी थोड़ा सा आप साथ में लेके चलोगे तो शायद हमारे समाज में एक अच्छा सुधारात्मक प्रयास हमको देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ी सी एक कोशिश की गई, और लगा कि आत्मसंतुष्टि बहुत जरूरी है जब हम समाज के लिए, जब हम अपने इस वंचित वर्ग के लिए कुछ करते हैं, तो हमारे अंदर
0: जी
1: एक एक सकारात्मकता आती है, एक संतोष पैदा होता है। जी सर,
0: जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो आपका जो अनुभव है, पिछले दिनों जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स आपने मुझे बताए।
1: जी जी
0: मैं चूंकि मेरी परवरिश मेट्रोपॉलिटन में शहरों में हुई है और मैंने जीवन के
1: जी
0: अपनी पोस्टिंग्स के अपने काम के दौरान भी बड़े शहरों में ही काम किया है, तो मुझे करौली
1: जी जी
0: जैसे
1: जी
0: एक पिछड़े हुए जिले में पहली बार आने का मौका मिला। और करौली में जब आपसे मुलाकात हुई तो मुझे मैंने कई सारे इंडिकेटर्स नोटिस किए। जैसे आपने मुझे एक इंडिकेटर बताया कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे कितनी महिलाएं स्कूटी से दिन में अपना पेट्रोल डलवाने आ रही हैं, एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है ना, जो
1: जी
0: सामान्य
1: जी
0: हम शहरों में देखते हैं। तो आपका
1: जी
0: मानना है,
1: जी
0: आपने देखा कि करौली में वो है ही नहीं, वो इंडिकेटर पे काम ही नहीं हुआ।
1: हाँ हाँ बिल्कुल ही नहीं
0: तो
1: हुआ।
0: वो एक इंडिकेटर है कि कितना वुमेन एम्पावर हो रहा है। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सौंदर्य नहीं, शौर्य के क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो
1: जी
0: जाजम पे जब आप गए तो पंच पटेलों और पंचायत ने कैसे आपको देखा और कैसे उनके रुझान थे आपके प्रति और आपने कैसे उनको डील किया? कोई
1: हाँ जी
0: घटना
1: सर बिल्कुल,
0: कोई घटना
1: हाँ
0: बताइए ना अपने अनुभव से।
1: हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, घटनाएं तो काफी हैं, बिल्कुल मैं बताना भी चाहूंगी आपको। जो फर्स्ट बार मैं गई 2020 में,
0: जी
1: तो मेरे सामने एक धर्म संकट पैदा हो गया, क्योंकि हमारे समाज में भी वही जो घूंघट प्रथा है वो चल रही है, बिल्कुल है ना।
0: जी जी
1: तो ये लगा कि मैं कैसे अपने विचार रखूंगी, तबीयत भी खराब हो गई थी 2 दिन
0: जी
1: पहले, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मेरे को जाना चाहिए। मैं गई
0: जी
1: तो स्कूटी से, वही हमारा जो परंपरागत जो जो पहनावा है सर, वो थोड़ा सा अलग है, उसमें 7 फुट का वो घाघरा होता है, लुगड़ी होती है, तो उन्हीं को पहन के मैं स्कूटी से गई, तो लोग इस तरीके से देखने लग गए कि जैसे किसी अजूबे को देखते हैं, क्योंकि वो फिट नहीं हो रही थी वो चीजें। वहां पे गई तो वहां पे भी रखा उन्होंने, लास्ट में मेरे को मौका दिया गया, उससे मैंने खुद ने ये कहा कि मैं भी अपने विचार रखना चाहती हूँ, तो उनको लगा कि भाई ये महिला जब आगे से कह रही है तो इसको देना चाहिए मौका। हर तरह के लोग होते हैं, जैसे बुजुर्ग वर्ग है वो तो आज भी थोड़ा सा यही समझता है कि ये कहाँ इसको, मतलब वही थोड़ा नेगेटिविटी आई उनके अंदर, कुछ वर्ड भी ऐसे बोले, लेकिन जो युवा वर्ग था साथ में, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, वो मौका मौका मिलना चाहिए, वो मेरे ससुराल के जस्ट पास ही था, तो वहां पर रखे, काफी सारे विचार रखे, हालांकि उनको सुना गया, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में तो अभी थोड़ा सा लगेगा टाइम। दोबारा फिर और 2-4 महापंचायतों में गई तो विरोध होना शुरू हो गया कि भाई अरे ये तो सरपंची का चुनाव लड़ेंगी। कहीं ना कहीं लोग जो कि राजनीति क्षेत्र में थोड़ा सा आगे आना चाहते हैं, तो उनको एक तरीके से ये लगा कि कहीं ये हमारे लिए कॉम्पिटिटर तो तैयार ना हो रहा है, नहीं हो रही है, तो इस तरीके की चीजें आई। तो जब अगली 2-3-4 महापंचायतों में चली गई थी मैं, अगली महापंचायत मेरे ससुराल के पास ही हो रही थी, तो लोगों ने पहले ये सोच लिया कि नहीं अनीता मैडम को नहीं आने देंगे। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ था, तो वहां से भी मेरे को उन्होंने, उन लोगों ने डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने फिर जो कुछ वहां के जो वो थे एडमिन थे, उनसे मैंने ये कहा कि आप बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और केवल एक महिला आपके इस ग्रुप के अंदर जुड़ रही है, वो थोड़ी जागरूक है। पहली बात तो हमारी बहनें इतनी जागरूक नहीं है कि वो महापंचायतों में जाके अपने विचार रखें। सर ये बहुत शोचनीय विषय है कि इन इन सब्जेक्टों को है ना एकदम नॉनसेंस के समझा जाता है। तो मैंने कहा उनसे कि भाई एक महिला जब आगे आना चाहती है तो आप लोग उसको, मतलब उसे ग्रुप से निकाल देते हो, तो कुछ लोगों को लगा कि सच में ये चीज सही है, तो उन्होंने दोबारा फिर मेरे को जोड़ा। तो मैड़ी में, तो जो मेरे ससुराल के पास मैड़ी गांव है सर, वहां पे थी वो महापंचायत, तो उसमें तो मेरे को नहीं आने दिया, लेकिन एक जयपुर के पास है, आपको पता हो तो आंधी एक गाँव है, आंधी है, तो उसमें एक महापंचायती थी, महापंचायत हुई थी, तो मेरे साथ ही और भी 6-7 और महिलाएं आई, और वो एक तरीके से उस वर्ग के ऊपर मैं ये कहती हूँ कि एक एक तरीके से कड़ा तमाचा था, जो ये मानते थे कि अरे ये महिलाओं का तो थोड़ा ना ये सब्जेक्ट है, महिलाएं क्यों आगे आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो संकीर्ण सोच थी उसके ऊपर एक तमाचा था कि मेरे साथ की और भी काफी सारी महिलाएं आगे आई। हालांकि आज भी उतनी जागरूकता नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज का थोड़ा सा समझ लिया गया है कि अब जरूरत है कि हमारी महिलाओं को राजनीति में हम आगे लेके आते हैं, हम यूपीएससी के एग्जाम के लिए आगे लेके आते हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी हम बनाते हैं, तो क्यों ना गांव के जो गंभीर मुद्दे हैं वहां पर भी महिलाओं की राय को रखा जाए। तो इस चीज को थोड़ा सा गंभीरता से उन लोगों ने लिया और भी बहनें जागरूक हुई हैं, अब थोड़ा जानने लगी हैं।
0: ये तो महापंचायत है अनिता
1: जी जी
0: जी,
1: जी
0: ये इनकी क्या भूमिका होती है, क्या करती है महापंचायत?
1: इनकी सर ये भूमिका होती है कि ग्रामीण परिवेश में कई जैसे अपराध होते हैं, तो उनका वो स्थानीय स्तर पे निपटारा करते हैं ताकि गरीब वर्ग का पैसा और समय बचा लिया जाए। कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच को लेकर ये होती है, लेकिन उनका पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में काफी कुछ मशक्कत करनी पड़ती है। हमारे समाज में काफी सारी सब्जेक्टों को लेके हुई है कि जैसे कुछ महिलाएं हैं जिनको उनके हस्बैंड उन्होंने छोड़ दिया, शादी कर ली और उनको छोड़ के फिर कहीं दूसरी जगह रह रहे, क्योंकि हमारे आदिवासी विधान के अंदर सर थोड़ा सा ये है कि तलाक वाली चीजें हैं, हिंदू जो मैरिज एक्ट है ना वो लागू नहीं होता है सर, तो
0: जी
1: वो कर लेते हैं इस आड़ में दूसरी महिला के साथ में शादी कर लेते हैं। और वो जो बेचारी वो ग्रामीण वो जो पहली जो औरत होती है जो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती है और बच्चे भी उसके साथ ही रहते हैं, उसको एक संघर्ष में जीवन जीना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं
0: जी
1: ऐसे इस प्रकार के जो प्रकरण है ना इनका निपटारा होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि वास्तव में है तो एक सकारात्मक चीज, लेकिन उसमें अब जो मेरा जो विषय था वो ये था कि बालिका दुष्कर्म, बाल अपराध और कुछ जैसे ऐसे छेड़छाड़ जैसे कई प्रकरण होते हैं, तो ऐसे मैटरों में तो महिलाओं को थोड़ा सा लेना चाहिए, युवा वर्ग और महिलाओं को, तो इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा अब एक क्रांति आ रही है और लोग इस चीज को थोड़ा सा समझ रहे हैं। जी सर
0: श्रोताओं जो हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें कि आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और माउंट आबू की वादियों से आप सुन सकते हैं इन हमारे रेडियो स्टेशन को। ट्यून इन करें 107.8 FM रेडियो मधुबन, और हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन से भी आप दुनिया के किसी भी कोने में हमें सुन सकते हैं। हमारे साथ हैं एक जुनूनी श्रीमती अनिता मीना जी, जो हिंडौन से आती हैं, और वो अपने समाज और अपने आदिवासी समाज और खासतौर पे अपने परिवेश में चल रहे जो महिलाओं का स्ट्रगल है उस पे हम उनके साथ बात कर रहे हैं, और उन्होंने कैसे अपनी जगह उस जाजम पे बनाने का प्रयास किया है जहां पर लोकल लेवल पे न्याय और छोटे मोटे विवाद जो है तय करने की का प्रयास समाज अपने लेवल पे करता है और न्यायिक प्रक्रिया में नहीं जा पाता है। लेकिन हम मानते हैं कि श्रोताओं आप जान लें कि ज्यूरिसप्रूडेंस देश का जो है वो यहाँ पर काम करता है, और ये जो विचार हैं अनीता जी के अपने विचार हैं, हम किसी भी तरह की महापंचायत या इस तरह के पंच पटेलों के न्याय को स्वीकारोक्ति इस मंच से नहीं दे रहे हैं, और दुष्कर्म के मैटर्स में निश्चित रूप से यदि किसी के साथ इस प्रकार या किसी बालिका के साथ इस प्रकार से हुआ है तो निश्चित रूप से हमें न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, गांव के जो स्थानीय विवाद हैं निश्चित रूप से उनको राजामंदी और बातचीत के माध्यम से ये सॉल्व करने का एक पॉजिटिव मंच है जो कि अतीत से या कई वर्षों से हमारे समाज में जिसकी जगह बनी हुई है। आइए हम अनीता जी से वापस से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। अनीता जी, ये डिस्क्लेमर जरूरी था और श्रोताओं को इस बारे में मालूम होना चाहिए। तो अनीता
1: जी
0: जी, मैं
1: जी
0: आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कह रहा था कि आपके कम्युनिटी ने बहुत तरक्की की है और खासतौर पर महिलाओं ने अपने पेशे में और सरकारी सेवाओं में अपनी जगह बनाई है, बड़ी से बड़ी नौकरी है आप लोगों के समाज ने, आदिवासी समाज में ने पाई है, और खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी समाज को जब मैं देखता हूँ कि उनकी साक्षरता दर
1: जी
0: बहुत अच्छी है, अंग्रेजी में उन्होंने बहुत तरक्की की है, सरकारी सेवाओं में बड़ी संख्या में आए हैं, वैसे ही कुछ कुछ कमाल यहाँ के मीना और आदिवासी समाज ने राजस्थान ने किया है। तो फिर भी
1: जी
0: इन
1: जी
0: सब कुछ होने के बाद भी कहाँ कमी रह जाती है कि आदिवासी महिलाओं की जो जगह है राजस्थान में अभी भी उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो तरक्की है, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं, क्या आपको लगती हैं वो बाधाएं क्या हैं?
1: सर मेरे को जो मुख्य बाधा लगती है वो ये लगती है कि खुद की सोच को थोड़ा सा ऊपर उठाने की जरूरत है। एक महिला की जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो फैमिली और बच्चों तक ही सीमित रह जाती है।
0: जी
1: तो आज के समय में महिला को खुद को अपने अधिकारों को लेके जब थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जागरूक और सशक्त महिला एक परिवार को पूरी तरीके से नहीं चला सकती है, या फिर बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, हस्बैंड के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, सब चीजों को लेके महिला आगे बढ़ सकती है, मेरा ये मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी राय बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से खुद को रखनी जरूरी है। और ऐसे में थोड़ा सा ये हो जाता है कि महिला जब राजनीति में जाती है तो कहीं ना कहीं उसके बैकबोन जो बने हुए होते हैं वो उसके हस्बैंड और जैसे ससुर हैं वो थोड़ा सा चलाते हैं, तो उस जगह महिला को अपनी राय रखनी चाहिए, अंतिम फैसला महिला का होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा है ही है कि पुरुष वर्ग तो कहीं भी उसको पीछे लाने में पुरुष वर्ग का कोई योगदान नहीं है, खुद महिला को ही
0: जी
1: अपने को लिए अपने को आगे लाने के लिए मतलब फर्स्ट पायदान पे लाने के लिए मानसिक तौर पे खुद को तैयार करना चाहिए। एजुकेशन जरूरी है, जॉब जरूरी है, कहीं भी आप अच्छी जगह पहुंचो, लेकिन अपने फैसले या फिर कोई कई जो बड़े और गंभीर फैसले उनमें अपनी राय वो रखे, खुल के राय रखे, ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आज ही महिला जॉब करती है लेकिन पेट्रोल पंप पे वो, कि मतलब मैं नहीं देखती कि कोई स्कूटी लेके खड़ी होगी। दूसरी
0: जी
1: बात सर, हॉस्पिटल है, बैंक है, रेलवे की जो लाइन होती है उनमें महिला के लिए एक अलग लाइन होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है, वहां पर भी जेंट्स लोग हैं वो ही भरे रहते हैं। तो मेरे को कई बार कहना पड़ता है कि भैया प्लीज आप थोड़ा सा साइड में हो साइड लीजिए और मैं थोड़ा सा आऊँ आगे। और महिला वैसे ही है, कहीं भी अपनी जगह पे ये छोटी छोटी चीजें हैं तो यहाँ पर ही अपने विचार नहीं रखती है। तो मेरे को ये कहना है कि महिला जहां पर उसके लिए जो चीजें नियुक्त की गई है वहां पर अपने विचार रखे, खुल के विचार रखिए।
0: जी और विचार रखेंगी तभी तभी वो अपनी जगह बना पाएंगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि
1: जी
0: मैं देश के अलग अलग हिस्सों में काम करता रहा हूं। मैंने जब केरल जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहां की जो सरकारी बसें हैं या वहां की जो बस सेवाएं हैं, जो चाहे वो निजी हाथों में ही क्यों ना हो, वहां पर उन बस सेवाओं में मैंने देखा कि जो बस सेवा में आधी जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जबकि हम राजस्थान में देख रहे हैं कि चाहे सरकारी बसेस हों चाहे प्राइवेट बसेस हों, गरिमापूर्ण रूप से यात्रा करने में महिलाओं को आज भी तक तकलीफ है, और सिर्फ 6-7 सीट्स रिजर्व करके छोड़ दी गई है ना। तो एक खाना पूर्ति जैसी
1: जी
0: स्थिति बनती है। मैं कहता हूं कि अगर बस में 36 सीटें हैं तो भाई 18 तो हमारी बनती है ना, तो भाई 18 तो हमारी
1: जी
0: हमें
1: जी
0: दो।
1: बिल्कुल
0: तो अगर वो खाली है तो ठीक है, आप बैठ सकते हैं, लेकिन अगर वो अगर हम आ गए हैं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता
1: जी
0: है कि हमारा आधी सीटों का सपना जो है, चाहे हम यात्रा कर रहे हैं चाहे हम सरकारी सेवा की बात करते हैं, वो अभी भी दूर है। तो और चाहे रक्षा सेवाओं में भी, अभी आपको पता है पिछले दिनों जो बदलाव आए हैं, हालांकि सेना ने, भारतीय सेना ने हमें अपनी जगह दी, बनाने का मौका दिया है, और अब तो हमारी लड़कियां और महिलाएं शौर्य के क्षेत्र में भी आ रही है। तो सौंदर्य का क्षेत्र तो अब तो उन्होंने छोड़ छोड़ दिए हैं जल्दी। मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि सौंदर्य एक महिला की पहचान नहीं होनी चाहिए, उनकी पहचान उनके काम, उनके साहस और उनके तौर से होनी चाहिए। तो
1: जी जी जी बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: बहुत आवश्यक है, और वो एक अपने बुद्धि बल के साथ समाज के साथ कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, वो इम्पोर्टेंट है। तो खैर, आपने तो बताया कि आप 2019 के आसपास आपने जुनून की शुरुआत की, लेकिन आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया, ये जुनून की शुरुआत दिमाग में कैसे आई? मतलब ये कैसे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए? भाई, आपके आदिवासी समाज में और भी महिलाएं हैं और जो खास तौर पे पूर्वी राजस्थान
1: हाँ
0: में काम कर रही है, लेकिन आप ही के साथ ये शुरुआत कैसे हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ।
1: सर, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जैसे बचपन से ही जो मेरा नेचर था वो थोड़ा मुखर था, कि कहीं पर भी कोई चीज गलत होती है ना तो वो मैं उस जगह मैं चुप नहीं रहती थी, चाहे वो मतलब मेरी घर का परिवार का मैटर हो या फिर बाद में जॉब भी लगी मेरी, वहां पर भी मैं मुखर होके अपनी बातों को रखती थी। इसके लिए सर थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि मेरी 2001 में जैसे जो दिल्ली दिल्ली में एक टीचर के लिए एक वो एग्जाम हुई थी, तो हुआ ये था कि मेरा जो फॉर्म था ना सर, मेरे को पासपोर्ट आते थे उस टाइम पे, सॉरी पोस्ट कार्ड आते थे, पोस्ट कार्ड तो मेरे को आ गया था, लेकिन जब मैं एग्जाम देने गई तो मेरा फॉर्म ही मेरे को नहीं मिला वहां पे। तो मैं गई तो हमें अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे थे वो लोग, लेकिन उनमें से किसी एक को ये लगा कि जब ये मैडम इतनी दूर से आई है, राजस्थान करौली जिले से आई है, कड़कड़ डूमा में सर दिल्ली में वो ऑफिस था, तो वहां पर काफी मशक्कत करने के बाद में उन्होंने हमें एंट्री दी। तो मैंने उनसे ये कहा कि जॉब आप मेरे को दिलाएं, मतलब जॉब मिलना मेरे भाग्य की बात है, लेकिन आप मेरे को एग्जाम से वंचित नहीं रख सकते। तो काफी उन्होंने देखा फॉर्म नहीं मिला, लास्ट में सर मेरे से उन्होंने कहा तो देखा तो मैंने डस्टबिन में पड़ा हुआ था फॉर्म मेरा। तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरे को ये पोस्ट कार्ड आया है लेकिन आपने इस फॉर्म को इस तरीके से पटक रखा है, तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने सर रोल नंबर भी मेरे को दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या बाय मिस्टेक मैंने एग्जाम तो ली, लेकिन मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरे को उससे ये लगा कि जब एक मेरे साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है, तो पता नहीं कितनी महिलाएं इस तरीके से, मतलब इस बिगड़ी हुई व्यवस्था का हिस्सा होंगी। तो
0: जी
1: ये लगा कि मतलब रखनी चाहिए अपनी बात, और उस वर्ग के लिए रखनी चाहिए कि जो वर्ग इस तरीके से जैसे काफी पिछड़ा हुआ है। सर मैं भी यही हिंडौन के पास में गांव है, वहां से हूँ। मैंने काफी सारी चीजों को मतलब बहुत ही करीबी से देखा है, घर
0: जी
1: परिवार में, आसपास में, महिलाओं के साथ में देखा है कि काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो मतलब रिपोर्ट दर्ज करवाने तक तो सर मुश्किल से 2% या 3% ही महिलाएं पहुंचती होंगी,
0: जी
1: बाकी घर परिवार में भी उनको इस तरीके से नजरअंदाज किया जाता है। तो उस चीज को लेके लगा कि एक संगठन खड़ा करना चाहिए, और इसमें सर्व समाज की महिलाओं को हमने साथ लिया सर, क्योंकि केवल एक समाज से रिलेटेड नहीं है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो मतलब किसी भी धर्म और जाति से रिलेटेड महिलाएं हो, उनको कहीं ना कहीं मतलब बैकफुट पे रखा ही जाता है। घर में आज भी सब्जी बनती है तो वो अपने हस्बैंड की पसंद की बनती है या बच्चे की पसंद की बनती है। दूसरी बात, घर में कुछ भी बनता है तो वो लास्ट में पीछे पीछे कि जो भी कुछ बचता है तो वो खा लेती है, सब्जी खत्म हो जाती है, तो वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करती कि अरे कि कुछ अपने लिए बनाया जाए। तो लगा कि एक सम्मानजनक अपन को स्थान देना चाहिए, और हम इसके लिए कोशिश करें, क्योंकि एक महिला वर्ग को आगे लाने के लिए हमारे जो भाई लोग हैं, पुरुष वर्ग है, वो तो काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक महिला भी आगे आए तो वो थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा हमारी बहनों के लिए। तो ये चीज थी सर। एक बार जॉब भी करते हुए हुआ था सर, मैं मेरी

0: फर्स्ट जॉब हुई थी एक बार, तो वहां पे जो एक एचएम थे तो वो थोड़ा सा काफी चीजों में सर मेरे को वर्क भी ज्यादा देते थे, और फिर कुछ चीजें थी थोड़ी गलत थी उनकी, तो मैंने काफी तरीके से उनको समझाया लेकिन उनको समझ नहीं आया। फिर मैंने और भी लोगों को, उच्च अधिकारियों से भी कहा मैंने कि सर थोड़ा सा आप इनको समझाइए कि मैं तो इनकी बहन बेटी के समान हूँ, तो वो इस तरीके से क्यों मेरे को परेशान करते हैं। लास्ट में सर फिर मेरे को उसकी शिकायत ही दर्ज करनी पड़ी, महिला आयोग में भी की और दो चार जगह मैंने की, तो इमिजिएटली एक्शन हुआ। तो ये लगा कि क्यों नहीं सभी महिलाएं जागरूक हों, तो उनको हम इस तरीके से अपने स्तर पे हम जागरूक करें। सर कार्यशालाओं के माध्यम से हम इन महिलाओं को करते हैं जागरूक, वो चीज देखो खुद से ही शुरुआत होती है। मेरे को लगा, मैंने इस चीज को फेस किया तो लगा कि मेरे जैसी पता नहीं कितनी महिलाएं हैं जो कि शिक्षित भी हैं, जॉब भी कर रही हैं, एक अच्छे परिवार से रिलेटेड भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके साथ में कुछ गलत होता है, तो उसके लिए वो तैयार हों और कहें, तो बिल्कुल समझा जाएगा सर इस चीज
1: जी,
0: को।
1: तो आपका संगठन जो है अस्तित्व की उड़ान अभी क्या काम कर रहा है और कैसे आप अपने काम को मंजिल तक पहुंचा रहे हैं?
0: सर ये जो हमारा संगठन, एक तो बाल अपराध को लेके काम कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग की महिलाएं होती हैं उनको हम इसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना सर, 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं, तो मोस्टली उनकी जिम्मेदारी माँ के ऊपर ज्यादा होती है, और माँ के ज्यादा वो करीब रहते हैं क्योंकि उनका जो पिता है वो कहीं मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, मजबूरन माँ को भी जाना पड़ता है, लेकिन माँ के ज्यादा करीब होते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम उन माताओं को थोड़ा सा जागरूक करें, जिससे कि कहीं ना कहीं बाल अपराध है वो उनमें थोड़ी सी कमी आए, कहीं ना कहीं वो बच्चे सेफ हो पाए। मतलब जिनको इस चीज की जानकारी नहीं है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, उनको इस चीज का पता है कि गलत हो रहा है लेकिन उसका किस तरीके से विरोध किया जाए इस चीज की जानकारी नहीं है। तो सर हम मजदूर वर्ग की महिलाओं को करते हैं जागरूक बाल अपराध को लेके, उसमें हम थोड़ा सा उनको बताते हैं कि कोई कोड वर्ड ऐसा आप रखो जिसका पता केवल आपको और आपके बच्चों को हो, जैसे कल को कोई अनजान व्यक्ति किसी भी तरह से कुछ कोई बात करता है तो वो उनसे पूछे कि भाई आप अपना कोड वर्ड बताइए। बहुत सारी चीजें होती है सर, जैसे बच्चियों को अगवा कर दिया जाता है स्कूल से, छोटे बच्चों को ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज में थोड़ा कुछ सुधार आएगा और माँ इस चीज को बेहतर तरीके से कर सकती है। तो बाल अपराध भी है सर, गुड टच बैड टच भी है, और आत्मरक्षा को लेके भी हम करते हैं, और जो मजदूर वर्ग की महिलाएं होती हैं उनको हम स्वरोजगार के प्रति भी जागरूक करते हैं सर। गांव में हम कार्यशालाएं करते हैं, उनको काफी सारी जैसे स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो वहीं पर रह के कुछ अपने परिवार के खर्चे लाए, कुछ कमा सके, घर की सब्जी वगैरह वो खरीद सके, तो कहीं ना कहीं एक उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और समय का सदुपयोग भी होता है सर। खाली समय में जो महिलाएं वैसे ही बैठी रहती हैं उसका भी सदुपयोग होता है, घर की आय भी बढ़ती है। तीसरा सर
1: जी
0: हमें एक है ना, उनके एनीमिया मुक्त भारत मिशन को भी हमने चलाया हुआ है, क्योंकि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है ना ग्रामीण क्षेत्र में, अभी मैंने करवाया था सर, एक इरनिया गांव है, मैं जहां मैं पोस्टेड हूँ बरगमा, उसके जस्ट पास में इरनिया गांव है, और एक भांडारीज गांव है दौसा के पास में, वहां पे भी करवाया हमने। तो हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं उनका हीमोग्लोबिन स्तर बहुत कम है, लेकिन वो महिलाओं को ये पता नहीं है कि इसको हम सहज तरीके से घर की किचन, मतलब घर में ही एक किचन गार्डन हम विकसित करके दो चार गमलों में कोई सब्जी हम बो के अपने हीमोग्लोबिन स्तर को सही कर सकते हैं। और
1: जी
0: मतलब ये है एनीमिया, एनीमिया की वजह से सर बहुत सारी महिलाएं होती है उनकी मृत्यु हो जाती है, उसमें गर्भावस्था के दौरान हो जाती है, डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो सोचिए सर एक परिवार है वो पूरा सड़क पे आ जाता है। तो इस चीज को लेके भी हमने किया कि स्वास्थ्य को लेके भी थोड़ा सा महिलाओं को हम जागरूक करें, तो इस स्टेज पे हम काम कर रहे हैं, बाल अपराध को लेके काम कर रहे हैं, स्वरोजगार को लेके काम कर रहे हैं, और दूसरा सर सोशल मीडिया को लेके भी हमारी संस्था काम कर रही है, वो स्कूल और कॉलेजों में हमारे जो बच्चे हैं उनको हम जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो बच्चा है ना वो डिप्रेशन में चला गया है, और डिप्रेशन में
1: जी
0: जाने का जो मुख्य कारण है वो सोशल मीडिया पे बहुत अधिक समय बिताना है, तो
1: जी
0: हम इस चीज में भी हम अवेयर करते हैं, इसमें पेरेंट्स को भी लेते हैं सर हम, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में जो कुछ होता है उसके जिम्मेदार पेरेंट्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो जैसे टैकल करेंगे वैसे उनके बच्चे करेंगे, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को थोड़ा सा डिजिटल डाइट अपनी लाइफ में अपनाने की जरूरत है, वो खुद
1: जी
0: इस चीज को अपनाएंगे तो अपने बच्चों को कह सकेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे जो होनहार बच्चे हैं ना सर वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, वो गलत रास्ते को नहीं अपनाएंगे, गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं बच्चे वो दूसरी बार डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं सर, तो ये बहुत ही विचारणीय विषय, इसके ऊपर भी हमारी संस्था काम कर रही है।
1: जी
0: जी सर
1: वंडरफुल, बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही काम करते रहे। हम तो हम आपको चाहेंगे कि आपकी संस्था जो है सिर्फ करौली क्षेत्र ही नहीं, देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक काम करे। और आपकी जो शुरुआत है वो हमने जानने को मिली, तो आपने बताया कि आपने कैसे कटकड़ से कटकड़ पहुंच के कुछ बदलाव की बात की और आपके अंदर एक शुरुआत हुई, इग्निशन हुआ कि मुझे भी कुछ समझना है और लोगों को समझाना है। बेहतरीन। तो इस पूरे कार्य को लेकर आपको राजस्थान सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, तो वो क्या यात्रा रही और आपकी क्या उपलब्धियां अब तक रही हैं अपने काम को लेकर?
0: जी सर, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी। 2000 हमने 19 से हमारा हमारा संगठन काम कर रहा है, और
1: जी
0: 2019 में जब संस्था काम कर रही थी उस टाइम पे हमने काफी गुटज बैठज के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में कार्यशाला आयोजित की। इसी
1: जी
0: दौरान जो 2020 में कोरोना जब एक महामारी फैल गई थी, तो हमारी जो संस्था की बहनें हैं, कई जिलों में संस्था काम कर रही है सर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, कोटा, बूंदी, अजमेर तो और अलवर, काफी इन जिलों में तो संस्था काम कर रही है। तो यहाँ पर महिलाओं ने घर पे मास्क बनाए और हमने राहगीरों को और जो भी मतलब जरूरतमंद थे वहां पे हमने बांटे। दूसरी बात, हमने भोजन के पैकेट भी बना के बांटे थे उस टाइम पे, क्योंकि कंडीशन ये हो गई थी कि कोई भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं जा सकता था, तो जहां पे हम थे वहीं पे हमने काम किया। तो सर, इसको लेके मेरे को नेपाल से गांधी पीठ पीस फाउंडेशन है, उसने मेरे को सम्मानित किया था, इंटरनेशनल स्तर पे सम्मानित किया गया था, और मेरे को उस टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था करौली जिले का 1 साल के लिए। जस्ट इसके बाद में सर, फिर मेरे को जैसे जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसके द्वारा भी सम्मानित किया गया था 2022 में, तो स्टेट टीचर्स अवार्ड राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है सर। और करौली कलेक्टर हैं सर, उन्होंने भी मतलब 2021 में सम्मानित किया था। तो और इसके बाद में सर, हमारा ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है सर, इसने भी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मेरे को 2023 में सम्मानित किया था सर, वो महिला दिवस पे। तो और इसके बाद में सर, 2024 में माननीय राज्यपाल महोदय हैं कलराज मिश्र जी, उन्होंने भी सोशल वर्क को देखते हुए सर सम्मानित किया था। तो मैं ये मानती हूँ सर कि ये मेरा ना हो गया, हमारी और बहनों का सम्मान है जो कि एकजुट होके घर परिवार की जिम्मेदारी को निभा रही है सर, जॉब भी कर रही है, क्योंकि संस्था के अंदर जॉब करने वाली महिलाएं भी हैं, कुछ नॉन वर्किंग भी हैं। तो हर स्तर की महिला अपना जो समय है उसमें से, जो घर का जो समय है उसमें से 10 से 20% वो निकालती है, बिल्कुल निकालती है, ये हमने कह रखा है। और हमने जिम्मेदारी भी दी हुई है उनको कि जब सोशल वर्क आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका दायित्व तो बन जाता है कि किसी भी तरीके से आप संस्था को आगे लेके जाएं। अपने स्तर पे, अपने घर में रहते हुए कहीं पर भी आप अवेयर प्रोग्राम आप लग कर सकती हैं। तो उन महिलाओं का सम्मान मैं ये मानती हूँ सर, और कोशिश ये रहेगी कि संस्था आगे भी इसी तरीके से काम करती रहे, और उसमें आपका और सबका, समाज का, हर वर्ग का सहयोग अपेक्षित है।
1: जी यानी आप हमारे कार्यक्रम जुनून जो है वो आप जैसे हर जुनूनी के साथ है और आपके जुनून में हम जो भी सहयोग कर पाएंगे वो हम निश्चित रूप से आपके साथ करते रहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में जुनून में श्रोताओं हमारे साथ रही श्रीमती अनिता मीणा जी, और जिन्होंने अपनी पूरी यात्रा, अपने जुनून की यात्रा के बारे में बताया, अपने काम के बारे में बताया, अपने जज्बे के बारे में बताया। और आपसे बात करते हुए निश्चित रूप से लगा कि आप जैसी अगर महिलाएं अगर इसी प्रकार से अपने जुनून के साथ काम करेंगी तो अपनी समाज में अपनी जगह बना पाएंगी। तो श्रोताओं आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.9 FM, और मैं हूं आपका दोस्त शरद। शरद साइनिंग ऑफ टुडे, फिर मिलेंगे ऐसे किसी जुनूनी के साथ अगले शो में।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: भारत की वीरांगनाओं में अहिल्याबाई का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। पति और पुत्र की मृत्यु के बाद जब वे मालवा की शासक बनी तो राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। राजकोष खाली था और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उस पर उनके महामंत्री ने सैनिक विद्रोह करा दिया, लेकिन अहिल्याबाई बुद्धिमान भी थीं और साहसी भी। उन्होंने विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया। उसके बाद शुरू हुआ राज्य में सुधार का सिलसिला। उन्होंने न सिर्फ सेना का नए ढंग से गठन किया बल्कि नारी सेना को भी सुदृढ़ बनाया। भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर नए सभासद नियुक्त किए गए। उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जिनमें कलकत्ते से बनारस तक की पक्की सड़क भी शामिल थी। सड़कों के किनारे धर्मशालाएं बनाकर लुटेरों को नियंत्रित किया गया। इससे राज्य का व्यापार बढ़ा और खाली राजकोष भरने लगे। रानी अहिल्याबाई एक धर्मपरायण शासक थीं। उनके राज्यकाल में ही सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। मालवा के लोग आज भी अहिल्याबाई को याद करते हुए उनके गीत गाते हैं। राजबाड़ा और होलकर शासकों की छत्रियां आज भी अहिल्याबाई के यश और गौरव का गान कर रही हैं।
2: मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती ओए मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती ओ सल्लो ए क्या किताब में मुंह डाल के बैठा है। अरे काम कौन तेरा ताऊ करेगा हैं?
3: क्या कक्का फिर कर दिया डिस्टर्ब। बड़े मुश्किल से आधी किताब पढ़े थे, अब फिर शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
2: अबे चल ओए बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है हैं? अरे मूड़मती तेरे ताऊ ने पढ़ी है कभी कोई किताब हैं? अरे जरा दिखा तो कौन सी पोथी बांच रहा, दिखा जरा दिखा।
3: छोड़ो ना काका।
2: अरे दिखा तो हैं? वीरांगना अहिल्याबाई हैं? तो ये घोंट रहा था दो हफ्ते से।
3: आओ काका
2: चल चल सुना क्या पढ़ा, चल बता, चलो जा शुरू।
3: हम कहाँ पढ़े?
2: अरे
3: कहा तो आप डिस्टर्ब कर दिए, अब शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
4: अरे कक्का राम राम
2: राम राम राम राम राम राम।
4: ओए सल्लू कैसा है तू?
3: अरे मस्त एकदम चकाचक।
2: अरे आजा राजू आजा। अरे ये सल्लू कैसा होगा भैया, हमेशा की तरह आराम से है। खैर वो सब छोड़, ये बता कि इस बार इधर को कैसे?
4: अरे बस कक्का छुट्टियों में जरा घर आया था।
2: हाँ
4: कॉलेज शुरू हो गया ना तो वापस इंदौर जा रहा हूँ। हाँ। अब देखो बस कब तक आती है कक्का।
2: अच्छा, तो इंदौर जा रहे हो हैं? फिर तो भैया बहुत सही टाइम पे आए हो तुम। अभी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई की तो बात चल रही थी।
4: देवी अहिल्याबाई?
2: हाँ।
4: अरे उनके नाम पे तो कक्का इंदौर में यूनिवर्सिटी भी है।
2: सवा सवा। अरे तुम मिले जानकार है। तो चलो भाई जरा हमारे सल्लू को कुछ बताओ उनके बारे में, बताओ।
4: अरे काका आप तो टांगी खींचने लगे, मुझे क्या मालूम उनके बारे में। अरे कुछ भी नहीं मालूम।
2: लो फिर वही ढाक के तीन पात। अरे ऐसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। अरे भाई इंदौर में राजबाड़ा गए हो कभी?
4: अरे वहाँ तो रोज अपना उठना बैठना है काका।
2: अरे भैया राजबाड़ा और उसके पास बनी छतरियाँ अहिल्याबाई होलकर के राजवंश की निशानी है।
4: ऐसा?
2: हाँ। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल डब्बा निकले यार। अब कौन पूरी करेगा अहिल्याबाई की कहानी?
4: अरे आप और कौन है?
2: अरे मैं। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, अरे ढेर सारा काम पड़ा है।
4: अरे, अरे, मैं नहीं। कक्का सुनो तो, सुना दो जरा मजा आ जाएगा।
2: अब तुम अब इतना जोर दे रहे हो तो सुनानी ही पड़ेगी। तो भैये कान लगा के सुनियो कहानी अहिल्याबाई की। तो बात शुरू होती है 18वीं सदी के मध्य में। माणकोजी शिंदे के एक गरीब मराठा परिवार में देवी अहिल्याबाई का जन्म हुआ।

0: लाखों में एक है हमारी अहिल्या, बिल्कुल राजकुमारी।
1: हाँ, पर राम जाने क्या होगा इस राजकुमारी का। अरे हम ठीक से इसका लालन पोषण तो कर नहीं पाते हैं, इसका ब्याह कैसे करेंगे।
0: तू चिंता मत कर, जैसे इतनी बड़ी हुई है वैसे ही एक दिन पराए घर भी चली जाएगी। ठाट से इसका ब्याह करूंगा एक राजकुमार से, देखना एक दिन महारानी बनकर रहेगी हमारी अहिल्या।
1: कब तक इन बातों से मन बहलाओगे। पूरे 12 बरस की हो गई है अहिल्या, समय आ गया है कि विवाह योग्य कोई वर देखो।
2: बाबा, मैं जल चढ़ाने शिव मंदिर जाऊं?
0: हाँ बिटिया जा, संभल के जाना, शिव जी ही इसकी नैया पार करेंगे।
3: हाँ, तो उस दिन शिव मंदिर के पास मालवा के राजा मल्हार राव होलकर सैनिक डेरा जमाए बैठे थे।

0: कितना मधुर कंठ है, मुख पर राजसी तेज है। मंत्री जी, कौन है यह दिव्य बालिका?
1: महाराज, प्रतीत होता है निकट ग्राम की ही कोई बालिका है। अभी पूछता हूँ। बालिके, बालिके।
2: प्रसाद।
0: चिरंजीवी भव। पुत्री, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी, अहिल्या।
0: अति सुंदर।
2: क्षमा करें, विलंब हो रहा है, माँ प्रतीक्षा करती होगी।
0: महामंत्री, शीघ्र पता लगाएं ये संस्कारी बालिका किस ग्राम की है, किस कुटुंब की है। हमने अहिल्या को हमारे पुत्र खंडू जी की वधू के रूप में चुना है। बालिका के माता पिता को शीघ्र न्योता भेजें।
1: ऐसा ही होगा महाराज।
3: बहुत बहुत बधाई हो।
4: सही बात है,
5: आज तो महारानी जी लड्डू बंटवाएंगी।
6: बधाई हो, बधाई हो, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है।
0: क्या? वाह, सारे राज्य में उत्सव की घोषणा करा दी जाए। सबको महाभोज के लिए आमंत्रण भेजो।
1: जैसे आज्ञा महाराज।
5: तो अहिल्या बाई के आने से महल में खुशियां गुजने लगी। पुत्र भाले राव के बाद महारानी ने पुत्री मुक्ताबाई को भी जन्म दिया। सब कुछ खुशी मंगल से चल ही रहा था कि मालवा पड़ोसी राज्य से युद्ध में फंस गया।
7: क्या कहा काका? युद्ध में फंस गया?
5: हाँ बेटा सल्लू, युद्ध में फंस गया।
1: महाराज, सूचना मिली है कि आपके पुत्र राजा खंडू जी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
0: क्या? नहीं, पुत्री अहिल्या।
1: महाराज, स्वयं को संभालें। यदि हम कमजोर पड़े तो मालवा को हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी।
8: महाराज, मैंने निश्चय किया है, मैं राजा जी की चिता में सती बनूंगी।
0: नहीं अहिल्या, राज को तुम्हारी आवश्यकता है, हम तुम्हें सती होने की अनुमति नहीं देते। महामंत्री, राजसी तलवार निकाली जाए, सैनिकों को मोर्चे पर डटे रहने को कहो, सेना की बागडोर अब हम संभालेंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।

0: पता है फिर क्या हुआ सल्लू? कुछ समय बाद महाराज मल्हार राव की मृत्यु हो गई। अहिल्या बाई का पुत्र भाले राव भी बीमार रहने लगा। अरे बहुत इलाज करवाया मगर वो भी काल का ग्रास बन गया। अब राज की पूरी जिम्मेदारी अहिल्या बाई के कंधों पर आ गई थी।
1: सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्या बाई सभा में पधार रही हैं। सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्या बाई सभा में पधार रही हैं।
2: राजकोष खाली हो रहा है, राज्य के अधिकारी प्रजा के शोषण में लिप्त हैं। अब इन अव्यवस्थाओं पर लगाम लगानी ही होगी।
3: न्याय करे महारानी, न्याय करे।
2: क्या बात है, निर्भय होकर कहो।
3: महारानी, राज्य में व्यापार करना दूभर हुआ जा रहा है। अधिकारी मनमाने कर वसूलते हैं, लूट मची है लूट। ऐसा अन्याय तो कभी नहीं हुआ महारानी, कभी नहीं हुआ।
2: गंगाधर जी।
4: जी महारानी।
2: शीघ्र पता लगाया जाए कि मसला क्या है, दोषी अधिकारी को उसके पद से मुक्त कर दिया जाए। तुम आश्वस्त रहो फरियादी, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा।
3: जय हो महारानी, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए महारानी। अरे ऐसा न्याय कभी नहीं देखा भैया, ऐसा न्याय कभी नहीं।
5: अरे पकड़ो उसको। अरे कहाँ भागा चला जा रहा है?
6: अरे कहाँ चला जा रहा है? पकड़ो,
5: बचने ना पाए।
6: अरे उधर से घेर लो।
5: दरबार में सीधे घुस गया।
7: उतर से।
5: छोड़ना मत,
6: पकड़ लो।
2: क्या हो रहा है ये सब? छोड़ो उसे। कौन हो तुम?
5: महारानी जी, ये निचली जात का है, पता नहीं कैसे घुस गया यहाँ।
2: हमने प्रश्न आपसे नहीं पूछा था।
5: क्षमा करें।
7: महारानी जी की जय हो।
2: क्या नाम है तुम्हारा और इस तरह आने का कारण? अरे निर्भय होकर कहो।
7: महारानी जी, हम भकलू हैं महारानी जी, निचली जात के हैं, महेश्वर के पास नर्मदा जी के किनारे रहते हैं महारानी जी।
2: क्या समस्या है तुम्हारी?
7: महारानी जी, हमारी बस्ती में आपके सैनिकों ने हाहाकार मचा रखो है, लोग और लुगाइयों को पीटत है, छोरों को मारत है महारानी जी। हमारे पास देने के लाने कच्छु नहीं है, हम आओ जी वो मुश्किल कर दो है, दरबारी आपसे मिलन नहीं देत। हम जाए तो कहाँ जाए महारानी जी, आपकी शरण में आए हैं।
2: गंगाधर जी।
8: जी महारानी जी।
2: ये सब क्या हो रहा है हमारे राज्य में? हमारी प्रजा को हमसे मिलने की अनुमति नहीं।
8: महारानी जी, आपका समय इन छोटी मोटी घटनाओं में उलझने के लिए नहीं है, फिर ये कोई बड़ी बात भी तो नहीं है।
2: हमारी प्रजा परेशान है और आप कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं। आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमसे मिलने के लिए किसी प्रकार की रोक टोक न लगाई जाए।
8: जी महारानी जी।
2: सेनापति जी।
9: जी महारानी जी।
2: ये कौन महेश्वर की बस्तियों में उपद्रव मचा रहा है?
9: महारानी जी, गंगाधर जी ने कुछ सैनिकों को वहाँ कर वसूलने के लिए भेजा है।
2: क्या, हमारी अनुमति के बिना ही भेज दिया? तुरंत सेना वापस बुला ली जाए। छोटों को सताने वालों को हमारे कोप का भाजन बनना ही होगा, और निर्बलों को सताने से बड़ा और कोई पाप नहीं। तुम निश्चिंत रहो भकलू, हमारे द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे।
10: देवी अहिल्या बाई का न्याय।
11: हमारे
10: अहिल्या बाई का न्याय।

0: महारानी जी, यदि बात ना जचे तो क्षमा करें, लेकिन प्रजा एक स्त्री प्रशासक के प्रति हमेशा आशंकित रहती है, और फिर शत्रु भी तो हमें कमजोर समझ के मौके का लाभ उठा सकते हैं।
1: गंगाधर, क्या कह रहे हैं आप?
0: महारानी, मेरा आशय आपके सामर्थ्य पर प्रश्न खड़ा करने का नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि भला हो यदि आप एक दत्तक पुत्र गोद ले लें और उसी की संरक्षिका के रूप में प्रशासन की देखरेख करें।
1: नहीं गंगाधर, अब हर मोर्चे पर हमें स्वयं आगे आना होगा। ये वक्त नहीं है कि किसी पर भी भरोसा किया जा सके।
0: आप कहती हैं तो ठीक ही होगा महारानी जी। मैं तो मालवा के भले की ही सोचता हूँ हमेशा।
1: मालवा का हित सोचने के लिए हम जीवित हैं गंगाधर। सभा समाप्त की जाती है।
2: महारानी जी, महारानी जी।
1: क्या हुआ, ये घबराहट कैसी है?
2: महारानी जी, गंगाधर ने एक सैनिक टुकड़ी के साथ विद्रोह कर दिया। महारानी जी,
1: तो हमारी आशंका सच ही निकली। सेना तैयार करो, गंगाधर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सेना का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे।

0: हाँ तो राजू, महारानी अहिल्याबाई ने गंगाधर के दांत खट्टे कर दिए। अरे इस घटना के बाद भी कई विद्रोह हुए, पर अहिल्याबाई विद्रोह दर विद्रोह कुचलते हुए आगे बढ़ती गई। अब मालवा की वाहवाही दूर दूर तक फैल रही थी। अरे सल्लू, ए तुझे नींद आ रही है क्या बे? हैं?
1: अरे नहीं काका, हम बड़े गौर से सुन रहे हैं काका।
0: अबे तू कम से कम काम पे ध्यान लगाता तो तेरी वाहवाही ढाबे तक तो रहती बे।
1: कैसी बात करते काका।
0: खैर चल सुन ध्यान से।
1: हाँ फिर आगे क्या हुआ काका?
0: हाँ तो मालवा को देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता था। मालवा को हड़पने की साजिश रचने वालों में एक और नाम था, राघोबा पेशवा। हाँ
2: महारानी जी, राघोबा पेशवा की सेना के सामने हम नहीं टिक सकेंगे। उनकी सेना संख्या में हमसे 3 गुनी है।
3: सेनापति तुको जी, आप आश्वस्त रहें, बस जैसा हम कहते हैं करते जाएं। राज्य की स्त्रियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए, जिसकी सीधी देखरेख स्वयं हम करेंगे।
2: जैसी आज्ञा महारानी।

0: पेशवा साहब, सुना है मालवा की स्त्रियां हमसे मुकाबले के लिए बर्छी और ढाल चलाना सीख रही हैं। महारानी अहिल्याबाई हमारी सेना के सामने स्त्रियों की सेना खड़ी कर रही हैं।
1: क्या अब हमें स्त्रियों से युद्ध करना होगा?
0: यह तो उपहासजनक है। भला स्त्रियों और हम में क्या मुकाबला? हम उनको रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर वो यही चाहते हैं तो यही सही।
1: नहीं नहीं सेनापति, नहीं। इस तरह से दोनों ही ओर से पराजय हमारी ही होगी। स्त्रियों को कुचलकर हम कौन सा यश पा जाएंगे? जनता हम पर थू थू करेगी।

0: कि हम पराजित हुए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे।
1: पर पेशवा साहब, और कोई भी चारा नहीं है, आप ही बताएं ऐसे में हम क्या करें।
0: सेना को पीछे हटने का आदेश दिया जाए।
1: पर पेशवा साहब, मालवा की गद्दी,
0: हमें अपना आत्मसम्मान खोकर गद्दी हासिल नहीं करनी, मोर्चा वापस लिया जाए।
1: जैसी आज्ञा पेशवा जी की।

0: अहिल्या बाई राजमहल में पधार रही हैं।
1: महारानी जी, बहुत से राजपूत हमारे विरुद्ध हो गए हैं, हमारी उपलब्धियों से जलकर हमें लुटेरा कह रहे हैं, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गए हैं।
2: क्या? जिस महारानी ने हिंदुस्तान के कोने कोने में धर्म की ध्वजा फहराई, उनका राज्य लुटेरा है? महारानी अहिल्याबाई देवी हैं, देवी देवी अहिल्याबाई ने तो हमेशा जनता की भलाई सोची है, फिर चाहे वो कोई भी राज्य क्यों ना हो। महारानी ने सर्वत्र सार्वजनिक निर्माण करवाए हैं, ये लोग महारानी की कृपा दृष्टि के योग्य नहीं।
3: शांत सेनापति, शांत। सारे भारत की जनता एक है, देश तो राजा और नवाबों में है। ये एक दूसरे की निंदा की आड़ में एक दूसरे के प्रदेश को बुरा बतलाते हैं। ये प्रदेश छोटा है, वो बुरा है, हमारा प्रदेश बड़ा है और अच्छा है, वे जंगली हैं, हम श्रेष्ठ हैं। अरे, इस भेदभाव का विष हम सबको किसी दिन नरक में धकेलेगा। इस अराजकता की स्थिति में आपस में लड़ मरने से अच्छा होगा कि हम एकजुट होकर सौहार्द से रहें।
1: महारानी जी, इन षड्यंत्रों को लेकर हमारी क्या नीति होगी?
3: राज्यों के प्रति हमारी नीति मैत्रीपूर्ण होगी। महामंत्री जी, युद्ध केवल जनधन की हानि देते हैं, आप सतही स्तर पर षड्यंत्रों को सुलझाने का प्रयत्न करें।
1: किंतु इस तरह शत्रु हमें दुर्बल समझने की भूल कर सकता है।
3: हमें लोगों के हृदय पर राज करना है महामंत्री, इसके लिए हम युद्ध की त्रासदी को टालने का हर संभव प्रयास करेंगे, किंतु पानी ऊपर चढ़ने पर हम भी शत्रु को धूल चटा सकते हैं।
1: जी, समझ गया।
4: अरे क्या बात है काका, मान गए काका। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
5: हाँ सल्लू, महारानी ने अब सेना को मजबूत करना शुरू किया, और पता है नारी सेना बढ़ती चली गई। अब कोई मालवा के खिलाफ फन नहीं उठा सकता था। महारानी ने अब अपना सारा ध्यान मालवा के विकास में लगाना शुरू किया। हाँ
3: के लिए आवश्यक है कि दूसरे राज्यों से हमारा संपर्क बढ़े, राज्यों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाए, प्रजा के सहयोग से हमारे कोषागार में पर्याप्त धन है, इसका प्रयोग सार्वजनिक निर्माण कार्यों में किया जाएगा।

0: राहगीरों के लिए धर्मशालाएं प्याऊ बनवाए जाएं। और हाँ, अब कोई भी फरियादी किसी भी मसले को लेकर सीधे हम तक आ सकता है।
1: महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, महारानी अहिल्याबाई की जय हो, महारानी अहिल्याबाई की जय हो।
0: होलकर राजवंश में सबको न्याय मिले।

0: महारानी ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए। अरे उनके ही शासन काल में कलकत्ते से लेकर बनारस तक पक्की सड़कें बनवाई गईं। अहिल्याबाई बहुत धार्मिक रहीं। उन्होंने सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर बनवाया और बनारस में विश्वेश्वर मंदिर की स्थापना की थी।
1: वाह कक्का,
0: हाँ
1: महारानी तो बड़ी महान थी।
0: हाँ महान तो थी बेटा। अहिल्याबाई ने मालवा पर 30 सालों तक राज किया था।
1: 30 सालों तक?
0: हाँ, लेकिन 13 अगस्त 1795 में।

0: लेकिन 13 अगस्त 1795 को उन्होंने दुनिया से विदा ली।
1: निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: नमस्कार, मेरा नाम है मंजू, मैं बाड़मेर से हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है, कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, जब हम बचपन में किसी से पूछते हैं, बच्चों से, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, शायद कोई ऐसा होता होगा, बड़े होके मुझे सन्यास बनना है, या फिर मुझे ऐसा जीवन जीना है जिसे देश के लिए मैं सेवा करूं, या फिर मैं ऐसा जीवन जीऊं जो सारे विश्व के लिए मेरा जीवन का कोई मकसद हो। लेकिन जीवन में चलते चलते उतार चढ़ाव आता है और हम कई बातें ऐसे सीखते हैं, फिर अनायास ही हमारा लक्ष्य जीवन का कब बदल जाता है हमें भी पता नहीं चलता। जिस दिन उस लक्ष्य को हम समझ जाते हैं और उस मंजिल पे पहुँचने के लिए जो यात्रा होती है वो कभी सुकून वाला होता है तो कभी बहुत सारी रियलाइजेशंस की बातें होती हैं, कठिनाइयों से भी गुजरता है। जीवन कभी एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का जीवन अलग अलग होता है। लेकिन आज जो हमारा कार्यक्रम जीना इसी का नाम है, आज की जो हमारे मेहमान हैं या आज की हमारे जो योगी हैं, उनका जीवन कैसा रहा और वो ऐसा योगी जीवन जीने के लिए क्यों चुना, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ है राजयोगी आदरणीय शरद भाई जी। आप मूलतः कटक उड़ीसा से हैं और वर्तमान समय में आप शांतिवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कटक से राजस्थान की यात्रा और एक बाल्यकाल में अध्यात्म को चुन करके एक ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए जो निर्णय लिया है, ये सफर कैसा रहा और इस सफर में आपने क्या सीखा है, आइए जानते हैं। उसके लिए हम स्वागत करते हैं आदरणीय शरद भाई जी को आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम में। नमस्कार भाई जी।
2: नमस्कार।
1: ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: भाई जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, आप वर्तमान समय में तो शांतिवन ब्रह्म कुमारीज हेडक्वार्टर्स में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो जीवन की शुरुआत है, जहाँ पे आपने जन्म लिया है, उस जीवन के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका जन्म किस परिवार में रहा, क्या माहौल रहा आपके बचपन का और आपके परिवार का, उसके बारे में कुछ बताइए।
2: हम एक्चुअली एक गांव के रहने वाले हैं और जिस माहौल में हम पले बढ़े, बड़े हुए, माहौल उस समय इतना अच्छा नहीं था जैसे आज समाज में हर जगह शिक्षा की बातें हैं, कला प्रदर्शन की बातें हैं, वो नहीं थी। फिर भी माताजी पिताजी के जो तत्वावधान, जो पालना थी, वो पालना हमको बहुत आकर्षक माने जाते, क्योंकि हम घर और स्कूल के सिवाय और कुछ नहीं जानते थे।
1: ये कौन से गांव की बात कर रहे हैं?
2: ये हमारा जन्म स्थान जो ब्रह्मपुरा गांव है जी, वहाँ की बातें कर रहे हैं।
1: ब्रह्मपुरा कटक डिस्ट्रिक्ट में।
2: हाँ जी, हाँ, कटक डिस्ट्रिक्ट। तो उस माहौल में हम सिर्फ इतना जानते थे, स्कूल और हमारा घर, उसके सिवाय हम दुनिया के बारे में कुछ इतना नहीं जानते थे।
1: ये कौन से सन की बात रही होगी? जो
2: ये जो है 89, माना बाबा का ज्ञान प्राप्त होने का पहले की बात,
1: 89 से पहले की बात।
2: तो पिताजी जितना पढ़े हुए थे, घर की अवस्था जितना थी, खाने पीने का घर का हो जाता था, बाकी इनकम और एजुकेशन का जो बातें थी, हमारे लिए इतना आसान नहीं था। यहाँ तक कि हम 10th तक चप्पल भी पाँव में नहीं पहना था। जब हमारा 10th का एग्जाम हुआ, घर से हम 25 किलोमीटर दूर किसी हाई स्कूल में हमारा एग्जाम हुआ, तब हमने एक चप्पल पहनने का मार्जिन हमको मिला था। उसके बाद हम, ये जो बात है 84 की बात, 10th हम जब क्या दिया, फिर 85 में हमारा कॉलेज हुआ। तो कॉलेज में हमारा जो पास तो नहीं हुआ, मतलब एक सब्जेक्ट हमारा ज्यादा कमजोर था, इंग्लिश, उसके कारण हमको फेल होना पड़ा। नेक्स्ट टाइम हम फिर एग्जाम देके पास किया।
1: आप कितने भाई बहन थे?
2: हम भाई 3 हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ,
1: कोई बहन नहीं।
2: बहन नहीं, तो इसीलिए बाबा ने इतना सारी बहन दिया है। तो फिर उस समय जब हम एग्जाम दिया था प्लस टू का, उस समय बाबा का परिचय मिला। भुवनेश्वर से भाई बहने सब आए थे हमारे गांव में, और उन्होंने जो चित्र प्रदर्शनी लगाए थे उसको हमने जाके देखा, सुना, बहुत अच्छा लगा। उसमें से एक चित्र था जो 4 स्तंभ का चित्र है, तो उसमें उन्होंने बताया ब्रह्मचर्य सुधर्ण
1: राज्यों की आधार।
2: हाँ, तो उसमें ये लगा कि 4 स्तंभ को अगर हमारा जीवन में हम मजबूत करें उनको उन्होंने जो समझाया था, तो आप एक देवता बन जाइए। हमारा बुद्धि में ये आया, देवता बनने की बात तो अलग है, कम से कम एक अच्छा इंसान बन जाए, ये हमारा बुद्धि में। तो फिर रात्रि का उनका प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपको एक्स्ट्रा जानने के लिए मॉर्निंग में हमारा जो सेशन होगा उसमें आपको आना पड़ेगा। फिर आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र साप्ताहिक का कोर्स हुआ।
1: तो उस कोर्स में आप अकेले गए थे?
2: नहीं, वहाँ उस कोर्स में हम 150 करीब भाई बहन गए थे। उसमें
1: आपकी परिवार से आप अकेले थे?
2: हमारा परिवार से हम अकेले थे। तो उसमें से 75 लोग क्लास किया, शुरू किया। लेकिन कठिनाई ये थी उस समय कि खान पान के ऊपर जो उनका सिस्टम था कि राजयोग अभ्यास करने के बाद प्याज लहसुन ये सब चीज को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक टारगेट दिया था, आप सुबह शाम मेडिटेशन करो। ये नहीं सोचो कि हम मच्छी वगैरह सब खाते हैं वो कैसे होगा क्या, उसके बारे में आप सोचो नहीं। आप सोचो कैसे करके हम दोनों टाइम में राजयोग अभ्यास करें। राजयोग अभ्यास करते करते करते आपको अच्छा फीलिंग्स होगा और उस फीलिंग्स के आधार पर ये सारे चीजें आपसे दूर हो जाएंगे, संग दोष और ये खान पान। क्योंकि हमारा उस समय पान सिगरेट मद जो शराबी वगैरह ये हमारा अभ्यास में नहीं था, क्योंकि घर की थोड़ा पिताजी की स्ट्रिक्ट, चाय तक पिया नहीं था हमने और आज तक हम चाय नहीं पीते।
1: अच्छा
2: जी। क्योंकि एक बार पिताजी के पास हम गया था चाय पीने के लिए, कुछ मेहमान आए हुए थे तो कटोरी लेके चला गया, पिताजी हमको मुरमुरा थोड़ा थमा दिया, चाय की बात जब आया तुम जब इनकम करेगा तब चाय पिएगा।
1: अच्छा।
2: तब से आज तक हमने चाय पिया नहीं। तो ये हमारा बुद्धि में था नहीं कि हमने ज्ञान में चलेंगे, बाकी इच्छा था, सत्संग करना जीवन में अच्छा है। तो ये चीज हमको बहुत आकर्षित किया, तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं, जैसे चलता है आज ही चलने दो, और धीरे धीरे धीरे धीरे वो छोड़ के चले जाए। तो फिर हम बोला ठीक है, हम क्यों इतना मेहनत कर, जब वो अपने आप छोड़ के जाएंगे हमें कोई मेहनत करना जरूरी नहीं। लेकिन तब
1: मतलब
2: से
1: हमारी कमी कमजोरी अपने आप चले जाए।
2: अब हाँ, हमारा कमी कमजोरी अपने आप चले जाए।
1: तो फिर परिवार में पता था कि आप राजयोग मेडिटेशन सीख रहे हैं?
2: परिवार में पता यहाँ तक था दीदी कि पिताजी को लोगों ने ये बता दिया कि इस संस्था में जो जाता है वो मैरिज नहीं करता है।
1: अच्छा।
2: तो ये पिताजी को तब पता चला और पहला दिन कोर्स में हमने घर पे बता दिया कि आज से मच्छी वगैरह जो होता है मैं नहीं खाऊंगा। सेकेंड दिन का कोर्स में जब आया फिर माताजी को बोल दिया कि ये प्याज लहसुन मेरे लिए नहीं करने, अलग से कुछ भून लेना मैं खा लूं। तो उस समय पिताजी को माताजी ने बोले ये क्या दो चार दिन से बोलता है मैं प्याज लहसुन कुछ नहीं खाऊंगा। तो पिताजी उनको ये बोले ये ओम शांति कुछ सत्संग हो रहा है, गाँव के कुछ लोग जा रहे हैं, ये वहाँ जाता है सुनने में आया, तो वो लोग जब चले जाएंगे फिर उनका नेचुरल जैसे चलता था ऐसे चलेगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये
1: जाने वाले
2: और इस लाइन में पक्का हो जाएंगे। लेकिन माताजी का एक था आशीर्वाद कि वो चाहती थी मेरा कोई एक संतान अगर इस मार्ग में जा रहा है तो ये हमारा भाग्य की बात है। जो लौकिक में सुना करते हैं कि अगर अपना लड़का या अपना परिवार में कोई साधु संन्यासी बनता है तो ये पूर्व भाग्य की ही बात है। ये जो विश्वास था घर पे गांव पे भी आज तक है
1: जी।
2: हर कोई घर से या परिवार से साधु संन्यासी बनना इतना आसान नहीं है। फिर हमारा ये सिलसिला चलता रहा। गांव में जो 75 लोग आ रहे थे रेगुलर क्लास करने के लिए, जो भाई निमित था उनका ट्रांसफर हो गया। किशोरी डिपार्टमेंट का अच्छा एक भाई मैंने गांव का था, ट्रांसफर होने के बाद धीरे धीरे जो दायित्व लेकर के कर रहे थे तो धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन हमने जो 5-6 महीना रेगुलर क्लास किया था तुरंत जो बंद हुआ हमको बहुत कष्ट हुआ, उतना कष्ट हुआ कि इसके लिए हमारे पास अभी शब्द नहीं है। फिर गांव से 8 किलोमीटर दूर एक गांव था तुलसीपुर, तो वहां फिर जाने के लिए हम सोच, तब हमारे पास सिर्फ साइकिल था, कॉलेज वाला साइकिल।
1: मतलब जब 89 में आपको इस राजयोग मेडिटेशन का परिचय मिला उस समय आपकी क्या उम्र रही?
2: 23।
1: अच्छा।
2: 12वीं में था, उसके बाद जो एग्जाम हुआ एग्जाम के बाद हमने बाबा का परिचय प्राप्त, मतलब ये है 89 की। तो फिर जो साइकिल था उसको लेकर के हम गाँव से रोज 8 किलोमीटर दूर जो गीता पाठशाला हमारे था, रात को भोजन करने के बाद फिर हम चले जाते थे, रात को वहाँ रुकना, फिर अमृत वेला वहाँ करके मुरली क्लास करके फिर गांव में आना। ये सिलसिला हमारा 89 से लेकर 91 तक चला। फिर 91 में मधुबन से एक न्यूज गया कि 91 का जो ब्रह्मा बाबा का जनवरी मास में जो होता है योग तपस्या और 91 में जो तपस्या मास चला तो यहाँ से मैसेज गया था कि दादियों ने जो बाबा के साथ 14 साल तपस्या किया था, अगर इस महीने में हम लोगों वो तपस्या करते हैं तो 14 साल का जो बाबा का बच्चों को जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त ईश्वरीय प्राप्ति जो होगा आपको वो मिलेगा। तो पिताजी को बोल के फिर हमने उसी गीता पाठशाला में एक महीने तक वहाँ रहा था और योग भक्ति का प्रैक्टिस हमने वहाँ किया था तुलसीपुर गांव। फिर पिताजी से जब हमने छुट्टी लिया, पिताजी बोले कि तुमने यहाँ गांव में क्लास करता था, सत्संग करता था, अभी यहाँ से फिर दूर 8 किलोमीटर दूर कौन इतना सत्संग से क्या प्राप्ति होता है जो तुम वहाँ जाते हो, और फिर अभी बोलते हो कि वहाँ मुझे एक महीना रहना है, फिर आगे का क्या। मैंने बोला आगे का क्या तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, बाकी आपका छुट्टी हो तो एक महीना जाके थोड़ा योग तपस्या अभ्यास करेंगे, फिर आगे का जब होगा तो आपको बताऊंगा।
1: पढ़ाई की प्रेशर नहीं थी, अभी तो 12वीं किया है, अभी आप ये सब कर
2: तो
1: रहे हो।
2: बुद्धि में यही था कि बहने भाई लोग जो सफेद ड्रेस में गांव-गांव गली गली में सेवा कर रहे, मैंने उसमें ये आकर्षण था मैं जाकर लोगों को सत्संग सुनाऊंगा, ये बुद्धि में था। फिर ये लोगों ने बताया कि कुछ दिनों के बाद संसार विनाश हो जाएंगे।
1: अच्छा,
2: मैंने 2000 उनका टारगेट था कि जो अपना गांव में सब बोलते हैं ना, अलग अलग दर्शन वाले, अलग अलग जो कुछ भविष्य ज्ञानताकारी जो जानकारी वाले बोलते हैं, उसी हिसाब से बुद्धि में था कि 2000 अगर विनाश हो जाएगा कुछ पुण्य कर ले तो काम आएगा, इसी हिसाब से हम चल पड़े। तो पिताजी बोले ठीक है, फिर हमने वहाँ एक महीना जनवरी मास का पूरा कंप्लीट किया था। तो उस समय में भुवनेश्वर में दादी प्रकाशवाणी को आना था जनवरी 26 को, तो सभी ने बोले हमारा भट्टी चल रहा है और वो भट्टी को कैसे ब्रेक करके हम चले, लेकिन हमारा बुद्धि में था कि दादी बड़े मुश्किल से राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं, कभी चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए दादी का दर्शन हम कर ले। तो उस गीता पाठशाला से 4-5 भाई हम फिर आए थे भुवनेश्वर दादी से मिलने, तो वहाँ के आकर्षण और बहुत था कि देखो दादियों ने कैसे कैसे कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ, जब यज्ञ का हिस्ट्री थोड़ा बहुत मालूम हुआ फिर ये चीज और गहरा होता गया। फिर वहाँ से आकर फिर जैसे योग भट्टी चालू था ऐसे किया, बाकी वहाँ से

0: कि नया चीज हमको आभास हुआ, हमारे गांव से एक भाई जिसका फैमिली टोटल आके भुवनेश्वर में रह रहे हैं और टोटल फैमिली उनका ज्ञान में चल रहे, तो उस भाई के साथ जब हमारा परिचय हुआ और वो योग कैसे करते हैं, अनुभव कैसे होना है, हमारा ब्राह्मण जीवन कैसे होना चाहिए और कुमार जीवन और लौकिक जीवन में क्या अंतर है, वो डिटेल से उन्होंने बताया कि हम नए नए थे और उन्होंने जितना भी बताया हमें बिल्कुल कुछ मालूम नहीं था। फिर उन्होंने ये सारा पूछने के बाद क्वेश्चन किया कि आप ज्ञान में क्यों चला, क्या कारण है जो आप ज्ञान में चलते हो। फिर मेरे को एक शक लगा क्योंकि ये लोग बोलते थे कि ज्ञान में चलो, जब नहीं चलते थे तब बोले कि ज्ञान में चलो तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। फिर जब
1: ये किसने बोला ज्ञान में चलो,
0: जो भाई जो गांव का था जिन्होंने भुवनेश्वर में पिताजी के साथ रहा करते थे, टोटल फैमिली उनका था भुवनेश्वर में, उनका पिताजी भुवनेश्वर में कहीं नौकरी करते थे, तो ये भाई बहन सब ज्ञान में चलते थे। और वो भाई जब ये पूछा मैंने, भाई साहब आप लोग तो बोलते हो ज्ञान में चलो, फिर ज्ञान में चलने के बाद बोलते हो ज्ञान में क्यों चला, इसका क्या
1: अर्थ है?
0: अर्थ है
1: जी।
0: नहीं नहीं, फिर भी कुछ तो मन में आया होगा तो आपने ज्ञान में चला। मैंने इतने उनको थोड़ा रुक के बोला कि देखो सभी बोलते हैं ज्ञान, मैंने दुनिया 2000 को विनाश हो जाएगा, तो विनाश होने के पहले कुछ पुण्य कर दे ताकि कुछ काम में आएगा। फिर उन्होंने पलट के फिर दूसरा क्वेश्चन किया, तो अगर 2000 को विनाश नहीं हुआ तो ज्ञान छोड़ दोगे? तो हमारे मन में एक धक्का आया, अगर ज्ञान इतना दिन चलने के बाद छोड़ देंगे कैसे? तो उन्होंने बोले आपका उत्तर ही बोलता है कि 2000 तक चलेंगे, उसके बाद गारंटी कुछ नहीं, तो ये तो फिर आपको ज्ञान में चलने नहीं देगा। उनका कहना था कि ज्ञान माने 2000 को विनाश नहीं होगा तो ज्ञान छोड़ दोगे। इसी हिसाब से हमने बोला कि नहीं, फिर हमने बोला कि नहीं, अब जब इतना दिन चल पड़े हैं तो फिर आगे चल पड़ेंगे ना, ना ये पूरा निश्चय नहीं हुआ। उन्होंने पूरा ऐसे कहा कि तुम्हारा
1: ज्ञान की तर्क वितर्क की बातें की।
0: हाँ जी, हाँ जी
1: जी।
0: तो फिर उन्होंने बताया कि आपका बुद्धि में ये रहना चाहिए और आज से रखो कि विनाश कब होगा उसका कोई मूल ये नहीं है, उद्देश्य नहीं है, जब विनाश होगा होगा, तो मुझे बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है,
1: परमात्मा का हाथ
0: नहीं छोड़ना है, तो ये बुद्धि में रखो तो आपका विपरीत परिस्थिति में कभी कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है,
1: लेकिन समर्पित होने का संकल्प कैसे लिया?
0: फिर समर्पित की बात जब आई, वो भाई की ये जो बात हुआ, फिर उनसे थोड़ा दोस्ती जैसा हो गया एकदम नजदीक, और ये फीलिंग हुआ कि हमारा एरिया का भाई है, तो उनसे फिर नजदीक होकर के ज्ञान की कुछ बातें हुआ, फिर माउंट आबू की बातें हुई, फिर हम वहाँ रह सकते नहीं रह सकते ये सारी बातें, क्योंकि सेंटर की इच्छा नहीं थी और हेडक्वार्टर में रहने का अगर चांस मिलता है तो आगे बढ़े। और उस समय हमारे एरिया का एक भाई था जो दिल्ली में रहा करते, तब हम उसको देखा नहीं था, तो ये बुद्धि में आया जब वो भाई दिल्ली में रह सकता है तो हम क्यों नहीं। फिर भाई जी से उसी समय बात कर लिया कि मेरा इच्छा है माउंट आबू में जाके परमानेंट सेवा कर। फिर वो भाई ने अच्छा नोट किया था, क्योंकि हम जब यहाँ घर से जाते थे 8 किलोमीटर दूर, वहाँ जाकर स्नान करके अमूर्ति वेला करना, फिर मुरली पढ़ना, और दीदी आज तक हमने जब से ज्ञान में चले, जो बीच में जो बंद हुआ था वो भाई के कारण, उसके अलावा हमारा आज तक यज्ञ में जब से है मुरली एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। नहीं क्यों, मुरली के समय में हमारा सारे काम बंद करके हम सीधा चले जाते मुरली क्लास में, यही हमारे पास एक ही ताकत है, बाकी तो परिवार संगठन भाई बहन की आशीर्वाद ऐसे हम अभी तक चल रहे।
1: तो समर्पित का संकल्प कैसे आया और मधुबन कैसे पहुंचे?
0: फिर वो जो भाई से हमने मिला था, वो भाई को हमने बोला कि घर पे हम 3 भाई है, मैं सबसे बड़ा हूँ, और घर का जो जमीन है लौकिक खेती बाड़ी, वो साल के लिए हमारा खाना पीना हो जाता है, तो इसीलिए हमारे ऊपर कोई इतना बड़ा
1: जिम्मेवारी
0: नहीं है। तो ये भरोसे से भाई से हमने बात किया, वो भाई ने हमको भरोसा दिलाया कि ठीक है हम दादी से बात करते हैं। फिर दादी से बात करके उन्होंने मैसेज दिया, दादी ने उनको बोला था कि भाई वो कहीं गांव का रहता है, ज्ञान योग कैसे करता है नहीं करता मैं नहीं जानता, संगठन में कैसे चलेगा, किसका संस्कार कैसे, ये संस्कार मिला के चल पाएगा नहीं पाएगा वो मैं नहीं जानता, जब तुम्हारा भरोसा है तुम्हारे भरोसे ऊपर मैं राजी होता हूँ, लेकिन एक शर्त है, वो भाई को बुलाओ ओम निवास, ये वो मेरे सामने ज्ञान योग करेगा संगठन में रहेगा, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि ये कैसे ज्ञान में चल सक या नहीं चल सक। फिर एक भाई के पास मैं रहा, उन्होंने सेटिंग किया, 1 महीना दादी के सामने ज्ञान योग सेवा जो मिलता था सेंटर का वो सेवा करने के बाद, उस समय शांतिवन का कंस्ट्रक्शन चलता था, तो महेंद्र भाई आज है नहीं, तो उन्होंने दादी को मैसेज दिया कि हमको दो भाई चाहिए। वो भी उसमें हमारी नाम नहीं था, जो भाई दिल्ली गया था वो भाई, वो जिसको चुनेगा दूसरा भाई। तो वो भाई ने भेजा मेरे को गांव कि वो भाई को बुला के लाना कि वो माउंट आबू आए। तो वो भाई को जब हमने मिला और उन्होंने लौकिक में बाबा का प्रचार प्रसार, बाबा का सेवा करूंगा, इस हिसाब से मैं अभी मधुबन नहीं आ सकता, ये दादी को आप बताएं। फिर उस समय हमारे पास जितना बुद्धि था उसी हिसाब से उनको समझाया कि भाई मधुबन जैसा स्थान नहीं मिलता है, अगर ऑफर मिलता है और आप तो दिल्ली में कुछ दिन रहा फिर वहाँ क्या दिक्कत है। लेकिन उनका एक जिद्दी था कि लोकल में हमारा बाबा का सेवा करें, ये तो उनका विचार था। फिर हमने चुपचाप आ गए, लेकिन ये ठान के आए कि अब वो भाई नहीं जा रहा है, उसके साथ जो दूसरा भाई जाना था वो भी नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमारा नंबर पक्का है। तो उस हिसाब से हमने दादी को मैसेज दिया और वो मैसेज देने के बाद फिर हमारे पास उस समय कुछ नहीं था, टिकट दादी करवाई, फिर ड्रेस भी कुछ नहीं था, ड्रेस भी बनवाए, टिकट भी बनवाए, हमको गाड़ी में छोड़े। तो इसी हिसाब से हमने मई 25 मेरा जन्मदिन था, मई 25 को ट्रेन में बैठा वहां से और यहाँ 27 को पहुंचा। फिर पहुंचने के बाद हमको सेवा मिली कंस्ट्रक्शन में सुपरविजन की, और इतना धूप होता था उस समय
1: शांतिवन का कंस्ट्रक्शन
0: महेंद्र भाई के अंडर में, बड़े मधुकर जो आज कारपेंटर में है, रमेश भाई कंस्ट्रक्शन के, उनके साथ हमको सेवा मिला।
1: मगर आप तो सिर्फ 12वीं पढ़े थे।
0: जी जी जी, कंस्ट्रक्शन का इतना कोई कुछ ज्ञान नहीं, बाकी सेवा करे जो सेवा मिलेगा वो करेंगे, उसी हिसाब से हमको वहाँ यहाँ शांतिवन में सेवा मिला और सेवा में लग गए। इस तरीके से शांतिवन पहुँचना आसान हुआ और वहाँ 96 तक हम जो सेवा किया कंस्ट्रक्शन में, तो बुद्धि में उस समय ये आया था, हम नहीं जानते थे कि प्याड ऑफिस में एक फाइट बनता है, ये होता है वो होता है, हमारा बुद्धि में नहीं था। हमारा बुद्धि में ये था कि हम समर्पित हो गए, बाकी ये जो फाइल बनाना ये चीज हमको
1: नहीं पता।
0: तो फिर जब ये पता चला कि इसे फाइल बनता है और वह रजिस्टर वगैरह बनता है, फिर हमने ये डिसीजन कर लिया जब तक हमारा फाइल नहीं बनता तब तक हमको घर जाना नहीं है।
1: अच्छा,
0: 91 से लेकर के 96 तक हम घर नहीं गए थे, 96 के बाद हमारा जो यहाँ के हिसाब से जो फाइल बनना था बनना, हमारा नंबर आया, उसके बाद हम घर गए।
1: अच्छा, बीच में आप जो बोल रहे थे कि संन्यास मतलब ऐसे भिखारी वाला संन्यास नहीं बनना है, तो वो बात कहाँ से आई?
0: क्योंकि हमने देखा प्रैक्टिकल में, जितने साधु संत महात्मा हमने देखा है गेरुआ वस्त्र धारण करके गांव में आके लोगों को भिक्षा देही करके जो मांगते थे,
1: भिक्षा लेते,
0: हाँ, ये हमको कष्ट होता था, क्योंकि जो भी हमने जिन जिन को देखा है एजुकेटेड पर्सन देखा है, लेकिन ऐसे मांगते है, कई लोग बोलते थे उनको कि आप इतने हट्टे कट्टे हो, आप मांग के क्यों खाते हो, सन्यासी बन गया ठीक है लेकिन मांग के खाना ये कौन सी सन्यासी की, और जब लोगों से मांग के खाते हो तो सन्यासी किसी बात की रहा, पिताजी माताजी को छोड़ा यहाँ आकर के मांग के खाते हो, ये चीज हमको बड़ा अकड़ता था कि ये सन्यासी हमको फिर पसंद नहीं।
1: तो जब आपको समर्पित होने का ख्याल आया, लेकिन आपको ये क्लैरिटी थी कि आपको सन्यास बनना मतलब भिखारी वाली सन्यास नहीं बनना है, भिक्षा लेने वाली सन्यास नहीं बनना है, तो आपको समय क्लैरिटी थी कि मैं जब ईश्वरी विश्वविद्यालय में समर्पित होऊंगा तो मेरा एक रॉयल लाइफ होगा और मुझे इस तरीके से भिक्षा लेने की जरूरत नहीं।
0: तो बुद्धि में ये था, जो बहने भुवनेश्वर से आए हुए थे वो लोगों जो खाना खाते थे और भुवनेश्वर सेंटर में रहते थे वो कहीं नहीं जाते थे, बाबा का भंडारी से जो मिलता था जैसे पालना मिलती थी उसी हिसाब से वो चलते थे, भाई जब वो चल रहे हम क्यों नहीं चल सकते, ये बुद्धि में पक्का था। क्योंकि ज्ञान को समझाना और खुद समझना, लोगों तक उस बात को प्रैक्टिकल रखते थे वो लोग, ऐसे कोई प्रश्न नहीं जिस प्रश्न का उनके पास उत्तर नहीं था, तो हमने उस चीज से ज्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने जो पूछा था कोर्स करने के समय, हर चीज के ऊपर उनका क्वेश्चन था, क्रॉस क्वेश्चन,
1: उनके पास जवाब थी,
0: उनके पास वो जवाब। दूसरा आकर्षण था, जब हमारा गांव में कोर्स चला उसमें इंजीनियर प्रोफेसर ये सब थे, किंतु लौकिक में हमने नहीं देखा था जो साधु संत महात्मा और जो लोग सत्संग करते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग कभी सत्संग करते हुए हमने नहीं देखा, सत्संग कराने के लिए भी ऐसे एजुकेटेड पर्सन नहीं देखा था। वो चीज थोड़ा हमको और आकर्षित किया कि इस ज्ञान में जरूर कुछ है, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर थे, होम डिपार्टमेंट का बड़ा ऑफिसर था, एक बड़ा इंजीनियर भाई था जो हमको कोर्स कराया था, तो तो हमने देखा मतलब इस ज्ञान मार्ग में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों

0: सृष्टि चक्र में, जब सृष्टि चक्र की समय सीमा 5000 वर्ष कहा गया, वो नहीं माने। फिर उन्होंने एक लॉजिक दिया कि देखो, हम 10 किलोमीटर रास्ता जब तय करते तो उस रास्ते में जब हम 90% सिग्नल देते कि ये चीज है, लास्ट सिग्नल को अगर कोई मानता नहीं है और हम कहते हैं कि लास्ट सिग्नल यही होगा, अगर वो नहीं मानते 90% चीज को उन्होंने स्वीकार किया है, तो फिर ये जरूर 100% सत्य है। अगर वो लोग नहीं मानते तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो बाबा जाने और हो जाए। फिर हमारा बुद्धि में ये हो गया कि ये लोग कुछ बोले या ना बोले, इसमें कोई मतलब नहीं। फिर दूसरी बात, जब 6 महीने वो लोग ज्ञान में रेगुलर सुने और उसके बाद सिर्फ खान पान के कारण चले गए, प्याज लहसुन नहीं खाना है, माछ मंदिर ये नहीं करना है, फिर मैंने बोला ये लोगों का निश्चय नहीं है।
1: जब आप समर्पित होने के लिए आए और ये सारी बातें, तब तक फिर आपके परिवार मान गई थी आपकी इस तरह?
0: परिवार वाले माने थे कुछ, बाकी कुछ नहीं माने थे, क्योंकि उनको जब बोला गया पब्लिक से कि संस्था में जो जाते हैं मैरिज नहीं करते, और घर पे घर का बड़ा होने के कारण साहस से कोई पूछ नहीं पाते थे। फिर एक दिन हमारा बुआ जो होगा तो उन्होंने पूछा कि ऐसे से बात हम सुन रहे हैं। मैंने बोला ऐसे कोई बात नहीं, अगर वहाँ मैरिज का कोई सिस्टम नहीं है फिर वहाँ वो सत्संग करने हम जाएंगे, तो उनको ये जवाब हमने दिया था। तो अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और घर पे उसमें भी हम एडजस्ट करके रह रहे हैं। अच्छा, जो बंदे को हम लाएंगे घर पे उसका खाना पीना रहना ये सारी सिस्टम करेंगे, फिर नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, इनकम सोर्स कुछ होगा, उसके बाद सोचेंगे कि मैरिज करना है नहीं। फिर उनके बुद्धि में क्या है, नहीं नहीं हमारा लड़का ठीक समझा है, अभी पढ़ता है, नौकरी या चाकरी जो भी बिजनेस करेगा उसके बाद मकान उसके लिए बना के फिर मैरिज कर, मतलब फिर उन्होंने ये छुट्टी दिया, बेटा तुम जिस रास्ते में जाते हो वो रेगुलर जाओ।
1: फिर खान पान का भी छूट मिल गया।
0: हाँ, फिर क्योंकि उन्होंने ये समझा कि हमारा लड़का ज्ञान ठीक समझा है,
1: ठीक समझा,
0: क्योंकि नौकरी करेगा,
1: फिर भले वो फॉलो नहीं करते हैं, वो सेंटर नहीं जाते, लेकिन आपको छुट्टी मिल गई।
0: छुट्टी मिल गई,
1: बहुत अच्छा। सो भाई जी, वर्तमान समय में आप क्या करते हैं संस्था में?
0: संस्था में यहाँ जितने भाई बहन हम लोग रहते हैं, दुनिया के हिसाब से हम लोगों सभी अपने अपने जो सेवा स्थान मिला है, जैसे हमको पीने का पानी का सेवा मिला है वहाँ हम सेवा दे रहे, उसके साथ जब पब्लिक में कभी सेवा का चांस मिलता है वो करते हैं। बाकी ड्रिंकिंग वाटर सेवा में हमको 10-12 घंटा से ज्यादा समय हो जाता है।
1: मतलब इतने बड़े कैंपस में जो मिनरल ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता होती है,
0: उस सेवा में हम अपना समय
1: जगह जगह पे उस समय पे उपलब्ध रहे, वाटर मशीन चलाओ, क्लीनिंग करो, क्लीनिंग वाटर करो, और मशीन का मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आप संभालते हैं
0: जी।
1: बहुत अच्छा है भाई जी। आपको जीवन में कब ये महसूस हुआ कि इसे जीना कहते हैं या जीना इसी का नाम है? वो क्या पल था, क्या मोड़ था वो?
0: ये तो हमने इतना नहीं सोचा, बाकी ये सोचा कि जैसे कोर्स के समय जो भाई बोला था, ये चीज अगर आपके जीवन में आ जाएगा आप एक देवता बन जाओगे, तो हमारा लक्ष्य वहाँ था कि हम देवता बनने की बात छोड़ो, एक अच्छा इंसान बन जाएंगे, ये हमारा बुद्धि में था। तो ये था जब हम कोर्स करने के पहले जो मैसेज था कि अच्छा इंसान बन जाएंगे समाज के अंदर। आज समाज में ये देखा जाता है कि लोगों कितना एजुकेशन लिया हुआ हो, कितना भी पढ़ाई किया हो, लेकिन चरित्र नाम का चीज उनके पास नहीं है। जैसे सर्टिफिकेट मिलने के बाद कैरेक्टर इज गुड लिखा जाता है, लेकिन आज के समय अगर उनको पूछा जाए कि कैरेक्टर क्या है, तो उसका जवाब नहीं दे सकते। और उसका जवाब सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितने भाई बहन है वो लोग उसका जवाब दे सकते, तो ये चीज ज्यादा हमको प्रभावित।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आज आप अपने अमूल्य समय लेकर के आए और हम सभी को आपकी जीवन के उन चंद पलों से अनुभव कराया कि बाल्यकाल में हमारे मन में जो चीजें होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की दिशा बनाती हैं। भले उस समय हम ये सोचते हैं कि हम बड़े होकर के इंजीनियर बने, क्या बने, लेकिन मूलभूत जो हमारी संवेदनशीलता या भावनाएं जो होती है वो हमारी जीवन की दिशा बनाती है।
0: जी, थैंक यू,
1: धन्यवाद भाई जी। तो दोस्तों, ये था आज के इस योगी की कहानी, जीना इसी का नाम है। इस कार्यक्रम में आप हमेशा जीवन के उन पलों को या फिर हर एक के जीवन के कुछ नया दृश्यों को आप सुनते हैं, और ये प्रेरणा लेने की हम कोशिश करते रहते हैं कि क्यों हमें इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है और आध्यात्मिकता से हमारे

जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन या हमारे जीवन में शक्ति का प्रदान होता है। दोस्तों, यहीं पे हम विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए योगी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे बेहतरीन मूल्य कह सकते हैं, एक ऐसे इम्पोर्टेंट मूल्य के बारे में जानेंगे जो सभी के जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं रेजिलियंस, और हिंदी में अगर हम कहें तो लचीलापन, यानी कि कोई भी परिस्थिति हो उससे कैसे हम बाहर निकल करके आ सकते हैं, पास्ट की चीज़ें हैं उसे कैसे भूल करके आगे बढ़ सकते हैं। हर परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए लचीलापन अपने अंदर होना बहुत आवश्यक है, लेकिन इसे कैसे अपनाएं, क्या क्या परिस्थिति है जहाँ पर लचीलापन के साथ साथ कुछ और मूल्य भी कनेक्टेड है और मूल्य भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे मध्य बहुत ही अनुभवी स्वरिति जी हैं, और आप द हार्ट स्पेस वेलनेस सेंटर से पधारे हैं आज रेडियो मधुबन पर। आप साइकोथेरेपिस्ट हैं, इसके साथ साथ आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं। स्वरिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
0: धन्यवाद आने के लिए। और आपसे तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस प्रैक्टिस में आप कैसे आए।
1: मेरा शुरू से मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट था। आई थिंक 15 साल की एज से मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते थे माइंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, और उसी को अनुभव करने के लिए, उसी की गहराई में जाने के लिए मैंने साइकोलॉजी की फील्ड को चुना। और वैसे तो मैं साइंस स्टूडेंट थी 12th तक, लेकिन उसके बाद फिर मैंने साइकोलॉजी में अपनी बाकी की पढ़ाई की, और लगभग 8 से 10 साल की ट्रेनिंग करते करते साथ में फिर मैंने प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया।
0: जी, तो आपको निश्चित तौर पे बहुत सारे अनुभव हैं, और आपकी बचपन से जो इच्छा थी और आप चाहते थे कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, तो आपने बहुत सारे युवाओं को और लोगों को हेल्प भी किया है।
1: जी।
0: तो आज जिस वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे वो है रेजिलियंस। इसको आप थोड़ा समझाइए अपने भाषा में, आप क्या सोचते हैं, आपकी डेफिनेशन क्या है?
1: जी, सो रेजिलियंस ये जो वर्ड है आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, लोग इसके बारे में बहुत बात भी करते हैं। मेरी जो ये समझ है रेजिलियंस के बारे में, मुझे लगता है कि जीवन में परिस्थितियां तो आती हैं, हमें कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी सिचुएशंस हम फेस करते हैं जहाँ पे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं और हमें एक तरीके से चैलेंज किया जाता है परिस्थितियों द्वारा। ऐसी सिचुएशन में अपनी सेल्फ वर्थ है ना, और अपने से जो सेल्फ लव हम जिसे कहते हैं उसको बनाए रखना, खुद से एक रिश्ता बनाए रखना, उसी को हम रेजिलियंस मैं समझती हूँ। इट इज़ दी एबिलिटी टू रिमेन कनेक्टेड टू योर सेल्फ, इट इज़ दी एबिलिटी टू रिमेन कनेक्टेड टू योर वैल्यूज नो मैटर वॉट इज़ गोइंग ऑन। कई बार हम जब परेशान होते हैं तो बाहर की परिस्थितियों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेजिलियंस का सही अर्थ ये है कि हम खुद से जुड़ के, खुद से कनेक्ट होकर कैसे परिस्थितियों के चेंज होने का वेट ना करें, परंतु खुद को ऐसे हम चेंज करें कि हम अडाप्ट कर पाएं, हम अपने आप को मोल्ड कर पाएं।
0: ओके जी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार 3 बार फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो और फिर लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा
1: जी,
0: तो इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले
1: मैं समझ सकती हूँ, अगर कोई बार बार, जैसे आपने कहा, अगर कोई 2 से 3 बार मान लीजिए सेम चीज़ में फेल होता है तो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है, एक अंदर से होपलेसनेस की फीलिंग होने लगती है, कि ऐसा लगता है कि जिसे हम नाउम्मीदी कहते हैं ना। ऐसे में सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फेलियर तब तक माना नहीं जाता है जब तक हम ट्राई करना बंद नहीं कर देते हैं
0: जी।
1: हम सिचुएशंस जब हमारे हिसाब से नहीं जाती है या सिचुएशंस जब हमें ऑपोजिशन मिलता है सिचुएशन से, कहीं ना कहीं हम उसे फेलियर मान लेते हैं और उसे एक तरीके से है ना डेड एंड समझ लेते हैं
0: जी।
1: परंतु उस समय हताशा और निराशा को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय हमें अपना ध्यान अपनी स्ट्रेंथ्स पर और जो अभी तक हमने जर्नी कवर की है उस पर लेकर आना चाहिए। क्योंकि हर बार मान लीजिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं कोई एग्ज़ाम क्लियर करूं, है ना, हमारे बहुत सारे यंग लिसनर्स होंगे जो जिनकी उम्मीद होगी कि मैं एक एग्ज़ाम क्लियर करूं या फिर मैं एक इंटरव्यू क्लियर करूं। भले आपका वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया या इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन हर बार जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो
0: जी।
1: आपको पिछली बार से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होता है और किसी भी सिचुएशन में सक्सेसफुल होने के लिए कई बार लाइफ हमें टेस्ट करती है, हमारा है ना, हमें एक चैलेंज देती है कि हम कब तक ट्राई करने की, कब तक कोशिश करते रहने की हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है
0: जी।
1: तो ऐसी सिचुएशंस में अपना ध्यान उस सो कॉल्ड फेलियर या डेड एंड से हटाकर सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और जो मैंने अभी तक सीखा है, जो मेरी लर्निंग हुई है, उस पर लेकर आना चाहिए ताकि अभी तक जो मैंने लर्निंग्स ली हैं उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिए हेल्पफुल थी और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं एक रोड ब्लॉक क्रिएट किया, उसको सही ढंग से इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। जिसे हम कहते हैं परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न कि व्हाट इज हेल्पिंग मी वर्सेस व्हाट इज नॉट हेल्पिंग मी। अगर हम उसे बारीकी से, क्लैरिटी से उसकी जांच करें तो हम ये समझ पाएंगे कि अगर मैं अपने निर्धारित रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकी या पहुंच सका तो उसके पीछे रीजंस क्या थे। उसे ऑब्जेक्टिविटी और क्लैरिटी के साथ देखना बहुत ज़रूरी होता है
0: जी। तो उसके लिए कुछ सूत्र है, कुछ टिप्स है, कैसे देखें, कैसे जाने और जानने के बाद फिर कैसे शुरुआत करें
1: जी। तो इसमें जिसे हम कहते हैं ना वर्ड रिवर्स इंजीनियरिंग, है ना, अगर मुझे किसी गोल तक पहुंचना है, मान लीजिए मुझे नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है या फिर IAS का एग्ज़ाम क्लियर करना है, आई नीड टू नो कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी टू अराइव एट दैट डेस्टिनेशन
0: जी।
1: और एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसको सोचने का, दैट इज वॉट डू आई नीड टू बिकम इन ऑर्डर टू रीच दैट गोल। अगर मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है तो मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज और वैल्यूज का होना ज़रूरी है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ना, क्योंकि जो डिसिप्लिन आपको IAS बनने में हेल्प करेगा वो वही डिसिप्लिन IAS बनने के बाद आपको उस करियर को सस्टेन करने में हेल्प करेगा
0: जी,
1: राइट। और दूसरा जो एक तरीका होता है एवैल्यूएशन का, वो है मैं अपनी 6 मंथ्स की या 1 ईयर की जर्नी को देखूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी, ऐसे मैंने कौन सी चीज़ें फॉलो करी, ऐसे कौन से मेथड्स फॉलो करे जिनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ
0: जी।
1: सो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना, जिसे हम कहते हैं व्हाट वेंट वेल, है ना, व्हाट वर द मिनी सक्सेसेस दैट यू एक्सपीरियंस्ड, है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या था, मैंने ऐसा क्या किया जो मैं वहाँ तक भी पहुँची, है ना, पहले माइलस्टोन तक भी पहुँची। और उसके बाद फिर ये देखना कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, ऐसे मेरे अंदर कौन से मेरे पंस है या कौन से ऐसे मेरे काम करने का तरीका है जो हेल्पफुल नहीं है। हो सकता है मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हो, काम को टालने की आदत हो, हो सकता है कि मैं चीज़ों को उतने थरली समझने की कोशिश नहीं करती हूँ
0: जी।
1: उन बारीकियों को आइडेंटिफाई करके फिर उसको कैसे हमें ओवरकम करना है उसका एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से बात करना, किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करना, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, रादर देन बैटलिंग विथ एन अननोन टेरिटरी एंड अननोन पाथ। जितनी हम क्लैरिटी लेकर आएंगे अपने प्रोसेस में उतना हमें मदद मिलेगी। और साथ साथ अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, अपना प्रोत्साहन करने के लिए भी मेरे पास स्ट्रैटेजीज होनी बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी छोटी छोटी सक्सेसेस को कैसे सेलिब्रेट करूंगी
0: जी,
1: मैं खुद को कैसे इनकरेज करूंगी। ये अगर हमारे पास प्लान होता है तो हमारे लिए फेलियर्स को ओवरकम करना काफी आसान हो जाता है।
0: अपने आप से बातें करना और अपने आप को मोटिवेट करना आना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हमें किसी भी तरीके से निराशा का सामना करना पड़ता है, सबसे पहले तो जो हम एक गलती करते हैं वो है हम अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को कम समझना, अपने आप को कई बार कोसना भी शुरू कर देते हैं। और जो हमारे है ना कहीं जो हमारे बिलीव्स होते हैं अपने बारे में जो हेल्पफुल नहीं है, वो बिलीव्स हमारे ट्रिगर हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर अपने आप से बात करना, अपने आप को समझाना और अपने से कंपैशन के साथ बात करना बहुत ज़रूरी होता है।
0: Right.
1: कि जैसे मान लीजिए इस बार नहीं हो पाया, दैट डज नॉट मीन दैट आई एम अ फेलियर, दिस जस्ट इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू कम बैक इवन स्ट्रोंगर एंड आई एम गोइंग टू ट्राई हार्डर, है ना। लेकिन खुद के साथ मेरा जो रिश्ता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ के प्रयास में अगर मेरा खुद से रिश्ता खराब हो रहा है, एंड दैट्स अ वेरी बिग कॉस्ट दैट आई एम पेइंग एंड इट्स नॉट वर्थ इट। ऐसे में सक्सेस मिल भी जाएगी तो उसके साथ जो खुशी होनी चाहिए
0: वो नहीं होती। ओके, तो खुद के साथ रिश्ते को मजबूत कैसे बनाएं? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि अगर मैं ज़्यादा खुश हूँ या फिर ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ तो शायद मैं अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाऊँगी, या लोग बोलेंगे अभी कुछ मिला ही नहीं, अब से क्यों इतना खुश है, तो ये भी हमें लगता है, तो कैसे करें?
1: तो खुशी हमारा फ्यूल है सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए। खुशी हमें वो शक्ति देती है जो हमें एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए, खास करके उन परिस्थितियों में जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज आया है, तो आपके जो अंदर की खुशी है, दैट इज वॉट इज गोइंग टू हेल्प यू इन मूविंग फॉरवर्ड। आपने बिल्कुल सही कहा, कई बार लोग है ना ये कहते हैं कि जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, राइट?
0: फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मेरे 10th में जस्ट फर्स्ट क्लास आया था तो मेरे पापा मिठाई बांट रहे थे, तो लोगों ने उनको बोला ये कोई मार्क है जो आप इसके लिए मिठाई बांट रहे हो, इतना खुश क्यों हो? तो इस प्रकार से भी सामने आते हैं चीज़ें।
1: जी, आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया और मैं आपके फादर की है ना सराहना करने चाहूँगी, क्योंकि अगर उन्होंने उस जो आपने एफर्ट लगाया था, क्योंकि फर्स्ट क्लास लाने के लिए भी तो एफर्ट चाहिए होता है, अगर उस एफर्ट को उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया होता, उसको सराहा नहीं होता, उसको देखा नहीं होता, तो आपकी डिस्टिंक्शन लाने की हिम्मत कहीं ना कहीं जुड़ी नहीं पाती। और ये गलती हम अक्सर अपने साथ कर देते हैं कि हम एक पैरामीटर सेट करके रखते हैं कि मैं तभी खुश हो सकती हूँ इफ आई अचीव दिस, तब तक मुझे खुश होने का हक नहीं है। बट इनफैक्ट ये देखा गया है टाइम एंड अगेन कि जो लोग खुद के साथ कंपैशनेट होते हैं, अपने ऊपर करुणा करते हैं, अपने से प्यार से बात करते हैं, और यहाँ पे हम कोई एरोगेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग चाहे मैंने कुछ अचीव किया हो या ना किया हो, आई डिजर्व कंपैशन
0: जी,
1: आई डिजर्व दैट काइंडनेस फ्रॉम माई सेल्फ। और हम अपने आप को कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब खुद से रिस्पेक्ट से बात करना, खुद से प्यार से बात करना, ये रिसर्च ने दिखाया है कि किसी भी व्यक्ति का अपने से ऐसे बात करने से उनका जो अचीवमेंट है, उनकी जो सक्सेस है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
0: ओके।
1: इसका मतलब अगर वो कोई चीज़ 10 साल में अचीव करने वाले थे, दे आर एबल टू डू दैट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड दे आर एबल टू डू दैट विदाउट स्ट्रेस, है ना
0: जी।
1: सो खुद से रिश्ता मजबूत करने के लिए हम खुद से कैसे बात करते हैं, हम खास करके फेलियर्स में या फिर जब चीज़ें अपोजिट चल रही होती हैं तब हम खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, दैट डिसाइड्स कि आपका अपने साथ रिश्ता कैसा बन रहा है
0: जी।
1: और उस रिश्ते को हम और भी कई तरीके से मजबूत बना सकते हैं
0: जी। बिल्कुल। और सक्सेस होने के मंत्र या फिर सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है, अचीवमेंट्स की डेफिनेशन भी अलग अलग हो सकती है, तो हम उसे जज ना करें फिर।
1: बिल्कुल।
0: ओके जी। एक सिचुएशन है जैसे ऑफिस में आपकी मेहनत को बार बार कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम से प्रस्तुत कर देता है, क्रेडिट ले लेता है, तो उस परिस्थिति में आपको शांत रहकर आगे बढ़ना भी है लेकिन अंदर ही अंदर आप परेशान भी है, तो कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन को?
1: कई बार ऐसा होता है कि खास करके कॉर्पोरेट्स में ऐसा देखा गया है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, है ना। और जब हम देखते हैं कि कोई हमारी चीज़ों का क्रेडिट ले रहा है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाता है, हमें कहीं ना कहीं ये भी लगने लगता है कि क्या कभी ऐसा होगा कि मुझे भी रिकग्नाइज किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में, अगेन कमिंग बैक टू जो हम बात कर रहे थे, ऐसे सिचुएशन में कई सारी फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। एक तो होता है कि मेरा जो खुद के साथ रिश्ता है वो कैसा है, उसके अलावा मैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस है उसको मैं कैसे समझ रही हूँ, क्या मेरे पास उन सिचुएशन से डील करने के लिए वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है जो मैं उस सिचुएशन को फेस कर पाऊँ। पहली बात आती है सेल्फ बिलीव की, है ना। ये एक वर्ड है कि मेरा खुद के ऊपर ट्रस्ट कि ठीक है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और ऑफिस के डायनामिक्स को और पॉलिटिक्स को समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन अब मैं ये समझ गई हूँ कि चीज़ें यहाँ पर ऐसे काम करती हैं
0: जी,
1: राइट। ऐसे में मेरा खुद के ऊपर भरोसा रखना, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी स्किल पे, अपनी कैपेसिटी पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने सामने वाले के बिहेवियर को या फिर ऑफिस में जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसको देखते हुए अगर मैंने अपना एफर्ट लगाना बंद कर दिया तो मैं कहीं भी नहीं पहुंच पाऊंगी
0: जी,
1: राइट। एंड द सिचुएशन हैज मैनेज टू ओवर पावर मी, मेरा जो इंटरनल पावर है वो बहुत डिप्लीट हो चुका है और सिचुएशन और रिलेशनल डायनामिक्स मेरे ऊपर हावी हो चुके हैं
0: जी।
1: तो ऐसे में खुद का अपने ऊपर विश्वास फिर से जगाने की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे सिचुएशन में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की है, वो है कि जब हम लोगों के बिहेवियर को देखते हैं कई बार हम उसे पर्सनली ले लेते हैं
0: जी।
1: हम ये सोच लेते हैं कि ये मेरे साथ इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं क्योंकि मैं क्रेडिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ, बॉस ने मेरी जगह उसकी बात पे ध्यान दिया, मे बी बिकॉज आई एम नॉट टैलेंटेड इनफ। तो ऐसे टाइम पे सेल्फ डाउट क्रीप इन होना बहुत कॉमन है
0: जी,
1: राइट। तो अपने आप को उससे प्रोटेक्टेड रखने के लिए ये जांच करना और ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट व्हाट आर माय बिलीव्स अबाउट माय सेल्फ, मेरा खुद के ऊपर कितना भरोसा है, दैट इज नंबर वन। उसके अलावा अगर मैंने ये समझ लिया है कि सामने वाले का जो संस्कार है, उसका जो बिहेवियरल पैटर्न है, वो यही है
0: जी।
1: तो उस मोमेंट में अगेन परखने की शक्ति को यूज करके मुझे सही डिसीजन लेना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम से जब मैं कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रही हूँ या फिर किसी चीज में पिच इन कर रही हूँ, राइट, मैं किस तरह से अपनी चीजों को कम्युनिकेट करूं ताकि जो मैंने आइडिया दिया है मुझे उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट, या फिर क्रेडिट भी नहीं कहेंगे बट अक्नॉलेजमेंट मिल सके
0: जी,
1: है ना,
0: कोई उसका मिसयूज ना करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई बार हम आइडियाज का क्रेडिट या एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि हम चाहते हैं हमारा नाम हो, बट समवेयर वी वुड लाइक टू टेक द ओनरशिप ऑफ द आइडिया दैट वीव गिवन, कि ये मैंने आइडिया प्रेजेंट किया है और मैं जेन्युइनली इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती हूँ, राइट, दैट इज समथिंग दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ जॉय या इज माई जेन्युइन इंटरेस्ट। सो सेकेंड थिंग आती है कि मैं अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कैसे कर रही हूँ, एम आई कम्युनिकेटिंग इट टू द राइट पीपल, राइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार मैंने परख लिया कि सामने वाले का ये स्वभाव है तो मुझे फिर अपने डिसीजन मेकिंग को ऑल्टर करना पड़ेगा
0: जी।
1: और तीसरी जो बात आती है वो है ये समझना कि ग्रोथ के प्रोसेस में हमेशा चीज़ें मुझे डायरेक्टली जैसा मैं चाहती हूँ हो सकता है वैसी ना मिले
0: जी।
1: कई बार सिचुएशंस हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट होती हैं जिसमें हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, वो चैलेंज होती है, वो क्वेश्चन में आती हैं। सो क्या मेरे लिए उस वक्त ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आइडिया मेरा आइडिया होके प्रेजेंट हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन को या कलेक्टिव को उससे बेनिफिट हो
0: जी,
1: इन दैट मोमेंट व्हाट इज माय प्रायोरिटी। तो ये दो या तीन चीजें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स और ऑफिस डायनामिक्स को नेविगेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। कई बार हमारे पास बहुत यंग लोग आते हैं जिन्होंने इन्हीं रीजंस की वजह से हर दो या तीन महीने में जॉब्स चेंज की हैं और डिस्पाइट बीइंग रियली टैलेंटेड एंड डिस्पाइट बीइंग वेरी इंटेलिजेंट एंड शार्प, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को उस समय रेगुलेट या मैनेज नहीं कर पाए, तो जब उनका सीवी हम देखते हैं या वो अपने सीवी को कहीं लेके जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि अरे ये तो सिर्फ दो या तीन महीने एक जॉब में रह पाया। इट्स नॉट बिकॉज दे आर नॉट इंटेलिजेंट, उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईक्यू यानी कि इमोशनल कोशंट, कठिन परिस्थितियों में अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रख पाना
0: जी।
1: ये क्योंकि क्षमता कम है तो उसकी वजह से कई बार उनकी सक्सेस में, उनकी ग्रोथ में ये एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। सो अगर हम अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखना सीखें, खास करके गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को, तो उससे कहीं ना कहीं हम अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाते हैं।
0: जी जी, तो इसका मतलब कि आपको अपने इंटेंशन देखना होगा, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने से पहले कि क्या इंटेंशंस हैं।
1: जी,
0: जी। ऐसा कोई सिचुएशंस, जैसे आपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किया, कुछ ऐसे सिचुएशंस आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल हो और जिसको आपने बेहतर तरीके से हैंडल किया होगा और सामने वाले को भी उसका फ़ायदा हुआ हो?
1: जी, सो कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं, मुझे याद आता है हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे और नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट था, बहुत सारे हमने स्पीकर्स को, गेस्ट्स को बाहर से बुलाया हुआ था
0: जी।
1: और हमारा एक प्रोग्राम रन होता था, तो उस समय कई सारे ऐसे मैं कहूँगी कॉलीग्स या स्टाफ मेंबर्स थे जिनको बहुत इंटरेस्ट नहीं था कि हमारा डिपार्टमेंट ये प्रोजेक्ट कर रहा है, और वो एक फीलिंग होती है ना कई बार कि ये आपका काम है, दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद अस। तो जो सपोर्ट और जो एक कमराडरी हमें उनसे जिसकी उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं हमें उनसे उसका ऑपोजिट बिहेवियर हमने एक्सपीरियंस किया। पर उस समय में मैंने अपने अंदर जो एक चीज नोटिस की और मैं इसका पूरा श्रेय ना जो मेडिटेशन का अभ्यास मैं करती हूँ उसको देना चाहूँगी कि उस पूरे मुझे लगता है 2 या 3 महीने का ड्यूरेशन होगा जब मेरा जो फोकस था वो प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने पर कंप्लीटली उसी पर मेरा ध्यान था और इन दैट मोमेंट नथिंग एल्स मैटर्ड
0: जी.
1: प्रोग्राम अच्छे से होना चाहिए. हम लोगों को बुला रहे हैं बाहर से ताकि जो हमारे सिटी के लोग हैं उनको बेनिफिट मिल पाए. दैट वाज आवर मेन इंटेंशन. तो हमारा जो फोकस था वो इतना शार्प था प्रोग्राम के ऊपर और प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में कि ये जो साइड सीन्स होते हैं ना जो आसपास चीजें चल रही होती हैं लोगों का बिहेवियर या फिर वो सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उन बातों पर हमने अपना ध्यान नहीं लगाया अपना टाइम उस पर वेस्ट नहीं किया
0: जी.
1: क्योंकि जब आपका पूरा फोकस अपनी लाइफ में अपने करियर में अपने पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने का होता है तो ये सारे जो साइड में चीज़ें हो रही होती हैं इस पर ना केवल इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट गिव टाइम टू इट लेकिन मन में भी उनके लिए विचार चला के संकल्प चला के और कहीं ना कहीं यू नो क्वेश्चन करके कि ऐसा क्यों कर रहे हैं क्या इनका इंटेंशन होगा इन सारी चीज़ों पर जब हम अपना टाइम और अटेंशन नहीं लगाते हैं तो हम अपने एनर्जी को और टाइम को और फोकस को कंजर्व कर पाते हैं और उसको रीडायरेक्ट कर पाते हैं ऐसी डायरेक्शन में जहाँ पे एक्चुअली हमारा प्रोग्रेस है. सो दैट इज दैट डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी लाइफ में फिलहाल क्या जरूरी है.
0: जी ओके. अभी बात करते हैं कुछ रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में क्योंकि आजकल तो ब्रेकअप्स तो आम बात हो गई है लेकिन कई बार ऐसे होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी एकदम हर्ट होती है और प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसा है कि आजकल फिजिकल बहुत जल्दी हो जाता है और खासकर लड़कियां बहुत इमोशनल डिपेंडेंट भी हो जाती है कई बार. फिर जब ब्रेकअप होता है और उन्हें लगता है कि क्या मैं एक सिर्फ टॉय थी जो उन्होंने मुझे यूज़ किया और छोड़ दिया तो उसके कारण हम फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं बहुत सारे ट्रॉमा से हम गुजरते हैं. तो उस सिचुएशन में रेजिलेंस को यूज करते हुए बाहर कैसे निकले या कौन से ऐसे और वैल्यूज हैं जो हम ऐड कर सकते हैं.
1: जी आई थिंक आपने जो सिचुएशन बताई है दैट इज वेरी वेरी कॉमन और कई बार हम अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ बात करते हैं हु टेंड टू फेस सिमिलर सिचुएशंस. मैंने ये नोटिस किया है कि सबसे पहले तो जो चीज़ें मैंने कॉमन देखी हैं उन लोगों में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है इज़ दैट द वेरी रीज़न दैट दे गॉट अट्रैक्टेड टू या पुल्ड टूवर्ड समवन हु वाज इमोशनली अनअवेलेबल या फिर इमोशनली वो इतने इन्वेस्टेड नहीं थे
0: जी
1: इज बिकॉज समवेयर देयर वाज अ डीप सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड सैडनेस विद इन. जब हमारा जो अंदर एक कहीं ना कहीं अकेलापन होता है क्योंकि आज जो हम जिस एज में रहते हैं जिस मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस शेयर करने का जॉय शेयर करने का सैडनेस शेयर करने का वक्त नहीं मिलता है और ऐसे में हम अपने आप को इतना अकेला महसूस करते हैं कि कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट हमें लगता है या इंटरेस्ट लगता है कि आ रहा है तो हम तुरंत उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. कई बार जब हम थेरेपी में काउंसलिंग में इस पर चिंतन करते हैं डिस्कशंस करते हैं तो अक्सर ये पाया जाता है कि द पर्सन दैट दे वर अट्रैक्टेड टू और दे वांटेड टू टॉक टू और कनेक्ट विद वाज नॉट समवन दैट दे एक्चुअली फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. हो सकता है उस व्यक्ति में एक या दो ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने बहुत ज़्यादा आकर्षित किया होगा। मान लीजिए उन्होंने थोड़ा अटेंशन दिया या थोड़ा सा वैलिडेशन दिया, और उसके ऊपर हम कई बार क्या होता है कि वो हमने देखा है कि वो अट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है। तो ऐसे में ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन अब ये नहीं है कि आई हैव टू नाउ मूव टूवर्ड्स अ बेटर रिलेशनशिप विथ सम अदर पर्सन। सबसे पहले तो जब ऐसा कुछ हुआ है तो अपने हर्ट को, अपने ग्रीफ को और जो अंदर लॉस की फीलिंग है उसको एक्नॉलेज करना और उसको ठीक तरीके से हील कैसे करना है उस पे हमें अपना फोकस लेकर जाना है। क्योंकि अक्सर जब ऐसा होता है तो खास करके वुमेन, दे फाइंड देमसेल्व्स कम्प्लीटली इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि ये क्या हो गया
0: जी?
1: और इतना बड़ा सिचुएशन या इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया मेरे साथ। सो उस शॉक से, उस ग्रीफ से उभरने में थोड़ा वक्त लगता है। और ऐसे में अगेन व्हाट्स वेरी हेल्पफुल इज टू रिकग्नाइज दैट कहीं ना कहीं मेरा जो पुल था या अट्रैक्शन था उस व्यक्ति के तरफ वो इसलिए था क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अकेला और लोनली महसूस कर रही थी। और वैसे तो थेरेपी में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं और हम सिस्टमैटिकली इस पे काम करते हैं, लेकिन अगर ब्रीफ में मैं बताऊं तो अपने इमोशंस को हमें कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। चाहे फिर वो खुद से बात करना हो, जर्नलिंग करना हो, या फिर हम थेरेपी या काउंसलिंग में जाके भी ये सीख सकते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। क्योंकि हम अपने इमोशंस को जितना बॉटल अप करते हैं, जितना निग्लेक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस, इमोशन इज नथिंग बट एनर्जी इन मोशन, राइट? सो आपके उसको दबाने से या फिर उसको निग्लेक्ट करने से वो इमोशन चला नहीं जाएगा, बल्कि वो अंदर बिल्डअप होता जाता है और एक बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्म ले लेता है एज टाइम पासेस। सो मैंने जो डेफिनेशन ऑफ ट्रॉमा भी सीखा है अपने टीचर से, वो ये सीखा है दैट ट्रॉमा इज एनीथिंग दैट डिसकनेक्ट्स यू फ्रॉम योर ओन एसेंस। हमारे अंदर जो परमात्मा ने इतनी सारी क्वालिटीज दी हैं, है ना, हमारे अंदर जो इतनी सारी विशेषताएं हैं, जब ऐसा कुछ होता है तो हम उन

0: नहीं, आपको वक्त देना पड़ेगा,
1: जी
0: रोज अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा, जिसमें मैं अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी वैल्यूज़ को और मुझे क्या वैल्यूबल बनाता है, उन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करें।
1: ओके okay, लेकिन बार बार फिर वो सिचुएशंस, वो जो हर्ट है वो याद आती है,
0: जी
1: तो उसे मतलब कितना टाइम चाहिए,
0: जी
1: मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये बार बार संकल्प में आते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो कितना धैर्यता रखना है। और सबसे पहला सूत्र तो क्या है, मतलब 24 घंटे के अंदर अगर ऐसा हुआ,
0: जी
1: चौबीस घंटे के अंदर पहला स्टेप क्या उठाना
0: जी
1: चाहिए?
0: सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि इंसान को शॉक लग जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जो है वो कई बार नंबर ब्लॉक कर देते हैं, कई बार वो बिल्कुल कांटेक्ट खत्म कर देते हैं। तो ऐसे में कई लोगों को एंजाइटी होने लगती है और वो जो स्टेट ऑफ शॉक है उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ टू स्टेबलाइज योर सेल्फ, और उस स्टेबलाइजेशन के लिए अगर पॉसिबल है कोई अगर ट्रस्टेड व्यक्ति है
1: जी
0: आपकी लाइफ में, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर कज़िन हो या सिबलिंग हो, फ्रेंड हो, जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, इफ़ पॉसिबल उनके साथ शेयर करना कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है, क्योंकि देन यू आर नॉट अलोन विद दैट ग्रीफ। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऐसे समय में सेल्फ हार्म रिलेटेड थॉट्स आने लगते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, और इसलिए उस समय पे अपने आप को पहले ही हम लोनलीनेस से गुजर रहे हैं, और अपने आप को अकेला कर देना इज नॉट एडवाइजेबल। ऐसे समय पे किसी ट्रस्टेड व्यक्ति को रीच आउट करना ज़रूरी है, और अगर कोई ट्रस्टेड व्यक्ति नहीं समझ में आ रहा है, देर आर हेल्पलाइन नंबर्स दैट स्पेसिफिकली वर्क विथ क्राइसिस, और हम दर्शकों से हेल्पलाइन नंबर्स शेयर भी कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, टेलीमानस इज़ अ हेल्पलाइन जो निमहांस के द्वारा बनाई गई है, विच इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ टॉकिंग टू समवन। क्योंकि फोन के उस तरफ एक थेरेपिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है, जो आपकी बात को नॉन जजमेंटली समझेंगे और सुनेंगे, और आपको एक रास्ता बताएंगे कि आप, चाहे आप शॉक से गुजर रहे हैं, चाहे आपको एंजाइटी फील हो रही है, तो उससे कैसे कोप करना है वो आपको समझाएंगे। ऑल्टरनेटिवली, एक ट्रस्टेड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रीच आउट करना भी इज़ अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट दिस। उस समय पर ये करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस समय पर करेज, समवेयर टैपिंग इन टू योर ओन करेज एंड अलाउिंग योर सेल्फ टू फील वॉट यू आर फीलिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ग्रीफ जो होता है, खास करके इस तरह का लॉस जहाँ पर व्यक्ति जिंदा है लेकिन उन्होंने आपके साथ एकदम कट ऑफ कर दिया है, या फिर आपको रियलाइज हुआ कि उन्होंने चीट किया है, ऐसे समय पर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ स्पेस टू गो थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। हो सकता है कुछ समय शॉक रहे, उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, डिसबिलीफ भी होता है
1: तो इन
0: कि
1: सब सिचुएशंस को और थॉट्स को, इमोशंस को हमें एक्सेप्ट करना है।
0: एक्सेप्ट इज अ वेरी लेटर स्टेज, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, खास करके फॉर अ फीमेल, फॉर अ गर्ल। कहीं ना कहीं, है ना, जैसे हम कहते हैं कि पैर के नीचे से जमीन सरक जाती है, ऐसा उनको इतने लेवल का भी शॉक लग सकता है। तो उस समय पर एक्सेप्टेंस की बजाय वी यूज द टर्म मेकिंग स्पेस, राइट? मेकिंग स्पेस का क्या मतलब होता है? मैं ये एक्नॉलेज कर रही हूँ कि हाँ, इस वक्त मुझे रोना आ रहा है
1: तो रो लेना
0: तो
1: चाहिए।
0: रो लेना है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं उसे उल्टा सीधा बोलूँ, भले ही मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ, बट आई कैन एक्सप्रेस दैट एंगर आइदर इन राइटिंग। सो कई बार हम रिकमेंड करते हैं कि आप, यू कैन शाउट इन टू अ पिलो, स्क्रीम इन टू अ पिलो, और यू कैन डू सम फिजिकल मूवमेंट, जिससे आपका जो एंगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कहीं ना कहीं उसको स्पेस मिल सके। अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टेक्निक उस टाइम पे

0: जो हम यूज करते हैं एंड जो जिसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग एंड स्टेबलाइजेशन. ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि बार बार मेरे थॉट्स जाएंगे सिचुएशन की तरफ, पर मुझे उसको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना पड़ेगा. जी, कि ठीक है ये हुआ है, इट्स ओके, आई विल नीड माई टाइम टू कोप विद दिस, बट मुझे अपना ध्यान प्रेजेंट में लेकर आना है. सो फॉर दैट आई कैन, इफ आई वॉन्ट टू यू नो जस्ट कनेक्ट बैक विथ माई ब्रेथ, या फिर हम एक टेक्निक सिखाते हैं 5-4-3-2-1. 5-4-3-2-1 इज 5 थिंग्स आई कैन सी, 4 थिंग्स आई कैन हियर, 3 थिंग्स आई कैन टच, 2 थिंग्स आई कैन स्मेल एंड 1 थिंग आई कैन टेस्ट. इसको कई बार ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करना है ना, जैसे एक और ब्रीदिंग प्रैक्टिस है 4-7-8, जिसमें हम 4 सेकंड्स तक सांस लेते हैं, 7 सेकंड तक होल्ड करते हैं और 8 सेकंड तक छोड़ते हैं. तो बार बार अपना ध्यान प्रेजेंट में लेके आना है. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में आई एम लेट्स से इन माय रूम या आई एम इन माय स्पेस, फिजिकली मुझे सबसे पहले अपने आप को डेंजर से दूर लेकर जाना है, राइट? सो प्रायोरिटाइजिंग फिजिकल सेफ्टी एंड देन मूविंग टूवर्ड्स ग्राउंडिंग एंड इमोशनल सेफ्टी.
1: जी,
0: और उस मोमेंट में चाहे जितना आपका मन कर रहा हो अपने आप को आइसोलेट या डिस्कनेक्ट करने का, ट्राई टू नॉट डू दैट, राइट? सो मेकिंग स्पेस फॉर योर इमोशंस इज अलाउविंग योर इमोशंस. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट? सो ऐसे में आप उसको स्पेस तो दे रहे हो, लेकिन उसको कंटेन कैसे करना है वो आपको नहीं पता. इसलिए वर्किंग विथ अ प्रोफेशनल रियली हेल्प्स, राइट? और अपने थॉट्स को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है.
1: ओके, जी. तो निमांस का नंबर आप शेयर कर सकते हैं?
0: जी, सो टेलीमानस का टोल फ्री नंबर है, राइट? इट इज 1-800-891-4416. या फिर ऑल्टरनेटिवली आप 1-4-4-16 पर भी कॉल कर सकते हैं. दिस इज अ 24/7 हेल्पलाइन एंड ये बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. और क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है थ्रू निमहांस, तो जो उनके वॉलंटियर्स हैं दे आर रियली ट्रस्टेड वॉलंटियर्स. सो यू कैन रीच आउट टू देम एट एनी टाइम ऑफ द डे एंड समवन विल पिक अप योर कॉल.
1: जी बिल्कुल. तो दोस्तों, अगर कोई भी परेशानी है, कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं, तो आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इसका टोल फ्री नंबर. तो कुछ ऐसे सुइसाइडल वाला सिचुएशंस आप शेयर करना चाहेंगे?
0: सो कई बार ऐसी सिचुएशंस जब खास करके हम स्टूडेंट्स के साथ काम करते थे, तो ऐसी सिचुएशंस बहुत हम फेस करते थे. ऑलमोस्ट वंस अ वीक तो कोई ना कोई ऐसा केस आता था. और मेरा जो इनिशियल स्टांस होता था इस पे, वो होता था कि मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती थी कि अच्छा अब क्या किया जाए, हाउ टू यू नो फाइंड द सॉल्यूशन. लेकिन जो सुसाइडल आइडिएशन होता है, उसके लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी देर आर सम ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसी सेल्फ हार्म या फिर सुसाइडल आइडिएशन को यू नो प्रोपेल करते हैं या क्रिएट करने में जिम्मेदार होते हैं. व्हाट वी कॉल एज द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टुवर्ड्स सुसाइडलिटी. और इसमें तीन चीज़ें मुख्य देखी गई हैं. एक है वर्थलेसनेस, दूसरा है होपलेसनेस और तीसरा है हेल्पलेसनेस, है ना? यानी कि अपने आप को वर्दी नहीं समझना कि मेरी कोई वैल्यू है, मेरी कोई वर्थ है. जब हम अपनी वर्थ को कम आंकते हैं या अपने आप को वर्थलेस महसूस करते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज. उसके अलावा निराशा, यानी कि होपलेस हम जब महसूस करते हैं कि इस सिचुएशन में कोई होप ही नहीं है,
1: जी,
0: राइट? दैट अगेन इज़ अ वेरी बिग फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस. और इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि हम उम्मीद को ज़िंदा रखें
1: जी,
0: कि मेरे सामने जो परिस्थिति आई है, चाहे इस वक्त मुझे कितनी भी वो पहाड़ की तरह लग रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर एक आशा की किरण जगाए रखना कि मैं ना केवल इसको फेस कर पाऊंगी, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब मैं बेहतर महसूस करूंगी। वो होप जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो पिलर है या तीसरा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है उसका, वो है हेल्पलेसनेस, यानी कि अपने आप को असहाय महसूस करना कि देर इज नो वे दैट आई कैन बी हेल्प्ड। लेकिन हम कितनी भी कठिन सिचुएशन हो, जब हम हेल्पलेस फील करने लगते हैं और लंबे समय तक हेल्पलेसनेस में रहते हैं, तो हमारे अंदर जो जीवन की जो जीवन जीने की जो एक उम्मीद है, जो एक वाइटालिटी है जिसको हम कहते हैं ना लाइफ फोर्स, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। इसलिए एक चीज़ हमेशा मैं लोगों से कहती हूँ कि चाहे आपको कितनी भी सिचुएशन ऐसी लग रही हो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे समय पर भी मेरे पास चॉइस है, और उस चॉइस को अपने आप को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इज, आई हैव अ चॉइस ऑफ हाउ आई वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन, और ये चॉइस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बाकी सारे फ्रीडम्स किसी से छीने जा सकते हैं, लेकिन आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं और उस सिचुएशन को क्या मीनिंग दे रहे हैं, ये आपसे कोई नहीं ले सकता। सो इन तीन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं जो सुसाइडल आइडिएशन है या सेल्फ हार्म रिलेटेड आइडिएशन है उससे हम बेटर कोप कर पाते हैं। लेकिन सुसाइडल आइडिएशन को कभी भी हमें हल्के में नहीं लेना है। वी हैव टू गिव इट अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस, बिकॉज नॉट जस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी, बट बिकॉज सुसाइडल आइडिएशन इज एन इंडिकेशन कि व्यक्ति बहुत समय से जूझ रहा है और उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सो इट्स लाइक द लास्ट रिजॉर्ट। मुझे याद आता है एक क्लाइंट थी जो बहुत समय से, एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन, यंग है वो, बहुत ही ब्रिलियंट है अपने फील्ड में, बट बहुत टाइम से, करीब एक डेढ़ साल था कि उनको बार बार ये आइडियाज़ आते रहते थे। और जब कोई बड़ी सिचुएशन आती थी, मान लीजिए जैसे ब्रेकअप हो गया या फिर जॉब में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो ये उनकी जो टेंडेंसी है बहुत बढ़ जाती थी
1: जी।
0: और हमने सब कुछ ट्राई किया हुआ था, उन्होंने अलग अलग तरह से मेडिसिन भी ट्राई की हुई थी। एक दिन ऐसे ही मैं उनसे बात कर रही थी उनके थेरेपी सेशन में, तो अंदर से मुझे ऐसे लगा कि मैं इनसे क्या कहूँ कि इनको जीवन के प्रति और अपने प्रति एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद या एक प्यार इनके मन में जाग जाए। और ऐसे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे मुंह से निकल गया। मैंने उनको देख के कहा, और बहुत सीरियसली उनको देख के कहा कि यू नो यू ऑल्सो डिजर्व टू बी हैप्पी। आई डोंट नो इफ यू एवर थॉट अबाउट दिस, बट You have the right to be happy and you owe it to yourself। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने लाइफ में खुश रहने के और अपने आप को खुश महसूस कराने के लिए एफर्ट डालो। और पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उस बात को या शायद उस इंटेंशन को बहुत, उनके वो दिल तक पहुंच गया, एंड शी बिगैन टू क्राई, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्होंने मुझसे बात कही कि बचपन से लेके आज तक मुझसे बस यही कहा गया था कि तुम्हें मार्क्स लाने हैं, तुम्हें जॉब करना है, तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, लेकिन मुझसे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें खुश रहने का और खुशी महसूस करने का भी हक है। यू हैव टू ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स हैप्पीनेस। और उस दिन के बाद से, टचवुड, आज कई महीने हो गए उस बात को, उनको कभी ऐसा थॉट फिर से नहीं आया। इनफैक्ट अब वो मुझे हमेशा कहती हैं कि अब मुझे जीना है
1: जी।
0: और उन सालों के लिए भी आई हैव टू कवर अप फॉर द ईयर्स दैट आई हैव नॉट लिव्ड, So I want to live more in the years that I have in front of me. So ये जो बात है ना कि I deserve to be happy, मेरा भी हक बनता है कि मैं खुश रहूं, अपने आप को ये याद दिलाना बहुत जरूरी होता है. लाइफ में हम इतना कुछ अचीव करना चाहते हैं, कितना कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन हैप्पी भी बन सकते हैं, ये हम कभी नहीं सोचते हैं.
1: राइट जी. तो ये मेरा हक बनता है कि मैं खुश रहूं, अपने आप को खुश रखूं. तो अगर इस नोट को भी हम समझ ले, इसको ही सूत्र बना ले, तो कोई भी सिचुएशंस हो उसे डील करने की ताकत आ जाती है और सॉल्यूशंस भी हमें मिलने लगते हैं. अभी तो थोड़ा वक्त हो रहा है कि इस प्रोग्राम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसा है कि कई बार सोशल मीडिया पर या फिर बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें एम्बैरेसमेंट की फीलिंग्स आती है. फॉर एन एग्जांपल, अभी स्पोर्ट्स चल रहा है तो कुछ प्लेयर्स हैं जो जीत रहे हैं, कुछ हैं जो बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो इसका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि पूरा पब्लिक देख रहा है उसको, है ना, 100 करोड़ से ज़्यादा जनता देख रही है उनको, तो ऐसे सिचुएशंस में कैसे डील करें.
0: जी, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन का माइंडसेट होना चाहिए, या आइडियली जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट्समैन का जो माइंडसेट होता है, दैट इज फोकस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस एंड हाउ कैन आई गिव माय बेस्ट, है ना. आपने बिल्कुल सही कहा, अब आज सोशल मीडिया का ज़माना है, थिंग्स आर गोइंग वायरल, रील्स आ जाती हैं, तुरंत मीम्स बन जाते हैं. और एक इंसान को एक प्लेयर के दर्जे से निकाल कर एक मीम का दर्जा सिर्फ मिल जाता है, नो, बिकम्स अ जोक. प्लेयर्स के साथ या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके साथ जब हम काम करते हैं, तो हमने ये चीज़ या जब उनसे बातें करते हैं तो ये समझा है कि इट रियली ऑल बॉयल्स डाउन टू देयर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. मेरी वैल्यू एक गेम के ऊपर या नीचे जाने से मेरी वैल्यू कम नीचे नहीं होती है. देर आर गोइंग टू बी सम डेज दैट विल बी गुड डेज एंड सम डेज दैट विल बी नॉट वेरी गुड डेज. लेकिन जो बदल नहीं रहा है वो है मेरी वैल्यू, मेरी वर्थ. So that is the first thing. उसके अलावा अभी तक जो रिसर्च हुई है उसमें ये पाया गया है कि शेम या एम्बैरेसमेंट कहो, उसका जो एंटीडोट है वो सेल्फ लव भी नहीं है और सेल्फ केयर भी नहीं है, बल्कि वो है सेल्फ कंपैशन. और सेल्फ कंपैशन में तीन एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से जो एक एलिमेंट जो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वो है कॉमन ह्यूमैनिटी, यानी कि अपने आप को ये याद दिलाना दैट आई एम अ फ्लॉड ह्यूमन बीइंग. हर एक व्यक्ति कभी ना कभी, चाहे कितना भी प्रयास कर ले, चाहे कितनी भी अच्छी प्लानिंग करे या थरली अपना काम करे, देर आर मैनी फैक्टर्स जो उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं. एंड कॉमन ह्यूमैनिटी सेज दैट वी ऑल हैव कॉमन एक्सपीरियंसेस लाइक फेलियर, लाइक डिसअपॉइंटमेंट्स. तो जो इमोशन मैं महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट इमोशन हो, आई एम नॉट अलोन इन दैट एक्सपीरियंस.
1: जी.
0: और एम्बैरेसमेंट या फिर एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इस दुनिया के हर एक व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया एट सम पॉइंट इन सम फॉर्मेट. सो दैट इमीडिएटली टेक्स ऑफ द बर्डन ऑफ आइसोलेशन, है ना, कि सिर्फ मैंने अकेले ने ये एक्सपीरियंस किया है. हाँ, अगर मैं एक स्टेडियम में हूँ और हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, मे बी द नंबर ऑफ आईज ऑन मी आर मोर.
1: जी.
0: लेकिन जो कोर इमोशन है शेम का या एम्बैरेसमेंट का, वो तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है. सो अपने आप को ये याद दिलाना दैट यू नो दिस इज व्हाट इट इज टू बी अ ह्यूमन. देर आर गोइंग टू बी डेज व्हेन आई विल एंड अप यू नो नॉट सक्सीडिंग. और एम्बैरेसमेंट का एक और जो से अगर उभरने के लिए एक और जो फैक्टर काम में आता है वो है नॉट टू टेक योरसेल्फ सो सीरियसली, राइट? खुद पर हंस पाना, और है ना, लाइफ अगर जोक कर रही है तो उस जोक के ऊपर हंस पाना, ये भी रेजिलियंस की एक के अंदर एक कला होती है
1: जी.
0: जो हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली और जब हम उसको बहुत ज़ोर से पकड़ के रखते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट करती है. लेकिन उस मोमेंट को लेट गो कर पाना, ठीक है मुझे एम्बैरेस्ड फील हुआ बट दिस इमोशन इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर,
1: जी
0: राइट, तो दिस टू शैल पास. उस एटीट्यूड के साथ अगर उस मोमेंट में हम यू नो इफ यू आर एबल टू लाफ इट ऑफ देन इट रियली हेल्प्स. एंड अगेन बींग काइंड टू योर सेल्फ, राइट, दैट्स इनक्रेडिबली वैल्यूएबल.
1: ओके जी, थैंक यू सो मच हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए. तो जाते जाते सिर्फ एक मंत्र क्या बताना चाहेंगे, जिंदगी की कोई भी सिचुएशन हो कैसे उभर के आ सकते हैं?
0: As long as I am connected to my own essence and as long as I am making effort to remain connected to my own self and to my qualities, no situation can create a lasting impact on me. अगर मैं अपने essence से, अपनी qualities से, अपनी values से जुड़ी हुई हूँ, सिचुएशंस आएंगी और थोड़े टाइम के बाद चली जाएंगी. लेकिन अगर मैं अपने एसेंस से डिस्कनेक्ट हो रही हूँ तो फिर सिचुएशंस मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं या करेंगी, राइट? सो अपने एसेंस से जुड़े रहना इज द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन दैट आई अबाइड बाय.
1: ओके जी, बिल्कुल. तो दोस्तों अपने जो वैल्यूज़ है, अपने एसेंस है, उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है, उसे नोट डाउन करना भी ज़रूरी है. कभी भी ज़रूरत पड़े तो जैसे आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या फिर अपने मन में उसे सोच सकते हैं. तो स्वरूति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए.
0: बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत मदद मिलेगी इससे.
1: जी, तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आपको बहुत सारे टिप्स ज़रूर मिले होंगे तो हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर, 94-1-4-1-5-1-4-1-5 इस नंबर पर. सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM. मैं हूँ आरजे शुभा, यहीं पर रुकते हैं. नमस्ते.

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। हमराही प्रोग्राम में हर हफ्ते हम लोग अलग अलग लोगों से बात करते हैं और उनके जीवन की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग ऐसे साथियों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने किसी शारीरिक चुनौती को चुनौती न समझ करके अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। और हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे साथी भी होते हैं जिनमें जिंदगी को अलग तरीके से देखने का नजरिया होता है। आप सब जानते ही हैं, शादीशुदा जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, कई तरह की कठिनाइयां होती हैं।
1: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका बेहद पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। और कभी कभी जिंदगी में बड़े अजीब अजीब इत्तफाक होते रहते हैं। जैसे एक इत्तफाक ये देखिए कि पिछले रविवार हमराही प्रोग्राम नहीं हुआ, आप लोगों को इंतजार भी रहा होगा, तो फिर इस बार हमने सोचा कि उसकी भी भरपाई करें और आज का प्रोग्राम तो खैर करना ही है। तो आज के हमराही प्रोग्राम में कुछ खास बात है। क्या है? आज मेरे साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे चार लोग हैं और दो जोड़ियां हैं। चारों दृष्टिबाधित हैं, चारों युवा हैं और चार में से तीन जॉब में हैं। और चारों, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपस में बहुत ही गहरे मित्र हैं। तो इस लिहाज से आज का प्रोग्राम हुआ ना खास। बाकी आप सब जानते ही हैं हमराही प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। बस आप सबको मोटिवेट करना, आप सबको एजुकेट करना, और किसी भी कहानी से अगर किसी के भी जीवन में जरा सा भी परिवर्तन आ सके, कोई कुछ भी सीख सके, तो फिर इस कार्यक्रम की सफलता उसी बात पर निर्भर करती है। खैर, अब परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपको मजा जरूर आएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग। तो काफी सारी बातें हो गई, अब शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। लेकिन आप क्या करें, रेडियो मधुबन दे रहो, मुस्कुराते रहो। हमराही प्रोग्राम का आज का एपिसोड सुनिए जरा। आज के हमारे मेहमानों से अब मिलवा देते हैं आपको। आज जैसा कि मैंने बताया, हमारे साथ दो परिवार हैं, तो आप चारों का स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ देवानंद पांडे जी का, हिना जी का।
2: थैंक यू सर।
3: और रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा और हिना का नमस्कार और संदीप सर का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हिना जी और देवानंद जी को आपने सुना, और अब एक दूसरा परिवार जो है उनको भी सुन लेते हैं, करण जी और तारा जी। तो करण और तारा, आप दोनों का भी स्वागत है इस कार्यक्रम में।
4: थैंक यू सर, रेडियो मधुबन सुनने के लिए।
1: जी, तो श्रोताओं आप समझ गए कि ये चार युवा हमारे बीच में है। आमतौर पर आज के दौर में युवाओं को जॉब के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ रहा है और अपना घर बचाने के लिए तो और ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन आप चारों भाग्यशाली हैं कि समय पर आप चारों का विवाह हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं देवानंद जी से ही। देवानंद, अपने बारे में जरा बताएं, किस प्रकार आप दृष्टिबाधित हुए ये भी बताएं, और वर्तमान में क्या कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे सुनने वालों को जरा परिचय दें अपना।
3: मेरा नाम देवानंद है और मैं जो है वर्तमान में रेलवे में सहायक लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ, मंडल कार्यालय फिरोजपुर में। और मैं हरियाणा से हूँ, बट मेरे माता पिता जो हैं वो मूल रूप से यूपी से हैं, अयोध्या से सर। और मैंने स्टडी की जहाँ तक बात है, मैंने प्लस टू मैंने जो है वो मतलब टेंथ मैंने पानीपत जीआईवी से की है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, और प्लस टू मैंने सीबीएसई बोर्ड से की है, और ग्रेजुएशन मेरी जो है सर वो अंबाला कैंट एसपी कॉलेज से हुई है।
1: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो रेलवे में कब से कार्यरत हैं आप?
3: सर मैं 2019 में मैंने ज्वाइन किया था, 15 नवंबर 2019 को जनरल असिस्टेंट के पद पर। उसके बाद अभी मेरा प्रमोशन हुआ है रिसेंट में, अभी 2026 में ही, तो अभी मैं सहायक लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ सर।
1: अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में जरा बताएं।
3: मैं सर दृष्टिबाधित जन्म से ही हूँ, मतलब मैं जन्म से ही दृष्टिबाधित हूँ, बाय बर्थ मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये चीज है सर।
1: जब बचपन में घर वालों को पता चला तो कहीं इलाज वगैरह की कोशिशें हुई?
3: बहुत कोशिश की सर, पहले तो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोशिश की उन्होंने, फिर उस समय मतलब मुझे लेकर मेरी माता जी उत्तर प्रदेश में रहती थी और पापा मतलब मेरे पिताजी जो थे हरियाणा आ चुके थे। तो जब पिताजी उस समय हरियाणा में थे, जब उनको पता चला तो पिताजी फिर आए वहाँ पे और इलाज सर में शुरू करवाया उन्होंने। तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोशिश हुई, फिर स्टेट लेवल पे मतलब लखनऊ सीतापुर वहाँ पे उन्होंने दिखाया। उसके बाद फिर जब नहीं हुआ तो एम्स का नाम आप सब भी जानते होंगे, मतलब इंडिया में जो है फेमस है एम्स दिल्ली में। तो वहाँ सर तकरीबन 3 साल मेरा इलाज चला सर, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने जो है मना कर दिया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का नाम आप सबने सुना होगा और सर आपने भी सुना होगा। तो मतलब उनसे मिले थे मेरे पिताजी इलाहाबाद में, तो उनसे मिले थे, मतलब वो किसी रिसर्च के उस पे आए हुए थे, तो उनसे मिले थे। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो पिताजी ने बताया कि ऐसे ऐसे है इनका, तो इनका जो है अंदर से नसें सूख चुकी है इनकी मतलब। तो उन्होंने बोला कि आप जो है काफी सारे ब्लाइंड के एनजीओज हैं, स्कूल चल रहे हैं काफी सारे, गवर्नमेंट के ब्लाइंड मतलब गवर्नमेंटेड स्कूल चल रहे हैं ब्लाइंड के, तो उनमें आप इनको दाखिला दिलाइए और पढ़ाइए लिखाइए, ऐसी बात नहीं है, ये लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं और ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब इलाज तो देखिए इनका हो नहीं सकता फिलहाल, तो इसमें मतलब यहाँ आगे कोई इलाज आ जाए तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल जो है वो इलाज हो नहीं सकता इनका अभी। तो मेरे पिताजी ने उसके बाद जो है सर चालू किया स्कूल ढूंढना कि भाई ब्लाइंड स्कूल कहाँ पे है। तो मेरे चाचा जी थे सर, वो फिलहाल वडोदरा रहते हैं, उस समय राजस्थान के आऊ रोड की तहसील है सरूपगंज करके, तो वहां पे रहते थे वहां से मतलब। और गुजरात में एक पालनपुर है, पालनपुर में ब्लाइंड स्कूल था पहले। तो मेरे चाचा जी जो थे मतलब, तो उन्होंने मतलब अपने रिसोर्सेज अपने वो मतलब वो लगाए सोर्सेज, उनके जो भी रिसोर्सेज जहां तक थे, तो उन्होंने बताया मतलब कि ऐसे ऐसे पालनपुर में ब्लाइंड स्कूल है, तो आप इनको यहाँ पे एडमिशन दिलाइए। तो स्टार्टिंग में सर मतलब होता ही है कि भाई बच्चा जब ब्लाइंड स्कूल माँ बाप ने ना देखा हो, ब्लाइंडो को ना देखा हो, मुझे ही देखा है, तो भाई कैसे पढ़ेगा, कैसे वहां रहेगा। तो
1: जनरली जो सवाल सबके परिवारों में आते हैं आमतौर पर।
3: जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल संदीप सर, कैसे रहेगा। तो मतलब मेरे चाचा जी ने बताया, मतलब मैं सर सही बताऊं तो अगर वो चाचा जी अगर ना मोटिवेट करते पिताजी, क्योंकि सर मैं तो बहुत छोटा था, 5-6 साल का था सर उस वक्त, तो मेरे पिताजी मेरी माता जी को अगर चाचा जी ना मोटिवेट करते सर, तो मतलब वो शायद मुझे छोड़ नहीं पाते। और सर काफी मुझे भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई जब उन्होंने मुझे छोड़ा, और पिताजी और माताजी का सर बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन चाचा जी ने बोला कि देखो आप लोगों को छोड़ना तो पड़ेगा, अगर पढ़ाना है, पढ़ाना लिखाना इनको है, सही शिक्षा देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है, अगर चाहते हैं कि आज आप हैं कल आप ना रहें, तो आपको अगर अच्छी शिक्षा देनी है, सही शिक्षा इनको देनी है, मतलब चाहते हैं आप इनको सही शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, कुछ बने कल को, ये किसी पर निर्भर ना रहें, तो आपको जो है अपने दिल को जो है अपने मन को जो है पक्का करके और इनको छोड़ना पड़ेगा, तभी ये कामयाब हो पाएंगे, वरना इनका भी मन आप में लगा रहेगा और आप लोगों का तो फिर लगा ही रहेगा।
1: सही है
3: जी सर। तो उस समय सर गुजराती लोग बोलते थे, मैं बताऊं सर, क्योंकि मैं सर हिंदी भाषी राज्य से बताया सर, और मैं हरियाणा राज्य और ये अपना यूपी दोनों हिंदी भाषी राज्य है सर। तो एकदम से सर दूसरे स्टेट में जाना एक 6 साल के बच्चे के लिए सर, और वहां पे सर गुजराती लड़के थे सारे, मतलब लड़के लड़कियां सब सर। अब वो सर गुजराती बोले, मुझे तो सर ये था छोटे बच्चे को भाई जब मैं हिंदी बोलता हूँ सारे हिंदी बोलते होंगे पूरे मतलब इंडिया में, है ना, तो मुझे पता चला गुजरात जा रहा हूँ, तो बोले गुजरात है ये, तो बोले हाँ गुजरात जा रहे हो। तो अब मुझे सर जब मैं भाषा उनकी सुनता था वहां पे, तो मुझे सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, मैं सर इतना रोता था मैं क्या बोल रहे हैं बच्चे क्या बोल रहे। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट टाइम तो मुझे प्रॉब्लम हुई 4-5 दिन, उसके बाद गणेश चतुर्थी की भी वहां छुट्टियां पड़ती है सर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तो उन छुट्टियों में सर आया। उसके बाद जब मैं दिवाली की छुट्टियों में घर गया ना सर, तो मैं सर देखिए 100% तो कोई भी सर मतलब वो नहीं होता, लेकिन मतलब 75-80% गुजराती में सीख गया था सर वहाँ।
1: बहुत बढ़िया, मोदी जी खुश हो जाएंगे सुन के।
3: जी बिल्कुल सर, बिल्कुल उनका तो भाई गुजरात से नाता ही है सर। तो जी जी जी सर जी, तो ये सर मेरा मतलब वो रहा स्टार्टिंग का। हाँ जी सर, उसके बाद सर थोड़ा सा मतलब यहाँ पे है कि गुजरात से मैं क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में श्रोताओं को बताया कि भाई मैं जीआईबी पानीपत से मेरी मतलब 10th हुई है, तो वो लोग सोचेंगे गुजरात में कैसे चला गया। तो वहां सर क्या था कि मेरे चाचा जी का जो है वहां से मतलब शिफ्ट कर गए मेरे चाचा जी अहमदाबाद सर, गए अहमदाबाद, थोड़ा दूर था सर, तो मेरे चाचा जी ने बोला, और मेरे भैया भी रहते थे मतलब मेरे ताऊ जी के लड़के, तो वो मुंबई चले गए, तो ये लोग शिफ्ट कर गए वहां से। तो ये बोले कि भाई अब हम इनको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सर देखिए दिल्ली से गुजरात आना पिताजी, मतलब इधर हरियाणा से गुजरात आना पिताजी माताजी के लिए तो मुश्किल हो पाता था सर। तो वही लोग मुझे देखते थे, मतलब हफ्ते 10 दिन में वही मेरे से मिलने आते थे। तो उस समय सर ये हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि भाई, मतलब उन्होंने पिताजी माताजी को बोला कि हम लोग तो शिफ्ट कर गए, हम इनको देखेंगे कैसे आप लोग। तो पिताजी ने पानीपत में भी उस समय कोई, मतलब पानीपत में ही रहते सर हम, और सहयोग से पानीपत में ही एक ब्लाइंड स्कूल हमें पता चला, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल सर। उस समय 10th तक था, आज तो वो अपग्रेड हो चुका है, प्लस 2 तक हो चुका है। तो पिताजी ने बोला कोई बात नहीं, हम इनको यहीं ले आते हैं, अगर ऐसी बात है भाई ठीक है, ब्लाइंडो में रहना तो सीख ही गए हैं ये, अब इनको यहाँ ले आते हैं, यहाँ से हम इनकी देखभाल भी कर पाएंगे, और सैटरडे संडे ये अपना घर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। तो मैं मतलब उसके बाद में दिया अभी पानीपत में मेरा एडमिशन इन्होंने 2004 में मेरे पिताजी ने करवाया।
1: बहुत अच्छी बात है। चलिए तो
3: जी
1: भी अच्छी यात्रा रही आपकी। अब हिना जी, सवाल तो आप समझ ही गए हैं, जरा हमारे सुनने वालों को इंतजार है कि अब आप भी जरा बताएं अपने बारे में।
2: जैसा कि हम तो आपने बता ही दिया, मेरा नाम हीना है और अभी मैं SBI में एज अ क्लरिकल की पोस्ट पे जॉब कर रही हूँ, एसोसिएट। और सर, अगर स्टडी की बात करें तो सही बताऊं तो जब फैमिली को पता चला था, बचपन से ही सर मैं बाय बर्थ ही ब्लाइंड हूँ, तो जब फैमिली को पता चला था, क्योंकि शुरू में क्या था सर कि मेरी आईज ना, अभी रिसेंट रिसेंट कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि मेरी आईज प्रॉपर क्लोज हो गई है। पहले मेरी आईज देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो मतलब कुछ टाइम तक तो ये डिटेक्ट करने में ही उनको वो हो गया था कि मतलब ऐसा ही प्रॉब्लम है मुझे। मतलब उन्हें ये लगता था कि आइज तो है, फिर देख क्यों नहीं रही है जैसे मतलब बच्चे देखते हैं। तो फिर सर वहाँ डॉक्टर के ले गए, मतलब मैं हरियाणा रोहतक से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ डॉक्टर के ले गए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो फिर पापा को लगा कि अच्छा ऐसा है, तो फिर मतलब पापा ने मेरे को मतलब दिखाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे सर एम्स तक पहुंचाया मुझे भी। फिर वहां सर मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे, तो लेकिन वही ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने ये कह दिया था कि मतलब आईज नहीं ठीक हो सकती, तो आप इनको पढ़ाइए लिखाइए। बट मेरे साथ सर एक चीज हमेशा अच्छी रही, कहते हैं ना कि फैमिलीज ये सोचती है कि ब्लाइंड है क्या करेगा कैसे करेगा, लेकिन मैं अपने पापा को ना हमेशा थैंक्स करती हूँ। आज वो नहीं है, अभी मतलब थोड़े टाइम पहले ही उनकी डेथ हुई है, अभी वो नहीं है जनवरी में, लेकिन मैं सच बताऊँ सर मैं अपने पापा को हमेशा थैंक्स करती हूँ। वो शुरू से कहते थे कि ये बेटी नहीं है, बेटा है मेरा, और मुझे भरोसा है कि ये कुछ ना कुछ करेगी, चाहे मेरे और बच्चे करें या ना करें। और सर जब मैं छोटी थी ना, तो मतलब मुझे छोटे में ही, पहले मेरे सिस्टर वगैरह स्कूल जाते थे ना, तो पापा उनके साथ भेजते थे मुझे। मतलब कभी भी कोई मुझे कहता था ना कि ब्लाइंड है आप इनको क्यों कर रहे हैं, मेरे पापा कहते थे आप क्या जानते हो, ये तो बेटा है मेरा, जो ये करेगी ना आप कल के टाइम में ये कहोगे कि काश ऐसा बच्चा हमारा भी हो। तो सर सच बताऊं तो आज अपने घर में सबसे ज्यादा एजुकेटेड मैं हूँ, और गवर्नमेंट जॉब में भी मैं ही पहली मतलब वो हूँ जो गवर्नमेंट जॉब में हूँ मेरी फैमिली से। तो फिर इसी तरह सर मेरा पहले एडमिशन हुआ था रघुवीर नगर में, एक स्कूल था ब्लाइंड स्कूल, वहां पे 1 साल तक मैं वहां रही थी सर। वहां ज्यादा पढ़ाई से ज्यादा ना उस टाइम पे सर, अब मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे वहाँ म्यूजिक और चेयर वगैरह बनाना ज्यादा सिखाते थे। कोई भी गलती हो जाती थी ना सर, वहाँ पे खाना बंद कर देते थे बच्चों का ना।
1: ओहो
2: हाँ जी, तो क्या हुआ था सर, जब मेरी फैमिली मुझसे मिलने आई थी ना, तो मेरी काफी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि उन्हें 2-3 दिन ना मेरा खाना बंद कर दिया था वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ था कि पापा मुझे वहां से ले आए थे, उन्होंने बोला कि नहीं अब नहीं छोड़ूंगा मैं ऐसे कहीं पे भी। बट फिर सर एक मतलब मास्टर जी कहते थे, मुझे भी उनका नाम नहीं पता क्योंकि मैं बहुत छोटी थी सर उस टाइम पे, तो उन्होंने बताया था नैब आरकेपुरम के बारे में। तो 2005 में मेरे को वहां लेके गई थी मेरी फैमिली, देन सर मेरा वहाँ एडमिशन कराया था। वहां तो वहां से सर मेरी 12th हुई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर्स कम्प्लीट।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब नैब में आने के बाद जो है वो थोड़ा ठीक मामला चला आपका है।
2: जी सर, मेरा नैब में आने के बाद ठीक मामला चला। और सर मैंने मतलब जब मेरा नैब में एडमिशन हुआ था, नैब के बाद सर जब मेरे को कॉलेज एडमिशन लेना था अपना, तो जैसा कि मैंने बताया कि सर मेरी फैमिली में कोई एजुकेटेड नहीं है, मैं पहली ऐसी पर्सन हूँ जो अपनी फैमिली में यहाँ तक पहुंची हूँ। तो अब प्रॉब्लम ये थी सर कि जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, तो फिर ये था कि अब कॉलेज का कैसे शुरू करना है, क्या करना है सर, क्योंकि आप शुरू में सर कई बार नहीं नॉलेज हो पाती है चीजों की, तो मैंने नैब हॉस्टकास्ट में 3 महीने का कोर्स सर ज्वाइन किया था, वहाँ के थ्रू सर मैंने एडमिशन लिया था आगे कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी दौलतराम कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और आईपी कॉलेज से मेरा मास्टर्स हुआ है सर।
1: चलिए, आप दोनों में एक समानता ये है कि आप दोनों ही हरियाणा से
2: हैं। ये
1: तो अभी आप किस बैंक में बताया आपने, SBI?
2: हाँ जी सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
1: तो जॉब ठीक चल रही है
2: सर? बढ़िया।
1: जॉब में कहाँ पोस्टेड है आप?
2: सर मैं ग्वालियर में।
1: ग्वालियर और देवानंद है फिरोजपुर में?
2: हाँ जी सर।
1: वाह, चलिए तो अब एक जोड़ी से तो परिचय हो गया श्रोताओं आपका। अब भाई करण और तारा जी भी सोच रहे होंगे कि हमारा नंबर कब आएगा, तो पहले हम करण से बात कर लेते हैं। जी करण, बताएं जरा अपने बारे में।
4: जी सर, मेरा नाम करण है, मैं हरियाणा कैथल का रहने वाला हूँ और फिलहाल सर रिसेंटली में जो लखनऊ में कर रहा हूँ। सर मैं दृष्टि बाधित मतलब ब्लाइंड हूँ, थोड़ा दिक्कत आती है हरियाणा बीच बीच में आ जाती
1: है। बात आप भी बचपन से हैं करण?
4: हाँ जी सर, मैं बचपन से हूँ। और सर मैंने मतलब जैसे जन्म हुआ था मेरा सर, दोपहर को 4 बजे मेरा जन्म हुआ था, 5 अप्रैल को। तो उसी टाइम एक कैथल में एक डॉक्टर शुद्ध थे सर, कोई डॉक्टर शुद्ध बहुत फेमस थे आंखों वाले। तो जन्म होते मेरे को वहां लेके गए थे मेरे पापा, तो फिर उन्होंने कहा सर कि यहाँ कुछ नहीं होगा तो इसको एम्स में ले जाओ, मतलब दिल्ली ऑल इंडिया हॉस्पिटल बोलते हैं सर उसको। तो फिर वहां सर मेरे को 15 दिन रखा उन्होंने। 15 दिन के बाद सर उन्होंने मुझे भेज दिया कि इसको आप 5 साल बाद लेके आना। और सर मैं मतलब मैंने अभी फिलहाल रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, तो 2023 में ज्वाइन किया था सर 6-12 जून को।
1: अच्छा,
4: हाँ जी,
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करण जी। और अब करण जी के बाद हम परिचय करते हैं तारा जी से। जी तारा, बताइए तारा जी।
5: मेरा नाम तारा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ।
1: अच्छा, आप प्रॉपर्टी से हैं?
5: हाँ जी। नहीं वैसे तो झारखंड में जन्म हुआ लेकिन पली बड़ी दिल्ली की हूँ।
1: अच्छा अच्छा, आपका जन्म झारखंड में हुआ, मम्मी पापा झारखंड में हैं?
5: हाँ जी।
1: बहुत बढ़िया, और आपने पढ़ाई अपनी पूरी दिल्ली में की है ना?
5: हाँ जी, ICB गुड़गांव से मैंने 8वीं करी है और 9 तक पढ़ी थी गुड़गांव में, लेकिन घर वाले कह रहे थे कि आंखों का ऑपरेशन करा लेते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आंखों का ऑपरेशन कराएंगे ठीक हो जाएगी करके, सारे डॉक्टर यही बोलते हैं कि ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर कई बोलने लगे कि नहीं जितना दिखता है उतना ही काफी है, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। तो इसी कारण से 1-2 साल पढ़ाई का रुक गया था, तो मैं 9th फिर CBSE 10th की, फिर 12वीं तो सर अभी तो नहीं की है, बस अभी कर रही हूँ।
1: बहुत बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। और आप भी ब्लाइंड हैं या कुछ दिखाई देता है आपको?
5: सर पार्शियली ब्लाइंड हूँ।
1: आप लो विजन हैं?
5: हाँ जी।
1: चलिए बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो श्रोताओं अब आपको परिचय तो ठीक से मिल ही गया, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम भी आपको पसंद आ रहा होगा। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही, रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आज हमारे हमराही कार्यक्रम में 4 मेहमान हैं। एक हैं देवानंद जी जो कि पानीपत के रहने वाले हैं और फिरोजपुर पंजाब में जॉब करते हैं रेलवे में। उनकी श्रीमती हैं हिना जो कि रोहतक की रहने वाली हैं और SBI बैंक में हैं ग्वालियर में। ये दोनों दृष्टिबाधित हैं। और फिर हैं करण जी जो कि लखनऊ में पोस्टेड हैं रेलवे में ही और कैथल के रहने वाले हैं, और तारा जी उनकी श्रीमती जो कि लो विजन है और जिनका अभी जॉब नहीं है, जो कि मूल रूप से झारखंड की रहने वाली हैं और दिल्ली में उनकी एजुकेशन हुई सारी। तो तारा जी दिल भी दिल्ली में ही लगा क्या?
5: हाँ जी,
1: मतलब करण जी से मिलना भी दिल्ली में ही हुआ?
5: हाँ जी सर, दिल्ली में ही हुआ।
1: कैसे मिलना हुआ करण से?
5: सर वही हुआ था कि मैं फरीदाबाद में ट्रेनिंग कर रही थी होम साइंस के लिए, तो फिर वहाँ पे किसी इनकी जो जान पहचान के हैं ये दोस्त वहाँ पे रहती थी, वो भी हमारे साथ ट्रेनिंग करती थी, तो ये जो भैया है मेरे यहाँ उनके साथ आए थे, तो वहीं पे मेरे को मिले थे,
1: फिर
5: हमारी चालू हुई थी।
1: फिर पसंद आने में कितनी देर लगी?
5: सर पसंद आने में तो थोड़ा टाइम तो लगा।
1: तो ये मिलने से पसंद करने तक की जो यात्रा है वो कैसे हुई? मतलब इसमें भैया ने बताया होगा कि इनको शादी करनी है, आपको भी बताया होगा, फिर आप लोगों की बातचीत शुरू हुई होगी, तो वो थोड़ा बताइए कैसे कैसे हुआ वो सब।
5: वो सर ऐसे हुई थी जैसे 26 दिसंबर को प्रोग्राम था, ये लोग आए हुए थे, तो वहीं से चालू हुई थी हमारी बातें चीतें। तो किसी ने कहा था कि इनके लिए की लड़की देखे हैं तेरे लिए, ऐसे करके बातचीत बढ़ाई थी। फिर भैया ने इनका नंबर पहले तो कहा कि तू शादी करना चाहता है, इन्होंने कहा हाँ, तो मेरे से पूछा तू करना चाहती है, मैंने भी कह दिया हाँ। तो फिर पहले तो हमारे परिवार वालों से इन्होंने बात किया कि क्या कुछ है, तो परिवार वाले ने राय दे दी कि हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। पहले तो इनके बारे में पूछा, कुछ खाता पीता तो नहीं है, कैसे घर से है, तो मेरी बेटी को दिक्कत तो नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करने लगे। तो घर वालों को कोई एतराज नहीं हुआ, फिर ऐसे चलो ठीक है, दोनों ने दोनों को नंबर दे दिया। फिर ऐसी बातचीत धीरे धीरे सर चलती रही, 3-4 महीने तक ऐसी सिंपल बातचीत चलती रही।
1: सबसे अच्छी बात कौन सी लगी तारा?
5: सर मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि मतलब कि कई होते हैं ना पेरेंट्स की मतलब लड़की की गलती हो, मतलब कि परिवार परिवार वाले कुछ कह देते हैं और फिर सर मतलब अपने परिवार की गलती नहीं,
1: आराम से बताओ, कोई चिंता वाली बात नहीं है,
5: मतलब कि अपने परिवार वाले की गलती ना मान के लड़की की गलती निकाल देते हैं, ऐसे होता है कई लड़के। तो
1: इन्होंने आपका हर कदम पे मतलब पक्ष लिया, एक तरह से साथ दिया आपका।
5: हाँ जी, तो सही पे सही, गलत पे गलत, इसलिए मुझे इनकी आदत अच्छी लगी। मतलब कल को अगर कुछ बात घर पे हुई तो ऐसा नहीं होएगा, इसलिए। हाँ जी,
1: तो जब करण जी का रिश्ता आया आपके सामने, तब आपने अपनी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था या नहीं, अभी आपको अचानक से ही मतलब सब कुछ हो गया?
5: नहीं सर, मैं शादी के बारे में तो नहीं सोची थी, लेकिन घर में कुछ बातें हो चुकी थी तो थोड़ा सोचना पड़ गया था। नहीं तो शादी करने का अभी तो मन नहीं था सर मेरा।
1: आप लो विजन है?
5: हाँ जी।
1: और करण जी टोटली ब्लाइंड है?
5: हाँ जी।
1: तो आपको कोई परेशानी हुई इस बात से? आपके लिए ये मतलब कोई मतलब नहीं था इस बात का?
5: नहीं सर, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी।
1: कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा।
5: हाँ जी।
1: तो होम साइंस में क्या क्या सीखा आपने फरीदाबाद में तारा जी?
5: सर जैसे खाना बनाना सीखा, थोड़ा सिलाई सीखी और सर यही सब सीखा थोड़ा थोड़ा।
1: खाना बनाना पूरा आता है आपको एकदम अच्छे से?
5: हाँ जी सर आता है।
1: क्या बात है, कितने साल हो गए आपकी शादी को तारा जी?
5: सर अभी तो 1.5 साल हुए।
1: कितने? 1.5 साल?
5: हाँ जी।
1: अच्छा,
5: दिसंबर 11 तारीख को 2 साल हो जाएंगे।
1: अच्छा, दिसंबर को 2 साल।
6: मतलब सुनने वालों को एक आपको अच्छी वाली थोड़ी बात बताना चाहता हूँ सर।
1: लाइए लाइए, बिल्कुल करण जी, हम तो खुद ही हंसने के लिए इंतजार कर रहे हैं, बताइए, हंसाइए।
4: क्या कि सर 26 दिसंबर को मतलब पांडे के साथ में, पांडे जी हैं ये, मतलब मेरे साथ मेरे बचपन के दोस्त हैं, जो हमारी शादी हुई है, तो ये पांडे जी की बदौलत है सर।
1: अच्छा, इसमें पांडे जी का भी रोल है?
4: जी जी जी जी,
3: भैया मुझे ही बोल रही
4: है। ओ भैया, इनको ही बोल रही है सर।
1: अच्छा अच्छा, जो भैया है वो यही है?
4: हाँ जी। और सर दूसरी बात सर, देखो मम्मी एक्सपायर हो गई थी मेरी 2022 में 21 अप्रैल को
1: जी।
4: तो पांडे जी का जॉब दिलवाने में भी सर मेरा बहुत, पांडे जी का और हिना भाभी का बहुत रोल है, मतलब जॉब के लिए भी सर।
3: मतलब ये कहना चाह रहे थे कि मोटिवेट करने में जॉब के लिए काफी मतलब रोल है, तो सर ठीक है, तो भाई एक इंसान इंसान के काम आता है सर, और हम ब्लाइंड दोनों तो सर मतलब तो ऐसी कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा ही कह दिया मेरे बारे में।
1: बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, अभी और कहलवाएंगे आप, कहने दो करण को जी। करण,
4: तो सर 2022 में 26 दिसंबर को फरीदाबाद गए थे, तो सर वहाँ पे साबूदाना की खिचड़ी बनवाई थी पांडे जी ने, कह के मतलब वहाँ पे कोई जानने वाला था इनका।
1: अच्छा।
4: तो वहाँ पे खा रहे थे सर।
1: अच्छा।
4: तो वहाँ पे 2-4 आंटियां थी और ये भी थी सर मतलब तारा। तो मैंने सोचा सर कोई आंटी खिचड़ी डाल रही है, तो मैंने बोला बस बस आंटी जी और नहीं डालिएगा। तो फिर मेरे को बोलते रहे ये तारा तारा है, आंटी नहीं है, मेरे सॉरी
1: आंटी जी नहीं है ये। क्या बात है, वाह बहुत गुरु।
4: तो फिर
1: आपको लगा होगा कि अरे यार ये तो गलत गड़बड़ हो गया मतलब है।
4: हाँ, मैंने बोला सर ये तो मामला गड़बड़ हो गया।
1: तब तक बातचीत हो चुकी थी इस बारे में कि भाई ऐसे ऐसे एक लड़की है?
4: नहीं तो सर, मुझे क्या पता था, जिसको मैंने आंटी कहा वही मेरी बीवी बनेगी कल को।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसको सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
4: मतलब 27 मार्च को हम मिले थे दिन सोमवार, और 2023 में, और सर फिर 30 मार्च से और 7 अप्रैल तक सर फिर हम घूमने गए थे, जैसे कि पांडे भी था उसमें, और मतलब कई लोग थे सर उसमें, हम घूमने गए थे, पांडे भी था जी,
3: वो नांदेड़ गए हुए थे,
4: वो नांदेड़ टूर गए थे सर।
3: हजूर साहिब नांदेड़, महाराष्ट्र में, आपने सुना होगा शायद, आप गए भी हो?
1: नहीं गए नहीं अभी जी।
4: मतलब सर पांडे जी ने मेरे को बचपन से ही रखा है सर, मतलब इतना गहरा रिश्ता है सर मेरा इनका।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखिए प्रोग्राम में भी आपको साथ रखा है, वहाँ भी अलग नहीं है आप?
4: हाँ सर, वहाँ भी अलग नहीं है।
1: ये कभी कभी जिंदगी में, हमने कहा ना शुरू में करण भाई, इत्तफाक बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा ध्यान चला जाता है, कभी नहीं जाता है।
4: हाँ जी ये बात है।
1: आपकी शादी में भी इनका रोल था,
4: जॉब से लेके शादी तक, और अभी तक भी रोल चल ही रहा है सर इनका।
1: ये प्रोग्राम जब होना था तो ईश्वर ने ऐसा खेल रचाया कि प्रोग्राम भी आप चारों का साथ हो रहा है।
4: जी जी जी जी।
1: और मुझे थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन महज ये दूसरा या तीसरा ही प्रोग्राम है जहां एक साथ हम दो परिवारों से बात कर रहे हैं।
4: जी जी,
1: तो ये भी एक इत्तफाक ही है।
4: हमें भी सर अच्छा लग रहा है, आप मतलब आपने हमें इस लाइक समझा, मतलब बहुत, मतलब ये कि सर इंटरेस्ट आ रहा है प्रोग्राम में।
1: तो करण भाई, ये जो जिनको आपने आंटी समझा था,
4: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: तो पत्नी के रूप में लेकर के आए आप?
4: जी जी जी जी।
1: अब मतलब खुश हैं एकदम आप? बढ़िया से चल रहा है सब कुछ?
4: हाँ बिल्कुल सर, मतलब बढ़िया जिंदगी चल रही है सर, अच्छी
1: अच्छी चल रही है।
4: जी जी जी।
1: तो करण, कभी गुस्सा वुस्सा करते हो तारा पे कि नहीं?
4: हाँ सर गुस्सा आता है सर, बाकी सर ये तो तारा ही बता सकते कि कितना गुस्सा आता है।
1: तारा को तो फिर तारा बताएंगी नहीं लग रहा है मुझे।
4: बता देंगी सर।
1: अच्छा बता देंगी, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन खैर वैसे एक बात है, जहाँ जिंदगी दो लोग एक साथ बिताते हैं ना,
4: वहाँ
1: एक ही चीज मतलब होती है तो भी गड़बड़ हो जाता है, और मतलब एक चीज की कमी होती है तो भी गड़बड़ हो जाती है। तो ये प्यार और तकरार और गुस्सा और अपनापन और ये सब साथ साथ चलते रहना चाहिए, नहीं? समझना जरूरी है एक दूसरे को।
4: मेरे गुस्से को सर पांडे शांत कर सकते हैं।
1: अच्छा ऐसा, क्या बात है। अभी जी
4: कन्विंस कर लेते हैं सर मेरे को,
1: ये कर लेते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप दोनों का जीवन ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बीते, और आप दोनों की कहानी जो है बड़ी अच्छी लगी हमको सुनने में, बड़ी मासूम सी कहानी है आप दोनों की, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। श्रोताओं, हमराही प्रोग्राम में अभी आपने एक जोड़ी को थोड़ा सुना, उनके मिलने मिलाने की कहानी, जिसमें देवानंद जो आज दूसरे मेहमान है हमारे हिना जी के साथ में, उनका भी काफी हद तक योगदान रहा। तो देवानंद भाई
3: जी, सर
1: अब आपसे जरा पूछ लेते हैं, आप काफी घूम चुके, गुजरात और फिर हरियाणा फिर पंजाब।
3: जी सर, जी जी जी जी जी जी, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक भी सर।
1: फिर जो है अब घूमने फिरने का दौर चलता ही रहता है आपका, तो रेलवे में भी वही, आप तो रेलवे का तो काम ही यही है।
3: सर सर सर जी जी जी जी जी सर जी।
1: तो थोड़ा बताओ जरा, ये हीना जी बैंक वाले कैसे चक्कर में आ गए रेलवे वालों के?
3: सर एक्चुअल में क्या था कि मेरी इनकी बात जो हुई थी, हमारे किसी को कोई दोस्त थी, मतलब इनको भी जानती थी और मुझे भी जानती थी सर। तो एक्चुअली में सर उस समय थोड़ा सा इश्यूज चल रहे थे गाइडलाइंस के, राइटर गाइडलाइंस के, आपको पता इश्यूज चलते रहते हैं। तो एक्चुअली सर 2022 में भी थोड़ा सा इश्यूज चला था गाइडलाइंस का, हालांकि गाइडलाइंस तो वही थी, लेकिन
1: 19 वाली मानी जाए नई आए ऐसा कुछ था, है ना?
3: हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर, वही वही वही। तो उस समय पे सर क्या था कि इनका एग्जाम था कोई, तो उस रिलेटेड बात करवाई थी उन्होंने मेरी और इनकी, क्योंकि उन्होंने कहा था भाई इनको ज्यादा पता है थोड़ा सा, मतलब ये इन चीजों को फॉलो करते रहते हैं,
1: इनसे बात करते रहते हैं।
3: सर को तो आप इनसे बात कर लीजिए। तब सर मेरी इनकी बात हुई थी, और उसके बाद भाई परिचय भी हो गया कि भाई आप क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं रेलवे में हूँ, आप तो बोले मैं भाई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी फिलहाल, तो मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और पोस्ट ग्रेजुएशन चल चुका है, कर रही हूँ मतलब मैं अभी एम ए फाइनल ईयर में थी उस टाइम ये, तो सारी चीजें हुई सर। तो एक्चुअली क्या था सर कि इन्होंने मतलब ट्रेन वगैरह में ट्रेवल तो किया था उस वक्त पे, पर सर मतलब जैसे लोकल ट्रेन में ट्रेवल किया था सर, तो जैसे इनका थोड़ा कहीं आना जाना होता था, तो मतलब ये मेरे से पूछती थी रिजर्वेशन किस तरह होगी, किस में कौन से मतलब क्लास में कितना कंसेशन मिलता है, मतलब रेलवे में ऐसा करके कि स्लीपर में कितना कंसेशन है, एसी में कितना कंसेशन है ना, सारी चीजें। और तो उसके बाद सर धीरे धीरे बातचीत होती गई सर, और सहयोग ऐसे हुए कि एक दो जगह हमारा आना जाना भी हुआ, जैसे नांदेड़ का भी करण जी ने जिक्र किया, नांदेड़ का जैसे करण जी ने जिक्र किया सर, तो वहां भी ये जाती थी मतलब जाती थी सॉरी गई थी हमारे साथ, ये भी हमारा ग्रुप गया था पूरा, तो ये भी गए थे। तो सर उसके बाद और धीरे धीरे सर एक दो जगह और, तो मतलब इस तरह इन्होंने मतलब ये कहते हैं मुझे बहुत डर लगता है ट्रेनों में ब्लाइंड कैसे ट्रेवल करता है, आप ट्रेवल कर सकते हो, तो मतलब
1: आपने कहा होगा ब्लाइंड ट्रैवल ही नहीं करता, ब्लाइंड तो नौकरी भी करता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: मैं आपको सही बताऊं तो एक्चुअली क्या था कि मैंने ट्रेन में जब भी ट्रैवल किया था ना, उससे पहले फैमिली के साथ ही किया था, अकेले नहीं किया था। तो इनको जब मैंने देखा ट्रेन ट्रैवल में सर, मैं तो शॉक्ड हो गई, मतलब इतनी अच्छी मोबिलिटी, मैं तो सर उसी से इम्प्रेस हो गई थी। सच बात तो ये है कि मतलब सर मैं इनकी कैचिंग पावर मोबिलिटी बहुत अच्छी है सर, ट्रेनिंग ट्रेन वगैरह के मामले में, मतलब ये दो दो तीन तीन लोगों को लेके कोच बाय कोच पूरा घुमा लेते हैं अच्छे से बढ़िया से।
1: अभी तो इन्होंने समझ लिया ना, कैच कर लिया इस बात को कि भैया रेलवे की इंक्वायरी ऐसे ही नहीं की जा रही है।
2: तो सर क्या था कि मतलब मैंने इनसे कहा, फिर दो तीन बार जैसे इन्होंने आपको बताया कि हमारा साथ ट्रेवलिंग का हुआ, तो मैं तो बोल मैंने बोला नहीं यार, मतलब मान लो यार वॉशरूम वगैरह जाओगे जाए कहीं जाए, मान लो यार गेट वेट खुले हो तो क्या पता गिर वीर जाएंगे तो क्या करेंगे। तो फिर इन्होंने सर मुझे मतलब बहुत हेल्प किया मेरी, इनफैक्ट जब ज्वाइनिंग वगैरह रही थी बैंक में तभी भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था ग्वालियर आने में जाने में, ज्वाइनिंग वगैरह कराने के लिए बहुत सपोर्ट किया था सर। यार पूरे वक्त में तो सर हमेशा साथ दिया ही है इन्होंने मेरा, उसके लिए तो मैं क्या ही कहूँ। इनफैक्ट हमारी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स भी आई, काफी उतार चढ़ाव भी आए हैं, लेकिन फाइनली कहते हैं ना सर कि एंड अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, अंत भला तो सब भला, आज हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश है, तो ठीक है जो होना होता है वो तो होता ही है, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि जो एंडिंग होती है वो सबसे अच्छी होती है, और सबसे बड़ी बात ये कि आज हम दोनों साथ हैं और खुश हैं।
1: तो ये ना ये बताओ ना कि पहल किसने की भाई, अगला प्रस्ताव डाला कि भाई तुम ही हो मेरे तो जीवन साथी, ये आपने या देव आनंद ने?
2: सर पहल तो इन्होंने ही की थी।
1: ये भी हमको लगी
3: था। सर थोड़ा सा आपसे मिलता जुलता है वही चीज जैसे जो आपने मैम को बोला था वही इन्होंने बोला, जब मैंने पहल की तो इन्होंने यही बोला कि जो बात मैं नहीं कह पाती आपने आज कह दी, और यार मतलब मैं तो बहुत डरती थी पर आपने आखिर कह ही दिया, हिम्मत कर ही ली है, मैं कहा भाई कोई तो करता ही तो मैंने कर दी।
1: विवाह कब हुआ आप दोनों का?
3: सर 21 अप्रैल 2025 को विवाह हुआ हमारा, अभी मतलब 1.5 साल हो जाएंगे 21 अक्टूबर को सर। तो
1: ज्यादा मतलब जो है वो समय आपको भी नहीं हुआ?

0: बुरे समय में मतलब साथ
1: मतलब
0: देना
1: रेलवे
0: सर।
1: की इंक्वायरी तो और भी लोगों ने की होगी ना यार।
0: नहीं नहीं सर, ऐसा कोई रिश्ते वश्ते नहीं है कोई सर मुझे।
1: नहीं, मेरा
0: हाँ
1: मतलब है कि रेलवे की जानकारी तो और लोगों ने भी ली होगी।
0: रेलवे की जानकारी और लोगों ने ली थी, पर इतनी शिद्दत से नहीं ली जितनी शिद्दत इन्होंने ली।
1: हाँ, लेकिन सफर इन्होंने ही किया है, औरों ने केवल
0: जी, एकदम शिद्दत से जानकारी
1: जानकारी
0: ली, शिद्दत से जानकारी ली और एकदम आरामदायक सफर किया, तब जाके सर मतलब इन पे अटक गया दिल।
1: ली। हाँ,
0: सर
1: भारतीय रेल भरोसे का दूसरा नाम है।
0: कहते तो यही है सर बिल्कुल।
1: चलिए, तो भाई हिना जी, भरोसा गहरा हुआ कि भाई कुछ गड़बड़ हो गया मामला?
2: नहीं नहीं सर, भरोसा हुआ तभी तो आज साथ है सर।
1: अच्छा, नहीं कहाँ साथ हो, देखो ये फिरोजपुर, तुम ग्वालियर।
2: वो तो जॉब लोकेशन है ना सर
0: अब
2: उसकी।
0: सर पेट पापी के लिए क्या करना पड़ जाए, क्या क्या करना पड़ जाता आपको भी पता है सर, लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं। हम तो चलिए 700 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है सर, लोग तो विदेश भी हैं और बॉर्डर पे जवान ड्यूटियां कर रहे हैं सर। वो सर मतलब वो तो मतलब ये तो सर है ही, आप भी मानेंगे सर,
1: बहुत
0: ये बात
1: बहुत
0: है।
1: बहुत,
2: हम भी
1: लेकिन
2: वेट कर रहे हैं कि जल्दी
0: और
2: से।
0: हम भी सर कोशिश कर रहे हैं। और सर एक चीज और बताऊंगा सर, एक गुड न्यूज और आ चुकी है एक्चुअली में सर। जब इनकी जॉब लगी ना सर, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद सर हमें ये पता चला सर कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंटर सर्कल ट्रांसफर नहीं देता है, ECT नहीं देता। उस टाइम सर हम बड़े वो हुए, तो मतलब उस टाइम ये हो गया था सर मुझे MP शिफ्ट होना पड़ेगा। और सर मतलब हरियाणा दिल्ली पंजाब उधर के सर मतलब हम तो मतलब MP सर शिफ्ट नहीं होना चाहते थे। तो सर मतलब मैंने फिर उसके बाद सर काफी कोशिश की, मैं चलो कोई बात नहीं MP आएंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर 14 अगस्त को सर अभी 2026 में ही रिसेंट में ही एक सर्कुलर सर SBI ने निकाल दिया है, जिसमें सर अब ये हो चुका है कि इंटर सर्कल ट्रांसफर खुल गया है, लेकिन वो स्पाउस ग्राउंड पे मिलेगा। तो सर स्पाउस ग्राउंड पे तो हमें कंपेनरेट ग्राउंड पे सर मतलब जैसे मेडिकल ग्राउंड पे और स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर हिना मैडम मेरे पास ले सकती
2: सर, मैंने तो इनको कहा था मेरे से शादी करनी है तो मैं MP आना पड़ेगा, देख लो।
0: तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, उसके लिए तो लोग साफ समुद्र पार तक चले जाते हैं, तो क्या हम MP नहीं आ सकते।
1: हाँ, ये 700 किलोमीटर नहीं आ सकते हैं।
0: हाँ वो 7 समुद्र पार लोग, हमें क्या 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता। बिल्कुल
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: ये बड़ी फायदे की बात रहती है हिना जी, आप समझ नहीं रहे हैं। 5 दिन 5 दिन जो है थोड़ा मतलब समझ रहे हैं, फ्री रहते हैं एकदम। 2 दिन तो क्या है, क्या दिक्कत है।
0: जी सर
1: तो फायदे का सौदा है ये। खैर,
0: जी
1: हिना
0: सर
1: जी,
0: जी
1: प्रस्ताव आया देव का, तो मतलब
2: सर
1: क्या ख्याल थे मन में, क्या लगा आपको भाई, कुछ आपके पास और भी प्रस्ताव आ चुके थे या नहीं, कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा था माइंड में?
2: नहीं सर, ऐसा देखो मैरिज के लिए तो नहीं सर, क्योंकि मैरिज एक्चुअली सर मेरा स्टार्टिंग से एक क्लियरिटी थी मेरी लाइफ के साथ मेरे लिए, कि जब तक मेरे खुद की जॉब नहीं लगेगी मैं किसी से भी शादी नहीं करूं।
1: अच्छा, वो तो ठीक है, चलिए ये अच्छी सोच है। लेकिन जब देवानंद जी ने आपको कहा कि भाई हम क्या विवाह कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं?
2: सर एक्चुअली इसलिए इसमें इतना ज्यादा वो नहीं हुआ था, क्योंकि हम अच्छे दोस्त तो सर पहले से थे ही, साथ में थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2023 में मेरी जब जॉब लगी थी तो ज्वाइनिंग वगैरह के टाइम पे भी ये मेरे साथ थे, और भी मतलब उस टाइम पे चीजों के टाइम पे हमेशा सर। देखिए सर, एक चीज होती है ना कि लाइफ में कोई अगर आपके बुरे वक्त में अवेलेबल है आपके लिए, तो आप ये जान सकते हैं, क्योंकि सर अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जो आपके बुरे वक्त में है ना सर, ऐसा लगता है कि उससे अच्छा पार्टनर आपके लिए कोई नहीं हो सकता। क्योंकि सर अच्छे वक्त का क्या है सर, अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन बुरे वक्त में बहुत कम लोग साथ होते हैं।
1: बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो
0: मतलब जो सर इनकी लाइफ के साथ क्लियरिटी थी, इत्तेफाक से मतलब यही हुआ कि 2023 में जॉब लगी और मैंने प्रपोज 2024 में किया इनको सर।
1: तो फिर प्रपोजल जल्दी से एक्सेप्ट हो गया मतलब?
0: हाँ सर 1-2 दिन लगे, बट
1: क्योंकि
0: 1-2 दिन बाद एक्सेप्ट हो गया।
2: सर 24 में भी आपको सही बताऊं तो हमारा ये प्लान नहीं था, जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया था तब भी हम रिलेशन में आए थे, लेकिन तब भी मैरिज का ऐसा कुछ नहीं था। मतलब 2025 आते आते, क्योंकि सर उस टाइम तक फैमिलीज का भी थोड़ा सा था, मेरी फैमिली का तो सर थोड़ा सा ये था कि आप भी ब्लाइंड है, फिर हस्बैंड भी ब्लाइंड आप कह रहे हो, तो थोड़ा सा उनको लगता था कि नहीं ब्लाइंड से शादी नहीं करानी चाहिए करके, हाँ मेरी फैमिली का। बट फिर मैंने उनको एक चीज बोली थी ना कि एक्चुअली क्या है ना सर, मेरी सिस्टर्स वगैरह की सबकी मैरिज हुई मतलब फैमिली की मर्जी से, तो कई

0: कुछ चीजें रही, कई बार हो जाती है ऐसा लाइफ में, बहुत सारी चीजें मतलब काफी उतार चढ़ाव आए सर उनकी लाइफ में। तो मैंने फैमिली से बस एक ही बात रखी थी कि ठीक है आप मेरे लिए ढूंढ भी लेंगे अपनी मर्जी से, पर इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी ही होगी उस इंसान के साथ।
1: तो हिना और देवानंद आप दोनों से मेरा वैसे सवाल है, लेकिन पहले हिना से मैं पूछ रहा हूँ। देखिए आप दोनों जितना अभी तक कार्यक्रम से मुझे समझ में, आप दोनों टोटली ब्लाइंड है ना? आप दोनों जॉब में हैं, आप अलग अलग शहर में, मतलब 700 किलोमीटर की दूरी कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है।
0: बिल्कुल सर,
1: जॉब कर रहे हैं जहाँ दोनों दोनों ही जगहों पर आप लोगों का कोई मतलब ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, है ना?
0: नहीं सर, इनके साथ तो है, मम्मी वगैरह रहते हैं।
1: मदर साथ में रह रही है, लेकिन वो मदर मतलब रह रही हैं साथ में ना, एकदम साथ ही है। ऐसा नहीं कि आसपास में और भी परिवार के लोग रहते हों, है ना? तो आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, शादी की, लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? अक्सर हम लोगों को ये सुनने में मिलता है हिना जी कि मतलब हम दिल्ली छोड़ करके नहीं जाना चाहते। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब दिल्ली की जगह देहरादून भी हो सकता है, हम कहीं और नहीं रह सकते, या हम यहाँ जॉब कर रहे हैं फिर जो है वो यहीं पर ही सब कुछ हो। और ये तो चलो एक बात रही, जॉब का तो मैटर फिर भी एक बार कोई इतना बड़ा नहीं होता। दूसरा ब्लाइंडनेस का इशू रहता है, आप दोनों ब्लाइंड होते हुए भी, दूर दूर जॉब करते हुए भी कैसे अपने रिश्ते को मजबूत बना करके निभा करके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों की पसंद एक कैसे हो पाई, क्योंकि ये अक्सर निर्णय लेने में लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है।
0: सर एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी बात मैं जो मानती हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है कि मैटर ये नहीं करता कितनी दूरी है, मैटर ये करता है कि एक दूसरे पे कितना भरोसा है, आप दूर रहते हुए भी एक दूसरे को कितना वक्त दे सकते हैं।
1: आपको क्या लगता है जो आप घूमना फिरना साथ में करते थे उस चीज ने आप लोगों का भरोसा बनाने में मदद की है?
0: सर जो लाइफ में काफी, मैंने कहा ना कि हमारी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स, काफी उतार चढ़ाव आए थे, और जो बुरे वक्त में एक दूसरे के लिए खड़े होना बिना ये एक्सपेक्टेशंस किए कि कल को हमारी लाइफ में क्या होगा, बिना ये एक्सपेक्टेशंस किए सर कि भविष्य में हम साथ होंगे भी या नहीं, जब
1: ऐसे में ब्लाइंडनेस का इशू जो है वो छोटा पड़ गया, राइट?
0: अगर मैं ठीक पड़ गया सर, बिल्कुल छोटा पड़ गया सर।
1: अच्छा,
0: क्योंकि सर जब सर मेरा ज्वाइनिंग का टाइम था ना, तो मतलब मेरी साथ एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मेरी फैमिली का तो मैंने सर स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी नहीं है, मेरी मदर की तबीयत खराब रहती है सर, और मेरे घर में कोई भी नहीं है जो मेरे साथ आना जाना कर सके या कुछ भी कर सके, और मेरे लिए बहुत लंबा ट्रेवल था सर MP, और पिताजी का होटल का काम था सर उस वक्त तक, तो वो भी नहीं आ सकते थे। तो सर सिर्फ मेरे एक बार ये कहने पे कि ऐसा ऐसा हो गया है और क्या कर सकती हूँ मैं, तो सामने से मुझे ये कहा था कि मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, मैं चलता हूँ। तो मतलब सर इन सब चीजों ने, और फिर जब जब मुझे जरूरत पड़ी मेरे लिए आना, चीजें करना, तो कहीं ना कहीं सर देखिए एफर्ट्स तो वही करता है ना जो आपके लिए, आपके साथ रहना चाहता हो। नहीं तो सर दूसरी चीज उससे बड़ी बात ये थी सर कि उस टाइम तक ये भी नहीं ये जानते थे कि अगर कल को मैं प्रपोज करूंगा तो एक्सेप्टेंस मिल ही जाएगी, और अगर सर ना भी मिलती तो भी उन्होंने तो वो सब किया था ना मेरे लिए जो एक अच्छा दोस्त आपके लिए करता है।
1: तो उस समय जो आपने शादी से पहले जो देवानंद को महसूस किया आपने, क्या शादी के बाद भी देवानंद वैसे ही हैं या अब कुछ परिवर्तन लगा आपको?
0: नहीं सर, हमारा रिश्ता वैसे ही है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ सर कि हस्बैंड वाइफ से पहले हम एक अच्छे दोस्त हैं, और वो बन के रहना बहुत इजी लगता है सर, इसलिए क्योंकि जब सर आप किसी को एक अच्छे दोस्त की छवि के साथ लेके चलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाती सर।
1: देवानंद आपको क्या लगता है, जो ये सवाल मैंने पूछा कि बच्चे बच्चियां आजकल, लड़के लड़कियां जॉब अच्छी खासी होने के बावजूद भी बस ये ब्लाइंडनेस का एक तो इशू आड़े आ जाता है, कई बार ये आड़े आ जाता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा वो यहाँ नहीं आएगी, या वो यहाँ आए तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, मतलब यही सब चलता रहता है।
2: एक सर जैसा कि हीरा जी ने कहा, वो बात है कि इन सब चीजों ने जो उतार चढ़ाव आए उसने हमारा भरोसा और मजबूत कर दिया सर। और दूसरा सर देखिए ये था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, क्योंकि देखिए सर जॉब दोनों की मतलब ठीक है, इनकी उस टाइम पे नॉन ट्रांसफरेबल थी, अब जो कि ट्रांसफरेबल हो चुकी है, लेकिन मेरी ट्रांसफरेबल जॉब थी सर, तो ये था कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल साथ तो हो ही जाएंगे, और सर जब साथ रहना ही है तो भाई ये क्या देखना कि कितनी दूरी है क्या नहीं, क्योंकि सर वो एक कहावत है कि कुछ लोग कहते हैं अक्सर कुछ भी नहीं है जिंदगी, जी के देखो हौसले से, बस यही है जिंदगी। तो सर मतलब ये तो जिंदगी है सर, तो जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है सर, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं सर। इन्होंने भी कहा कि भाई देखो आप, हाँ मतलब जैसे एमपी वाली बात की इन्होंने,
1: ये महसूस करते हैं ना कि लड़के लड़कियां शादी के लिए परेशान तो हैं, जॉब भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बस निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
2: हाँ सर, तो वही इन्होंने मुझसे बोला कि भाई आप एमपी आ सकेंगे अगर ऐसा कुछ, मतलब क्योंकि आपको पता है मेरी जॉब तो भी नॉन ट्रांसफरेबल है, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं एमपी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब सर दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है तो एमपी आने में क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं भाई, मैं रह भी तो यहाँ रहूँ ना, अभी भी तो मैं हरियाणा में नहीं हूँ, मैं हूँ तो पंजाब में ही, तो कोई बात नहीं, मैं एमपी आ जाऊंगा, उससे कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप टेंशन मत लो, अपनी जॉब करो। तो इन्होंने कहा कि मतलब उस समय से बात चली भाई कोई आसपास की लड़की ढूंढ लो देख लो, मैं कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, आप इस चीज की टेंशन मत लो, आप अपनी जॉब पे ध्यान दो, और जो हमारा फैसला है दोनों का, मतलब मेरा फैसला जो है आपके लिए वो अटल है, मैं आपके साथ ही हूँ और आपके साथ ही पूरी जिंदगी मतलब बिताने का मैंने निर्णय लिया है, और मैं जो है चाहे आप एमपी हो, चाहे वक्त आप महाराष्ट्र भी होती तो मैं वहां भी आता, कहीं भी होती इंडिया के मतलब किसी भी कोने में तो मैं वहां भी आता, मुझे कोई अच्छी,
1: हाँ मैं जब गुजरात चला गया पढ़ने,
2: जी जी, और 6 साल की उम्र में सर, मतलब बच्चा था एकदम, छोटा था उस वक्त सर, मतलब नादान बालक था, क्योंकि नादान ही था सर उस वक्त, कुछ भी नहीं पता था। जो सिचुएशन हो, अगर इनकी चलने लायक हो सर इनकी भी चलती है, मेरी चलने लायक हो सर मेरी भी चलती है, ऐसी मतलब कोई वो नहीं है कि भाई बैंक वाले या रेलवे वाले, जो
1: मामला हो पैसों से जुड़ा हुआ मामला तो बैंक वाले संभालते
2: हैं सर, वित्त मंत्रालय तो इन्हीं के पास है सर
1: ना, और जो है घरेलू मामले हो तो वो रेलवे वाले संभाल लेते हैं।
2: सर सर मतलब नहीं सर, देखिए दोनों का मतलब दोनों ही उसमें है, खर्चे का मामला कभी मैं कभी ये, और घरेलू मामला भी सर कभी मैं कभी ये, मतलब दोनों का मिलके, मतलब दोनों को मिलके चीजें चलती है सर, तो ये चीज है सर।
1: बहुत बढ़िया, तो
2: जी सर
1: मजा आया आप चारों से बात करके, करण जी और तारा जी भी इंतजार में होंगे, ये हमसे तो बड़ी बात की सर ने, हैं करण भाई।
3: देखो सर इंटरेस्ट आ रहा है इनकी बातें सुनते समय, आपकी बातें सुन के
1: आपको तो सब पता होगा ना पहले से,
3: पता तो है रहता ही है सर, लेकिन एक चीज सर यहाँ पे रखना चाहूंगा,
1: आज अगर आपको ये मौका मिले कि आपके इन दोनों दोस्तों से आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप क्या पूछेंगे?
3: मैं इनसे क्या पूछूंगा सर?
1: हाँ इन दोनों, क्योंकि आपने तो इनको बहुत करीब से देखा है ना दोनों को।
3: हाँ जी हाँ जी, मुझे सर ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: नहीं नहीं, अगर पूछना ही पड़े फिर भी, चलिए आज प्रोग्राम में ये समझो आप ही आरजे हो,
2: ये कहना इनका कि आज संदीप सर का कहना है कि आज मेरी जगह आप ही अगर वो कर रहे हो तो आप क्या सवाल पूछेंगे?
1: अगर आप ही कोई मान लो कोई ऐसा सवाल जो आपने आज तक नहीं पूछा मन कर रहा हो तो क्या पूछना चाहेंगे इन दोनों से?
3: मैं सर इनसे यही पूछना चाहूंगा कि तुम मतलब जैसे आप लोग 700 किलोमीटर सर ज्यादा ही हो जाते हैं कि जब करते हैं तो कोई दिक्कत आती है या नहीं आती, या फिर क्या कैसे कैसे मैनेज करते हो सर? मतलब एक चीज थोड़ा
1: जल्दी से बता दीजिए तुम लोग, कार्यक्रम का समय भी समाप्ति की ओर है जी।
2: हौसला है तो सब कुछ आसान है
1: ना, और हीना भी करती है कि नहीं सफर?
0: सर प्यार है तो सब कुछ आसान अपने आप हो ही जाता है।
1: वाह वाह वाह, एक के पास हौसला, एक के पास प्यार है।
3: संदीप सर एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि पांडे जी खुद तो रेलवे में गए और साथ में मुझे भी लेके चले गए।
1: हाँ आपको भी लेके चले गए, बहुत बढ़िया, लेकिन जॉब हो गई ना करण भाई एक?
3: हाँ जी हाँ जी,
1: ये तो है ना। तो हिना अब आपको करण और तारा से अगर कुछ पूछना हो तो क्या पूछेंगे आप?
0: सर मैं तो इनसे यही सवाल करूंगी कि एक दूसरे की पसंद बताएं।
1: हाँ चलो बताओ भाई, तारा जी पहले आप बताओ।
0: सर पहले करण से पूछ लीजिए क्योंकि।
1: ठीक है करण जी आप बताओ पहले।
3: तारा जी पसंद सर आलू जीरा है ज्यादा, वो आलू जीरा ज्यादा खाती है। हेलो किसमें जानना चाहती हूँ थोड़ा बताइए।
0: बताओ कलर क्या पसंद है?
3: कलर सर तारा को पिंक कलर पसंद है।
1: अच्छा
3: जी जी
1: बहुत बढ़िया।
0: एक मिनट सर, करण को क्या पसंद है खाने में? कलर
4: सर इनको पसंद है कलर में तो ब्लू कलर में पसंद है, और खाने में तो मटर पनीर की सब्जी और रोटी और लस्सी।
1: हाँ राज्यों में राज्य हरियाणा जिथे दूध दही का खाना है।
3: सर एक सवाल आपसे भी करना चाहते हैं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिए।
3: आपको मतलब बेसन गट्टा कितना पसंद है सर? यहाँ का बेसन गट्टा राजस्थान का बड़ा फेमस है सर।
1: नहीं मेरा मुझे पसंद के मामले में वो मेरे नंबर वन पर नहीं है, क्योंकि बस अगर है तो मैं खा जरूर लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे बस खाना ही खाना है।
3: जी जी जी जी
1: खाने में गुजराती फूड बहुत पसंद है, सच बात यह है।
3: तो सर उसमें तो सारा मीठा होता है, वो कैसे मतलब?
1: हाँ तो अब क्या करें, बचपन से हमने वही खाया। मीठी दाल है, मीठी सब्जी। वैसे मेरी अगर मैं सब्जियों में बात करूं तो भिंडी की सब्जी मेरी फेवरेट है। खैर तो चलिए प्रोग्राम पर आते हैं, नहीं तो भाई लोग कहेंगे ये क्या बात हुई है, सवाल तो आप लोगों से करने हमको।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर प्रोग्राम पे आइए।
1: हाँ तो करण बताएं थोड़ा सा कैसे मतलब तारा कभी उदास होती है तो क्या करते हैं आप?
3: तारा कभी उदास होती है सर, इसको थोड़ा मनाना सर बड़ी मुश्किल है, मतलब फिर भी जैसे तैसे मना लेता हूँ सर।
1: मना लेते हो, क्या बात है, वाह।
3: हाँ जी
1: वाह। और आप दोनों की मतलब जैसे खाली समय में क्या करते हैं?
3: और खाली समय में सर ये थोड़ा गाने वाने सुन लेते हैं सर, और ये तो पढ़ती रहती है प्रतिलिपि वगैरह, तो सर इसलिए ये तो।
1: मैं आया था विचार करण की यार हम दोनों का भी कभी कोई इंटरव्यू ले, ऐसे कभी सोचा था जिंदगी में?
3: सर ऐसा कभी मतलब नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी हिना जी, देवानंद जी, आप लोग क्या करते हो भाई एक दूसरे के लिए, मतलब जब ऐसी कोई परिस्थिति थोड़ी गंभीर माहौल जब हो जाता है तो फिर क्या करते हो दोनों एक दूसरे के लिए?
0: उदास होते
1: हैं। हाँ
0: सर कई बार तो ये मेरे लिए ग्वालियर आ जाते हैं जब ऐसा होता है तो।
2: और साथ में सर चॉकलेट भी लेके आता हूँ,
1: गुस्सा ठंडा भी हो जाता होगा।
2: जी जी साथ में सर फ्रूट एंड नट्स की चॉकलेट लेके आता हूँ तो डबल मजा हो जाता है इनके लिए।
1: अरे वाह क्या बात है, बहुत गुड। और कुछ सुनाते बनाते भी होंगे देवानंद आप तो लगता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: याद आ रहा है हिना के लिए?
2: अरे हाँ हाँ सर बिल्कुल याद आ रहा है सर,
1: सुनाइए।
2: जैसे मान लीजिए रूट गई और तो मैं ग्वालियर आया और मैं हूँ यहाँ पे इनके पास, तो मैं कहता हूँ इनको, देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, तब ये बोलती है हम ना

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। वैसे ये जो सवाल सवाल था मामला, इसमें बड़ा मजा आया हमको। एक बात और मुझे याद आई, देवानंद एक बात बताओ,
1: जी जी
0: आप हिना को कब से जानते हो?
1: हिना को सर 2022 से
0: जानते हो ना, 4 साल हो गए।
1: जी सर।
0: कोई ऐसी बात जो आज तक आपने हिना से नहीं पूछी, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर पूछना चाहो तो, क्या कोई है सवाल ऐसा?
1: हाँ सर, सवाल ऐसा है मेरे मन में, ऐसा सवाल है
0: हिना जी से पूछो आप।
1: हिना, चलो आपने चीजें बताई, लेकिन मतलब वैसे अगर मेरी व्यक्तिगत वो पूछा जाए तो मेरी आपको क्या खूबी, बहुत ज्यादा क्या खूबी अच्छी लगी
2: तुम्हारी? तुम्हें बताई नहीं पर से।
1: नहीं नहीं नहीं बताइए बताइए बताइए।
2: तुम्हारी खूबी मुझे पसंद है, तुम्हारा नेचर।
1: ओके ठीक है सर, इन्होंने तो नेचर बताया अब।
0: पर ये ना सवाल आपके मन में रहा हो कभी, जो आज तक नहीं पूछ पाए हो और आप पूछना चाहें देवानंद से, तो है कोई ऐसा जहन में, या जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो खुली किताब है।
2: तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए थी? तुम्हें और भी तो लड़कियां मिल रही थी।
0: ये है इम्पोर्टेंट, तो आज सवाल 10 करोड़।
1: सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है सर, और क्योंकि जो टफ टाइम था मेरा उसमें तुमने ही मेरा साथ दिया, और लोग आए पूछा और चले गए, बट तुम ऐसी थी जो मेरा साथ दिया तुमने, और हमेशा समय समय पे मेरा हाल चाल लेती थी कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ थी वो मैं जिक्र नहीं करना चाहता, बट उसमें प्रॉब्लम ऐसी थी जिसमें इंसान टूट जाता है, तो तुमने मुझे संभाला, और जो हूँ मैं वो मतलब आज तुमने मुझे संभाला, उस वजह से होनी तो शायद पता नहीं कहाँ जाता।
0: वाह बहुत खूब, तो कुल मिलाकर के दोनों ने एक दूसरे को संभाला और इसीलिए पड़ गया पाला। चलिए तो बहुत खूब, बहुत मजा आया आप चारों से बात करके। करण कुछ चलते चलते कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए?
3: सर मैं यही कहना चाहूंगा श्रोताओं के लिए कि आप किसी से आप अपने आप को कभी कम नहीं समझो, मतलब कोई भी जैसे कि कार्य करना हो ये मत समझो कि ये मेरे लिए छोटा है या आप कमजोर हो, तो मतलब सर अपने आप को कभी कमजोर ना दिखा के और आगे बढ़ने की कोशिश करो सर।
0: बहुत खूब बहुत खूब। हिना जी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए, अपने युवा साथियों के लिए?
2: सर मैं तो यही कहना चाहूंगी, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था कि कुछ लोग का ये मानना होता है कि हम यहाँ नहीं आना चाहते वहाँ नहीं आना चाहते, पर मैं ये कहती हूँ सर जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, और उससे बड़ी बात सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये मान लेते हैं कि इसके साथ हम पूरी लाइफ बिता सकते हैं तो उसके बाद सर हर मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि जब दो लोग साथ में होते हैं ना तो हर प्रॉब्लम्स के सलूशन होते ही हैं। इसलिए मैं ये नहीं मानती और मैं यही उम्मीद भी करूंगी कि जैसे आज हम लोग हैं और आने वाले टाइम में जो मतलब रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़े हुए हैं और जो अपने लिए लाइफ पार्टनर की तलाश में है, वो इस सोच को ना रखते हुए पहला कि हम ब्लाइंड हैं तो ब्लाइंड ब्लाइंड कैसे चीजों को मैनेज करेंगे, और दूसरा कि मैं दूसरी जगह पे कैसे कंफर्ट होंगी, इसको ना सोचते हुए सर मैं तो ये कहूंगी कि वो ये सोचे कि हम अगर इसके साथ हैं तो हम इसके साथ और ज्यादा अच्छा पॉजिटिविटी वक्त और कैसे चीजों को बेहतर करके चल सकते, जैसे सर ताकि आज हम ये रिकॉर्डिंग क्लब के साथ ये वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, वैसे हमें और भी लोगों का सुनने में मिले जो नए कपल्स आए और वो भी यही सब चीजें बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी हो।
0: बहुत बढ़िया, निश्चित रूप से जी। देवानंद जी आपसे ही शुरुआत हुई थी और अब आप पर ही जाके कार्यक्रम खत्म करते हैं, बताइए।
1: बिल्कुल सर, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा सर कि सबकी सुनिए, देखिए लोग बहुत सारे आएंगे आपको भटकाने के लिए, मान लो आपने लाइफ पार्टनर का चुनाव कर लिया कि ऐसा है वैसा है, और ब्लाइंड फील्ड में सर आप भी हैं मैं भी हूँ, और आप तो बहुत पहले से हैं सर, हमसे बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़े हैं सर, तो आप तो सर भरी बात ही जानते हैं, तो भटकाने के लिए मैं कहता हूँ, मैं कहूँगा साथियों बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन सबकी सुनिए, लेकिन अपने मन की कीजिए, जो आपका मन करता है वही कीजिए, ये नहीं कि भाई मतलब सुन लिया और उसके बाद आप आ गए उसके उसमें, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, आप सुनिए उनकी, हाँ ठीक है, जहां पे दिल आके रुका है वही दिल रुका रहे, ये नहीं कि जिधर की हवा चली उधर आप बह गए और उनके कहने से आपने अपना फैसला बदल दिया। तो मेरा ये कहना है सर।
0: बहुत खूब। तो करण जी, तारा जी, हीना जी और देवानंद जी, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए।
1: शुक्रिया सर। और मैं सर चार लाइनें आपके लिए सर और मतलब रिकॉर्डिंग क्लब के लिए कहना चाहूंगा सर। और आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं सर हम सबके लिए और ब्लाइंड समाज के लिए, तो चार लाइनें सर कि सिकंदर, सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता। इतनी सर आपने मेहनत की, मतलब आपने हालात को संभाला पूरे, मतलब उससे तो मैं कहूंगा सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए कभी जमी पे नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, मगर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता।
0: वाह वाह, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। बस मेहरबानी आप सबकी, और आप सब आते हैं साथ में तो इसीलिए सब कुछ संभव हो जाता है, वरना तो कभी भी एक व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। खैर चलिए, लोग सुनते रहिए अमराई प्रोग्राम, अमराई के सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे, और इंतजार करिए किसी और अमराई का। तो श्रोताओं कैसा लगा आज का ये विशेष कार्यक्रम, दो जोड़ियों के साथ, चार लोगों के साथ, और करण, तारा, हीना और देवानंद के साथ। उम्मीद है आपको कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा रेडियो मधुबन पर 94.14.14.15 पर। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: करते हैं। जिंदगी की रीत क्या है उसको समझने में न जाने कितने सारे गाने सुनने होते हैं, और तब पता चलता है कि भाई हार के बाद ही जीत है। लेकिन वो हार में कई बार आगे जीत नजर नहीं आती, छिप जाती है बादलों के पीछे जैसे सूरज छुप जाता है। और उसी जिंदगी से प्यार करना हम सीख रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम है लव यू जिंदगी, और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ी हैं कल्पना जी, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ साथ स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं और हमारी गाइड और दोस्त भी हैं। कल्पना जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, बहुत ही सुंदर टॉपिक्स के साथ आप हर बार आती है और श्रोताओं से मुखातिब होते हुए हमें बहुत बहुत बहुत मजा आता है। तो थैंक यू वेरी मच,
0: थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी। जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं आरजे श्री, जो कि रेडियो के जाने माने आरजे हैं, एंकर हैं, साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्रीनिधि जी।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी, कल्पना जी नमस्कार, हमारे सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। वापस फिर लव यू जिंदगी की एक और कड़ी में जुड़ के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कड़ी से कड़ी जोड़ते जा रहे हैं, तो ये मजबूत कड़ियां बनती जा रही हैं।
0: हाँ, और इस मजबूत कड़ी में आज की कड़ी बड़ी अनोखी है। परिस्थिति आती है और कई बार हम उस परिस्थिति के अनुरूप ढल जाए या हम उसको अपने अनुरूप ढाल लें, समझ में नहीं आता। लेकिन सिचुएशंस हम सबकी लाइफ में आती जरूर है। आज चलिए थोड़ी बात उसी के बारे में कर लेते हैं, कैसे हम अवेयर होते हैं या कैसे रेगुलेट भी कर सकते हैं सिचुएशंस को या खुद को, इस गुत्थी को सुलझाते हैं आज। तो कल्पना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, अगर मतलब अवेयरनेस शब्द जब जुड़ जाता है तो ऐसा लगता है जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड कुछ देखना है, क्या सिचुएशंस में भी ऐसा होता है?
1: हाँ बिल्कुल आरुषि जी, अवेयरनेस मतलब जागरूकता। जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, समझो हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या कोई परिस्थिति आई है, समझो कि कार चला रहे हैं और एक्सीडेंट ही हो गया है, या फिर हम कहीं होटल में गए हैं खाना खाने के लिए और कोई अच्छी ऐसी बात हो गई जिसको देख के हम थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा, या कोई ऐसी बात हो गई जो हमें बहुत अच्छी लगी, या कोई समझो सेलिब्रिटी आ गया अचानक और हमारा रिएक्शन, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आप सब्जी मार्केट में गए हैं और सब्जी खरीद रहे हैं और वहाँ एक दृश्य देखकर आपको अच्छा लगा या बुरा लगा या कोई भी ऐसी चीज। सो हर प्रकार की सिचुएशन में अवेयरनेस अगर हमें है कि ये परिस्थिति किस तरह की है और इस समय मेरा रिएक्शन किस तरह का होना चाहिए, अर्थात परिस्थिति को समझना और उसके साथ जुड़ी हुई प्रतिक्रिया को बैलेंस्ड रखना या उसको संभालना, ये परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ है।
0: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। परिस्थिति को समझना तब रिएक्शन को समझना, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है आपने बताया। श्री जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे सिचुएशन अवेयरनेस की बात है तो क्या हम जो समझ रहे हैं उससे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं? मतलब हमें दिख रहा है, कोई बोल रहा है, सामने से क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, सब कुछ दिख रहा है, हमारे जो सेंसेस है उससे हम समझ पा रहे हैं उस परिस्थिति को, बट क्या कई बार चीजें वैसी नहीं होती जो दिखती है, तब अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है, या हर सिचुएशन में ही अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है?
2: ये बहुत ही सुंदर सी बात है कि हम कितना ज्यादा अवेयर हैं चीजों के बारे में। कभी कभार हमारा मूड अगर ठीक है तो मौसम खराब भी है तो भी मतलब हम उस खराब मौसम को भी अच्छा महसूस करने लगते हैं, हाय इतनी अच्छी बारिश आ रही है, ओहो ये काले बादल और वही काले बादल वही बारिश आपका मूड खराब है तो बोले ओहो सच अ ग्लूमी वेदर आज, तो मतलब मौसम ना बेकार है,
0: काले बादल
2: काले बादल, क्या मूड ही खराब कर दिया यार, मतलब कोई सनशाइन नहीं। नजरिया है आपका, अवेयरनेस है, आप किस नजरिए से उस चीज को देख रहे हो। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, जो दिखता है वो वैसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, जो चीजें वैसी है वैसी ही है, मगर मैं किस अवेयरनेस से उन चीजों को देखता हूँ वो बहुत मायने रखता है। और इसलिए लाइफ की परिस्थितियां भी ऐसे ऐसे होती है, कभी कभार लोग हमें कुछ चीजें कह देते हैं और कभी जब वो चीजें कहते हैं तो हम उनकी बातों का बुरा नहीं मानते क्योंकि मैं अंदर से मेरी अवेयरनेस कोई और चीज की अवेयरनेस है, और कभी कभार उन्होंने उस भाव से उस चीज को कहा भी नहीं होता और हम कहने लगे तुमने मेरे लिए ये कहा, तुम ऐसी बात कह भी कैसे सकते हो मेरे लिए, तो बोलेंगे मैंने कहा क्या था, मतलब ये तो सिंपल सी चीज है। तो ऐसा होता है और इसलिए इन चीजों को समझने की जरूरत है कि जो चीज जैसी दिखती है वैसी हमेशा हो ये जरूरी नहीं, और कभी कभार हमारे मन के भाव, उन परिस्थितियों को, हमारे देखने का नजरिया, जो अवेयरनेस की बात कही जा रही है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, मैं किस जागरूकता के साथ उन चीजों को देखता हूँ, हमारे आउटकम्स को भी प्रभावित करते हैं। और इसलिए ये समझना जरूरी है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी धारणा क्या है, मेरी अवेयरनेस क्या है इस घड़ी, और उसी के आधार पर बाहर की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मेरे आउटकम्स को मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। कम से कम हमेशा ना सही तो कम से कम 50% ऑफ द टाइम्स तो मेरे कंट्रोल में है,
0: मेरे कंट्रोल में है। That's wonderful, क्योंकि मेरी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग एक सिचुएशन मुझे अच्छी लग रही है, वही सिचुएशन कल मुझे अच्छी नहीं लग रही है, यानी there is something else, कुछ और है जो प्रभावित कर रहा है, ये तो श्योर हो गया। कल्पना जी, मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि कई बार लाइफ में परिस्थिति ऐसे आती है कि जो दूसरा देख रहा है उसे लग रहा है कि एक एग्जाम में फेल हो गया, हम भी हुए थे या कोई और भी हो जाता है, happens, थोड़ा डांट देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए उसे लगता है ये बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है, मेरी इंसल्ट हो गई, इतने लोगों के सामने मेरे साथ ये हो गया, और वो उसके लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है, शायद वो हैंडल नहीं कर पाए इतनी बड़ी बात। तो ये एक ही परिस्थिति इतनी ज्यादा अलग हो जा रही है, तो इसमें किस तरह की अवेयरनेस चाहिए हमें, जहां हमें ह्यूमिलिएशन फील हो, जहां हमें इंसल्टेड फील हो बहुत सारा।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल आजकल हो गया है। तो जब हम सिचुएशन अवेयरनेस की बात करते हैं तो उसको सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि मैं इस समय कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या परिस्थिति है, उसका अर्थ क्या है, और उस समय मुझे किस तरह का डिसीजन लेने की आवश्यकता है। इस पूरी बातों को मन में कुछ सेकंड्स में कलेक्ट करके उस तरह से एक्शन लेना या प्रतिक्रिया करना। फिर से मैं दोहराती हूँ, मैं इस समय कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, परिस्थिति क्या है, इस परिस्थिति के पीछे लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी क्या भावनाएं हैं, इस परिस्थिति में मुझे किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया लगती है, बट हमारे दिमाग में उसके लिए कुछ सेकंड्स में इन चीजों को रिकलेक्ट करने का एक बहुत अच्छा यंत्र उपलब्ध है। मतलब हम कर सकते हैं क्योंकि हम रोजमर्रा की ये बातें हैं, बट इसमें केवल अवेयरनेस की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम का, बच्चे के एग्जाम का, उसके फेल होने का एग्जाम एक बताया, घटना आपने बताई, उसी घटना को एक पेरेंट जो है वो गुस्से से या नाराज होकर या बच्चे को दोष देकर या उसको ये याद दिलाकर कि तूने पढ़ाई नहीं की ठीक से इसलिए तुम फेल हो गए, ये सब कुछ उस सीन में करने से उस बच्चे को हर्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो बच्चा ही में रेट हो रहा है। बट यही सीन अगर हम दूसरे एंगल से देखें, अवेयरनेस के एंगल से देखें, तो इसी परिस्थिति में अगर पेरेंट्स ये सोचे कि अभी एग्जाम हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, जो बीत चुका है उसके बारे में बात करके या याद दिला के कुछ फायदा नहीं है, अब क्या किया जा सकता है, ये सोचकर अगर बच्चे के साथ रिएक्ट करे, तो उसको कहा जाता है अवेयरनेस के साथ। अब बच्चा खुद शॉक में है, ऐसे समय पर माँ बाप भी उसको डांटे, फटकारे या मारे या फिर उसको बुरा भला कहे या उसको याद दिलाए, इसकी बजाय अगर वो ये कहे कि ठीक है अब तो जो मिले सो मिले मार्क्स, कोई बात नहीं, आगे के लिए तुम अच्छे से पढ़ना और अच्छे मार्क्स ले आना, हम जानते हैं कि तुम अच्छा पढ़ सकते हो, तुम में वो काबिलियत है। अब एक ही सीन में दो प्रतिक्रियाओं के साथ क्या फर्क पड़ा। पहली प्रतिक्रिया जो थी उसमें बच्चा ह्यूमिलिएट हुआ, बच्चा नाराज हुआ, उसका मोटिवेशन कम हुआ और वो उदास हो गया
0: जी।
1: दूसरी तरफ माँ बाप को गुस्सा करने से अच्छा थोड़ी ना लगा, उनकी भी तो मनस्थिति खराब हो गई और उनका भी दिन डिस्टर्ब हुआ। लेकिन दूसरी सिचुएशन में जहाँ वो बच्चे को जो भी मार्क्स मिले हैं, कम मिले हैं, वो स्वीकार करते हुए उसको कहते हैं कि ठीक है अब तक जो भी हुआ कोई बात नहीं, आगे तुम अच्छे से पढ़ना, तो बच्चा भी शांत, बच्चा भी रिस्पेक्टफुल फील किया उसने, उसका मोटिवेशन बढ़ा और पेरेंट्स पीसफुल रहे। तो कितना फर्क पड़ा हमारे। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, जो आगे चल के समझेंगे जब हम धीरे धीरे इस बात को आगे ले जाएंगे,
0: एक्सप्लोर करेंगे। और श्री जी, इसी इंसिडेंट को आगे ले जाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कभी कभी ना हम ये शब्द सुनते हैं कि तुम क्यों बात को बढ़ा रहे हो, तुम क्यों इतना उसमें ज्यादा देख रहे हो, जो है नहीं तुम वो भी देख ले रहे हो, तो बात को बढ़ाना या परिस्थिति को कुछ और समझ लेना। कई बार हम इस तरह की परिस्थिति में है जब बहुत ह्यूमिलिएशन फील कर रहे हैं, इंसल्ट फील कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी परिस्थिति हो जाती है। तो परिस्थिति जो जैसी है वो वैसे ही नजर आए, वो कैसे होता है?
2: ये बिल्कुल ऐसी बात आपने कही है, मेरे को गीता के श्लोक याद आ गए। भगवान गीता में एक जगह कहते हैं कि मैं जो हूँ जितना हूँ उतना मुझे समझ के याद करो, ये बात कही जाती है। हालांकि मैं गीता के ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा इतना आसान नहीं होता कि जो जैसा है जितना है उतना उन चीजों को हम माप तोल के समझ कर चले, उस समझ के आधार से चीजों को चले। कि या तो हम चीजों को एग्जैजरेट कर देते हैं, जो दिख रहा है उसको राई का पहाड़ बना देते हैं। हम अक्सर ये कहावतों का इस्तेमाल करते हैं कि वो था छोटी सी चीज और उसको हमने राई का पहाड़ बनाया है। और कई बार हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी उनके लिए रूई समान होती है कि भैया एकदम हल्के में लेते हैं, चल ठीक है हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर वो दो चीजें दिखाई देती हैं कि भाई वो वही चीज है, सिचुएशन वही है, चैलेंज वही हो सकता है, डिफिकल्टी वही हो सकती है, मगर हमारा अप्रोच क्या है उन चीजों के हिसाब से वो चीजें मायने रखती हैं हमारे लिए। तो हमारा माइंड सेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करता है। और कभी कभार हम देखते ही हैं कि जो जैसा है जितना है उसको हम देखें कैसे। लोग अक्सर इसके लिए अलग अलग अप्रोचेस की बात करते हैं। कभी कभार कॉर्पोरेट जगत में जब हम इन चीजों को देखते हैं, जब हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है या कोई चैलेंज है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एक रोड ब्लॉक है, किसी प्रोजेक्ट को आप कर रहे हैं, कहीं पर आप स्टक हैं, तो लोग अक्सर कहते हैं कि आप एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन सोचो, कहा जाता है। तो यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या, हम बॉक्स से बाहर निकले, क्या हम बॉक्स के अंदर थे जो बॉक्स के बाहर जाने
0: निकले पहले।
2: भाव ये है कि क्योंकि हम उस समस्या से, उस परिस्थिति से इतने ओतप्रोत हैं, हम उससे हटकर कोई और चीज सोचना ही नहीं चाहते। हमें ये बताया जाता है कि आप उससे ऊपर उठें, आप उस समस्या से एक ब्रेक लें। कई बार लोग लिटरली ब्रेक्स लेते हैं, ऑफिस से बाहर जाते हैं, या फिर कभी कभार वो लोग एक दो दिन के हॉलीडे पे जाते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते ही नहीं है, और जब फ्रेश माइंड से वापस आते हैं तो तब आपके पास समझ में आता है, ओह अच्छा, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो देखने का ढंग जो है, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण, एक होलिस्टिक अप्रोच नजर आता है। और जो समस्या आपको पहले बड़ी लग रही थी, दो दिन बाद आपको लगता है अच्छा ये कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली, ऐसा लगने लगता है। तो इसके लिए एक सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट, एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट डेवलप करना भी आवश्यक है। और गीता में यही चीज कही भी गई है। आप श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक आता है जहां पर भगवान ये बात कहते हैं अर्जुन को कि कैसे आपको काबू करना है इस मन को। तो शायद मैंने ये चीज पहले भी बताई होगी, इस श्लोक में आता है कि अभ्यास एन तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास भी चाहिए बट साथ साथ वैराग्य चाहिए। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि मैं घर बार छोड़ दूं, मैं प्रॉब्लम्स को फेस ही ना करूं, मैं भाग जाऊं, मैं बोलूं मेरा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप मुंह नहीं फेर रहे उस चीज से, आप एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट कल्टीवेट कर रहे हैं कि एक सेकंड के लिए मैं सॉल्यूशंस के बारे में नहीं सोचता, एक सेकंड के लिए मैं प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचता, मैं सिर्फ उससे पीछे हटता हूं, अपने आप को मैं रिलैक्स करता हूं, अपने आप को मैं शांत मनोस्थिति में ले आता हूं, अपने आप को उस प्रॉब्लम से हटाकर किसी और चीज में लगाता हूँ जो एक हैप्पी इमोशन है या एक पीसफुल इमोशन है या एक कंटेंटेड इमोशन है, या मैं बगीचे में जाता हूँ, या मैं किसी फूल को, किसी पौधे को देखता हूँ, किसी जानवर को, पालतू जानवर है या कोई पेट है आपका, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वे अपने पसंद का गाना सुनते, कुछ ना कुछ ऐसा करके आप अपने मन को उस चीज से डिस्कनेक्ट करते हो।
0: ओके।
2: और तब आप जब वापस उस पे लौटते हो तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। पर्सपेक्टिव अलग नहीं भी होता तो भी आप एक रिलैक्स्ड नजर से उस चीज को देख सकते हैं,
0: देख सकते हैं,
2: आपकी अवेयरनेस में एक शिफ्ट आया है, आप ये महसूस कर सकते हो। ये करना आवश्यक होता है। और जैसे फेलियर्स की बात कह रहे थे, मैंने अपने लाइफ में फेलियर्स देखे हैं, एज अ स्टूडेंट मैंने फेलियर देखा है। हम कॉम्पिटिशन्स अटेंड करते हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा सक्सेस नहीं मिलती।
0: बिल्कुल।
2: हाँ, कहीं कभी कभार उन फेलियर्स की वजह से मैं रोया हूँ, पेरेंट्स की डांट पड़ी है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, मगर आज जब उन चीजों को पलट कर देखा जाता है तो आज लगता है कि क्या इतनी छोटी बातों पर मैं इतना परेशान हुआ। कभी कभी अपने आप पर हंसते हैं, अगर ये समझ उस घड़ी आई होती तो फिर आपको
0: उतना परेशान नहीं होते शायद।
2: आप बहुत इन्वॉल्व हैं उस चीज में, इसलिए आप फंसे हुए हैं। इसमें आपको जकड़न महसूस होती है, आपको लगता है कि अब मैं हिल भी नहीं सकता। तो ऊपर उठना थोड़ा आवश्यक है, और ये ऊपर उठना कोई फिजिकल हॉलिडे या भाग जाने की बात नहीं है। हालांकि श्री कृष्ण के एक नाम के लिए ये नाम भी मशहूर है कि रणछोड़, और उसके लिए भी गाने बने हुए हैं, भजन बने हुए हैं। कभी कभार रण छोड़ना पड़ता है, कभी कभार आपको रिट्रीट करना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, ताकि आप बेहतर तरीके से उस चीज को समझ सको। हम ये कहते हैं कि जब आप जैवलिन थ्रो करते हैं या शॉटपुट थ्रो करते हैं तो आप थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग जंप या हाई जंप भी लगाना चाहते हैं तो पहले आप थोड़ा पीछे दौड़ते हैं और फिर गति पकड़ के आगे आते हैं,
0: आगे जाते हैं।
2: ये पीछे हटना हार नहीं है, पीछे हटना एक पर्सपेक्टिव लेने के लिए थोड़ा ऊपर उठना, ये चीज है जो सही चीजों को हमारे सामने अवेयरनेस में शिफ्ट लाने के लिए मदद कर सकता है।
0: मदद कर सकता है, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली अलग थोड़ा सा डिटैच होना कैसे मदद करता है वो हमने समझा, प्रोसेस क्या है, कितनी मेहनत है, आसान है, डिफिकल्ट। आई थिंक आगे जानेंगे ये। कल्पना जी की ओर आगे बढ़ते हैं, हम कार्यक्रम की अंतिम घड़ियों में जा रहे हैं। कल्पना जी, आपने जिस तरह से स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल लिया था, मैं थोड़ा सा चाहूंगी अगर आप उसको एलाबोरेट करें, क्योंकि अगर मान लीजिए पेरेंट्स छोड़ भी देते हैं बच्चे को, ठीक है हम सिचुएशन को समझ रहे हैं, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर उनको लगता है कि स्पॉइल हो जाएगा बच्चा, उसको लगेगा कि यू नो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, एंड कोई आदत बन जाएगी। तो क्या परिस्थिति को उतना ही देखना या छोटा करके देख लेना वो नुकसान भी कर सकता है हमको, ऐसा पॉसिबल है?
1: आरुषि जी, बहुत सही जगह पर आपने ये बात को मार्क किया है। एक्चुअली देखिए, वही सिचुएशन अगर हम ले तो किसी भी चीज की प्रतिक्रिया को हम अग्रेशन, एंजाइटी, एंगर, इन चीजों के साथ जब प्रतिसाद देते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो दोनों तरफ नेगेटिव होता है, सामने वाले पर और वो प्रतिक्रिया करने वाले पर नेगेटिव होता है। और नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना,
0: सिर्फ मैथ्स में
1: हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है,
0: यहाँ नहीं, लाइफ में नहीं।
1: नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, या हम कहें नेगेटिव इनटू नेगेटिव, तो नेगेटिव रहेगा, डबल नेगेटिव होगा या मल्टीपल नेगेटिव होगा। सो इसीलिए श्री जी की बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, बट जब मैं अपने श्रोताओं को देखती हूँ तो श्री जी की बातें थोड़ी सी मुझे कठिन लगती है समझने के लिए, है ना। तो मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ कि क्या है, समझो मैं किसी सिचुएशन में हूँ तो प्रोसेस क्या होनी चाहिए सिचुएशन की प्रतिक्रिया तक पहुंचने से पहले। तो सबसे पहला काम है देखना, देखने को हम कह सकते हैं ऑब्जर्व करना, है ना। तो वो थोड़ा सा पॉज हम वहां लेते हैं ऑब्जर्व करते समय। दूसरी स्टेप है समझना, अर्थात सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, है ना। तीसरी स्टेप है एनालाइज करना या अनुमान लगाना कि ये सिचुएशन है क्या, उसको अच्छी तरह से समझकर उसको किस तरह से प्रतिक्रिया करनी चाहिए, उसको एनालाइज करना या अनुमान लगाना हम कह सकते हैं कि क्या करना, या अवेयरनेस की स्टेज को कहते हैं। तो देखना, समझना, अनुमान लगाना और फिर उचित प्रतिक्रिया देना। ये प्रोसेस माइंड में 10 सेकेंड्स में भी हो सकती है। ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड एक्शन, नॉट रिएक्शन। रिएक्शन जहाँ हम कहते हैं
0: वो जल्दी आता है
1: तो वो ट्रिगर दूसरे के हाथ में है, रिएक्शन है तो, है ना, एक्शन है तो ट्रिगर मेरे हाथ में है। सो देखना जानकारी है, समझना जागरूकता है, और सही प्रतिक्रिया देना ये समझदारी है। तो समझदारी से काम करना चाहिए। अब आप बताइए, पेरेंट्स का रिएक्शन समझदारी वाला था, गुस्सा करना, या नासमझी वाला?
0: ये बात समझ में आती है अब आपने ऐसे बताई तो, नहीं तो उस वक्त वो ही वैलिड लगता है लेकिन ऐसे जब चार स्टेप लेके समझते हैं तो सही बात है, वो शायद एक रिएक्शन है, वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है उसका। कल्पना जी, इस चीज को मुझे लगता है हम आने वाले एपिसोड्स में और भी थोड़ा स्टेप्स को समझना चाहेंगे, फिलहाल लेकिन समय की सीमा में यहीं तक इजाजत देती है। तो क्या जाते जाते हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ताकि हम उस परिस्थिति में होते हुए भी लिटिल डिटैच, या जैसा आपने कहा वो एक ऑब्जर्व कर सके, पहले स्टेप पे जा सके?
1: जी बिल्कुल, इसकी बहुत सुंदर छोटी छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। आगे के एपिसोड्स में हम इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस समय जो समय है वो रिलैक्स होकर कुछ अफर्मेशंस को अपने मन में दोहराने का। तो हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट के लिए आप किसी निश्चित स्थान पर आराम से बैठ जाएं, अपने शरीर को रिलैक्स फील करें, गहरी और लंबी सांसें लें, मन और शरीर को ढीला छोड़ते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, मन की आंखों को जगाते हुए, जागरूकता के साथ कुछ अफर्मेशंस, कुछ वाक्यों को जो हम सुना रहे हैं उसे अपने मन में रिपीट करें। मैं वर्तमान क्षण में सजग और जागरूक हूं। मैं वर्तमान क्षण में सजग और जागरूक हूं। मैं अपने आसपास की परिस्थितियों को शांत मन से देखती हूं या देखता हूं। मैं अपने आसपास की परिस्थितियों को शांत मन से देखती हूं। केवल मैं परिस्थिति को देखता ही नहीं हूं, परंतु परिस्थिति को समझने की कोशिश करता हूं। यहां पर गहरी और लंबी सांस लें। पहले रिपीट किए हुए 3 वाक्यों को मन में महसूस करें। जागरूकता, शांत मन और समझने का प्रयास, इन 3 शब्दों को अपने मन में दोहराएं। जागरूकता, शांत मन और समझने का प्रयास। गहरी लंबी सांस ले। अगला वाक्य है, मैं तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले रुकती हूं, समझती हूं और फिर प्रतिक्रिया देती हूं। मेरा मन शांत होता है तब वो मुझे सही निर्णय लेने में सहायता करता है। मेरा मन शांत होता है तब वो सही निर्णय लेने में मुझे सहायता करता है। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।
0: एक्चुअली इतना सारा है ये, अगर आप एक प्रैक्टिस करें तो बहुत सारा सारा बेनिफिट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, हमें अभी ही वो महसूस हुआ और इसको रिपीटेडली करेंगे तो हम जो चाहते हैं अपने से वो हम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है आपसे भी इजाजत लेने का। आप भी दिल खोल के एक बार जिंदगी से कह दीजिए कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वंदे मातरम गीत देश के क्रांतिकारियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत था। ये आजाद हिंद फौज के सैनिकों का भी मूल मंत्र था। वही आजाद हिंद फौज जिसकी नींव भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे महान नेताओं और सूत्रधारों में से एक राज बिहारी बोस ने की थी, जिसकी कमान बाद में सुभाष चंद्र बोस के हाथों में चली गई। कहते हैं कि अगर अरबिंदो घोष को यंग इंडिया का मैजनी माना जाता है, तो राज बिहारी बोस को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का कैवूर कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने विदेशी धरती पर रहकर भारतीय राष्ट्रवाद की लौ जलाए रखी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा की आज की कड़ी में हम सुनेंगे भारत के इन्हीं दिलेर क्रांतिकारी राज बिहारी बोस की वीरता एवं जाबाजी की कहानी।

0: बम से हमले में आया था।
1: बड़ी शानदार योजना बनाई गई थी क्रांतिकारियों द्वारा चंदन नगर में हुई उस बैठक में। हार्डिंज पर हमले का सुझाव देने वाले कोई और नहीं, राज बिहारी के निडर दोस्त श्रीश घोष थे। लेकिन बैठक में मौजूद कुछ लोगों को ये अव्यवहारिक लगा।
2: मुझे शंका है कि हम हार्डिंग पर बम से हमला कर पाएंगे, उसके आसपास बहुत सुरक्षा रहती है।
3: हम तैयार और दृढ़ है, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। हमें शक्तिशाली बम दिया जाए और पक्के क्रांतिकारी चरित्र वाला एक युवा मिले।
1: राज बिहारी की दोनों शर्तें पूरी की गईं। 1911 की दिवाली पर चारों ओर पटाखों की आवाज के बीच पहली रिहर्सल भी हुई। बम राज बिहारी की उम्मीद के मुताबिक फटे, लेकिन उन्हें एक साल से अधिक इंतजार करना पड़ा। फिर आया 22 दिसंबर 1912 का दिन। राज बिहारी बोस अपनी युवा गर्लफ्रेंड को टोंगा में बिठाकर चांदनी चौक की सड़कों पर ले गए, जहां अगले दिन हमले की योजना बनी थी।
3: बसंत, तुम चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक के पास क्लॉक टावर वाले जगह पर रहोगे, महिलाओं के बीच, महिलाओं के वेश में। बम तभी फेंकना जब वायसराय का हाथी ठीक सामने हो। अगर तुम चूकोगे तो मैं और अवध बिहारी हमले को अंजाम देंगे।
4: जी गुरुजी।
5: तुम्हें डर तो नहीं लग रहा बसंत?
4: नहीं, डर किस बात का, महीनों अभ्यास किया है, आज के दिन का ही तो इंतजार था।
1: वायसराय और उनकी पत्नी हाथी पर सवार गली में प्रवेश करते हैं। महिलाएं जुलूस के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बसंत, जो कि एक लड़की के भेष में था, वो भी उन्हीं के बीच उपस्थित था। तभी अचानक राज बिहारी का ध्यान आता है और वो अपनी शंका अवध बिहारी से साझा करते हैं।
3: देहरादून में सिगरेट के डिब्बे में बम फेंकने की जो प्रैक्टिस की गई थी, यह काम नहीं आएगी।
5: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
3: यह हमें पहले जमीन से हाथी पर बैठे टारगेट तक की ऊंचाई का अंदाजा लगाना होगा। वसंत, तुम अपना कपड़ा बदल लो और नीचे आ जाओ।
1: कहने को तो लॉर्ड हार्डिंज पर हमले के पूरे ऑपरेशन की योजना बहुत चतुराई से बनाई गई थी, लेकिन 23 दिसंबर 1912 का ये हमला दुर्भाग्य से विफल रहा। बसंत बिल्डिंग के नीचे गया और फुटपाथ पर भीड़ में घुल मिल गया, लेकिन बम अवध बिहारी ने फेंके। इसमें वॉइसरॉय पूरी तरह घायल हो गए। उन्हें पास के एक डॉक्टर एस सी सेन के पास ले जाया गया। राज बिहारी तो बच निकले, मगर हत्या की नाकाम कोशिश के बाद बोस के 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चला। उनमें से एक को उम्र कैद की सजा हुई, बाकी अवध बिहारी गिरफ्तार समेत 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, जबकि बोस भारत में क्रांतिकारियों के बीच मशहूर हो गए। उनके समकालीन क्रांतिकारी साथी बोस के बारे में कुछ यूं बताते हैं।
5: उनके जैसा निडर तो देखा ही नहीं। वायसराय पर हमला करने के बाद वो रात को ही ट्रेन से देहरादून लौट गए। अगले दिन दफ्तर में ऐसे काम पर लग गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने वायसराय पर हुए हमले की निंदा करने के लिए देहरादून के नागरिकों की एक बैठक भी बुलाई। इस वजह से किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि इस बेहद अहम क्रांतिकारी कार्रवाई की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले वही थे।
6: मुझे 1908 की घटना याद आ रही है। उन्हें अलीपुर बम केस में फंसाया गया था, जेल भी भेज दिया गया, लेकिन वहां से रिहा होते ही फिर से वे क्रांतिकारियों के साथ गुप्त रूप में संपर्क में रहने लगे।
7: दीदी, भिकाजी कामा ने भी राज बिहारी जी से बम और हथियार इकट्ठा करने को कहा था ना?
0: हाँ, दरअसल राज बिहारी बोस एक बहुत ही काबिल क्रांतिकारी नेता थे। स्कूली दिनों से उनकी दिलचस्पी क्रांतिकारी गतिविधियों में रहने लगी थी।

0: मैट्रिक पास करने से पहले ही देसी बम बनाना सीख लिया था। ऐसे में जब वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए तो उनकी भूमिका बढ़ गई। उन पर लेखक, कवि और विचारक बंकिम चंद्र चटर्जी के क्रांतिकारी उपन्यास आनंद मठ का काफी प्रभाव था।
1: आनंद मठ के अलावा राज बिहारी ने मशहूर बंगाली कवि नवीन सेन की देशभक्तिपूर्ण कविताओं का संग्रह प्लासीर युद्ध भी पढ़ा। समय के साथ उन्होंने और भी क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ी। उन्होंने वक्ता और क्रांतिकारी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी भाषण पढ़े। चंदन नगर में उनके शिक्षक चारू चंद्र, जो क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे, उन्होंने राज बिहारी को क्रांतिकारी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए।
2: मैंने फोर्ट विलियम में तुम्हारी नौकरी के लिए बात कर ली, तुम वहाँ चले जाओ।
3: जी, जैसा आप कहे।
1: रास बिहारी फोर्ट विलियम चले गए, लेकिन वहाँ का माहौल उन्हें रास नहीं आ रहा था। पिताजी की भी यही इच्छा थी कि उनका तबादला शिमला में सरकारी प्रेस में हो जाए। इस तरह उन्हें प्रेस में कॉपी होल्डर नियुक्त किया गया। राज बिहारी ने अंग्रेजी और टाइपराइटिंग में महारत हासिल कर ली। कुछ समय बाद वो कसौली के पाश्चर इंस्टीट्यूट चले गए, लेकिन ये नौकरियां उन्हें रास नहीं आ रही थी। वो खुश नहीं थे।
3: मुझे ये काम अच्छे नहीं लग रहे, क्या करूं, उलझन में हूँ।
4: आप देहरादून क्यों नहीं जाते? वहां प्रथमनाथ टैगोर के घर पर गार्जियन ट्यूटर की जगह खाली है, मैं बात करता हूँ।
3: जरूर करे बात मेरे लिए।
1: इस तरह वो एक ट्यूटर के तौर पर काम करने लगे। फिर उन्हें देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्लर्क की नौकरी मिली, जहां कड़ी मेहनत से वो हेड क्लर्क बन गए।
0: जानती हो बन्नो, बोस का मन नौकरी में क्यों नहीं लग रहा था?
5: क्यों दीदी?
0: वजह थी 1905 में हुआ बंगाल का बंटवारा और उसके बाद हुई घटनाएं। तब रास बिहारी बोस अपनी किशोर अवस्था में थे। बंटवारे का कारण प्रशासनिक बताया गया था, लेकिन असल में वो धार्मिक आधार पर किया गया प्रतीत हो रहा था। दूसरे बंगाली हिंदू राष्ट्रवादियों की तरह बोस इससे बहुत नाराज थे।
1: भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का मुख्य केंद्र बंगाल था। बंगाली हिंदुओं को लगा कि अंग्रेज उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए ये बंटवारा कर रहे हैं। मुसलमानों ने इस कदम का काफी समर्थन किया। पूरे बंगाल में राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। द न्यू एशिया ऑफ रास बिहारी बोस, इंडिया जापान एंड द लिमिट्स ऑफ द इंटरनेशनल 1912 से 1945 के लेखक जोसेफ मैक्वेड के अनुसार,
6: अहिंसक गुट ने आर्थिक बहिष्कार के जरिए ब्रिटिश शासन को कमजोर करने की कोशिश की, जबकि एक ज्यादा कठोर गुट ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने की कोशिश की।
1: रास बिहारी बोस गदर क्रांति के मुख्य आयोजकों में से भी एक थे। मैक्वेड अपनी एक किताब में लिखते हैं,
6: जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में उलझे हुए थे, तब रास बिहारी बोस ने 1857 के विद्रोह जैसा ही एक विद्रोह भड़काने की योजना बनाई। तब ब्रिटिश शासकों के अधीन काम करने वाले भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी थी। पहले विद्रोह शुरू करने की तारीख 21 फरवरी 1915 तय की गई थी। स्थान था लाहौर। 1914 तक लगभग 4000 गदर आंदोलनकारी हथियार और पैसे लेकर अमेरिका, कनाडा और सुदूर पूर्व से भारत आ चुके थे, लेकिन उनके पास कोई सही नेता नहीं था। तब रास बिहारी बोस ने उनका नेतृत्व एवं मार्गदर्शन किया। जनवरी 1915 के मध्य में रास बिहारी ने बनारस में एक निजी बैठक में आगामी क्रांति को लेकर पहली बार चर्चा की।
3: यूरोप में युद्ध शुरू हो चुका है। देश में केवल 30,000 सैनिक ही बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय हैं, और उनकी वफादारी आसानी से जीती जा सकती है। योजना ये है कि भरोसेमंद गदर आंदोलनकारियों को सेना की छावनियों में भेजा जाए। देशभक्तों की क्रांतिकारी कार्रवाई के बिना ब्रिटिश सरकार नहीं मानेगी।
7: आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ।
1: राज बिहारी द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप खैरों, फिरोजपुर और लाहौर में कुछ रिहर्सल भी आयोजित किए गए, लेकिन दुर्भाग्य से इस योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका। वो जल्द ही विफल हो गई। यूं कहें कि ब्रिटिश सरकार ने संघर्ष को शुरू होने से पहले ही कुचल दिया। एस्टन और कवाबे अपनी किताब में लिखते हैं,
5: जैसे ही जासूसों ने आंदोलन में घुसपैठ की, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों से हथियार छीनना शुरू कर दिया। बिना डरे बोस ने विद्रोह शुरू करने की तारीख 19 फरवरी कर दी, लेकिन काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए इस योजना को दबा दिया गया। कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, जेल में डाला गया और यहां तक कि देश निकाला दे दिया गया।
1: ब्रिटिश अधिकारियों के पीछे पड़ने और सिर पर इनाम घोषित होने के बाद राज बिहारी बोस ने तय किया कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है। 12 मई 1915 को राज बिहारी कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के रिश्तेदार का भेष बदलकर कोलकाता बंदरगाह से जापान के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वो गदर पार्टी के हैरम लाल गुप्ता और भगवान सिंह से मिले।
3: मैं एक भगोड़े की तरह रहकर थक चुका हूँ, 17 बार अपना ठिकाना बदला है।
7: आपको और हैरम लाल को जापान से वापस भेजने की कोशिश करता हूँ।
1: भले ही 1902 से 1923 के बीच जापान ब्रिटेन का सहयोगी था, बावजूद इसके उसने उन क्रांतिकारियों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे थे जो भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना चाहते थे। पता चला कि हैरम लाल अमेरिका भाग गए और राज बिहारी ने तोसिको सोमा से शादी करके जापान की नागरिकता ले ली।
0: बन्नो, राज बिहारी बोस ने ही जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और बाद में आजाद हिंद फौज की नींव रखी, जिसकी कमान बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। हालांकि इस संगठन का प्रमुख स्लोगन वंदे मातरम ही रहा। बंगाल के सभी क्रांतिकारियों की तरह राज बिहारी बोस के लिए ये केवल एक गीत नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नारा था।
1: जापान में 3 दशकों से ज्यादा समय तक निर्वासित रहने के दौरान राज बिहारी भारत की आजादी के लिए लगातार काम करते रहे। वहां उन्होंने एक भारतीय बुद्धिजीवी, दार्शनिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर ऊंचा मुकाम हासिल किया। उसकी मिसाल आज भी नहीं मिलती। उन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवादी प्रतीकों को बढ़ावा दिया। राज बिहारी का मानना था कि INA उपमहाद्वीप के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एकता के प्रतीक के तौर पर काम करेगी, ताकि वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का मौका पा सकें। असल में INA राज बिहारी बोस के आजादी के लिए उनके सशस्त्र संघर्ष के 30 साल की लंबी कोशिश का परिणाम था। वो कहते थे,
3: मैं एक व्यवहारिक और राष्ट्रवादी सोच रखता हूँ। मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में एकता और एकजुट रुख की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। यह संगठन दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में भारत की आजादी की लड़ाई के लिए जनमत और समर्थन जुटाने में एक असरदार और गतिशील संस्था के रूप में काम करेगा। वैसे ही वंदे मातरम महज एक गीत नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता का बड़ा प्रतीक है। इसमें प्रवासी भारतीयों को एकजुट करने की क्षमता है।
1: राज बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई दादा कालीचरण की देखरेख में सुबलदाहा में हुई। उनका निधन 1945 में हुआ, यानी 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी मिलने से ठीक पहले। ये एक ऐसी जीत थी जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और वीर क्रांतिकारी से। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कह सकते हारो गांव हारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते समुदाय का गतिविधि जन जन तक पहुँचे ये हमारा कोशिश रहता है और हर वर्ग हर विभाग से मिलते हैं और खासकर हम जब जिस एरिया में जिस गांव में रहते हैं वो गांव आदर्श बने वो कुल बने मॉडल विलेज के तहत हम चाहते हैं और हमारा गांव ये अच्छा बनेगा तो विश्व भी अच्छा बनेगा। जिससे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। स्व गाँव अपना अंचल समृद्ध होगा तो विश्व सशक्त और समृद्ध होगा। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए पर्यावरण सुरक्षा के तहत आज हम पहुंचे मानसरोवर स्थित टेरेस में जहां पर बैठे हैं और आपका प्रकृति का खुशबू सुहानी अवसर परिवेश आप तक हम पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। आज इस कार्यक्रम को हर एपिसोड की तरफ आज भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए श्रीमान गोपाल राम पुरे जी उपस्थित है जो कि महान अनुभवी है और एक अनुभवी ही अनुभव करा सकता है।
1: नमस्कार सर। नमस्कार
0: सर, आपको स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम को और खास कर विश्व जब नाम सुनते हैं और स्व स्व और विश्व दोनों का कितना आवश्यकता है
1: तो बातचीत करते रहेंगे इस पर तो भी चर्चा करेंगे।
0: स्वागत है, सुनाइए आज क्या लेकर आए हमारा श्रोता मित्र। विचार करेंगे
2: आपके द्वारा जो ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किया गया।
0: जी, स्वर्णिम अवसर कैसे कहेंगे सर इसको?
2: स्वर्णिम सर, ये स्वर्णिम अवसर यूँ है
0: जी
2: कि
0: पहले से आपको बता,
2: लंबे समय से सर प्रकृति के संबंध में चिंतन चला आ रहा है।
0: जी जी,
2: यानी कि मैं तो ये कहूँगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से जब से मनुष्य जानकार हुआ वो प्रकृति की गोद में पला। आदिवासी तरीके से जब वो जंगलों में रहता था प्रकृति ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया और प्रकृति पर ही वो निर्भर रह करके जहाँ जैसा जलवायु था जैसी प्रकृति मिली उसके अनुरूप उनकी सभ्यताएं विकसित। यानी कि मनुष्य का विकास प्रकृति के कारण से ही हुआ है और विभिन्न कालक्रमों में जैसा आप बताते हैं धीरे धीरे ज्यों ज्यों मानव विवेकशील होता गया और जहाँ विवेक अच्छा काम करने लगा तब सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कल युग, फिर संगम युग। तो इस तरह से वो अपनी अपनी प्रकृति पर उसने किस तरह से उसका उपयोग किया, जहां तक बहुत अच्छा उपयोग रहा सतयुग में, फिर त्रेता में थोड़ा फर्क पड़ा,
0: गोल्ड टू सिल्वर।
2: बिल्कुल सर, गोल्ड टू सिल्वर हुआ, फिर द्वापर में सिल्वर टू ब्रॉन्ज हो गया और कलयुग में आयरन हो गया। तो सर अब तो ये तो संगम युग है जहाँ पर
0: डायमंड
2: नहीं सर, इसको मिक्सिंग कहेंगे, मिक्स हो गया। डायमंड तो बहुत बढ़िया
0: सर, इस समय हमें बढ़िया बनना है,
2: अपने को तो बढ़िया बनना है, अपने को तो मणि बनना है,
0: इसलिए तो डायमंड हो गया,
2: इसलिए अपने को डायमंड बनना है। लेकिन जो युग है वो थोड़ा सा कलुषित सा
0: नहीं, अभी कलुषित जो जैसे आपने
2: लालच में
0: लालच जो लालच नहीं करेंगे उसके लिए डायमंड,
2: उसके लिए तो
0: समझ मिल गया ना।
2: बिल्कुल, जिसके समझ है वो डायमंड। क्या बात कही आपने, सबके पास है, यही बात मैं लाना चाह रहा हूँ। इतना ये जो एडवोकेसी प्रोग्राम ये कहने के लिए आपका माध्यम मुझे मिला है, मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ सर कि ये चीज तो सर जितने भी ग्रंथ है उन सब में लिखी हुई है कि प्रकृति की पूजा करनी
0: करते थे
2: तो उसको करने की आवश्यकता है। आज कम कर रहे हैं, मतलब पूजा का मतलब दीपक करना या वो वाली बात नहीं, उसको किस तरह से संरक्षित करना है अंदर के भाव से, वो सारा तीर्थ से सर ज्ञान तो है। दूसरा आवश्यकता यूं पड़ी कि इसको नवीन तरीके से अभी इस संगम युग में भी परिभाषित किया है विज्ञान। तो सर जब इसको नवीन तरीके से परिभाषित किया और तब भी जिस स्थिति वह बनी हुई है तो फिर समझ के स्तर को बढ़ाने के लिए आपने जो मुझे अवसर प्रदान किया और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैं तो इसकी छत्र छाया में आकर के आत्मविभोर हो जाता हूँ कि ये बात मुझे आपके माध्यम से कहने का मौका मिला। हमारी बात सुनता ही कौन,
0: सुनेगा तो आपका कितना जहाँ आपका एरिया है जान पहचान लोग है
2: बस
0: एक मंच जैसे आप तो सर, पोस्ट में थे
2: सर,
0: मैं बड़े आदमी बोलकर अभी जहाँ भी जाएंगे तो हमारा ये बहुत सीनियर आदमी है पोस्ट में जिला शिक्षा अधिकारी।
2: बात है समय कि हमने जहाँ जाए इसके लिए सोचा वहाँ काम जबरदस्त, पर जो ही उस पद से खिसके कि वो काम जहाँ थे मुझे ये होता है कि वो वहाँ से आगे बढ़ाई, ये मेरी भूख है और वो आपके माध्यम से ही पूरी हो सकती है। तो मैं बहुत बहुत बहुत खुश हूँ आप इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अपनी बात को रखने के लिए, रेडियो मधुबन जैसा माध्यम आप सभी दीदियों के और भाइयों के द्वारा जो मिला हुआ है, तो क्यों नहीं अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखें। ये मन में होता है, लिखा हुआ सब जगह, लेकिन सर जब हम स्कूल्स में गए, मैं कई बार कहता हूँ आपके साथ ही, जब उस सिस्टम का एक प्रधान अच्छा व्यक्ति, यानी कि सब अच्छे व्यक्ति तो है ही, लेकिन वो किस चीज को फोकस करता है, तो वो पर्यावरण की सुरक्षा भी काम करता है, वही आप सबके विकास का माध्यम बनता है। तो यहाँ पर हम उस बात को इसलिए कर पा रहे हैं कि बच्चों तक वो जो सिस्टम से पहुंचा है वो बच्चे समझ के कर क्यों नहीं रहे, ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो सर बार बार इच्छा होती है कि इसको किसी तरह से किसी अच्छे मंच के माध्यम से रखा जाए, तो मुझे लगता है कि आपसे बढ़िया, रेडियो मधुबन से बढ़िया कोई मौका ही नहीं था, इसलिए हमने इस माध्यम से इसको प्रस्तुत करना ठीक समझा, और आपकी लगन। अच्छा दूसरा सर, ये माध्यम मुझे और भी ज्यादा ठीक लगा, आपने एक बार पूछा था कि आपने एनजीओ बनाया कि नहीं बनाया। सर इतना बड़ा जो सिस्टम पड़ा है, वहाँ एनजीओ की जरूरत क्या है, अलग से स्थापित क्या होना। तो आपके माध्यम से जब बात कर पा रहे हैं, और जहाँ सर इसके मॉडल्स बने हुए, मैं ये कहूंगा सर कि आसपास के हमारे इस अंचल के जितने भी लोग, मैं तो ये निवेदन करूंगा कि ये रेडियो जहाँ तक सुना जा रहा है, सर ये कहाँ तक सुना जा रहा है अपने यहाँ पर?
0: सर ये तो हमारा
2: एफएम एरिया में सुना जा रहा होगा,
0: एफएम जो गवर्नमेंट का डायरा है वो उस तरह सीमित है, पालनपुर में दिया गया।
2: ठीक है,
0: इंटरनेट का माध्यम से
2: हम पूरी दुनिया तक
0: पहुंच जाते हैं, और आजकल डिजिटल सिस्टम हो गया ना,
2: तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
0: एप्लीकेशन के माध्यम से वो सुनते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है, हम अच्छा कर्म करें और जहाँ तक पहुँचे, जिसको आवश्यकता वो पहुंच जाएगा। और ये हमें खुशी हो रहा है क्योंकि कम्युनिटी रेडियो ये
2: सामुदायिक रेडियो है।
0: तो सामुदायिक रेडियो में तीन प्रकार रेडियो मैंने बताया था, ऑल इंडिया रेडियो जो सरकार कंट्रोल कर,
2: बिल्कुल सर बिल्कुल,
0: जैसे हमारा माउंट आबू, एक कमर्शियल रेडियो जो कि बिजनेस पर्पज में,
2: दूसरा उद्देश्य
0: एड के, बिल्कुल सर। फिर जो सामान जनसद में कहाँ जाएंगे,
2: बिल्कुल जनता,
0: इसलिए सरकार ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रसारण विभाग दो, सूचना प्रसारण विभाग से इसको कम्युनिटी रेडियो का नाम से दिया है, आसपास लोग के
2: लोगों के लिए समस्या सुने,
0: तो उसको कम्युनिटी को एनजीओ को देते हैं, कोई शिक्षा अनुष्ठान को देते हैं, सर को एनजीओ को ये देते लाइसेंस, फिर उसका प्रोसेस है, प्रोसेस अनुसार जो क्वालिफाइड करते हैं उसको देते हैं,
2: उसके समाज सेवा की भावना,
0: फिर समाज के जो लोग हैं उसमें भागीदारी ले, जैसे आपने कितने साल मेहनत करने वाले दो चार आए हमारा इस कम्युनिटी में,
2: आप इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं,
0: क्योंकि हमें
2: आपका ग्लोबल नेत्रालय इतने लंबे समय से मेहनत कर रहा है, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं, वो साइट सेवर से सर अभी जुड़ गए, और साइट सेवर सर इतना जबरदस्त काम कर रहा है दुनिया के अंदर जिसकी कोई नुकसान ही नहीं, और उनके साथ मिल करके हमारा जो ग्लोबल हॉस्पिटल काम कर रहा है आईज के फील्ड में, इस तरह से आपने जो नशा मुक्ति के लिए जो काम किया, जिसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आपके माध्यम से एक सम्मान पत्र प्राप्त हुआ है, खैर वो तो सम्मान ही है विश्वविद्यालय तो, कि जहाँ पर,
0: तो इसलिए हमें खुशी मिले, जैसे आपने बताया
2: आनंद मिलता है सर,
0: ये मंच आपका है, कभी भी आप रत्न मित्र अपने बात को रखने के लिए आइए, चाहे समाज से भी हो एनजीओ हो, तो आते हैं उसका खुला मंच, क्योंकि एक मंच का माध्यम से हम अपना अभिव्यक्ति, अपना भावना,
2: अपने अंदर की भावना व्यक्त
0: कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का ये गाइडलाइन
2: सरकार की गाइडलाइन से ही चलना है सर, सरकार भी अगर आप और हम सहयोग नहीं करेंगे तो कितना, सरकार को भी तो इस चीज की आवश्यकता है, जैसे वापस मैं इस बात को रिपीटेशन के तौर पर कह रहा हूं, स्कूल में जाते हैं बच्चे समझ नहीं पा रहे, या और भी कई कारण होते हैं, उनका लक्ष्य अलग होता है, उसके हिसाब से जैसे ये लेसन जहाँ जहाँ पर क्लासों में डाल रखे हैं, तो मैं कहता हूँ सर उनको सामने लाके परोसना पड़ेगा आपको, और ये इस एरिया विशेष में नहीं, सारी दुनिया में ये करना पड़ेगा, नहीं तो सर चीजें तो है लेकिन जब तक आप उसको परोसेंगे नहीं थाली में तो आप पाएंगे कैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी माध्यम मिले उस माध्यम से अपने को इस चीज को सामने लाना पड़ेगा, तभी जा करके हम इसके प्रति गंभीर हो पाएंगे।
0: बराबर ठीक बात बताया, और जैसे समय अनुसार समय, जैसे पिछले में बताया था
2: जी,
0: समय बहुत बलवान है और समय हमें इशारा दे रहा है, और हमें सतर्क होकर आगे चलना है आज के समय को देखते हुए, हमें खुद को देखना है, संभालना है,
2: स्व को संभालना,
0: जाकर विश्व संभाल तो जाएगा। तो आपका टॉपिक भी मैंने
2: बिल्कुल सर उसी पर
0: बंधुत्व जो है
2: बिल्कुल उसी पर मैं चल रहा हूँ सर।
0: पर्यावरण कितना आवश्यक है विश्व को
2: सर, अब इसी बात को उस तरफ ले जाते हुए कि सर अब इतनी भयावह स्थितियां हमने रोज आपको चर्चा की है, जिसके लिए चिंतन आवश्यक है, स्वचिंतन आवश्यक है और स्व परिवर्तन आवश्यक है। जो इस तरह के विश्वविद्यालय की आपको बता पाते हैं कि किस तरह से हम अपने आप में परिवर्तित होकर के सर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल समाज में जाएगा। सर मेरा निवेदन कि अपनी यहाँ पर जैसे ईश्वरी विश्वविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कितने काम हुए सर, जैसे यहाँ पर वेस्ट जरा भी नहीं होता और वेस्ट मैनेज करके इलेक्ट्रिसिटी
0: वेस्ट होगा तब हम वेस्ट में परिवर्तन कर देते
2: सर, वेस्ट में परिवर्तन किया है तो सर लोग यहाँ किए यहाँ आकर के देखे। और सर मेरा तो निवेदन ये रहेगा इन क्लिप्स को इंटरनेट के माध्यम से आप आगे भी पहुंचे, क्योंकि सर ये चीजें सब जगह उपलब्ध तो है लेकिन वो जा नहीं रही है, लोग उसको देखेंगे समझेंगे तो चलेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। तो सर उससे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो रही, प्रदूषण भी कम हो रहा है, यहाँ पर सर जो यौगिक कृषि हो रही है आप जब देख रहे हैं कि वो इतने अच्छे तरीके से ये सब रसायन मुक्त खेती हो जाती है तो कितना कितना कितना फायदा पूरे समुदाय को हो सकता है। तो समुदाय आप तक पहुँचे, बार बार निवेदन आप तक पहुँचे और देखे कि ये लोग कैसे करते हैं ये सब। सर यहाँ जिस हम टेरेस गार्डन में बैठे हैं आप और हम सीख लेनी चाहिए कि हमारे पास में बगीचा किस तरह से डेवलप किया है टेरेस के ऊपर, वो जो बगीचा जो टेरेस पर डेवलप किया है वो किस तरह से उन्होंने छठवीं मंजिल पर मिट्टी वगैरह पेड़ पौधे ये सब लगा करके किस तरह से इसको विकसित किया है,
0: इनको सैंपल रखें लोग
2: सर, सर, देखें। सर मतलब वहाँ जाकर के लोग देखें तो समझ में आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। आप और हम भी आश्चर्यचकित है कि यहाँ किस तरह से इन्होंने व्यवस्थाएं की है, तो जो पब्लिक है वो जागरूक होगी और इन चीजों को आकर के देखेगी समझेगी और तब जाकर के हम इसमें थोड़ा से आगे बढ़ पाएंगे,
0: हमसे आगे भी कर सकते हैं कुछ है नहीं।
2: तो सर ये जो इसकी आवश्यकता सर इसलिए पड़ रही है कि सब जगह चीजें तो हैं। सर मेरा निवेदन ये है जैसे गार्डन है वो सभी गांवों में है, प्रकृति सभी गांवों में है, लेकिन सर उसका उपयोग सामने होते हुए भी लोग नहीं कर पा रहे, तो सर ये ज्ञान भी सब जगह है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो जाकर के देखेंगे उपयोग करने से फायदा कितना हो रहा है,
0: तो कारण होगा ना सर,
2: सर
0: नहीं कर पा रहे मतलब सर कुछ कारण तो आप
2: बस यही होंगे सर, यही बात सर करने की बात
0: है।
2: सर वो क्यों नहीं कर पा रहे, वो सारी चीजें होते हुए क्यों उसका उपयोग नहीं कर पा रहे,
0: कारण क्या है, आपका मन आपका विचार में क्या आ रहा है?
2: मेरे विचार में ये कि वो इसके प्रति मतलब
0: आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा,
2: या तो यही लगता है कि आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा,
0: आवश्यकता मतलब
2: लेकिन सर आवश्यकता तो उनकी है वो तो फिर समय बता देगा, तो सर उनको
0: अभी उनको आवश्यकता नहीं इसे तब तो नहीं कर रहा है,
2: अब देख लो सर ये तो
0: आप क्या कहेंगे वही तो कर भाई सर, एक तो सिंपल चीज है
2: बिल्कुल सर,
0: अभी इसका मतलब तो पानी लेंगे ना,
2: जब वो परेशान होंगे तब तो उसकी आवश्यकता को महसूस कर जाएंगे,
0: और जो आप जो महसूस किया है उसको तरस आ रहा है,
2: बस जिसने महसूस
0: के लिए तरस भाई
2: उस बड़े विश्वविद्यालय को तरस आ रहा है, आपको समझ में आ रही है तो
0: तरस आ रहा
2: है कि कैसे होगा ये कैसे होगा, इनको तो बचाइए जैसे तैसे करके, ये बचाने का प्रयास तो हमको ही करना पड़ेगा, तो इसलिए सर इससे जागरूकता के लिए हमको दौड़ना पड़ रहा है सर।
0: ये बहुत अच्छा बात बताया और जागरूकता भी चाहिए, और जैसे मैंने बताया भाई क्यों नहीं कर रहा है उसका कारण होगा आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा है, हमेशा इसे कहेंगे ये भाई जैसे आपने वो टॉपिक उठाते हैं तो हम उसी का मतलब इसका कारण तो ढूंढिए
2: जी,
0: क्या तकलीफ, सरकार सहयोग चाहिए कि कोई एनजीओ से सरकार क्या चाहते हैं
2: सर,
0: वो भले निवेदन करे,
2: सरकार ने तो सर सारा सिस्टम दे दिया, एनजीओ भी सब तैयार है,
0: फिर
2: अब सर एनजीओ ने अपना काम कर दिया, उस एनजीओ तो वो जाए
0: उसका जानेंगे क्यों नहीं जा रहा और जाने के लिए हमें क्या उसके लिए गाड़ी भेजना पड़ेगा, हमें कैसे आएंगे जानना पड़ेगा ना सर,
2: जिस जो प्यासा है वो कुएं के पास जाए,
0: जाएंगे जानेंगे लेकिन
2: तो सर कुआ तो प्यासे पास में पड़ा है वहाँ जाना तो पड़ेगा, पर नहीं जाएंगे
0: उसका ऊपर में जानेंगे, ब्रेक का बात सुनकर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, और खासकर सर ने बताया भाई आवश्यक करना चाहिए हम कर रहे हैं, आप भी करो वो करो, हमको तरस आ रहा था, हम अनुभव भी अनुभव करने के बाद हम थोड़ा प्यासी होगी और प्यासी होने के बाद हम जल का पास गए, अनुभव की भाई ऐसे होंगे तो वो भी प्यासा नहीं रहेंगे, ये हमारा साधना है। तो जानेंगे अल्प विराम का बाद कारण और उसका निवारण
2: जी,
0: सुनते रहिए मुस्कुरात रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर पर्यावरण स्पेशल में आज स्व परिवर्तन का साथ साथ पर्यावरण विश्व स्तरीय परिवर्तन के लिए हम सबका उंगली लगे ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन जाने और कुछ अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, अ डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस। इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है, वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।
2: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत खुशी महसूस हो रहा है क्योंकि पर्यावरण इतना शुद्ध विषय है और उसको शुद्ध रखने के लिए हम सबका जिम्मेदार है और जिम्मेदारी से हम काम करते हैं और करेंगे तो अच्छा ही हमें फायदा होगा। और इस भावना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें पुनः स्वागत करते हैं श्रीमान गोपाल राम जी को, जो कि अच्छा अनुभवी है और खासकर डेडिकेशन भावना रखते हुए आगे साथ दे रहे और रेडियो मधुबन को सुंदर रूप में सजाए और खासकर पर्यावरण एनवायरनमेंट को हेल्दी वेल्दी बनाने के लिए कोशिश करते हैं। और हम सबका प्रयास से सर पुनः स्वागत करते हैं आपको। क्या कहना चाहेंगे और आज का मांग, समय की मांग कहे चाहे व्यक्ति का मांग क्या होना चाहिए?
3: सर नमस्कार। सर

0: पर्यावरण में जिस तरह से अब परिवर्तन हो रहे हैं,
1: या कि परिवर्तन क्या पॉजिटिव वे में ना नेगेटिव में, आप क्या सोचते हैं? परिवर्तन हो रहा है लेकिन ये सपोर्टिंग ना,
0: वो पर्यावरण आपको हमेशा सपोर्ट करता था, लेकिन अब आप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज है।
1: नाराज तो उसको राजी कराना है,
0: उसको खुश करना है। पर्यावरण तो देने को तैयार है, वो कभी नेगेटिव नहीं होना। नेगेटिव आपका विवेक हो सकता है, इंसान हो सकता है, लेकिन पर्यावरण कभी नेगेटिव नहीं होगा।
1: क्या बात।
0: तो सर वो तो प्रकृति है, ईश्वरीय प्रकृति है, वो तो देने के लिए ही बनी है। वो पशु पक्षी आप देखो, आप दो मिनट में खुश हो जाएंगे। जैसे ये कबूतर बैठे हुए सामने, चिड़ियाएं बैठी हुई चीं चीं करती हैं, हम सब सुबह सुबह जब देखते हैं ना, इस कोर को
1: हमें तो डिस्टर्ब नहीं करता, हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं,
0: वो हमें डिस्टर्ब कभी नहीं करते, कभी नहीं करते, और आप और आनंद देते हैं वातावरण के। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण का ही विशेष काम सर ये पशु पक्षी भी करते हैं। तो अगर एनवायरमेंट बैलेंस होगा तो ये सब अपने आप को सस्टेन कर जाएंगे, और सस्टेन करेंगे तब जा करके ये अशुद्धि का जो वातावरण है वो बन जाएगा। हम हेल्दी रहेंगे, हम हेल्दी हो जाएंगे, हम हेल्दी रहेंगे तो वेल्दी हो जाएंगे ना,
1: तेज वेल्थ का रास्ते संपदा,
0: फिर सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर सर। तो इसके लिए सर जी
1: मनुष्य देखो क्या विवेकवान है,
0: विवेकवान है सर। तो इसके लिए अब आपसे मैं निवेदन करूं कि सर इसके लिए अभी जो रिसेंट में जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ थोड़ी सी चर्चा करें कि दुनिया इस पर किस तरह से आगे बढ़ रही। पहले सर भावना से था, तब तक सर का संरक्षण बहुत अच्छा हुआ, बहुत पहले सतयुग त्रेता द्वापर फिर कलयुग, तो अब सर भावना में कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा मिलावट हो गई। वो प्रकृति का शोषण करना चाहता है, तो जब आप उसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। आप उसका नेगेटिव उपयोग करेंगे तो उसका नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। प्रकृति पॉजिटिव देना चाहती है, लेकिन आपका नेगेटिव चलना नेगेटिव रिजल्ट को लाने के लिए उसको अवसर प्रदान, क्योंकि प्रकृति हमेशा आज भी अच्छा देना चाहती है। आज प्रकृति का संरक्षण करो, बढ़िया वृक्षारोपण करो, जैव उत्पाद आप उपयोग में लो, आप ऑटोमेटिकली वेल्थ हो जाएंगे। इसलिए प्रकृति की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है, कमी है तो उन लेने वाले हाथों की,
1: देने के लिए तैयार कर ले वाले तो उसको दो बोले
0: तो क्या दे रहे? अच्छा देंगे तो वो दे देंगे, वो बहुत ज्यादा देंगे।
1: लेने के लिए आप हम लोग तैयार है, तो देने के लिए वो भी तैयार है, लेकिन लेकिन बीच में जो MOU साइन होता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल MOU तो करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो करना ही पड़ेगा, कि हमको उसके लिए जीना पड़ेगा, तब वो आप पर पहुंचा कर देगी, छत्र छाया कर देगी।
1: तो ज्यादा कुछ नहीं महत्व, शुभ भावना, शुभ संकल्प,
0: शुभ संकल्प के साथ। तो सर इस पर जो काम हुआ है, अपन उस तरफ एक थोड़ी सी दृष्टि लगाए
1: जी जी,
0: जिसको आज मूल विषय के रूप में मैं रखना चाह रहा था
1: जी।
0: सर बाकी सारी चीजों के साथ साथ साथ धीरे धीरे धीरे धीरे एक इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, इसको कहते हैं। वो सर सम्मेलन हुआ है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में
1: जी, 72
0: यस सर। मतलब काम पहले से ही हो रहा है सर, लेकिन जो इसका स्टॉकहोम सम्मेलन है वो 1972 में हुआ, और इसको सर मैग्ना कार्टा कहा गया पर्यावरण संरक्षण का। और सर ये काम हुआ 5 जून को, और इसलिए उस समय से हम
1: पर्यावरण
0: दिवस के रूप, तो मैं मूल चीज पर लाता हूँ कि पर्यावरण दिवस साल में एक दिन मनाया भी
1: जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस,
0: विश्व पर्यावरण,
1: वर्ल्ड एनवायरमेंट डे,
0: बिल्कुल सर।
1: जून था।
0: तो सर ये सर जागरूकता का एक बहुत बड़ा पैमाना दुनिया पर महसूस किया, पूरी दुनिया ने महसूस किया, और तब जाकर के आप हम जैसे ये जो पर्यावरण के लिए जो चिंता करने वाले लोग इकट्ठे भी होंगे, NGO भी चले होंगे, और तब जाकर के ये बात करने की आवश्यकता हुई कि भाई अब इसको तो प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
1: देखिए सर 72
0: 1972 में सर
1: इसका मैंने महसूसता मैंने आवश्यकता को महसूस किया
0: सर, मतलब कितना सारा पुनः महसूस किया गया। और सर इसमें एक और नई चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये जब भी बनता है उसके बाद लागू होने में भी कुछ समय लगता है,
1: चलो एक दो साल,
0: चलो जो भी है जो भी है। तो सर
1: कम से कम 15 साल हो गया।
0: इसके बाद सर एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसको जो हुआ है 1992 में 172 कंट्रीज का। तो सर उसमें सर क्या था, उसको पृथ्वी सम्मेलन कहा गया, और ये हुआ था सर रियो डी जनेरो में। तो ये भी सर बहुत ही प्रभावी सम्मेलन हुआ 1972 के बाद 1992 में, आफ्टर 20 साल के बाद में। तो सर फिर आवश्यकता को महसूस किया गया, तो सर इसमें काफी काम हुआ, और काम हो करके पर्यावरण पर पहली बार घोषणा पत्र जारी हुआ साझा, और सर इसमें एक एजेंडा 21 लाया गया जिसमें पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 40 अध्याय सर इसमें रखे और उसको 4 पार्ट में भी बांटा है और उस पर धीरे धीरे धीरे धीरे फिर काम होना शुरू होता है सर वन सिद्धांतों के अनुसार। सर बीच में ब्रंटलैंड आयोग बनाया गया जो 1983 में इसने हमारा साझा भविष्य करके बात हुई थी, इसके बीच में जो ये भी एक महत्वपूर्ण एक पड़ाव था जो सर इसका जो एजेंडा 21 जो लाया गया इसमें 92 में इसका ब्लूप्रिंट उसमें तैयार हुआ है। 1983 में ब्रंटलैंड आयोग बनाया और उसके बाद 87 में इसको तैयार किया और वो ब्लूप्रिंट 92 में आया। तो सर एक क्रम बता रहा हूँ कि सरकार कितनी चिंतनशील है, कब दुनिया कितनी चाहती
1: बहुत दिन से
0: सर। अब तक हमने पांचों तत्वों का किस तरह से ये दुष्प्रभाव अपनी वजह से मानव की ठीक प्रवृत्ति न होने से जो हो रहा है उस पर अपन चर्चा कर रहे थे कि भाई कितना भयावह है, ये है वो है, इस चीज को पहुंचाने का प्रयास सब कर रहे हैं। अब देखो जब पहले भी इतने बड़े स्तर के काम भी धीरे धीरे होते फिर सरकार ने स्कूलों में लागू किया तो फिर बच्चों तक जाने में उनके कंटेंट को उनके तो खिलाना पड़ेगा ना, ला करके समझाना पड़ेगा ना, तब जाके वो समझेंगे, नहीं तो कैसे समझेंगे सर। तो सर ये ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, आफ्टर दैट सर एक बड़ा जो सम्मेलन हुआ है जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में, और इससे पूर्व में सर एक बहुत बढ़िया काम हुआ जिसमें सर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करके एक COP इसमें नाम दिया गया जो स्पेशल एनवायरनमेंट के लिए होता है और वो लगभग लगभग प्रतिवर्ष होता है। भाई इसमें इतने देशों की पार्टी है 172 कंट्रीज की और वो प्रतिवर्ष मिलते हैं और उसमें सामान्य चर्चा करते हैं, फिर कोई बड़ा सम्मेलन होता है तब बात अलग है, वो सामान्य मतलब उससे जुड़े हुए व्यक्ति जैसे आप और हम करते हैं वैसे उस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल करके वो उस पर काम करते, ये बहुत बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ और वो हुआ सर 1992 के बाद 1995 में। मतलब दुनिया कितनी चिंतित है इसके लिए कि कितना बड़ा दुष्प्रभाव आ रहा है, ये कब से चल रहा है, बहुत लंबा समय हो गया 72 देन 1992 देन ब्रंटलैंड आयोग 1980 ठीक है 7 में उसको ब्लूप्रिंट लाया एजेंडा 21 का और सर 1995 से COP फर्स्ट हुई बर्लिन जर्मनी में। ये सर अलग अलग देशों को फिर जिम्मेदारी सौंपते गए तो फिर इसमें सर जागरूकता फैलती, जैसे आप कभी हमको सुशांत वाटिका में बैठाते हैं, कभी आरोग्य वन में बैठाते हैं, कभी सर इधर रिमोट किसी गांव में ले जाते हैं, तो सर इससे जागरूकता फैलती है ये लोग क्यों घूम रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर सर ये जो इसके सम्मेलन होने से इनकी मीटिंग्स होने से इसका एक अच्छा मैसेज उस देश के थ्रू, क्योंकि उस देश का हेड तो उसमें शामिल होता ही है तो बहुत अच्छा संदेश जाता है सर। तो 1995 में COP फर्स्ट बर्लिन जर्मनी में हुआ, 96 में COP सेकंड जेनेवा में हुआ, 97 में क्योटो में हुआ, इस तरह से सर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ये COP होते रहे और आज तक सर ये हो रहे हैं। और सर इसमें क्योटो प्रोटोकॉल है वो भी बहुत ही गजब रहा जो जापान में हुआ था सर। इसमें सर जापान का जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो काफी मजबूती के साथ में जापान के लोगों के द्वारा इस चीज को रखा गया है जिसमें सर एजेंडा 21 के जो पार्ट थे उनको उसमें रीडिफाइन करने का प्रयास हुआ है। इसके सर 4 पार्ट है, एजेंडा 21 के जो 4 पार्ट है वो है आर्थिक व सामाजिक विकास के आयाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय किए जाएं, दूसरा विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, तीसरा प्रमुख समूह अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले इसमें काफी अच्छी भूमिका निभाएंगे और सतत विकास के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इस तरह से ये पर्यावरण संरक्षण के साथ में क्योटो प्रोटोकॉल में इसको फाइनलाइज किया गया। जोहान्सबर्ग सम्मेलन में जो मुद्दे सर शामिल किए वो थे जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा, जैव विविधता और स्वास्थ्य, जो अगर कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह से अगर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है तो इसके लिए दूसरे देश को ये सब मिल करके निर्देशित कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो एनवायरनमेंट प्लान है इसका सर स्थापना सर हुई थी 1972 में जो हुआ था, लेकिन सर इसका जो हेड ऑफिस है वो सर UNEP का नैरोबी में बनाया गया। इसका हेड ऑफिस सर इसका जो हेड ऑफिस है वो तो इस तरह से विभिन्न देशों में इसको विवेकशील तरीके से इसको कैसे लागू किया जाए इसकी पूरी पूरी कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई है सर। अभी भारत में तो अपना जर्मनी का एक सेल काम कर रहा है
2: जो इस पर विशेष रिपोर्ट प्रसारित करता है समय समय पर, तो सर उन रिपोर्ट से हमको ये आइडिया लगता है, जितने भी आंकड़े हम जो लाते हैं वो

0: पर भाई उन लोग देते हैं कि हम उसको थोड़ा
1: सा भी तो कुछ करें, हम भी तो अच्छा ग्राउंड लेवल पर जाएगा तब जाकर के ये काम होगा, नहीं तो होगा कैसे।
0: जैसे आपने एक बात बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
1: SDG,
0: तो ये कितना बड़ी काम यूनाइटेड हो रहा है,
1: बिल्कुल
0: तरफ से
1: बिल्कुल
0: जाति संघ से, तो उसके लिए जैसे सस्टेनेबल शाश्वत रहा है सब चीज था पहले, उसके लिए देखिए नो पॉवर्टी तो गरीब नहीं होना चाहिए,
1: बिल्कुल सही।
0: गरीब होगा तो एनवायरमेंट गरीब कौन कराएगा, एनवायरमेंट गरीब करा देगा
1: वो तो सर। जब आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो आपको गरीब होना ही है, खर्चे करने ही है, कमजोर हो जाएंगे,
0: भूखा रहेंगे, नो प्रॉपर्टी उसमें कहाँ से हंगर, हंगर कोई भूखा नहीं रहे,
1: बस सही बात, भूखा रहा तो नुकसान ही नुकसान
0: पर्यावरण के लिए, तो
1: नुकसान ही नुकसान है, वो सस्टेन कैसे कर पाएगा पर्यावरण के लिए भी, फिर वो क्या
0: फिर आप बोलेंगे भाई विवेक कैसा शिक्षा कैसा है, अगर क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी एजुकेशन चाहिए ना सर, शिक्षित विवेकवान कैसे बनते हैं, तो मोरल शिक्षा
1: ये मोरल इसलिए सर यही बात रोज हम गा रहे हैं आप और हम, मोरल इसी से आएगा, ये सारी चीजें हैं आपको उसके लिए चिंतन करना है और फिर उस काम को वहां तक पहुंचा करके कर देना है, कोई अच्छा काम है तो उसके लिए जुट जाइए, जहां से मिले जुट जाइए, अंदर संकल्प करो उसकी सिद्धि करो उससे जुट जाइए और अपने अंदर कम से कम
0: लेंगे तो।
1: सर मैं बताऊं आप परिवर्तन की बात, मैं स्व परिवर्तन की बहुत अच्छी लगती है मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सर, सर सर बिल्कुल यहाँ इन्होंने इस वातावरण को इतना चेंज कर दिया, हम आप और हम जाकर के देखें तो पता चले कि वहाँ हो क्या रहा है, किस तरह से वो भारी वातावरण को शुद्ध किए हुए हैं और किस तरह से उनकी अंत चेतना बिल्कुल शुद्ध परिशुद्ध है,
0: इससे कैसे हो रहा और क्यों नहीं हो पा रहा, केवल में होता है हम कला में क्यों नहीं हो पा रहा
1: सर,
0: जो चिंतन जो आध्यात्मिकता ये चीज थोड़ा सपोर्टिंग करता और एक संगठन
1: आध्यात्मिक और ट्रस्ट सर, बिल्कुल ये बिल्कुल
0: यूनिट और ट्रस्ट, आप अकेला करेंगे ना आसपास लोग ठीक नहीं रहेगा तो आपका वो उजाड़ देंगे,
1: बिल्कुल सही बात है सर,
0: मान लीजिए आप लगाएंगे अच्छा यहाँ तो ब्रोकली वगैरह बहुत सुंदर सुंदर,
1: बिल्कुल
0: दो दिन के बाद आप जाएंगे तो उसका तो पौधा ही उठाकर ले लेंगे, क्या बोल के
1: बिल्कुल सर वो तो होता ही
0: होता है, हम जानते ना खेती बाड़ी जो करते काम
1: है सब जगह,
0: तो ये जो मोरल जो है वो उनका ये मेरा ऐसे सोचने
1: सब सोचने अपना समझेंगे मेरा समझेंगे तो जाकर संभव हो जाएगा,
0: तो सर मेरा सोच कर आपका भी मेरा उठा कर लेगा तो ये तो गड़बड़ होता था,
1: उठा के ले जाना नहीं मेरा सोच के उसकी देखभाल प्रदान करना है, फिर उसका दुरुपयोग हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी,
0: मेरा तो मेरा आपका भी मेरा
1: ये थोड़ी चलेगा,
0: आप इतना मेहनत करके रिसर्च कर लगाए अभी गए थे आप कुआं में देखने के लिए, तो चार तरफ
1: सही
0: नहीं हो रहा भाई वो तो गोचर कर दिया
1: बिल्कुल,
0: और आप अच्छा से बनाए था वो तो क्या करे भाई, ये चलो लालच आता है ना सर,
1: लालच आता है तो सारी चीजें ही गायब करने इधर से उधर उधर से इधर हो जाती है,
0: तो जिसका चलते फिर आप आपका मन बल भाई छोड़ो भाई क्या करे
1: थोड़ा सा
0: डाउन होता है,
1: डाउन होता है
0: जिसका चलते नहीं कर पा रहे, जैसे आपने बार बार एग्जांपल दे रहे ब्रह्मा कुमार स्कूल
1: बिल्कुल
0: कर पा रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर
1: रहे,
0: तो इसका बच्चा इसका पीछे सर एक इसका पीछे तो कुछ राज होगा ना
1: सर, राज
0: वो भी व्यक्ति ये भी व्यक्ति, एक तो आध्यात्मिक चिंतन है
1: बिल्कुल सर, आध्यात्मिक चिंतन और सबका भला सोचने की एक
0: भला सीखते ना, तो उससे लिए हो जाता है और उन लोग भी करेंगे तो हो जाएगा, इससे बड़ी
1: करेंगे तो हो जाएगा
0: सर, सभी वो नहीं करते हैं तब नहीं हो पाता, करेंगे तब होगा,
1: करेंगे तब तो होगा सर, वो करते ही नहीं उसके लिए सर समय निकालना पड़ेगा सर, मैं निवेदन करूं जैसे ये हमारे वहाँ पशु है पक्षी है, लोग मंदिरों के बाहर जाके हाथ जोड़ दे, आप ये कहेंगे मैं भी इसमें विश्वास करता हूँ धर्म में हूँ, पर मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जो पक्षी या जो पशु भूखा बैठा है या जो बीमार है वो हाथ भी जोड़िए, लेकिन उसके लिए लोग सर उसके लिए समय नहीं निकालते, हाथ जोड़ के खड़े रह जाते हैं, तब मुझे बड़ी सर पीड़ा होती है, मैं ये नहीं कहता कि वो कहीं से गलत वो सही है, लेकिन थोड़ा समय उनको तो दे रहे वो सर, इसके लिए मेरे कई बार इधर उधर थोड़ी सी बात
0: सर आती
1: है, तो सर ये दोनों काम साथ में करने चाहिए
0: तब जाकर पर्यावरण को
1: निश्चित रूप से हम
0: सर पर्यावरण मैंने इससे देखा, मैंने पहले इतना सोचा नहीं था, आपसे संपर्क में आया तो देख इतना वास्ट एरिया और हम कहाँ तक क्या कर रहे हैं और करना चाहिए अभी कोई कर रहे हैं, थोड़ा सोचने का मजबूर कर देते भाई
1: सर, त्याग करना पड़ेगा, आपने सर संस्थान में जाकर के पूरा त्याग किया तो सर त्याग करें, थोड़ा तो समय का त्याग करें, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो सर वही भगवान को हाथ जोड़ के दीपक करके घंटी बजा के वो कर दिया, मैं सर ये काट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सीधी सी बात कर रहा हूँ, उसके साथ ये सेवा भी करो तब वो फलेगा, नहीं तो नहीं फलेगा,
0: आवश्यकता है
1: तो सर इसकी विचार शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है जो
0: आपने आज जो विश्व स्तर पर इतना चिंतन चला बहुत सुंदर।

0: जी
1: आपका साथ आपने बताया ये विश्व कप से प्रयास
0: तो सर ये तो इसीलिए तो सर हम कह रहे हैं
1: करने के लिए सस्टेनेबल जो चीज है
0: बिल्कुल
1: बहुत आवश्यक है सर सर है ना तो उसको कैसे किया जाए उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हो रहा है सभी अपने अपना लेवल पे और जरूर प्रयास से हो रहा है
0: जागरूकता आएगी आप जैसे लोग दौड़ेंगे ऐसे संगठन काम करेंगे दूसरे लोग उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत अच्छा सुधार आ जाएगा सर यही एक तरीका
1: अच्छा दिशा चिंतन करें वो चिंतन
0: प्रतिफलित हो ग्राउंड पर प्रतिफलित आप जैसे ये सोचते हैं एक बार कि मुझे दौड़ना है मैं दौड़ रहा हूँ अरे भाई दौड़ोगे तो फायदा होगा दौड़ना है क्या प्रैक्टिकली दौड़ोगे तो शरीर को फायदा होगा आप मन ही मन दौड़ लोगे तो फिर कहाँ कैसे क्या होगा तो उस काम को करने की आवश्यकता उस काम को करेंगे तो अपने पास में चारों तरफ चीजें मौजूद है आशा है आप सभी विशेष रूप से प्रेरित होकर के खुद भी करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे धन्यवाद
1: सुंदर कार्यक्रम के लिए सुंदर प्रस्तुति और दिल जान और प्रेम का साथ आज पर्यावरण का साथ मैं तो कहूँगा भाई पर्यावरण का साथ हमारा प्रेम है स्नेह है आपका भी है हमारा भी है इस प्रेम का साथ और अपनापन होता है मेरा पर्यावरण माई एनवायरमेंट जैसे मेरा कहते हैं मेरा पर्यावरण मेरा परिवार मेरा पापा कहते हैं जैसे तो मेरापन में देने के लिए अच्छा लगता है अपनापन आता
0: है तभी
1: और
0: अच्छा
1: इसलिए पर्यावरण को अपना बनाइए अपनाइए और अपना सब कुछ परमात्मा तक पहुँचाइए है ना तब जाकर वो सार्थक हो जाएगा और चरित्र और चित्र
0: बिल्कुल
1: आपका चित्र देखकर लोग चेहरा से देखकर लगेगा हाँ कुछ देने वाला है तो जरूर हमारा ऐसे मुस्कुराते चेहरा रहे इन सुभावना का साथ हमें दीजिए इजाजत फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी समय सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आज स्वचिंतन का साथ साथ विश्व चिंतन में पर्यावरण का भूमिका और पर्यावरण स्पेशल में आज रखे बहुत अच्छा चुनकर लाए इसलिए बहुत मेहनत करते हैं लेकर आते हैं और हमें भी खुशी करा देते हैं धन्यवाद
0: सर आपका ये तो प्रेम है और समय की आवश्यकता है इसलिए मेहनत तो करना ही है
1: जी जी
0: जो जानेगा वो सबसे ज्यादा दौड़ेगा उसकी आवश्यकता है
1: धन्यवाद

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

मिलते हैं तब जब उसकी रहमत हो, उससे मिलने की तरकीब कहूँ गर तुम सहमत हो। तुम फूल ही हो इसमें नहीं कोई शक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, नहीं अब हक मुझको।

107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। मधुबन अनप्लग्ड यानी कि संगीत का वो सफर, यानी कि शेर व शायरी, क्रिएटिविटी और पंक्तियों का सफर। जी

0: जब एक गाना बनता है तो शब्द मोतियों की तरह पिरोए जाते हैं, बातें वही होती हैं लेकिन कहने का अंदाज इतना अलग होता है कि वो दिल में घर कर जाते हैं। और ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ पंक्तियां, ऐसी ही कुछ लाइंस आज आपको मिलेंगी कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में। और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आज हमारे समक्ष है एक ऐसी अतिथि, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने लेखन जगत में अपना नाम ही नहीं कमाया बल्कि ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जो प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ, हमारे समक्ष हैं डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया जी, जिन्होंने बीएससी की, फिर अंग्रेजी में भी उन्होंने पढ़ाई करी, हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट रही, पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। उनका शोध रहा हरिशंकर परसाई पर, लघु शोध और प्रबंधन शोध उन्होंने किया। कई प्रकाशन उनके नाम है, वैसे तो हम कुछ के नाम आपको जरूर लेकर सुनाते हैं, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, अदृश्य, मेरी तेरी, सबकी, मीरा को, व्यंग संग्रह है ये, कई पत्र पत्रिकाएं भी उनकी प्रकाशित हुई और इसके साथ साथ उन्होंने लेखन क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर फिल्म फेस्टिवल सम्मान हो, दुष्यंत सम्मान हो, रचनाकार आयोग द्वारा बिस्मिल्ला खां पुरस्कार हो, ऐसे कई अवार्ड भी उन्हें प्राप्त है। वैसे तो उनके करियर की लंबी व्याख्या है लेकिन चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में और जाने का आज अवसर हमें मिलेगा। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है अलका जी।
1: जी बहुत बहुत आभार, और ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि आज ब्रह्मा कुमारी के रेडियो मधुबन में मुझे ये अवसर मिला है। और बचपन से हम सुनते आए हैं और मैं 90s में एक बार यहाँ पर आई भी थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय बहुत से, हम जो मनुष्य होते हैं, जिज्ञासा तो हमारे भीतर होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत से जिज्ञासाएं थी तो मैं लगातार प्रश्न पूछती जा रही थी क्योंकि उस समय छोटी भी थी थोड़ी सी। तो वो जो दीदी थे तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर इतनी जिज्ञासा है, आप कहाँ रहते हैं? मैंने बताया मुंबई, बॉम्बे, तब तो बॉम्बे था
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर पर जाइएगा, और कुछ ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर कई बार परेशान भी हो जाते हैं, तो वो कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिज्ञासा और परेशानी दोनों थी और मुझे पता नहीं क्यों मैं, मेरे कदम उठ गए आपके जो मलाड में सेंटर है वहां उठ गए। और वहां पर फिर मुझे बहुत से प्रश्नों का उत्तर भी मिला और मेरे मन की परेशानियों का समाधान भी हुआ था। तो मैं लगातार कई बार गई लेकिन फिर बहुत सी बातें होती कि अगर आपने परिवार चुना है तो कुछ प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि वी कांट गो अगेंस्ट दैट। तो ठीक है, मतलब फिर मैं गई नहीं, लेकिन हाँ, मैं जो आपके सिस्टर बी के शिवानी जी हैं उनको तो सुनना किसको अच्छा नहीं लगता
0: जी, जी।
1: तो बहुत बार जब हम कहीं अटकते हैं ना तो हम जब उन सुनने लगते हैं तो हमको बहुत से प्रश्नों का समाधान मिल जाता है
0: जी।
1: और अभी शिव बाबा ने, पता नहीं उनकी क्या मंशा है, मुझे नहीं मालूम है, फिर से उन्होंने बुलाया और यहाँ पर भी जो आपका आर्ट एंड कल्चर का, आप ये जो 3 दिन का पूरा कॉन्फ्रेंस होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन, तो उसमें क्योंकि विषय इतना अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको समाज को बचाना है, देश को बचाना है और विश्व को बचाना है तो परिवार को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो विषय था और मेरा विषय था संस्कृति, संस्कार और परिवार के मूल्यों के संवर्धन की कला, तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसे मुझे ये लगता है कि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं और जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं। तो खैर, ये तो मैंने बताया कि स्पीकर यहाँ आई थी लेकिन आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
0: वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में लेकिन मैंने आपकी बहुत सुंदर प्रोफाइल जो पढ़ी उसमें आप ये भी लिखा था कि आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग की।
1: सॉरी,
0: आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग।
1: जी जी, हाँ।
0: जी, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं।
1: जी जरूर। क्रिएटिव राइटिंग, देखिए क्या होता है, जो लेखक होता है ना, नजर और नजरिए का फर्क होता है। अब सामने ये पेड़ दिख रहा है मुझे, है ना, मैं भी देख रही हूँ, कोई और भी देख रहा है, किसी को सिर्फ लगेगा कि उसमें पत्तियां हैं, लेकिन एक जो लेखक होता है उसमें एक अलग दृष्टिकोण से देखता है, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। तो बहुत से लोग कोविड में खास तौर पर बहुत, क्योंकि कोविड में लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे, अंतर यात्रा कर रहे थे और कई लोग जब बहुत परेशान थे तो कई लोगों ने हमसे संपर्क किया
0: जी.
1: मेरे साथ में दिनेश शाकुल जी हैं जो चंद्रगुप्त बनते थे चाणक्य सीरियल में और काफी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं
0: जी.
1: तो कई लोगों ने हमसे कहा कि लिखा कैसे जाता है, हम लिख तो रहे हैं. तो फिर हमने क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो शुरुआत करी.
0: ओके.
1: और उसमें हमने कहा कि जो कविता क्या होती है, कविता में अलग अलग भाव होते हैं, नाद होता है और उसमें किस तरह से आप उसको लिखते हैं. तो फिर हमने ये काफी सारी पूरा पूरा सिलेबस बनाया था. 5 मॉड्यूल्स थे उसके, 5 मॉड्यूल्स में हमने वो सिलेबस बनाया था.
0: अच्छा.
1: और उसमें हम उनको वो पूरी क्लासेस लेते थे और उसके बाद उनको हम होमवर्क देते थे. तो कई लोगों ने उसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखना सीखा. और क्योंकि मैं एक महिला काव्य मंच है, अंतर्राष्ट्रीय है, जिसके फाउंडर है नरेश नाथ जी, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र मकाम का अध्यक्ष बनाया. तो उसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी और उसमें आरुषि जी क्या है कि मन से मंच तक.
0: अच्छा.
1: है ना
0: जी.
1: तो ये जो आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग और मन से मंच तक, तो मन में बहुत से लोगों के भाव होते हैं ना. आप अनुभूति को जब अभिव्यक्ति में ढाल देते हैं, उसको उतार देते हैं कागज के कैनवास पर, तो वो कविता, कहानी, गजल कुछ भी बन जाती है. तो इसी तरीके से जब बहुत सी महिलाएं आई जिनको लिखना नहीं आता था और वो केवल कुछ कुछ भी है तो किसी की पढ़ देती थी, फिर हमने उनको थोड़ा सा और गाइड किया. तो इस तरह से जो क्रिएशन, क्योंकि देखिए कलाकार तो क्रिएशन करता है.
0: बिल्कुल.
1: और यहाँ पर एक चीज मैंने बड़ी अच्छी सुनी कि कलाकार यानी जो कल को आकार देता है.
0: क्या बात है.
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो हम ये नहीं कहते कि हम सचमुच पूरा कल को आकार दे सकते हैं, एक चेतना जरूर पैदा कर सकते हैं. तो एक क्रिएटिव राइटिंग के क्रिएशन कैसे था, राइटिंग तो है लेकिन क्रिएशन क्रिएटिव कैसी हो, रचनात्मकता कैसे आए उसमें, तो ये जो है हमने पूरा मॉड्यूल बनाए हैं और उसको लेकर के हमने पूरी कविता के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग की. इसी तरह से कहानी पर भी हम मॉड्यूल बना रहे थे लेकिन किसी अच्छा. कारण से छूट गया. क्योंकि मैं कहती हूँ कहानी एक घटना से नहीं होती. जैसे जब हम छोटे थे, मैं बहुत छोटी उम्र से लिख रही हूँ, पहले तो मैं बता दूं 6-7 साल के लिए जब से मैंने कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिया था. उसके रीजंस भी हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी.
0: बिल्कुल. खैर जाना चाहेंगे.
1: तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक घटना कहीं देखी, दूसरी घटना कहीं देखी, तीसरी घटना कहीं देखी, तो हम जब सबको सिंक्रोनाइज करते हैं, क्योंकि जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं होती है. उसमें आप यथार्थ के साथ में कल्पना का भी उसमें सम्मिश्रण रहता है.
0: बिल्कुल.
1: तो ये जो होता है, ये तो क्रिएटिव राइटिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड और उसमें ये वाली बात है. और एक बात बहुत आवश्यक है कि क्रिएटिव राइटिंग कोई मशीनी तो वो होती नहीं. उसमें आपको भावनाओं में जब तक पगी नहीं हो ना, तो उसमें वो बात नहीं आ पाती है. तो मुझे लगता है कि हर जो रचनाकार है उसके अंदर भावनाएं तो होनी चाहिए और वो अपने दुख के साथ दूसरे के दुख को भी उसी तरह से अनुभव कर सके,
0: संवेदनशील
1: कर सके. बिल्कुल. तो क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और जिंदगी हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, तो उस जिंदगी को जब आप रचनात्मकता में ढालते हैं वो क्रिएटिव राइटिंग.
0: क्या बात है. कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है आपने.
1: थैंक यू.
0: आपने फिल्मों के लिए लिखा है, आप रेडियो की बात करें या फिर कविताओं की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, कहानी, मतलब बहुत बहुत कुछ लिखा है आपने. आपके कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं. कुछ एक किसी प्रकाशन के बारे में आप जरूर बताएं. जैसे मान लीजिए, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल लगा, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो इसके पीछे का क्या कहानी है, ये कैसे लिखा या क्या, उसके बारे में कुछ
1: मैं बताती हूँ. एक तो आपने रेडियो की बात की, उस पर फिर मैं मुर्दे पे आऊंगी. तो रेडियो लेखन के लिए मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, तो एक बार किसी ने कहा कि बम्बई के में संयुक्त परिवारों पर आप कुछ एक लिखो.
0: अच्छा.
1: तो मुझे किसी ने चैलेंज किया कि आपको बॉम्बे में संयुक्त परिवार मिलने वाले ही नहीं है. लेकिन बोलते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ. और मुझे तो करना था. आप मानेंगे नहीं आरुषि, जब मैं जब ढूंढने लग गई, 13 परिवार की जगह मुझे इतने परिवार मिलते चले गए. और वो मैं आज भी गूज़बम्प्स आते हैं मुझे जब मैं वो अनुभव शेयर करती हूँ. तो जिनके भी परिवार में गई, तो क्या होता है ना कि जैसे एक जगह अगर जब इकट्ठा होता जाता है पानी तो सड़ने लगता है. इसी तरह से ना परिवारों में भी कई कई बार कुछ कुछ भावनाओं में एक दूसरे से क्लैशेस होने लगते हैं. तो लेकिन जब मैं उनसे मिली, और एक परिवार अंधेरी का मैं आपको बताती हूँ, दुबे परिवार था, तो वहाँ बड़े भाई भाभी ने ही उनके पूरे मतलब छोटे भाई बहनों को बड़ा किया था और बहुत अच्छे से सारा कुछ उनका किया था. तो जब हमने ये किया तो वो लोग लिटरली रोने लग गए. और मुझे गले लगा लिया और उनने कहा कि जैसे एक विरेचन होता है ना जिसको कैथासिस कहते हैं, एरिस्टोटल ने जो दिया था, कि उन्हें कहा हमारे अंदर की सारी जो गलत भावनाएं आने लगी थी वो सब खत्म हो गई. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से एक हमने जो काम किया. तो रेडियो लेखन में एक ये अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा. और ये रापा सीरियल अवार्ड होता है, रापा यानी जो टेलीविजन और दूरदर्शन में जो बेस्ट होता है, तो उसको बेस्ट रापा सीरियल अवार्ड भी मिला था.
0: क्या बात है
1: जी,
0: क्या बात.
1: अब आपने मुझसे मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो आपको जैसे शीर्षक बहुत अच्छा लगा, तो दरअसल ये एक मेरे एक दोस्त हैं, तो वो पहले फिल्मों में एक्टिंग करते थे, अब वो बिहार में कहीं रहते हैं. तो क्या हुआ था कि मेरी कहानी पढ़ के उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि मुझे बहुत अपनी अपनी सी वो कहानी लगी, बहुत मैं कनेक्ट हुआ हूँ उससे. तो फिर उनसे बातचीत होने लग गई. तो जो क्योंकि बॉम्बे में तो बॉलीवुड और बॉम्बे की लाइफ, तो बॉम्बे या तो मतलब ऐसे कहते गरीब से गरीब को भी भूखा नहीं सुलाता, अमीर से अमीर को भी. तो बॉम्बे एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिसको हर कोई हल करना भी चाहता है, जिसमें जाकर फंस भी जाता है. तो ये हुआ कि वो रवि नाम है उनका, तो उनसे मेरी फिर अच्छी बातचीत होने लग गई. और वो फिल्मों में सीरियल्स में सब स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्मों में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बन गए तो बन गए, नहीं तो बहुत खत्म भी हो जाते. खैर, तो वो जो बताते थे, फिर उनकी कविता थी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, और अच्छा। तो इस तरीके से तो वो फिर बाद में उनसे ही, क्योंकि उनकी लाइफ थी, तो वो स्ट्रगल करते हुए दो दोस्तों की कहानी है. फिर अंत में ये होता है कि जो दो दोस्त हैं, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को संभालता है, फिर दूसरा दोस्त जब परेशान होता है तो ये संभालता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो कुछ ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है और रूम से चला जाता है. उस समय पेजर हुआ करती थी जब मैंने ये कहानी लिखी थी. तो पेजर पर ये कबीर जो है पहला वाला दोस्त, वो आदित्य को मैसेज करता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जो धारा के विरुद्ध चलकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं. तो अब मैं ये शीर्षक कैसे है, देखिए कई लोग कहते हैं मुर्दे मतलब तुम्हारे शीर्षक मुझे समझ नहीं आए, जो समझ सकता है जैसे आपको अच्छा लगा. अब आप मुझे बताइए कि जो जीते जी मर जाएगा वो तो मुर्दा हो गया ना, और जीते जी जिसके अंदर जिजीविषा है, एक संघर्ष की कामना है, तो वो कभी मुर्दा नहीं हो सकता.
0: बिल्कुल,
1: इतिहास उनका ही लिखा जा सकता है,
0: और हार नहीं मानता
1: है ना, उसका इतिहास तो कभी नहीं लिखा जाएगा. तो ये बात है, और यही मैं अपने जिंदगी में भी कहती हूँ कि हार कभी मत मानो, है ना, जैसे एक वो है ना कि हार के आगे जीत है. तो यही वाली बात है कि अपने आप को हारने नहीं दो, और खास करके यहाँ आने के बाद इस डिवाइन में, कि मतलब जब हम अपने आप से संवाद करते हैं, परमात्मा से खुद को जोड़ते हैं और अपने असत्य को पहचानते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं हार तो कहीं है ही नहीं. तो कुछ इसी तरीके से कि इतिहास आप लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को एक हमेशा कर्मठ बना के रखिए.
0: जी बिल्कुल, ये जब कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं तो उसको जीवित रखना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे अंदर की आग है, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं. मैं एक और प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि आप कई आपने उपन्यास भी लिखे, कई कहानी संग्रह हैं, तो कहानियां लिखने के लिए अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है, कोई युवा है जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ टिप्स दें, कुछ ऐसी बातें जो मदद करें, जैसा आपने कहा ना अनुभूति को अभिव्यक्ति मिलाने के लिए, आपकी ओर से कुछ ऐसे,
1: मतलब आपका प्रश्न है कि कौन सी बातें कहानी लिखने में मदद करें.
0: जी जी जी,
1: हमारा जो मैका है वो कटनी एमपी में है, और वहाँ एक फार्म हाउस है हमारा. तो मेरे पापा जो थे उन्होंने पूरी अपना सारा एकदम रात से लाइफ छोड़ के, उनको फार्मिंग बहुत पसंद आई, तो वो हम मतलब 400 एकड़ जमीन थी, बंगला था, तो हम लोग वहाँ रहते थे. तो वहाँ जो गांव की लड़कियां आया करती थी उनसे हमारी दोस्ती हो जाती थी. अच्छा। और वो लड़कियों को देख करके ना मेरे जहन मतलब वो अंकित होती चली गई. उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि मैंने छोटी उम्र में कहानी भी लिखनी शुरू कर दी थी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक शिवरात्रि नाम की लड़की थी, हाँ उसका नाम ही शिवरात्रि था, और आज भी मुझे वो वैसे की वैसे याद है, एकदम लंबी छरहरी सांवले रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में अंकित हो गई है ना. इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक गाल बाबा थे, तो उनकी बेटी का नाम था अमसा था, अमसा. अब आप बोलेंगे अमसा कोई नाम होता है ना, है ना. अब वो उसका रीजन क्या था कि मेरी दीदी ने उनकी बेटी का नाम रखा था अंशा.
0: अच्छा।
1: अब अंशा तो वो नहीं बोल सकते थे तो अमसा बोलते थे. तो एक करेक्टर मेरी अमसा बनी, एक करेक्टर मेरी शिवरतिया बनी, और फिर उनकी कहानी दूसरों कहीं से आए. जैसे जैसे मैंने बताया आपको कि कटनी की हूँ मैं, तो कटनी में ना चूने के भट्टे बहुत होते हैं, तो चूने के भट्टों में जो लोग काम करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ उनको टीबी बहुत हो जाती है, तो वो जो सारी जो चीज़ें थी वो, उसके बाद में रेलवे लाइन पर जैसे गरीब लोग हैं वो कोयले बिन रहे हैं, कोयले के जो वैन निकलती है ना कोयले गिरते हैं, तो वो कोयले बिनते बिनते ट्रेन से कट जाते हैं, कई बार उनको नहीं पता चलता था। तो ये जो मेरा जो एकदम मासूम सा मन था ये बहुत मुझे परेशान करती थी ये चीजें, और वो फिर सब मेरी कहानी में ना मतलब एक चीज वहां में जैसे बताया ना एक घटना ये एक घटना वो, तो ये जैसे कि जो मतलब मेरी कहानी में अमसा जो है वो गांव से शहर आती है, फिर वो इस तरह से उसकी और वो अमसा से मिलती है ये जो राइटर है, और वो चूने भट्टे के वहां जाती है, तो वो बोलती है कि दीदी हम ना कक्का भाई, क्योंकि मैं वहां की तो मुझे भाषा भी आती, दीदी हम कब ना चूने के भट्टे में काम करीबे। तो वो फिर वो बोलती, लेकिन जब दूसरी बार जाती तो देखती कि वो अमसा खांस रही है बुरी तरीके से, तो वो बोलती कि तुमको क्या हो गया, तब वो कहती कि दीदी हम कहे थे ना कि हम अम्मा वाला काम कभी ना करेंगे, लेकिन हमारे घर में खाने को नहीं बचा, दद्दा भूखे मर रहे हैं, दीदी भूखी मर रही, तो क्या करें, काम तो करवे को पड़ा थे। तो वो सारी जो चीजें थी, तो वो मतलब वो मैंने वो भाषा वहां की, क्योंकि बचपन में उनके बीच में जाते थे, तो ये ना जो लेखक होता है ना वो बहुत ज्यादा ग्रहणशील होता है और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है, और संवेदनाएं कहीं और उस पर जो संवेदनाएं होती है ना, तो कहते हैं ना जैसे कि हीरे पॉलिश कर दिया है, तराशती हैं संवेदनाएं, इस तरह से कहानियां हमारी बनती हैं। जैसे आपसे ही मैं बात कर रही हूँ, अब आपकी स्माइल पर ही मैं कुछ कविता लिख दूंगी तो ये तो देखिए क्या होता है कि नजर की बात है,
2: नजर और नजरिया जो आपने कहा,
1: बिल्कुल हाँ।
2: जैसा आपने कहा था कि आपने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था, तो क्या ऐसी कहानियां थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या फिर क्या कोई ऐसा क्षण था जिसने आपको इंस्पायर किया, या कहां से लिखन की शुरुआत इतनी कम उम्र में कैसे हो?
1: क्या हुआ था ऋषि जी, कि बचपन में मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, अक्सर मैं साक्षात्कार में ये बात तो आती कि लोग पूछते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया, क्या किसी ने जैसे आपने पूछा क्या किसी ने इंस्पायर किया या कोई ऐसा क्षण आया, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। तो मतलब हम लोग पांच बहन थे और मैंने अपना बहुत दीदी लोगों ने मेरा नाम जल्दी लिखा दिया था, तो मैं मम्मी पापा फार्म हाउस में रहते थे, तो मैं दीदी लोग के साथ यहाँ रहती थी और मैं बहुत छोटी सी थी, तो मेरी दीदी जो थी सबसे बड़ी वो खुद 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और वो मेरे लिए माँ समान थी कि मम्मी फार्म हाउस पे रहते थे मम्मी पापा। तो उसके बाद मतलब उन्होंने ही मुझे डांस वगैरह, हम लोग का पिक्चर हॉल हुआ करता था तो डांस वगैरह करती थी, तो उनने कहा कि इसको डांस सिखाया जाएगा, तब तो लिखने जैसा कुछ सोचा भी नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब 5-6 साल की बच्ची क्या सोचेगी ना उस वक्त। तो मैं क्या करती थी, पिक्चर हॉल से आती थी, फिर वो लैट लगा के फिर गा के अंदर, तो बोले करती क्या अंदर ये, तो दीदी लोग ने देखा तो इसको डांस सिखाया जाएगा, और वो ही गा के सिखाते थे मुझे, क्योंकि क्लासेस नहीं थी, कथक बेस है लेकिन मेरे डांस का। तो खैर फिर वो दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई, 19वें साल के पहले ही मतलब कहते हैं डाउरी डेथ थी उनकी, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मतलब आज भी कई बार आंसू आ जाते हैं उनकी बात करते हुए मेरे आंखों में। तो उनसे जो छोटी दीदी थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है ना याद करके लिखा करो, और डांस शशि दीदी नाम था शशि, तो उनने कहा कि शशि को मतलब उनका मन था कि तुम डांस करो, तो मेरी जो प्रभा दीदी वगैरह थी उन्होंने मुझे लगातार डांस, तो मतलब मैंने कई सारे डांस में भी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बहुत सारे जीते हुए हैं, सरस्वती माँ की कृपा है जो उन्होंने मुझे कला दे करके भेजा। और मैं कहती हूँ लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा, अब बोलती हूँ क्योंकि तब तो मालूम नहीं था मुझे। तो मैं जो भी मन में कुछ भी आता था पेंसिल से लिखती जाती थी उसको, फिर धीरे धीरे टीन एज की जब हुई तब तक मैं कहानियाँ लिखने लगी थी जी। तो उस टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन था सारिका, धर्मयुग अगर आपने सुना होगा सारिका, ये दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन हुआ करते थे, तो सारिका में मेरी पहली कहानी छपी नवांकुर विशेषांक में। उसके बाद तमाम जगहों से पत्र आने लग गए और मंगाई जाने लग गई कहानियाँ, और मतलब उस समय मुझे अब बहुत तो सेलिब्रिटी बन गई, इतने सारे लेटर्स के बीच में छोटी सी अलका बैठी हुई पत्र पढ़ रही है सारे। खैर फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया आकाशवाणी जबलपुर और फिर तमाम जगह, फिर बॉम्बे भी गई, तो मेरे साथ में अच्छा ये हुआ क्योंकि मेरे पति वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन वो मेरे लेखन को बहुत पसंद करते रहे हमेशा से, तो उन्होंने कहा कि तुम लिखना बंद मत करो, और मुझे कुछ वहाँ पर जनसत्ता में सब रंग उनका आता था। तो शादी के बाद भी मेरा लेखन कभी ना रुका नहीं, तो यही वाली बात है कि आप दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या दुख में अपने आप को खत्म कर दीजिए, तो दुख ने मुझे बनाया है जी, इस तरह मैं लिखने लग गई, शब्दों में ढाल दिया अपने दुख को मैंने।
2: ये जो सेंटेंस है, ये दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या खत्म कर दीजिए, यही से वो जो आपका जो पहला टाइटल है शायद वो सिद्ध हो जाता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते. इतिहास वो लिखते हैं जैसे आप जैसे लोग जो जिन्होंने दुख से अपने आप को बना लिया. मुझे लगता है लाखों लोगों को दुख से निकालने के निमित्त बन गए.
1: जी,
2: क्या इसके लिए फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ मुझे और ट्रेनिंग करनी है या और कहानियों को समझना है? किसको, मतलब आप पढ़ते किनको थे या कौन आपको बहुत पसंद, कौन किसका लेखन आपको बहुत पसंद था?
1: जैसे चित्रा मुद्गल जी का बहुत अच्छा लगता है मुझे. मधु कांकरिया इस समय जो है हमारे समय की, मतलब हम हमारे से बड़ी पीढ़ी की हैं, लेकिन मधु कांकरिया जी बहुत अच्छा लिखती हैं. उसके अलावा जैसे कि हरिशंकर परसाई जी को तो मैं खैर एक तरह से उनके लेखन को जीती हूँ. ज्ञानरंजन जी भी मुझे बेटी जैसे ही मानते थे और मेरा एक सौभाग्य रहा कि मुझे इन सब से मिलने का मौका मिला है. मुक्तिबोध को मैंने पढ़ा है, अज्ञेय को मैंने पढ़ा है. तो कई बार जैसे बाबा नागार्जुन की कुछ कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं. इसी तरह से अमरकांत मुझे बहुत पसंद थे, उनकी जिंदगी और जो क्या बहुत सारी. तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे एक कोई साहित्यकार पसंद है. कभी किसी की कुछ चीज़ अच्छी लगती है, कभी किसी की कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है. तो और आपको ना वो रास्ता जैसे बशीर बद्र उनकी आप शायरी सुनेंगे कि आप सुने कि हम बचपन में थे ना तो वो रखते थे उजाले अपनी यादों के, हमारी साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए. और बहुत सारे हैं कि मतलब उनकी मतलब बार बार हम उनके बहुत सारे शेर हमें याद आते हैं. तो जो भी अच्छा मिलता है, और कई बार ये भी होता है आरुषि जी की बहुत नाम नहीं होता है किसी का, लेकिन अचानक आप उठा के पढ़ते हैं तो अरे इतने ये लिख दिया, ये मैंने क्यों नहीं लिखा. तो ये होता है. और जैसे कि कई बार ये होता है कि जैसे ना जैसे अगर आप बोलेंगी तो मैं अपनी एक आध आपको रचना भी सुना दूंगी.
2: जी मैं एक्चुअली वो पूछने ही वाली थी कि कुछ पंक्तियां अगर आप सुनाएं अपने लेखन की हमें भी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा.
1: तो पहले तो मैं बताती हूँ कि ना बता जैसे मतलब हमेशा मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं और मैं ना मैंने हम मुझे लगता है कि आपका भी मुझे लग रहा है आपके अंदर का भी बच्चा हमेशा जिंदा रखती है आप. तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए. तो मेरे पति हमेशा कहते हैं मेरे मम्मी पापा ने तुमको बड़ा करके नहीं भेजा. तो मैं कहती थी कि कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए. बड़े होना मतलब झूठ बोलो शान से मक्कार हो जाओ. क्या करें इस परिभाषा पे हम खरे नहीं हुए तो कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए.
2: वाह वाह वाह.
1: तो क्या हुआ कि मेरी बेटी अब तो बड़ी हो गई है. तो जब वो 5 साल की थी ना तो एक बार मेरे साथ जा रही थी. अच्छा वो वैसे मम्मा बोलती है लेकिन जब वो बहुत उसमें प्यार में होती है ना तो माँ बोलती है मुझे. और मुझे बहुत मतलब तो मैं लगती हूँ कि ना और सचमुच मुझे लगता है कि जो रिश्ते आपको जो खुशी देते हैं ना वो कहीं नहीं मिलती है. और मैं आपको दो कविताएं इसलिए सुनाऊंगी कि आपने अगर परिवार चुना है तो पहले मैं वो सुनाती हूँ फिर मैं अपनी बेटी पे.
2: प्लीज प्लीज जरूर जरूर
1: जी. तो क्या सपने बन गए बॉन्साई. कहते हैं कुछ लोग कि स्त्री जब बनती है माँ करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा बहुत छोटा मारती जाती है अपने सपनों को खुद बेमौत या हो जाते हैं उसके सपने बौने बन जाते हैं क्या बॉन्साई बन जाते हैं बॉन्साई. सोच का बवंडर उठा अभी तर उसके क्या ये सच उसका भी है क्या ये सच उसका भी है हो जाने दिया है उसने अपने सपनों को बौना बना दिया हरे भरे वृक्ष से बॉन्साई. विचार मंथन चल पड़ा अंतस में अगर ऐसा होता तो मिट चुका होता कब का वजूद उसका. उसने टटोला खुद के वजूद को महसूस किया अरे वो तो वहां है मतलब उसका वजूद तो वहां है. बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका एक कोस्त्री विमर्श की बातें तमाम पर झेलती है यातनाएं भी तो क्या छद्म है उसकी बौद्धिकता लेखन में विरोध के स्वर है मात्र दिखावा. तर्कों की मथानी से फिर मंथन वो करती है तब सांसारिक सच की सोच नवनीत से उतरती है पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है. तो फिर शायद जायज है समझौते भी. यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है अपने वजूद से पहचानी जाती है यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बौना. जिजीविषा के पानी महत्वाकांक्षा की खाद और आत्मसम्मान की धूप से बचाया है उसने अपने सपनों को बॉन्साई बनने से. तो अब मेरी बेटी मेरे साथ जा रही थी एक बार 5 साल की थी तब वो तो ऐसे आंख बंद करके एकदम बैठी थी मैं उसको देख रही थी. अचानक उसने मुझे जो बोला तब ये कविता निकली. क्या बोला था इसमें आएगा. सुबह की सुहानी बयार सी है वो अल सुबह की शीतल ओस सी है वो उसे देखकर लगता है ऐसे भर ली हो भोर की भीनी खुशबू भीतर जैसे। उसका मीठा बोसा लगता है यूं सहला गया ठंडी हवा का झोंका जूं। चूमती जब मासूमियत से आंखों को मेरी, कितना नाजुक पिघलता सा है वो एहसास। उस रोज सुबह सुबह संग मेरे वो निकली नन्ही परी ने आंखें बंद कर ली अपनी, खो गई एक प्यारी सी दुनिया में। एंजल सी चमकती चेहरे पे उसके, अपनी छोटी छोटी बाहों का घेरा मेरे गले में डाल, आंखों में सितारे भरकर कहा उसने, माँ

0: माँ माँ मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है। अन्याद नाथ सब बज उठा अंतस में मेरे मंदिर में बज गई हो घंटियां जैसे। कैसे महसूस कर पाती है मेरी नन्ही सी कली सुबह की पावन खूबसूरती। कितनी मधुर है ये अनुभूति। बड़े प्यार से फिर वो मुझसे सटी सीप सी पलकें बंद कर अपनी। झर झर झर झर झर झर झरते झरने सी आवाज में कहा उसने, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना माँ, है ना माँ, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना। खिल उठी भीतर मेरे खुशियों की बीतियां। कितनी प्यारी होती हैं बेटियां आगोश में अपने भर कर। पेशानी उसकी चूम कर कहा मैंने, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है, तू खुद सुबह सी लगती है।
1: क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। मतलब सच में ये जो आपने पंक्तियां कही हैं, हर माँ सुनेगी तो अपनी बेटी को, अगर वो उनसे थोड़ा सा भी दूर है तो मुझे लगता है वो उनके करीबी पल, वो उनकी आंखों के सामने वैसे तो रहते ही हैं लेकिन वो आंखों में आंसू बन के बह जाएंगे।
0: सही बात,
1: इतने खूबसूरत हैं ये पंक्तियां। आपकी बेटी क्या कहती है जब वो आपकी कविता सुनती है?
0: मेरी बेटी अभी मतलब बेटा भी है मेरा, अभी जॉब कर रहा है और बेटी अभी लॉ कर रही है और फोर्थ ईयर में है। और अभी मैं आपको बताऊं कि पता नहीं, मतलब कई बार हमको लगता है कि शायद पता नहीं वो उतना प्यार करती है, लेकिन अभी इधर में भोपाल में किसी कार्यक्रम से गई थी, यहाँ पर हूँ मैं 26 तारीख से, तो वो मुझे बहुत मिस कर रही है तो रोज फोन करती है। तो मुझे लग रहा है कि काश मैं जल्दी चली जाती। खैर तो वो ना लॉ कर रही है। अच्छा एक बात अच्छी कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखती है, मुझसे अच्छा। बेहतर लिखती है और वो बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कर लेती है। तो मैं कहती हूँ कि उसका नाम, वैसे हम लोग घर में मिष्टी बोलते हैं, वैसे उसका नाम शरण्या है।
1: अच्छा।
0: तो कई बार ना वो जब छोटी भी थी ना तो जैसे मैं उसको लोरी सुनाया करती थी तो वो मुझे अपनी गोद में सुला करके वैसे लोरी गाती थी। तो मैं कहती थी कि बेटी माँ बन जाती है तो मतलब ये होता है। तो अभी भी ना कई बार मम्मा ऐसे नहीं करना, मम्मा वैसे करना है, तो मैं कई बार मुझे लगता है, और मैं भी उसको बोलने देती हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ वो मेरी माँ बन करके मुझे उस तरीके से वो कर रही है। तो बड़ी प्यारी सी नाजुक सी है और अच्छा लिखती है और लॉ कर रही है। और उसका शुरू से ना बहुत ये मन था कि मैं इसमें रहूँ, मतलब जो जासूसी जो सीरियल होते थे,
1: हाँ,
0: इस तरह के जो होते थे वो देखा करती थी, तो उसको उसमें मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था। तो अच्छा। उस तरीके से वो अब वो लॉ कर रही है।
1: क्या बात है। अच्छा इसीलिए वो उन्होंने वो प्रोफेशन बनाया उसको और समाज की मदद के लिए, जैसे वो एक उसको इंटरेस्ट को भी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। क्या बात है। तो वो क्या करते हैं, तो जब आपके घर वाले आपकी कविताएं सुनते हैं तो क्या आपको फीडबैक देते हैं, कैसा लिखा है ये कहते हैं, या क्या महसूस हुआ, कैसा, मतलब पहले, सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो किसको सुनाते हैं आप?
0: आपको बताऊं, मैं सबसे पहले अपने पति को सुनाती हूँ।
1: अच्छा,
0: ठीक है। वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मैंने देखा कि साहित्य की समझ उनके बहुत अच्छी है। और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी अभी जैसे बोल के बता रही हूँ आपको, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोला कर
1: जी।
0: तो मुझे कहते कि थोड़ा ना थम थम के आहिस्ता
1: आराम
0: बोलो, है ना। तो उन्होंने मुझे एक तो ये सिखाया, दूसरा वो कहते थे कि तुम्हारा जो फोर्टे है वो तुम्हारी भावनाएं संवेदनाएं हैं, तो तुम अपने किसी के बोलने से ना उसको बदलो नहीं। और वो कई बार मुझे कहते नहीं ये चीज ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो मैं उनको बताती हूँ। अच्छा कई बार ये भी होता था कि मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बता देती थी तो पता चलता था थोड़े दिन में मेरी चीज उनके नाम से आने लग गई। ये बहुत होता है आरुषि जी। मेरी तो आपको बताऊँ ये कविता है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है, द्रौपदी तुम्हें उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, नहीं आएंगे अब कोई कृष्ण, उसको चुरा के लोगों ने कर लिया, सुनो द्रौपदी श्रेष्ठ उठा लो अपना आएंगे गोविंद। ये मैंने लिखी थी कविता।
1: अच्छा, उसमें एक दो शब्द बदल के किसी
0: बदल
1: ने
0: के, और ये मतलब एक मिनिस्टर है, नाम नहीं ले रही मैं यहाँ रेडियो पे, एक मिनिस्टर है उन्होंने, फिर एक और, तो तमाम उसको बहुत सारे राजनेताओं ने उसको कोट किया। तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा आप लिखते हो, आप इतना अच्छा लिखते हो, आप उसके लिए, तो मेरे पास में मेल है वो, जब मैंने पहले लिखी थी भेजी थी पेपर में छपी हुई थी। अच्छा मैं एक और काम किया करती थी उस कविता को, हम जो जाते थे हम मार्शल आर्ट वालों को लेकर के जाते थे, तो मार्शल आर्ट वाले जो थे वो वहां पे मार्शल आर्ट सिखाते थे लड़कियों को, एक मेरे साथ वकील जाते थे मेरे दोस्त, और मैं एक कविता गाती थी बोलती
1: अच्छा,
0: थी। तो हम पूरी लड़कियों को, मैं कहती थी कि आप लड़कियों को इतना ट्रेन कर दो कि दो चार लोगों को से अपने आप को सेफ तो कर सके वो,
1: बिल्कुल।
0: तो ये मैं, मेरा ये पूरा का पूरा मोटो था। लेकिन खैर उसके बाद मेरे एक सीरियल को मेरा, मैंने लिखी थी कहानी तपस्या वाला था, वो क्या था तपस्या थी उस सीरियल में, अब मैं सीरियल का नाम पता नहीं कैसे अचानक से अभी बात करते, तो उस पर सीरियल बन गया और वो मेरी कहानी की चोरी थी। तो अच्छा। खैर मुझे फिल्म राइटर एसोसिएशन में मुझे मेरे फेवर में डिसीजन भी आया, पर बहुत कुछ ऐसा हुआ, पर ठीक है क्या किया जा सकता है, तो बहुत कुछ होता है। लेकिन और भी जैसे कि मैं, अगर आप बोलेंगी तो आपको मैं एक दो चार शेर सुना दूं, अगर आप बोले तो।
1: जरूर जरूर, और शेर भी सुनना चाहेंगे, और साथ में जो आपने कहा ना कि लड़कियों को इतनी तैयार हो जाए, इतना मोटिवेट हो जाए कि वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके, हाँ। तो अगर कोई ऐसी भी कविता हो तो भी हम जरूर सुनना चाहेंगे अगर आपको याद।
0: जैसे कि मैंने वो जो द्रौपदी वाली थी ना, कि मतलब सुनो द्रौपदी शेर उठा लो, कि मतलब द्रौपदी अब जगह जगह पुकार रही है, लेकिन मतलब अब उसको खुद को ही सशक्त बनना होगा। तो ये एक तो है, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि जैसे दूसरों को भी, कि मतलब हम कहते हैं कि अपने दिल और जान में रखना, नाम मेरा भी ध्यान में रखना, मुफलिसों को ना दो चांद तारे भले फाके उनके ध्यान में रखना, कि भाई आपके मन में एक दया भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने किरदार, ये देखिए जैसे कि अपने किरदार को बहुत मजबूत इस बदलते जहान में रखना, ऐसे नहीं कि आप बह गए धारा के साथ में। तो मेरा शीर्षक भी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, कि आपका अगर किरदार मजबूत है तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता है, कि इस बदलते जहान में रखना। तेरे कपड़ों पे जो है गर्दे सफर, कामयाबी की शान में रखना। कई लोग कैसे होता है ना कि जब बड़े बन गए तो भूल जाते हैं, आप अपनी जमीन से हमेशा जुड़े रहें। तो ये मैं कहती हूँ कि तेरे कपड़े पे जो है गर्दे सफर, कामयाबी की शान में रखना। हमेशा याद रखो कि हम कहाँ से उठे, कहाँ पहुंचे हैं, और तुमको आकाश है छूना अगर, तुमको आकाश है छूना अगर, पंख अपनी उड़ान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना। और ये जो आपने कहा कि मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम इतना मीठा बोलती हो कि मतलब हम तो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैंने कहा नहीं, वो ऊपर वाले ने दे के भेजा है। तो ये शायद इस तरह है कि सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, लुत्फ ऐसा जुबान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना। और कभी कभी होता है ना कि हम बहुत दुखी हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं, तो अब जैसे अब तो बाबा है वो कोना, हमको कभी लगेगा तो हम बाबा को स्मरण करेंगे, तो कि रो सको जहां पे छुप छुप कर, रो सको जहां पर छुप छुप कर, ऐसा गोशा मकान में रखना, ऐसा कोना मतलब गोशा, ऐसा गोशा मकान में रखना। और वो गोशा आध्यात्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये कि कम नहीं है, हालांकि मैंने अलका अपना इसमें तलफ़ुज़ जो होता है मकता जो कहते हैं, लेकिन मैं इसको भी बदल देती फिलहाल यहाँ की, कम नहीं है किसी से कोई, कम नहीं है किसी से कोई, दोस्तों ये गुमान में रखना, दोस्तों ये गुमान में रखना। तो आपने जैसे कहा तो मेरी एक कहानी थी बेटी
1: जी,
0: तो उसमें माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती, और वो पहले सोचती नहीं शादी, तो दूसरे कहते भाई बेटी बड़ी हो रही शादी करा, तो बेटी को फिर बताने लगती है देखो तुम जाओगी एक राजकुमार जैसा लड़का होगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा, और लड़की वो बेटी सपने पाल लेती है, शादी होती है, शादी होती है जब, तो वो जब आती है घर तो वो खुश नहीं है, मैके जब आती है तब माँ को समझ में आता है कि उसको जो सपने बेटी को दे दिए हैं वो उसको हाथ में हाथ लेकर घुमाने नहीं लेकर जाता है, बहुत सारी जो चीजें,
1: राजकुमार आएगा,
0: राजकुमार आएगा, तो वो तो नहीं मिला उसको कि भाई नमक कम है तो भी बोलेगा है वो है, तब उसको समझ में आता है कि मैंने इसे गलत सपने दे दिए हैं। फिर वो उसको दूसरी तरह से, कि एक एक कविता है कि हो जाती वो पयस्विनी जब वो माँ खुद बनती है तो महिला, तो वो बेटी को फिर अलग तरीके से समझाती है।
1: अच्छा।
0: कि आपकी, और वो प्रेग्नेंट है जब बेटी आती तभी भी खुश नहीं, तो फिर उसको अलग तरह से समझा के भेजती है, और कि मतलब आपकी बार अगर दुखी हो जाएगी तो मैं इसे नहीं भेजूंगी, लेकिन उसको मालूम है कि मैंने इसे ऐसा समझा दिया है क्योंकि मैंने उसे गलत ट्रेन किया था। तो ये जो हम संस्कार देते हैं ना, तो वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं पनप जाते हैं। तो माँ जो बच्ची को सिखाती है वो बहुत सोच समझ के बताना चाहिए कि उसको आगे जा करके भी एक घर संभालना है, तो वो उस तरह से ट्रेन करे कि वो समझ पे आए कि हाँ मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ रही, अब मैं वो बच्ची नहीं रह गई हूँ, बहुत बदलना पड़ता है। तो मुझे जो मेरी टाइप करते थे उनने कहा कि एक दिन मुझे कहा कि क्या लड़कियां सब सोचती कि शादी के बाद ऐसा होगा, मैंने कहा अमूमन तो सभी सोचती,
1: अमूमन सभी सोचते,
0: तो मैंने भी सोचा था, बोले अच्छा। तो मुझे एक दिन फोन किया, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मैंने कहा कि क्यों, बोले कि आपकी कहानी से मैं अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने लग गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन मैंने बोला कि मेरे कुछ कहानियां टाइप कर दीजिए, बोले आज आप मुझे माफ कर दीजिए मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा क्यों, बोले मैं आज अपनी पत्नी को डेट पर लेकर जा रहा हूँ और ये आपकी कहानी का असर है,
1: और इससे पहले शायद वो,
0: हाँ, वो तो वो
1: रियलाइजेशन मतलब उनको हुआ उससे,
0: एक्चुअली मतलब
1: से।
0: क्या होता है ना कई बार ना जो दूसरे घर से लड़की आती ना, पति समझ ही नहीं पाता है कि ये कितने अंदर अपनी भावनाएं लेकर आई है,
1: उनके सपने क्या है
0: सपने
1: उनके।
0: लेकर आई है ना। और आप जब तक मुझे

0: मतलब कटनी में पहले मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे दादाजी नगर सेठ हुआ करते थे, तो लड़कियों को डांस वगैरह, इवन मेरे बाबा जी ने वैसे बहुत हमको फ्रीडम दे रखे थे, हमको कभी पता, आप आरुषि जी, मैं बिल्कुल खुले दिल से बोलती हूँ कि मुझे कभी वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर में नहीं हुआ.
1: लड़का और लड़की वाला?
0: हाँ, लड़का
1: अच्छा।
0: लड़की वाला कभी नहीं हुआ. हम लोग 5 बहने थे, पर कभी नहीं, ना बाबा जी ने, दादाजी ने, ना पापा ने, मम्मी, किसी ने नहीं. तो फिर लेकिन वो लोग आए तो बोले डांस, तो उनने बोला भाई नगर सेठ की बेटी ने, लोकचंद फुलचंद की पोती डांस करेगी, तो बोले अगर आपकी बेटी डांस करेगी पोती तो बहुत सी बच्चियों, तो उन्होंने हाँ कह दिया.
1: अच्छा, कि
0: हाँ
1: बाकी लोगों को भी और इंस्पिरेशन मिले
0: हाँ
1: क्योंकि
0: तो उन्होंने
1: आप
0: हाँ
1: कर
0: कहा,
1: रहे
0: और
1: हैं
0: मैंने
1: तो।
0: पहला डांस जो किया था वो था होठों पे ऐसी बात, और
1: हाँ
0: उसके
1: जी
0: बाद
1: जी
0: में कारी कारी कारी अंधी आ रही थी रात नवरंग की,
1: जी
0: तो उसमें भी मुझे दूसरी बार किसी ने डरा दिया, अरे तुमसे तो बहुत बड़ी डांसर आ रही, तुम क्या जीतोगी, छोड़ दो. मैं रोई तो मम्मी ने कहा अब तो तेरी असली परीक्षा है बेटा, अब तो तेरे को जीतना ही, दीदी लोगों ने भी. तो वो मैं फिर जीती, फिर मैं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बनी.
1: क्या बात।
0: तो ये मतलब हमेशा मुझे, मतलब ये कि मुझे लोग फॉलो करते कि उनने, अच्छा अलका ने किया, उनकी पोती ने किया, अब हमारी बेटियों को भी
1: हमारी
0: करना
1: बेटियों को भी करना चाहिए ना
0: करना
1: एक सीख।
0: चाहिए.
1: क्या बात है।
0: जी
1: मुझे आपकी बातों से ना एक चीज़ और बहुत समझ में आई कि साहित्य कैसे जीवन को आसान बनाने में मदद करता है, कैसे एक दूसरे को समझने में मदद करता है। तो हम में से बहुत लोग हैं जो पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल में ही चले गए
0: बिल्कुल.
1: हैं जिंदगियां। तो अगर साहित्य के और नज़दीक जाएंगे तो अपने आसपास वालों को भी और बेहतर समझ पाएंगे
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी,
1: ना, ये पढ़ना चाहिए। और जी
0: बिल्कुल. देखिए क्या होता है ना, आपने देख, आप भी बचपन से कि पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं.
1: जी जी
0: और मैं दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में गई थी, तो आज तक वालों ने एक इंटरव्यू किया था, उनने कहा कि क्या आपको लगता है कि आजकल पुस्तकों का अस्तित्व खत्म हो रहा है. मैंने, अगर ऐसा होता तो आप पुस्तक मेले में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, और तमाम स्टॉल्स हैं, और लोग खरीद रहे हैं किताबें, और स्पेशली जाते हैं, और खास करके बच्चों के माता पिता जाते. मेरी बेटी भी बहुत पढ़ती, ठीक है वो अंग्रेजी में पढ़ती लेकिन बहुत किताबें पढ़ती है. तो कई बार क्या होता है कि जैसे जब हम मोबाइल पे, आजकल जो हम रील बोलते हैं ना, रील लाइफ में के कारण हम रियल लाइफ से दूर होते जा रहे
1: बिल्कुल।
0: हैं, और व्हाट्सएप, हम फेसबुक पे, अच्छा अभी हम परिचित हो गए, अच्छा आप में से कनेक्टेड है, अरे अलका जी आपकी तबीयत, ओ प्लीज गेट वेल सून, अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे लगेगा आरुषि से ज्यादा तो मेरा कोई अपना है ही नहीं. लेकिन अभी मेरे घर में अगर कोई है, और मैं आपको तो पूछ रही हूँ, आप मुझे पूछ रहे, लेकिन आपके घर में तो मतलब लोग लीस्ट वरीड होते हैं, या सोचते भी नहीं कि घर में भी हमको वही चीजें करनी है. तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो साहित्य हमें एक एक भावना देता है. जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हुई कि मैंने कहानियां पढ़ रही हूँ, आलेख, जैसे मैंने परसाई जी को, उनको पढ़ करके मेरी चीजें बहुत भीतर बदला है.
1: जो
0: तो आप
1: आपने
0: उसको उस तरह से जब पढ़ेंगे ना, आपको बहुत एक प्रेरणा मिलती है, कई बार रास्ता
1: पर्सपेक्टिव भी
0: नहीं.
1: मिलता है,
0: हाँ
1: एक नया पर्सपेक्टिव भी
0: बिल्कुल,
1: मिलता है।
0: पर्सपेक्टिव मिलता है,
1: जी।
0: नया पर्सपेक्टिव मिलता है जिंदगी को समझने का.
1: समझने
0: अच्छा
1: का।
0: कि हम तो अभी तक हम कूप मंडूक बने रहते हैं, पर जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से लेखक, जैसे वो क्या होता है कि उन्होंने पूरी राजनीति पढ़ी होती है, तमाम माइथोलॉजी पढ़ी होती है, तमाम वेद पढ़े होते हैं, या नहीं भी तो और जिंदगी को पढ़ा होता है, और
1: बिल्कुल।
0: वो उसको, उसका सार उसमें लिखते हैं. तो आपको तो सार पूरा मिल गया ना एक जगह, तो जब आपको सार मिल रहा है तो आपको साहित्य बहुत कुछ देता है. साहित्य का अर्थ होता है सहित, जिसमें हित हो, सबका हित
1: सबका
0: हो,
1: हित हो, क्या
0: तो
1: बात।
0: साहित्य तो हित ही करेगा, तो साहित्य पढ़ना ही
1: हाँ
0: चाहिए.
1: अलका जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जो युवा हमें सुन रहे हैं, अगर आप कुछ किताबें सजेस्ट करें कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कुछ कुछ किताबें।
0: देखिए आजकल एक तो सेल्फ हेल्प की बुक्स बहुत आ रही, रॉबिन समथिंग उनका ध्यान, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, और रोंडा बर्न की भी, जैसे द मैजिक, और आप लोगों का भी साहित्य शायद, जैसे अभी जीवन पलटने की कला है, तो ये तो एक अलग चीज है. लेकिन उसके अलावा जैसे कि बहुत सी अच्छी कविताएं आती हैं. हाँ नेगेटिव बहुत ज्यादा मत पढ़िए. और उसके अलावा जैसे कि हमारे जो बहुत सारे पहले के साहित्यकार हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में भी एमए किया है, तो आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं या शेली को पढ़ते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए. और आजकल के भी जैसे अब देवदत्त पटनायक, जो आपके यहाँ शायद आ भी चुके होंगे वो, तो उन्होंने माइथोलॉजी को ना बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है. उनके एक हनुमान की रामायण है, पता है आपको, उन्होंने
1: अच्छा
0: लिखी,
1: जी।
0: हाँ, कि हनुमान जी ने एक रामायण लिखी, तो वाल्मीकि जी को पता चला कि नारायण ने उनको बोला, नारद मुनि ने कहा कि आप जाइए एक बार हनुमान की रामायण देखिए. तो हनुमान जी की रामायण पता है कहाँ लिखी थी, एक गार्डन में, एक बागीचे में, और केले के पत्तों में, इसमें उसमें उसमें, और वो वाल्मीकि जी पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, तो हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं आप ऐसे? तो बोले नहीं, आपने जो लिख दिया मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? आपने, हनुमान जी ने क्या किया, उसको सारे को खा लिया पत्तों को। बोले क्या किया?

0: निडरता था, लिखा बोले मेरे राम मेरे अंदर हैं, अब आपको हमेशा सब याद रखेंगे। तो इस तरह की जो आपको एक जगाने वाली अवेयरनेस जहाँ है वो सारी चीजें। और आजकल तो देखिए ये डिजिटल जमाना है, आप AI दे देता है, गूगल को पूछिए,
1: डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स भी, उपन्यास भी।
0: हम बॉम्बे में रहते हैं, मैं सोचू मैं अपनी लाइब्रेरी बहुत बना लू बड़ी, तो कहाँ रखूंगी मैं सारी चीजें 3 BHK के फ्लैट में। अब आप ऑनलाइन करते जाए, किंडल पे पढ़ लीजिए, और उसमें देखिए कि सेल्फ हेल्प बुक्स, मुझे जैसे जिस समय मुझे जो पढ़ने का मन है कि आई एम फीलिंग लो, नहीं मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे आध्यात्मिक कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ तो आपके क्लिक में अवेलेबल है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं बोल दूंगी ये पढ़ो तो नहीं, क्या होता है जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है,
1: उनको क्या इंटरेस्ट है,
0: उनको क्या पढ़ना है, उनका क्या इंटरेस्ट है। तो जिसमें खुद की रुचि हो, बस आप ये मत पढ़िए कि आप दूसरों का बुरा करने का सोचें, अपने आप को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इवॉल्व हो सकते
1: ऐसा
0: हैं,
1: कुछ पढ़िए,
0: कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं, जो कल से उससे बेहतर बनना है हमें, और बेहतर करते करते दूसरों को भी साथ में लेके चलना है, ऐसा कुछ पढ़िए।
1: बहुत सुंदर बात है, और चाहे कहानियां पढ़ें चाहे कविताएं पढ़ें, लेकिन और मुझे लगता है और संवेदनशील भी बनाती है हमें ये।
0: बिल्कुल, मैं एक छोटी सी लघु कथा आपको बता देती हूँ।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: अभी हाल ही में जैसे क्या होता है, और ये सचमुच में जब होता है ना, क्योंकि कहानियां हमें जिंदगी से मिलती हैं आरुषि जी, तो आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, तो एक हस्बैंड वाइफ है, और वो जो वाइफ है वो सोच रही कि आज वो अक्षत और लड़की का नाम है रंगोली, अक्षत आज कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं, आज उसने मुझे वीट जूस भी बना के नहीं दिया है। वो अपने कमरे में जाती है, तमाम वो सारी देखती, जहाँ उन दोनों की फोटोज हैं, यहाँ गए थे वहां गए थे, अच्छा वो देखती है डेकोर पूरा उसके मन से, तो अक्षत ने कराया पूरा पर्ल कलर का, फिर वो देखती है कि कहीं पर्दे का से हवा का झोंका आता है और उसके बाल उड़ते हैं, तो उसको याद आता है कि अक्षत कहता कि रंगोली तुम्हारे बाल कितने सुंदर है ना, एकदम मतलब मुलायम, वो ये रेशमी और ब्राउन कलर के ऐसे सब, तो वो अपने आंखों पे उसके बाल बिछा लेता, तो कहती अक्षत बाल तुम्हारे भी तो कितने सुंदर, तुम रोमन गॉड जैसे दिखते हो। और अचानक वो सोचते सोचते दर्पण के सामने चली जाती है और देखती है कि उसके सिर पे बाल नहीं है, क्योंकि केमोथेरेपी से बाल चले गए, तो 6 महीने पहले उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और इससे तो वो मतलब रोते रोते सो जाती, थोड़ी देर में उसको स्पर्श महसूस होता है, तो देखती अक्षत तुम कहाँ, अक्षत तुम्हारे बाल कहाँ आ गए, तो वो बोलता है नहीं, वो चलो सॉरी आज चलो खाना भी लगा है और तुम्हारा वीट जूस भी बना हुआ है, तो तब वो देखती तो बोलता है कि बस वो मतलब उसको मतलब वो बहुत प्यार से सताता है, तो वो सोचती कि आज जो रंगोली है वो अक्षत के प्यार से सज गई है, मतलब ये कि पति जो है उसके लिए उसने अपने बाल भी, कि जब तक उसकी पत्नी के बाल नहीं आएंगे वो भी बाल ऐसे ही रखेगा। तो ये जो चीजें होती है ना कि मतलब एक एक पॉजिटिव संदेश मैं देना चाहती हूँ। आजकल मैं लघु कथाओं, मतलब मैं लघु कथा शोध केंद्र बॉम्बे की अध्यक्ष बनी हूँ हाल ही में, तो हम लघु कथाओं पर बहुत काम कर रहे हैं, और आजकल की लघु कथाएं जो एक संदेश देना चाह रही है वो बहुत पॉजिटिव संदेश देती हैं, कि अब उसमें नेगेटिविटी नहीं हो, एक पॉजिटिव संदेश के साथ में अपनी लघु कथा को खत्म करिए, तो आजकल हम लोग वो कर रहे हैं।
1: कई बार हम सोशल मीडिया पे भी और अपने आसपास जिंदगी में बहुत चीजें देखते हैं लेकिन उन्हें भूल जाते हैं, कहते हैं ना आजकल की रात गई बात गई जैसे हो जाता है, एक न्यूज आई दूसरी न्यूज चली गई, लेकिन जब लघु कथा के रूप में हम उन्हें सुन रहे हैं तो मुझे लगता है वो छाप छूट जाती है, वो चीज फिर वो हमारे अंदर वो हमारा हिस्सा बन जाती है कहीं ना कहीं, बहुत प्रेरणादायक कहानियां हैं।
0: आपने जैसे बात की, आपको याद है ना बचपन में हम सब ने कहानी सुनी ना कि एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, एक लकड़ी का गट्ठर दिया कि तोड़ो, है ना,
1: बिल्कुल,
0: तो कोई नहीं तोड़ पाए, जब अलग अलग करके तोड़ा तो तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा यही चीज सिखा, तो कथा के माध्यम से वो बात हमेशा आपके जहन में, जैसे आपने कहा बिल्कुल वही बात है कि हमारे जहन में अंकित हो जाती है, हमारे अंदर अंकित हो जाती है, हमें याद आती है। मैं अपनी बेटी को ना बचपन में और बेटे को भी एक कहानी सुनाती थी, हम लोग मारवाड़ी हैं, हल्दी हल्दी मल्दी सटवा सूट, अच्छा। कि सटवा सूट जो है वो थोड़ी सी बिटर है, दो बहनें हैं तो हल्दी मल्दी सबका भला करती है, जब हल्दी मल्दी अपनी नानी के घर जाती सबको मिलती सबका भला करती जाती, तो जब वो लौटती तो उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते, सटवा सूट भी कहती कि मैं जाऊंगी और सबको, तो जो भी बोलता क्यों मैं, क्यों वो तो थी हल्दी मल्दी, मैं हूँ सटवा सूट, मैं नहीं करती तुम्हारा काम, अब वो आती तो उसको कोई कुछ नहीं देता, तो मेरी बेटी आज भी मम्मा मैं आपकी हल्दी मल्दी हूँ ना, तो ये हमें ना इस तरह के संस्कार कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि आप भाषण देंगे ना कोई नहीं सुनेगा, उसको इंटरेस्टिंग वे में बता के कहिए तो आपको लोग जरूर सुनेंगे,
1: जरूर सुनेंगे। तो कहानियां और पढ़िए और सुनिए और सुनाइए, है ना। भारत की तो मतलब मुझे लगता है भारत में तो कहानियां बसती हैं हर कोने में,
0: बिल्कुल
1: हर भाषा में, हर लोकगीत लोक कथा में बहुत कुछ है सच में। तो आपने आज हमें वापस मुझे लगता है जोड़ दिया, जहाँ से हम थोड़ा दूर भी निकल आए थे, तो वापस उन कहानियों की ओर अब बढ़ जाएंगे। अलका जी, क्या कोई और आपकी ऐसी कविता या कोई एक ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप शेयर करें?
0: बिल्कुल सुना दूंगी आपको। वैसे लता दीदी पर भी एक, जब लता दीदी तो गजल तो मैं गा के तरन्नुम में तो अभी नहीं सुनाऊंगी
1: जी,
0: पर एक है ना, ये आजकल हम पर्यावरण के लिए बहुत परेशान मतलब हैं, देखिए तो मैं सुना देती हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं सुनाऊंगी कि जहाँ पर कहीं पर नेगेटिविटी हो।
1: ओके।
0: एक ये बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ था, है ना, तो उससे मैं, अच्छा मैं एक चीज और बताती हूँ कि मैं जब बहुत दुखी होती हूँ ना और गुस्से में होती हूँ तो मेरे भीतर से कविता निकलती है, सिलसिलेवार जिंदगी कहानी बनती है, और मैं व्यंग भी लिखती हूँ, मेरे जैसे आपने व्यंग संग्रहों के नाम भी लिए, तो विसंगतियां व्यंग बन जाती। तो जब ये आतंकी हमले हो रहे थे लगातार, अच्छा हमारे भी बहुत परिचित लोग थे जो उसमें मारे गए थे, तो उस समय मैंने एक सिम्बॉलिक कविता लिखी थी कि मैं उसको कुछ तरन्नुम में भी गा के थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ। एक चिड़िया दरख्त पर बैठी गा रही थी गीत, कोयल कूक रही थी, गौरैया चुग रही थी बीज, हरियाली छाई थी, खिले थे सुंदर फूल, तितलियां रंग बिरंगी उड़ रही थी उड़ रही थी। माँ तोती ने दरख्त पे बनाया एक घरवंदा, सुरक्षित रख कर बच्चे उसमें निकल गई लेने दाना, पर अचानक कहीं से आया एक कठफोड़वा, ये कठफोड़वा वो आतंकवादी है, चोंच मार कर

बच्चे चीखे डर डर के, तितली के पंख गिरे कट कट के, हरियाली बदली पतझड़ में, फैल गया आतंक, मिट्ठू न जाने कहाँ गुम हो गया। तितलियों ने उड़ना छोड़ा, हो गए फूलों के रंग सभी बदरंग, कैसे जीवन वापस लौटे सोचे सारे संग। तभी कोयल ने कूक लगाई, निराश दिलों में आस जगाई, मिलकर सबने कसम ये खाई, अब कोई कठफोड़वा जो दरख्त उड़ने आए, तितली चिड़िया को

0: पतझड़ में मिलकर कसम ये खाएं, आओ कसम ये खाएं।
1: सच में वो उस इंसिडेंट ने, उस घटना ने हम सबको हिला दिया था, अंदर से झंझोर दिया था।
0: मुंबई का जो आतंकी
1: हमला, था वो भूल नहीं सकते। और ये जो आपने कविता ये सिंबलाइज करके उसको, जो वो हम भावनाओं को प्रकट किया, ये एक लेखक ही कर सकते हैं कि उस प्रकार से भी उस बात को कहा जाता है, हम सोच नहीं सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अलका जी। मुझे लगता है आपकी इतनी कहानियां, इतनी सारी बातें हैं, अभी संभव नहीं है सब कुछ इन एक घंटे में समेट पाना, लेकिन फिर भी जो आपने जो आज सुनाया है वो हमारे सिर्फ आज तक नहीं, मुझे लगता है आगे तक वो प्रेरणा बन के हमारे साथ रहने वाला है।
0: मैं अगर एक मिनट होगा तो खाली, आदर्श एक हमने फिल्म लिखी थी और आदर्श पे फिल्म के ऊपर हमने नॉवेल लिखी थी।
1: अच्छा,
0: तो उसमें मैंने क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर उसमें एक न्यूक्लियर फैमिली, जो एकल परिवार होते हैं ना, तो एकल परिवार का बच्चा कैसे अपने आप को, कई बार तो हम बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती तो वो कुछ ऐसा होता है, तो ये जो है परिवारों को बचाना कैसे जरूरी, तो आदर्श फिल्म जो है उस तरह से वो मैंने लिखी थी और वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। बल्कि मैं तो चाहूंगी मैं आपको लिंक भेज दूंगी अपनी,
1: जरूर जरूर,
0: तो आप वो देखिएगा। तो मुझे लगता है कि ना हम लेखकों का एक दायित्व ये भी है कि सिर्फ लिखने के लिए ना लिखें, है ना, एक कुछ ना कुछ बदलाव, और जो कृतित्व और व्यक्तित्व है ना लेखक का वो एक हो, ये मैं चाहती हूँ कि आप लिख कुछ रहे हैं कुछ वो मत करिए, जो आप हैं वो लिखिए, और समाज में बदलाव की चेतना के लिए जरूर लिखे। आप समाज सुधारक नहीं है हम, पर कोशिश करें कि कुछ तो बदले, कुछ तो अच्छा लिखे हम। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके रेडियो मधुबन में, और क्योंकि यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हम लेकर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम, कि प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम आगे भी जुड़े रहें और अपने घरों में भी उसी शांति के प्रकाश को फैला सकें। आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, आपकी मुस्कान के लिए मैं आपको बाद में कविता लिख कर भेज दूंगी। बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया।
1: सो मच अलका जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने निकाला हमारे लिए।
0: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद
1: सो मच। तो दोस्तों, फिलहाल तो वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि आज कुछ आप अपने साथ जरूर लेकर जा रहे होंगे, कुछ ऐसा जो आपको जीवन के सफर में मददगार साबित होगा। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है यशस्वी भारत। जैसा नाम है वैसा ही सुनने को आपको बहुत सारा, मैं कहूँ ज्ञान, या दूसरे शब्दों में कहूँ अनुभव, या तीसरे शब्द में कहूँ परिवर्तन की एक ऐसी स्मृति, एक ऐसी रेखा मिलेगी जिस पे चलते जाएं तो हम भी उस यशस्वी भारत की स्थापना में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ऐसे विख्यात, प्रतिष्ठित, जाने माने और सही मायने में भारत का नाम ऊंचा करने वाले वो व्यक्तित्व हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और आज बहुत ही भाग्यवान हैं हम, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे जी, जिन्हें मल्लखम्ब विश्व गुरु भी कहा जाता है। और 42 से ऊपर वर्षों से वो एक पुराने प्रतिष्ठित अग्रणी शारीरिक शिक्षा संस्थान श्री सेनाथ व्यायाम मंदिर के मानद महासचिव और मुख्य कोच भी रहे हैं। और दोस्तों, विश्व मल्लखम्ब संघ के संस्थापक, निदेशक और मानद सचिव भी हैं। और उन्होंने एक स्पर्धा की भी शुरुआत की, आयोजन भी किया, और विश्व में 50 से ऊपर देश है और न जाने कितने लोगों ने प्रशिक्षण हासिल किया है, उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी भिन्नता है। उनके बारे में जानेंगे, उनकी कहानी को जानेंगे, और आज हम फिर से आपको यही दोहराएंगे कि हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री उदय विश्वनाथ देशपांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और ऐसे मंच पे मेरे मन की जो भावना है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।
0: सर, हम आपके बारे में पढ़ते हैं, जब हम आपके फोटोज या वीडियोस कुछ भी ऐसा देखते हैं, और अगर पहली बार कोई भी देखे तो वो आश्चर्यचकित हो जाए कि ये संभव कैसे है, ये कर कैसे सकते हैं। और आपके चेहरे पे बड़ी मधुर सी मुस्कान भी होती है उस समय, तो कुछ आपकी जुबानी आपकी कहानी जानना चाहेंगे सर। ये कैसे शुरुआत हुई, ये कहाँ से, ये इसकी आपने कैसे शुरुआत की?
1: जी, पहले मैं मल्लखम्ब के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद मल्लखम्ब शब्द सुना होगा लेकिन मल्लखम्ब ये क्या चीज है ये मालूम भी नहीं होता है। तो एक लकड़ी का खंबा होता है, 8-8.5 फीट ऊंचाई का, स्मूथ, वेल पॉलिश, टेपरिंग एट द टॉप, और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के योगासन और एक्रोबैटिक एलिमेंट्स किए जाते हैं। उसका एक दूसरा स्वरूप है रोप मल्लखम्ब, जो ऊपर से टंगा हुआ होता है, 15 फीट हाइट होती है, और उसके ऊपर भी अलग अलग प्रकार के आसन उस टंगे हुए रस्सी पर किए जाते हैं और एक्रोबैटिक एलिमेंट्स किए जाते हैं। देखने में बहुत सुंदर है, लोगों को देखने के बारे से लगता है कि चलो मैं भी सीख लूँ इसको, लेकिन जैसे योगासन छोटे बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक कोई भी कर सकता है, वैसे इस मल्लखम्ब को भी कोई भी कर सकता है। छोटे बच्चे हैं, महाविद्यालय युवक युवतियां हैं, या तो एडल्ट्स हैं या तो सीनियर सिटीजन है, एनीबडी ऑफ एनी एज कैन डू इट। और ये अभी तक लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे स्पर्धात्मक मल्लखम्ब खेलते हैं तो वो डिफिकल्ट एलिमेंट्स करते हैं, मल्लखम्ब के ऊपर खड़े होना है, वहां से समरसॉल्ट लगाना है, या दौड़ के आके समरसॉल्ट लगा के मल्लखम्ब को पकड़ना है, तो लोग बहुत भयभीत होते जाते हैं, नहीं नहीं भाई मेरा काम नहीं है, मैं तो कहीं गिर जाऊंगा, डर जाते हैं। लेकिन मैंने इसकी शुरुआत जब की तो मैं 2.5-3 साल की मेरी उम्र थी, और उस समय व्यायाम महर्षि प्रहलाद लक्ष्मण काले गुरु जी, जो श्री समर्थ व्यायाम मंदिर के पूज्य संस्थापक थे, उन्होंने मुझे गोद में लिया और उन्होंने मल्लखम्ब, कुश्ती, दंड बैठक, ये सब ट्रेडिशनल इंडियन एक्सरसाइज का एक झलक मुझे दिखा दी, और तभी से फिर मैं इसके पीछे लग गया। मैं स्कूल जाता था तो भी मैं ये कंटिन्यू करता था, उसके बाद कॉलेज जाना शुरू हुआ, कॉलेज में भी मैंने इसको ही छोड़ा नहीं, और उसके बाद कॉलेज खत्म होने के बाद जब मैंने कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज में नौकरी ली तब भी मैं इसको सुबह शाम करता गया। माय फैमिली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी, माय फादर, मदर, हम 3 भाई 1 बहन, तो बड़े भाई की मिसेस, उनके 2 लड़के, मेरी मिसेस, हमारे 2 लड़के, मेरा छोटा भाई था उसकी मिसेस, उसके 2 लड़के, लेकिन मुझे घर में कोई काम करने की नौबत नहीं आई। मैं पूरा जैसे कि इसी के लिए छोड़ दिया है, इस प्रकार से सुबह शाम व्यायामशाला करना, फिर ऑफिस करना, यही मेरा दिनचर्या थी। और मेरे मिसेस ने सब बच्चों की पढ़ाई हो या घर में कुछ लाना हो वो सब मिसेस ने देख लिया, तो मैं पूरा समय इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाया। और जिस समय मैं शुरू किया था तो मेरे व्यायामशाला में 2-3 बच्चे थे जो मलखम करते थे। आज इतने सालों के बाद हम देखेंगे तो कम से कम 100 लड़के 100 लड़कियां मेरे व्यायामशाला में जो डेली सुबह शाम मलखम करते हैं। वैसे मुंबई में 1-2-3 संस्थाएं थी जहां पर मलखम चलता था, आज मुंबई और सबर्बन में 200 से ज्यादा संस्थाएं हैं जहां रेगुलर मलखम चलता है। मुंबई जैसे पुणे, सांगली, सातारा 3-4 डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर मलखम चलता था, आज महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 36 डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र कि उनमें रजिस्टर्ड मलखम एसोसिएशन है, एफिलिएटेड टू मलखम स्टेट एसोसिएशन। और महाराष्ट्र जैसे 33 स्टेट्स हैं जहां पर रजिस्टर्ड मलखम एसोसिएशन है और वो मलखम फेडरेशन ऑफ को, मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया को एफिलिएटेड है। तो इस प्रकार से पूरे भारत में मलखम की शुरुआत तो महाराष्ट्र में हुई दूसरे बाजीराव पेशवा के जमाने में, लेकिन अभी इतने सालों में वो पूरे भारतवर्ष में आसाम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में या दक्षिण में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र या गोवा या पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इस सभी राज्यों में फैल गया है अभी।
0: क्या बात है। तो मुझे लगता है देश ही नहीं विदेशों में भी आप लेके गए, आपके 1000 से अधिक स्टूडेंट है, 52 से
1: ज्यादा देशों में पहुंच गया हूं मैं। तो यही मकसद था कि हमारे इंडियन जो लोग हैं, भारतीय की विशेषता ये है कि जब हम कुछ कहते हैं तो उसमें ज्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन अरे बीबीसी ने ऐसे कहा है या फॉरेन में ऐसे कहा जाता है, फिर उनका विश्वास ज्यादा बैठता है। तो हमने 97 से भारत के बाहर मलखम सिखाना शुरुआत किया। पहले जापान में गए थे, फिर इंग्लैंड में गए, फिर अमेरिका में गए, और फिर अभी 52 देशों तक पहुंच गए। यूरोपियन कंट्रीज में स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, एशियन कंट्रीज में भी सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, वियतनाम, कंबोडिया, क्रोएशिया, चाइना, जापान, तो सभी देशों में अभी फैल गया है। थोड़ा सा दुख इस बात का है कि भारत के कभी भी देश जो है, जैसे श्रीलंका है, जैसे नेपाल, भूटान है, म्यांमार है, इनमें अभी मलखम इतना गया नहीं है। तो अभी कोशिश चल रही है कि वहां पर भी पहुंच जाए और फिर एशियन चैंपियनशिप शुरू हो उसकी, और फिर हम ओलंपिक का सपना भी देख रहे हैं।
0: जी, ये बहुत सुंदर बात है। हम जानते हैं ओलंपिक्स में या फिर एशियन गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, और हम अभी देखते हैं भारत के जो एथलीट्स हैं उन पर शायद पहले इतना ध्यान नहीं जाता था, लेकिन आज वो गौरवान्वित तो भारत को कर ही रहे हैं। और ये क्योंकि आपने बताया कि मलखम को भी एक ऐसा ही आप रूप देना चाहते हैं विश्व स्तर पर, उसको आपने भी एक स्पर्धा का तो आपने शुरुआत करी ही है।
1: जब मैं इतने देशों में जाकर मलखम सिखाया तो मैंने सोचा कि इन सभी देशों के खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म पर कम कैसे लाए। इसके लिए फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप मलखम की हमने 2019 में मुंबई में आयोजित की, शिवाजी पार्क में श्री समर्थ व्यायाम मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा एसी पिंडोल बनाया था, और उसमें 16-17 फरवरी 2019 में ये कॉम्पिटिशन की, जिसमें 15 कंट्रीज एक्चुअल पार्टिसिपेट हुए थे। वैसे तो 30 कंट्रीज ने बोला था कि हम आएंगे करके, जैसे बांग्लादेश या नेपाल, उनको वीजा नहीं मिला या आने के लिए, या कुछ देशों में और कोई समस्याएं थी वो नहीं आ पाए, लेकिन 15 देश के खिलाड़ी आ गए और वो कंपटीशन बहुत अच्छी हो गई। फिर सेकेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अमेरिका में होने वाली थी, लास्ट मोमेंट अमेरिका के जो एसोसिएशन थे उन्होंने बताया कि हम नहीं कर पाएंगे, तो हमने उसको भूटान में शिफ्ट किया। मैं चाहता था कि पहली टूर्नामेंट इंडिया में हुई है तो दूसरी इंडिया की बाहर कहीं होगी, तो हमने भूटान फिक्स किया, लेकिन भूटान में बहुत सारी समस्या आ गई। हमारे इंडियन लोगों को वहां जाने के लिए इलेक्शन कार्ड भी दिखाया तो चल सकता है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए वहां का वीजा लेना आवश्यक है, और वो वीजा बहुत कॉस्टली भी है और उसको समय भी बहुत ज्यादा लगता है। और इंडियंस को भी वहां जाएंगे तो कम से कम 600 रुपए हर दिन का गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है, बाकी लॉजिंग बोर्डिंग तो अलग। तो हमने कोशिश किया था कि भूटान के बाहर इंडियन नजदीक वाले गांव में रहने की व्यवस्था करेंगे, सुबह भूटान चले जाएंगे, शाम को वापस आएंगे। लेकिन बाकी समस्याओं को देखते हुए फिर हमने असम में शिफ्ट किया टूर्नामेंट, और धुबरी करके असम में एक गाँव है, वहां पर पूरा 2-3 दिन का एक कॉम्पिटिशन बहुत अच्छे ढंग से हुआ, और 15 देशों के खिलाड़ी वहां पर भी आए थे। और मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ साल पहले मलखम को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था। वो कहते मलखम वो तो यार दंड बैठक जैसे व्यायाम है, उसको खेल कैसे कहेंगे। लेकिन 96 में मुकुल वासनिक जी उस समय केंद्रीय क्रीड़ा मंत्री थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने 1.5 घंटा उनके सामने, आज तक हमने मलखम के बारे में अलग अलग राज्यों में कितना प्रचार प्रसार किया है, मलखम का रूल बुक कैसे निकाला है, उसके मुताबिक हम जजिंग एग्जाम्स कैसे लेते हैं, कितने जजेस पूरे भारतवर्ष में तैयार हो गए हैं, ये सब डिटेल्स रखने के बाद उन्होंने तुरंत अपने पीए को बुला लिया और मुझे उसी समय हाथ में लेटर दे दिया कि मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया हेडेड बाय मिस्टर उदय देशपांडे इज रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 96 में रिकॉग्निशन मिला। लेकिन उसके बाद हम सुरेश कलमाड़ी जी के पास गए, ही रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप के लिए जो खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से आते हैं उनको रेलवे कंसेशन चालू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था इसमें। लेकिन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने इसमें ज्यादा ध्यान देने के बाद उन्होंने कलरीपयट्टू, योगा, टांगथा, मलखम आदि इंडिजिनस गेम्स को बहुत बढ़ावा दे दिया। उन्होंने खेलो इंडिया में इन चारों खेलों को सम्मिलित किया। और फिर जो हम बच्चे रेलवे से जाते थे नेशनल चैंपियनशिप के लिए, वो भी फ्लाइट से जाते हैं और उनका खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। इतना ही नहीं, उनको हजारों रुपए की स्कॉलरशिप देते हैं, और मलखम के खिलाड़ियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। इतना ही नहीं, तो अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किया, तो अब पद्मश्री अभी चालू कर दिया। तो इसका मतलब इंडिजिनस गेम को बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। और इतने देशों में मलखम गए हैं तो वहां भी कोचेस की जरूरत है, तो अच्छे मलखम सीखेंगे, अच्छा सिखाना भी सीखेंगे, और इंग्लिश बोलना जानेंगे थोड़ा सा, पासपोर्ट का सब उनका पास होगा, तो उनको बाहर की नौकरी भी मिल सकती है।
0: और ये जो अचीवमेंट्स है, क्योंकि जब हम एक परिवार के पास जाते हैं कि मैं मलखम कर रहा हूँ या मैं करना चाहता हूँ, तो ये जो अचीवमेंट्स हैं, जो विश्व स्तर पर जो नाम हुआ है, और आपने जैसे कहा अवार्ड्स भी हुए, तो ये शायद वहाँ भी बड़े मदद करते होंगे कि आप इस खेल में पार्टिसिपेट कर सके, इसमें अपना आप जीवन देख सके।
1: राइट। और हमेशा यही होता है, हमारे जमाने में लोग जस्ट एंजॉयमेंट के लिए खेलते थे। अभी पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई मेरा बच्चा यदि मलखम करेगा तो उसको क्या मिलेगा, क्या उसको नौकरी मिलेगी, क्या उसको पैसा मिलेगा, उसको प्रसिद्धि मिलेगी, किसके लिए उसने खेलना चाहिए। तो अभी बदलते जमाने में ये सभी चीजें हो सकती है। मलखम की वजह से आप रोजी रोटी कमा सकते हैं, नौकरियां मिल सकती हैं, और पब्लिसिटी भी है, आप ज्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं, तो पेरेंट्स मलखम के लिए ज्यादा बच्चे लाने शुरू कर देते हैं।
0: सर, मैं एक और बात जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को भी ब्रेक किया है यहाँ पे। एक तो जैसा आपने शुरुआत में बताया कि बहुत रिस्की या डर लगता है कि हम कैसे कर सकते हैं, हमें कुछ हो गया तो, हमें चोट लग गई तो ये भी डर होता है एक। और दूसरा, आपने दिव्यांगों के साथ महिलाओं को, बुजुर्गों को भी ट्रेन किया
1: जी,
0: तो क्या ये चैलेंजिंग था, क्या अनुभव था, कुछ आप बताए।
1: ये सबसे इंटरेस्टिंग है जी। तो मैंने ये देखा कि क्रिकेट ज्यादा लोकप्रिय है इतने देशों में, क्योंकि उसमें आप एक डंडा हाथ में लेकर बॉल को मार देते हैं तो आप एंजॉय करते हैं
0: जी।
1: फिजिकल आपको एग्जर्शन नहीं है उसमें, नया नया जब सीखते हैं तब। या फुटबॉल ज्यादा लोकप्रिय क्यों है, बस एक बॉल को लात मार दिया, आप एंजॉय करते हैं। लेकिन मलखम में शुरू शुरू में रस्सी हाथ में पकड़कर अगेंस्ट द ग्रेविटी, आपको रस्सी अंगूठे में पकड़कर ऊपर ऊपर चढ़ना है, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो, फियर ऑल्सो, और पेन ऑल्सो, कि अंगूठे में पेन होता है। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं भाई, दर्द होता है, मैं नहीं करूंगा ये, और छोड़ देते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे नए नए एलिमेंट ढूंढ के निकाले, ये रस्सी पर चढ़ना ही नहीं है आपको. विदाउट क्लाइंबिंग ऑन द रूप यू कैन डू सो मेनी एलिमेंट, जैसे शवासन है, पश्चिमोत्तानासन है, एंड देन वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू एंजॉय, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और इंटरेस्ट डेवलप होता है. जैसे मोबाइल पे भी आप गेम्स खेलते हैं, जैसे जीतते जाते हैं वैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे फिर लोग इसके ऊपर आकर्षित हो गए. फिर मैंने ब्लाइंड बच्चों को सिखाना शुरू किया जो पहले कभी नहीं था. तो ब्लाइंड बच्चों को सिखाते समय मुझे बहुत कुछ नए तरीके से करना पड़ा, क्योंकि पहले मेरा तरीका ये था कि मैं खुद करके दिखाता था और फिर उनको बोलता रहा जैसे मैंने किया वैसे आप करो, मैं आपको हेल्प करूंगा. लेकिन उनको तो दिखाने से मतलब ही नहीं है, वो देख नहीं पाते हैं. तो सभी जो कृति है, एक्शन है, जो वर्ड्स में उसको कन्वर्ट किया कि आपके सामने रस्सी है, रस्सी हाथ से पकड़ लो, फिर बायां पैर अंदर डाल के अंगूठे में रस्सी पकड़ लो, फिर बायां पैर सीधा करके दाहिना पैर झटके से ऊपर अंगूठे में पकड़ लो. ये सब जैसे आप कहते जाएंगे वैसे वो करते जाएंगे विदाउट फियर, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहे वो कितने ऊंचाई पर है और गिर जाएंगे तो क्या होगा. और मैं उनको पूरा हेल्प करता था. तो ये करते करते वो इतने अच्छे डेवलप हो गए कि जब वो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करने लगे तो लोग मेरी तारीफ ज्यादा करने लगे, देशपांडे जी आपके भी कमाल है, आप ब्लाइंड बच्चों को कैसे आपने सिखाया. मैंने कहा मेरे कमाल नहीं है, कमाल तो मैं उनको सिखाना कैसे, ये सिखाते सिखाते सीख गया, दे मेड मी बेटर टीचर. और फिर आज मैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ छोटे बच्चों को सिखाता हूँ, जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है, जैसे शांतिलाल संघवी जी हैं, जिन्होंने मलखम शुरू किया जब वो 82 इयर्स के थे, और 82 और हमने जब वर्ल्ड चैंपियनशिप किया 2019 में, ही वॉज 89 इयर्स ऑफ एज, ही गेव अ डेमोन्स्ट्रेशन एट द इनॉग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप. That means anybody of any age can do it. Malkhamb is for all. मैं डेली सुबह समर्थ व्यायाम मंदिर दादर मुंबई में 7 से 8 बजे फ्री मलखम क्लासेस लेता हूँ, और 40, 50, 60 साल के ऊपर के भी बहुत सारी महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं, जो छोटे बच्चों की माँ हैं, लेकिन वो भी मलखम सीखती हैं और बहुत अच्छा करती हैं. हाल ही में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मुंबई में आए थे तो उनके सामने इन महिलाओं ने डेमोन्स्ट्रेशन किया मलखम का.
0: क्या बात है.
1: So anybody of any age can perform, that the main motto of blind ho ya mukobadhir ho, deaf and dumb, matimand ho, physically handicapped ho, koi bhi malkham kar sakta hai,
0: koi bhi kar sakta hai. Bahut hi kamal ki baat hai ki ye jab hum dekhte hain, jaisa aapne kaha ki ek lamba sa danda hota hai aur us pe aapko ye sab kuch karna hai, itna balance karna hai, pain bhi hota hai और आप कह रहे कोई भी कर सकता है. तो हमें लगता है जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी बॉडी स्टिफ होती जाती है.
1: yes,
0: तो
1: yes.
0: वहां पे बड़ा मुश्किल लगता है, मतलब आम कसरत करना भी बड़ा मुश्किल होता है कई बार लोगों के लिए. तो मलखम जैसा तो शायद सोच भी नहीं सकते.
1: लोग मुझे कहते हैं कि भाई मैं तो फ्लेक्सिबल नहीं हूँ.
0: हाँ,
1: मैं तो नीचे झुक कर अंगूठों को भी छू नहीं सकता, मैं कैसे करूंगा. लेकिन आप मलखम करते करते आपकी ये सब एबिलिटी बढ़ जाएगी. स्ट्रेंथ होगा, स्टेमिना होगा, स्पीड होगा, एंड्योरेंस होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा, करते करते बढ़ जाएंगे. ऐसा नहीं कि प्री रिक्विजिट है ये करेंगे तो ही आप मलखम कर पाएंगे, ऐसा नहीं है. और मलखम में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लगती है, कहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ लगती है, कहाँ पर सिर्फ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपके मन में सीखने की इच्छा. इफ दैट इज देयर, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. तो ये शांतिलाल संघवी जी थे, उनका एक बाईपास का ऑपरेशन हो गया था. वो गुजराती थे तो कोई फिजिकल एक्टिविटी कभी जिंदगी में किया नहीं था उन्होंने, स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी उनकी एक इच्छा थी कि मुझे मलखम सीखना है. और उससे वो इतने आगे तरक्की कर गए.
0: क्या बात है, कमाल है सच में. जहाँ चाहे वहाँ राह है,
1: बस बस यही तो है. बस
0: बहुत ही सुंदर आपने मलखम को आज देश ने, देश के बाहर भी इतने लोगों को, स्टूडेंट्स को सिखाया. तो जब वहाँ आपने इंट्रोडक्शन दिया, जैसे आप जापान गए या फिर अलग अलग कंट्रीज में, तो वहाँ क्या रिएक्शन मिला आपको?
1: ये भी वेरी इंटरेस्टिंग है. जैसे जर्मनी में 2004 में हमने पहला प्रशिक्षण वर्ग लिया तो 50 बच्चे थे, 8 दिन का शिविर था. तो 8 दिन में वो क्या सीखे, उसके लास्ट दिन में उनका डेमोन्स्ट्रेशन था, 45 मिनट डेमोन्स्ट्रेशन और फिर 15 मिनट क्वेश्चन आंसर. तो बच्चों का डेमोन्स्ट्रेशन देखकर वहां के जो स्पेक्टेटर्स थे, प्रेक्षक वर्ग, बहुत इम्प्रेस हो गए. तो उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स में एक डॉक्टर जॉर्ज लेशनर करके आगे आ गए। उन्होंने पूछा, मिस्टर देशपांडे, आप इतने लंबे मुंबई से हमें म्यूनिक में मलखम सिखाने के लिए जर्मनी में आ गए हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि हम जर्मन लोग खेल में बहुत अग्रसर हैं, तो यदि हम मलखम के पास देखेंगे तो हम आपको सरपास करके आगे निकल जाएंगे। ये मैं बोला बिल्कुल सही है, इफ यू थिंक ओनली फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आप जैसे विकसित देशों में या भारत जैसे विकसनशील देशों में कुछ सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे आप बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको जितने मार्क्स चाहिए उतने एग्जाम में मार्क्स मिलते नहीं है, या मार्क्स मिलेंगे तो भी जिस कोर्स को वो एडमिशन चाहते हैं वो कोर्स को एडमिशन नहीं मिलती है, या एजुकेशन पूरा होने के बाद नौकरी नहीं मिलती है, तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स इसके आदि हो जाते हैं। तो मलखम आपको सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है। और आजकल के चेंज लाइफस्टाइल में बच्चे छोटे उम्र से हाथ में मोबाइल आ जाता है, फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, फिर वो मैदान पे जाना ही भूल जाते हैं, और फिर एट द एज ऑफ 35-40 फिर कमर दर्द होती है, पीठ दर्द होती है, नेक एक होता है, और फिर वो जिंदगी भर दवा लेके अपने आगे की जिंदगी गुजार देते हैं। तो मलखम आपकी रीढ़ की हड्डी को सबसे अच्छा व्यायाम है। दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड विच इज कंसिडर्ड एज द की ऑफ गुड हेल्थ। तो यदि आप मलखम करेंगे तो आपका स्पाइनल कॉर्ड इतना अच्छा बनेगा कि ये सभी विकार आपको कभी छू नहीं पाएंगे। तो ये मलखम के जो बेनिफिट्स हैं ये हमारे तक सीमित न रखते हुए आप तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ आए हैं, और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि 2004 साल के बाद 16 साल लगातार वो मुझे अगस्त सितंबर में जर्मनी में बुलाते रहे, और मैं 10 लोगों बच्चों को लेकर वहां जाता था, सभी का खर्चा वही करते थे, और वहां पर 50-50 बच्चों के दो शिविर होते थे, तो एक साल में 100 जर्मन बच्चे मलखम सीखते थे, तो 16 साल में 1600 जर्मन बच्चे मलखम सीखे हैं।
0: क्या बात है।
1: अभी 2018 में हमने किया था तो 12 जर्मन बच्चों ने एक साल का मलखम टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया।
0: अच्छा।
1: और वो अभी मलखम के टीचर्स बन गए जो अभी जर्मनी के अलग अलग पार्ट में जाकर मलखम सिखाते हैं।
0: वंडरफुल। मतलब उन्होंने उसको और ही वो आगे लेके गए, खुद तो सीखा ही अब वो सिखा भी रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: जी, क्या बात है। सर, जैसा कि हम जानते हैं मतलब भारत में जो तरीके हैं जीवन के वो अलग हैं और विदेशों में बहुत अलग संस्कृति है, बहुत अलग है, तो क्या वहां से कोई चैलेंज आता है सिखाने में या फिर समझाने में?
1: एक तो ये है कि लैंग्वेज
0: जी,
1: हम यहाँ तो मराठी में सिखाते हैं,
0: हाँ जी,
1: ज्यादातर हिंदी बोल लेते हैं, कभी कभी गुजराती, कन्नड़ा, जहाँ जहाँ भारत के अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो भाषा बदल जाती है, लेकिन वहाँ हमारे असिस्टेंट मिलते हैं जो मेरी भाषा समझेंगे, बच्चों को उसी भाषा में समझाएंगे। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा 2003 में कि 2004 में मुझे जर्मनी जाना है और मलखम सिखाना है, तो मैंने मेरे एक स्टूडेंट है डॉक्टर नीता ताटके, उनके कॉलेज से मैंने दो लड़कियों को सुबह 6 बजे व्यायामशाला बुलाया जो जर्मन भाषा जानती थी।
0: अच्छा।
1: वो 6 से 7 बजे तक मुझे जर्मन भाषा सिखाती थी और फिर 7 से 8 मैं उनको मलखम सिखाता था।
0: अच्छा, क्या बात।
1: तो एक साल में मैं जर्मन भाषा इतनी अच्छी ढंग से सीख गया कि फर्स्ट कैंप मैंने जर्मन भाषा में लिया, एंड दैट वाज सो सक्सेसफुल। अगले 16 साल में वहां जर्मनी में जाकर जर्मन लैंग्वेज में मलखम सिखाता हूँ।
0: क्या बात है सर। मतलब अपने देश की संस्कृति को वहाँ जाकर उन्हीं की भाषा में आपने सिखाया, और क्योंकि ये खेल जो है जैसा आपने कहा इंडिजिनस खेलों को भी आज खेलो इंडिया में जोड़ा है सरकार ने, जो ये पद्मश्री की आपकी जर्नी रही, ये कैसा अनुभव था जब आपको पद्मश्री से सम्मानित किया सरकार ने, और जब वो क्या फीलिंग थी आपके दिल में?
1: दैट इज रियली अ वेरी मेमोरेबल लाइफ टाइम एक इंसिडेंट है कि एक पद्मश्री अवार्ड को अवार्ड से सम्मानित होना
0: जी।
1: वो आपको एक दिन पहले बुलाते हैं और वहाँ आपको अशोका होटल में रहते रहने की व्यवस्था करते हैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो वो सफारी सूट पहन के और 9 yard साड़ीज पहन के वहाँ के अधिकारीगण आता है, आपकी आरती उतार कर कुमकुम तिलक लगा कर आपका स्वागत करता है, फिर आपको रूम अलॉट करते हैं, फिर आपको नीचे वॉल ऑफ फेम होती है, उसमें सभी पद्मश्री विजेताओं के फोटोग्राफ्स होते हैं, तो आपके फोटो के नीचे आपको साइन करनी होती है। फिर ANI और दिल्ली दूरदर्शन के लोग आके आपकी मुलाकात लेते हैं कि आपने कौन सा काम किया, कैसे शुरू किया और उसको आपको चैलेंजेस कौन कौन से आ गए और आपने कैसे ओवरकम किया, ये सब मुलाकात होती है। और उसके बाद मुझे दिल्ली आकाशवाणी ने बुलाया था, तो आकाशवाणी ने एक घंटा मेरी मुलाकात ले ली वहां पर, तो वो भी ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित हो गई। उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने बुलाया था और पूरे इंडिया से 60-70 जो उनके अधिकारी गण है, प्रशिक्षक गण है, उनके सामने मेरा एक घंटे का भाषण हो गया। तो मलखम क्या होता है, वो बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, बाधाएं कौन

0: कौन सी है और उसके ऊपर क्या करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मलखम ऐसा चीज है कि जो बेसिक डिसिप्लिन कहते हैं उसको, कि बाकी सभी खेलों को जो एबिलिटीज लगती हैं वो मलखम में अच्छी डेवलप हो जाती है। तो आप मलखम करेंगे तो बाकी कोई भी खेल आसानी से खेल सकते हैं, वहां आपका एनहांसमेंट ऑफ योर एबिलिटीज हो जाता है। तो ये उनके पास तक पहुंचाने के लिए अच्छा मौका मिला मुझे। और फिर शाम को एक दिल्ली में IAS ऑफिसर्स की एक लॉबी है
1: जी।
0: उन्होंने मुझे बुलाया था, एक डिनर वहां अरेंज किया था और उन्होंने भी ये पूछा कि आज तक के आपकी जर्नी में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सके और हमें क्या करना चाहिए ताकि ये खेल बहुत आगे बढ़ेगा
1: जी।
0: तो ये बहुत क्या बोलते हैं उसको, मलखम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स थे। और फिर दूसरे दिन सुबह पहले 11 बजे बुलाते हैं आपको और एक रिहर्सल हो जाती है कि आपको कहाँ बैठना है, फिर आपका नाम आने के बाद आपको कैसे चल के सामने आना है, फिर यहाँ सब मंत्रीगण हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स, और उनको उनके पास नमस्ते करना है, और फिर सामने राष्ट्रपति महोदया होगी, उनको नमस्ते करना है, फिर चलते चलते चलते उनके पास तक जाना है, उनके पैर को हाथ लगाकर छूना नहीं है, उनको सिर्फ लंबे से नमस्ते करना है, शेक हैंड करना नहीं है, और फिर वो आपको बैच लगाएगी आपके इस पे और फिर आपके हाथ में वो सनद दे देगी। उस समय आपको इस बाजू में देखना है ताकि वहाँ कैमरामैन होंगे, वो आपका फोटो ले लेंगे
1: जी, जी, जी।
0: और फिर उस समय आपके जो गेस्ट आए हैं उनको आपको चीयर अप करना चाहिए ताकि कैमरा उनके पास जाएगा, वो भी दिखाई देंगे। ये सब रिहर्सल होती है। और उसके बाद शाम को 5 बजे हमें वहाँ वापस बुलाया जाता है। तो हर एक पद्म पुरस्कार विजेता को गाड़ी दी जाती है, वो अशोका होटल से लेकर वहाँ राष्ट्रपति भवन को ले जाते हैं। और वहां जाने के बाद आप सुबह जैसे सब अपने अपने जगह पर बैठते हैं, 6 बजे का प्रोग्राम होता है, तो 5:40 को पहले जयशंकर जी और अमित शाह और आते हैं, फिर 5 मिनट पहले नरेंद्र मोदी जी आते हैं और बिल्कुल 6 बजे राष्ट्रपति आते हैं वहां। और वह आने के बाद राष्ट्रगीत होता है और उसके बाद जो सेक्रेटरी होम मिनिस्टर का होता है वो आके मार्चिंग करते हुए उनके सामने जाता है, पद्म अलंकरण समारोह शुरू करने की आज्ञा चाहता हूँ।
1: अच्छा।
0: और फिर राष्ट्रपति जी उसको आज्ञा देते हैं और फिर कार्यक्रम की शुरुआत होती है। पहले पद्म विभूषण होते हैं, फिर पद्म भूषण होते हैं, फिर पद्मश्री होते हैं। हमारे यहाँ 3 पद्म विभूषण थे, फिर 12 पद्म भूषण थे और बाकी अबाउट 64 पद्मश्री विजेता थे। तो ये सबका पुरस्कार वितरण होने के बाद फिर दरबार हॉल से हम अशोका हॉल में जाते हैं, फिर अशोका हॉल में वहाँ सबके साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ होता है और फिर ग्रुप फोटोग्राफ होने के बाद बैंक्वेट हॉल में जाते हैं। तो बैंक्वेट हॉल में हाई टी होती है, तो सब पद्म पुरस्कार विजेता दोनों साइड में खड़े रहते हैं। तो पहले द्रौपदी मुर्मू जी आते हैं, सबको नमस्ते नमस्ते करते हुए आगे चले जाते हैं, फिर नरेंद्र मोदी जी आते हैं। तो वो हर एक पद्म पुरस्कार विजेता को नाम से पहचानते हैं और आपकी बीवी क्यों नहीं आई, आपकी बच्ची की नौकरी का क्या हो गया, अभी आपका लड़का अभी कहाँ है, सबको पूछताछ करते करते जाते थे। उस समय मैंने उनसे हाथ मिलाया और ये कहा कि हम सभी मलखम प्रेमी आपके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि जिस खेल को एक जमाने में केंद्र शासन से मान्यता भी नहीं थी, उस खेल को आज आपने अर्जुन पुरस्कार शुरू किया, द्रोणाचार्य शुरू किया, अब उसको पद्मश्री शुरू किया है, आपने मलखम का सम्मान बहुत बढ़ाया है। उन्होंने तुरंत मुझे कहा, मलखम का सम्मान हमने नहीं, आप लोगों ने बढ़ाया है। और फिर अमित शाह जी के घर में फिर एक डिनर होता था शाम को, तो हम सब लोग वहाँ डिनर के लिए चले। तो ये एक बहुत मेमोरेबल इवेंट है और मुझे तो यही लगा कि मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इस सम्मान का अधिकारी हो गया, लेकिन मेरे से ज़्यादा मलखम फील्ड में काम करने वाले बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कि जैसे बालम भट्ट दादा देवधर हैं, जिन्होंने दूसरे बाजीराव पेशवे के जमाने में कुश्ती के लिए एक कॉम्प्लीमेंटरी एक्सरसाइज करके मलखम की शुरुआत की। और फिर ब्रिटिशों ने पेशवा का पराभव करने के बाद उनको कानपुर में रखा था, तो उस समय पूना से कानपुर जाने के लिए बसेस ट्रेन्स या कार्स नहीं थी, तो उस समय पैदल ही चले जाते थे। तो पूना से सूरत, सूरत से बड़ौदा, बड़ौदा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से देवास, देवास से उज्जैन, फिर ग्वालियर, फिर झांसी, फिर वाराणसी और वाराणसी कानपुर। ये जिस मार्ग से वो गए वहाँ कुछ दिन उन्होंने रह के वहाँ अखाड़े शुरू किए। आज 200-250 साल के बाद भी वो अखाड़े जिंदा है, वहाँ मलखम है, लेकिन करने के लिए कोई नहीं है, सिखाने के लिए कोई नहीं है
1: जी।
0: तो इसको रिवाइव करने की बहुत आवश्यकता है,
1: बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
0: तो ये सब लोगों ने उस समय काम किया था। तो उसके बाद भी भोपाल में शंकर कृष्ण मोघे जी थे जिन्होंने कूल गेम्स में मलखम का इंक्लूजन कर दिया। फिर ग्वालियर में अच्युत यशवंत साठी जी थे, उन्होंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में मलखम शुरू किया। या अमरावती में हरिबाबा देशपांडे, प्रभाकर पंत वैद्य थे जिन्होंने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल इतने साल चलाया। फिर पूना में महाराष्ट्र मंडल के शिवराम पंत दामले थे जिन्होंने अभी 125 साल होने वाली संस्था उन्होंने उस समय स्थापन की। झांसी में अन्ना साहेब खानविलकर जी थे, यानी महाराष्ट्र के थे लेकिन झांसी में उन्होंने लक्ष्मी व्यायाम मंदिर की स्थापना की
1: जी।
0: या माणिकराव जी थे जिन्होंने बड़ौदा में शुरू किया जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर। या वैद्य मद करमरकर जी थे जिन्होंने मिरज में मलखम का शुरू किया, उनके 9 बेटियां थी तो 9 ही बेटियों को उन्होंने मलखम सिखाया था उस जमाने में। तो ये सब लोगों के, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 रोटी खाने के बाद मेरा पेट भर गया, ये सिर्फ 4थी रोटी का काम नहीं है, पहली 3 रोटी है उन्हीं का काम है कि उनकी वजह से मेरा पेट भर गया। तो आज मुझे पद्मश्री का सम्मान मिला होगा लेकिन इन सभी लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी मलखम के लिए दे दी, तभी आज मलखम को ये दिन देखने को मिले हैं।
1: बहुत सुंदर आपने इसको व्याख्या बड़ी सुंदर की, वो जो आपने कहा जैसे 4थी रोटी का काम नहीं, लेकिन हम यही कहते हैं हमेशा। और लेकिन ये 4थी कड़ी बड़ी जरूरी है, ये यात्रा बहुत बड़ी है सर। जैसे अगर हम मलखम कोई सीखना चाहे, आज कोई बच्चा है या कोई भी युवा है करना चाहे, तो उनको क्या करना होगा, कैसे शुरू करना होगा, कहाँ जाना होगा, कुछ अगर आप उन्हें गाइड करें।
0: अभी पहले से तुलना में अभी बहुत अच्छे दिन हैं कि पहले मलखम बहुत कम जगह पर होता था लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में मान लो हर एक स्टेट में मलखम कहीं ना कहीं चलता है। महाराष्ट्र में हो तो हर एक जिले में मलखम चलता है। तो आपको किसी भी संस्था में जाकर मलखम सीखना है तो बाकी सभी खेलों के लिए कहीं बड़े मैदान की आवश्यकता है
1: जी।
0: या तो कॉस्टली इक्विपमेंट की आवश्यकता है, या जैसे शटल कॉक है या बॉल्स है तो उसकी रिकरिंग एक्सपेंसेस है, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक लकड़ी का खंबा या एक रस्सी हो। और जैसे हम जिम में जाते हैं तो जिम में भी अलग अलग मशीन्स होते हैं, जैसे काफ मसल्स के व्यायाम के लिए अलग मशीन होता है, थाई मसल्स के लिए अलग मशीन होता है, या लोअर बैक के लिए अलग मशीन है, अपर बैक के लिए अलग मशीन है, या तो शोल्डर्स के लिए अलग है, या बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए अलग मशीन है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, एक लकड़ी का खंबा है या एक रस्सी है। और कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज्यादा से ज्यादा व्यायाम देने वाला दुनिया में एकमात्र प्रकार है। तो आपको इसको सीखने की जरूरत है और वो अच्छे शिक्षक से यदि सीखे, प्रशिक्षक आपका अच्छा हो, तो आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है और बाकी भी जो मेंटल एबिलिटीज है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे ग्रास्पिंग है, तो ये सब मलखम से बहुत अच्छे डेवलप हो सकते हैं। तो इसके लिए हम हमेशा चाहते हैं कि लोगों को इसके बारे में जानकारी देना बहुत आवश्यक। जैसे मैंने ब्लाइंड स्कूल में सिखाया तो छोटी छोटी लड़कियां थी जिन्होंने शुरू किया था, उसमें से प्रांजल पाटिल थी जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं तक 10 साल वो मलखम करती थी। नाउ शी इज द फर्स्ट ब्लाइंड IAS ऑफिसर इन इंडिया, जो चेन्नई में कलेक्टर थी, अभी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिल्ली में काम करती है। तो ये मलखम से आपकी जो मेंटल एबिलिटीज है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन है, करेज है, कॉन्फिडेंस है, ये भी अच्छे डेवलप हो जाते हैं। मैंने जो डॉक्टर नीता ताटके जी का जिक्र किया, उन्होंने अपने PhD का थीसिस भी सब्जेक्ट यही था, मेंटल बेनिफिट्स बाय द प्रैक्टिस ऑफ मलखम। तो उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया मेडिकली साइंटिफिकली कि बाकी खेल खेलने वाले और मलखम करने वाले, या कुछ भी खेल नहीं करने वाले और मलखम खेलने वाले, इनमें क्या फर्क होता है। और उसमें पॉजिटिव थिंकिंग है, क्विक डिसीजन मेकिंग है, इसमें बहुत उन्होंने पैरामीटर्स लिए थे, और इसमें मलखम करने वाले से कितना फायदा होता है वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो ये फायदे लोगों तक पहुंचाना है। और बाकी जैसे आपने जिक्र किया था कि हम जब फॉरेन कंट्रीज में

0: मलखम के नाम मैंने वही रखे, सादी उड़ी टेढ़ी बगली खांदी, वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं किए। तो वो लोग भी आज वही लैंग्वेज में सीखते हैं और सूर्य नमस्कार जब लेते हैं तो 1 2 3 4 यही नाम लेते हैं। तो इट्स नॉट ओनली अ गेम और स्पोर्ट बट इट्स अ कल्चर ऑफ आवर कंट्री। और हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने दुनिया को बहुत सारी चीजें दी है
1: जी।
0: जैसे गणित में शून्य की संकल्पना है या सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। तो तक्षशिला द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, तो जैसे महामुनि पतंजलि ने दिया योग शास्त्र, उसी कड़ी में मलखम है जो कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज्यादा से ज्यादा व्यायाम देता है। तो ये चीजें लोगों को मालूम होनी चाहिए ताकि लोग अपनी अपना कल्चर संस्कृति इसको बढ़ाने के लिए मलखम सीखने की कोशिश करेंगे। बस हमारा मकसद यही है। और मलखम का सबसे ज्यादा इफेक्टिव बेनिफिट ये है कि नॉट ओनली द एक्सटर्नल मसल बट इंटरनल सिस्टम रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव इनको सबसे ज्यादा व्यायाम मिलता है और आपकी जो डिसीज रेजिस्टेंस पावर है वो अच्छी रहती है, इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है ताकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आने के बाद भी आपको कुछ नहीं होगा बिकॉज यू आर स्ट्रांग इंटरनली। जैसे हम बाहर बहुत बारिश है और हमें बाहर जाना है तो हम ये नहीं कहते कि बारिश रुकने के बाद मैं जाऊंगा, हम छाता लेते हैं या रेनकोट पहनते और चले जाते हैं। वैसे बाहर कुछ भी हो लेकिन अपने लिए एक शील्ड तैयार करना है और हम अपने काम के लिए लगना है। ये मलखम का बहुत फायदा है। एक समर्थ भारत, सशक्त भारत, सुदृढ़ भारत बनाने के लिए मलखम बहुत इम्पोर्टेंट चीज है।
1: मैं आपसे यही प्रश्न पूछने वाली थी, मुझे लगता है प्रश्न पूछने से पहले आपने उसका उत्तर दे दिया कि भारत के लिए, भारत की संस्कृति की हम बात बहुत करते हैं और कहाँ क्या मलखम की भूमिका है जो हम नए भारत के निर्माण की बात करते हैं आज या भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम का हम आज जिक्र करते हैं और वो बहुत खूबसूरती से आप मुझे लगता है सवाल से पहले ही आपने उसका जवाब दे दिया।
0: इसे लोगों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत में पॉपुलेशन बहुत है
1: जी।
0: लेकिन जगह का समस्या है, हर एक स्कूल को मैदान भी नहीं है
1: जी, जी।
0: और क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी जैसे बड़े बड़े खेल हैं जिनके लिए बहुत मैदान की जरूरत है। तो हम कम से कम जगह में कम से कम कॉस्ट में कौन सा खेल सीख सकते हैं, तो ये मलखम है। एक क्लासरूम में भी लगा सकते हैं, टेरेस में भी लगा सकते हैं, मैदान पे भी लगा सकते हैं, एक वरांडा में भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हो सकता है। तो ये बात ज्यादा लोगों तक जानी चाहिए और वो खेल करके उनके सेहत तो अच्छी बनेगी लेकिन किसी भी बाकी खेल में भी वो प्रोग्रेस करेंगे और अपने एकेडमिक करियर में भी उसका लाभ उठाएंगे
1: जी।
0: इसके लिए मलखम का अनन्य साधारण महत्व है
1: जी। एक और सवाल मैं युवाओं के, क्योंकि एक प्रश्न जरूर होता है जब भी कोई कला की बात होती है या फिर स्पोर्ट्स की, तो क्या हम इसको इंटरनेट से सीख सकते हैं या हम एक प्रशिक्षक, जैसा आपने कहा बहुत जरूरी है, क्या ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये सही दिशा नहीं रहेगी?
0: नहीं, हो सकता है, उसमें कुछ बाधाएं हैं। जैसे आपके पास मलखम नहीं होगा तो आप क्या सीखेंगे
1: जी? बिल्कुल,
0: जहाँ सेंटर है वहाँ मलखम होगा, व्यायामशाला है या जिम्नेशियम है, लेकिन आपके घर में मलखम होना चाहिए तभी आप ऑनलाइन सीख सकते हैं
1: जी। बिल्कुल।
0: तो मैंने चाइना में पहला मेरा जो वर्कशॉप हुआ उस समय उन्होंने डेट्स कुछ फाइनल किए थे लेकिन उस समय कोरोना आ गया
1: जी।
0: और मुझे परमिशन नहीं मिली जाने के लिए
1: जी।
0: तो उन्होंने ऑनलाइन किया तो उस समय उनके पास रस्सी थी तो रस्सी बांधकर मैं यहाँ एक लड़के को सिखाता था कैसे करना है और उसको देखकर फिर उन्होंने ट्रेनिंग चालू किया। तो ये हो सकता है ऑनलाइन।
1: अच्छा, ऑनलाइन ही हुआ ये पूरा,
0: ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है। और फिर उसके बाद कोरोना का थोड़ा असर कम होने के बाद उन्होंने फिर से मुझे बुला लिया और मैंने वहां जाकर फिर फिजिकली मलखम का ट्रेनिंग लिया, लेकिन उन्होंने पहले ये ऑनलाइन किया था। तो यदि आपके पास पोल मलखम है या रोप मलखम है तो उसके ऊपर हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज है प्रशिक्षक, प्रशिक्षक बहुत आवश्यक है। हम हमेशा ये कहते हैं कि जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स होगा या लैंग्वेजेस होंगे या साइंस होगा या मैथ्स होगा, इसका टीचर अच्छा नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होता है, बच्चों को मार्क्स कम मिलेंगे। लेकिन मलखम का शिक्षक अच्छा नहीं होगा तो बच्चा ऊपर से गिरेगा, हाथ पैर उस

0: टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, या तो गर्दन पे गिर जाएगा तो लूला हो जाएगा। तो इसके लिए शिक्षक अच्छा होना चाहिए, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता है। तो उसके लिए फिजिकली टीचर्स ट्रेनिंग करके बट ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिक्षक तैयार करने की बहुत आवश्यकता है।
1: मतलब अब आप शिक्षक और तैयार करने हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, सर जैसे कि आपने अपने अनुभव साझा किए इतने समय के, अब आगे का आपका क्या विजन है, आप क्या चाहते हैं?
0: मैं हमेशा यही कहता हूँ, कहने वाले कुछ भी करे मेरे मन में शंका नहीं, सौगंध खाकर कहता हूँ मलखम का पर्याय नहीं। तो मलखम एक ऐसी चीज है कुछ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और ये हमारा फर्ज है। जो भी आज तक मलखम सीखे हैं उनका ये फर्ज है कि वो बाकी लोगों तक पहुंचाए ना। फिर हम मलखम को एशियन गेम्स में ले जाएं, कॉमनवेल्थ गेम्स में मलखम शुरू करें, या ओलंपिक्स तक मलखम हमें पहुंचाना है। अभी कुछ स्तर पे मलखम है, जैसे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में है या कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में है, लेकिन सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में मलखम नहीं है या बैंक स्पोर्ट्स बोर्ड में नहीं है। तो इनको में भी मलखम सम्मिलित होने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए। तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होना चाहिए। जैसे रस्सी मलखम करते हैं तो कुछ बॉडी पार्ट्स पे रस्सी जब प्रेशर देती है तो एक्यूप्रेशर करके ज्यादा फायदा होता है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, मेडिकली ये साइंस एस्टेब्लिश करना चाहिए। मेरा एक इंस्पेक्टर था जो एक दिन मेरे पास आया, सर पेट में बहुत दर्द है। मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बोला किडनी स्टोन है और किडनी स्टोन ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो 3 महीने के बाद की डेट मुझे दी है, तो मैंने उसको कहा ठीक है अब 3 महीना सुबह व्यायामशाला आ जाओ, व्यायामशाला में हम 1 घंटा मलखम करेंगे और वहां से फिर हम दोनों ऑफिस में चले आएंगे। 3 महीना उसने रेगुलरली किया। 3 महीने के बाद जब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा बोला अभी किडनी स्टोन नहीं है,
1: अच्छा
0: ये क्या जादू हो गया। तो उसने बताया कि मैंने 3 महीना मलखम किया। तो मलखम करने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक आदमी का ऐसा होने से हम ये जनरलाइजेशन स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए उसके ऊपर रिसर्च होने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम करेंगे तब मालूम पड़ेगा ये इसके ऊपर एक रामबाण अक्सर इलाज है। वैसे ही उसके ऊपर रिटन मटेरियल बहुत होना चाहिए कि ऑडियो विजुअल हो या राइटिंग में हो, किताब हो। जैसे मैं छोटा था तब KTG सीरीज एक होती थी, नो द गेम, तो जिमनास्टिक्स हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल, KTG की छोटी छोटी किताबें आती थी, वैसे मलखम के ऊपर आनी चाहिए कि मलखम कैसे करना है, बेसिक एक्सरसाइज कैसे हैं। तो इससे लोग ज्यादा मलखम के ऊपर आकर्षित भी हो जाएंगे और सीख भी पाएंगे। और सबसे बढ़िया ये मलखम के टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रशिक्षक तैयार करने हैं।
1: जी, प्रशिक्षक भी तैयार करने, रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है आपने कहा, और ये अवेयरनेस फैलाने के लिए तो मुझे लगता है आप जन जागृति के लिए बहुत कार्य कर ही रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यूज के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग जगह ट्रैवल करके करना हो, आप बहुत कुछ।
0: अभी मेरी समर्थ व्यायाम मंदिर जो संस्था है उसमें 1000 बच्चे डेली आते हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जिमनास्टिक्स, एथलेटिक्स, जूडो, खो खो, मलखम, ये सब उनको सिखाया जाता है। 30 रुपीज पर मंथ टोकन फीस हम लेते हैं और 180 प्रशिक्षक है जो किसी प्रकार का वेतन सैलरी न लेते हुए बच्चों को 2-2, 3-3 घंटा डेली अपना अपना गेम सिखाते हैं। तो ये संख्या बढ़नी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और फिर जैसे हमने सीखा है वैसे दूसरों लोगों को सिखाने के लिए भी हमें कोशिश करनी है।
1: यहाँ मेरा एक प्रश्न है, जैसा आपने कहा कि इतने बच्चे आते हैं, इतने टीचर्स जुड़े हैं बिना कुछ लिए हुए, वो 30 रुपए प्रतिमाह का, तो ये सर हमको क्या भाव क्या मिलता है? जैसे आजकल हम कोई भी कार्य करते हैं तो सोचते हैं कि इससे मुझे क्या फायदा होगा या इससे मुझे क्या सैलरी मिलेगी, तो क्या प्राप्ति होती है खुद को?
0: एक तो यह है कि मार्क ट्वेन करके एक जगह प्रसिद्ध तत्ववेत्ता था, तो मुझे मार्क ट्वेन की स्टोरी आ जाती है। उसका ये कहना था कि कोई भी आदमी कोई भी काम अपने स्वार्थ के लिए करता है। एक दिन वो गाड़ी से जा रहा था, उसका दोस्त उसके बाजू में बैठा था, ड्राइवर गाड़ी चलाता था, जाते जाते उन्होंने देखा कि रास्ते के बाजू में एक कीचड़ का एक तालाब था और एक छोटा कुत्ता उसमें गिर गया था। वो बचने के लिए हाथ पैर मार रहा था, उसको जम नहीं रहा था। ये देखकर उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा, पीछे लाया और खुद उतर गया और वो कुत्ते का छोटा जो बच्चा था उसको निकाल के बाहर रख दिया। वो कुत्ते का जो छोटा बच्चा था वो दौड़ते दौड़ते निकल गया। तो उसके दोस्त को याद आ गया, अभी इसको अच्छा पकड़ेंगे हम। वो जब गाड़ी में बैठ गया तो उसको पूछा, जिसको आप जानते भी नहीं थे, ये कुत्ते के छोटे बच्चे को बाहर निकलने का आपका क्या स्वार्थ है, आपने क्यों किया? थोड़ा मेरा स्वार्थ है उसमें, मैं यहां से जाकर घर में सोने के लिए बिस्तर पे पड़ा रहता था, लेकिन मेरे आंख के सामने वो कुत्ते का बच्चा ही दिखाई देता था और मुझे नींद नहीं लगती थी, तो मुझे अच्छी नींद लगे यही मेरा स्वार्थ था। तो वैसे जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो हमें एक समाधान मिलता है कि हमने समाज के लिए कुछ किया है, एक अपने को शांति मिलती है। तो यही दूसरों को सिखाने से या उनमें जो उससे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसे मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस ब्लाइंड बच्चों को मैंने मलखम सिखाया और उससे जो 35-40% मार्क्स मिलते थे उनको 80-90% तक मार्क्स मिल गए, जो लड़कियां उस समय स्कूल में थी वो कॉलेज में 10वीं 12वीं फिर बीए एमए करके आज अच्छी नौकरी में हैं, जिनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, उपहार है मेरे लिए। तो यही आपको यदि समाज में कुछ अच्छा काम करना है, और ये करने में आपको जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो खूब ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है दूसरों को सिखाने से, तो इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी संस्था को अभी 100 साल हो गए, तो ये 100वें साल में मैंने ऐसे डिसाइड किया था, मैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, भारत में, भारत के बाहर 100 जगह पर जाकर मलखम सिखाऊंगा, और 365 दिन में मैं 107 जगह पर चला गया और वहां पर मैंने मलखम सिखाया। तो ये कितना बड़ा समाधान है मेरे लिए, बहुत बड़ा है। उसमें चाहे मेरा कुछ पैसा गया होगा, लेकिन जिस लोगों ने मलखम सीखा उनके चेहरे पे जो रौनक आ गई, उनको जो समाधान मिला, उसका कहीं कीमत नहीं कर सकते हैं। जी,
1: बहुत सुंदर सी मुस्कान आ गई आपके चेहरे पर, ये और मुझे लगता है ये जो संतुष्टि, सच्ची संतुष्टि है, ये मुस्कान उसी से आ सकती है, और तो शायद संभव नहीं है। आज हम बनावटी मुस्कुराहट की दुनिया में जीते हैं। सर, बहुत सारा खजाना है आपके पास और उसमें से कुछ अंजलि आज हमें मिली है। जाते जाते एक छोटा सा और एक राउंड है, एक प्रोग्राम का पार्ट है कि मैं आपसे एक छोटा सा गेम है ये जैसे कि मैं एक शब्द कहूंगी और वो शब्द सुन के आपके मन में जो पहला शब्द आता है, जो शब्द आता है वो एक शब्द आपको बताना है। तो कुछ 4-5 ऐसे शब्द हैं जो मैं आपसे कहूंगी और फिर जो शब्द आपको उससे समझ में आए। तो पहला शब्द है मलक।
0: जीने का एक अलग तरीका।
1: अलग तरीका,
0: हाँ
1: जी। पुरस्कार।
0: आपके सफर में एक छोटा सा स्टेशन है जहाँ रुकना नहीं, आगे चलते रहना है।
1: युवा।
0: युवा इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। यदि युवा अच्छे हो जाएंगे तो आपका देश सशक्त हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा।
1: भारत।
0: भारत सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा।
1: क्या बात। और अंत में मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, हम आपके बारे में जानते हैं, हम मलखम के बारे में आपके माध्यम से आज बहुत कुछ जाने, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उदय विश्वनाथ देशपांडे जी कौन है तो आप क्या कहेंगे?
0: एक पागल आदमी है जिसने अपना एक गोल सेट किया और उसके ऊपर बाकी सब बाजू छोड़कर उसी के पीछे लगता रहा।
1: जी, और इसमें शायद वो पागलपन चाहिए, इसके बिना नहीं संभव है ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। तो ऐसा, ये तो बहुत फायदे वाला है और सिर्फ अपने नहीं, युवा वर्ग के, समाज के, देश के फायदे वाले हैं।
0: See, this is the determination, dedication, क्योंकि अभी हंसी आती है, लेकिन जब मैं, मेरे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, और जब मेरा पहला बच्चा पैदा हो गया, उस समय मेरे चाचा बहुत बुजुर्ग थे, वो गांव से आए थे, उन्होंने कुछ दिन मेरा ये रूटीन देखा कि सुबह भोर जल्दी निकल जाना और रात को लेट घर वापस आना। तो एक दिन उन्होंने मुझे पूछा कि उदय, तुम जब ये तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा ना, तो उसको डांटना नहीं है? तो बोला, ऐसा क्यों कहते हैं? बोला, वो मम्मी को पूछेगा ये संडे को आने वाले मेहमान मुझे क्यों डांटते हैं।
1: ये आप सुबह से लेकर रात
0: सिर्फ संडे को मैं घर जाता था दिन में, बाकी बस सुबह वो उठने के पहले मैं निकल जाता था और रात को वो सोने के बाद मैं वापस आता था। वैसे एक मेरी आंटी थी गांव में रहती थी, वो आने के बाद बोला अरे वो संजय कोई एक्टर है उसको भी जेल से घर जाने के लिए समय मिलता है, तुम कौन सी नौकरी करते हो तुम्हें घर जाने के लिए कोई छोड़ता नहीं,
1: नहीं, नहीं है।
0: ऐसे बहुत सारे मैंने अपनी बीबी को भी बताया था शादी के पहले कि ये मेरी सेकेंड मैरिज है, पहले मैरिज मेरे रैंकल के साथ मलकम के साथ हुआ हुआ है।
1: सही बात है, आपका जो पूरा समय है आपने वो डेडिकेट किया, मुझे लगता है परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है इसमें, उनका सपोर्ट बहुत मायने
0: बहुत इम्पोर्टेंट है
1: इसमें, बहुत
0: तो मेरे मिसेस ने ये सब भूमिका बहुत अच्छे ढंग से निभाई कि मेरे बच्चों को पढ़ाई कभी मैंने सिखाई नहीं उनको, उनके स्कूल में जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती थी कभी भी मैं स्कूल में गया नहीं, वो सब मेरी मिसेस करती थी। हमारी जॉइंट फैमिली थी, मेरे पिताजी मेरी माँ फिर मेरा बड़ा भाई उसकी मिसेस उसके दो बच्चे फिर मेरी मिसेस मेरे दो बच्चे फिर छोटा भाई उसकी मिसेस उसके दो बच्चे, एक ही किचन होता था। लेकिन मुझे कभी कुछ चीज़ें लाने के लिए घर में ये नहीं है वो नहीं है, आज तेल ख़त्म हो गया राशन ख़त्म हो गया ऐसा कुछ कभी देखना नहीं पड़ा, वो पूरी जॉइंट फैमिली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसीलिए मैं ये सब कर पाया और इतने सक्सेसफुली वो मेरी भूमिका अदा कर पाया मैं, उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है।
1: और बिल्कुल उनका बहुत बड़ा, जैसा आपने कहा बहुत बड़ा रोल है, और जो ये संभव नहीं था वरना, अरे ऐसे बहुत त्याग और बहुत सारा कुछ कहानी होती है उसके पीछे। हम एक उपाधि देखते हैं आज, एक देखते हैं कि अवार्ड मिला, ये आपका जीवन रहा, उसके पीछे बहुत बड़ा त्याग छुपा होता है।
0: बिल्कुल,
1: जी तो लास्ट बस प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं और अगर वो चैलेंजेस आते हैं इस दौरान तो आपने किस प्रकार से आपने उस चैलेंजेस को पार किया,
0: क्या है
1: चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर।
0: हाँ, चैलेंजेस में ही सॉल्यूशन होता है
1: जी।
0: जैसे मैं ईशा शर्वणी करके एक एक्ट्रेस हैं, वो जब 7-8 साल की थी तब से मैं केरला में जाकर त्रिवेंद्रम में उसको मलखम सिखाता था, अभी वो बहुत बड़ी हो गई, उसने किसना फिल्म में बहुत अच्छा पार्ट किया, तो एक नच बलिए या डांस इंडिया डांस ऐसे कुछ प्रोग्राम में वो परफॉर्म कर रही थी और सेमीफाइनल तक पहुंची थी और कुछ करते समय वो गिर गई और उसका हाथ प्लास्टर में आ गया। तो वो मेरे पास आ गई, सर मुझे फाइनल में जाना ही है तो मैं अभी क्या करूँ। मैं बोला आपको दो पैर हैं दो हाथ है, एक हाथ प्लास्टर में है तो दो पैर हाथ के जरिए आप मलखम कर सकती हैं। तो 10 दिन मेरे पास आई, डेली प्रैक्टिस किया और उस शो में फाइनल में वो जीत गई। तो इसका मतलब आपके चैलेंज को अलग नजरे से देखेंगे तो आपको उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा,
1: चैलेंज में ही सॉल्यूशन
0: मिल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड देन यू विल सक्सीड।
1: मतलब कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जिसको पार नहीं किया जा सकता।
0: हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपको करना है वो करने के लिए क्या करना चाहिए इसको सोचना चाहिए, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ये सोचना नहीं है, मुझे ये करना है उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये तरफ से नहीं ये तरफ से जाऊँगा मैं लेकिन काम करके रहूँगा। मैं नौकरी में था तब बहुत बार मुझे मेरे बॉसेस जो थे उनका बहुत हर समय सहयोग नहीं मिलता था। जैसे मैं 75 में नौकरी में ज्वाइन हो गया कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज में, आई ज्वाइंट एज इंस्पेक्टर, और महाराष्ट्र एमेच्योर जिमनास्टिक एसोसिएशन ने अगरतला में जिमनास्टिक की नेशनल थी और उसके साथ साथ उन्होंने मलखम की भी नेशनल लिया, तो उस समय जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज कंडक्टिंग मलखम नेशनल आल्सो, तो महाराष्ट्र का सिलेक्शन हो गया लेकिन वो नेशनल अगरतला में थी, वहाँ जाने के लिए उस दिन उस समय 8 दिन लगते थे जाने के लिए सिर्फ, अच्छा। 4 दिन की कॉम्पिटिशन 4-8 दिन वापस आने के लिए, यानी डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी अगरतला के लिए, तो मुंबई से लखनऊ, लखनऊ से गुवाहाटी, गुवाहाटी से लुमडिंग, लुमडिंग से धर्मनगर और धर्मनगर से 12 घंटा बस का प्रवास करके हम अगरतला पहुंचते थे। तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था कि 6 लड़के 6 लड़कियां जिमनास्टिक के और 4 लड़के मलखम के, ये 16 लोगों को लेकर, और मई महीना का पीरियड था तो रिजर्वेशन नहीं मिलते थे हर जगह पे, गाड़ी को बहुत भीड़ होती थी, तो जिमनास्टिक एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि इस साल हम नेशनल में महाराष्ट्र की टीम नहीं भेजेंगे। आई वॉज हार्डली 22-23 ईयर्स ऑफ एज। मैंने बोला मैं टीम लेके जाऊंगा, आप मुझे जिम्मेदारी दे दो। तो उन्होंने मुझे लेटर दे दिया, मिस्टर उदय देशपांडे इज अपॉइंटेड एज कोच कम मैनेजर फॉर द जिम्नास्टिक स्टेट टीम गोइंग फॉर द नेशनल्स। तो वो लेटर लेके मैं उस समय गोल्ड कंट्रोल डिपार्टमेंट था, तो डिप्टी कमिश्नर जो थे उनके पास लेटर लेके गया। तो उन्होंने कहा मिस्टर देशपांडे आप अभी अभी नौकरी में लगे हो और आप इतना 15 दिन की छुट्टी चाहते हो, तो आप पहले डिसाइड करो whether you want to work in the department or go for the nationals। तो मैंने मन में कहा मैं दोनों करूंगा सर, और उन्होंने कहा मैं आपके लीव सैंक्शन नहीं करूंगा। तो मैं वहां से निकाल के उनके ऊपर वाले जो चीफ कमिश्नर थे उनके पास गया, वो श्रीकांत तैयार साहब थे, हैदराबाद के थे। तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन देखा, मैंने सब उनको बता दिया, बोले यंग मैन गो टू योर ऑफिस एंड कीप अ नोट ऑन योर टेबल that as per commissioner's instructions, I'm going for the nationals, और चले जाओ। तो बस आपको decide करना है कि बस इसके ऊपर मैं कैसे conquer करूंगा, and you will get a solution.
1: So wonderful, sir. That's so wonderful and inspiring. मतलब बस निश्चय नहीं टूटना चाहिए,
0: बस
1: वो भरोसा खुद पर रखना है, और जैसा आपने कहा कैसे करना है वो ढूंढो, क्यों नहीं कर पाऊंगा ये नहीं सोचो। हाँ। बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस है सर, बहुत बड़ा खजाना है आपके पास, और न सिर्फ मलखम खेल के लिए बल्कि मुझे लगता है जीवन के लिए भी ये बातें हमें मोटिवेट करती हैं और हमेशा वो जज्बा जगाए रखती हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा आपसे बातचीत का, एक जर्नी की तरह था, हम भी आपके साथ जैसे चल रहे थे उस जर्नी में, और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जाना। आपका हृदय से आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए।
0: लवली, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों आशा करते हैं आपको भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और अगर इसमें से कोई भी एक बात अच्छी लगी तो मैं तो ये कहूंगी नोट करके अपने पास रख लीजिए ताकि जीवन भर याद रहे और आपके दिल में आपके जीवन में वो आ ही जाए। फिलहाल वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी 1 मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: बहुत बहुत स्वागत है आज की इस बातें मुलाकाती कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ बीके धरती जी उपस्थित हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सिनोर का जो सेवा केंद्र है उसे संभालते हैं और काफी लंबे समय से आप राजयोगा फ्री में लोगों को सिखा रहे हैं। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप उनके लिए लेक्चर्स, उनके लिए टॉक और योगा का जो सेशंस है वो हमेशा करते रहते हैं। रेगुलर आप अपने यहाँ ये कार्य करते रहते हैं, लोग जुड़ते हैं और अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। तो निश्चित तौर पे आपका ये सेवा कार्य बहुत ही सराहनीय है। तो आपका बहुत बहुत दिल से आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। ओम शांति धरती बहन, कैसे हैं आप?
1: थैंक यू, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आज विशेष
0: जो एक है ये गुजरात के वडोदरा

0: में है
1: हाँ जी, वडोदरा
0: या उसके पास में है?
1: के पास में सिनोर शिला केंद्र है, जो बहुत ही सुंदर जगह है, जो नर्मदा नदी के किनारे
0: अच्छा,
1: पर है। वहां पर बाबा का बहुत बड़ा ब्रह्मा कुमारीज आश्रम है, और वहां पर बाबा की सेवाओं में, परमात्मा सेवाओं में रहते हैं। और खास करके आज सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि नशा जो है वो इस प्रकार से बढ़ रहा है, सारे यूथ में, सारे कल्चर में, जैसे ये एक फैशन बन गई है। तो ब्रह्मा कुमारीज
0: बिल्कुल
1: विद्यालय जो है, वैसे भी पहले से ही सारे भारत, तो क्या सारे विश्व में नशे से मुक्त होने का एक बहुत सुंदर कार्य कर रही है। हमारा यही सपना है कि हमारा देश जो है वो व्यसन मुक्त हो जाए, सारा विश्व जो है वो इन विषयों, जो व्यसनों के चुंगल में फंसा है, उससे मुक्त हो जाए और अपने जीवन में पुनः खुशहाली लाए, सुख शांति लाए। तो इसीलिए विशेष आज हम खास करके ब्रह्मा कुमारीज की ओर से भी गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू हुआ है कि हम पूरे भारत में और पूरे विश्व में नशे से मुक्त करने के लिए एक अभियान निकालेंगे। जन जन को जाकर के, गांव गांव में जाकर के, स्कूल कॉलेजेस में जाकर के, हर एक को नशे के जो जो भी बैड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में बताएंगे। साइंटिफिकली वो हमारे तन, मन, धन, जन और संबंध में किस प्रकार से नुकसान कर रहा है, उसके बारे में भी सभी को समझाने का एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो जब से इस संस्था के स्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने यह अभियान शुरू से ही चलाया, और आज लाखों भाई बहने इस मार्ग पर चल रहे हैं, और 10 लाख से भी अधिक भाई बहने ऐसे हैं जो कि घर गृहस्थ में रहते हैं, अपना संसार भी संभालते हैं, कारोबार भी संभालते हैं, और फिर भी वे नशे से संपूर्ण मुक्त है, व्यसनों से मुक्त है, विकारों से मुक्त होकर के अपने समाज में, अपनी फैमिली में, अपने संबंधों में एक सुखदायी जीवन जी रहे हैं, आनंद का, खुशियों का अनुभव कर रहे हैं। तो खास तौर पर नशा जो है, हम सभी जानते हैं कि आइडियली हर मनुष्य को नुकसान करता है। सामान्यतः हमारी ऐसी सोच है कि नशा हो तो हम अपने आप में बहुत ही प्लेजर, आनंद या खुशी का अनुभव करते हैं, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। कई लोग तो टोबैको लेने वाले कहते हैं कि हम गैस से मुक्त होते हैं, हमको एक चैतन्यता प्रदान करते हैं। देखो, कहीं एक भाई तो हमको कह रहे थे, मैंने कहा कि भाई ये बीड़ी जो है ना, ये तो बिल्कुल नर्क का द्वार है, आपको इसे छोड़नी ही चाहिए। तो मुझे कहते, नहीं बहन, आ तो स्वर्गनी सीढ़ी छे, हमारे गुजरात में बोलते हैं। तो इस प्रकार से भी उत्तर देते हैं। एक भाई कहता है, जैसे कि वो गुटखा खाते हैं, तो कहते हैं ये तो चैतन्य चूर्ण है, तो इसको हम लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी चेतना बढ़ गई। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे ब्रेन में एक प्लेजर सेंटर है जिसमें ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमें आनंद देते हैं। तो ये टोबैको या अल्कोहल का नशा भी इस हमारे प्लेजर सेंटर को थोड़ा सा टच करते हैं, जिसके कारण वहां एंडोर्फिन नाम का एक हॉर्मोन्स है जो पैदा होता है, और थोड़े क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, वो व्यक्ति जो नशे से ग्रस्त है वो आनंद का, उत्तेजना का अनुभव करता है। लेकिन उसके बाद उसी हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए उसे कई प्रकार के नशे में बढ़ावा करना पड़ता है, जैसे कि पहले वो एक बैग लेता था, उसके बाद दो लेना शुरू करता है, फिर तीन लेना शुरू करता है, और उसके बाद वो उसका इतना आदी बन जाता है कि अब छोड़ना तो माइलों दूर हो जाता है। और अब ऐसी नौबत आ जाती है कि वो व्यक्ति नशा किए बिना चल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता। हम सभी जानते हैं कि ये नशा जो है वो हमारे परिवार को, हमारे संबंधों को भी और समाज को भी एक नकारात्मक व्यक्तित्व और साथ साथ दुख की फीलिंग्स, दुख देता रहता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय जो है वो सारे विश्व में नशे से आत्मा कैसे अपने आप को बचाए, कैसे उससे मुक्त हो, उसका एक सुंदर अभियान कई सालों से चला रही है। और अब तो गवर्नमेंट ने भी ये जान लिया है कि ब्रह्मा कुमारीज में सिखाने वाला जो राजयोग है वो 100% हमें नशे से मुक्त करता ही है, परंतु उसको नियमित रूप से किया जाए तो। जैसे नशे के बैड इफेक्ट्स मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, हम सभी जानते हैं। जैसे अगर आप अल्कोहल लेंगे तो आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन सेल हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और एक बार न्यूरॉन सेल जनरेट होने के बाद अगर डिस्ट्रॉय हुए तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं होते। ताकि हमारी याददाश्त, हमारी जो मेमोरी है, वो सब पर इसके इफेक्ट पड़ती है। फिर वो व्यक्ति कहता है मैं तो भूल ही गया, मुझे याद ही नहीं रहता। तो इस प्रकार से देखिए, ब्रेन जो हमारी बॉडी का एक अनमोल सिस्टम है, जो सारे बॉडी को न्यूरॉन सेल्स, नर्वस सिस्टम के थ्रू वो पूरी बॉडी को चेतना पहुंचाता है, वही अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आप देखेंगे कि अल्कोहलिक व्यक्ति पूरा जैसे कि शिवरिंग होता है उसका बॉडी। वो लोग सोचते हैं कि ये अल्कोहल लेने से जैसे हमें ऊर्जा आती है, हमारे शरीर में गर्मी आती है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो थोड़ी मिनटों के लिए होता है, उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे धीरे उसका बॉडी ठंडा होता जाता है। अल्कोहल की जो बैड इफेक्ट्स हैं सबसे ज्यादा हमारे लीवर पर होती है, लीवर धीरे धीरे डैमेज होता है और उसके कारण हमारे शरीर में एक जैसे कि जॉन्डिस जैसी बीमारी। आपको मैं बताऊंगी कि अल्कोहल से 60 प्रकार की बीमारियां होती हैं, खास करके लीवर डैमेज होता है, और लीवर डैमेज होने से जैसे पीलिया, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, उसकी इफेक्ट्स पूरे बॉडी में दिखाई देती हैं। व्यक्ति धीरे धीरे पीला होता जाता है, उसमें HB माना हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, और वो व्यक्ति वीकनेस फील करता है, धीरे धीरे हेडेक, मेमोरी लॉस, वीकनेस, लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होने के कारण पूरी बॉडी में सूजन, हीमोग्लोबिन का कम होना, तो ये सारी चीजें उसमें दिखाई देती हैं। और अल्कोहल का आदी व्यक्ति धीरे धीरे एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद वो पैग को बढ़ाता जाता है, तो उसके कारण जो है उसको धन की आवश्यकता भी पड़ती है, कमाने की या पैसा कमाने की उसकी जो कार्य क्षमता है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। घर में पत्नी और बच्चों के साथ नेचुरली उसका जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, समाज से भी उसको एक जैसे हेट्रेट मिलती है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार भी बन जाता है। लंबी अवधि तक हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़ते हैं, तो हम देख रहे हैं कि नशा जो है वो हमारे जीवन को किस प्रकार से बर्बाद करता है। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो टोबेको, तमाकू, सिगरेट जो है वो उसमें भर के जो टोबेको आती है उसमें जो है निकोटीन है, ऐसे जहरीले पदार्थ रसायन है जिसके कारण वो केमिकल्स हमारे बॉडी में, खास करके जो टोबेको आप जहां से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, तो आज तुम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, जबड़ों का कैंसर, आज मैक्सिमम कैंसर हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट देखे जाते हैं। कई लोग ऐसा भी आर्गुमेंट्स करते हैं कि बहन जी हम तो टॉबे को कई साल से लेते हैं, हमें तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं। पर हालांकि मैं उनको समझाती हूँ कि कैंसर आपको होना चाहिए, क्या आप ऐसा सोचते हैं? तब वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचते। दूसरा मैं कहती हूँ, आप इस टॉबेको में जो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, अगर उसके उसके उन्हीं पैसों से आप अगर अपने घर में है ना बादाम लाते हैं, दूध लाते हैं, बच्चों के लिए अच्छे बिस्किट्स या अच्छी कुछ चीजें लाते हैं, तो घर में एक खुशी का माहौल आ जाएगा और आप अपने जीवन में कितनी खुशियां पाएंगे। आपको मैं बताती हूँ, जहां पर जिस इलाके में मैं रहती हूँ, गुजरात का एक छोटा सा टाउन है, तालुका प्लेस है, पैलेस है, जहाँ जिसे शिनोर कहते हैं, वहां पर हम लोगों ने व्यसन मुक्ति अभियान चलाया, जहां पर हम लोगों ने जाकर के राज्यों की शिक्षा दी। तो वहां कई ऐसे भाई बहन हैं जो कि जिन्होंने आज व्यसनों से कंप्लीट मुक्ति पाई है, क्योंकि जब हम लोग राजयोग सिखाते हैं, व्यसनों का साइड इफेक्ट्स दिखाते हैं, उसके कारण होने वाली जो जीवन में दुख अशांति है उसके बारे में समझाते हैं, तब वे लोग हमें बताते हैं कि बहन जी सचमुच हम अपने जीवन में राजयोग अपनाएंगे और इन व्यसनों से अपने आप को मुक्त करेंगे। तो हमारे यहाँ एक अंबाली गांव है जहां पर हमारे नटू भाई हैं, हम आप सभी को उनसे मिलाएंगे। तो वो कई सालों से गुटखा खाते थे, तो जब हम उनके गांव में गए, उनके गांव में से लगभग 10 लोगों ने व्यसन टोटली छोड़ दिया है राजयोग के अभ्यास द्वारा। क्योंकि जब हम राजयोग सिखाते हैं, सेम जैसे अल्कोहल पीने से हमारे जो प्लेजर सेंटर पर इफेक्ट्स होती है और जो आनंद का अनुभव करता है व्यक्ति थोड़ी क्षणों के, वैसे ही जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं, जब हमारे मन का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है, तब हमारा प्लेजर सेंटर एक्टिवेट होता है और वहां से एंडोर्फिन डोपामिन हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और हम खुशी आनंद का अनुभव करते हैं, हम डांस करने लगते हैं, एक सुंदर मन का डांस, खुशियों का डांस। तो राजयोग का मेडिटेशन हर व्यक्ति को ऐसी परमानेंट अविनाशी शाश्वत खुशी प्रदान करता है। तो उन लोगों ने जब राजयोग सीखा और राजयोग सीखने के बाद जब परमात्मा से अपने मन को जोड़ा, तो धीरे धीरे वो खुशियां उनके जीवन में आने लगी। जब कर्म की गहन गति सुनी और उन्होंने समझा कि इससे मुझे क्या क्या नुकसान है, मेरे धन को, मेरे तन को और मेरे मन को नुकसान है, तब उन्होंने वो छोड़ने की प्रतिज्ञा की। हमने उनसे प्रतिज्ञा भी कराई, हम उनके साथ चलते रहे चलते रहे चलते रहे। और एक भाई जो हमारे थे, उन्होंने कहा कि बेन मैं महीने में, आज से 20 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा कि मैं अभी तो वो 5,000 की हो जाती अगर वो टोबे को खाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये 500 रुपए की जो टोबे को मैं छोड़ रहा हूँ, वो मैं इस सेवा में लगा रहा हूँ। तो आप मानेंगे कि उस दिन से आज तक वो हर महीने 500 रुपए इस सेवा में लगाते हैं और वो इतनी खुशी का आनंद अनुभव करते हैं। मुझे बताते बहन जी, जो लोग टोबे को ले रहे हैं ना, उनके लिए आप वो छोड़ने के लिए, उनको छुड़वाने के लिए आप इस धन का उपयोग कीजिए। तो देखिए, ये है चेंजेस, ये है राजयोग का प्रभाव। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार हमारे राजेश भाई एक भाई को हमारे सेंटर पर ले आए, उसको कहा कि चलो मैं आज आपको आपका बैंक में खाता खुलवाता हूँ। तो उसने कहा बैंक का खाता? हाँ, बहुत सुंदर बात थी, मुझे भी सीखने को मिला। तो उसने कहा कि मैं आज एक मिनट आपसे बैंक का हमारे बहन जी के पास ले जाता हूँ, मैं आप उनसे भी आपसे मिलाऊंगी, उनका नाम मनसुख भाई है। और मनसुख भाई जो है वो दारू का पीछा चलाते थे, वो
0: अच्छा अच्छा
1: दारू बेचते थे। हाँ जी, वो दारू बेचते थे, और हमारे भाई जो है वो उनको हमारे सेवा केंद्र पर लेकर के आए और कहा, आप हमारी बहन जी के पास चलो, हमारी बहन जी आपको आज बैंक में खाता खुलवाएगी और आप बहुत धनी बन जाएंगे। उसे बड़ा आश्चर्य लगा। वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो हमारा सीनोर में लक्ष्मी चौक में है, वहां पर भाई आए और कहा, दीदी आज इनका खाता खुलवाओ, इनको हम धन संपत्ति देते हैं। तो मैंने कहा हाँ जरूर। उनको बिठाया, वेलकम किया, पानी दिया, फिर उनको थोड़े कुछ प्रश्न पूछे हमने। हमने कहा कि भाई जी आप क्या करते हैं? तो वो हमारे राजेश भाई के सामने देखने लगा कि मैं बहन जी को कैसे बताऊं। मैंने कहा नहीं, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने बताया कि बहन जी मैं तो एक छोटा दारू का पीठा चलाता हूँ। उसको कहने में बहुत झिझक हो गई, पर फिर भी उसने सच्चे दिल से अपनी सारी बात बताई। तो
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने उससे तो काफी कमाया होगा। तो कहा नहीं बहन जी, मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ। फिर मैंने कहा कि मनसुख भाई आपने गाड़ी वगैरह भी तो ली होगी इन पैसों से। तो बोला नहीं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, खाने का ही मेरे पास थोड़ा बहुत है, मिल जाता है इससे। और रात दिन मैं भय में रहता हूँ कि पुलिस आ जाएगी, मुझे पकड़ के ले जाएगी, मेरे पर केस हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो पैसे भी नहीं है, मकान भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, तो फिर दारू का पीछा चलाने से फायदा क्या हुआ? तो बोला कुछ फायदा नहीं, जीवन बिल्कुल नरक जैसा है, घर में झगड़े भी चलते रहते हैं, पत्नी की डिमांड, बच्चों की डिमांड पूरी नहीं कर पाता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे धंधे से क्या फायदा जो आपको केवल और केवल भय, दुख, चिंता, निराशा ही दे रहा है। तो कहा हाँ बहन जी, पर मैं क्या करूं? तो मैंने कहा सबसे पहले आप 7 डेज कोर्स कीजिए, उसके बाद आप एक छोटा सा दुकान खोल लीजिए आपके कस्बे में, जहां पर आप बच्चों की कुछ चीजें, लोगों को कुछ चीजें चाहिए वो चीजें, तो वो बेचने का शुरू कीजिए। देखिए आपको भगवान मदद करेगा। तो बहुत वंडरफुल बात हुई कि 7 दिन का कोर्स करते करते, सुनते सुनते सुनते भगवान से उनकी प्रीत हो गई, उनके आंख में भी आंसू आ गए कि आज तक तो कुछ भी नहीं पाया, ये दारू का अड्डा चलाने से तो मैंने दुख ही पाया, अशांति पाई। कर्मों की गति का गहन अभ्यास उन्होंने किया। मैंने उनको बताया कि देखो आपसे जो भी दारू लेकर के जाते हैं, दारू पीते हैं और घर में जाके झगड़ा करते हैं, उसके निमित्त आप बनते हो भैया। उसको लगा कि क्या बात है, उसको आश्चर्य लगा कि ये तो मैं जानता ही नहीं था कि घर में झगड़ा हो रहा है, उसके निमित्त बहन जी मैं कैसे? मैंने कहा आपने दारू पिलाया ना, उसने अपने मस्तिष्क का संतुलन गवाया ना, और जाके अपनी पत्नी और बच्चों को मारा, आपके खाते में कुछ ना कुछ तो डेबिट हो ही रहा है, और उसी के कारण आज आपके घर में भी कुछ ना कुछ अशांति दिखाई देती है। उसको बहुत बुरा लगा, उसको सत्य ज्ञान की एक लाइट, एक प्रकाश मिल गया, और उसने सोचा कि ओहो, ये तो मेरा पाप कर्म हो रहा है। और उसके बाद उसने ठान ली कि इस परमात्म ज्ञान से, इस राजयोग की समझ से, जैसे कि एक बुद्धि का कपाट खुल गया, और वो भाई ने उसी क्षण निश्चय किया कि आज से ये दारू बेचना मैं बंद करता हूं बहन जी, मैं छोटी सी दुकान डालता हूँ। गांव में एक नागरिक बैंक है, जहां पर हमने उसका थोड़ा सिफारिश की और कहा कि वहां से थोड़ी लोन ले लो, छोटा सा दुकान खोला। आप मानेंगे आज उसका दुकान बहुत बड़ा हो गया, उसका मकान पक्का बन गया, उसके पास गाड़ी 2 व्हीलर आ गई, उसकी बेटी भी जॉब करने लगी, बेटा भी ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में काम करने लगा, और वो एक परिवार सुखी परिवार बन गया। तो ये लाइव एग्जाम्पल यहाँ का है, तो
0: बिल्कुल
1: कहने का भाव, हाँ जी, तो कहने का भाव यही है कि कैसे राजयोग मदद करता है।
0: जी जी जी
1: जी
2: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल अपने आप में कमाल का एग्जाम्पल है जो हम सभी को प्रैक्टिकल नॉलेज देता है कि कैसे नशे से हम मुक्त हो जाएं। नशा का जो बिजनेस है या करना, दोनों भी गलत हो जाता है, क्योंकि उससे हमारा जीवन बिल्कुल नीचे गिर जाता है और हम
1: और
2: अपने
1: अनेकों
2: जीवन
1: के जीवन भी बर्बाद होते हैं ना
2: बिल्कुल।
1: उसमें। हाँ जी।
2: तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये ब्रह्म कुमारी संस्थान के माध्यम से जो एमओयू हुआ है, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता, जो ये संस्थान है गवर्नमेंट का,
1: जी
2: सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान ये चल रहा है, और 2021 से जो है ये कहानी शुरू हुई और अभी भी चल रहा है। और इसमें विशेष रूप से सरकार जो है चाहती है कि मनुष्य जो है नशे से दूर रहें और परिवार
1: जी
2: से जुड़े, परिवार के साथ रहें, इसीलिए ये सारा काम हो रहा है। निश्चित तौर पे सरकार का ये काम, ये एमओयू ब्रह्म कुमारीज के साथ जुड़ना, एक एमओयू बनाना अपने आप में भी एक बहुत बड़ा काम हो गया है, जिसके वजह से ये
1: अचीवमेंट।
2: काम में और भी लोग जो है जुड़ेंगे, और भी एनजीओ जुड़ते हैं तो और अच्छा काम हो जाता है। तो समाज में एक अभियान शुरू हो गया है, और इस अभियान में जितने लोग जुड़ेंगे वो सकारात्मक सोच से भरपूर हो जाएंगे, नशे से दूर रहेंगे, ऐसी शुभ आशा करते हैं। और उसमें विशेष सिनो की हमारी ब्रह्म कुमारी धरती दीदी ने काम शुरू कर दिया है पहले से ही, और अभी जो है और अच्छे तरीके से इस अभियान को अपने यहाँ गांव में वो करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा सकारात्मक कार्य आप कर रहे हैं, विशेष लोगों को जिंदगी से आप जोड़ रहे हैं, जो लोग नरक में जीवन फील कर रहे हैं नशे के लत से, उनको एक अच्छी जिंदगी देने का प्रयास आपका चल रहा है। तो आइए आपके स्वागत में हमारे साथ हिमाचल से संतोष जी जुड़ गए हैं। एक गीत मैं चाहूंगा दीदी के लिए आप सुनाइए। संतोष
1: जी
2: जी स्वागत है आपका।
3: जी
1: ओम शांति।
2: ओम शांति।

0: Om Shanti.
1: ओम शांति संतोष जी, बहुत ही प्यारा सा गीत है आपने सुनाया दीदी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बड़ा प्यारा सा मैसेज वाला गीत आपने सुनाया है, मुक्ति अगर पाना है तो आपको याद करना। चलिए मैं फिर से आपको ब्रह्म कुमारी धरती दीदी से जुड़ना चाहूंगा। आप काफी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और सामाजिक सेवा में भी आपका अच्छा योगदान है, तो मैं चाहूंगा कि शिनोर के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने गाँव है और यहाँ पर आपका कब आना हुआ, कितना समय से आप ये सेंटर चला रहे हैं और वहां की विशेष बातें बताएं, क्योंकि वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास है तो उसके वजह से अभी जब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है आगे पीछे वहां पर, तो आपके यहाँ भी कुछ गांव में टूरिज्म की कुछ बातें हो रही हैं या कुछ चेंजेस आए हैं, वो भी जरूर बताएं।
2: जी, शिनोर सेवा केंद्र जो है बड़ौदा से 40 किलोमीटर, वैसे बीच वाले हम गांव के रास्ते से आते हैं तो है, यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो लगभग 35 किलोमीटर है और
1: अच्छा।
2: इसके पास में हाँ नर्मदा नदी के किनारे पर ही बिल्कुल ये गांव, ये तहलीज जो है वो बसा हुआ है और लगभग यहाँ के जो एरिया है वो नदी के किनारे पर ही सारे गांव हैं। सिनोर तालुका के लगभग 42 गांव हैं और यहाँ पर बहुत सुंदर फ्रूट की भी खेती होती है। यहाँ सबसे ज्यादा केले की खेती होती है, केले हैं, नारियल है, हाँ जी, फिर हमारे यहाँ तो मैंगो के बहुत बड़े बड़े बाग हैं और चीकू के भी बाग हैं, आंवले के भी है, तो ये फ्रूट्स भी हमारे आसपास हैं। गेहूं भी यहाँ होते हैं और गन्ने भी यहाँ होते हैं, तो इसकी बहुत सुंदर, क्योंकि पानी यहाँ इजी मिल जाता है नदी के कारण, यहाँ पर बहुत सुंदर नहरें भी बनी है और हरियाली आप देखेंगे। यहाँ से हमारा मालसर गांव है 5 किलोमीटर, जो बिल्कुल एकदम धार्मिक गांव है, जहाँ बड़े बड़े आश्रम है, जहाँ पर बड़े बड़े कथाकार बैठे हुए हैं और वहां डोंगरे महाराज, जिनका आपने नाम सुना होगा, जो भागवत के बहुत बड़े मशहूर कथाकार रहे हैं, उनका एक स्थान है, इसलिए वहां से जिन कथा जो भी शुरू करता है खास उनको फॉलो करते हैं, तो वो सब भी यहाँ हमारे परमात्मा के ईश्वरीय ज्ञान के सहयोगी स्नेही हैं, कांटेक्ट में भी हैं। और साथ साथ नर्मदा नदी के किनारे की विशेषता ये है कि ये पूरा आसपास का एरिया जो है ना वो कूल रहता है। एक तो पोल्यूशन इतना ज्यादा यहाँ नहीं है, जैसे शहरों में आज जो पोल्यूशन के कारण भी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो पोल्यूशन भी यहाँ कम है, नॉइज भी कम है और बहुत स्वच्छ वातावरण है यहाँ का। और आप देखेंगे कि नदी किनारे पर इतने सुंदर मंदिर है, जैसे यहाँ अंगारेश्वर है, भंडारेश्वर है, कुबेर भंडारी है, बहुत सुंदर बालेश्वर है, तो ये और नीलकंठ धाम जो कि अक्षरधाम जैसे अहमदाबाद में और दिल्ली में है, ऐसा सुंदर स्वामीनारायण सांप्रदायिक का एक नीलकंठ धाम बना हुआ है, वो भी शिनोर के बिल्कुल पास है, तो आप सभी वो देखने जरूर आइए। और बहुत सुंदर यहाँ का माहौल भी है, खास करके अभी तो समर है तो गर्मी के दिनों में ये जैसे आप देखेंगे ना कि बारिश के दिनों में तो यहाँ से हम 5-7 किलोमीटर जाएंगे तो जैसे शिमला में जा रहे हैं, कोई कश्मीर का रोड पकड़ लिया है इस प्रकार से लगता है। पर अभी थोड़ा चेंजेस ये हुआ है कि यहाँ बहुत बड़ा एक बॉम्बे के जोड़ता हुआ एक ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज के कारण काफी पेड़ काट दिए, काफी आसपास का वातावरण जो है डस्टी हो गया है ऐसे, तो बहुत सुंदर यहाँ का एटमोस्फियर है। मैं तो शहरों की भीड़ में जाती हूँ तो हमेशा सोचती हूँ कि नहीं ये बहुत अच्छा है ऐसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुन के अच्छा लगा मुझे। और बुजा मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, पल जुमे सारे आंगन ठंडी ठंडी चाव रे, है ना, निश्चित तौर पे गांव
2: जी
1: हमें जो है सुकून देता है। अगर आप नदी के साथ जुड़ जाते हैं और थोड़ा सा नदी का किनारा हो तो पानी भी अच्छा मिल जाता है और मौसम भी अच्छा होता है। तो आइए हमारे मित्र जो है रामलाल जी, नीता नायक जी, बीके कविता जी और इन सभी ने याद भेजा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है उन्हें प्रोग्राम सुनकर। नशा मुक्ति के बारे में दीदी ने बहुत अच्छा बताया, ये भी उन्होंने कहा है। तो आइए, मैं चाहूंगा कि आपके यहाँ और किस किस तरह के एक्टिविटीज होते हैं सेंटर के माध्यम से, वो थोड़ा सा हमें बताइए।
2: जी, खास करके हम लोग गांव में सेवा करते हैं, यहाँ लोकल में भी सेवाएं चलती हैं। खास अभी महाशिवरात्रि का पर्व गया मार्च में, तो हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रोग्राम करे जिसमें संगीत संध्या भी थी, जिसमें गांव के जो बड़े व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति थे, खास करके रिस्पेक्टेड हैं, वीआईपीज हैं, उनको बुलाया गया था। उनके द्वारा ही मंच पर खास वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन है ब्रह्मा कुमारीज का, तो उन
1: जी जी
2: वैल्यूज पर उन्हें समझाया गया। भगवान शिव इस धरा पर आ चुके हैं और वे ही हमें शक्तियों से, गुणों से भरते जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी विशेष हम सबको
1: लोगों को
2: समझाया। खास
1: जान
2: करके संगीत संध्या का कार्यक्रम हमारा बहुत सफल रहा। उसके बाद हमने आपको बताया कि हम गांव गांव में जो भी हमारे किसान हैं, तो हमारा एक बहुत सुंदर ग्राम विकास का विंग्स है,
1: जी जी
2: उसमें गांव गांव में किस प्रकार से हम खेती में भी योग मेडिटेशन को इन्वॉल्व करें, अपने जो खेत हैं उस खेत में हम परमात्मा की याद का एक ध्वज लगाए, रोज मेडिटेशन करके हम उस खेत को, उस फसल को एक पॉजिटिव पावरफुल ऊर्जा शक्ति प्रदान करें, इसके बारे में भी जाके समझाते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी में जो भी बिलीव करते हैं गांव गांव में भाई बहने, उन भाई बहनों को हम खास करके इसके बारे में, मेडिटेशन के बारे में सुनाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में समझाते हैं। स्कूलों में भी हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर हमारी शिनोर में हाई स्कूल है, उसके बाद गांव में भी हाई स्कूल है
1: जी
2: जहाँ
1: जी
2: टच द लाइट का प्रोग्राम चलता है, जहाँ पर बच्चों को विशेष करके हम सभी प्रकार के जो आज समाज में न्यूशंस है उसके बारे में अवेयर करते हैं। खास
1: अरे
2: करके आप देखेंगे कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी टोबैको लेते हैं, वो भी सिगरेट पीते हैं। हमको आश्चर्य लगता है कि ये कैसे हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल, पर जब उनसे ही पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि हाँ। फिर उनको स्टोरी सुनाई जाती है, कुछ ऐसी बातें सुनाई जाती हैं, उनको कुछ अच्छे महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है, तो उनमें
1: बिल्कुल
2: काफी चेंजेस आते हैं। वो यहाँ सेवा केंद्र पर भी आते हैं, फिर गांव की हमारी माताएं भी आती हैं, यहाँ की भी माताएं आती हैं जो रोज सुबह और शाम ये ज्ञान की शिक्षाएं लेती हैं, राजयोग मेडिटेशन सुनती हैं, समझती हैं और उसको अपने जीवन में लाती हैं। राजयोग
1: बहुत
2: मेडिटेशन एक ऐसी सुंदर कला है जो हमारी आत्मा को धीरे धीरे धीरे अवगुणों से, विकारों से, कुसंस्कार से मुक्त करती है और हमारे में एक देवत्व भरती है, दिव्यता भरती है, सद्गुणों को लाती है, शक्तियों को लाती है और संस्कारों को परिवर्तन करने में बहुत मददगार बनती है। तो इस प्रकार
1: बिल्कुल
2: से हम लोग रोज गांव गांव में यह जाकर के यह राज्यों की शिक्षा सभी भाई बहनों को देते हैं, समझाते हैं। काफी लोग समझते भी हैं, कुछ बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ अपने जगह पर ही रहते हैं, ऐसे भी होता
1: बिल्कुल
2: है।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। निश्चित तौर पे आपका जो कार्य है सराहनीय है और वंदनीय है कि आप ऐसे सुंदर कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए समय दे रहे हैं, सुबह और शाम जो है मेडिटेशन का फ्री कोर्सेस आप रेगुलर कराते हैं और उनके जीवन में बेहतर परिवर्तन लाने के लिए आप अपना जो है सेंटर खोल के आप आराम से सेवा दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और गांव-गांव में जाकर लोगों को बताना ये और अच्छी बात है। और आपने कहा बच्चों को भी आप जाकर ये ज्ञान देते हैं, और बच्चों के जीवन में अगर झांककर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो हैं आज गुटखा या फिर नशे के शिकार हो रहे हैं, तो वो भी आपको समझ में आता है। तो निश्चित तौर पे आपका स्कूल में जाना कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए मार्गदर्शन भी और उन बच्चों को एक सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। तो विखे धरती दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं। और हमारे मित्र रमेश काका जी अफ्रीका से जुड़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया दीदी जी करके मैसेज किया है। और कविता जी ने भी बड़ी प्यार से मैसेज किया है, उन्हें भी अच्छा लग रहा है। ओम शांति, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी जानकारी दी, इसलिए उन्होंने मैसेज किया।

0: ये ईश्वर का आशीर्वाद कह सकते हैं हम लोग। अगर आप नशा कर रहे हैं या आप दुविधा में हैं और आपको कोई ज्ञान ही नहीं मिल रहा है कहीं से रिचार्ज होने का, तो वो कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल घड़ी है। लेकिन आप एक ऐसे घड़ी में हैं जहाँ पर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा फ्री में मिल रहा है, तो ये आप लकी हैं, इससे साबित हो जाता है। तो हमें जो है इस अच्छे ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है, इसको एक बार प्रैक्टिस करना है, इसको अपने जीवन में लाना है। चलिए, जाते जाते मैं चाहूंगा एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें दीदी जी आप।
1: जी, विशेष हम सभी दर्शकों को रेडियो मधुबन, जो हमारा बहुत सुंदर सेवाएं दे रहा है सारे विश्व में, खास करके हमारे राजस्थान में, आसपास में, तो सभी को यही मैसेज देंगे कि खास आज के समाज में जो व्यसनों का, विकारों का और कुसंस्कारों का आतंक फैला हुआ है, उससे हम स्वयं को राजयोग के माध्यम से परमात्म ज्ञान और शक्तियों से, परमात्मा ने बताए हुए दिव्य गुणों से मुक्त होने का भगीरथ प्रयास अपने जीवन में करें, स्वयं भी खुशहाल जीवन जिए, अन्य को भी यह खुशी दे, और इसमें हम सभी सहयोगी बने, खास करके आज सारे संसार में और भारत में भी खास। अभी अभी हमने सुना कि 13 लाख से भी ज्यादा लोग इस नशे के शिकार होकर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो ये बहुत दुविधा, बहुत ही दुखजनक मैसेज है। तो हम सभी आए मिलकर के सारे विश्व को स्वर्ग बनाए और पूरे विश्व को हम सतयुग बनाए, स्वर्णिम बनाए, और हर आत्मा के जीवन में खुशहाली दे, यही हमारे जीवन का भी लक्ष्य है, और सभी को इसमें जुड़ना है और सभी को नशे से मुक्त भारत को बनाना है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया, थैंक यू सो मच। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने भी बड़ा प्यारा सा जो है गीत सुनाकर हमारे जीवन को सुंदर बनाया है।

तब जब उसकी रहमत हो, उससे मिलने की तरकीब कहूँ गर तुम सहमत हो। तुम फूल ही हो इसमें नहीं कोई शक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, नहीं अब हक मुझको।

है वही, ये कैसे समझाऊं मैं? मेरी नजरों में अब है वही, ये कैसे समझाऊं मैं? बस गया इनमें अब बसने वाला, कोई और कैसे समाऊं मैं? बस गया इनमें अब बसने वाला, कोई और कैसे समाऊं मैं? कोई और कैसे समाऊं मैं?

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: और आफ्रीकी वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आपको ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है हेमलता गोयल। आप आबू रोड के रहने वाले हैं, आपने 8वीं तक पढ़ाई की है, आपकी उम्र 60+ है और आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। घर परिवार को तो आप चलाते ही अच्छी तरह संभालते हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी अच्छी परवरिश दी। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, गीत संगीत, डांस सभी का शौक है और विशेष करके सत्संग में जाना, भजन कीर्तन करना। वो भी तो कहते हैं ना कि नारी शक्ति में क्या नहीं होता है, नारी शक्ति में हट करके विशेषताएं होती है, तभी तो कार्यक्रम का नाम रखा है वंदे मातरम। तो आइए मिलवाते हैं। हेमलता जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: हेमलता जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप पहली बार इंटरव्यू देकर के खुश है या पहले कभी दिया?
1: नहीं, पहली बार देके खुश हूँ।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है, एक नया अनुभव।
1: नया अनुभव है
0: जी। जी तो चलिए आपके बचपन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं ना पिचपन में बचपन की बातें करें तो बड़ा अच्छा लगता है, तो आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
1: मेरा बचपन जोधपुर में बीता और बहुत अच्छा बीता, फ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ। खूब घनश्याम जी मंदिर और मंदिर में जाके खेलना, कूदना, पढ़ाई करना, सिलाई बुनाई करना, बहुत अच्छा रहा 8वीं तक।
0: जी जी, आपकी चार फ्रेंड है?
1: चार,
0: आपने बताया, मेरे चार फ्रेंड के साथ बीता।
1: चार फ्रेंड है मेरे साथ
0: और पांचवे आप?
1: पांचवी में।
0: पांच पांडव। तो चलिए, आप कितने भाई बहन हैं? आपके माता पिता क्या काम करते थे, बताएंगे?
1: मेरे 6 भाई है और एक बहन हूँ मैं, और मेरे पिताजी रेलवे में चेयरमैन थे।
0: तो क्या बात है, 6 भाइयों की इकलौती बहन है आप, तो बहुत ही लाड प्यार मिला होगा आपको तो।
1: हाँ जी, बहुत लाड प्यार मिला,
0: स्वाभाविक है, हर डिमांड आपकी पूरी हुई होगी।
1: पूरी हुई, हर डिमांड पूरी हुई और आज भी हो रही है।
0: क्या बात है, आज भी पूरी हो रही है?
1: आज भी पूरी हो रही है।
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है, 60 की उम्र में आज भी डिमांड पूरी होना, नहीं तो कहते हैं कि भाइयों की शादी हो जाती है, भाभियां आ जाती है, फिर नंदों को भाई फर्क पड़ जाता है देने लेने में, लेकिन आज भी आपकी डिमांड पूरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सुनकर के अच्छा लगा।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: अच्छा तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि 6 भाइयों की इकलौती आप बहन है, आप सातों भाई बहन कैसे रहते थे?
1: सातों भाई बहन मिलके रहते थे, सब भाई मुझे प्यार करते थे। मैं चौथे नंबर की थी, 3 भाई मेरे से बड़े हैं, 3 भाई छोटे हैं, मैं 5वें नंबर की थी।
0: अच्छा, तो फिर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की?
1: पढ़ाई इसलिए नहीं की कि छोटे भाइयों को संभालना था, फिर आगे पुराने जन्म पढ़ाते नहीं थे इतना, फिर घर वाले बाहर नहीं निकालते थे, बंदिश बहुत थी, पहला जैसा जमाना अभी नहीं है।
0: इकलौती बेटियां तो चिंता भी रहती थी कि कहीं हमारी बिटिया के नजर नहीं लग जाए।
1: सही बात है।
0: ये तो मजाक थी, खैर माता पिता की जो सोच होती है वो होती है, ऐसा नहीं है।
1: जन्म मैंने कहा निकालते थे बाहर।
0: जी जी जी, पहले बहुत ही बंदिश होती थी
1: बहुत,
0: पर आप तो जोधपुर जैसे शहर में थे, फिर भी
1: बंदिश थी ना, मेन बाजार में रहते हैं, हमारा मकान सिटी में ही है।
0: अच्छा, आपके पिताजी क्या काम करते थे?
1: मेरे पिताजी रेलवे में फोरमैन थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: फोरमैन की पोस्ट पे थे पर।
0: जी जी, तो आपने जैसे 8वीं तक पढ़ाई की, तो आपके टीचर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ कैसा व्यवहार था?
1: अच्छा व्यवहार था मेरा, टीचर के साथ में भी अच्छा था, फ्रेंड के साथ में भी। एक फ्रेंड तो ये बेटी सामने।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: दोनों एक ही स्कूल में पढ़े।
0: तब तो आपके फ्रेंड का भी जरूर लेंगे, हम बात करेंगे आपके फ्रेंड से भी। हेमलता जी के फ्रेंड है, यही साथ में बैठे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे, पहले हम हेमलता जी के अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा बचपन आपका गुजरा है, बीता है। आपके जमाने में कौन से गेम खेला करते थे?
1: हमारे जमाने में खो खो, चंगा पो और आंख मिचोली, सतोलिया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल।
0: अच्छा, ये सारे गेम होते थे, आपने किसी में पार्टिसिपेट किया?
1: मैंने वॉलीबॉल में फर्स्ट डिवीजन आई।
0: क्या बात है, कौन सी क्लास में?
1: 7th में।
0: फिर 8th में भी गए?
1: 8th में नहीं गई थी फिर।
0: तो 7th में फर्स्ट आई तो 8th में क्यों नहीं गए?
1: 8th में नहीं गई ना, मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी, बीमार बहुत रहने लग गई थी मैं, फिर इसके कारण मैंने स्कूल छोड़ दिया था 8वीं पास करके।
0: अच्छा अच्छा, तो 7वीं तक आप वॉलीबॉल खेलते थे?
1: वॉलीबॉल खेले, अभी भी है मेरे पास।
0: अभी भी वॉलीबॉल रखा हुआ है?
1: नहीं, वो कार्ड रखा हुआ है ना जो फर्स्ट मिला था,
0: सर्टिफिकेट
1: और इनाम।
0: जी जी, सर्टिफिकेट तो वो कहते हैं ना कि प्राणों से भी प्यारा होता है।
1: प्राणों से भी प्यारा होता है, दिखाना पड़ता है ना भाई।
0: अपने पास सुरक्षित रहना चाहिए,
1: चाहिए। टीसी के साथ में ही देते हैं ना वो तो स्कूल में।
0: जी जी, तो आपने उसको संभाल के रख रखा, कभी काम आया?
1: कभी काम आता ही है ना, अभी तो किसी में काम लिया नहीं है मैंने।
0: अच्छा, चलिए, फिर भी एक मन को खुशी प्रदान करता है
1: ना, कभी मैंने जीता ही है।
0: जी जी, देखते हैं तो बातें याद आ जाती है स्टूडेंट लाइफ की,
1: लाइफ की।
0: अच्छा, और साथ ही साथ आप कह रहे थे गीत संगीत का शौक है, तो आप पढ़ाई करते थे तब गीत संगीत बोलते थे?
1: उस टाइम तो गाने ही चलते थे, भजन तो चलते नहीं थे। जब रेडियो चलता था तो रेडियो में गाने आते थे, तो वो मैं करती रहती थी साथ साथ, तो वजह से याद रह गए सारे।
0: नहीं, स्कूल में कौन से गीत गाते थे आप?
1: स्कूल में तो वही स्कूल के राष्ट्रीय गीत और सरस्वती के ऊपर और
0: ये। जी जी, देशभक्ति गीत, बहुत सारे गीत गाते हैं।
1: जैसे ये मनाते हैं ना सरस्वती का फंक्शन, बसंत पंचमी के दिन, उस पे भी प्रोग्राम में भाग लेती थी, सब कुछ नाच कूद में। और
0: तो चंदेलाई ने सुनाएंगे आप?
1: हाँ। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा।
0: जी जी जी, तो ये प्रार्थना बोलते थे आप?
1: प्रार्थना बोलते थे।
0: और आप किसमें भाग लेते थे?
1: बस ये खो खो में, और वो बताया ना मैंने वॉलीबॉल में, और उसमें भाग लेते थे।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तब तो आप कह रहे थे एट में आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया
1: था, इसकी वजह से फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी।
0: तो आप तो अच्छे प्लेयर रह चुके, फिर स्वास्थ्य कैसे ऊपर नीचे हो गया?
1: डिप्टेरिया हो गया था, फिर गला बंद हो गया था मेरा, तो आवाज भी नहीं आती थी मेरे, पर फिर पढ़ाई कैसे करती। मैं 3 महीने तक एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। फिर मेरे ठीक हुआ, फिर पापा मम्मी ने कहा नहीं पढ़ाना बोले।
0: अच्छा, इसी वजह से आपकी
1: पढ़ाई रुक गई मेरी, नहीं तो मैं आगे पढ़ने के लिए तैयार थी।
0: जी जी जी,
1: मजबूरी थी मेरी बीमारी के कारण मैंने पढ़ाई नहीं करी।
0: पढ़ाई में आप कैसे थे?
1: अच्छी थी, फर्स्ट डिवीजन आती थी हर विषय।
0: तो आपको बहुत दुख हुआ होगा पढ़ाई छूट गई?
1: पढ़ाई छूट गई तो मेरे को दुख हुआ था ना, आज मैं कहाँ की कहाँ पहुँचती थी।
0: स्वाभाविक है। जी जी जी, हर एक के सपने होते हैं। जी, तो हेमलता जी आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती
4: नारी
3: है।
4: नारी की लचक में करुणा है, पर उसके हौसलों में धार है। हर युग में उसने साबित किया नारी ही असली शक्ति का आधार है, नारी ही असली शक्ति का आधार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव बचपन के हमने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। हेमलता जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: तो आपकी बचपन की बातें चल रही है, कैसा लग रहा है?
5: बहुत अच्छा लग रहा है। याद आ रहा है बचपन भी।
4: जी बचपन याद आ गया। तो आप बता रहे थे कि आप प्रार्थना भी बोलते थे, आप काफी बीमार हो गए इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो जब आपकी तबीयत ठीक हुई तो फिर आपने कोशिश नहीं की कि अब मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूं?
5: नहीं, कोशिश तो करी थी, पर घर वाले इतना लाड़ प्यार करते थे तो भेजने के लिए मना कर दिया। बोले नहीं, एक का एक बच्ची और तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा।
4: अच्छा, इसलिए आपको भेजा नहीं?
5: इसलिए भेजा नहीं।
4: कभी कभी ऐसा हो जाता है, ओवर लाड़ प्यार मिलता है तो पढ़ाई आगे नहीं पढ़ पाते हैं।
5: बात है, सही बात है।
4: तो उस समय आपको कैसा लगा जैसे आगे नहीं पढ़ाया आपको? ठीक है,
5: दुख हुआ ना उस समय कि भाई मैं और पढ़ती, पर घर वाले लाइक नहीं कर रहे थे, क्या कर।
4: और उस समय बचपना होता है, इतना सीरियसली नहीं लेते, वो तो जब एक एज होती तो पता चलता है पढ़ाई क्या है।
5: वो तो आगे बढ़ने के बाद अब महसूस हो रहा है हमको, आगे बढ़ते तो और कहीं पहुंचते, सर्विस करते, टीचर लाइन में जाते और कहीं जाते।
4: जी जी जी, हर एक का सपना होता है,
5: मजबूरी थी ना हमारी, क्या करें।
4: जी कोई बात नहीं, अब तो आपके 60 की उम्र हो गई है और आप भूल भी गए होंगे उन बातों को।
5: बातें भूल गए, अब तो यही याद आता, और सत्संग का।
4: जी जी, सत्संग का याद आता है। सही बात है, कहते हैं एक वानप्रस्थ अवस्था आती है, एक उम्र जब बढ़ती है तो अपने आप ही मन ईश्वर की तरफ लग जाता है, तो आप भी सत्संग की तरफ ज्यादा रुचि रखने लगे। अच्छा चलिए ये बताइए, जैसे आप बता रहे थे आपके 6 भाई है, आप इकलौती बहन है, तो भाई बहनों के साथ आप कुछ खेलते थे? खेल
5: खेलते थे ना, घर में खेलते थे भाई बहनों के साथ।
4: अच्छा, तो कौन सा खेल हमको भी पता चले उस समय क्या?
5: उस समय तो यही थे ना, आग मिचोली, छुपा छुपी और खो खो खेलना, चंगा पो खेलना, भाइयों के रात में बैठ के खेलते थे बस, दिन में तो टाइम मिलता नहीं था।
4: तो आप मम्मी को हेल्प कराते थे घर के काम में?
5: घर के काम में हेल्प कराती थी, जब तो कोई बहू नहीं थी, मम्मी और हम ही थे अकेले।
4: जी जी, फिर आपके सामने ही भाभियां आ गई होगी?
5: मेरे सामने 3 भाभियां आ गई थी, उसके बाद मेरी शादी हुई।
4: जी जी, तो भाभियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
5: अच्छा व्यवहार, भाभियां तो बहुत प्यार करती थी, बहुत, मेरे कपड़े तक मेरी भाभी ही धोती थी शादी होने के बाद में भी।
4: जी जी जी, इकलौती ननंद है, सभी का प्यार मिला?
5: सभी का प्यार मिला, कभी कोई कभी कोई कभी वो।
4: जी, और वो कहते हैं ना कि भले कितनी भी बेटी प्यारी हो लेकिन माताओं की आदत होती है बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना, तो ससुराल जाएगी तो ये वो, तो आपको भी आपके मम्मी बीच बीच में शिक्षा संस्कार देते थे?
5: देते थे, घर का काम कराते थे, सिखाते थे, रोटी बनाना सिखाते थे, सब्जी रोटी चाय पानी सब मम्मी ने सिखाया था, भाभियों ने सिखाया, जब आज हम सही है यहाँ पे।
4: जी जी, और सिलाई कढ़ाई बुनाई ये कहाँ सीखी?
5: ये यही आके सीखा सारा। अच्छा, स्कूलों में सिखाते थे ना सिलाई के लिए बड़ाई, वो तो सब कागज के वो बनाने सब स्कूलों में सीखा था।
4: अच्छा, तो स्कूल में सीख करके फिर आप घर पर बनाते थे?
5: घर पे बनाए, थैलिया बनाई, कसीदे की और सब कुछ बनाए, बैग बनाए और सामान बनाए।
4: जी जी जी, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
5: मैं 18 या 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी, 8th में।
4: 8वीं पास होने के बाद आपकी शादी हो गई?
5: मेरी शादी हो गई थी।
4: तो आपको बीच में गैप नहीं मिला थोड़ा घर पर रहने का?
5: नहीं, वैसे तो गैप मिला ना, उस समय तो मैं 15-16 साल की थी आंटियों में पड़ी जब, फिर 2 साल मेरे को घर पे रेस्ट करवाया ना, बीमार थी जो, उसके बाद बोलेगा अब शादी कर देते हैं, इसकी पढ़ाई कर देते हैं, ये तो और कुछ हो जाएगा इसको, ऐसा सोचते थे घर वाले।
4: पढ़ाई कर देंगे तो कुछ नहीं होगा?
5: हाँ, ऐसा पुराने जमाने में ऐसे लोग सोचते थे ना। तो फिर 80 में मेरी शादी हुई थी।
4: अच्छा, तो 80 में फिर आपकी शादी हो गई?
5: 1980 में मेरी शादी हुई थी।
4: तो शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए?
5: शादी के बाद तो वही गृहस्थी संभालो, घर का काम करो, बच्चों को संभालो।
4: नहीं, बच्चे तो बाद में हुए होंगे, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे?
5: हस्बैंड प्रिंसिपल है।
4: अच्छा, प्रिंसिपल है, मतलब आपका सपोर्ट करते थे?
5: हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं, अभी भी करते हैं, सब में सपोर्ट करते हैं।
4: और घर में उस समय कौन कौन थे जब आप शादी करके आए? तब
5: मैं शादी करके आई जब मेरी जेठ जेठानी और हम दोनों, मैं और मेरा हस्बैंड, 4 जने थे।
4: सास ससुर नहीं थे?
5: ससुर नहीं थे मेरे,
4: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी।
5: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, मेरे हस्बैंड 12 महीने के थे जब ही उनकी डेथ हो गई थी।
4: सास ससुर दोनों की?
5: सास तो थी, ससुर पहले गुजर गए थे, फिर इन्होंने पढ़ाई करी जब सास भी गुजर गई थी, एसटीसी करी माउंट आबू से, फिर जब सास गुजर गई थी फिर इनकी नौकरी लग गई एसटीसी करने के बाद, फिर हमारी शादी हुई।
4: तो फिर आपके जेठ जेठानी ने आपका सारा काम किया?
5: सारा काम उन्होंने किया, जेठ जेठानी।
4: जी जी,
5: वही सास ससुर के बराबर ही है मेरे।
4: जी जी, आपने तो उन्हीं को देखा है।
5: उन्हीं को देखा है मैंने, यही है सास ससुर।
4: बिल्कुल, समझदार के लिए तो यही है,
5: यही है। हम कहाँ जाएंगे, नहीं तो किसके यहाँ जाएंगे, शादी करी तो उनको ही सम्मान देना है ना।
4: सही बात है। आप जैसे शादी करके अपने ससुराल में आए तो आपने देखा कि जेठ जेठानी आपके सास ससुर है, तो कैसे रहते थे आपस में, रिश्ता कैसा रहा आपका आपके जेठ जेठानी के साथ?
5: हमारा दोनों का रिश्ता अच्छा रहा था, आपस में साथ में ही निभाए 20-25 साल तक। फिर वो पोस्ट मास्टर थे तो इनका बार बार ट्रांसफर होता था जेठ जी का, तो फिर मेरे को अकेला ही रहना पड़ता था इनके साथ में। उनके भी बच्चे नहीं है, जेठ जी के भी एक ही लड़की थी जो उसकी शादी कर दी।
4: अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं?
5: मेरे 2 लड़के 2 लड़कियां हैं।
4: 4 बच्चे?
5: 4 बच्चे।
4: जब आप शादी करके आबू में आए, एक तो जोधपुर इतना बड़ा शहर, फिर जोधपुर से आप एक कस्बे में आए, तो यहाँ आपका मन लग गया?
5: नहीं लगा था मन, बहुत अभी तो बहुत अच्छा हो गया, पहले तो वीरान था पूरा। मैं शादी करके आई जब कुछ भी नहीं था, और मैं तो देख देख के रोती थी, खाना भी नहीं खाती थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ यहाँ पे, मेरे को तो जोधपुर छोड़ के आओ, ऐसे करती थी। फिर धीरे धीरे सेटल हुए, फिर ये नौकरी पे जाते, फिर मैं अकेली रहती दिन भर, जब तो बच्चे ही नहीं थे और नई नई किससे बात करूं मैं, तो मैं अकेली कमरा बंद करके बैठी रहती थी, रोती थी अंदर ही अंदर।
4: आपके माता पिता ने ये नहीं देखा कि बच्ची इतनी लाड़ प्यार से पली हुई है, एक गांव में दे रहे हैं? उस समय, आज तो फिर भी कस्बा है, उस समय तो आप कह रहे हैं कि वीरान था, तो उस समय कुछ था नहीं, तो उनको थोड़ा सा ये नहीं लगा कि बच्ची कैसे सेट होगी वहां?
5: उनको बहुत लगा था, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था, 4 बार रिश्ता तोड़ा है 4 बार।
4: अच्छा,
5: मेरी मम्मी ने तो बिल्कुल कह दिया मेरी एक ही लड़की है, मैं बाहर नहीं दूंगी, रोने लग गई थी वो भी, पर अब किस्मत ने यहाँ लाया साथ तो फिर क्या करें। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं बाहर नहीं दूंगी।
4: जी जी, फिर कैसे हुआ यहाँ पर आपके पिताजी?
5: अगले ने भी जिद करी, इन्होंने भी जिद करी कि नहीं हमको लड़की यही पसंद है, हम तो यही करेंगे सर।
4: और आपके पिताजी भाई लोग का फोर्स था क्या?
5: सपोर्ट दिया ना, फिर क्या करें कि भाई करो, जिद कर रहे तो। बाकी मेरे खानदान में कोई बाहर नहीं है, मैं अकेली बाहर हूँ।
4: तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया रही?
5: उस पुराने जमाने में तो हमसे बात ही कहाँ करते थे पहले, वो तो बड़ों ने जो कर दिया वो सही है, हमने ना आदमी को देखा ना किसी को देखा,
4: अच्छा, देखने का सिस्टम था ही नहीं, तो देखा ही नहीं।
5: मेरी शादी के टाइम तो सिस्टम था ही नहीं, पूछते ही नहीं थे।
4: जी जी जी, बस जो बड़ा ने किया वो पत्थर की लकीर,
5: पत्थर की लकीर हो गई।
4: तो जब आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि वीरान है, मतलब मन नहीं लग रहा है, तो आपके हस्बैंड से आपने बात नहीं की कि कहीं अच्छे शहर में सेट हो जाए?
5: नहीं तो वो नौकरी का इशू था ना भाई, बाहर नौकरी तो यहीं लगी हुई थी ना, फिर बार बार इनके ट्रांसफर होते रहते थे, तो फिर ये अप डाउन करते थे। पास में अलादरा है, जैसे आतल है, चार पांच जगह इन्होंने नौकरी करी, फिर मावल, ये तो मावल तो आबू रोड में ही था जो चल गया।
4: जी जी, छोटे छोटे गाँव में,
5: गाँव में डीन की प्रमोशन होता रहता था बार बार।
4: जी जी, इसलिए आप जा नहीं पाते, बड़े शहर में हो तो आप चले जाओ।
5: चली जाती, नहीं तो मैं छोटे शहर में मैं क्या करूंगी जाके, जब एक जगह ही अपना रहना है तो। फिर दो बच्चे छोटे थे दोनों, एक इनको लेके कहाँ घूमती इधर उधर।
4: और आपके जेठ जेठानी बाहर रहते थे?
5: जेठ जेठानी का ट्रांसफर हो जाता था हर तीन साल में, तो फिर वो बाहर जाते थे, तीन साल यहाँ रहते, तीन साल बाहर रहते थे।
4: अच्छा, इसलिए आप बिल्कुल ही अकेले रह जाते
5: हो? गई थी मैं बिल्कुल, छोटे से घर में रहती थी फिर।
4: तो आपके जेठ जेठानी को बोला नहीं कि मैं अकेले, मतलब मेरा मन नहीं लगता है कि आप लोग ट्रांसफर मत होना?
5: कभी तो मजबूरी थी ना, नौकरी थी, उनकी भी तो ट्रांसफर होता था ना, उनके तीन साल फिक्स होते थे, हर तीन साल में ट्रांसफर हो जाता।
4: जी जी, तीन साल में आपको जाना ही है,
5: चाहे आप कैसे भी रहो।
4: जी जी, और जैसे आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई आती थी, तो आप अकेले पढ़ते थे कि जैसे आपके हस्बैंड जॉब पर चले जाते थे, आप अकेले हो घर में, तो आपने कैसे समय व्यतीत किया? इन चीजों में ध्यान दिया, सिलाई कढ़ाई बुनाई में, भजन सत्संग में, या फिर कैसे? आप भाई रोज अकेले रहना, रोना, वो तो अच्छी बात नहीं है।
5: नहीं तो घर का काम तो करना पड़ता था ना मेरे को पीछे, जैसे घर का काम करना, बच्चों को रखना, सिलाई से ये स्वेटर वेटर बना लेती, टोपे मोजे और ये बनाती बैठे बैठे सर्दी में, फिर बच्चों को रखना भी तो मेरे को ही पड़ता, जब इनको सुला के फिर घर का काम करती। पहले नौकर चाकर कहाँ थे, कोई संभालने वाला भी नहीं, सास नहीं, जेठानी नहीं, ननद नहीं, कौन संभालता?
4: जी बिल्कुल, तो इन चीजों में ध्यान दिया, और जरूरी भी है, और बच्चे होते हैं जिस घर में, वहां तो टाइम कैसे बीतता पता ही नहीं चलता।
5: इसीलिए मैंने बच्चों के साथ ही जिंदगी लगाई, फिर धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाने लगी बच्चों को, छोटे बच्चों को, पांचवी तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो दिन उसमें पूरा हो जाता था मेरा।
4: क्या बात है, आपने आठवीं तक पढ़ाई की, और आज के युग के पांचवी तक के बच्चों को आप पढ़ा लेते?
5: पढ़ा लेती थी सारा,
4: क्योंकि आपके समय में तो इतनी अंग्रेजी नहीं थी।
5: अंग्रेजी मैं तो अंग्रेजी मीडियम से ही पढ़ी हुई आठवीं तक, तो मेरे को इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है।
4: अच्छा, चलो ये आपका अच्छा रहा। तो आप फिफ्थ तक के बच्चों को आराम से पढ़ा लेते?
5: पढ़ा लेती थी, पहले तो इतनी हाई फाई किताबें नहीं थी ना छोटे बच्चों की, पांचवी तक तो नॉर्मल ही था, इंग्लिश भी कहा एबीसीडी और यही होते थे, स्पेलिंग है वो ही होती थी, अब ये कोर्स तो अब भारी हुए।
4: हाँ जी हेमलता जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। नारी को कमजोर कहने वालों, नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। हेमलता जी के काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में और भी इनके अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप जैसे बता रहे थे कि आप अकेले पड़ जाते थे, तो पहले तो आपने शुरुआत में तो आप अकेले बैठ करके थोड़ा उदास होते थे, थोड़ा रोना भी आ जाता था, फिर आपने क्या सोचा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, सिलाई कढ़ाई बुनाई करूं, तो ये किसी ने आपको कहा या अंदर से आपको सूझा?
3: नहीं, मेरे अंदर से ही सूझा था कि मैं अकेले किससे बात करूं। मैं राजस्थान से आई हुई यहाँ अब रोड में, फिर मैं किसी को जानती नहीं थी, ना किसी से बात करती थी, तो फिर अंदर ही अंदर मैंने यही सोचा कि बच्चे आएंगे तो मैं उनके साथ मनोरंजन भी कर लूंगी।
2: अच्छा सोचा, तो आपने सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात की होगी?
3: हाँ, हस्बैंड से बात की ना, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यही चालू कर दो, मैं पीछे रहता नहीं हूँ घर पे, और अकेली पड़ जाती है तो फिर साथ में यही।
2: तो इस तरह आपने ट्यूशन की शुरुआत की?
3: शुरुआत
2: जी। बच्चे आपके कितने साल बाद हुए?
3: बच्चे मेरे एक साल बाद हो गए थे, 81 में बड़ा वाला हो गया था।
2: और एक साल तो कहते हैं ना, ससुराल पियर आने जाने में भी समय,
3: आने जाने में ही बीत जाता है एक साल, तो फिर मेरे हो गया था।
2: जी जी, तो हाँ, आने जाने में कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। फिर थोड़े बहुत आपके जेठानी भी रहे होंगे?
3: जी हाँ, साथ में रहे ना वैसे तो।
2: जी, तो जैसे आप बता रहे थे कि आपकी 18-19 साल की एज में शादी हुई, आपको सारे काम आते थे या आपकी जेठानी ने सिखाया यहाँ?
3: ना, यहाँ आके सीखी थी मैं, मेरे को साड़ी पहननी नहीं आती थी, सब उन्होंने सिखाया मेरे को। अब पढ़ाई करते हुए अपन साड़ी कहाँ पहनते हैं, वही सलवार सूट और जीन्स टॉपर और यही पहनते थे, तो साड़ी मैंने यहाँ आके सीखी।
2: जी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पहले उनका अनुभव नहीं होता है, बाद में ही होता है। जब हम कहते हैं ना कि जमीन पर उतरते हैं और जब घर गृहस्थी में रचते पचते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखी। तो जैसे आप कह रहे थे कि कढ़ाई बुनाई, ये आपने मायके सीखा है या सीखा?
3: ये तो मैं स्कूल में सीखी थी सारा।
2: हाँ जी हाँ जी, आपने स्कूल का बताया था। और आपने बच्चों का ट्यूशन, आपके बच्चा हो गए उसके बाद शुरू किया या पहले ही शुरू कर दिया?
3: नहीं, पहले ही शुरू कर दिया था।
2: तो बच्चे लोग आते थे?
3: आते थे, छोटे बच्चे आते थे ना, सब आते थे।
2: तो इसकी एड कैसे की आपने?
3: एड तो जब तो मैं फ्री थी ना उस समय, फिर बच्चा होने के बाद वापस बंद कर दिया था, फिर थोड़े बड़े हो गए 2-3 साल के, फिर वापस चालू कर दिया।
2: जी, लेकिन कैसे लोगों को पता चला कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं?
3: वो तो टीचर थे ना हमारे घर से, तो उन्होंने बताया, और मोहल्ले में भी पता था सब कि भाई इनके घर से प्रिंसिपल है, तो वो आते थे पूछने मोहल्ले वाले और क्या पढ़ा दोगे क्या। पुराने जमाने में तो इतना ट्यूशन का कहाँ था, पहले छोटे बच्चों को घर पे ही भेजते थे।
2: जी जी, ट्यूशन का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन
3: अब तो उसमें जाते हैं सब लाइब्रेरी में, तो घर वाले को कौन पूछे, पढ़े लिखे ऐसे ही बैठे रहते।
2: जी जी, तो आपका टाइम पास हो जाता था और आपकी भी पढ़ाई वापस रिपीट हो जाती थी।
3: जी हाँ, वापस रिपीट हो जाती, वो नॉलेज भी रहता ना कोई चीज का पढ़ाने से, कि भाई इसको ये पढ़ाना इसको ये पढ़ाना।
2: जी, और आपके जैसे बता रहे थे कि आपके चार बच्चे हैं, तो कैसे आपने बच्चों की परवरिश की अकेले हाथ, क्योंकि आपके जेठानियां रहते नहीं थे, अकेले आपको रखना, आपके हस्बैंड भी पूरे दिन झोंक पर रहते थे, तो कैसे उनका पालन पोषण किया आपने?
3: मेरा बड़ा वाला तो जोधपुर हुआ था, तो 5-6 महीने तो मैं उसको वहीं से करके लेके आई थी, फिर यहाँ आके फिर जेठानी ने थोड़ा रखा, थोड़ा हमने संभाला, ऐसे करके साल भर का हो गया वो बड़ा। फिर धीरे धीरे परवरिश करती रही, फिर 83 में दूसरा नंबर का लड़का हुआ, 83 में, और 90 में दोनों गुड़िया हुई, ट्विंस।
2: अच्छा, ट्विंस हुई?
3: ट्विंस हुई दोनों मेरी गुड़िया।
2: ओ, ट्विंस को तो रखना बहुत मुश्किल है।
3: तो फिर काम वाली भाई रखी थी ना, मालिश वाली और सब, फिर दो को तो मैं कैसे संभालती, मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई सास नहीं, कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं।
2: बहुत जने क्या करते, ट्विंस होते तो एक को पियर छोड़ देते, एक को अपने पास रखते, तो आपने ऐसा तो नहीं किया?
3: नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मेरे बच्चों को मैंने ही परवरिश की दोनों की।
2: आपके पियर वालों ने तो कहा होगा एक बच्चे को छोड़ दो।
3: आई थी ऐसे तो मम्मी आई थी रहने के लिए, भाई 2-4 महीने रहती फिर चली जाती, फिर आती फिर चली जाती, उनका भी बुढ़ापा था तो फिर इतना सहन नहीं होता ना। फिर मैं काम वाली लगा दी थी मेरे, वो रखते थे फिर सब, और दोनों बच्चे संभालते थे गुड़िया को जब मैं खाना बनाती।
2: जी, आपके दोनों बेटे थोड़े बड़े हो गए?
3: बड़े हो गए थे ना मेरे, एक 8 साल का था, एक 10 साल का था, तो दोनों में उनमें ज्यादा फर्क नहीं रहा, उनमें 2 साल का ही डिफरेंस था, 2 साल बाद दूसरा हो गया था, इनमें ज्यादा 10 साल का डिफरेंस रहा था।
2: अच्छा, दोनों बेटियां जो हुई और बेटा के बीच 10 साल का गैप?
3: 10 साल का गैप, ये 90 में हुई थी, वो छोटा वाला 83 में हुआ था, और बड़ा वाला 81 में हुआ था, तो 2 साल का उनके गैप रहा, और इनके साथ 10 साल का रहा।
2: तो बच्चे थोड़े रखने जैसे हो गए, बड़े हो गए?
3: बड़े हो गए थे रखने जैसे, तो दोनों गुड़िया को रखते थे, स्कूल भी जाते थे बच्चे दोनों।
2: जी जी जी हाँ, स्कूल भी जाते थे, फिर वो जाते थे उस समय, आप रखते, आपने वैसे ही काम

0: शादियां हो गई थी मेरे से पहले, तो उनके भी तो बच्चे थे ना, उनको संभालना, सारा घर का काम देखना सब करती थी मैं।
1: तो फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस थी।
0: प्रैक्टिस थी मेरी कि भाई बच्चों को कैसे संभालना है,
1: इसलिए इतना मुश्किल नहीं लगा।
0: इतना मुश्किल नहीं लगा गृहस्थी संभालना, मुश्किल नहीं लगा।
1: जी, लेकिन जब टिफिन बनाना होता है, एक साथ में बना के देना पड़ता, उस समय मुश्किल होता।
0: क्या मैं तो मुश्किल ही भाई, बनाना तो अपने को ही है ना, दूसरा थोड़ी बनाएगा।
1: बिल्कुल, तीन जनों का टिफिन, फिर दो बच्चों को संभालना।
0: बच्चों को संभालना सारा।
1: जैसे आपने कहा कि काम वाली बाई लगाई आपने, तो काम वाली बाई क्या करते थे? बच्चों को खिलाने के लिए लगाई या घर के काम में?
0: दोनों काम करती थी काम वाली बाई, बच्चों को भी रखती थी और घर का काम भी करती थी। पूरे दिन के लिए लगा रखी थी, जैसे बच्चे सो रहे तो भाई घर का काम कर लेती, बच्चे उठ गए तो उनको संभाल लेती, एक को मैं संभाल लेती। ऐसे करके 5 साल तक उनको बड़ा किया। 2 साल तक तो मैं पियर ही नहीं गई, बाहर ही नहीं निकली घर से, दो बच्चों को लेके कैसे जाऊं।
1: तो फिर आपके पियर वाले मिलने आते आपसे?
0: आते थे ना पियर वाले मिलने आते थे, कभी भैया भाभी आ जाते, कभी मम्मी आ जाती, कभी कोई आ जाता।
1: पर आपके तो जैसे हस्बैंड के प्रिंसिपल की जॉब थी, तो छुट्टियों में तो छुट्टियां ही छुट्टियां, उस समय जा सकते थे।
0: तो 1.5 महीने की छुट्टी पड़ती ना जब, तो फिर बच्चों को कैसे संभालना, बाहर कैसे लेके जाना दोनों बच्चों को। आगे तो कोई गाड़ियां वाड़ियां कोई सुविधा नहीं थी, वही बस में जाओ या ट्रेन में जाओ, फिर हंसी का पात्र बनता। इसलिए मैं तो, मैंने कहा मेरे तो कहीं नहीं जाना 2 साल तक।
1: अच्छा, नहीं आपके हस्बैंड भी तो साथ में आ सकते थे ना?
0: आ सकते थे, पर बच्चों को तो मेरे को ही संभालना था ना भाई, तो अब एक को दूध पिलाऊंगे दूसरे को।
1: अच्छा, इसलिए आप नहीं जाते
0: नहीं
1: थे?
0: गई मैं 2 साल तक, कहीं नहीं गई, घर से बाहर ही नहीं गई।
1: चलिए हेमलता जी, फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हू वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया, तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में ये अवेलेबल है और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना।
2: नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, पर जब बात हक की आए तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी, तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं, और हम पूछना चाहेंगे हेमलता जी से कि जैसे हेमलता जी आपने बताया कि आपके ट्विंस बेबियां थी, दोनों गुड़िया थी, तो दो साल आप मायके नहीं गए। परिवार में कहते ना कि कहीं शादी ब्याह भी होते हैं, कहीं कोई प्रसंग भी होता है, तो फिर सारे आपने छोड़े।
3: सारे छोड़े मैंने, मेरी सारी इच्छाएं खत्म कर दी थी, मैंने कहा कहीं नहीं जाऊंगी दो साल।
2: लेकिन दो साल में भी कहां बच्चे बड़े हो पाते हैं।
3: फिर भी बैठने लायक उठने लायक तो हो ही जाते हैं ना बच्चे बड़े, जैसे चलना फिरना या कोई गोदी भी ले सकता है, और इतने से छोटे बच्चे को लेके तो कोई संभाल नहीं सकता ना।
2: जी जी, फिर तो कोई भी गोदी में ले ले तो फिर जा सकते।
3: बच्चे को तो कोई भी गोदी में उठा सकता है, कोई भी घुमा सकता है, घूम जैसे हो जाते बच्चे दो साल के।
2: जी जी, तो दो साल के बाद आपने आना जाना शुरू किया।
3: शुरू किया दो साल के बाद।
2: और अभी बच्चे कितने बड़े हैं।
3: अभी तो शादियां हो गई, उनके बच्चे भी हो गए चारों के।
2: क्या बात है, तो अभी तो आप दादी नानी बन गए।
3: नानी बन गई ना।
2: तो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए।
3: कहाँ जिम्मेदारियां, तो और बढ़ती जाती है, कभी इसका कभी उसका कभी बेटों का।
2: कहते ना मूल से भी ब्याज प्यारा लगता
3: है, होता है।
2: तो फिर भी अभी आप काफी हद तक फ्री है।
3: फ्री है काफी हद तक, तो फ्री है। फिर घर की स्थिति ऐसी है ना, मेरे पति को कैंसर हो गया तो उनके तकलीफ है, उनको खाने पीने का टाइम टाइम दवाई देना सारा देखना पड़ता है, बच्चे छोटे हैं मेरे, दोनों बच्चों के डायलिसिस हो रहा है, देख कितनी की प्रॉब्लम है जो।
2: अच्छा, पोते पोती के?
3: पोते पोती को।
2: अच्छा, तो ये शारीरिक व्याधियां आ गई।
3: हाँ, ये परेशानियां हो गई ये सब।
2: जी जी, तो आपका समय सेवा करने में जाता है।
3: करने में ज्यादा लगता है मेरा समय, इसलिए मैं किसी को टाइम नहीं दे सकती बाहर, मजबूरी में इधर उधर, जैसे संगीत में चली जाऊं या भजन में या विश्वविद्यालय में आ जाती हूँ।
2: जी जी, सत्संग में आप थोड़ा सा समय देते हैं।
3: हाँ, ज्यादा नहीं, बुधवार 11 को बस, दो बार।
2: अच्छा, या तो बुधवार या 11,
3: दोनों में से एक दिन जाती हूँ, जब जब ये बच्चे घर पे रहते हैं जब जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती।
2: अच्छा, सभी साथ में, दोनों बहुए साथ में?
3: सब साथ में, सब साथ में।
2: तो बच्चों का कैसे हो गया, बचपन से था, जन्म से?
3: नहीं था, ये तो इनकी वो क्या बोलते रहे, जेनेटिक प्रॉब्लम हुई है।
2: अच्छा, और आपके हस्बैंड को कितने साल से कैंसर है?
3: मेरे हस्बैंड को तो 5 साल हो गए, कोरोना में हुआ था।
2: अच्छा, कोरोना के समय हो गया,
3: ऑपरेशन करवा दिया। वो तो था जो सारा दांत में कैंसर हो गया था, तो हमने तो पूरा जबड़ा ही निकलवा दिया एक साइड का, ना बड़े आगे ना कुछ हुए।
2: तो कभी बीड़ी सिगरेट या तंबाकू खाते थे क्या?
3: कुछ नहीं, बाजार का नाश्ता तक नहीं करते मेरे हस्बैंड।
2: फिर भी कैंसर हो गया, तो अभी ठीक है?
3: हाँ अभी ठीक है
2: सब। तो अभी उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है?
3: नहीं, जिम्मेदारी तो है ही ना, अभी उनका सारा खाना बनाना लिक्विड लेते हैं, खा नहीं सकते, एक एक तरफ का जबड़ा निकला हुआ तो एक तरफ चबा नहीं सकते। फिर उनको लिक्विड बना के देती हूँ, जूस बना के देती हूँ, पेजी बना के देती हूँ टाइम टाइम से, फिर उनको दवाई देना।
2: जी जी जी, पर कहीं मान लीजिए आपको अंदर बाहर जाना पड़ता है तो बहुएं संभाल लेती
3: है? हाँ, बहुएं संभाल लेती है, और टाइम से अगर जो होता है तो मैं करके चली जाती हूँ, नहीं तो बहु संभाल लेती।
2: जी जी जी, और आपके बच्चे क्या करते हैं? बेटे बेटियां जॉब करते हैं? उनको कितना पढ़ाया आपने?
3: मेरे बच्चे, छोटा वाला बेटा तो मेरा एक्सियन है पीएचडी में, बड़ा बेटा एमबीए करा हुआ है, वो शेयर मार्केट का काम करता है, बड़ी बहू फार्मेसिस्ट है उदयपुर में मेडिकल कॉलेज में, और दोनों बेटियां एमए बीएड करी हुई है।
2: अच्छा, तो बेटियां भी जॉब करती है?
3: नहीं, जॉब नहीं करती अभी, दे रही है, फाइट दे रही है।
2: जी जी, लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा है?
3: अच्छा दिया, सारा परिवार पढ़ा लिखा है सारा।
2: तो आपका कमी खली वो आपने अपने बच्चों में पूरी कर दी?
3: कर दी उन्होंने, पूरी कर दी मेरी, सारे जीवन में खुशियां दे दी, सब कुछ, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब, सारी खुशियां दे दी उन्होंने।
2: जी जी जी, तो अभी आप अपने जीवन में खुश है?
3: खुश हूँ मैं, बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मेरे जीवन।
2: जी, तो आप हमारी जो बहनें सुन रही है, जो सीनियर सिटीजन बहनें हैं 60 प्लस वाली, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कितनी बार क्या है कि महिलाओं के जैसे सारी जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाते, लेकिन सास बहू के किटपिट होती रहती, तो आप क्या कहेंगे?
3: नहीं, हमारे कभी सास बहू में किटपिट नहीं हुई है आज तक।
2: तो कैसे आप बहुओं को किस नजर से देखते हैं?
3: बेटी की नजर से देखते हैं, और क्या करें, जब अपने को सुखी रहना है तो अगले को जैसा ढलना चाहिए इंसान। और मेरा यही निवेदन है कि सभी बहनें 60 से ऊपर से हो गई है, तो यही निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में अपनी खुशी के लिए सबको त्याग दो, किसी को ये मत कहो कि तू मेरी बहू है, तू मेरा वो है, अपन खुद मम्मी बन के रहो सबके साथ में। तो आपको भी यही कहना है मेरा कि आप भी ऐसे ही जीवन में जियो तो खुश रहोगे। आज के जमाने में बहुओं को टोका टोकी करना ही नहीं, ना करने से चार बात अपने को सुनने को मिलेगी, इसलिए मुंह को बंद रखो, आंखों से देखो और हंसते रहो।
2: क्या बात है बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया है कि 60 प्लस वाली बहनें जिनके घर में बहुएं आ चुकी है, उनके साथ प्यार से रहो, ज्यादा टोका टाकी न करो, ताकि बैलेंस बना रहे और घर में शांति बनी रहे, माहौल अच्छा रहे। तो हेमलता जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने बहुत ही सुंदर अपने जीवन के अनुभव शेयर किए, रेडियो मधुबन को समय दिया और हमारे सभी श्रोता बंधुओं के साथ आपने अपने अनुभव शेयर किए, इसके लिए
3: धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए थे। आबू रोड से है आप ने भले पढ़ाई 8वीं तक की है, लेकिन आपका नॉलेज देखे कितना है। आज आप अपनी बहुओं के साथ शादी करके आए, तो आप

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कह सकते हमारा गांव हमारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते समुदाय का गतिविधि जन जन तक पहुंचे ये हमारा कोशिश रहता है और हर वर्ग हर विभाग से मिलते हैं और खासकर हम जब जिस एरिया में जिस गांव में रहते हैं वो गांव आदर्श बने गोकुल बने मॉडल विलेज के तहत हम चाहते हैं और हमारा गांव भी अच्छा बनेगा तो विश्व भी अच्छा बनेगा। जिससे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। स्व गाँव अपना अंचल समृद्ध होगा तो विश्व सशक्त और समृद्ध होगा। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए पर्यावरण सुरक्षा के तहत आज हम पहुंचे मानसरोवर स्थित टेरेस में जहां पर बैठे हैं और आपका प्रकृति का खुशबू स्वामी अवसर परिवेश अब तक हम पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। आज इस कार्यक्रम को हर एपिसोड की तरफ आज भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए श्रीमान गोपाल राम पुरे जी उपस्थित है जबकि महान अनुभवी है और एक अनुभवी ही अनुभव करा सकता है।
1: नमस्कार सर। नमस्कार
0: सर, आपको स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम को और खास कर विश्व जब नाम सुनते हैं और स्व स्व और विश्व दोनों का कितना आवश्यकता है
1: स्व परिवर्तन करते रहेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे।
0: स्वागत है, सुनाइए आज क्या लेकर आए हमारा श्रोता मित्र
1: सर। विचार करेंगे आपके द्वारा जो ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किया गया
0: जी, स्वर्णिम अवसर कैसे कहेंगे सर इसको
1: स्वर्णिम सर। ये स्वर्णिम अवसर यूँ है
0: जी
1: की
0: पहले से आपको बता
1: लंबे समय से सर प्रकृति के संबंध में चिंतन चला आ रहा है
0: जी जी।
1: यानी कि मैं तो ये कहूँगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से जब से मनुष्य जानकार हुआ वो प्रकृति की गोद में पला। आदिवासी तरीके से जब वो जंगलों में रहता था प्रकृति ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया और प्रकृति पर ही वो निर्भर रह करके जहाँ जैसा जलवायु था जैसी प्रकृति मिली उसके अनुरूप उनकी सभ्यताएं विकसित। यानी कि मनुष्य का विकास प्रकृति के कारण से ही हुआ है और विभिन्न कालक्रमों में जैसा आप बताते हैं धीरे धीरे जो जो मानव विवेकशील होता गया और जहाँ विवेक अच्छा काम करने लगा तब

0: सतयुग, फिर
1: त्रेता
0: युग, फिर द्वापर युग, फिर कल युग, फिर संगम युग। तो इस तरह से वो अपनी अपनी प्रकृति पर उसने किस तरह से उसका उपयोग किया, जहां तक बहुत अच्छा उपयोग रहा सतयुग में, फिर त्रेता में थोड़ा फर्क पड़ा,
1: गोल्ड टू सिल्वर,
0: बिल्कुल सर, गोल्ड टू सिल्वर हुआ, फिर द्वापर में सिल्वर टू ब्रॉन्ज हो गया, और कलयुग में आयरन हो गया। तो सर अब ये तो संगम युग है जहाँ पर
1: डायमंड,
0: नहीं सर इसको मिक्सिंग कहेंगे, मिक्स हो गया डायमंड, तो बहुत बढ़िया
1: सर, इस समय हमें बढ़िया बनना है,
0: अपने को तो बढ़िया बनना है, अपने को तो मणि बनना है,
1: इसलिए तो डायमंड हो गया,
0: इसलिए अपने को डायमंड बनना है, लेकिन जो युग है वो थोड़ा सा कलुषित सा,
1: नहीं अभी कलुषित जैसे आपने
0: लालच में,
1: लालच जो लालच नहीं करेंगे उसके लिए डायमंड,
0: उसके लिए तो
1: समझ मिल गया ना,
0: बिल्कुल जिसके समझ है वो डायमंड। क्या बात कही आपने, सबके पास यही बात मैं लाना चाह रहा हूँ, इतना ये जो एडवोकेसी प्रोग्राम ये कहने के लिए आपका माध्यम मुझे मिला है, मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ सर, कि ये चीज तो सर जितने भी ग्रंथ है उन सब में लिखी हुई है कि प्रकृति की पूजा करनी है,
1: करते थे
0: तो उसको करने की आवश्यकता है, आज कम कर रहे हैं, मतलब पूजा का मतलब दीपक करना या वो वाली बात नहीं, उसको किस तरह से संरक्षित करना है अंदर के भाव से, वो सारा फिर से सर ज्ञान तो है, तो सर आवश्यकता यूं पड़ी कि इसको नवीन तरीके से अभी इस संगम युग में भी परिभाषित किया है विज्ञान, तो सर जब इसको नवीन तरीके से परिभाषित किया और तब भी जिस स्थिति वह बनी हुई है, तो फिर समझ के स्तर को बढ़ाने के लिए आपने जो मुझे अवसर प्रदान किया, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैं तो इसकी छत्र छाया में आकर के आत्मविभोर हो जाता हूँ कि ये बात मुझे आपके माध्यम से कहने का मौका मिला, हमारी बात सुनता ही कौन
1: सुनेगा, तो आपका कितना जहाँ आपका एरिया है जान पहचान लोग है,
0: बस
1: एक मंथ जैसे आप तो पोस्ट में थे
0: सर,
1: मैं बड़े आदमी बोलकर अभी यहाँ भी जाएंगे तो हमारा ये बहुत सीनियर आदमी है थे पोस्ट में जिला शिक्षा अधिकारी,
0: बात है समय कि हमने जहाँ जाए इसके लिए सोचा वहाँ काम जबरदस्त, पर जो ही उस पद से खिसके कि वो काम जहाँ थे मुझे ये होता है कि वो वहाँ से आगे बढ़ाई है, मेरी हुक है और वो आपके माध्यम से ही पूरी हो सकती है, तो मैं बहुत बहुत बहुत खुश हूँ आप इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अपनी बात को रखने के लिए, रेडियो मधुबन जैसा माध्यम आप सभी दीदियों के और भाइयों के द्वारा जो मिला हुआ है, तो क्यों नहीं अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखें, ये मन में होता है, लिखा हुआ सब जगह, लेकिन सर जब हम स्कूल्स में गए, मैं कई बार कहता हूँ आपके साथ, जब उस सिस्टम का एक प्रधान अच्छा व्यक्ति, यानी कि सब अच्छे व्यक्ति तो है ही है, लेकिन वो किस चीज को फोकस करता है, तो वो पर्यावरण की सुरक्षा भी काम करता है, वही आप सबके विकास का माध्यम बनता है, तो यहाँ पर हम उस बात को इसलिए कर पा रहे हैं कि बच्चों तक वो जो सिस्टम से पहुंचा है वो बच्चे समझ के कर क्यों नहीं रहे, ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो सर बार बार इच्छा होती है कि इसको किसी तरह से किसी अच्छे मंच के माध्यम से रखा जाए, तो मुझे लगता है कि आपसे बढ़िया रेडियो मधुबन से बढ़िया कोई मौका ही नहीं था, इसलिए हमने इस माध्यम से इसको प्रस्तुत करना ठीक समझा, और आपकी लगन अच्छा। दूसरा सर ये माध्यम मुझे और भी ज्यादा ठीक लगा, आपने एक बार पूछा था कि आपने एनजीओ बनाया कि नहीं बनाया, सर इतना बड़ा जो सिस्टम पड़ा है वहाँ एनजीओ की जरूरत क्या है, अलग से स्थापित क्या होना, तो आपके माध्यम से जब बात कर पा रहे हैं, और जहाँ सर इसके मॉडल्स बने हुए, मैं ये कहूंगा सर कि आसपास के हमारे इस अंचल के जितने भी लोग, मैं तो ये निवेदन करूंगा कि ये रेडियो जहाँ तक सुना जा रहा है, सर ये कहाँ तक सुना जा रहा है आपने यहाँ पर,
1: सर ये तो हमारा
0: एफएम एरिया में सुना जा रहा होगा,
1: एफएम जो गवर्नमेंट का डायरा है वो उस तरह सीमित है, पालनपुर में दिया गया,
0: ठीक है
1: यहाँ दिया, तो ये 45-40 किलोमीटर
0: इस एरिया में, अगर किसी एरिया विशेष
1: इंटरनेट का माध्यम से
0: हम पूरी दुनिया तक
1: पहुंच जाते हैं, और आजकल डिजिटल सिस्टम हो गया ना,
0: तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
1: एप्लीकेशन के माध्यम से तो सुनते हैं, और हमारा लक्ष्य क्या है, हम अच्छा कर्म करें और जहां तक पहुंचे जिसको आवश्यकता वो पहुंच जाएगा। और ये हमें खुशी हो रहा है क्योंकि कम्युनिटी रेडियो ये सामुदायिक रेडियो है, तो तीन प्रकार रेडियो मैंने बताया था, ऑल इंडिया रेडियो जो सरकार कंट्रोल कर,
0: बिल्कुल सर
1: जैसे हमारा माउंट आबू, एक कमर्शियल रेडियो जो कि बिजनेस पर्पज में,
0: दूसरा उद्देश्य
1: एड के,
0: बिल्कुल सर,
1: फिर जो सामान्य जनता में कहाँ जाएंगे,
0: बिल्कुल जनता,
1: इसलिए सरकार ब्रोकन बोर्ड प्लास्टिक मिनिस्टर प्रसारण विभाग दो सूचना प्रसारण विभाग से सर, इसको कम्युनिटी रेडियो का नाम से दिया है। आसपास लोग
0: लोगों के लिए समस्या सुने
1: तो उसको कम्युनिटी को एनजीओ को देते हैं, कोई शिक्षा अनुष्ठान को देते हैं और कोई एनजीओ को ये देते लाइसेंस। फिर उसका प्रोसेस है, प्रोसेस अनुसार जो क्वालिफाइड करते हैं उसको देते हैं,
0: उसके समाज सेवा की आपकी भावना।
1: फिर समाज के जो लोग हैं उसमें भागीदारी ले, जैसे आपने कितना साल मेहनत करने वाले दो चार आए हमारा इस कम्युनिटी में,
0: आप इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं
1: क्योंकि हमें
0: आपका ग्लोबल नेत्रालय इतने लंबे समय से मेहनत कर रहा है, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं, वो साइट सेवर से सर अभी जुड़ गए और साइट सेवर सर इतना जबरदस्त काम कर रहा है दुनिया के अंदर जिसकी कोई नुकसान ही नहीं, और उनके साथ मिल करके हमारा जो ग्लोबल हॉस्पिटल काम कर रहा है आईज के फील्ड में। इस तरह से आपने जो नशा मुक्ति के लिए जो काम किया जिसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आपके माध्यम से एक सम्मान पत्र प्राप्त हुआ है, खैर वो तो सम्मान ही है विश्वविद्यालय तो कि जहाँ पर,
1: तो इसलिए हमें खुशी मिले जैसे आपने बताया
0: आनंद मिलता है सर।
1: ये मंच आपका है, कभी भी आप स्वतंत्र मित्र अपने बात को रखने के लिए आइए, चाहे समाज से भी हो एनजीओ हो तो आते हैं, उसका खुला मंच क्योंकि एक मंच का माध्यम से हम अपना अभिव्यक्ति अपना भावना
0: अपने अंदर की भावना व्यक्त
1: कर सकते हैं, जो कि सरकार का ये गाइडलाइन चल रहा है, हम लोग
0: सरकार की गाइडलाइन से ही चलना है सर। सरकार भी अगर आप और हम सहयोग नहीं करेंगे तो कितना सरकार को भी तो इस चीज की आवश्यकता है। जैसे तो वापस मैं इस बात को रेपिटेशन के तौर पर कह रहा हूं, स्कूल में जाते हैं बच्चे समझ नहीं पा रहे या और भी कई कारण होते हैं, उनका लक्ष्य अलग होता है, उसके हिसाब से जैसे ये लेसन्स जहाँ जहाँ पर क्लासों में डाल रखे हैं, तो मैं कहता हूँ सर उनको सामने लाके परोसना पड़ेगा आपको, और ये इस एरिया विशेष में नहीं सारी दुनिया में ये करना पड़ेगा, नहीं तो सर चीजें तो है लेकिन जब तक आप उसको परोसेंगे नहीं थाली में तो आप पाएंगे कैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी माध्यम मिले उस माध्यम से अपने को इस चीज को सामने लाना पड़ेगा, तभी जा करके हम इसके प्रति गंभीर हो पाएंगे।
1: बराबर ठीक बात बताया, और जैसे समय अनुसार समय जैसे भी बताया
0: जी,
1: समय बहुत बलवान है और समय हमें इशारा दे रहा है और हमें सतर्क होकर आगे चलना है। आज के समय को देखते हुए हमें खुद को देखना है, संभालना है,
0: स्व को
1: संभालना, जाकर विश्व संभाल तो जाएगा। तो आपका टॉपिक भी मैंने
0: बिल्कुल सर उसी पर
1: बंधुत्व जो है
0: बिल्कुल उसी पर मैं चल रहा हूँ सर।
1: पर्यावरण कितना आवश्यक है विश्व को
0: सर, अब इसी बात को उस तरफ ले जाते हुए कि सर अब इतनी भयावह स्थितियां हमने रोज आपको चर्चा की है जिसके लिए चिंतन आवश्यक है, स्वचिंतन आवश्यक है और स्व परिवर्तन आवश्यक है। जो इस तरह के विश्वविद्यालय की आपको बता पाते हैं कि किस तरह से हम अपने आप में परिवर्तित होकर के सर काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल समाज में जाएगा। सर मेरा निवेदन कि अपने यहाँ पर जैसे ईश्वरी विश्वविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कितने काम हुए सर, जैसे यहाँ पर वेस्ट जरा भी नहीं होता और वेस्ट मैनेज करके इलेक्ट्रिसिटी
1: वेस्ट होगा तब हम बेस्ट में परिवर्तन कर देते
0: सर, बेस्ट में परिवर्तन किया है तो सर लोग यहाँ किए यहाँ आकर के देखें। और सर मेरा तो निवेदन ये रहेगा इन क्लिप्स को इंटरनेट के माध्यम से आप आगे भी पहुंचे क्योंकि सर ये चीजें सब जगह उपलब्ध तो है लेकिन वो जा नहीं रही है, लोग उसको देखेंगे समझेंगे तो चलेगा, ये तो चलेगा नहीं तो सर उससे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो रही, प्रदूषण भी कम हो रहा है। यहाँ पर सर जो यौगिक कृषि हो रही है आप जब देख रहे हैं कि वो इतने अच्छे तरीके से ये सब रसायन मुक्त खेती हो जाती है तो कितना कितना कितना फायदा पूरे समुदाय को हो सकता है। तो समुदाय आप तक पहुँचे, बार बार निवेदन आप तक पहुँचे और देखे कि ये लोग कैसे करते हैं ये सब। सर यहाँ जिस हम टेरेस गार्डन में बैठे हैं आप और हम सीख लेनी चाहिए कि हमारे पास में बगीचा किस तरह से डेवलप किया है टेरेस के ऊपर, वो जो बगीचा जो टेरेस पर डेवलप किया है वो किस तरह से उन्होंने छठवीं मंजिल पर मिट्टी वगैरह पेड़ पौधे ये सब लगा करके किस तरह से इसको विकसित किया है,
1: इनको सैंपल रखें लोग
0: सर, सर, देखें। सर मतलब वहाँ जाकर के लोग देखें तो समझ में आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। आप और हम भी आश्चर्यचकित है कि यहाँ किस तरह से इन्होंने व्यवस्थाएं की है, तो जो पब्लिक है वो जागरूक होगी और इन चीजों को आकर के देखेगी समझेगी और तब जाकर के हम इसमें थोड़ा से आगे बढ़ पाएंगे,
1: हमसे आगे भी कर सकते हैं इसे कुछ है नहीं।
0: तो सर ये जो इसकी आवश्यकता सर इसलिए पड़ रही है कि सब जगह चीजें तो है सर, मेरा निवेदन ये है जैसे गार्डन है वो सभी गांवों में है, प्रकृति सभी गांवों में है लेकिन सर उसका उपयोग सामने होते हुए भी लोग नहीं कर पा रहे, तो सर ये ज्ञान भी सब जगह है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो जाकर के देखेंगे उपयोग करने से फायदा कितना हो रहा है।
1: तो कारण होगा ना सर,
0: सर
1: नहीं कर पा रहे मतलब
0: सर
1: कुछ कारण तो आप
0: बस यही
1: होंगे
0: सर, यही बात सर करने की बात है। सर सर वो क्यों नहीं कर पा रहे, वो सारी चीजें होते हुए क्यों उसका उपयोग नहीं कर पा रहे,
1: कारण क्या है? आपका मन आपका विचार में क्या आ रहा है?
0: मेरे विचार में ये कि वो इसके प्रति मतलब
1: आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा,
0: या तो यही लगता है कि आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा है।
1: आवश्यकता को तो
0: लेकिन सर आवश्यकता तो उनकी है, वो तो फिर समय बता देगा। तो सर उनको
1: अभी उनको आवश्यकता नहीं, तब तो नहीं कर रहा है।
0: अब देख लो सर ये तो
1: आप क्या कहेंगे, वही तो भाई सर एक तो सिंपल चीज है।
0: बिल्कुल सर,
1: अभी इसका मतलब तो पानी लेंगे ना,
0: जब वो परेशान होंगे तब तो उसकी आवश्यकता को महसूस कर जाएंगे।
1: और जो आप जो महसूस किया है उसको तरस आ रहा है,
0: बस जिसने महसूस
1: के लिए तरस भाई
0: उस बड़े विश्वविद्यालय को तरस आ रहा है। आपको समझ में आ रही है तो
1: तरस आ रहा
0: है, कैसे होगा ये, कैसे होगा, इनको तो बचाइए जैसे तैसे करके। ये बचाने का प्रयास तो हमको ही करना पड़ेगा, तो इसलिए सर इससे जागरूकता के लिए हमको दौड़ना पड़ रहा है सर।
1: ये बहुत अच्छा बात बताया, और जागरूकता भी चाहिए। और जैसे मैंने बताया भाई क्यों नहीं कर रहा है, उसका कारण होगा आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा है। हमेशा इसे कहेंगे ये भाई जैसे आपने वो टॉपिक उठाते हैं तो हम उसी का मतलब इसका कारण तो ढूंढिए
0: जी।
1: क्या तकलीफ, सरकार सहयोग चाहिए कि कोई एनजीओ से सरकार क्या चाहते हैं
0: सर,
1: वो भले निवेदन करे।
0: सरकार ने तो सर सारा सिस्टम दे दिया, एनजीओ भी सब तैयार है।
1: फिर
0: अब सर एनजीओ ने अपना काम कर दिया, उस एनजीओ तो वो जाए
1: उसका जानेंगे क्यों नहीं जा रहा और जाने के लिए हमें क्या उसके लिए गाड़ी भेजना पड़ेगा, हमें कैसे आएंगे जानना पड़ेगा ना सर।
0: जिस जो प्यासा है वो कुएं के पास जाए,
1: जाएंगे जानेंगे, लेकिन
0: तो सर कुआ तो प्यासे पास में पड़ा है, वहाँ जाना तो पड़ेगा, पर नहीं जाएंगे
1: उसका ऊपर में जानेंगे। ब्रेक का बात सुनकर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, और खासकर सर ने बताया भाई आवश्यक करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, हम कर रहे आप भी करो वो करो, हमको तरस आ रहा था, हम अनुभव भी बा अनुभव करने के बाद हम थोड़ा प्यासी होगी, और प्यासी होने के बाद हम जल के पास गए, अनुभव की भाई ऐसे होंगे तो वो भी प्यासा नहीं रहेंगे, ये हमारा साधना है। तो जानेंगे अल्प विराम के बाद कारण और उसका निवारण
0: जी,
1: सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर पर्यावरण स्पेशल में आज स्व परिवर्तन का साथ साथ पर्यावरण विश्व स्तरीय परिवर्तन के लिए हम सबका उंगली लगे ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन जाने और कुछ अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सुनना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है, और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस? इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।
2: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत खुशी महसूस हो रहा है क्योंकि पर्यावरण इतना शुद्ध विषय है और उसको शुद्ध रखने के लिए हम सबका जिम्मेदार है, और जिम्मेदारी से हम काम करते हैं और करेंगे तो अच्छा ही हमें फायदा होगा। और इस भावना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें पुनः स्वागत करते हैं श्रीमान गोपाल राम जी को, जो कि अच्छा अनुभवी है और खासकर डेडिकेशन भावना रखते हुए आगे साथ दे रहे और रेडियो मधुबन को सुंदर रूप में सजाए और खासकर पर्यावरण एनवायरनमेंट को हेल्दी वेल्दी बनाने के लिए कोशिश करते हैं। और हम सबका प्रयास से सर पुनः स्वागत करते हैं आपको। क्या कहना चाहेंगे और आज का मांग, समय की मांग कहे चाहे व्यक्ति का मांग क्या होना चाहिए?
3: सर नमस्कार। सर सर पर्यावरण में जिस तरह से अब परिवर्तन हो रहे हैं,
2: क्या कि परिवर्तन क्या पॉजिटिव वे में ना नेगेटिव में, आप क्या सोचते हैं? परिवर्तन हो रहा है लेकिन ये सपोर्टिंग ना,
3: वो पर्यावरण आपको हमेशा सपोर्ट करता था लेकिन अब आप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज है।
2: नाराज तो उसको राजी कराना है,
3: उसको खुश करना है। पर्यावरण तो देने को तैयार है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव आपका विवेक हो सकता है, इंसान हो सकता है, लेकिन पर्यावरण कभी नेगेटिव नहीं होता।
2: क्या बात।
3: तो सर वो तो प्रकृति है, ईश्वरीय प्रकृति है, वो तो देने के लिए ही बनी है। वो पशु पक्षी आप देखो, आप दो मिनट में खुश हो जाएंगे। जैसे ये कबूतर बैठे हुए सामने, चिड़ियाएं बैठी हुई थी चित्र दी, हम सब सुबह सुबह जब देखते हैं ना इस कोर को,
2: हमें तो डिस्टर्ब नहीं करता, हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं,
3: वो हमें डिस्टर्ब कभी नहीं करते, कभी नहीं कर रहे, और आपको और आनंद देते हैं वातावरण के। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण का ही विशेष काम सर ये पशु पक्षी भी करते। तो अगर एनवायरमेंट बैलेंस होगा तो ये सब अपने आप को सस्टेन कर जाएंगे, और सस्टेन करेंगे तब जा करके ये शुद्धि का जो वातावरण है वो बन जाएगा। हम हेल्दी रहेंगे, हम वेल्दी हो जाएंगे, हम हेल्दी रहेंगे तो वेल्दी हो जाएंगे ना,
2: तेज वेल्थ का रास्ते संपदा,
3: तो फिर सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर सर। तो इसके लिए सर जी
2: मनुष्य देखता क्या विवेकवान है,
3: विवेकवान है सर। तो इसके लिए अब आपसे मैं निवेदन करूँ की सर इसके लिए अभी जो रिसेंट में जो महत्वपूर्ण सम्मेलन थोड़ी सी चर्चा करें कि दुनिया इस पर किस तरह से आगे बढ़ रही। पहले सर भावना से था, तब तक सर का संरक्षण बहुत अच्छा हुआ, बहुत पहले सतयुग त्रेता द्वापर फिर कलयुग, तो अब सर भावना में कहीं न कहीं कोई थोड़ा सा मिलावट हो गई। वो प्रकृति का शोषण करना चाहता है, तो जब आप उसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। आप उसका नेगेटिव उपयोग करेंगे तो उसका नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। प्रकृति पॉजिटिव देना चाहती है, लेकिन आपका नेगेटिव चलना नेगेटिव रिजल्ट को लाने के लिए उसको अवसर प्रदान, क्योंकि प्रकृति हमेशा आज भी अच्छा देना चाहती है। आज प्रकृति का संरक्षण करो, बढ़िया वृक्षारोपण करो, जैव उत्पाद आप उपयोग में लो, आप ऑटोमेटिकली हेल्थी हो जाएंगे। इसलिए प्रकृति की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है, कमी है तो उन लेने वाले हाथों की,
4: देने के लिए तैयार कर ले वाले तो उसको दो बोले
3: उसको दे अच्छा देंगे तो वो दे देंगे, वो बहुत ज्यादा देंगे।
4: लेने के लिए आप हम लोग तैयार है, तो देने के लिए वो भी तैयार है, लेकिन लेकिन बीच में जो MOU साइन होता है,
3: बिल्कुल बिल्कुल MOU तो करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो करना ही पड़ेगा कि हमको उसके लिए जीना पड़ेगा, तब वो आप पर बौछार कर देगी, छत्र छाया कर देगी।
2: तो ज्यादा कुछ नहीं महत्व, शुभ भावना, शुभ संकल्प,
3: शुभ संकल्प के साथ। तो सर इस पर जो काम हुआ है, अपन उस तरफ देख थोड़ी सी दृष्टि लगाएं,
2: जी जी,
3: जिसको आज मूल विषय के रूप में मैं रखना चाह रहा था।
2: जी
3: सर, बाकी सारी चीजों के साथ साथ साथ धीरे धीरे धीरे धीरे एक इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, इसको कहते हैं।

0: वो सर सम्मेलन हुआ है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में।
1: जी 72 में।
0: यस सर, मतलब काम पहले से ही हो रहा है सर, लेकिन जो इसका स्टॉकहोम सम्मेलन है वो 1972 में हुआ और इसको सर मैग्ना कार्टा कहा गया पर्यावरण संरक्षण का। और सर ये काम हुआ 5 जून को और इसलिए उस समय से हम पर्यावरण दिवस के रूप। तो मैं मूल चीज पर लाता हूँ कि पर्यावरण दिवस साल में एक दिन मनाया भी
1: जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस,
0: विश्व पर्यावरण,
1: वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।
0: बिल्कुल सर।
1: जून था।
0: तो सर ये सर जागरूकता का एक बहुत बड़ा पैमाना दुनिया पर महसूस किया, पूरी दुनिया ने महसूस किया। और तब जाकर के आप हम जैसे ये जो पर्यावरण के लिए जो चिंता करने वाले लोग इकट्ठे भी होंगे, एनजीओ भी चले होंगे, और तब जाकर के ये बात करने की आवश्यकता हुई कि भाई अब इसको तो प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
1: देखिए सर 72
0: 1972 में सर
1: इसका मैंने महसूसता मैंने आवश्यकता को महसूस किया
0: सर, मतलब कितना सारा पुनः महसूस किया गया। और सर इसमें एक और नई चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये जब भी बनता है उसके बाद लागू होने में भी कुछ समय लग गया।
1: चलो एक दो साल,
0: चलो जो भी है जो भी है। तो सर
1: कम से कम 15 साल हो गया।
0: इसके बाद सर एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसको जो हुआ है 1992 में 172 कंट्रीज का। तो सर उसमें सर क्या था, उसको पृथ्वी सम्मेलन कहा गया और ये हुआ था सर रियो डी जनेरो में। तो ये भी सर बहुत ही प्रभावी सम्मेलन हुआ 1992 के बाद। तो पहली बार घोषणा पत्र जारी हुआ साझा और सर इसमें एक एजेंडा 21 लाया गया जिसमें पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 40 अध्याय सर इसमें रखे और उसको 4 पार्ट में भी बांटा है और उस पर धीरे धीरे धीरे धीरे फिर काम होना शुरू होता है सर वन सिद्धांतों के अनुसार। सर बीच में ब्रंटलैंड आयोग बनाया गया जो 1983 में इसने हमारा साझा भविष्य करके बात हुई थी, इसके बीच में जो ये भी एक महत्वपूर्ण एक पड़ाव था जो सर इसका जो एजेंडा 21 जो लाया गया इसमें 92 में इसका ब्लूप्रिंट उसमें तैयार हुआ है। 1983 में ब्रंटलैंड आयोग बनाया और उसके बाद 87 में इसको तैयार किया और वो ब्लूप्रिंट 92 में आया। तो सर एक क्रम बता रहा हूँ कि सरकार कितनी चिंतनशील है, कब दुनिया कितनी चाहती
1: बहुत दिन से
0: सर। अब तक हमने 5 तत्वों का किस तरह से ये दुष्प्रभाव अपनी वजह से मानव की ठीक प्रवृत्ति न होने से जो हो रहा है उस पर अपन चर्चा कर रहे थे कि भाई कितना भयावह है, ये है वो है, इस चीज को पहुंचाने का प्रयास सब कर रहे हैं। अब देखो जब पहले भी इतने बड़े स्तर के काम भी धीरे धीरे होते थे, सरकार ने स्कूलों में लागू किया तो फिर बच्चों तक जाने में उनके कंटेंट को उनके तो खिलाना पड़ेगा ना, ला करके समझाना पड़ेगा ना, तब जाके वो समझेंगे, नहीं तो कैसे समझेंगे सर। तो सर ये ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। आफ्टर दैट सर एक बड़ा जो सम्मेलन हुआ है जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में और इससे पूर्व में सर एक बहुत बढ़िया काम हुआ जिसमें सर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करके एक COP इसमें नाम दिया गया जो स्पेशल एनवायरनमेंट के लिए होता है और वो लगभग प्रतिवर्ष होता है। भाई इसमें इतने देशों की पार्टी है 172 कंट्रीज की और वो प्रतिवर्ष मिलते हैं और उसमें सामान्य चर्चा करते हैं। फिर कोई बड़ा सम्मेलन होता है तब बात अलग है, वो सामान्य मतलब उससे जुड़े हुए व्यक्ति जैसे आप और हम करते हैं वैसे उस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल करके वो उस पर काम करते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ और वो हुआ सर 1995 में। मतलब दुनिया कितनी चिंतित है इसके लिए, ये कितना बड़ा दुष्प्रभाव आ रहा है, ये कब से चल रहा है, बहुत लंबा समय हो गया 72 देन 1992 देन ब्रंटलैंड आयोग 1980 ठीक है 7 में उसको ब्लूप्रिंट लाया एजेंडा 21 का और सर 1995 से COP फर्स्ट हुई बर्लिन जर्मनी में। ये सर अलग अलग देशों को फिर जिम्मेदारी सौंपते गए तो फिर इसमें सर जागरूकता फैलती, जैसे आप कभी हमको सुशांत वाटिका में बैठाते हैं, कभी आरोग्य वन में बैठाते हैं, कभी सर इधर रिमोट किसी गांव में ले जाते हैं, सर इससे जागरूकता फैलती है ये लोग क्यों घूम रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर सर ये जो इसके सम्मेलन होने से इनकी मीटिंग्स होने से इसका एक अच्छा मैसेज उस देश के थ्रू, क्योंकि उस देश का हेड तो उसमें शामिल होता ही है तो बहुत अच्छा संदेश जाता है सर। तो 1995 में COP फर्स्ट बर्लिन जर्मनी में हुआ, 96 में COP सेकंड जेनेवा में हुआ, 97 में क्योटो में हुआ। इस तरह से सर धीरे धीरे ये COP होते रहे और आज तक सर ये हो रहे हैं। और सर इसमें क्योटो प्रोटोकॉल है वो भी बहुत ही गजब रहा जो जापान में हुआ था सर। इसमें सर जापान का जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो काफी मजबूती के साथ में जापान के लोगों के द्वारा इस चीज को रखा गया है, जिसमें सर एजेंडा 21 के जो पार्ट थे उनको उसमें रीडिफाइन करने का प्रयास हुआ है। इसके सर चार पार्ट है, एजेंडा 21 के जो चार पार्ट है वो है आर्थिक व सामाजिक विकास के आयाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय किए जाएं, दूसरा विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, तीसरा प्रमुख समूह अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले इसमें काफी अच्छी भूमिका निभाएंगे और सतत विकास के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इस तरह से ये पर्यावरण संरक्षण के साथ में क्योटो प्रोटोकॉल में इसको फाइनलाइज किया गया। जोहान्सबर्ग सम्मेलन में जो मुद्दे सर शामिल किए वो थे जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा, जैव विविधता और स्वास्थ्य, जो अगर कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह से अगर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है तो इसके लिए दूसरे देश को ये सब मिल करके निर्देशित कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो एनवायरनमेंट प्लान है इसका सर स्थापना सर हुई थी 1972 में जो हुआ था, लेकिन सर इसका जो हेड ऑफिस है वो सर यूएनईपी का नैरोबी में बनाया गया। इसका हेड ऑफिस सर इसका जो हेड ऑफिस है वो तो इस तरह से विभिन्न देशों में इसको हाँ विवेकशील तरीके से इसको कैसे लागू किया जाए इसकी पूरी पूरी कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। सर अभी भारत में तो अपना जर्मनी का एक सेल काम कर रहा है जो इस पर विशेष रिपोर्ट प्रसारित करता है समय समय पर, तो सर उन रिपोर्ट से हमको ये आइडिया लगता है, जितने भी आंकड़े हम जो लाते हैं वो उससे होकर के लाते हैं और उसी से ये सारे के सारी चीज जागरूकता वाली हम बता पाते हैं। तो आप इसके दुष्प्रभावों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा समुदाय कितना चिंतित है, मुझे भी प्रेरणा सबसे ज्यादा तब मिली
1: मानव जाति के लिए चिंतित पूरे विश्व यूएन का जो सब लेवल ले रहे तो सभी जो विवेकशील व्यक्ति इसका पीछे कब से लागू कर रहे हैं, उसका जो इम्प्लीमेंट अभी धीरे धीरे धीरे धीरे आज तक यहाँ पर हमको में आज बताने के लिए हमें आवश्यकता महसूस की
0: है, इसलिए महसूस हो रही है सर
1: क्योंकि ऊपर से कहीं यूएन ने वहाँ से जो लोग किए उसका हमें कुछ प्रभाव पड़ रहा है, वो लोग देखते हैं कि हमें उसको थोड़ा सा
0: भी तो कुछ करें हम भी तो अच्छा ग्राउंड लेवल पर जाएगा तब जाकर के ये काम होगा, नहीं तो होगा कैसे।
1: जैसे आपने एक बात बताया सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है
0: जी जी जी जी एसडी,
1: तो ये कितना बड़ी काम यूनाइटेड हो रहा है
0: बिल्कुल
1: जाति संघ से, तो उसके लिए जैसे सस्टेनेबल शाश्वत रहे सब चीज उसके लिए देखिए नो पॉवर्टी तो गरीब नहीं होना चाहिए
0: बिल्कुल सही,
1: गरीब होगा तो एनवायरनमेंट गरीब कौन कराएगा, एनवायरनमेंट गरीब करा देगा
0: वो तो सर जब आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो आपको गरीब होना ही है, खर्चे करने ही है, कमजोर हो जाएंगे
1: प्रॉपर्टी उसमें कहाँ से हंगर हम कोई भूखा नहीं रहे
0: बस बस सही बात है और भूखा रहा तो नुकसान ही नुकसान
1: पर्यावरण के लिए तो
0: नुकसान ही नुकसान है, वो सस्टेन कैसे कर पाएगा पर्यावरण के लिए भी फिर क्या
1: फिर आप बोलेंगे भाई विवेक कैसा शिक्षा कैसा आ जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी एजुकेशन चाहिए ना सर, शिक्षित विवेकवान कैसे बनते हैं, मोरल शिक्षा
0: ये मोरल इसलिए सर यही बात रोज हम गा रहे हैं आप और मोरल इसी से आएगा, सारी चीजें हैं आपको उसके लिए चिंतन करना है और फिर उस काम को वहां तक पहुंचा करके कर देना है, कोई अच्छा काम है तो उसके लिए जुट जाइए जहां से मिले जुट जाइए, अंदर संकल्प करो उसकी सिद्धि करो उससे जुट जाइए और अपने अंदर कम से कम
1: लेंगे तो।
0: सर मैं बताऊं आप परिवर्तन की बात में स्व परिवर्तन की बहुत अच्छी लगती है मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सर सर सर बिल्कुल यहाँ इन्होंने इस वातावरण को इतना चेंज कर आप और हम जाकर के देखें तो पता चले कि वहाँ हो क्या रहा है, किस तरह से वो भारी वातावरण को शुद्ध किए हुए है और किस तरह से उनकी अंत चेतना बिल्कुल शुद्ध परिशुद्ध है,
1: इससे कैसे हो रहा और क्यों नहीं हो पा रहा, किवली में होता है आमथला में क्यों नहीं हो पा रहा
0: सर,
1: जो चिंतन जो आध्यात्मिकता ये चीज थोड़ा सपोर्टिंग करता है और एक संगठन
0: आध्यात्मिक और ट्रस्ट सर बिल्कुल ये बिल्कुल
1: यूनिट और ट्रस्ट आप अकेला करेंगे ना आसपास लोग ठीक नहीं रहेगा तो आपका वो उजाड़ देगा,
0: बिल्कुल सही बात है सर,
1: मान लीजिए आप लगाएंगे अच्छा यहाँ पे ब्रोकली वगैरह बहुत सुंदर सुंदर
0: बिल्कुल
1: दो दिन के बाद आप जाएंगे तो उसका तो पौधा ही उठाकर ले लेंगे
0: वो सर क्या बोल के बिल्कुल सर वो तो होता ही
1: होता है, हम जानते ना खेती बाड़ी जो करते
0: सब जगह
1: तो ये जो मोरल जो है वो उनका ये मेरा ऐसे सोचते
0: सब अपना समझेंगे, मेरा समझेंगे तो जाकर संभव हो जाएगा। तो सर
1: मेरा सोच कर

0: डाउन होता है
1: डाउन
0: जिसका चलते नहीं कर पा रहे। जैसे आपने बार बार एग्जांपल दे रहे ब्रह्मा कुमारी इसको
1: बिल्कुल
0: कर पा रहा है हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर
1: रहे?
0: तो इसका बच्चा इसका पीछे सर एक इसका पीछे तो कुछ राज होगा ना
1: सर, राज
0: वो भी व्यक्ति ये भी व्यक्ति, एक तो आध्यात्मिक चिंतन है।
1: बिल्कुल सर, आध्यात्मिक चिंतन है और सबका भला सोचने की एक
0: भला सीखते ना, तो उससे हो जाता है और उन लोग भी करेंगे तो हो जाएगा, इससे बड़ी
1: करेंगे तो हो जाएगा
0: सर। अब वो नहीं करते हैं तब नहीं हो पाता, करेंगे तब होगा,
1: करेंगे तब तो होगा सर, वो करते ही उसके लिए सर समय निकालना पड़ेगा। सर मैं निवेदन करूं, जैसे ये हमारे वहाँ पशु है पक्षी है, लोग मंदिरों के बाहर जाके हाथ जोड़ते हैं, आप ये कहेंगे मैं भी इसमें विश्वास करता हूँ धर्म में, पर मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जो पक्षी या जो पशु भूखा बैठा है या जो बीमार है वो हाथ भी जोड़िए, लेकिन उसके लिए लोग सर उसके लिए समय नहीं निकालते, हाथ जोड़ के खड़े रह जाते, तब मुझे बड़ी सर पीड़ा होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो कहीं से गलत है, वो सही है, लेकिन थोड़ा समय उनको तो देवे वो सर। इसके लिए मेरे कई बार इधर उधर थोड़ी सी बात हो जाती है, तो सर ये दोनों काम साथ में करना चाहिए,
0: तब जाकर पर्यावरण को
1: निश्चित रूप से हम
0: सर पर्यावरण मैंने इससे देखा, मैंने पहले इतना सोचा नहीं था, आपसे संपर्क में आया तो देख इतना वास्ट एरिया और हम कहाँ तक है, क्या कर रहे हैं और करना चाहिए और बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये सारा सोचने का मजबूर कर देते भाई
1: सर, त्याग करना पड़ेगा। आपने सर संस्थान में जा करके पूरा त्याग किया, तो सर त्याग करें, थोड़ा तो समय का त्याग करें, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो सर वही भगवान को हाथ जोड़ के दीपक करके घंटी बजा के वो कर दिया। मैं सर ये काट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सीधी सी बात कर रहा हूँ, उसके साथ ये सेवा भी करो
0: कर्म,
1: तब वो फलेगा नहीं तो नहीं फलेगा।
0: हो सकता है
1: तो सर इसकी विचार शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है, जो
0: आपने आज जो विश्व स्तर पर इतना चिंतन चला जो बहुत सुंदर
1: जी जी
0: आपका साथ आपने बताया, ये विश्व कप से प्रयास
1: तो सर ये तो इसीलिए तो सर
0: करने के लिए सस्टेनेबल जो चीज है
1: बिल्कुल
0: आवश्यकता है
1: सर सर,
0: है ना, तो उसको कैसे किया जाए उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हो रहा है सभी अपने अपना लेवल पे और जरूर प्रयास से हो रहा है।
1: जागरूकता आएगी, आप जैसे लोग दौड़ेंगे, ऐसे संगठन काम करेंगे, दूसरे लोग उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत अच्छा सुधार आ जाएगा सर, यही एक तरीका है।
0: अच्छा दिशा है, जो जितना भी चिंतन करें वो चिंतन
1: प्रतिफलित हो, ग्राउंड पर प्रतिफलित। आप जैसे ये सोचते हैं एक बार कि मुझे दौड़ना है मैं दौड़ रहा हूँ, अरे भाई दौड़ोगे तो फायदा होगा, दौड़ना है क्या, प्रैक्टिकली दौड़ोगे तो शरीर को फायदा होगा, आप मन ही मन दौड़ लोगे तो फिर कहाँ कैसे क्या होगा, तो उस काम को करने की आवश्यकता, उस काम को करेंगे तो अपने पास में चारों तरफ चीजें मौजूद है। आशा है आप सभी विशेष रूप से प्रेरित होकर के खुद भी करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद
0: धन्यवाद सुंदर कार्यक्रम के लिए, सुंदर प्रस्तुति और दिल जान और प्रेम का साथ, आज पर्यावरण का साथ मैं तो कहूँगा भाई, पर्यावरण का साथ हमारा प्रेम है, स्नेह है, आपका भी है, हमारा भी है, तो इस प्रेम का साथ और अपनापन होता है मेरा पर्यावरण, माई एनवायरमेंट जैसे मेरा कहते हैं, मेरा पर्यावरण, मेरा परिवार, मेरा पापा कहते हैं जैसे, तो मेरापन में देने के लिए अच्छा लगता है भाई, अपनापन आता
1: है तभी अच्छा लगता
0: है, पर्यावरण को अपना बनाए अपनाइए और अपना सब कुछ परमात्मा तक पहुँचाइए, है ना, तब जाकर वो सार्थक हो जाएगा और चरित्र और चित्र आपका चित्र देखकर लोग चेहरा से देखकर लगेगा हाँ कुछ देने वाला है, तो जरूर हमारा ऐसे मुस्कुराते चेहरा रहे इन सुभावना का साथ, हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और अगला एपिसोड में मिलेंगे इसी समय, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आज स्वचिंतन का साथ साथ विश्व चिंतन में पर्यावरण का भूमिका और पर्यावरण स्पेशल में आज रखे बहुत अच्छा चुनकर लाए, इसलिए बहुत मेहनत करते हैं लेकर आते हैं और हमें भी खुशी करा देते हैं। धन्यवाद
1: सर, आपका ये तो प्रेम है और समय की आवश्यकता है, इसलिए मेहनत तो करना ही है,
0: जी जी
1: जो जानेगा वो सबसे ज्यादा दौड़ेगा उसकी आवश्यकता है।
0: धन्यवाद।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए, भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे, उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है, कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

है तब जब उसकी रहमत हो, उससे मिलने की तरकीब कहूँ गर तुम सहमत हो। तुम फूल ही हो इसमें नहीं कोई शक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, नहीं अब हक मुझको।

0: नमस्कार, आप सुन रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। हमने पहले भी जाना कि प्रकृति के साथ संगीत का एक गहरा संबंध है। देखा जाए तो संगीत के माहौल में कोई पेड़, पौधा या फूलों का रंग रूप अलग ढंग से होता है। आप सभी इस पर विचार कर सकते हो। इसलिए मॉडर्न युग में म्यूजिकल गार्डन और म्यूजिकल फाउंटेन मानव मन को आह्लादित कर देता है, जैसे कि मालकोस राग में राधा किशन का मिलन या काफी राग में रंगों की पुहार होती है। तो आइए ऐसे ही संगीत की महिमा में और जानकारी देने के लिए हर बार की तरह मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ गीता जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ। जितने सारे लिसनर है सबको मैं नमस्कार करती हूँ।
0: हम जौनपुरी राग की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: आज आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, पिछले एपिसोड में मैं स्वर लिपि दे दिया था।
0: हाँ जी,
1: बच्चे ने शायद लिख लिया होगा। तो अभी क्या करेंगे, बंदिश दे देती हूँ
0: जी।
1: आज बंदिश सिखाएंगे, तान करेंगे तो कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं पहले उसको बंदिश सुना देती हूँ।
0: हाँ,
1: तीन तल की है बंदिश है। पाई लिखी झनकार बड़निया, बहुत सुंदर बंदिश है। आपने बताया कि राधा किशन अभी बोला थे, हर टाइम राधा किशन जो मालकोस में तरह तरह के राग में भी होता है
0: जी,
1: इसमें भी ऐसी है। आपको पहले बताया कि इसका जो प्रकृति जो बहुत शांत प्रकृति का होता है
0: जी,
1: तो इस आधार से ये बंदिश भी है। पायल की झनकार बड़निया, झन्ने झन्ने बाजे कैसे मोरी, पिया से मिलन को जाऊं अब मैं। अगर झनकार होता है पायल की तो पिया से मिलने के जाने के डर लगता है ना
0: जी,
1: आवाज उठता है ना, तो ऐसी बात है। तो इतना है, पायल की झनकार बड़निया, झन्ने झन्ने बाजे कैसे मोरी, पिया से मिलन को जाऊं अब मैं। ये है स्थाई का बंदिश। अंतरा की है, बिरहा से तने ताप तपत है, अंग अंग सब लागर हीले, सदा रंगीले उठत जिया हुका। बिरहा से तने ताप तपत है, अंग अंग सब लागर हीले, सदा रंगीले उठत जिया हुका। ठीक है, अभी इसको क्या करते हैं, पिछले एपिसोड में जो स्वर लिपि के साथ इसको बैठा देते हैं पहले। ठीक है
0: जी।

जौनपुरी राग की बंदिश के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हम इसी राग से संबंधित एक प्यारे से गीत का आनंद लेंगे, और हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: पुनः आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने शामली जी से जौनपुरी राग की बंदिश सुनी।
1: हाँ जी,
0: अब आगे आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, अभी इसको थोड़ा सा विस्तार करेंगे, थोड़ा तान भी करेंगे, स्थाई अंतर की तान भी सुनाएंगे
0: जी।
1: अगर लिस्नर उठा लेते तो अच्छा है, नहीं तो गुरु के पास तो शिक्षा लेना ही है। ठीक है।

0: तो ये जौनपुरी राखी आपने बंदिश की तान सुनाई।
1: हाँ, थोड़ा बिस्तर भी सुनाया, थोड़ा तान अंतरा की तान, स्थाई की तान हमने सुना दिया। अगर लिसनर गुरु के पास शिक्षा लेते हैं ऐसा, अगर इसमें भी सीख सकते हैं तो वो तो कोई ये हर्जा नहीं है ना
0: जी,
1: तो आप और सीख सकते हैं तो अच्छा है।
0: रेडियो के माध्यम से जो संगीत सिखाते हैं ये तो मेरे को लगता है सिर्फ रिवीजन में उनको काम में आता।
1: हाँ जी, होगा। हाँ जी,
0: बाकी तो आप जैसे पहले भी आपने बताया है कि डायरेक्टली कोई गुरु के पास शिक्षा लेना अनिवार्य है।
1: अनिवार्य है, मैं तो इसलिए रेडियो के माध्यम से थोड़ा सिखाती हूँ। हाँ। ऐसे इतना कम समय तो नहीं होता है ना
0: जी,
1: मैं थोड़ा से सुनाया सिखाया।
0: श्यामली जी, आज जाते जाते आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
1: हाँ, आज बहुत अच्छा फिल्म है, मेरे को भी फेवरेट है ये।
0: अच्छा
1: फिल्म काटी पतंग।
0: ओके बहुत फेमस,
1: बहुत फेमस है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या
0: एक काटी पतंग है। वाह,
1: बहुत सुंदर लता जी का कॉम्पोजिशन है
0: जी,
1: मैं कोशिश कर सकती हूँ
0: जी।

0: एक बात कहूँ आपको?
1: बताइए।
0: कोइंसिडेंस?
1: हाँ जी।
0: ये गीत कहो, ये राग कहो, सब सीजनल हो गया।
1: हाँ जी।
0: क्योंकि अभी अभी जनवरी मास में पतंगों का त्योहार गया।
1: हाँ जी।
0: और पतंगों का अपने जीवन के साथ किस प्रकार का हम संबंध जोड़ के मार्मिक अर्थ?
1: मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं सोचती औरत की जिंदगी जो है ना एक काटी पतंग जैसी है। आप देख लेना, अगर मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, शिकवा नहीं करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मेरी जिंदगी है क्या एक काटी पतंग जैसी है ना। औरत की अभी भी उसे जिंदगी नहीं मिला है, लेकिन अभी खुद को अपना जिंदगी बनाना चाहिए। अभी जैसे मैं इसी उम्र में भी मैं अपनी जिंदगी बना लिया
0: जी
1: संगीत के अंदर
0: जी। इसीलिए संगीत हर हमारे अनुभव को, हमारे एहसास को दर्शाता है।
1: देखिए कितना अच्छा,
0: बहुत सुंदर
1: संगीत जिंदगी से मिला हुआ है ना
0: जी।
1: हर समय हर पल जिंदगी में संगीत संगीत संगीत
0: जी। श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत। जाते जाते आपने मन को खुश कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स
1: जी।
0: फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं या एसएमएस के द्वारा भी आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अगर आप किसी से रास्ता पूछें और वो गलत बता दे तो कितना घूम जाते हैं, है ना? समझ ही नहीं आता कि थोड़ा और आगे देख लिया जाए या फिर पीछे से टर्न लिया जाए। बस राठौड़ परिवार में अभी कुछ वैसा ही माहौल है। सब ने कड़वी बातें बोल तो दी हैं और घर के बड़े यानी भगवत सिंह राठौड़ जी ने निर्देश दिया कि पहले होगी पेट पूजा, फिर होगा काम दूजा, यानी लड़ाई को टेम्पररी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अब ब्रेक के बाद आग और भड़केगी या फिर शांत होगी, चलिए देखते हैं।
1: जमाई साहब, नाश्ता शुरू कीजिए।
2: माँ साहब, मैं बस आता हूँ, आप लोग शुरू कीजिए।
1: लेकिन जमाई साहब, आप कुछ तो खाइए फिर चले जाइएगा।
2: नहीं, मैं अभी बाद में लेता हूँ।
3: अरे आपके पास कौन सा काम है फला जमाई साहब?
4: इधर की बात उधर करने से तो अच्छा है इंसान कोई काम ना करे।
3: क्या कहा आपने, क्या कहा आपने? मैं क्या कुछ नहीं करती इस घर में? हाँ, आपको क्या पता, नाश्ता करके निकल जाएंगे अपने काम पे। इस घर में मैं ना हूँ तो कोई काम ना हो ठीक से। क्या हुआ देवर जी, कोई प्रॉब्लम है का?
5: नहीं तो बड़ी भाभी, बस गले की खराश थी।
3: तो पानी पी लीजिए, नहीं तो राजकुमारी से कह के काढ़ा बनवा दे।
6: हाँ हाँ देवर जी, अभी बना लाती हूँ मैं। थोड़ा सा करेला, थोड़ा सामने वाले पेड़ की छाल और हरे नीम के पत्ते के साथ बस दो बूंद गरम घी।
5: नहीं मतलब नहीं, जरूरत नहीं है भाभी, मैं एकदम ठीक हूँ। देखिए, गा के सुनाओ।
7: नहीं
4: किशन, माना तुम कविता लिख लेते हो पर तुमसे अच्छा मेरा पुराना टेप रिकॉर्डर गाता है।
5: क्या बड़े भैया, आप भी। वैसे आपका वो पुराना टेप रिकॉर्डर तो खराब हो गया था ना, उसमें तो एई एई की आवाज आ रही थी।
3: पुराना टेप रिकॉर्डर आपने तो उसे कबाड़ी वाले को दे दिया था ना, जिसका मोल बड़ा कम लगाया था उस नालायक ने।
4: वो मैं वो मतलब, अरे क्या मेरी बात लेके बैठ गए, कोई जमाई साहब को तो देखो अब तक आए नहीं, हम लोग नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं भाई।
8: शांति, जाओ जमाई साहब को लेकर आओ।
6: मैं नहीं जाऊंगी वीरेंद्र भैया, बच्चा थोड़ी है, खुद ही आ जाएगा।
1: हे राम, किस मुहूर्त में पैदा हुई थी तू? कोई अपने पति को ऐसे बोलता है क्या?
6: हाँ, आप भी मुझे ही बोलो, इस घर में मुझे कोई नहीं समझता है।
5: शांति दीदी, बस हाँ, ज्यादा फिल्मी हो रहे हैं आप, मैं जाता हूँ जीजा जी को बुलाने।
0: वैसे कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, पर ये बहस सालों से चली आ रही है कि फिल्मों में वही दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है, या फिर फिल्मों में जो देखते हैं वो समाज में होने लगता है। वैसे जो हम देखते हैं सुनते हैं, भाई उसका असर मन पर तो पड़ता ही है। फिलहाल शांति जी अपने दर्द को सबसे बड़ा मान बैठी हैं। आखिर उनके पति बाकी पतियों की तरह कमा जो नहीं रहे, और उनके पति सूरजमल कुछ न कर पाने का दुख और जिल्लत के बोझ को झेलकर अपने गम छुपाए कमरे में बैठे हैं। किशन उन्हें बुलाने गया है, अब देखते हैं क्या वो कामयाब होगा। चलिए
5: जीजा जी, मैं अंदर आ जाऊं।
2: किशन, अब अभी जाऊं यहाँ से।
5: जीजा जी, आप रो रहे हैं।
2: नहीं, किसने कहा? जाओ जाओ, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है।
5: जीजा जी प्लीज, मुझे अंदर आना है, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं भी तो आपका भाई जैसा हूँ। जीजा जी ये लीजिए, पानी पीजिए।
2: देखो किशन, मैं यहाँ जब से आया हूँ तब से कोई खुश नहीं है, ऊपर से शांति भी नाराज है। वो सही कहती है, मैं ही नकारा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया है।
5: जीजा जी, जो भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और आप इतना कुछ होने के बाद भी दोबारा कोशिश कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है।
2: क्या फायदा इस कोशिश का जो रंग ना लाए।
8: जमाई सा, मैं कुछ कहूं?
2: भैया आपने तो मुझे शुरू से बहुत हौसला दिया है, लेकिन मैं
8: जमाई सा आप रो लीजिए, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि हम आपको ससम्मान इस घर में जगह दे रहे हैं और आपके काम करने या ना करने से ये कम ज्यादा नहीं होगा।
5: माफ कीजिएगा जीजा जी, शांति दीदी तो अशांति करके रखती है पूरे घर में। बचपन में एक बार उनको मार्केट नहीं लेके गए थे बड़े भैया, क्या हंगामा मचाया था, सारे घर के शीशे तोड़ दिए थे।
2: कोई रिफंड प्रोसेस है क्या इसका?
8: जमाई सा आपको तो सिर्फ उल्टा सुनना पड़ता है, मुझे तो खाना भी पड़ता है वो भी चुपचाप।
5: इसी बात पे अर्ज किया है।
8: बोल भाई बोल।
5: वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, उन्हें इल्म भी नहीं बस वही है हमारे ख्यालों में।
8: हा? ये किसकी बात करने लगा?
5: नाश्ते की भैया, भूख लगी जोरों से और कुछ नहीं सूझ रहा अब मुझे।
8: तू भी किशन, चल चलिए जमाई सा नाश्ता करते हैं।
6: जमाई सा अब तक आए नहीं, इतनी देर हो गई।
7: जमाई सा रो रहे होंगे, छोटी छोटी बातों पे औरतों से ज्यादा रोने लगते हैं।
6: मासा मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ।
9: माँ मैं जाती हूँ, मैं बताती हूँ उनको कि इस शांति की बात को ज्यादा सीरियसली ना लें, इसकी बातें इसको ही समझ नहीं आती है।
10: दीदी मैं चुप बैठी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगी आप।
9: वाह शांति और शांत, वाह वाह ये तो चमत्कार है। अगर तूने उन्हें खरी खोटी ना सुनाई होती तो अभी सब अच्छे से बैठ करके नाश्ता कर रहे होते।
10: दीदी वैसे तो बड़ी फेमिनिस्ट बनकर घूमती हो आप, अभी मेरा साथ नहीं दे सकती आप?
9: शांति फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि लड़की की गलती हो तो भी उसका साथ दिया जाए।
11: शांति
10: पर पापा ये।
11: बस बेटा अब बस कर, अगर गलती जमाईसा की भी होती ना तब भी ऐसे ताने कसने से नहीं हो जाती, और थोड़ा सा उनका दुख समझ, कितनी बड़ी परेशानी से निकले है वो, अभी तुझे तो उनका साथ देना चाहिए।
10: पापा सिर्फ अभी की बात नहीं है, वहाँ पर भी घर में यही होता है, इनको समझ में ही नहीं आती है दुनियादारी।
6: और तुझे आती है?
11: तुम लोग डिसाइड कर लो, समस्या का हल चाहिए या सिर्फ नाराजगी से पेट भर लोगे?
6: हल चाहिए।
11: तो बस हो गया अब।
4: शांति रागिनी नाश्ता ठंडा हो गया है, जाओ जाके राजकुमारी की मदद करो, गरम करके लेके आओ, जाओ।
12: लो आ गए जमाईसा। जमाईसा अब बैठिए, बस नाश्ता गरम ही हो रहा है।
5: माँ माहौल तो ठंडा है ना यहाँ का, वो गरम नहीं होना चाहिए।
3: अरे कोई जमाईसा के लिए गरम गरम दाल बाटी लेके आओ। जमाईसा आप खाइए, मेरी रेसिपी है एकदम स्वादिष्ट।
5: इनको क्या हो गया, बड़े प्यार से बात कर रही।
4: अरे भूख लगी है ना, अभी गुस्सा दिखाने से फिर जमाई सा चले गए तो दाल बाटी नहीं मिलेगी।
6: चलिए चलिए सब लोग खाइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, ये लीजिए। हाँ बच्चों तुम लोग इधर आ जाओ।
3: अरे वाह ला ला, मुंह में पानी आ गया मेरे तो।
1: वाह राजकुमारी आज तो तूने कमाल कर दिया, बड़ी स्वादिष्ट दाल बाटी बनाई है।
6: थैंक यू मासा, आपसे ही तो सीखा है, इसमें मैंने अपना कुछ भी ऐड नहीं किया।
8: धन्यवाद भगवान का बच गए।
1: चलो चलो सब लोग खाओ गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा। इस वक्त तो दूध वाला पेपर वाला कोई नहीं आता, अब कौन आ गया गेट पे?
8: शांति गेट खोलो।
6: अरे किशन जाओ ना गेट खोलो।
9: अरे गेट खोलो ना।
10: जाइए गेट खोलिए।
4: कोई तो जाओ।
6: अरे गेट खोलिए।
4: कोई तो जाओ।
8: शांति गेट खोल दो।
10: अरे गेट खोलो तो कोई।
9: हाँ, किसी को उठ गया तो जाना नहीं है, सभी को एक दूसरे को बोलते रहते, बस यही ऐसे ही
8: कर क्या रहे। लेकिन अब पता, अरे कोई देखो बाहर कोई है।
3: अरे कौन है गेट पे?
8: पुलिस।
11: पुलिस?
8: अरे कौन
13: पुलिस?
9: यहाँ तो कोई घरेलू हिंसा भी नहीं हुई, वैसे मेंटल हैरासमेंट तो किया है इसने, ये कहीं शांति को पकड़ने तो नहीं आए?
10: क्या दीदी, मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैं तो कितनी मासूम हूँ।
8: ये ना जरूर किशन की घटिया पोएट्री के लिए उसे पकड़ने आए होंगे।
5: भैया कहीं परेशान होकर जीजा जी ने तो पुलिस नहीं बुला ली?
2: मैंने नहीं बुलाई, मैं तो कमरे में था।
4: अरे तुम लोग चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ।
0: क्या लगता है आपको, पुलिस क्या करने आई होगी राठौड़ परिवार में? अब कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है इन घर वालों के जीवन में, भाई ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। वैसे कितना कुछ हो गया ना आज, सोचिए बचपन में जब एक दूसरे से रूठते थे तो कैसे फटाफट मान भी जाते थे, काश वो मासूमियत हमेशा रहती। आज हम एक दूसरे से ऐसे नाराज होते हैं कि उनका दुख भी दिखाई नहीं देता, ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि मेरी बात मेरी परेशानी मैं सही, बस मैं ही रह जाता है। बाद में जब ये मैंपन का नशा उतरता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कबीर दास जी ने तो कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही, परिवार मतलब प्रेम, प्रेम मतलब मैं नहीं हम। खैर अब राठौड़ परिवार तो आनंद ले रहे हैं राजस्थानी पकवान का, मैं भी चलता हूं क्योंकि मेरे पेट के चूहे भी अब मुझे और बातें नहीं करने देंगे, है ना? फिर मिलेंगे जल्दी। आखिर आपको बताना भी तो है ना कि पुलिस क्यों आई है राठौड़ परिवार के दरवाजे पर। फिलहाल के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, घड़ी खम्मा दोस्तों।
14: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

मैं कमलेश माउंट आबू डूंडई गांव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।

शांति। आज 5 अक्टूबर 2026 और हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। सोमनाथ बाबा आज हम बच्चों को सोमरस पिला रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बाप की महिमा गाते रहे, अब वह बाप तुम्हारे सन्मुख हाजिर है, तो खुशी में नाचते रहो, किसी भी बात का गम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आज बाबा ने विशेष बच्चों को ये भी रियलाइज कराया है कि बच्चे तुम जब देह अभिमान में आते हो तो सभी विकार सामने आने लगते हैं। उसमें सबसे बड़े से बड़ा कांटा है काम विकार, जो गिराता है। लेकिन बाबा कहते ये क्रोध भी कम नहीं है और देवताएं तो कभी क्रोध नहीं करते हैं, तो इस क्रोध विकार के वश भी तुम्हें नहीं होना है। साथ ही साथ आज बाबा ने विशेष मुरली का भी महत्व बताया और बाबा ने कहा, मुरली सबको सुनानी चाहिए, एक दूसरे को ऑफर करना चाहिए कि आज आप मुरली सुनाओ। बाबा कहते मुरली सुनते सुनते अपने जीवन को संपन्न बनाते जाओ, संपूर्ण बनाते जाओ। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है, इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी भी बात का गम ना हो। आज के मुरली से प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? उत्तर है, अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा सबसे तीखा है, क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है, देवताएं क्रोधी नहीं होते, इसलिए मीठे बच्चे कोई कांटा हो तो निकाल दो। बाबा कहते मीठे बच्चे कोई कांटा हो तो निकाल दो, अपने आप को घाटे में मत डालो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, वह गाते रहते हैं और यहां तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिनके द्वारा बना रहे हैं वह जरूर सुखधाम का मालिक बनेंगे। बाबा कहे जो आकर के हम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं और जिनके द्वारा बना रहे हैं जरूर वह सुखधाम का मालिक बनेंगे। ब्रह्मा बाबा तो सुखधाम का मालिक बनेंगे, बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा परंपार है, उससे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। हाँ, अंडरलाइन की बात है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों पर और सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। अभी यह तुम ब्राह्मण ही जानते हो, भारत खास और दुनिया आम, सब पर बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है, बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते रहते हो वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। बाबा समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी राजाई देकर गया था, अभी तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे,

तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे, जैसे कोई कहते हैं एक धर्म हो, एक राजाई हो, एक भाषा हो, वे भी आत्मा ही कहती है ना, आत्मा जानती है। बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी, यह खुशबू फैलती जाएगी। बाबा कहते ये नई दुनिया की खुशबू फैलती जाएंगी, तुम खुशबू डालते जाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने खड़े हैं, ये कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कलह संपूर्ण जरूर बनना है, तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं विकारों का अवगुणों का दान दो। ये रावण राज्य है ना, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है, तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भी भान छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, भारत स्वर्ग था, अब 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। ये काम विकार ही गिराने वाला है, इसलिए बाप कहते ये दान दो। ये काम विकार ही सबको गिराने वाला है, इसलिए बाप कहते ये दान दो, तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है ना, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पाठ है, तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो। ये बेहद का ड्रामा है, अथाह एक्टर्स हैं, इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं ये लक्ष्मी नारायण। उन्हों का नंबर 1 पार्ट है विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं, वह सारा बुद्धि में आ जाता है। व्यापारी लोग चौपड़ा रखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, यह है बेहद का चौपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं, जैसे पूरी में चावल का हंडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं, वहां चावल का ही भोग लगता है। अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं, मोस्ट बिलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा करते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, अभी तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है ही, उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता। जब यह कोई अच्छी रीति मास 1.5 मास बैठ समझेंगे तब पॉइंट्स बुद्धि में बैठेगी। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत निकलती रहती है, यह है जैसे कस्तूरी, ज्ञान की कस्तूरी। शास्त्रों में तो कुछ भी सार नहीं है, बाबा कहते हैं वह अब बुद्धि से निकाल दो। ज्ञान सागर में एक ही हूं, जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं बरोबर, ये सब भक्ति मार्ग के लिए है। परम पिता परमात्मा ही आकर के दुर्गति से सदगति करते हैं। सीढ़ी पर भी क्लियर दिखाना है, भक्ति मार्ग शुरू होता है तो रावण राज्य भी शुरू होता है। अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, बाप कहते मैं कल्प कल्प कल्प के संगम युगे आता हूं। उन्होंने फिर कच्छ मच्छ अवतार कह दिया है, 24 अवतार कह देते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम पर बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी है, अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने।
तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब तो ये सबसे बड़ा व्यापारी है, सबसे बड़ा सेठ है, सबसे बड़ा व्यापारी है। कोई विरला व्यापारी व्यापार करे, यही अविनाशी व्यापार है। और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है बेहद का सौदागर रत्नागर, और ज्ञान का सागर कहा जाता है। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगाएं तो सारे भारत में नहीं है, यह भी तुमको समझाना पड़े कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते रहेंगे। शोभनिक चित्र ऐसे हो जो देखने से ही खुशी आ जाए कि यह तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। ये ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल में अपने से पूछते रहो कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है। क्रोध का छोटा सा कांटा वह भी बहुत खराब है। बाबा कहते क्रोध का छोटा सा कांटा वह भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं, देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं। दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है, तो यह भी एक कलंक लगाया है। बाबा कहते यह भी एक कलंक लगाया है, विनाश तो होना ही है, वो तो भावी है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़ी हो सकते हैं। वह धरती कहां जो सर्प आदि निकले, आसमान में थोड़ी सर्प घूमेंगे। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते, ये सब यहां होते हैं। स्वर्ग भी यहां ही होता है। इस समय मनुष्य कांटे मिसल है, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचे बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बनाते हैं। खुद तो एवर हसीन है, बाबा खुद तो एवर हसीन है। सब सजनियों को अर्थात बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय दुख आधा समय सुख हो, इससे फायदा ही क्या। अगर आधा आधा हो तो बाबा का इससे फायदा ही क्या। नहीं, तीन हिस्सा सुख है, ये ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है। कई बच्चे बाबा से पूछते बाबा ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है, तो क्या कहते बाबा, अरे ये तो अनादि है ना, क्यों बना ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, किसको मोक्ष नहीं मिल सकता। ये तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती रहेगी, प्रलय होती नहीं। बाबा नई दुनिया बनाते हैं, परंतु इसमें गुंजाइश कितनी है। जब मनुष्य पति दुखी होते हैं तभी तो बुलाते हैं। बाबा आकर सबके काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो बाप तुम्हारी काया कल्प तरु बनाते हैं। आधा कल्प कब तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुम काल पर जीत पाते हो। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए।
जितना उच्च पद पाए उतना अच्छा। बाबा कहते जितना उच्च पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं। लकड़ी वाले भी कहेंगे, लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती लकड़ी ले जाए तो जास्ती कमाई होगी। लकड़हारा होता है ना जो जंगल में जाते लकड़ी चुनने के लिए, तो वो भी समझते हम जास्ती लकड़ी ले जाए तो जास्ती कमाई होगी। कोई तो ठगी से भी कमाई करते हैं, वहां ऐसे कोई दुख की बात नहीं होती है। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी है कि हम स्वर्ग में जाने लायक है। बाबा कहते नारद का मिसाल है ना, शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है, ये तीर्थ यात्रा आदि सब छोड़ो, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फिरे फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, सिर्फ बाप कहते हैं मां में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति तुमको सुनाता हूं, बच्चे सुनते हैं। ये मेरा लोन लिया हुआ रथ है, बाबा कहते ये ब्रह्मा बाबा का मेरा लोन लिया हुआ रथ है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाप को अपना शरीर लोन में दिया है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, नाम भी है भागीरथ। तुम जानते हो बॉम्ब्स आदि तैयार हो रहे हैं, आग लगनी है, रावण का भूत भी बनाते हैं मारने लिए। यहां मारने आदि की तो बात नहीं, कहां मारने आदि की बात, कहां ये रावणपुरी खत्म हो रही है। तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो समझाने के लिए चित्र भी अच्छे बने हुए हैं। ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रख, बहुतों का कल्याण करो। शिव बाबा का, लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा का मुख्य है, या गोला झाड़ सीढ़ी मुख्य चित्र है, तो अपनी दुकान पर रख, बहुतों का कल्याण करो। उस सौदे के साथ साथ यह सौदा भी करो। ये बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्न का दुकान है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं, बाबा कभी किसी को मना नहीं करते कि मकान आदि नहीं बनाओ, भल बनाओ। बाबा कहते भल बनाओ, पैसा तो मिट्टी में ही मिल जाएगा, इससे क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो। पैसे काम में लगाना चाहिए, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वह सब आर्य समाजियों को दान में दे दिया। बाबा को मालूम होगा कि कश्मीर का राजा जब मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो थी वह सब आर्य समाजियों को दान में दे दिया। अपने धर्म के लिए करते हैं ना, यहां तो वह कोई बात नहीं, सब बच्चे हैं, दान आदि की बात नहीं। वह है हद का दान। मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, रामानुसार भारतवासी ही राज्य भाग के लेंगे। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्प काल के लिए मिलता है। बाबा कहते अब तो मैं डायरेक्ट आया हूं तो तुम इस कार्य में लगाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या, वह तो सब ब्राह्मणों का है, यह सब ब्राह्मणों का है।
गरीब शाहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, तो यह सब बच्चों का ही है। देखा जाता है घर में ये कैसे आराम से रहते हैं, तो वो प्रबंध देना पड़े। इसलिए कहते हैं सबकी खातरी करो, कोई चीज ना हो तो मिल सकती है। बाबा कहते अगर कोई चीज ना हो तो मिल सकती है, बाप को तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई कर नहीं सकता है। बाबा कहते इतना लव और कोई का रह नहीं सकता। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए सिर्फ तीन पैर पृथ्वी, इसमें चाहिए सिर्फ तीन पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियां समझाती रहे, कोई बड़े आदमी का हॉल हो। बोलो हम जरूरी चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करके चले जाएंगे, खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। बाबा कहते बहुत ऐसे होंगे जो आएंगे कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है, उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है, ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, ब्राह्मण जीवन का आधार है मुरली, जो प्यार से सुननी और सुनानी है, अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है और क्या करना है, और अवगुणों का दान करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सत्वगुणी चाहे तमोगुणी, संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि न हो, क्योंकि जानते हो यह अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है। किसी भी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि न हो, क्योंकि जानते हो यह अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभ चिंतक आत्मा ऐसे नहीं सोचेंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। बाबा कहे शुभ चिंतक वाली आत्मा कभी नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही शुभ चिंतक की स्टेज है। आज का स्लोगन है, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। आज का व्यक्त इशारा है, परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। वत्रिकाल दर्शी होने के कारण आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए, उसकी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेगा, वर्णन नहीं करेगा, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का काटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देगा। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देना। बाबा कहते कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देगा। अच्छा, ओम शांति।